किताबें जरूर पढ़नी चाहिए। आज 10 ऐसी किताबों के बारे में बात होने वाली है जो आपको पढ़नी चाहिए, आपकी लाइब्रेरी में होनी चाहिए। और अगर आप पुरुष हैं, आप सुन रहे हैं, तो आप अपनी दोस्त को, अपनी मम्मी को या फिर आपकी बहन है, उन्हें, आप आपके आसपास जो भी महिलाएं हैं, उन्हें ये किताबें या इनमें से कुछ किताबें उन्हें आप ज़रूर गिफ्ट करिए। सबसे पहली किताब है मित्रों मरजानी। नाम कितना प्यारा है ना, और मित्रों मरजानी लिखा है कृष्णा सोपती ने। और अगर हम इस उपन्यास की बात करें तो ये उपन्यास मित्रों नाम की एक साहसी और बेबाक महिला की कहानी है जो कि समाज द्वारा महिला पर लगाए गए बंधनों को खुलकर चुनौती देती है। बहुत सारी बंधन है ना आज के समय में भी, आपको बहुत सारे बंधन मिलेंगे जिन्हें खत्म करने की जरूरत है। तो मित्रों यही काम करती है कि समाज जो महिलाओं पर बंधन लगाता है उसे वो चुनौती देती है। इस किताब में आपको स्त्री की इच्छाओं, उनकी स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का एक बहुत ही बेहतरीन चित्रण मिलेगा। और अगर हम बात करें ना, तो ये किताब भले ही बहुत पहले लिखी गई हो, लेकिन ये किताब अपने समय से बहुत आगे की सोच रखता है और ये किताब हर महिला को जरूर पढ़नी चाहिए। हिंदी साहित्य में इसे नारी विमर्श की महत्वपूर्ण कृति माना जाता है। अगली किताब है आपका बंटी। आपका बंटी मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा गया है, और मन्नू भंडारी की भी जो शख्सियत है ना, वो बहुत ही कमाल की है। आप उनके इंटरव्यूज देखेंगे या फिर आप उनकी और भी कहानियां पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई बहुत ही कमाल की शख्सियत और बहुत ही कमाल की इनकी लेखनी। और उनकी एक लेखनी है आपका बंटी, ये बहुत ही कमाल की किताब है। ये कहानी ना एक बच्चे बंटी की नज़र से आप पढ़ेंगे, समझेंगे। बंटी की नज़र से आप देखते हैं कि किस तरीके से एक परिवार टूटता है तो बच्चे पर असर सबसे ज्यादा पड़ता है। जब माता पिता का तलाक हो जाता है तो बच्चे पर क्या असर पड़ता है, यही इसका मुख्य विषय है। और उपन्यास में आप देखेंगे कि स्त्री के संघर्ष और उसके भावनात्मक जीवन का भी काफी बेहतरीन चित्रण है। और सबसे अच्छी बात है इस किताब की कि भाषा बहुत ही सरल और बहुत ही प्रभावशाली है। कहते हैं ना कि कुछ चीजें सरल रहते हुए भी आपके ऊपर बहुत ही गजब का प्रभाव छोड़ जाती है, तो ये किताब उन्हीं किताबों में से एक है। और ये हिंदी की, आपका बंटी हिंदी की सबसे चर्चित पारिवारिक उपन्यासों में से एक है। अगली किताब है अमृता प्रीतम की पिंजर। पिंजर उपन्यास की अगर हम बात करें तो भारत विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है ये उपन्यास, जिसमें नायिका का नाम पूरो है, हालांकि नायिका पूरो के जीवन के माध्यम से स्त्री के पीड़ा को दर्शाया गया है। जब भारत विभाजन हुआ था उस दौरान स्त्रियों को भी बहुत कुछ सहना पड़ा था। इस किताब में आप धर्म, पहचान और मानवता के प्रश्न से रूबरू होंगे। जब ये सारे प्रश्न उठते हैं ना तो आपको अंदर से कचोट देते हैं। कहानी बेहद ही मार्मिक और संवेदनशील है। अगर हम विभाजन साहित्य की बात करें तो उनमें से श्रेष्ठ कृतियों में से पिंजर का नाम गिना जाता है, अमृता प्रीतम की लिखी पिंजर। अगली किताब है मन्नू भंडारी की लिखी हुई महाभोज। महाभोज अगर हम इस किताब की बात करें तो ये एक राजनीतिक व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर तीखा व्यंग है। कहानी एक गरीब युवक की है, और जब उस युवक की मृत्यु हो जाती है ना, उसके बाद इस कहानी की शुरुआत होती है। किस तरीके से सत्ता और राजनीति आम जनता का शोषण करती है ये दिखाया गया है बहुत ही कमाल के तरीके से महाभोज में। और अगर हम इस उपन्यास की बात करें तो ये उपन्यास सामाजिक अन्याय को उजागर करता है और बहुत ही बेहतरीन ढंग से करता है, और आज भी ये उपन्यास उतना ही प्रासंगिक माना जाता है। महाभोज एक बार जरूर पढ़िए, ये आपको समाज को देखने का, आपके आसपास के व्यवस्था को, भ्रष्टाचार को समझने का एक नजरिया देता है। अगली किताब है चाक। मैत्रेयी पुष्पा की लिखी चाक समाज में महिलाओं के संघर्ष की कहानी है। उपन्यास में आप पढ़ेंगे जाति, पितृसत्ता और सामाजिक भेदभाव को, और किस तरीके से नायिका अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। भाषा में ग्रामीण जीवन की एक सजीव झलक आपको दिखती है, और ये किताब स्त्री सशक्तिकरण की एक महत्वपूर्ण कृति है, आपको जरूर पढ़नी चाहिए मैत्रेयी पुष्पा की लिखी चाक। कुछ किताबें ऐसी होती है जिन्हें पढ़कर रोना आता है, कुछ किताबें ऐसी होती है जो आपको हंसाती है, और कुछ किताबें ऐसी होती है जो आपके ऊपर प्रभाव नहीं छोड़ती है, और कुछ किताबें ऐसी होती है जो ना रुलाती है ना हंसाती है बल्कि आपको कचोटती है। आप बहुत असहाय से महसूस करते हैं, आपको समझ नहीं आता कि क्या कर दे, काश उस नायिका के पास हम पहुंच जाएं और उसकी जिंदगी ठीक कर दे, उसे समझा दे, या फिर बहुत ही आपको असहाय महसूस होगा, आप विचलित होंगे पर आपके हाथों में कुछ नहीं होगा। ये किताब है
कांता भारती

है, दगा मिलता है, वो आपको कचोट देती है अंदर से। भाषा बहुत ही सरल है लेकिन बहुत ही प्रभावशाली, और भावनात्मक गहराई इतनी है कि किताब पढ़ते हुए, मैंने आपसे कहा ना, आप बहुत ही असहाय महसूस करेंगे। ये किताब स्त्री अधिकार, आत्मनिर्भरता और सामाजिक बदलाव के प्रश्नों को उठाती है। और अगर आप 10 प्रभावशाली हिंदी पुस्तकों की लिस्ट बना रहे हैं, सूची बना रहे हैं, तो रेत की मछली को शामिल करना एक बहुत ही अच्छा चयन हो सकता है। अगली किताब है मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा की लिखी हुई ये किताब है। एक बहुत ही महत्वाकांक्षी युवती की संघर्ष गाथा है। नायिका अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत ही कठिन रास्ता चुनती है, और वो कला, रंगमंच, आधुनिक समाज, आप इसमें देख पाएंगे, आपको इसमें झलक मिलेगी मुझे चांद चाहिए किताब में। पुस्तक स्त्री के स्वतंत्र पहचान की भी बात करती है, और मुझे चांद चाहिए उपन्यास की कहानी आपको बहुत ही प्रेरणादायक लगेगी और साथ ही यथार्थवादी भी लगेगी। अगली किताब मैत्रेयी पुष्पा की ही लिखी हुई कस्तूरी कुंडल बसे। इस किताब की खास बात यह है कि ये खुद मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है। इसमें उनके बचपन, संघर्ष और जीवन यात्रा का आपको बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। ग्रामीण परिवेश में स्त्री जीवन की कठिनाइयों को दर्शाया गया है इस किताब में। साथ ही ये किताब आपको आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का संदेश देती है, जो बहुत जरूरी होता है किसी भी इंसान के लिए और खास तौर से एक महिला के लिए। ये हिंदी की चर्चित आत्मकथाओं में से एक है, कस्तूरी कुंडल बसे, मैत्रेयी पुष्पा के लिखी। अगली किताब भी कृष्णा सोपती की ही लिखी हुई है, जिंदगी नामा। ये उपन्यास पंजाब के ग्रामीण जीवन को अच्छी तरीके से प्रस्तुत करता है, बहुत ही विस्तृत तरीके से प्रस्तुत करता है। इसमें अनेक पात्र आपको मिलेंगे और उनकी जीवन शैली किस तरीके से है उसका बहुत ही सजीव वर्णन है, साथ ही सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहलुओं को भी बहुत ही खूबसूरती से उकेरा गया है जिंदगी नामा में। भाषा और शैली इसे विशेष बनाती है, साथ ही इसे हिंदी साहित्य की महान कृतियों में से भी गिना जाता है। अगली किताब है मन्नू भंडारी की ही एक कहानी ये भी ना मन्नू भंडारी की आत्मकथा है। इसमें उनके साहित्यिक जीवन और उनके जो व्यक्तिगत संघर्ष रहे उसका वर्णन है। लेखिका ने अपने वैवाहिक जीवन के अनुभव भी इस किताब में साझा किए हैं। इस किताब को बहुत ही ईमानदारी और संवेदनशीलता से लिखा गया है, और जब आप इस किताब को पढ़कर खत्म करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि आपके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास है और आत्मचिंतन की प्रेरणा मिलती है आपको इस किताब से। हालांकि 10 किताबें हो चुकी है, लेकिन एक और किताब मैं जो अंत में जोड़ना चाहूंगी वो है टेढ़ी लकीर, इस्मत चुगताई की लिखी हुई है। ये उपन्यास ना शम्मन नाम की एक लड़की की है और उसके जीवन और उसके आत्मविकास की कहानी है। इस किताब में आप पाएंगे स्त्री स्वतंत्रता की बातें, शिक्षा, प्रेम, समाज की रूढ़ियों पर एक बहुत ही गहरा विमर्श मिलता है आपको इस किताब में। और इस्मत चुगताई ने महिलाओं की भावनाओं को और उनके संघर्षों को बहुत ही बेबाकी से प्रस्तुत किया है। हालांकि इस्मत चुगताई खुद भी एक बेबाक महिला रही थी और बहुत ही कमाल की इनकी भी शख्सियत रही है। आप अगर पढ़ेंगे ये किताब टेढ़ी लकीर, तो ये उस दौर के मध्यम वर्गीय समाज और उसकी मानसिकता का एक बहुत ही सजीव चित्रण आपको पेश करती है। अगर हम इस किताब की बात करें तो इस किताब को, यानी कि टेढ़ी लकीर को, भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे महत्वपूर्ण नारीवादी उपन्यासों में से गिना जाता है। तो ये किताबें आप जरूर पढ़ें, और लास्ट में जो मैंने ऐड की है टेढ़ी लकीर, इस्मत चुगताई की लिखी हुई, इसे भी जरूर अपने लिस्ट में शामिल करें। बहुत ही कमाल की ये किताबें हैं, इनमें से एक दो भी आप पढ़ लेंगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ, आज मैंने कुछ अलग ही किया है। आपको एक अलग सा सुकून मिलेगा, और उसके साथ जो सबसे अच्छी बात होती है ना, वो ये होता है कि आप आत्मचिंतन करेंगे। जब आप उस किताब के किरदार के साथ जुड़ जाएंगे, उनके साथ हंसेंगे, उनके साथ खुश होंगे और उनके साथ रोएंगे, और कभी उनके साथ विचलित होंगे, असहाय महसूस करेंगे, तो फिर वो बात ही अलग होती है। और इन किताबों को पढ़िए, और कहते हैं कि किताबें सबसे अच्छी साथी होती है, तो ज़रूर इनमें से अगर आप सारी किताबें पढ़ सकते हैं तो क्या ही कहने, लेकिन आप एक दो किताबें पढ़ लेते हैं, जो भी आपको किताब अच्छी लगे उसे पढ़िए। और फिलहाल आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। उम्मीद है कि हमारा आज का ये कार्यक्रम, लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम, आपको अच्छा लगा होगा, और आज के कार्यक्रम में जो हमने किताबों के बारे में बातें की, उन किताबों से आप बहुत कुछ जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, और सबसे बेहतर ये होगा कि आप अपने बारे में जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। फिलहाल के लिए मैं चलती हूँ, लेकिन जाने से पहले खास बात की अपना और अपने अपनों का और अपने
अपने सपनों का रखे विशेष ध्यान। खुश रहे, स्वस्थ रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे।

0: अपनी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, और हाँ हमारे साथ यानी कि 90.8 एफएम ग्रीन के साथ बने रहे। नमस्कार।
1: लेडीज फर्स्ट।

0: देखो नाटक देखो।
1: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
2: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
3: हाँ।
1: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
2: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
3: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
1: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
4: क्या क्या क्या?
2: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
4: अच्छा,
0: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
2: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: तीनू, नीनू, राजू, पिन्नी और...
2: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
2: टीकू, वो 11 दोस्त है जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रखो,
5: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
6: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
6: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
6: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
8: नमस्कार साथियों, आपने ट्यून किया है 90.8 MHz और आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। और आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम फिर से एक खास विषय लेकर आए हैं। वैसे अगर बात करें तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन कहते हैं ना कि देखन में छोटन लागे है घाव करे गंभीर, तो उसी प्रकार अगर ये छोटी सी चीज़ आपकी सब्जियों में डल जाए तो उसका टेस्ट ही कुछ अलग बना देता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हरी मिर्च की। और हरी मिर्च हमारे इंडिया में, हमारे भारत देश में इसकी कितनी महत्ता है आप सभी जानते हैं जो भारतीय हैं। तो आज हरी मिर्च की खेती के बारे में हम जानेंगे और इसकी उपयोगिता, कैसे पौध तैयार करें और सिंचाई क्या कुछ कैसे किया जाता है, वो सारी बातें आज हमें बताएंगे डॉक्टर संगीता श्री मैम। मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो सबसे पहले तो स्वागत है मैम आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
9: धन्यवाद अनु।
8: इन जो खेती कर रहे हैं विस्तृत तौर पर, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हर बात की जानकारी उनके पास रहे इसकी खेती से जुड़े। तो हरी मिर्च की उपयोगिता, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी जानकारी दी।
9: धन्यवाद अनु। आपने ठीक ही कहा कि इसको हम कहीं भी उगा सकते हैं, लेकिन अगर बात करें तो ये एक व्यावसायिक खेती के रूप में किया जा सकता है। मिर्च एक नकदी फसल है जिसकी व्यावसायिक खेती करके अधिक लाभ कमाया जा सकता है। मिर्च में विटामिन ए और सी और कुछ खनिज लवण भी बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। मिर्च का इस्तेमाल अचार एवं मसालों में भी किया जाता है
8: जी।
9: मिर्च पर पाले का असर ज्यादा होता है, इसलिए जहां पाला पड़ता है उन इलाकों में इसकी अगेती फसल लेनी चाहिए। ज्यादा गर्मी होने पर फूलों व फलों का झड़ना शुरू हो जाता है। मिर्च की खेती के लिए 15 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त माना जाता है। 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होने पर इसके फूल व फल गिरने लगते हैं। रात्रि तापमान 16 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड फल विकास व परिपक्वता के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। मिर्च की खेती यूं तो सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है, परंतु अच्छे जल निकास वाली एवं कार्बनिक युक्त बलुई लाल दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 6 से 7 हो मिर्च की खेती के लिए उपयुक्त होती है। इस फसल की प्रमुख किस्में जिसको हम उन्नत किस्में कहते हैं वो है पूसा ज्वाला, पंत C1, G3, G5, पूसा सदाबहार, पंत C2, जवाहर 218, अर्का लोहित, अर्का सुफल, अर्का श्वेता, अर्का हरिता आदि। खरीफ की फसल के लिए मई से जून में व गर्मी की फसल के लिए फरवरी से मार्च में पौधशाला में बीजों की बुआई की जाती है। एक हेक्टेयर हेतु पौध तैयार करने के लिए 1 से 1.5 किलोग्राम बीज और संकर किस्मों के लिए 250 ग्राम बीज पर्याप्त होता है। नर्सरी वाली स्थान की गहरी जुताई करके खरपतवार रहित बनाकर 1 मीटर चौड़ी, 3 मीटर लंबी और 10 से 15 सेंटीमीटर जमीन से उठी हुई क्यारियां तैयार करें। बीजों की बुआई से पहले कप्तान या वेबस्टिन की 2 ग्राम प्रति किलोग्राम मात्रा से बीज की दर से उपचारित करें। बीजों की बुआई कतारों में करनी चाहिए और पौधशाला में कीड़ों की रोकथाम हेतु एसिफेट 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का पौधों पर छिड़काव करें। नर्सरी में विषाणु रोगों से बचाव के लिए मिर्च की पौध को सफेद नायलॉन नेट से ढक कर रखें। नर्सरी में बुआई के 4 से 5 सप्ताह बाद पौध रोपण के लिए तैयार हो जाती है। गर्मी की फसल में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेंटीमीटर व पौध से पौध की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। खरीफ फसल हेतु पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर व पौध से पौध की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। रोपाई शाम के समय करें और रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई कर दें। पौधों को 40 ग्राम एजोस्पायरलम 2 लीटर पानी के घोल में 15 मिनट डुबोकर रोपाई करें। खेत की अंतिम जुताई से पहले 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर अच्छी तरह सरी हुई गोबर की खाद खेत में डालकर अच्छी तरह मिला दें। इसके अलावा 70 किलोग्राम नत्रजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस व 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से उर्वरकों का प्रयोग करें। नत्रजन की अधिक मात्रा खेत की तैयारी के समय व शेष बची हुई आधी मात्रा 30 व 45 दिनों के बाद ड्रॉप ड्रेसिंग द्वारा खेत में डालें एवं तुरंत सिंचाई कर दें। गर्मी में 5 से 7 दिनों के अंतर पर और बरसात में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करनी चाहिए। मिर्च के फूल और फल लगने के समय भूमि में नमी होना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि पानी की कमी से पौधों का विकास रुक जाता है। इसकी वजह से फलों के गिरने की संभावना बढ़ जाती है। खरपतवारों का रोकथाम हेतु समय समय पर निराई गुराई करनी चाहिए। 200 ग्राम ऑक्सीफ्लोरोफेन 600 से 700 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। अब उपज की बात करें तो बताए गए तरीकों से खेती करेंगे तो हरी मिर्च के लिए तुराई फल लगने से 15 से 20 दिनों बाद कर सकते हैं। पहली तुराई से दूसरी तुराई का अंतर 12 से 15 दिनों तक रखें। हरी मिर्च की पैदावार 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तथा सूखी लाल मिर्च की उपज 15 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है।
10: तो ये सारी बातें तो खेती से जुड़ी हुई, लेकिन अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारे किसान भाइयों को ध्यान देने योग्य है, अपनी फसलों को बचाना है बर्बाद होने से, तो वो है रोग और कीटों के प्रबंधन को जानना। तो इसके बारे में मैम बता दें कि कैसे किसान भाइयों को करना चाहिए।
9: जी हाँ, मिर्च फसल में रोग व कीट प्रबंधन का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है। इसमें लगने वाले प्रमुख कीट हैं सफेद लट, कीट की लटों पौधों की जड़ों को खाकर नुकसान पहुंचाती है। इनकी रोकथाम के लिए कार्बेफिरॉन 3G का 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से रोपाई से पहले जमीन में मिलाएं। सफेद मक्खी व थ्रिप्स, इन्हें रोकने के लिए मालाथियॉन 50 ईसी या इमिडाक्लोरपेट 3 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। 15 से 20 दिनों के बाद दोबारा छिड़काव करना चाहिए। इन रसायनों के साथ नीम का तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर भी मिश्रित कर सकते हैं। अब मिर्च फसल में लगने वाले प्रमुख रोग की बात करते हैं, तो प्रमुख रोग हैं आद्र गलन, श्याम वर्ण, पर्ण कुंचन व मोज़ेक विषाणु रोग। आद्र गलन रोग का प्रभाव छोटे पौधों पर होता है। इस रोग का प्रभाव जमीन की सतह पर स्थित तने का भाग काला पड़ जाता और कमजोर होकर गिर कर मरने लगते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए बीजों की बुआई से पहले थीरम या कप्तान 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर करें। श्याम वर्ण एक ऐसा रोग है जिसमें पत्तियों पर छोटे छोटे काले धब्बे बन जाते हैं और पत्तियां झड़ने लगती हैं। जब इसका असर ज्यादा होता है तो शाखाएं ऊपर से नीचे की तरफ सूखने लगती हैं। पके फलों पर भी बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर 2 से 3 बार छिड़काव 15 दिनों के अंतराल पर करें। पर्ण कुंचन व मोज़ेक विषाणु रोग बहुत ही घातक रोग है। पर्ण कुंचन रोग के असर से पत्ते सिकुड़कर छोटे रह जाते हैं और उन पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। मोज़ेक विषाणु रोग के कारण पत्तियों पर गहरे व हल्का पीलापन लिए हुए धब्बे बन जाते हैं। रोगों को फैलाने में कीट सहायक होते हैं। इसकी रोकथाम के लिए रोग लगे पौधों को उखाड़कर जला देना चाहिए। रोग को आगे फैलने से रोकने के लिए डायमिथेट 3 ईसी का 0.1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के दर से छिड़काव करें। किसान भाई, अगर आप बताए गए विधि से मिर्च फसल की खेती करेंगे तो अवश्य ही अधिक मुनाफा कमा पाएंगे।
10: जी, तो इस प्रकार किसान भाइयों, हरी मिर्च की खेती आप कर सकते हैं। सारी बातें आपको आज के वार्ता में बताई गई हैं और आशा करते हैं कि आपको जरूर लाभ मिलेगा आज इस वार्ता को सुनकर। तो अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी, याद रखें 90.8 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार।
11: नमस्ते क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
12: जी
11: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
12: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
11: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
13: उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
14: कौन सी कहानी टीकी?
13: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
15: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
13: एक था
2: शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
15: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
2: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
15: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
7: FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
16: उन्नत कृषि।
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। किसान भाई बहनों, उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे, साथ ही अपने फसलों की भी अच्छी निगरानी कर रहे होंगे। जब हम अपने फसलों की निगरानी करते हैं तो उसमें खरपतवार दिखते हैं और ये किसान भाई बहनों के लिए बड़ी चिंता का सबब होते हैं। खरपतवार नाशी का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन खरपतवार नाशी कई बार गहरे प्रभाव भी छोड़ते हैं और ये प्रभाव नकारात्मक होते हैं, यानी कि अन्य फसलों पर भी प्रभाव देखा जाता है। तो बदलते वक्त के साथ खेती गृहस्थी भी थोड़ी बदली है और चीजें आसान भी हुई है। खेती गृहस्थी को आसान बनाने के लिए कुछ नई चीजें भी आ रही है, उन्हीं में से एक है नैनो हर्बिसाइड्स, यानी कि नैनो शाकनाशी या नैनो खरपतवार नाशी। और इसके बारे में आज विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर अभिषेक कुमार, आप हैं डिपार्टमेंट ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी से। तो आइए आज के वैज्ञानिक डॉक्टर अभिषेक कुमार से हम बातचीत करते हैं और जानते हैं नैनो हर्बिसाइड्स के बारे में। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
17: धन्यवाद
6: सर। आपसे पहला सवाल तो मैं यही पूछना चाहूंगी कि नैनो शाकनाशी क्या है?
17: यह जो है आज के परिप्रेक्ष्य में आपका जो प्रश्न है बहुत उपयुक्त है, क्योंकि जो अभी का जो समय चल रहा है, जो परंपरागत खरपतवार नाशी हम प्रयोग करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होते हैं। तो उसी के चलते अभी जो रिसर्च के द्वारा नए चीज आए हैं किसान भाइयों के लिए, जिसे कि हम नैनो शाकनाशी भी कहते हैं, नैनो खरपतवार नाशी भी बोलते हैं, या अंग्रेजी में नैनो हर्बिसाइड भी बोलते हैं। यह एक खरपतवार नाशी है जिसे नैनो तकनीकी का उपयोग करके बनाया जाता है, जिसमें कि खरपतवार नाशक तत्व जो होते हैं लगभग 1 से 100 नैनोमीटर के भीतर समाहित रहता है, या नैनो कण के वाहक के रूप में उपयोग किया जाता है, जो अत्यधिक कुशल एवं लक्षित होता है, और इसे ही नैनो खरपतवार नाशी कहा जाता है।
6: तो नैनो खरपतवार नाशी किसे कहा जाता है ये तो हमने जान लिया, लेकिन पहले से बाजार में बहुत सारे खरपतवार नाशी मौजूद हैं, नैनो खरपतवार नाशी की क्या जरूरत है सर, अभी इसका महत्व क्या है?
17: यह जो परंपरागत जो हम यूज करते थे, जो प्रयोग में लाते थे हमारे किसान भाई जो खरपतवार नाशी, उसके तुलना में अभी जो यह नैनो हर्बिसाइड है या नैनो खरपतवार नाशी है, यह जो है ना, इसका बहुत सारे विशेषताएं हैं, जैसे कि यह लक्षित वितरण प्रणाली पे काम करते हैं, मतलब कि यह एकदम जो है ना टू द पॉइंट जहां पे हमको यूज करना है वहां पे यह काम करता है, और परंपरागत जो हम यूज करते थे उसके तुलना में यह अत्यधिक कुशल भी होते हैं, और साथ ही साथ इसमें जो आवश्यक रसायन की मात्रा होती है वह बहुत कम होती है, और इससे भी अधिक जो इसका महत्वपूर्ण चीज है अभी के परिपेक्ष में, जो पर्यावरण जो प्रदूषित हो रहा है, जो बार बार हम कह रहे हैं कि अपना पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, तो यह जो नैनो हर्बिसाइड है या नैनो खर पतवार नाशी है, यह जो है ना पर्यावरण सुरक्षा में भी बहुत भूमिका अदा करती है, क्योंकि इसका रेसिडुअल इफेक्ट कम होता है, मतलब अवशेष मात्रा इसका कम होता है, और भी देखें साथ ही साथ तो यह नियंत्रित रिलीज प्रदान करता है, जिससे कि मात्रा जो है ना कम हो जाता है, और साथ ही साथ जो है ना जो आगे जो भी फसल भी आएंगे उसके लिए भी यह जो है ना बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। और यह उपयोग की मात्रा भी अगर देखें तो परंपरागत के तुलना में इसका उपयोग बहुत ही कम होता है। ऐसे समझा जाए कि लगभग दसवां हिस्सा हम लोग यूज करते हैं परंपरागत के तुलना में। और यह धीरे धीरे भी काम करता है, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया कि इसका जो है ना टारगेट डिलीवरी होता है, तो इसीलिए यह जो है ना धीरे धीरे काम करता है। और भी देखें तो बीज का जो छिलका होता है उसमें भी जो खरपतवार नाशी पौधे के जो बीज होते हैं, कुछ कुछ बीज बहुत कठोर होते हैं, उस कठोरता के में भी यह जो है ना बहुत आसानी से जो छोटे छोटे उसमें छिद्र होते हैं उसके द्वारा भी अंदर चले जाते हैं। दूसरी बात है कि अभी जो हम सुन रहे हैं कि जो बहुत सारे जो परंपरागत खरपतवार नाशी हैं उससे जो है ना प्रतिरोधी क्षमता आ रहा है, तो उसको भी जो है ना उसको भी अगर हम देखते हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आज के परिप्रेक्ष्य में हम नैनो खरपतवार नाशी का प्रयोग करें तो अच्छा है। और साथ ही साथ पौधे के विकास में भी बहुत सहायक होते हैं, क्योंकि यह बहुत छोटे होते हैं, पौधे के विभिन्न भागों में जाते हैं। उसके बाद है कि जो नीचे का पानी जो लेवल था परंपरागत खरपतवार नाशी से दूषित हो रहा था, तो उसके दूषित जो प्रभाव है इसके उपयोग से कम होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और इससे इसके चलते जो कृषि की पैदावार है उसमें भी बढ़ोतरी की बहुत संभावना है। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आने वाले समय में हम जो है ना किसानों की आय दुगुनी करें, तो उसमें हम समझते हैं कि यह जो है ना टेक्नोलॉजी जो आने वाला समय है अपने किसान भाइयों के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने के कगार पे है। और ओवरऑल देखेंगे, कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यह जो है ना स्वास्थ्य पर भी जो है ना चूँकि कम प्रभाव होगा, चूँकि इसका जो है ना रेसिडुअल इफेक्ट अवशेष का जो प्रभाव है कम है, तो इससे कुल मिलाकर स्वास्थ्य पर भी बहुत इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा।
18: तो सर अभी जैसे कि आपने बताया तो लग रहा है कि ये बहुत फायदेमंद है और ये बहुत कम मात्रा में और अवशेष भी कम छोड़ता है, तो कम मात्रा में इस्तेमाल करने के बाद भी इतने फायदे इसके होते हैं, आखिर ये काम कैसे करता है इसके बारे में बताइए
17: जी। यह क्या है कि जैसे कि हमने अभी कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदुएं थी उसमें भी हमने अभी बात भी किया, उसी में है कि यह जैसे सबसे जो पहला और जो प्रथम इसका जो यह है नैनो खरपतवार नाशी का, यह पूरा लक्षित जो करता है यह जो है ना लक्षित क्रिया द्वारा काम करता है, कि मतलब हमको जहाँ पे डालना है वहीं पे भी जाता है, जिससे कि जो है ना जो खरपतवार नाशी के जो पौधे के विशिष्ट भाग होते हैं जैसे बीज है या प्रकंद है, तो उसके जो है ना सभी अंगों में यह आसानी से चला जाता है, क्योंकि इसका जो है ना आकार हमने जैसा कि बताया था इसके परिभाषा में भी कि इसका जो साइज होता है 1 से 100 नैनोमीटर के रेंज में होता है, जो बहुत ही सूक्ष्म होता है। इसके चलते यह जो है ना पूरा जो है ना लक्षित करके जाता है और उसके लगभग सभी भागों को यह लक्षित करता है। और दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो है ना इसका प्रवेश भी बहुत बेहतर तरीके से होता है। जो हम परंपरागत यूज करते थे चूँकि उसके साइज में अंतर था, लेकिन इसका साइज छोटा होता है, तो इसका जो है ना प्रवेश भी बहुत बेहतर होता है। और साथ ही साथ प्रवेश बेहतर के साथ साथ जो इसका जो ऊपर का सतही क्षेत्रफल जितना छोटा कण होगा उसका उतना ही सतही क्षेत्रफल भरा होता है, तो इसके चलते क्या होता है कि यह बड़ा प्रभावी होता है, क्योंकि वह जो है ना उसका जो कार्य क्षमता है बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि सतही का जो क्षेत्रफल है वह बहुत ज़्यादा हो जाता है। और तीसरा क्या है कि यह जो रासायनिक संजय और बहाव को कम करने में भी बहुत बड़ा भूमिका निभाती है, क्योंकि इसका जो है ना अवशिष्ट कम होता है, तो इसलिए जो है ना यह अत्यधिक टिकाऊ होता है। तो इस तरह से यह जो है ना यह तीन जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि यह जो है पूरा लक्षित होकर काम करता है, बेहतर ढंग से प्रवेश करता है, और रासायनिक संजय के अवशिष्ट को जो है ना वह कम करते करते हुए अपना टिकाऊपन बनाए रखता है।
18: मतलब सबसे बड़ी बात है कि लक्षित होके काम करता है और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है
17: जी,
18: कि
17: जी,
18: जिस चीज को खत्म करना है ये उसी को खत्म करता है और अवशेष भी नहीं रहता।
17: जी, जी।
18: सर काम कैसे करता है ये तो हमने जान लिया, लेकिन नैनो हर्बिसाइड को बनाया कैसे जाता है?
17: तो इसका जो है बनाने का जो तरीका है तो मुख्यतः दो तरह से इसको बनाए जाते हैं, जिसको कि अंग्रेजी में डायरेक्ट नैनोकन का उपयोग करते हैं लोग बोलते हैं डायरेक्ट नैनोकन, और प्रत्यक्ष रूप से जो कि हम क्या करते हैं कि जो कुछ ऐसे चीज हैं जो डायरेक्ट खरपतवार नाशी की तरह काम करते हैं और उसको जो है ना नैनो रेंज में हम ला के उसका उपयोग करते हैं, और दूसरा क्या करते हैं कि नैनोकनों को समाहित करके भी हम बनाते हैं। इसमें जो है ना जो परंपरागत जो अपना खरपतवार नाशी है उसको नैनोकन के साथ समाहित करके भी हम इसका बनाते हैं, जिससे कि इसका जो है ना कार्य क्षमता में जो है ना कई गुना बढ़ोतरी होती है, क्योंकि जो नैनो जो कण होते हैं या छोटे छोटे हैं होते हैं इसका कार्यशीलता बहुत ज़्यादा होता है, सतह का जो जो ऊर्जा है वह भी ज़्यादा हो जाता है, उसके बाद सतह क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा हो जाता है जो कि परंपरागत में ऐसा नहीं हो पा रहा था। तो अब क्या है कि अब दो जो दो प्रकार है बनाने का, उसमें जैसे कि प्रत्यक्ष जिसमें नैनो कणों का हम उपयोग करते हैं उसमें जो परंपरागत जो सक्रिय अवयव होते हैं वह उसको जो है ना नैनो रेंज में स्केल में डिलीवरी सिस्टम में शामिल किया जाता है, जिससे क्या हो जाता है ना इसका जो है ना प्रभावशीलता बढ़ जाती है और पर्यावरण का कि पे जो है ना जो बुरा प्रभाव है वह कम हो जाता है। और तीसरा जो ऑलरेडी हम लोगों ने चर्चा भी पहले भी किया कि जो यह टारगेट होता है और कंट्रोल रिलीज होते हैं, हम आपको जो इसमें जो है ना जो हम प्रयोग करते हैं वह बहुत लक्षित तरह से होता है और इसका नियंत्रण जो हम रिलीज का नियंत्रण है वह भी बहुत प्रभावी होता है। साथ ही साथ जो हमने चर्चा किया था कि इसका उपयोग जो है ना जो धीरे धीरे जो होता है ना तो इसको जो है ना कि जितना जहाँ जिस पौधे को चाहिए उस तरह से काम करके या जो है ना अपना कुशलता से उस पौधे को नाश करने में या खरपतवार नाशी को हटाने में बहुत भूमिका निभाती है। और जो दूसरा जो है नैनोकन समाहित जो करते हैं इसमें हम क्या करते हैं कि जो बहुत ही जो उपयुक्त होता है जैसे पॉलीमर जो यूज होता है पॉलीमर आधारित जो हम लोग बाहक यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि पॉली के प्रेक्टो पीसीएल जो यूज करते हैं यह जो है ना बहुत ही उसके लिए जो है ना कंफर्टेबल होता है जो है ना बहुत उसके लिए सहयोगपन का काम करता है। दूसरा है कि मिट्टी के आधारित पे भी हम लोग बाहक का यूज करते हैं जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्ले वेस्ट बाहक, तो उसमें उसका खासियत यह है कि जो क्ले हम यूज करते हैं वह तो ऑलरेडी प्राकृतिक चीज़ है, हम उसमें वहाँ रसायन का उपयोग करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो यहाँ से भी इसकी जो है ना महत्ता और भी बढ़ जाती है चूँकि यह प्राकृतिक रूप से हम इसका यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है सबसे बड़ा किसान भाइयों के लिए क्या होता है कि इसमें खर्च जो है ना कम हो जाती है, लागत कम हो जाती है, क्योंकि जो है ना अच्छे गुणवत्ता अगर हम मिट्टी क्ले को यूज करते हैं तो उसमें भी जो है ना नैनोकन को समाहित करने में बड़ा अच्छी भूमिका निभाती है। और साथ ही साथ जो है ना इसमें क्या होता है कि सोखने की भी क्षमता बढ़ जाती है।
18: अच्छा
17: जी, इसमें सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। तो इस तरह से जो है ना और भी है जैसे सिलिका आधारित बाहक है जिसको कि मेसोपोरस सिलिका नैनोकन भी बोलते हैं, उसी तरह कार्बन आधारित बाहक होते हैं जिसमें कि मुख्यतः जो है ना तेल वगैरह का भी जो है ना यूज करते हैं, तो इसमें जो है ना जो मुख्य जो चीज होते हैं इसमें जो है ना कार्बन होते हैं और कार्बन से जो संबंधित है जैसे ग्राफीन वगैरह होता है उसका जो है ना उपयोग जो है ना बड़े पैमाने पे किया जाता है। तो इस तरह से जो है ना दो इसका मुख्य तरीका है बनाने का कि जिसमें कि हम नैनोकन को हम जो है ना प्रत्यक्ष रूप से हम यूज करते हैं, दूसरा नैनोकनों को डिफरेंट तरह के पॉलीमर में या क्ले या सिलिका वेस्ट बाहक में उसको समाहित करके जो है ना अपना जो खरपतवार नाशी है उसको यूज करके बनाने से क्या होता है कि इसकी जो है ना कार्य क्षमता जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं।
18: सर आपने बताया कि इसे कैसे बनाया जाता है, दो प्रकार से इसे बनाया जाता है
17: जी।
18: और दो प्रकार से बनाया जाता है तो इसके प्रकार भी कई तरह के होते होंगे
17: जी, जी।
18: तो नैनो हर्बिसाइड्स कितने प्रकार के मौजूद हैं?
17: अच्छा अच्छा जी, यह जो है ना मुख्यतः अगर अगर देखेंगे तो यह तीन तरह के होते हैं, जैसे कि पहला इसको बोलते हैं कार्बनिक खरपतवार नाशी, दूसरा अकार्बनिक खरपतवार नाशी, और तीसरा है जो है ना संयुक्त नैनो खरपतवार नाशी। तो यह जो है ना जो तीनों का जो नाम से ही पता चल रहा है, जैसे कार्बनिक खरपतवार नाशी के रूप में जो नैनो खरपतवार नाशी होता है, इसमें मुख्यतः मुख्य चीज जो होता है ना कार्बनिक चीज का उपयोग किया जाता है, जैसे तेल वगैरह का उपयोग किया जाता है, तो जिससे कि इसकी जो है ना क्षमता में बढ़ोतरी होती है और धीरे धीरे इसका जो है ना उपयोगिता बढ़ता है। तो और दूसरा है कि कार्बनिक खरपतवार जो नाशी होता है इसमें हम लोग मुख्यतः जो धातु युक्त जो है ना नैनो कण होता है जो बहुलता से मिल जाता है वैसे नैनो खरपतवार नाशी का यूज करते हैं, जिससे कि इसमें जो इसकी खासियत क्या है और कार्बनिक खरपतवार नाशी का इसमें जो धातु कण यूज करते हैं ना तो उसमें जो है ना छिद्र पोरस चीज होता है और उसमें जो पोरस में आसानी से जो अपना परंपरागत जो खरपतवार नाशी जैसे एट्राजिन है, सेमाजिन है, ग्लूफोसाइनेट ग्लेफोसाइनेट है, तो यह सब जो है ना बहुत आसानी से उसमें समाहित हो जाते हैं, इससे इसकी जो है ना कार्य क्षमता में बढ़ोतरी हो जाती है। और जो तीसरा है इसको संयुक्त नैनो शाकनाशी भी बोलते हैं, तो इसमें दोनों तरह के चीज यूज करते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक।
18: अच्छा,
17: तो यह देखते हुए कि कहीं दोनों के उपयोग से इसकी जो है ना कार्य क्षमता में बढ़ोतरी हो जाए तो तीसरा जो है ना संयुक्त नैनो शाकनाशी का भी इसमें यूज होता है, इसमें संयुक्त रूप से कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों मिला रहता है। और उदाहरण तौर पे जो हम लोग यहाँ एक आया है जैसे है ना बेंटाजोन इनकेप्सुलेटेड इन कैल्शियम फॉस्फेट नैनो पार्टिकल्स में, तो यह जो है ना जो हर्बिसाइड का उदाहरण है नैनो हर्बिसाइड का जो कि बेंटाजोन इनकैप्सुलेटेड इन कैल्शियम फॉस्फेट नैनो पार्टिकल्स में, तो इसमें जो है ना किसान भाई लोग इस तरह के जो है ना नैनो हर्बिसाइड का यूज कर सकते हैं। उसी तरह जो है ना पीसीएल जो है ना एटीजेन एनपीएस है, पीसीएल जो एक पॉलीमर है और एट्राजिन नैनो पार्टिकल बेस्ड है, उसी तरह पीसीएल एमेट्रॉन है नैनो पार्टिकल है, पीसीएल सिमाजिन्स नैनो पार्टिकल्स है, तो इसमें जो है ना दोनों तरह के इसमें जो परंपरागत जो खरपतवार नाशी है उसको नैनो कण के साथ मिक्सित जब करते हैं तो इसकी कार्य क्षमता कई गुना बढ़ जाता है।
18: मतलब बनाया दो प्रकार से जाता है लेकिन अभी जो मौजूद है तीन प्रकार के हैं, एक कार्बन बेस्ड है, दूसरा जो कि अकार्बनिक है, और तीसरा संयुक्त है जिसमें दोनों प्रकार के मिलाए हुए हैं। अब तक हमने नैनो खरपतवार नाशी से जुड़ी लगभग हर बात जानी है, लेकिन सबसे अहम बात जो किसान भाई बहन के लिए ज़रूरी होती है कि इसे उपयोग कैसे करेंगे, नैनो खरपतवार नाशी का उपयोग करने का क्या तरीका है, ये सर बताएं
17: आप। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमने बहुत चीज़ देखा कि इसको कैसे बनाया जाता है, यह है क्या, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इसका उपयोग
18: जी जी,
17: क्योंकि इसका उपयोग जो है ना बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसका जो कण बहुत छोटा होता है, अपना जो सूक्ष्म जो मतलब इतने छोटे छोटे हैं अपने आँख से इसको देख नहीं पाते हैं, तो इसलिए इसकी उपयोगिता में बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है और इसका उपयोग निश्चित तौर पर सुरक्षात्मक ढंग से ही करना चाहिए। और दूसरी जो बात है कि जितना ज़रूरत हो उतना ही उपयोग किया जाए। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि किसान भाई भावनात्मक में आके या किसी तरह के दूसरे को देख के भी जो है ना तो कभी कभी ज़्यादा यूज कर लेते हैं
18: जी, जी।
17: तो उस तरह से हमको बचना चाहिए, जहाँ पे जितना ज़रूरत हो उतना ही उपयोग करें, क्योंकि यह टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा भी है तो इसके साथ सावधानी भी बरतने की उतनी ही ज़रूरत हो जाती है। और जो तीसरा जो है कि इसका जो उपयोग पौधों के सक्रिय चरणों के आधार पे करें तो और अच्छा होता है कि जो पौधा जो खरपतवार जो पौधे होते हैं तो उसका जो विकसित जो जो पूरा सक्रिय फेज जो होता है अगर उस समय टारगेट करें तो जो है ना नैनो हर्बिसाइड या नैनो खरपतवार नाशी या जो है ना अच्छा परिणाम देता है, क्योंकि उस फेज में यह बहुत एक्टिव तरह से काम करेगा, बहुत सक्रिय रूप से काम करेगा, जिससे कि उसमें जो है ना खरपतवार नाशी पे जो है ना बुरा इफेक्ट तो पड़ना है, पड़ना चाहिए ताकि वह पौधा मर जाए और जो अपना जो जो खाद्य पौधा है उसको जो है ना विकास व्यवहार अच्छा हो। और भी इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यतः इसको जो है ना बहुत तरह से यूज करते हैं, लेकिन जो अभी तक देखा गया है कि इस जब हम स्प्रे करते हैं तो उसका परिणाम भी अच्छा आता है, तो इसलिए किसान भाइयों को इसका उपयोग जो है ना स्प्रे तरह से करें तो अच्छा है। और जो और भी महत्वपूर्ण बातें हैं कि इसका उपयोग तभी करें जब देखें कि हवा की बहाव नहीं है। अच्छा। उसमें बहाव होने से जो है जब हम उसका प्रयोग करते हैं तो हो सकता है कि बहाव के साथ कुछ जो है ना खरपतवार नाशी जो नैनो खरपतवार नाशी है अपने खाद्य पौधे पे भी आ जाए तो उससे जो है ना उसमें हानि की संभावना है। तो हम यहाँ किसान भाई को जरूर यह चीज़ बताएंगे कि जिस समय हवा का बहाव कम हो और उस समय जो है नहीं करें तो यह ज़्यादा कारगर भी होगा और इसका हानिकारक जो प्रभाव है कम है। और किसान भाई जब भी यूज करें तो जरूर या उपयोग करें तो उस समय जरूर मुंह पे कुछ कपड़ा हो या जो मास्क है उसका यूज करें, क्योंकि यह हमने बताया था प्रारंभ में यह बहुत छोटे होते हैं तो जितना ही छोटा होगा तो हो सकता है कि उसका प्रभाव ही उतना ही होगा। और तीसरी और जो आगे की बात है कि किसान भाई अगर नहीं जानते हैं किसी तरह का कि हम कितना लें क्या करें तो जो परंपरागत हम यूज करते थे प्रयोग करते थे उसका जो है ना दसवां हिस्सा से
18: काम हो जाता
17: है। हाँ, के तुलना में आप लें अगर पहले एक लीटर लेते थे तो उसका दसवां हिस्सा 0.1 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ना किसान भाई ध्यान में रखें इसका उपयोग और जब जरूरत हो तभी करें
18: जी।
17: हाँ, जब जरूरत हो तभी करें और जरूर बुद्धिमत्ता को प्रयोग करके ही करें, भावनात्मक में दूसरे को देखा होसी करके किसान भाई इसका उपयोग नहीं करें, जहाँ जितना जरूरत हो उतना ही करें।
18: तो मतलब नैनो खरपतवार नाशी बहुत फायदेमंद है, लेकिन जितनी इसकी आवश्यकता होती है उतनी ही उतना ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए और हवा का बहाव ये भी ध्यान में रखना चाहिए और साथ ही इसकी मात्रा कितनी है ये तो ज़रूरी है ही और मास्क पहनना भी बहुत ज़रूरी है। तो सर आपने बहुत सारी अच्छी बातें बताई और उम्मीद है कि ये हमारे किसान भाई बहनों के काम आएगी। और जो परंपरागत खरपतवार नाशी है उसका एक विकल्प है, क्योंकि उसमें बहुत नुकसान भी होते थे तो उसका एक ये बेहतरीन विकल्प है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारियां दी।
17: धन्यवाद
18: किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।
19: उन्नत कृषि

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना?
5: खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
6: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
6: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
6: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
6: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
6: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
7: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
8: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 8 जुलाई से 12 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। साथ ही इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 8 से 12 जुलाई के 15 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, पिछले कुछ दिनों में वर्षा हुई है, इसलिए आप वर्षा के जल का लाभ उठाते हुए धान की सबौर दीप किस्मों जैसे प्रभात, शुष्क सम्राट, सहभागी की बुआई 10 जुलाई तक जरूर कर दे। और किसान भाई बहनों, बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए कार्बन डाइजिन की 2 ग्राम मात्रा को 1 किलोग्राम बीज उपचारित करने के लिए इस्तेमाल करें। और ध्यान दें कि 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई जरूर करें। मध्यम अवधि वाली धान की किस्में जैसे राजेंद्र नीलम, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र श्वेता की रोपाई कर सकते हैं। और धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी की जा सकती है। किसान भाई बहनों, अगर आप श्री अन्न की खेती करना चाहते हैं तो ध्यान दें, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें और मड़ुआ की वकुला KMR 316, GPU 67, VL 379, राजेंद्र मड़ुआ RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, उचास जमीन में अरहर की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1, राजेंद्र अरहर 2, इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। और ध्यान दें कि अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का उपयोग करना बिल्कुल न भूलें। और किसान भाई बहनों, अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना ना भूलें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3 और गंगा 11 है। जिनके खेत में मूंग लगा है उन्हें बता दे, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो किसान भाई बहन सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, भिंडी, कद्दू, खीरा, निनुआ और लौकी जैसी फसलों में निराई गुड़ाई करते रहे और खरपतवार नियंत्रित रखे। ध्यान दे कि पत्ती खाने वाली सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करना जरूरी होता है और अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डायमेथो 830 ईसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करे। ध्यान दे कि छिड़काव तभी करे जब आसमान साफ हो। खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करे जब आसमान साफ हो और स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में गोबर की खाद डालना बहुत जरूरी होता है। खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्री फाउंड डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करे और ध्यान रखें कि बीज गिराने के पहले बीजोपचार जरूर कर ले। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दे, लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचों में जरूरत के हिसाब से छटाई कर ले जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचे में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा कर हटा दे। इससे कीट और रोगों के प्रकोप में कमी आएगी और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलेगा। पशुपालक भाई बहन ध्यान दे, महीने के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है इसलिए ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में टीके नहीं लगाए हो तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दे। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: माँ पिता भगवान का वो अनमोल उपहार हैं जिनका प्रेम और आशीर्वाद जीवन को हर कठिनाई से पार करा देता है।
0: बहुत बहुत सुंदर विचार, इसके लिए आपका धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी का। लिखते हैं,
2: विमलेश जी, अजीत जी नमस्कार, जय जोहार। 18 तारीख को चिड़िया की बच्ची कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। अच्छी प्रस्तुति के लिए NCERT उमंग के साथ विमलेश जी और अजीत जी को बहुत बहुत बधाई।
0: और बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार और नियति कुमारी।
2: मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर।
0: और गांव बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से अमन वर्मा, रमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा, डॉक्टर मदन लाल वर्मा और वर्मा परिवार के सभी सदस्य।
2: और कुतुबपुर तहसील हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा।
0: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों को भेजने के लिए। और आइए एक बार फिर से चलते हैं हमारी आपकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में कुछ और नई और रोचक जानकारियों के साथ।
2: श्रोताओं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पेड़ों की। जैसा कि हमने इस सप्ताह की पहली कड़ी में सुना था, पेड़ सिर्फ पेड़ ही नहीं, वे इस धरती के सबसे प्राचीन जीव हैं। उनके आने के बाद ही दूसरा जीव जगत शुरू हो सका, क्योंकि वे वर्षा, भोजन, औषधि और श्वसन के मुख्य स्रोत हैं।
0: श्रोताओं, क्या आप जानना चाहेंगे कि पेड़ों की उत्पत्ति कैसे हुई? तो चलिए आपको बताते हैं।
2: पेड़ों की उत्पत्ति पृथ्वी के इतिहास की सबसे अद्भुत घटनाओं में से एक है। कहते हैं लगभग 4 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर पेड़ नहीं थे, केवल सूक्ष्म जीव थे। कालांतर में समुद्रों में शैवाल जैसे जीव विकसित हुए जो तैरते थे और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते थे।
0: धीरे धीरे ये शैवाल जैसे जीव समुद्र से निकलकर भूमि पर आए, इन्हीं से प्रथम स्थलीय पौधों का विकास हुआ।
2: प्रश्न ये है कि इन पौधों ने क्यों बढ़ना शुरू किया? इसका कारण ये था कि जीने के लिए वे अधिक सूर्य का प्रकाश पा सकें और दूसरे पौधों से प्रतिस्पर्धा कर सकें। इसी क्रम में ये पौधे बढ़ते बढ़ते पेड़ बन गए। ध्यान दें तो इस प्रक्रिया में विकासवाद का सिद्धांत काम करता है, यानी सफलतम ही टिका रहता है।
0: तो श्रोताओ, ये थी पेड़ों की उत्पत्ति की वैज्ञानिक कथा। अब जरा ध्यान दें, गर्मी का मौसम है, राह चलते चलते जब बहुत गर्मी लगती है तो आप किसी पेड़ की छाया में शरण लेते हैं
2: जी।
0: क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ठीक उस समय जब आप उसकी छाया का आनंद ले रहे होते हैं, उस समय वो पेड़ क्या क्या कर रहा होता है?
2: ध्यान से सुनिए मित्रों, उस समय वो हवा को ठंडा कर रहा होता है, क्योंकि वो वाष्पोत्सर्जन द्वारा एक प्रकार से प्राकृतिक AC की तरह काम कर रहा होता है।
0: श्रोताओं, ठीक उस समय वो हमें ऑक्सीजन दे रहा होता है और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को अवशोषित कर रहा होता है जो हमारे लिए हानिकारक है।
2: उस समय वो शोर को कम कर रहा होता है, क्योंकि पत्तियां और शाखाएं प्रदूषित वायु को ही नहीं शोर को भी अवशोषित करती हैं। तभी तो कहते हैं पेड़ों के नीचे या जंगलों में एक शांति का आभास होता है।
0: श्रोताओं, एक बात और, ठीक उस समय वो पेड़ वर्षा और जल संरक्षण में योगदान दे रहा होता है, जिससे भविष्य में हमें भूजल और वर्षा का जल लगातार मिलता रहे।
2: उस समय वो हजारों कीटों, कवकों, पक्षियों और जीवों को आश्रय देकर प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में मदद कर रहा होता है।
0: सचमुच श्रोताओ, एक पेड़ हमारे और दूसरों के लिए मौन रहकर भी इतनी सेवा कर रहा होता है। वह बेशक मौन है, लेकिन मानो कहता है, मैं तुम्हारे लिए हवा को शुद्ध कर रहा हूँ, धरती को ठंडा करके जलवायु परिवर्तन की गति को यथासंभव रोक रहा हूँ,
2: स्वयं धूप सहकर तुम्हें छाया दे रहा हूँ, वर्षा लाने में सहायता कर रहा हूँ, मिट्टी के कटाव को रोक रहा हूँ। बदले में मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे और अन्य पेड़ों को जीवित रहने दो। हम सभी पेड़ धरती के फेफड़े हैं।
0: जी हाँ श्रोताओ, अब जब किसी पेड़ को देखें तो इन बातों को जरूर स्मरण कीजिएगा। पेड़ वास्तव में हमारे लिए प्रकृति के मौन लेकिन सबसे बहुमूल्य उपहार हैं।
2: तो ये थी पेड़ों के बारे में हमारी रोचक जानकारी इस सप्ताह की श्रृंखला में। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
0: जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो उस समय वो क्या क्या कर रहा होता है? कोई 2 या 3 कारण बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो उस समय क्या क्या कर रहा होता है, कोई दो या तीन कारण बताइए।
0: 8800440559 पर जो हमारा IVRS नंबर है और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम जो एक गीत के रूप में देश को समर्पित है। शीर्षक है प्यारा भारत।
2: ये कक्षा 3 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक सितार की एक नज्म पर आधारित है। श्रोताओं, ये खूबसूरत नज्म आपको ले जाएगी भारत के गगनचुंबी पर्वतों, कलकल करती नदियों, लहलहाती फसलों के मैदानों, घाटियों और फलों के बगीचों में।
0: तो आइए करते हैं भारत भ्रमण इस नज्म के साथ। शीर्षक है भारत प्यारा।

0: अभी आप सुन रहे थे गीत भारत प्यारा।
1: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मौर्य कालीन पाटलिपुत्र।
0: इस कार्यक्रम में मौर्य साम्राज्य के महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के बारे में विस्तार से बताया गया है। विशेषकर ये उल्लेख किया गया है कि उनके शासन काल में जनतांत्रिक मूल्य कितने ऊंचे थे, खुफिया व्यवस्था कैसी थी और चीन के यात्रियों ने उनकी कीर्ति की कैसी प्रशंसा की।

मेरा नाम है पाटलिपुत्र। अब लोग मुझे बिहार प्रदेश की राजधानी पटना के नाम से जानते हैं। मेरा इतिहास बहुत पुराना है। इस बात को 2000 वर्ष से भी अधिक बीत चुके हैं जब एक छोटा सा गांव था मैं। नाम था पाटली। यहां वहां कुछ खेत, कुछ झोपड़ियां, पास में कल कल करती गंगा की निर्मल धारा। एक घाट था गंगा पार जाने के लिए। वहां एक दो नौकाएं खड़ी रहती। उसी घाट से महात्मा बुद्ध ने नदी पार की थी वैशाली जाने के लिए।

0: महात्मा बुद्ध का नाम मशहूर हो रहा था।
1: उन दिनों मगध पर मौर्यों का राज्य था, जो बिहार के पटना और गया जिलों में फैला हुआ था। मगध की सीमाओं को बढ़ाया बिंबिसार ने। एक बार वहां भयानक आग लग गई। इसके बाद बिंबिसार ने पास ही में नई राजधानी राजगृह का निर्माण करवाया।

0: राजा बिंबिसार के बाद मगध के सिंहासन पर बैठा अजात शत्रु। महात्मा बुद्ध के सम्मान में अजात शत्रु ने घोषणा करवाई,
1: सुने सुने सुने सभी ग्रामवासी सुने, सम्राट अजात शत्रु ने महात्मा बुद्ध के सम्मान में ये घोषणा की है कि आज से पाटली दुर्ग का मुख्य द्वार गौतम द्वार और गंगा नदी का घाट गौतम घाट कहलाएगा। सुने, सुने।

महात्मा बुद्ध ने पाटली के विषय में भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में पाटली एक प्रमुख नगर और व्यापार का बड़ा केंद्र बन जाएगा।

जब बुद्ध पाटलीग्राम आए थे तो वे 79 वर्ष के थे। इसके एक वर्ष बाद ही कुशीनगर में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया।

0: अजात शत्रु ने वैशाली को जीत लिया। उसके बाद पाटली दुर्ग का महत्व और भी बढ़ गया।
1: अजात शत्रु के बाद राजा बना उसका पुत्र उदाई भद्र। उदाई भद्र अपने पिता अजात शत्रु की तरह विजेता तो न था, पर उसे नए नए राजमहल बनवाने का शौक था। उदाई भद्र ने ही मुझे मगध की राजधानी बनाया।

0: वो 16 वर्षों तक मगध का राजा बना रहा।
1: समय बदला, मगध का सिंहासन महापद्म नंद के पास चला गया। इसी ने नंद वंश चलाया था।
0: पर मैं खुश नहीं था। मैं एक बड़ा नगर जरूर बन गया था। मेरा नाम दूर दूर तक मशहूर हो गया था, लेकिन मगध की जनता दुखी थी। महापद्म नंद के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे।

0: अरे अरे भागो भागो जाओगे अरे भागो अरे अरे सिपाही आ गए अरे अरे मारे जाओ क्या मारे जाओ चुप रहो चुप रहो
1: अरे मैंने कुछ नहीं किया
2: महापद्म नंद के बाद मगध का राजा बना धन नंद। बड़ी सेना अपार धन संपत्ति थी उसके पास, मगर था वो बहुत ही घमंडी। धननंद ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी जो उसके पतन का कारण बनी। उसने तक्षशिला के प्रसिद्ध आचार्य कौटिल्य का भरे दरबार में अपमान कर दिया। अपमानित कौटिल्य ने प्रतिज्ञा की

0: अत्याचारी धननंद, मैं कौटिल्य आज प्रतिज्ञा करता हूं कि तेरा सर्वनाश करूंगा, सर्वनाश।
1: और अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को चुना। मौर्य कुल का वो वीर युवक अपना देश छोड़कर भटक रहा था। कौटिल्य ने उसे तक्षशिला में शिक्षा दी।
2: और उधर भारत से बहुत दूर मैसिडोनिया में साहसी सिकंदर अपने पिता फिलिप के बाद राजा बना था। समय था ईसा से 336 वर्ष पूर्व। सिकंदर का सपना था विश्व विजेता बनने का। उसकी आंधी सारी दुनिया पर छा जाने के लिए उमड़ने लगी।
3: सिकंदर

सिकंदर बढ़ता गया, उसकी आंधी बढ़ती गई। 11 वर्षों में हर तरफ अपनी जीत के डंके बजाता हुआ सिकंदर भारत की सीमा पर आ खड़ा हुआ। छोटे छोटे राज्यों में बटा था तब का भारत। लोग वीर थे लेकिन आपस में लड़ते रहते थे। अभिसार के राजकुमार आम्भी ने सिकंदर का स्वागत किया, लेकिन राजा पुरु ने सिकंदर का डटकर मुकाबला किया।

पोरू की पराजय हुई। सिकंदर जीत तो गया, परंतु अब उसके सैनिक थक गए थे, उनका मनोबल गिरता जा रहा था, उन्हें कदम कदम पर कड़ी टक्कर मिल रही थी, आगे बढ़ने की हिम्मत खत्म हो रही थी।

0: गजब हो गया, सेना आगे बढ़ने से मना कर रही है वीर से गद्दार।
1: क्या आगे बढ़ने से मना कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैसिडोनिया का विश्व विजयी बनने का सपना चूर चूर हो जाएगा?
2: वीर सिकंदर, आप स्वयं सैनिकों से बात क्यों नहीं करते?
1: मैं ऐसा ही करूंगा। जाओ, सारे सैनिकों को एक जगह इकट्ठा करो, ये सिकंदर का आदेश है।
3: जी सम्राट, ऐसा ही होगा।
2: ऐसा ही होगा,
3: ऐसा ही होगा।
1: मेरे वीर सैनिकों, क्या मैंने ठीक सुना है कि मैसिडोनिया की बहादुर सेना ने अब आगे बढ़ने से इनकार कर दिया है और वो वापस लौटना चाहती है? मैं पूछता हूं, ऐसा क्यों? जिस काम के लिए हमने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा, जिस काम में हमने अपने बहादुर साथियों की जान की बाजी तक लगा दी, आज उसी काम से तुम सब भागना चाहते हो? याद है तुम्हें, हमारी आंधी के सामने बड़े बड़े सम्राट तक उखड़ गए और आज चारों ओर सिकंदर का डंका बज रहा है। चुप क्यों हो? मुझे जवाब चाहिए। क्या हमारी तलवारों की धार खत्म हो गई है? क्या हमारी भुजाएं खोखली हो गई है? ये व्यास नदी देख रहे हो ना, इस नदी को पार करते ही
3: हम वापस लौटना चाहते हैं।
1: सुनो मेरे वीरों, व्यास नदी को पार करते ही हमें दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिलेगा।
3: हमें कुछ नहीं चाहिए, हम नहीं सकते हैं।
0: मैसिडोनिया चलो,
3: वापस चलो, चलो
1: सम्राट। सुनो मेरे वीरों, सुनो मेरे वीरों,
3: सबर करो साथियों। अरे कुछ तो सबर करो साथियों, जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो आगे क्यों ना बढ़ा जाए? अगर मैसिडोनिया वापस चले भी गए तो लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? हम सम्राट की बात नहीं टाल सकते।
1: शाबाश मेरे वीरों, मुझे तुमसे यही आशा थी।

0: पकड़ो।
1: तुम सब सैनिकों के घेरे में हो। इस निर्जन खंडहर में आधी रात को क्या षड्यंत्र हो रहा था हम जान चुके हैं।
2: महाराज चंद्रगुप्त आप?
1: हाँ
3: महाराज, देखिए आचार्य कौटिल्य भी आ रहे हैं।
1: आचार्य प्रणाम। आप इस वक्त यहाँ?
4: आश्चर्य न करो चंद्र, मगध को असंख्य नेत्रों वाली गुप्तचर व्यवस्था चाहिए। मैं सावधान हूं।
1: धन्य हो आचार्य, मौर्य साम्राज्य को आपकी बहुत आवश्यकता है।
5: धन्य हो आचार्य।
6: मगध सुखी था। चंद्रगुप्त प्रजा की भलाई करने वाला न्यायप्रिय शासक था, मगर एक बार फिर संकट सिकंदर के सेनापति निकेटर सेल्यूकस के रूप में बढ़ा आ रहा था।

0: सेल्यूकस भारत को जीतने का सपना लेकर आ रहा था, लेकिन अब भारत बदल चुका था। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को बुरी तरह पराजित किया।
1: बेचारा सेल्यूकस भारत को जीतने आया था, पर उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। मेगस्थनीस सेल्यूकस का राजदूत बनकर आया था। वो 4 वर्ष तक दरबार में रहा।

0: समय बदला। चंद्रगुप्त के शासन के 25 वर्ष बाद बिंदुसार राजा बना और फिर बारी आई उसके मझले बेटे अशोक मौर्य की। अशोक बहुत वीर था। उसने उज्जैनी और तक्षशिला के विद्रोह को सफलतापूर्वक शांत कर दिया और फिर हुआ कलिंग युद्ध।
1: ये क्या कर डाला मैंने, इतना रक्तपात सिर्फ विजय प्राप्त करने के लिए? नहीं नहीं, आगे ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अशोक मौर्य प्रतिज्ञा करता हूं, कभी युद्ध नहीं करूंगा। अब कभी युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, अब कभी युद्ध नहीं करूंगा।
0: कलिंग ने अशोक का जीवन बदल डाला। उसकी रुचि अहिंसा में, बौद्ध धर्म में हो गई।

उसने बौद्ध विहार बनवाए, शिलालेख खुदवाए। अगर अशोक का स्तंभ लेख न होता तो हम कभी ना जान पाते कि बुद्ध का जन्म कहां हुआ था। तभी श्रीलंका के राजा तिस्स का मैत्री संदेश आया तो अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। इसी तरह बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा एशिया के और हिस्सों में भी हुआ। अशोक के बाद मौर्य वंश सशक्त नेतृत्व के अभाव में बिखरता चला गया। सम्राट आए, सम्राट गए, किसी को ऐश्वर्य मिला, किसी की सत्ता छीनी, पर मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं। समय के बहाव को देखते हुए और भारत की गोद में अपना स्थान बनाए हुए,

0: मौर्य कालीन पाटलिपुत्र, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और श्रोताओं इसी कार्यक्रम के साथ अब हम अपने कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: नमस्ते क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
4: जी
3: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
4: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
3: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
6: कौन सी कहानी टीकी?
5: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
7: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
5: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
6: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
5: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
8: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
9: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
10: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
9: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
10: आपकी सेहत की बातें,
9: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
10: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
9: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
10: वो कहाँ पर?
9: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
10: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
9: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे किसान भाई बहनों को संबोधित विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, अभी गर्मा सब्जियों का मौसम चल रहा है और अगर गर्मा सब्जियों में या फिर किसी भी तरह के सब्जी में कीट लग जाते हैं तो फिर किसानों की आय बहुत घट जाती है। ऐसे में जरूरी होता है कि उन कीटों की पहचान करें और उनका प्रबंधन करें। आइए इस बारे में हम विस्तार से जानते हैं डॉक्टर श्याम बाबू साह से, जो हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट, आप हैं कीट विज्ञान विभाग से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
11: धन्यवाद।
9: सर, आप गर्मा सब्जियों की खेती करने वाले किसान भाई बहनों को विस्तार से बताइए कि कौन कौन से कीट होते हैं जो गर्मा सब्जियों में लगते हैं और उनका प्रबंधन कैसे किया जाए।
11: नमस्ते किसान भाइयों, सबसे ज़्यादा जो कद्दू वर्गीय जो सब्जी है जो इस मौसम में लगते हैं, अब इस कद्दू वर्गीय में कौन कौन है, तो इसमें जो नेनुआ है, उसके बाद करेला है, उसके बाद आपको जो है विभिन्न प्रकार के खीरा है और कद्दू है, ये सारी चीज़ें जो है, परवल है, ये सब जो है कद्दू वर्गीय में आती हैं। उसके बाद किसान भाइयों की भिंडी भी इस सीजन में लगता है, तो ये मुख्यतः जो है इस मौसम में लगने वाले जो है ये विभिन्न प्रकार के फसल है। अब हम इसमें बात करते हैं कि किन किन फसलों में कौन कौन से कीट लगते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कद्दू वर्गीय में। कद्दू वर्गीय में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसमें जो हम लोग बात करें तो जैसे करेला की बात करते हैं, तो करेला में क्या होता है कि शुरुआती कंडीशन में इसमें जो शक करने वाले होते हैं, जो पौधे के पत्तियों से रस चूसने वाले कीट होते हैं, तो वो आपको दिखाई देंगे। और इसके चलते क्या होता है कि आप देखेंगे कि करेला के जो पत्तियां हैं, पौधे में जो पत्तियां पाई जाती हैं, तो वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। कभी कभार क्या होता है कि इसमें जो है ये थोड़ा थोड़ा स्पॉट्स आएंगे और बाद में क्या होता है कि ये सूखने लगते हैं, उनकी जो पत्तियां हैं सो सूखने लगती हैं। और ये जो है एक सकिंग टाइप का जो पेस्ट है उसके चलते होता है, जैसे जो थ्रिप्ट है या वाइट फ्लाई है इसके चलते होता है। तो इनसे हम लोग, दूसरी बात क्या है कि, और जो दूसरा है इसमें फ्रूट फ्लाई का प्रकोप होता है, तो फ्रूट फ्लाई इसके चलते क्या होगा, जो करेला का जो फल होता है तो इसके जो शिशु होते हैं वो वहाँ पे जा करके पहले से छोटा सा होल क्रिएट करते हैं, छिद्र क्रिएट करते हैं, और बाद में जो है ये करेले के अंदर उसको खा करके और करेला को नष्ट कर देते हैं। तो इनसे हमको बचाव के लिए, अगर हम जैसे कि इनके फ्रूट फ्लाई के लिए अगर बात करें, तो इसके लिए विभिन्न प्रकार के आजकल जो है कि प्रपंच या ट्रैप बोलते हैं अंग्रेजी में, वो आ गया है। और इसके ट्रैप में जो एक क्यू लियोर ट्रैप है, उस क्यू लियोर ट्रैप में क्या होता है कि एक ऐसा लकड़ी का चीज जो है कि उसमें लगा होता है और उसके अंदर ऐसा सेंट निकलता है कि उसमें लगता है कि इसमें मादा का सेंट निकल रहा है, जिसके चलते जो कीट का, जो फ्रूट फ्लाई का जो कीट का नर होता है उसमें ट्रैप में जाके फंस जाता है। और फंसने के बाद क्या होता है कि जो नर की संख्या है वो बहुत कम हो जाती है, और जिसके चलते पुनः जो है इस कीटों का जो जनसंख्या है उतना नहीं बढ़ पाता है और हमारा जो करेला का जो फल है वो बच जाता है। दूसरा जो है जो रस चूसने वाले जो कीट है उसको, उसके बचाव करने के लिए हम जो येलो स्टिकी ट्रैप का इस्तेमाल करते हैं, और ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें एक कार्ड का, जैसे कि हम लोग जो एक जो पढ़ने वाला जो पेपर होता है वो, या लिखते जो हम लोग हैं, उसी साइज का एक कार्ड होता है, और वो कार्ड जो होता है पीला रंग के होता है, और इस पीले रंग के कार्ड पे इस पे गोंद लगा होता है, और इस जो गोंद लगे हुए जो कार्ड है, जो पीले कार्ड है, इसको हम लोग किसी लकड़ी के माध्यम से करेले के फील्ड में लगभग 1.5 फीट ऊंचाई पे इसको हम लोग लगाते हैं। इसमें होता क्या है कि जितने भी रस चूसने वाले जो कीट है उनको लगता है कि ये उसका करेला का फूल है, और उस करेले के फूल को समझ करके वो उस पर जाते हैं, और जाने के बाद क्या होता है वो उसी में चिपक जाते हैं, जिसके चलते क्या है कि पुनः जो है कि ये जो कीट है उसकी संख्या कम हो जाती है, और जो हमारे जो करेला के फसल में जो विभिन्न प्रकार के जो ये रोग का भी ये फैलाव करते हैं उससे बचाव हो जाता है। तो ये आपके करेला पे हो गया। और पुनः जब हम लोग बात करें तो जैसे कि खीरा है, तो खीरे में भी लगभग ये फ्रूट फ्लाई का ही प्रकोप जो है सबसे ज़्यादा होता है, और खीरे में भी हम इस प्रकार के ट्रैप को प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जिसको जो नेनुआ बोलते हैं किसान भाइयों, तो नेनुआ में भी सेम टाइप की बात आती है। इसके बाद क्या है कि ठीक है आपको अगर ट्रैप नहीं मिलता है तब क्या करें, तो उस कंडीशन में चूंकि ये सब्जियां हैं जिसको हम लोग बहुत जल्दी मतलब पेस्टिसाइड छिड़कने के बाद इसको लंबे टाइम तक नहीं रखते, तुरंत उसको हम लोग सब्जी खा लेते हैं, तो इसमें क्या है कि बहुत जो विषाक्त जो कीटनाशी है उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके इस्तेमाल करने से क्या है कि वो हमारे जो शरीर है उस पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है और विभिन्न प्रकार के असाध्य रोगों का हम लोगों का ये कारण बनता है। तो उसे इसे में है कि नीम का तेल जो होता है, नीम ऑयल जिसको बोलते हैं, उसको 1500 ppm जो है उसकी 4 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में हम लोग इसको शाम के समय में जो है कि इसको छिड़काव कर सकते हैं। अब इसके बाद भी जो है कि अगर लगता है कि नहीं सो अगर ये कंट्रोल नहीं हो रहा है अगर नीम के वायल से, लेकिन मुख्यतः ये है देखा गया है कि नीम के वायल को अगर हर एक हफ्ते पे अगर हम रिपीट करते हैं मतलब दोहराते हैं तो ये इंसेक्ट की संख्या कम रहती है और आपको रासायनिक कीटनाशी की ओर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन अगर किसान भाइयों अगर ये भी उपलब्ध है आपको नहीं है तो अगर ये फ्रूट फ्लाई से समस्या है तब उस कंडीशन में जो है इसमें जो इमामेक्टिन बेंजोएट एक दवा है उसकी जो है 0.4 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में इस और उसमें कुछ स्टिकर मिला करके इसको छिड़काव करें, तो इससे जो है कि आपको इसे निदान हो जाएगा। अब जो बात करते हैं इस कुकुरबिट्स या लतीदार के अलावे, तो लतीदार में किसान भाइयों एक और कीट है जिसको हम लोग को उस पर चर्चा करना चाहिए, जैसे कि उसको बोलते हैं अंग्रेजी में बोलते हैं रेड पम्पकिन बिटिल, जो लौकी में जनरली आप देखते होंगे जहाँ पे भी कद्दू जो लगता है तो उसके झांका पे या नीचे में भी आपको देखते हैं तो लाल लाल टाइप के आपको कीट दिखाई देते हैं जिसको लाल भृंग हम लोग कहते हैं। तो ये लाल भृंग को रोकथाम करने के लिए शुरुआती कंडीशन में क्या होता है कि अगर राख है किसान भाइयों के पास उपलब्ध है राख, तो इसको राख का भुड़काव सवेरे के समय में करने से ये जो कीट है ये भाग जाते हैं और भागने के कारण आपको कोई रासायनिक कीटनाशी इस्तेमाल किए बिना इसे आप बच सकते हैं। ये कीट जो है मुख्यतः जो है आपके जो ज़मीन में जो सटे पहले तो ये पत्तियों को खाते हैं पत्तियों, उसके बाद क्या है कि अगर आपका फल निकलता है कद्दू का निकलता है जो ज़मीन से सटे हुए रहता है तो उसमें भी ये हल्का सा छिद्र बनाता है और बाद में जो है इसके अंदर खा करके और सब्जी को जो है मतलब वो ख़राब कर देता है, वो उसके मार्केट वैल्यू को जो है कम कर देता है। तो ये है एक तो राख छिड़काव करना है, दूसरा जो है इसमें एक फेनभल का जो पाउडर आता है उसका 2% मात्रा जो है उसे 10 से 15 केजी जो है प्रति हेक्टेयर की दर से जो है उसको सवेरे के समय में भुड़काव करने से ये जो लाल भृंग है इससे भी आप छुटकारा पा सकते हैं। तो ये तो हुई आपको कद्दू वर्गीय सब्जियों के लिए। अब जो एक बहुत जो इम्पॉर्टेंट जो पेस्ट है वो है भिंडी, तो भिंडी के लिए भी भिंडी में जो है कौन कौन जनरली कीट लगते हैं, तो भिंडी में सबसे ज़्यादा जो है आप देखते होंगे कि जो उसका जो फल है तो फल को आप देखते होंगे कि उसमें छोटा सा पहले छिद्र करता है फिर बाद में क्या होता है कि आपके भिंडी को टेढ़े मेढ़े कर देता है वो, तो ये फल एवं प्ररोह बेधक कीट इसको बोलते हैं। तो ये इसके चलते क्या होता है ये आपका दो तरह से क्षति करता है, एक शुरुआती कंडीशन में ये क्या करता है कि जो भिंडी का जो छोटे पौधे होते हैं जो बढ़ने वाला पोर्शन होता है तो ये इसके जो शिशु है उसी में उसके बढ़ने वाला पोर्शन में ही उसको काट देता है और काट देने के बाद क्या होता है कि जो उसको बढ़ने वाला जो कली होता है चूँकि उसी को काट देता है तो पुनः जो है कि नीचे से या बगल से कली निकलती है, जिसके चलते जो है कि उत्पादन पे बहुत मतलब इसका प्रभाव पड़ता है। तो एक तो ये है शुरुआती कंडीशन में, और बाद की कंडीशन में जो है कि आपके फल को ये टेढ़े मेढ़े कर देते हैं। और आपका जो है कि कभी कभी आप देखेंगे क्या कि जो भिंडी का जो बढ़ने वाला जो एरिया है, जो भाग है ऊपरी वाला भाग, वो झुका हुआ नीचे की ओर गिरा हुआ है, क्योंकि उसको काट देते हैं इसके शिशु। तो अब इससे हम लोग कैसे इसका बचाव कैसे करें, तो सबसे पहले तो इसमें ये है कि आप अगर ऐसे भिंडी आपके अगर में दिखती है तो उसको आपको तोड़ करके खेत में कभी नहीं फेंकें, उसको एक जगह जमा करें और उसको मिट्टी में दबा दें। तो पहला काम तो ये है। उसके बाद क्या है कि नीम आधारित जो है कि कीटनाशी हम लोग जो है कि इसमें छिड़काव कर सकते हैं। जैसे कि हमने बताया कि नीम की 1500 ppm की मात्रा जो है 4 liter पानी में प्रति लीटर पानी में इसको छिड़काव करना है। दूसरा जो कीटनाशी है वो है इमामेक्टिन बेंजोएट। ये इमामेक्टिन बेंजोएट पुनः जो है 0.4 ग्राम प्रति लीटर पानी में, या यूँ कहें तो 10 लीटर पानी में 4 ग्राम इमामेक्टिन बेंजोएट की दवा इसमें देना है। अब इमामेक्टिन बेंजोएट जो है ये लिक्विड के फॉर्म में नहीं होता है, ये एक झिल्ली के तरह होता है। तो पहले इसको हम लोग को घुला लेना है, और घुलाने के बाद तब इसको जो है हमारा स्प्रेयर है उस स्प्रेयर में डालना है, और उसमें कुछ स्टिकर की मात्रा, जैसे कि अगर स्टिकर आपके पास नहीं हो तो 1 rupee वाला जो शैम्पू का सैसे आता है वो इसमें डालिए, और पुनः उसको अच्छी ढंग से मिला लेने के बाद इसको जो है कि शाम के समय 4 बजे के बाद इसको जो है छिड़काव करिए। तो ये हो गया। दूसरा जो कीटनाशी है वो स्पाइनोसेड है, स्पाइनोसेड 45 EC। यह एक लिक्विड के फॉर्म में ये कीटनाशी पाया जाता है, और इसका जो है आधा ml मात्रा जो है प्रति लीटर पानी में छिड़काव करने से आप इसे जो है कि रोकथाम कर इससे हो जाता है। अब दूसरा जो है कि एक है जो लाल बग होता है एक भिंडी में, और ये क्या करता है कि ये इसके जो शिशु और जो वयस्क होते हैं वो रस चूसते हैं आपके जो भिंडी के जो पत्तियां होती है उसके, और जिसके चलते क्या होता है कि ये पत्तियां सूख जाती है। तो चूंकि ये एक बग है, रस चूसने वाली कीट है, इसलिए इसके कंट्रोल के लिए मैनेजमेंट के लिए थायोमेथोक्जम का जो है 35 AC का 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसको छिड़काव करना है, ठीक है। थायोमेथोक्जम 75 AC। और दूसरी जो दवा है इसको हम लोग जो इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें है इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL। इसकी जो है 1 ml मात्रा जो है प्रति 3 liter पानी में इसका छिड़काव करना है। अगर संख्या ज़्यादा हो तो आधा ml प्रति लीटर पानी में, साथ में हम किसान भाइयों बराबर बोलते हैं कि स्टिकर इसमें मिलाना ही मिलाना है। स्टिकर के मिलाने से, अगर स्टिकर या शैम्पू के मिलाने से ये कीटनाशी की क्षमता को बढ़ा देता है, और ये कीटों के रोकने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है, इसलिए स्टिकर आप ज़रूर लगाएं। तो ये भिंडी में लगने वाले जो मुख्यतः जो कीट है। दूसरा, अब चूंकि बीच बीच में किसान भाइयों पानी भी हो जा रहा है जो इस साल जो हम लोग देख रहे हैं, तो वहाँ पे जो क्या होता है कि आप देखेंगे कि आपका जो भिंडी का जो पूरा पत्ती है तो उसमें जो भेन होता है वो पीला दिखता है, और बाद में क्या होता है कि पूरी जो भिंडी का जो पत्ती है वो चितकावर टाइप से हो जाती है, पीली टाइप से हो जाती है। और एडवर्स कंडीशन में जब और ज़्यादा जब इसकी व्यापकता होती है तो कभी कभी आपका भिंडी भी पीला पीला जब निकलने लगता है, तो ये भी जो सफ़ेद मक्खी है उसके चलते होती है, और यही जो मक्खी है सफ़ेद मक्खी ये इसके विषाणु को एक पौधे से दूसरे पौधे पे स्थानांतरित करती है। इसीलिए जब किसान भाइयों आपको अगर आपके खेत में ऐसा दिखता है पत्तियों पे ऐसा अगर ऐसा सिम्टम दिखता है ऐसा, तो आपको क्या करना है कि जहाँ पे दिखे अगर किसी ब्रांच में है तो उस ब्रांच को मतलब किसी चीज से काटिए और काटने के बाद उसको मिट्टी में दबा देना। अगर पूरे पौधे में ही अगर है तो पूरे पौधे को ही नीचे से जड़ से उखाड़ करके और उसको खेत में नहीं छोड़ना है। उसको जितने भी अगर 5-10 पौधे में है आपके खेत में तो उसको उखाड़ करके और उसको जो है मिट्टी के अंदर दबा दीजिए। चूँकि अगर आप किसान भाई उखाड़ करके अगर फील्ड में ही छोड़ देंगे, खेत में ही छोड़ देंगे, तो उसमें जो उस कीट का जो जीवन चक्र के जो रहता है तो पुनः आपका जो स्वस्थ पौधा है उसके ऊपर वो जाता है और जाने के बाद उसको पुनः उसमें जो विषाणु है उस विषाणु को वो अंतरित कर देता है, उसमें डाल देता है और जिसके चलते हैं कि आपका जो अच्छा पौधा है भिंडी का उसमें भी ये रोग फैल जाएगा। तो इन चीज़ों को आपको किसान भाई ख्याल रखना है और मतलब इन चीज़ों के करने से हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो जो गर्मी के गर्मा का जो सब्जी लगा हुआ है इसको आप अच्छे से कीटों से नियंत्रित कर सकेंगे और अपनी उत्पादकता को बढ़ा करके आप अपनी आमदनी को बढ़ा सकेंगे। धन्यवाद।
12: थैंक यू सो मच सर। उम्मीद है कि किसान भाई बहन आप सर के द्वारा जो भी बताए गए उपाय हैं उन्हें अपनाएंगे और कीटों का बेहतर प्रबंधन करेंगे। अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले कुछ खास बात की अपना और अपनी फसलों का रखें खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
13: उन्नत कृषि

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ हाँ हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
6: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
7: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases.
8: So, see you at the vaccination center soon.
9: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
10: FM Green, हरियाली से खुशहाली तक।
11: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 8 जुलाई से 12 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। साथ ही इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 8 से 12 जुलाई के दौरान 15 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, पिछले कुछ दिनों में वर्षा हुई है, इसलिए आप वर्षा के जल का लाभ उठाते हुए धान की सबौर दीप किस्मों जैसे प्रभात, शुष्क सम्राट, सहभागी की बुआई 10 जुलाई तक जरूर कर दे। और किसान भाई बहनों, बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए कार्बन मैग्नीशियम की 2 ग्राम मात्रा को 1 किलोग्राम बीज उपचारित करने के लिए इस्तेमाल करें और ध्यान दें कि 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई जरूर करें। मध्यम अवधि वाली धान की किस्में जैसे राजेंद्र नीलम, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र श्वेता की रोपाई कर सकते हैं और धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी की जा सकती है। किसान भाई बहनों, अगर आप श्री अन्न की खेती करना चाहते हैं तो ध्यान दें, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें और मड़ुआ की वकुला KMR 316 GPU 67 VL 379 राजेंद्र मड़ुआ RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1 इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, उचास जमीन में अरहर की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1, राजेंद्र अरहर 2 इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और ध्यान दें कि अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का उपयोग करना बिल्कुल न भूले। और किसान भाई बहनों, अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दे, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना ना भूले। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3 और गंगा 11 है। जिनके खेत में मूंग लगा है उन्हें बता दे, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो किसान भाई बहन सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, भिंडी, कद्दू, खीरा, निनुआ और लौकी जैसी फसलों में निराई गुड़ाई करते रहें और खरपतवार नियंत्रित रखें। ध्यान दें कि पत्ती खाने वाली सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करना जरूरी होता है और अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डायमेथो 830 ईसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में गोबर की खाद डालना बहुत जरूरी होता है। खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्री फाउंड डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और ध्यान रखें कि बीज गिराने के पहले बीजोपचार जरूर कर ले। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दे, लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचों में जरूरत के हिसाब से छटाई कर ले जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचे में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा कर हटा दे, इससे कीट और रोगों के प्रकोप में कमी आएगी और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलेगा। पशुपालक भाई बहन ध्यान दे, महीने के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है इसलिए ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में टीके नहीं लगाए हो तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दे। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। यहाँ हम बातें करते हैं सेहत की, घर परिवार की और उन सवालों की जो अक्सर हमारे मन में तो आते हैं पर जुबान पर नहीं आते। आज का विषय है गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्वाइकल कैंसर से बचाव और HPV वैक्सीन को लेकर फैलती अफवाहें। कई घरों में ये बात अभी नहीं है। कहीं कहा जाता है कि ये टीका जरूरी नहीं, कहीं कहा जाता है कि इससे शरीर पर असर पड़ता है, और कहीं कोई व्हाट्सएप पर वीडियो भेज देता है तो पूरा घर असमंजस में पड़ जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम अपने बच्चों का भविष्य किसी फॉरवर्ड के भरोसे छोड़ सकते हैं, या हमें सही जानकारी, डॉक्टर की सलाह और सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा करना चाहिए। आज हमारे साथ हैं हमारी अपनी टीकन देवी, जो हर मुश्किल बात को आसान भाषा में समझाती हैं, और थोड़ी देर में हम सुनेंगे एक मां की कहानी, डर, उलझन, गुस्सा और फिर धीरे धीरे भरोसे तक पहुंचने की कहानी। टीकन भाभी, स्वागत है।
1: धन्यवाद। और मैं तो यही कहूंगी कि किस भी नई दवाई, तकनीक या सही सुझाव के बारे में डर होना गलत नहीं है, लेकिन उसके बारे में सही जानकारी पाना, डॉक्टर के पास जाना या स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों के बारे में सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके डर कर बैठ जाना सबसे बड़ी गलती होती है। अगर हम आज HPV वैक्सीन की चर्चा कर रहे हैं तो माँ बाप डरते हैं, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की चिंता होती है कि कई लोग अपने अपने घरों में डर का हाथ पकड़कर बैठ गए हैं और अफवाह पर विश्वास कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि सच कहीं बाहर इस सब अफवाहों के बीच छिप गया है। हम आज उसी सच को घर के भीतर बुलाएंगे।
0: बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं। मान लीजिए एक साधारण सा घर है, शाम का समय है, खाना बन रहा है, बेटी स्कूल से कोई जानकारी लेकर आई है। मां थकी हुई है, लेकिन मन में एक और थकान है जो सुन सुनकर जमा हुई है। उस घर में आपको ले चलता हूं।
1: बिल्कुल, चलिए चलते हैं उस घर के भीतर।
2: अरे टीकन भाभी, बड़े सही वक्त पर आई हैं। देखिए तो जरा, पायल अभी स्कूल से आई है और बस ये कागज मुझे पकड़ाकर चली गई ट्यूशन के लिए।
1: हाँ सुनीता, मुझे इस कागज की जानकारी है, तभी तो मैं आई हूँ। ये कागज जरा अलग है। स्कूल में आशा दीदी बता रही हैं कि 14 साल की लड़कियों के लिए HPV का टीका लगेगा। मुझे लग रहा था कि तुम परेशान हो जाओगी। तुम्हारे पति तो दूसरे प्रदेश में जंगलों के बीच सड़क बनाने का काम कर रहे हैं, रोज उनसे बात भी नहीं पाती हो, तो मैंने सोचा कि मैं ही तुमसे बात कर लूं।
2: अरे भाभी, ये HPV वे या जो भी नाम ही है इसका, एक मुसीबत हो गई है। 3 दिन से न जाने कितने तो मैसेज आ चुके हैं, कितने फोन आ रहे हैं। को कह रहा है सरकारी टीका है, लगवा दो। कुछ कह रहे हैं अरे बिल्कुल मत लगवाना, पता नहीं क्या असर हो। अब तो बैक 6 इतने छोटे हैं। कुछ लोगों ने तो फोन पर वीडियो भेज दिया, कह रही थी इससे लड़कियों के पीरियड्स खराब हो जाते हैं। कोई कह रहा है बांझ जो जाएंगी बेटियां, किसकी सुने। ये तो बहुत बड़ा निर्णय लेना होगा।
1: और तुमने वीडियो देखा?
2: देखा। सफेद कोट पहनी एक औरत बोल रही थी कि मेरी क्लिनिक में ऐसे ऐसे केस आए। अब हम कैसे माने क्या सही है क्या गलत, हम डॉक्टर थोड़े हैं।
0: सुनीता, तुम तो पढ़ी लिखी हो, यही पढ़ाई लिखाई का सबसे बड़ा फायदा होता है। जब कोई बिना ठोस स्रोत के बस सफेद कोट पहनकर कैमरे में देखकर कुछ बोल दे तो वो सच नहीं बन जाता। हमारे पास, क्या तुम्हारे अपने सामुदायिक रेडियो पर जो सामग्री स्वास्थ्य मंत्रालय की जागरूकता सामग्री में है, उसमें साफ कहा गया है कि क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन की एक ही डोज प्रभावी है, ये मासिक धर्म पर असर नहीं डालती और बांझपन का कारण नहीं बनती। ये जानकारी वर्षों के वैज्ञानिक अध्ययन और निगरानी पर आधारित है। लेकिन सुनते हैं सुनीता के मन में और क्या चल रहा है।
2: टीकन भाभी, एक बात कहूं, हमारे यहाँ जो भी नई चीज आती है, पहले हम साधारण लोगों पर और गरीबों पर ही क्यों आजमाते हैं, ये भी मन में आता है। ऊपर से ये भी सुनने को मिला कि पहले 3 डोज लगती थी, अब 1 बोल रहे हैं। कोई कह रहा है ये जल्दीबाजी है।
1: तुम्हारा सवाल ठीक है और ऐसे सवाल पूछने भी चाहिए, लेकिन जवाब सही जगह से लेना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की सामग्री कहती है कि अब जो क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन दी जा रही है उसकी 1 डोज प्रभावी मानी गई है। ये कोई हवा में लिया फैसला नहीं है, दुनिया भर में शोध, सुरक्षा निगरानी और विशेषज्ञों की सलाह के बाद ये नीति बनी है। और ये वैक्सीन कोई आज की चीज नहीं है, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है। 100-125 नहीं, 160 से ज्यादा देशों में इसका इस्तेमाल हुआ है। इतने साल की निगरानी के बाद ही इसे सार्वजनिक कार्यक्रम में लाया गया है।
2: पर देखो, हमें तो यही डर लगता है कि कहीं बेटी के आगे चलकर शादी ब्याह, बच्चा होने में कोई दिक्कत ना हो जाए।
1: यही अफवाह सबसे ज्यादा फैल रही है। पर मंत्रालय के मिथक बनाम तथ्य वाले संदेशों में साफ लिखा है, एचपीवी वैक्सीन से बांझपन नहीं होता, बल्कि ये भविष्य को मजबूत करती है, नुकसान नहीं पहुंचाती। और सिर्फ पोस्टर नहीं, जिन्होंने वैक्सीन ली उनकी गवाही भी है। किसी ने 13 साल की उम्र में वैक्सीन ली और कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ। एक और महिला की कहानी है, उन्होंने 2010 में वैक्सीन ली थी और आज वो माँ है। यानी जो डर फैलाया जा रहा है उसका आधार नहीं है।
0: यह बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। आज माँ है वाला प्रमाण सिर्फ भावनात्मक नहीं, अफवाह के एक बड़े झूठ को तोड़ता है। और यही SSLK की ताकत है, मन की घबराहट को तथ्य और अनुभव दोनों से संभालना।
2: अच्छा, मान लिया कि बांझपन वाली बात झूठ है, पर पीरियड्स के बारे में? लड़कियों का शरीर नाजुक होता है, कोई गड़बड़ हुई तो?
1: देखो, इस पर भी साफ जानकारी है, HPV वैक्सीन मासिक धर्म को प्रभावित नहीं करती और पीरियड्स के दौरान भी ये सुरक्षित है। पीरियड्स बिगड़ जाएंगे वाली बात अफवाह है। जब डॉक्टर, मंत्रालय और वैज्ञानिक सामग्री एक ही बात कह रहे हैं तो फिर सोशल मीडिया की बात क्यों माने?
2: इसलिए कि सोशल मीडिया वाले डर जल्दी

0: एचपीवी संक्रमण अक्सर बिना लक्षण फैलता है, पर समय के साथ गंभीर रूप ले सकता है। वैक्सीन उस कहानी को शुरू होने से पहले बदल सकती है।
1: एक बात और, अगर ये इतना अच्छा है तो खर्चा कितना आएगा? सच कहूँ टीकन भाभी, दवा इलाज का नाम सुनते ही जेब का डर भी लगने लगता है। ये सवाल भी बड़ा है और जरूरी है, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि अच्छा इलाज मतलब महंगा इलाज। लेकिन ये वैक्सीन 14 साल की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध है, यानी मुफ्त। यही नहीं, कई संदेशों में बार बार कहा गया है, सुरक्षा किसी की जेब पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। मुफ्त? सच में? हाँ, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर। और जहाँ व्यवस्था हो वहाँ यूविन जैसे प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट की भी जानकारी दी जा रही है। मगर यदि ये सब समझ में ना आए तो सीधा अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, पीएचसी, सीएचसी या जिला अस्पताल में पूछो। डॉक्टर से पूछो, एएनएम से पूछो, आशा से पूछो। फॉरवर्ड भेजने वाले से क्यों पूछना है? सुनने में आसान लगता है, पर घर वाले भी तो माने। कोई सास कुछ कहेगी, कोई पड़ोसन कुछ, फिर पति कहेगा देख लो तुम जैसा ठीक समझो। लेकिन जिम्मेदारी माँ के सिर पर आ गिरती है, इसीलिए तो मैं कहती हूँ माँ को अकेला मत छोड़ो। ये सिर्फ माँ का फैसला नहीं, परिवार की समझ का फैसला होना चाहिए। पर अगर परिवार उलझ रहा है तब भी माँ को तथ्य पकड़ना चाहिए। देखो, कोई भी समझदार फैसला तीन चीजों पर टिकता है, वैज्ञानिक प्रमाण, डॉक्टर की सलाह और विश्वसनीय सरकारी जानकारी। बाकी सब शोर है।
0: श्रोताओं, जरा सोचिए, यदि किसी घर में बच्ची के लिए स्कूल से सूचना आए और उसी शाम मोबाइल पर डर फैलाने वाला वीडियो आ जाए तो कौन जीतेगा? वही जीतेगा जिसकी आवाज आप ज्यादा सुनेंगे। इसलिए सही जानकारी को जोर से बोलना पड़ेगा।
1: लो, फिर मैसेज आया। पड़ोस वाली कमला लिख रही है, मत लगवाना, हमारी रिश्तेदारी में किसी को बुखार आ गया था। अब बताओ ये क्या माने?
2: कभी कभी हल्का बुखार, इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द, लालपन जैसी हल्की प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन यही हर इंजेक्शन में संभव है। इससे ये नहीं साबित होता कि टीका खतरनाक है। बड़ी बात यह है कि गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ बताए गए हैं और सुरक्षा निगरानी लगातार होती है। इसे ही विज्ञान कहते हैं, निगरानी, प्रमाण, समीक्षा। अफवाह क्या करती है? एक घटना उठाती है, उसे बढ़ाकर पूरा सच बना देती है।
1: अच्छा, मान लो मैं कल स्वास्थ्य केंद्र चली गई, वहां क्या पूछूं?
2: सीधा पूछो, मेरी बेटी 14 साल की है, क्या एचपीवी वैक्सीन यहाँ मुफ्त उपलब्ध है? क्या ये एक डोज है? क्या इसे पीरियड्स के दौरान भी दिया जा सकता है? क्या इससे फर्टिलिटी पर असर पड़ता है? डॉक्टर तुम्हें साफ जवाब देंगे। और अगर तुम चाहो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी।
1: तुम चलोगी तो हिम्मत रहेगी। सच कहूं, मुझे अपनी बेटी के लिए डर तो है, लेकिन मुझे अपनी अज्ञानता से भी डर लगता है, कहीं मैं ही गलत फैसला ना कर दूं।
2: यही तो समझदारी है, जो नहीं पता उसे मान लेना कि मुझे नहीं पता, उसके बाद सही जगह से जानना। कई लोग तो यही गलती करते हैं कि बिना समझे जोर से बोलने लगते हैं और जोर की आवाज को सच समझ लिया जाता है।
0: इसीलिए सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम बिल्कुल सही जानकारी देता है और दूरदृष्टि के साथ आपके लिए कार्यक्रम लाता है। ये कार्यक्रम खास तौर पर उन परिवारों के लिए है जो दुविधा में होते हैं, जिनमें सरकारी महकमों, जानकारियों, मुफ्त इलाज के प्रति भ्रम होता है और साथ ही डर होते हैं। अपने डर को नकारिए मत, उसे सही रास्ता दीजिए, परंतु उस रास्ते के अंत में डॉक्टर हो, डेटा हो और भरोसेमंद जानकारी हो, न कि अफवाह। सही जानकारी ही लाभकारी होती है।
1: टीकन, तुमने एक बात कही, सर्वाइकल कैंसर रोका जा सकता है। ये बात मेरे मन में अटक गई। हम तो कैंसर का नाम सुनते ही सोचते हैं कि बस अब बचना मुश्किल।
2: इसलिए जागरूकता जरूरी है। महिलाओं के लिए आगे चलकर नियमित स्क्रीनिंग भी महत्वपूर्ण है। जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है, कम उम्र की लड़की

0: बच्चों के लिए टीकाकरण और महिलाओं के लिए समय समय पर जांच दोनों मिलकर सुरक्षा की दीवार बनाते हैं। छोटी उम्र में सुरक्षा, बड़ी उम्र में समय पर पहचान, यही समझ घर घर जानी चाहिए। यानी मेरी बेटी के लिए टीका और हमारे लिए जांच की समझ। बिल्कुल, क्योंकि महिलाओं की सेहत को अक्सर घर में आखिरी नंबर मिलता है। पहले सबका खाना, सबका काम, सबकी चिंता। पर अपनी सेहत के बारे में कब सोचती हैं? जब बीमारी बढ़ जाती है। ये बदलना होगा।
1: यही SSLK का मकसद है, सिर्फ जानकारी देना नहीं, घरेलू सोच बदलना। अब सुनते हैं सुनीता ने क्या फैसला लिया।
2: टीकन भाभी, मैंने ठान लिया है, कल सुबह स्वास्थ्य केंद्र चलेंगे। वहां डॉक्टर से बात किए बिना मैं ना हाँ कहूंगी ना ना। लेकिन एक बात पक्की है, अब मैं फॉरवर्ड देखकर फैसला नहीं करूंगी।
0: बस यही जीत है। सही सवाल पूछना ही आधी सुरक्षा है।
2: और अगर डॉक्टर वही कहे जो तुम कह रही हो, तो मैं अपनी बेटी को टीका लगवाऊंगी। फिर जो पड़ोसन पूछेगी उसे भी यही कहूंगी, फॉरवर्ड नहीं तथ्य देखो।
0: और अगर कोई बोले कि हमारे जमाने में तो नहीं लगा, तो कहना हमारे जमाने में बहुत सी अच्छी चीजें नहीं थी, इसलिए आज जो उपलब्ध है उसे अपनाने में समझदारी है, ठुकराने में नहीं।
1: जाने से पहले एक छोटा सा संवाद और। कई बार लोग कहते हैं हम तो गांव में रहते हैं, हमें ऐसी बीमारियां कहां। ये भी गलतफहमी है। बीमारी जगह देखकर नहीं आती। जानकारी और बचाव भी शहर गांव देखकर नहीं रुकना चाहिए। सरकार इसलिए कार्यक्रम बना रही है कि सुरक्षा पहुंच में हो, सिर्फ बड़े अस्पतालों तक सीमित न रहे।
2: सच है, कई बार हम सोचते हैं कि बड़ी बीमारी सिर्फ बड़े लोगों की होती है, पर जब घर में किसी को कुछ हो जाता है तब समझ आता है कि बीमारी जात, धन, जगह देखकर नहीं आती।
0: और इसलिए रोकथाम सबसे बराबरी वाली चीज है। जब टीका सरकारी केंद्र पर मुफ्त उपलब्ध है, तो ये सिर्फ स्वास्थ्य नहीं, न्याय की बात भी है। जो चीज सिर्फ पैसे वालों तक सीमित थी, वो अब आम परिवारों तक पहुंच रही है। इसे शक से नहीं, समझ से देखना चाहिए।
2: पर हाँ, व्यवस्था में कमी हो तो पूछना भी चाहिए।
0: बिल्कुल, कोई चीज समझ ना आए तो पूछो, कोई कागज चाहिए तो पूछो, अपॉइंटमेंट कैसे होगा पूछो। जानकारी मांगना अधिकार है, यही नागरिक समझ है।
1: और एक जरूरी बात, यदि किसी माँ को अभी भी डर लग रहा है तो वो अकेली नहीं है। डर होना सामान्य है, लेकिन डर के साथ बैठकर सही जानकारी सुनना भी उतना ही जरूरी है। कई सरकारी जागरूकता संदेशों में यही कहा गया है कि स्वास्थ्य के फैसले डॉक्टर, विज्ञान और प्रमाण से गाइडेड होने चाहिए, वायरल फॉरवर्ड से नहीं। ये सिर्फ एक नारा नहीं, जीवन बचाने वाली बात है।
2: मैं सोच रही हूँ कल केंद्र से लौटकर अपनी देवरानी को भी बताऊंगी, उसकी बेटी भी इसी उम्र की है, वो तो मोबाइल पर जो आता है वही मान लेती है।
0: उसे साथ लेकर जाओ, दो लोग जाएंगे तो दो घरों का डर टूटेगा, फिर शायद चार घरों में बात पहुंचेगी। सेहत की जानकारी भी चूल्हे की आग की तरह है, एक घर से दूसरे घर गर्मी पहुंचाती है।
1: ये पंक्ति नोट कर लीजिए, अफवाह अकेले फैलती है पर भरोसा मिलकर बनता है, और भरोसा तब बनता है जब आशा कार्यकर्ता, ANM, डॉक्टर, माँ, पड़ोस, स्कूल सब मिलकर एक ही सच्ची बात बोले।
2: अच्छा टीकन, अगर मेरी बेटी पूछे अम्मा आपने पहले क्यों डर किया, तो मैं क्या कहूँ?
0: कहना क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। लेकिन प्यार सिर्फ डर नहीं, सही जानकारी जुटाने की हिम्मत भी है। बच्चों के सामने ये स्वीकार करना कि मैं पहले उलझी हुई थी, अब समझ गई हूं, इससे उनका भरोसा भी बढ़ता है।
1: बहुत सुंदर, और यही इस कार्यक्रम का सामाजिक पहलू भी है। हम सिर्फ टीके की बात नहीं कर रहे, हम उस रिश्ते की बात कर रहे हैं जिसमें माँ बेटी के बीच डर के बजाय संवाद हो। यही संवाद भविष्य बदलता है।
0: और जिन घरों में मोबाइल पति के पास रहता है या सास कहती हैं हमें ये सब नहीं आता, वहां भी रास्ता है, सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाओ, स्कूल से पूछो, आशा से पूछो। जानकारी का दरवाजा एक नहीं, कई हैं।
2: अब मुझे लग रहा है कि फैसला थोड़ा साफ हो गया है। डर अभी भी है, पर अब डर के सामने जवाब भी है।
0: बस यही चाहिए, सवाल रहे जवाब भी रहे, तभी घर सही निर्णय तक पहुंचता है।
1: शुक्रिया टीकन भाभी आपका, और सुनीता जी आपका भी। साथियों, अब अंत से पहले आज की मुख्य बातें संक्षेप में। पहली, क्वाड्रिवेलेंट एचपीवी वैक्सीन की एक डोज प्रभावी है। दूसरी, ये मासिक धर्म पर असर नहीं डालती और पीरियड्स के दौरान भी सुरक्षित है। तीसरी, ये बांझपन का कारण नहीं बनती। चौथी, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है और 160 से अधिक देशों में उपयोग में है। पांचवी, 14 साल की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध है। छठी, स्वास्थ्य संबंधी निर्णय सोशल मीडिया फॉरवर्ड से नहीं, डॉक्टर और प्रमाणित जानकारी से लें।
0: और मेरी तरफ से एक बात और, मां होना सिर्फ डरना नहीं है, पूछना भी है, और पूछकर सही जवाब तक पहुंचना, वही असली जिम्मेदारी है।
2: और मेरी तरफ से, मैं अब अपने डर को छुपाऊंगी नहीं, पर उसे झूठ से पालूंगी भी नहीं, सही जानकारी लेकर ही फैसला करूंगी।
1: यही है सेहत सही लाभ कई की सीख, चिंता से समझ तक और समझ से सुरक्षा तक। यदि आपकी बेटी 14 साल की है तो अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, पीएचसी, सीएचसी या जिला अस्पताल में जानकारी लें, और घर की महिलाओं के लिए स्क्रीनिंग की जानकारी भी अवश्य पूछें। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे उन दो अफवाहों की जो सबसे ज्यादा फैल रही हैं, पीरियड्स बिगड़ना और बांझपन। तब तक याद रखिए, तथ्य चुनिए, सुरक्षा चुनिए। अब एक उपयोगी सूचना, यदि आपके पास स्मार्टफोन है और आपके इलाके में यूविन पंजीकरण की सुविधा सक्रिय है तो आप वहां अपॉइंटमेंट और पंजीकरण की जानकारी ले सकते हैं। यदि ये आपके लिए कठिन है तो भी चिंता की बात नहीं, अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र या आशा ANM से सीधे संपर्क करें। याद रखिए, डिजिटल सुविधा मदद के लिए है, बाधा बनने के लिए नहीं।
3: नमस्ते क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
4: जी
3: प्लीज बताइए, आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
4: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
3: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
6: कौन सी कहानी टीकी?
5: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
7: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
5: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माता पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
6: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
5: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
8: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
9: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। कृषि। नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज और एक बार फिर उन्नत कृषि कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपकी होस्ट आपकी दोस्त आरजे अनु एफएम ग्रीन पर। जी हाँ श्रोता, उन्नत कृषि कार्यक्रम में हर रोज़ कुछ अच्छी बातें होती हैं, हमारे किसान भाइयों और बहनों के लिए ज़रूरी बातें होती हैं, खेती बाड़ी से जुड़ी बातें होती हैं। तो आज मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि मिट्टी, जी हाँ मिट्टी अगर ना हो तो हम खेती की कल्पना नहीं कर सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसे तरह की खेती हैं जैसे कि मशरूम है, उसे हम घर में छांव वाले घर में उगा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे फसल जो सदियों से हमारे किसान भाई उगा रहे हैं वो धरती पर, वो मिट्टी पर उगा रहे हैं और परंपरा से ये खेती बाड़ी की रीत चलती आ रही है। लेकिन ज़रूरी ये है कि हम मिट्टी भी अच्छे तरीके से जांचें कि उस मिट्टी में पोषक तत्व मौजूद है या नहीं, ये हमारे फसलों को पोषक तत्व प्रदान करेगी या नहीं, तभी हमारा जो मेहनत है, जो हम मेहनत उस खेती बाड़ी में उस फसल को उगाने में लगा रहे हैं वो सार्थक होता है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि जब भी हमारे किसान भाई और बहन खेती करें, फसल उत्पादन करें, कुछ बोएं, गेहूं बोएं या आप धान बोते हैं, कुछ भी बोते हैं, तो आप उससे पहले मिट्टी का जांच ज़रूर कर लें, बहुत ज़रूरी है ये। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि आप मिट्टी का जांच ज़रूर करेंगे, इसकी जो महत्व है वो आप ज़रूर जान लेंगे, लेकिन एक तरीका होता है मिट्टी के सैंपल को उठाना धरती पर से, फिर उसको लैब तक ले जाना, तो ये एक नियम है, ये तरीका है, ये एक प्रोसेस है, आपको उससे गुजरना होगा। अगर आप इस तरीके से, आप इस प्रोसेस से मिट्टी को लैब तक ले जाते हो जांच करवाने के लिए, तभी आपको एक सही रिजल्ट मिलता है। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं और हमारे बीच हैं आज डॉक्टर राज किशोर कुमार, और मैं आपको बता दूं ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय से और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ये मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग से। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
10: थैंक यू मैडम।
9: सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि अभी मैंने बस संक्षिप्त में बताया कि बहुत ज़रूरी होता है कि पोषक तत्व मिले मिट्टी से हमारे फसलों को, तो आप थोड़ा विस्तार में बताएं कि मिट्टी के नमूने जो हम लेते हैं धरती पर से जांच के लिए, उसका क्या उद्देश्य होता है?
10: मैडम, मिट्टी के नमूने प्राप्त करने की विधि और प्रक्रिया उद्देश्य के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। मिट्टी के नमूने का विश्लेषण फसलों के लिए मिट्टी की उर्वरता मूल्यांकन और उर्वरक का सिफारिशों के लिए किया जाता है। बहुत सावधानी से किए गए मिट्टी विश्लेषण के परिणाम भी उतनी अच्छे नहीं आते हैं, अतः मृदा परीक्षण की दक्षता, देखभाल और कौशल जिसके साथ मिट्टी के नमूने एकत्र किए जाते हैं उस पर निर्भर करती है। मिट्टी विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण चरण प्रयोगशाला में नहीं बल्कि खेत से प्रारंभ होता है, जहां से नमूने लिए जाते हैं। अलग अलग जगहों पर मिट्टी अलग अलग प्रकार की होती है, इसे देखते हुए ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए कि ऐसे नमूने का चयन करें जो सारे क्षेत्र का एक साथ समान प्रतिनिधित्व करे।
9: जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अलग अलग क्षेत्र के मिट्टी जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, और इसीलिए अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग फसल जो है वो उगाए जाते हैं। चाहे हमारे बिहार क्षेत्र में अगर यहाँ की मिट्टी अलग है, तो यहाँ पे कुछ फसल ऐसे हैं जो उगाए जाते हैं जो दूसरे क्षेत्र में, दूसरे राज्य में नहीं उगाए जा सकते, क्योंकि मिट्टी समान नहीं है। तो डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी और हमारे किसान भाई भी ये जानना चाहते हैं कि मृदा परीक्षण के लिए क्या विशेष तकनीक है, किन विशेष तकनीक से उन्हें गुजरना होगा?
10: मैडम, मृदा परीक्षण के लिए सबसे पहले मृदा, हम ये जानना, हमको आपको ये बता दें कि मृदा संसाधन प्रबंधन एक अनिवार्य घटक है। एकत्र किए गए प्रत्येक नमूने को क्षेत्र का एक सच्चा प्रतिनिधि होना चाहिए। प्रयोगशाला विश्लेषण से प्राप्त परिणामों की उपयोगिता नमूने की शुद्धता पर निर्भर करती है, इसलिए बड़ी संख्या में नमूने का संग्रह उचित है ताकि उप नमूने द्वारा वांछित आकार का नमूना प्राप्त किया जा सके। सामान्य तौर पर नमूनाकरण प्रत्येक 2 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए एक नमूने की दर से किया जाता है। हालांकि 5 हेक्टेयर के अधिकतम क्षेत्र के लिए कम से कम एक नमूना एकत्र किया जाना ही चाहिए। मृदा सर्वेक्षण कार्य के लिए हम विशेष तरह एक मिट्टी प्रोफाइल प्रतिनिधि से आसपास के क्षेत्र के मिट्टी के नमूने एकत्र कर सकते हैं।
11: तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर आपने ये बताया कि तकनीक क्या है, तो हम ये अब जानना चाहते हैं कि चलिए हम मृदा परीक्षण के लिए अपने फील्ड में चले गए, हमें जहाँ से मिट्टी उठानी है, लेकिन इसके लिए ऐसा थोड़ी है कि हम अपने हाथ से खोद लें या खुरपी से खोद लें और ऐसे उठा के लेके चले जाएँ। उसके लिए कुछ सामग्री की भी ज़रूरत होगी जिसके अनुसार हम उसे लैब तक ले जाएँ। तो कौन कौन से सामग्री हम यूज़ कर सकते हैं मृदा परीक्षण के लिए?
10: मैडम, मृदा परीक्षण के लिए सबसे पहले हम कुदाल या मिट्टी भरमा ये जैसे सामग्री यूज करते हैं, जैसे ये मिट्टी भरमा, एक ट्यूब भरमा, पोस्ट होल या स्क्रू प्रकार भरमा या कुदाल भी हो सकता है, दूसरा खुरपी, तीसरा कोर नमूना, चौथा नमूना बैग। नमूना बैग यह विशिष्ट प्रकार के कपड़े का बैग होता है। पाँचवा प्लास्टिक की ट्रे या बाल्टी मिट्टी। ये उप नमूना के लिए हम लोग मिश्रण के लिए एक साफ बाल्टी या ट्रे या साफ कपड़ा लेते हैं। उसके बाद मिट्टी का नमूना के लिए सूचना पत्र, इसमें कपड़ों के थैलियों के बांधने के लिए चिन्हों और टैग के लिए पेंसिल से नकल करने की जरूरत पड़ती है।
11: अच्छा, तो ये कुछ तरीके होते हैं। यहाँ पर तरीकों के साथ डॉक्टर साहब ने आपको ये भी बताया कि आपको कौन कौन सी चीज़ आपके पास रहनी चाहिए जब आप मृदा परीक्षण के लिए आप जाते हो। तो इसके बाद डॉक्टर साहब, आपने इकाई की बात कही, तो हम जानना चाहते हैं कि मृदा परीक्षण में जो नमूना इकाई है, इसका हम कैसे चयन कर सकते हैं?
10: इसके लिए किसी क्षेत्र का एक दृश्य सर्वेक्षण वास्तविक नमूने लेने से पहले होना चाहिए, जिसके अनुसार फील्ड को समान भागों में विभाजित करें और जिनमें से प्रत्येक को अलग से नमूना लिया जाता है। और यदि क्षेत्र की सभी स्थितियां समान हैं तो एक क्षेत्र से एक एकल नमूना इकाई के रूप में माना जाता है। ऐसी इकाई 1 से 2 हेक्टेयर से अधिक होनी नहीं चाहिए और यह एक ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जो किसानों की एक देख रेख में हो, जहां 20 से 50 हेक्टेयर के क्षेत्र में एक नमूना एकत्र किया जा सके और उसका संग्रह किया जा सके।
11: जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर लवण जो प्रभावित मिट्टी होती है, अगर हमें उसका नमूना लेना हो तो हम कैसे लें?
10: इसके लिए सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि लवण प्रभावित मिट्टी का कारण क्या है, उसका स्रोत की पारगम्यता क्या है, मौसमी वर्षा का क्या स्रोत है, जल जमाव का क्या स्थिति है, जल तालिका की क्या स्थिति है, मृदा प्रबंधन का इतिहास क्या है, फसल की सिंचाई आवृत्ति, प्रजातियों और पौधों के कवर और कड़े पैन या सांद्रता की गहराई कितनी है, इसके लिए ये सब पहले चिन्हित करनी चाहिए। उसके बाद लवण प्रभावित मिट्टी को 2 तरीकों से नमूना लिया जाता है, इसका उपयोग जिप्सम की आवश्यकता की निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इसके लिए नमूनों के 1 से 4 हेक्टेयर में के स्थानों को 2 स्थानों में हटाया जा सकता है। यदि मिट्टी समान रूप से लवण से प्रभावित हो और यदि पैच विशिष्ट हो, मतलब उसका जो पैच बहुत क्षारी मिट्टी का सब ज़्यादा हो, तो इसके लिए बड़े पैच के लिए अलग से नमूने लिए जाते हैं। और कभी भी अगर लवण की मात्रता ज़्यादा हो तो मिट्टी के विभिन्न गहराइयों, जैसे 0 से 15 सेंटीमीटर, 15 से 30 सेंटीमीटर, 30 से 60 सेंटीमीटर और 60 से 100 सेंटीमीटर तक के मिट्टी की गहराई का नमूने लिया जा सके, जिससे उसकी उचित सांद्रता कितनी है उसका आंकलन हम कर सकते हैं।
11: जी जी, तो डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि हमारे पास एक जानकारी पत्र भी रहना चाहिए जब हम मृदा परीक्षण के लिए जाते हैं फील्ड पर, तो ऐसे में अगर जो कोई हमारे किसान भाई और बहन नमूने की पहचान करना चाहते हैं तो जानकारी पत्र में उन्हें क्या क्या लिखना है?
10: इसके लिए सबसे पहले उसमें जानकारी पत्र के लिए किसान का नाम होना चाहिए, खेत का स्थान होना चाहिए, सर्वेक्षण संख्या होना चाहिए, फिर पिछली फसल उगाई गई उसका डिटेल होना चाहिए, अगले मौसम में क्या वो लगाएंगे उसका आकलन होना चाहिए, संग्रह की तारीख होना चाहिए, नमूनाकर्ता जो मिट्टी का जो कलेक्शन किया है उनका नाम होना चाहिए। ये सब इत्यादि जानकारी एक बैग के ऊपर लेवल के रूप में करना चाहिए। और दूसरा बात ये है कि अप्रमाणिक साइट है जहाँ से असामान्य सेचित दलदला जमीन, पुराना रास्ता, चैनल, पुराने बंड, पेड़ के पास के क्षेत्र, पिछले अगर कंपोस्ट के ढेर हो, अन्य इस तरह के क्षेत्र का कब से कभी नमूना नहीं लेना चाहिए।
11: जी बिल्कुल, ये तो आपने जान लिया हमारे श्रोताओं, हमारे किसान भाइयों और बहनों, कि आपको कहाँ से नमूना नहीं लेना है और आपको उसमें क्या क्या जो आपकी जानकारी पत्र है उसमें आपको याद रखने के लिए क्या क्या नोट डाउन करना है वो भी आपने जान लिया। तो डॉक्टर साहब, अब बाढ़ आती है कि हम अपने किसान भाइयों और बहनों को बताएं कि नमूना इकाई का चयन करने के बाद जो हम सैंपल बनाते हैं उसकी प्रक्रिया कैसे होती है।
10: इसके लिए अलग अलग सैंपलिंग यूनिट दिखाने के लिए सर्वेक्षण में शामिल किए जाने वाले क्षेत्र का नक्शा तैयार करना पड़ता है। इसमें विभिन्न क्षेत्र को पत्र ए बी सी आदि द्वारा मानचित्र पर निर्देशित किया जाता है। हल परत का एक टुकड़ा जो 1520 चरणों के अंतराल पर काटा जाता है या कवर किए जाने वाले क्षेत्र के अनुसार किया जाता है। आमतौर पर एक के लिए 10 से 20 स्पॉट लेना चाहिए और क्षेत्र के आधार पर समग्र नमूना लेना चाहिए
11: जी।
10: मिट्टी का 1 से 2 सेंटीमीटर भी ही लेना चाहिए। नमूना कुदाल के ब्लेड पर एकत्र किया जा सके और एक साफ बाल्टी में दिया जाता है। इसी तरह चिन्हित सभी स्थानों पर नमूने को एकत्र किया जाता है। बाल्टी से मिट्टी को साफ कागज या कपड़े के टुकड़े पर डालें और अच्छी तरह से मिलाएं और मिट्टी के समान रूप से फैलाएं और इसे 4 तिबाहियों में विभाजित करें, 2 और 2 विपरीत को अस्वीकार करें। क्वार्टर और बाकी मिट्टी को फिर से मिलाए लगभग आधे के साथ छोड़ दे, जब तक प्रक्रिया को जुलाए जब तक मिट्टी की आधा किलो बच जाए और इसे इकट्ठा करे और एक साफ कपड़े के साथ थैली में डाले। नमूने के लिए इस्तेमाल किया गया बैग हमेशा साफ होना चाहिए
11: जी। तो ये तो हुआ कि नमूना इकाई का चयन करने के बाद आप सैंपल कैसे बनाते हैं, पूरी प्रक्रिया डॉक्टर साहब ने आपको बताई। अगर आपको ऐसे में समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ भी आ सकते हैं, हमारे वैज्ञानिक से इसकी जानकारी भी ले सकते हैं, वो आपको अच्छे तरीके से लिख कर इसकी जानकारी दे देंगे। इसके बाद डॉक्टर साहब अब आगे बढ़ते हैं, जो सबसे हमारा जो मेन पॉइंट है, जो सबसे अहम प्रक्रिया है इसमें, वो है कि मिट्टी तो हम मतलब जिस भी प्रोसेस से जिस भी तरीके से आपने कहा कि हमारे पास ये सामग्री होनी चाहिए मिट्टी परीक्षण के लिए, इसके बाद हमें कौन से जगह की या किस तरह के मिट्टी के नमूने नहीं लेने हैं वो भी आपने बताया, और साथ ही यहाँ पर सैंपल बनाने की प्रक्रिया भी आपने बताई। तो अब ये सारी चीज़ें करने के बाद हम इसे लैब भेजेंगे यानी कि प्रयोगशाला भेजेंगे, तो मृदा नमूनों को हम कैसे भेजेंगे अब प्रयोगशाला में?
10: इसके लिए ये किसान द्वारा परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी के नमूने भेजने से पहले यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उचित पहचान चिन्ह नमूना बैग के साथ लेबल पर भी मौजूद रहे। अधिकांश जानकारी मुद्रित के साथ मृदा परीक्षण प्रयोगशाला से मिट्टी के नमूने बैग या अमिट स्याही के साथ उन पर प्रेषण सूची के साथ बैग पर संख्या विवरण की तुलना करें। पहचान चिन्ह लगाकर विभिन्न स्थानों की संख्याओं को अलग किया जाना चाहिए। किसान मिट्टी के नमूने सीधे प्रयोगशाला में ले आ सकते हैं तथा नमूनों को फील्ड एक्सटेंशन स्टाफ के माध्यम से प्रयोगशाला में ले जा सकते हैं। यदि मृदा परीक्षण प्रयोगशाला कर्मचारी नमूने खुद एकत्र करते हैं तो पर्याप्त फील्ड नोट हो सकता है। सभी अज्ञात नमूनों को छोड़ दिया जाना चाहिए। अगर नमूने के बारे में विशिष्ट जानकारी हो तो उसको 66 नंबर रजिस्टर पर उसको दर्ज करना चाहिए और उसको प्रत्येक नमूने के एक प्रयोगशाला नंबर भी दिया जाना चाहिए।
11: जी बिल्कुल, जैसे कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया श्रोताओं कि जो नमूने हैं सीधे आप प्रयोगशाला में ले जा सकते हैं या फिर नमूनों को फील्ड एक्सटेंशन जो स्टाफ हैं वो उनके द्वारा आप प्रयोगशाला में भेज सकते हैं। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं कि किस तरीके से आप प्रयोगशाला तक मिट्टी को पहुँचा सकते हैं, उसके सैंपल को पहुँचा सकते हैं। तो अब यहाँ पर नमूने अगर हम संग्रह कर रहे हैं डॉक्टर साहब, तो इसके बाद मिट्टी के नमूनों को हम सुखाएँ कैसे?
10: प्रयोगशाला में जो भी मिट्टी आते हैं उनमें प्राप्त नमी कम होती है, हो सकते हैं। मिट्टी को ट्रे या हवा में सुखाया जाता है। सुखाने के दौरान ट्रे को क्रमांकित किया जा सकता है या उसमें प्लास्टिक टैग संलग्न किया जाना चाहिए। इसको एक गर्म हवा कैबिनेट के रेक में रखा जाता है जिसका तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से नहीं अधिक नहीं होना चाहिए तथा आर्द्रता भी इससे 30 से 60% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और मिट्टी के ओवन में सुखाना चाहिए। मौजूदा अधिकांश पोषक तत्व की उपलब्धता को भी प्रभावित करते, इसलिए हमेशा हवा से सुखाने की सिफारिश किया जाना चाहिए। सुखाने के बाद नमूनों को तैयारी कक्ष में ले लिया जाता है जो मुख्य प्रयोगशाला से अलग होता है। मिट्टी के नमूने को लकड़ी के दराज में कार्डबोर्ड बक्से में इत्यादि में संग्रह किया जाना चाहिए और पीसने के बाद मिट्टी के 2 mm की छलनी के माध्यम से ही जाना चाहिए। चलनी के माध्यम से जमीन के नमूने के केवल एक हिस्से को पारित करना और त्यागना शेष त्रुटिपूर्ण है। कणों के ठीक होने तक दोहराते रहे और पीसते रहे छलनी के को पारित करने के लिए पर्याप्त है और केवल कंकड़ जैविक अवशेष कंक्रीट रहते हैं उसे बाहर कर देना चाहिए। यदि मिट्टी को की मिट्टी के लिए हमें ट्रेस एलिमेंट जैसे आयरन कॉपर जिंक ये सब का अगर हमें परीक्षण करना है तो इस सब से बने कंटेनरों से में स्टोर करने या उससे पीसने से हमें सदा हमेशा बचना चाहिए।
11: जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। मृदा जांच बहुत ज़रूरी होता है, क्यों ज़रूरी है ये भी हमने आपको शुरू में बताया था कि जो आपके उस मिट्टी में मौजूदा पोषक तत्व हैं या नहीं जो आपके फसलों को चाहिए, क्योंकि हमारी जो फसल है वो मिट्टी से ही पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। अगर बंजर ज़मीन होगी तो आप जितनी मेहनत कर रहे हैं फसल की बुआई में वो सही रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब ने आपको यहाँ पर पूरी प्रक्रिया बताई है कि आप कैसे परीक्षण कर सकते हैं, कैसे नमूना उठा सकते हैं मिट्टी का, और इसके साथ ही आप उसको लैब तक कैसे ले जा सकते हैं, कौन से जगह से आपको नमूने नहीं लेने हैं, और उसके बाद आप नमूनों को कैसे सुखाएंगे। तो इस तरीके से पूरी जानकारी आप सभी को मिली है 90.8 MHz पर। और हमारे साथ स्टूडियो में इस जानकारी के साथ मौजूद थे डॉक्टर राजकिशोर कुमार जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।
10: थैंक यू मैडम।
11: किसान भाइयों, आपसे फिर मुलाकात होगी इसी फ्रिक्वेंसी, सुनते रहिए उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार।
12: उन्नत कृषि

0: देखो नाटक देखो।
1: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
2: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
3: हाँ।
1: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
2: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
3: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
1: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
4: क्या क्या क्या?
2: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
4: अच्छा,
0: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
2: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
2: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
2: टीकू, वो 11 दोस्त है जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रखो,
5: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
6: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
6: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
6: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
6: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, आज उन्नत कृषि में हम एक वार्ता सुनने वाले हैं। वार्ता का विषय है मृदा मानचित्रण। वार्ताकार हैं डॉक्टर अंशुमान कोहली सर। आप हैं प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष मृदा विज्ञान विभाग से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
8: प्यारे किसान भाइयों और बहनों, आप सभी को स्वयं मेरी तरफ से और बिहार कृषि महाविद्यालय के मृदा विज्ञान विभाग की तरफ से एक सप्रेम नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सबसे एक सरल प्रश्न पूछकर अपनी वार्ता की शुरुआत करना चाहता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पैरों के नीचे क्या है? हम हर दिन मिट्टी पर चलते हैं, लेकिन शायद ही कभी रुक कर सोचते हैं कि यह कितनी महत्वपूर्ण है। मिट्टी सिर्फ धूल नहीं है, यह कृषि, पारिस्थितिकी तंत्र और हमारे अस्तित्व की नींव है। आज मैं मृदा मानचित्रण अर्थात सॉयल मैपिंग के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो एक शक्तिशाली साधन है जिससे कि हम इस मृदा रूपी छिपे हुए संसाधन को समझने में बहुत मदद ले सकते हैं। अब आखिर मृदा मानचित्रण क्या है? मृदा मानचित्रण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी क्षेत्र की विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की पहचान, विश्लेषण और वर्गीकरण किया जाता है, और फिर हम इस जानकारी को एक मानचित्र पर प्रदर्शित करते हैं, और यह मानचित्र हमें बताता है कि इस क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी मौजूद है, उसकी उर्वरता कितनी है, वह कितना जल धारण कर सकती है, क्या वह खेती, निर्माण या संरक्षण कार्यों के लिए उपयुक्त है, और उपयुक्त है तो उसकी उपयुक्तता विभिन्न कार्यों के लिए कितनी है। सरल शब्दों में, मृदा मानचित्रण हमें बिना हर जगह खुदाई किए मिट्टी को देखने में मदद करता है। अब प्रश्न यह आता है कि मृदा मानचित्रण इतना महत्वपूर्ण क्यों है। मृदा मानचित्रण कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मसलन कृषि। किसान भाई मृदा मानचित्रों का उपयोग यह तय करने के लिए कर सकते हैं कि कौन सी फसल उगानी है, उर्वरक व सिंचाई का प्रबंधन कैसे करना है, और ऐसी जानकारी होने से उनका उत्पादन बढ़ता है और अपव्यय कम होता है। साथ ही साथ मृदा मानचित्रण की एक भूमिका पर्यावरण संरक्षण में भी है। मृदा मानचित्रण उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है जहां कटाव, प्रदूषण या भूमि क्षरण का खतरा होता है, जिससे बेहतर संरक्षण योजना बनाई जा सकती है। साथ ही साथ शहरी योजना बनाने में भी मृदा मानचित्रण का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इंजीनियर और योजनाकार भवन, सड़क और अन्य संरचनाएं बनाने से पहले मृदा मानचित्रों का उपयोग करते हैं ताकि सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा जलवायु अध्ययन में भी मृदा मानचित्रण का की अहम भूमिका है। मिट्टी में कार्बन संग्रहित होता है, इसका मानचित्रण वैज्ञानिकों को कार्बन चक्र और जलवायु परिवर्तन को समझने में मदद करता है। अब प्रश्न यह आता है कि यह मृदा मानचित्रण किया कैसे जाता है। ऐसा नहीं कि मृदा मानचित्रण बिल्कुल एक नई तकनीक है, यह तकनीक पिछले कई दशकों से एक प्रभावी माध्यम है प्लानिंग का, योजना बनाने का। परंपरागत रूप से मृदा मानचित्रण में फील्ड सर्वे शामिल होते थे। मृदा वैज्ञानिक मृदा के नमूने एकत्रित करते थे, उन्हें प्रयोगशाला में विश्लेषित करते थे और फिर हाथ से मानचित्र बनाते थे। परंतु आज आधुनिक तकनीकों ने इस प्रक्रिया को बदल दिया है। अब उपग्रहों के माध्यम से रिमोट सेंसिंग की जाती है, भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग किया जाता है, GPS तकनीक का प्रयोग किया जाता है, और इन सब के साथ डिजिटल मृदा मानचित्रण मॉडल तैयार किया जाता है। यह सब तकनीकें मृदा मानचित्रण को अधिक तेज, सटीक और विस्तृत बनाते हैं। मृदा के मानचित्र कई प्रकार के हो सकते हैं। अपने उद्देश्य के आधार पर हम मृदा मानचित्र तैयार करते हैं। मसलन सामान्य मृदा मानचित्र, यह एक बड़े क्षेत्र का अवलोकन देते हैं, जैसे कि एक प्रदेश, पूरा देश या फिर एक जिला। और विस्तृत मृदा मानचित्र, यह छोटे खेतों या छोटे क्षेत्रों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते हैं, क्योंकि यह छोटी से छोटी जो विविधता है खेत में उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा हमें विषयगत मानचित्र भी देखने को मिलते हैं, मसलन pH, नमी या जैविक तत्व इत्यादि जैसे विशेष गुणों पर केंद्रित करते हुए अगर मानचित्र बनाए जाते हैं तो वह एक विषयगत मानचित्र की श्रृंखला में आते हैं। अब मृदा मानचित्रण करना यूं तो कहने को बहुत आसान सी प्रक्रिया है और कई दशकों से इस पर वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं, परंतु मृदा का मानचित्रण करने में कई प्रकार की चुनौतियां आती हैं। इसके लाभों के बावजूद जो विभिन्न चुनौतियां मृदा वैज्ञानिक देखते हैं उनमें से मुख्य हैं कि छोटे क्षेत्रों में भी मिट्टी में काफ़ी विविधता होती है। तो जब हम छोटे क्षेत्रों का मानचित्रण करते हैं तो यह विविधता दर्शाने में हमें कई उन्नत तकनीकों का सामना करना पड़ता है, कई उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है, और हमारी जो मृदा में मानचित्रण करना है उसकी कॉस्ट भी बहुत ऊपर चली जाती है। डेटा संग्रहण समय लेने वाला और महंगा हो सकता है। तो आजकल विभिन्न तकनीकों से डेटा संग्रहण कर रहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ें भी एक प्राइस के साथ आती हैं। तो कोई भी मृदा मानचित्रण की प्रक्रिया समय लेने वाली और महंगी हो सकती है। साथ ही साथ इसमें कुशल विशेषज्ञों और उन्नत तकनीक की आवश्यकता होती है जो कि सब जगह सुलभ नहीं होती। हालांकि नई तकनीकें जैसा मैंने ऊपर बताया उपग्रहों, भौगोलिक सूचना प्रणाली, GPS तकनीक इत्यादि का यूज करके इन समस्याओं से निपटा जा सकता है, परंतु फिर भी यह चुनौतियां हमेशा हमारे सामने रहती हैं। इन चुनौतियों के चलते हम मृदा मानचित्रण के भविष्य को कैसे देखते हैं? भविष्य, इस तकनीक का भविष्य बहुत आशाजनक है। आज के जमाने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और उपग्रह इमेजिंग में प्रगति के साथ मृदा मानचित्रण अधिक सटीक और सुलभ तकनीक बन गई है। मृदा मानचित्र अधिक से अधिक सटीक और सुलभ होते जा रहे हैं। भविष्य में किसान अपने स्मार्टफोन पर वास्तविक समय में मृदा डेटा का उपयोग करके तुरंत निर्णय ले सकेंगे और हम यह कह सकते हैं अंत में कि मृदा मानचित्रण केवल एक वैज्ञानिक गतिविधि नहीं है, यह सतत विकास के लिए एक महत्वपूर्ण चरण है। मिट्टी को बेहतर समझकर हम अधिक भोजन उगा सकते हैं, पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं और सुरक्षित समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप जमीन पर चलें, याद रखें आपके पैरों के नीचे एक पूरी दुनिया है जिसे समझा जाना बाकी है। धन्यवाद
6: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और मृदा मानचित्रण के बारे में इतनी सारी बातें आपने विस्तार से बताई। उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहनों को आज की वार्ता से बहुत सारी बातें सीखने को मिली होगी, जानने को मिली होगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। उन्नत कृषि
9: नमस्ते क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
10: जी
9: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
10: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
9: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
7: FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 8 जुलाई से 12 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। साथ ही इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 8 से 12 जुलाई के दौरान 15 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे पिछले कुछ दिनों में वर्षा हुई है, इसलिए आप वर्षा के जल का लाभ उठाते हुए धान की सबौर दीप किस्मों जैसे प्रभात, शुष्क सम्राट, सहभागी की बुआई 10 जुलाई तक जरूर कर दे। और किसान भाई बहनों, बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए कार्बन डाइजिन की 2 ग्राम मात्रा को 1 किलोग्राम बीज उपचारित करने के लिए इस्तेमाल करें। और ध्यान दें कि 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई जरूर करें। मध्यम अवधि वाली धान की किस्में जैसे राजेंद्र नीलम, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र श्वेता की रोपाई कर सकते हैं और धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी की जा सकती है। किसान भाई बहनों, अगर आप श्री अन्न की खेती करना चाहते हैं तो ध्यान दें, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें और मड़ुआ की वकुला KMR 316 GPU 67 VL 379 राजेंद्र मड़ुआ RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1 इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, उचास जमीन में अरहर की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1, राजेंद्र अरहर 2 इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और ध्यान दें कि अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का उपयोग करना बिल्कुल न भूलें। और किसान भाई बहनों, अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना ना भूलें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3 और गंगा 11 है। जिनके खेत में मूंग लगा है उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो किसान भाई बहन सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, भिंडी, कद्दू, खीरा, निनुआ और लौकी जैसी फसलों में निराई गुड़ाई करते रहें और खरपतवार नियंत्रित रखें। ध्यान दें कि पत्ती खाने वाली सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करना जरूरी होता है और अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डायमेथो 830 ईसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में गोबर की खाद डालना बहुत जरूरी होता है। खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्री फाउंड, डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और ध्यान रखें कि बीज गिराने के पहले बीजोपचार जरूर कर ले। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचों में जरूरत के हिसाब से छटाई कर ले जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचे में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा कर हटा दे, इससे कीट और रोगों के प्रकोप में कमी आएगी और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलेगा। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, महीने के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, इसलिए ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में टीके नहीं लगाए हो तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दे। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: are is in which opposite sides are equal and parallel. They are marked. An angle between QP and PS is 110 degrees. In the third picture, we have another rhombus as UVWX in which all the four sides are marked equal and diagonal XV is joined, and we are also marked with angle UVX as 30 degrees. Figure 4. Here we have a rhombus in which diagonal OE is joined and all the four sides are shown equal. Angle AEO is marked as 20 degrees. Question number 2. Using the diagonal properties, construct a parallelogram whose diagonals are of length 7 cm and 5 cm and intersect at an angle of 140 degrees. Question number 3. Using the diagonal properties, construct a rhombus whose diagonals are of lengths 4 cm and 5 cm. Page number 103. 4.5. Playing with quadrilaterals. Geoboard activity. Take a geoboard and some rubber bands. If you do not have these, you could just use the dot grid papers given at the end of the book for this activity. In the picture, we find a boy sitting with a geoboard and rubber bands in his hand. Place two rubber bands perpendicular to each other, forming diagonals of equal length. Join the ends. Here we have picture of a geoboard with rubber bands fixed in a pattern of a plus sign, representing the diagonals bisect each other. What is the quadrilateral that you get? Justify your answer. Extend one of the diagonals on both sides by 2 cm. Here we have another picture in which geoboard is given and the rubber bands are representing the diagonals. In the second picture, the length of the diagonal which is vertical has been increased by 2 cm on both the sides. What quadrilateral will you get now? Justify your answer. Page number 104. Joining triangles. Question number 1. Take two cardboard cutouts of an equilateral triangle of side length 8 cm. Here we are provided with a picture of two triangular cutouts which are of 8 cm each. Joining triangles. Question number 1. Take two cardboard cutouts of an equilateral triangle of side length 8 cm. Here we are provided with pictures of two triangular cutouts which are equilateral triangles of 8 cm length each. Can you join them to get a quadrilateral? In this picture, we find that the two triangular cutouts have been joined and the side lengths have been represented as 8 cm each. What type of a quadrilateral is this? Justify your answer. Question number 2. Take two cardboard cutouts of an isosceles triangle with side lengths 8 cm, 8 cm and 6 cm. Here we have picture of two cardboard cutouts having side lengths 8 cm, 8 cm and 6 cm respectively for both the cutouts. What are the different ways they can be joined to get a quadrilateral? Here we have two pictures in which we have the cutouts joined, one with 6 cm length common, and in the other picture we have the side length 8 cm which is common to both the cutouts. What quadrilaterals are these? Justify your answers. Page number 105. Question number 3. take two cardboard cutouts of a scalene triangle with sides 6 centimeters, 9 centimeters and 12 centimeters. We have pictures of the two cardboard cutouts here with the side lengths marked as 6 centimeters, 9 centimeters and 12 centimeters in both the cases. What are the different ways they can be joined to get a quadrilateral? Next question. Are you able to identify the different quadrilaterals that are obtained by joining the triangles? Justify your answer whenever you identify a quadrilateral. 4.6. Kite and trapezium. Kite. One of the ways the two triangles of sides 6 centimeters, 9 centimeters and 12 centimeters can be joined together as follows. Here we have a picture of two triangles joined together with common side 12 centimeters and side length as 6 centimeters, 6 centimeters each and other side lengths as 9 centimeters and 9 centimeters respectively. This quadrilateral resembles like a kite. Observe that the adjacent sides are of same length. Kite. A kite is a quadrilateral that can be labeled ABCD such that AB is equal to BC and CD is equal to DA. Property 1. In the kite, show that the diagonal BD, first one, bisects angle ABC and angle ADC. Second one, bisects the diagonal AC, that is AO is equal to OC and is perpendicular to E. Hint provided here is triangle AOB congruent to triangle COB? Here we are provided with a picture of a kite in which we find BD and AC are the diagonals joined and they are intersecting at O. We are also marked with sides AD and CD marked as equal and AB is equal to BC. They are also marked as equal. Page number 106. Trapezium. Parallelograms are quadrilaterals that have parallel opposite sides. We get a new type of quadrilateral if we relax this condition. Trapezium. A trapezium is a quadrilateral with at least one pair of parallel opposite sides. Construct a trapezium. Measure the base angles marked in the figure. Can you find the remaining angles without measuring them? Since PQ is parallel to SR, we have property 1. Angle S plus angle P is equal to 180 degrees and angle R plus angle Q is equal to 180 degrees. Using these facts, the remaining angles can easily be found. Verify your answer after finding them. When the non-parallel sides of trapezium have the same length, the trapezium is called an isosceles trapezium. How do we construct an isosceles trapezium? Here, we are provided with a picture of a trapezium PQRS in which angle S and angle R have been marked. Construct an isosceles trapezium UVWX with UV parallel to XW. Measure angle U. Here we are provided with two pictures in which we have UV length parallel to length XW. Here we have two arcs also marked as UX and VW. In the second picture, the distances have been joined, UX and VW. Can you find the remaining angles without measuring them? Does it appear that the angles opposite to the equal sides, angle U and angle V, are also equal? Can we find congruent triangles here? Consider side length XY and YZ perpendicular to UV. What type of quadrilateral is XWZY? Since XW is parallel to UV, A is equal to 180 degrees minus angle XYZ, that is equal to 90 degrees. B, 180 degrees minus angle WZY is equal to 90 degrees. Since the internal angles on the same side of a transversal add up to 180 degrees. Hence, XWZY is a rectangle. Page number 107. Now, it can be noticed that triangle UXY is congruent to triangle VWZ. How? Thus, angle U is equal to angle V. Using this fact, the remaining angles of the isosceles trapezium can be determined. Verify the angles by measurement. Property 2. In an isosceles trapezium, the angles opposite to the equal sides are equal. Figure it out. Question number 1. Find all the sides and the angles of the quadrilateral obtained by joining two equilateral triangles with sides 4 cm. Question number 2. Construct a kite whose diagonals are of lengths 6 cm and 8 cm. Question number 3. Find the remaining angles in the following trapeziums. Here, we are provided with two pictures of trapeziums. In first trapezium, we are given two adjacent angles, 135 degrees and 105 degrees, and a pair of opposite sides is parallel. In the second trapezium, here also one opposite side is parallel to another side and one of the angles is given as 100 degrees. Question number 4. Draw a Venn diagram representing the set of parallelograms, kites, rhombuses, rectangles and squares. Then answer the following questions. First one, what is the quadrilateral that is both a kite and a parallelogram? Second, can there be a quadrilateral that is both a kite and a rectangle? Third, is every kite a rhombus? If not, what is the correct relationship between these two types of quadrilaterals? Question number 5. If PAIR pair and RODS rods are two rectangles, find angle IOD. Here on this page, we have pictures of two rectangles. One rectangle is overlapping another rectangle and the angle ORI is given as 30 degrees. Also, the sides PR and RS are equal to 5 centimeters has been mentioned in the figure. Page number 108. Question number 6. Construct a square with diagonal 6 centimeters without using a protractor. Question number 7. CASE is a square. The points U, V, W and X are the midpoints of the sides of the square. What kind of quadrilateral is U, V, W, X? Find this by using geometric reasoning as well as by construction and measurement. Find other ways of constructing a square within a square such that the vertices of the inner square lie on the vertices of the outer square as given in the figure B here. In figure A, we have ACES to be a square in which we have another square as UVWX, and it has been formed by joining the midpoints of the sides of the square given before. In part B, we have a square and in which another square has been represented using a slider. In second picture, we have a square in which one more square is placed inside this by slightly tilting the square. Question number 8. If a quadrilateral has four equal sides and one angle of 90 degrees, will it be a square? Find the answer using geometric reasoning as well as by construction and measurement. Question number 9. What type of a quadrilateral is one in which the opposite sides are equal? Justify your answer. The hint provided here is draw a diagonal and check for congruent triangles. Question number 10. Will the sum of the angles in a quadrilateral such as the following one also be 360 degrees? Find the answer using geometric meaning as well as by constructing this figure and measuring. We have a quadrilateral ABCD in which angle B, A, C are marked and appear to be acute angles, and angle ADC is a reflex angle. Question number 11. State whether the following statements are true or false. Justify your answers. First one, a quadrilateral whose diagonals are equal and bisect each other must be a square. Second one, a quadrilateral having three right angles must be a rectangle. Page number 109. Third one, a quadrilateral whose diagonals bisect each other must be a parallelogram. Fourth one, a quadrilateral whose diagonals are perpendicular to each other must be a rhombus. Fifth one, a quadrilateral in which the opposite angles are equal must be a parallelogram. Sixth one, a quadrilateral in which all the angles are equal is a rectangle. Seventh one, isosceles trapeziums are parallelograms. Summary. First one, a rectangle is a quadrilateral in which the angles are all 90 degrees. Properties of a rectangle. First property, opposite sides of a rectangle are equal. Second property, opposite sides of a rectangle are parallel to each other. Third property, diagonals of a rectangle are of equal length and they bisect each other. Second one, a square is a quadrilateral in which all the angles are 90 degrees and all the sides are of equal length. Properties of a square. First one, the opposite sides of a square are parallel to each other. Second one, the diagonals of a square are of equal length and they bisect each other at 90 degrees. Third one, the diagonals of a square bisect the angles of the square. Third one, a parallelogram is a quadrilateral in which opposite sides are parallel. Properties of a parallelogram. First one, the opposite sides of a parallelogram are equal. Second one, in a parallelogram, the adjacent angles add up to 180 degrees and the opposite angles are equal. The diagonals of a parallelogram bisect each other. Fourth one, a rhombus is a quadrilateral in which all the sides have the same length. Page number 110. Properties of a rhombus. First one, the opposite sides of a rhombus are parallel to each other. Second, in a rhombus, the adjacent angles add up to 180 degrees and the opposite angles are equal. Third one, the diagonals of a rhombus bisect each other at right angles. Fourth one, the diagonals of a rhombus bisect its angles. A kite is a quadrilateral with two non-overlapping adjacent pairs of sides having the same length. A trapezium is a quadrilateral having at least one pair of parallel opposite sides. Next, the sum of the angle measures in a quadrilateral is 360 degrees. Here we have a picture in which we find that a big oval shape represents parallelogram, and inside this there is another oval shape which is green in color representing rectangle. Here there is a picture of a Venn diagram in which we have a large oval shape purple in color representing trapezium. We have another oval shape representing parallelograms which is green in color. Inside this another oval shape represents rectangle, and there's another oval shape which is yellow in color, and it covers all the three oval shapes and it represents kite. Rhombus is the portion which is common to rectangle and kite, and square is a portion which is common to kite and rectangle. Page number 111. It's puzzle time. Which quad? Gameplay. First, fold a sheet into half. Second, now fold it once more into a quarter. Third one, make a triangular crease at the corner, that is at the middle of the paper. Fourth one, open the sheet. What is the shape formed by the creases? Fifth one, how would you fold the quarter paper to get the kinds of creases given in the following image? Sixth point, how would you fold the quarter paper such that a square is formed? Here, we are also provided with a picture of kids. They are thinking about the activity given here. The activity has been explained with the help of paper folding. Chapter 4 ends here.
1: Ganit Prakash, you are just listening to this audiobook, textbook of mathematics for grade 8. Narration, Swarnlata Sharma. Sound recordist, Virendra Rawat. Production assistant, Chetna Sharma. Directed and produced by Vimlesh Chaudhary. This audiobook is brought to you by CIET NCERT, New Delhi, India.
2: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद.
3: कौन सी कहानी टीकी?
2: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार.
4: हमें भी वो कहानी बताओ ना.
2: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ. माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ. तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल. अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल.
3: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
2: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात. अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ. टीका सुरक्षित है. टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है.
5: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें.
6: नाटक देखो, नाटक देखो, आओ सारे नाटक देखो. खसरा और रुबेला की कुछ जरूरी बातें सुन लो. नाटक देखो, नाटक देखो.
3: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
2: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
3: हाँ हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
2: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
7: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
3: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
8: क्या क्या क्या?
2: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
8: अच्छा,
9: तो सबकी समझ में आ गया ना?
10: खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
2: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
11: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
2: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
11: 11 दोस्त?
2: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
11: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
11: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
11: टीकी, तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
12: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
13: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं, खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है। तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं। इसलिए, क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM, CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है। देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा। बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है। बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा। जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा, इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। वही आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों, याद रखिए, अफवाह से नहीं, सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही, लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहे। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की स्वस्थ रहें, खुश रहें और अफवाहों से बचें। नमस्कार।
14: नमस्ते क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
15: जी
14: प्लीज बताइए, आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
15: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
14: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
16: कौन सी कहानी टीकी?
2: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
17: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
2: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
5: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
2: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
5: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, A&M दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
17: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases.
18: So, see you at the vaccination center soon.
19: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.

0: दादा एक साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
1: कौन सी कहानी टीकी?
0: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
2: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
0: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
3: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
0: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
1: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
0: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
3: टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
4: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 8 जुलाई से 12 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। साथ ही इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 8 से 12 जुलाई के दौरान 15 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, पिछले कुछ दिनों में वर्षा हुई है, इसलिए आप वर्षा के जल का लाभ उठाते हुए धान की सबौर दीप किस्मों जैसे प्रभात, शुष्क सम्राट, सहभागी की बुआई 10 जुलाई तक जरूर कर दे। और किसान भाई बहनों, बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए कार्बन डाइजिन की 2 ग्राम मात्रा को 1 किलोग्राम बीज उपचारित करने के लिए इस्तेमाल करें। और ध्यान दें कि 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई जरूर करें। मध्यम अवधि वाली धान की किस्में जैसे राजेंद्र नीलम, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र श्वेता की रोपाई कर सकते हैं। और धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी की जा सकती है। किसान भाई बहनों, अगर आप श्री अन्न की खेती करना चाहते हैं तो ध्यान दें, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें और मड़ुआ की वकुला KMR 316 GPU 67, VL 379 राजेंद्र मड़ुआ RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, उचास जमीन में अरहर की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1, राजेंद्र अरहर 2, इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। और ध्यान दें कि अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का उपयोग करना बिल्कुल न भूलें। और किसान भाई बहनों, अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना ना भूले। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3 और गंगा 11 है। जिनके खेत में मूंग लगा है उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो किसान भाई बहन सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, भिंडी, कद्दू, खीरा, निनुआ और लौकी जैसी फसलों में निराई गुड़ाई करते रहें और खरपतवार नियंत्रित रखें। ध्यान दें कि पत्ती खाने वाली सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करना जरूरी होता है और अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डायमेथो 8 30 ईसी की 1 मिलीलीटर लीटर मात्रा को एक लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। और स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में गोबर की खाद डालना बहुत जरूरी होता है। खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्री फाउंड डार्क रेड अर्का कल्याण भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और ध्यान रखें कि बीज गिराने के पहले बीजोपचार जरूर कर लें। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। और जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचों में जरूरत के हिसाब से छटाई कर लें, जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचे में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा कर हटा दें। इससे कीट और रोगों के प्रकोप में कमी आएगी और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलेगा। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, महीने के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, इसलिए ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में टीके नहीं लगाए हो तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: കൃഷി. आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन एफएम और आप सभी के साथ हैं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे अनु. मेरे किसान भाइयों और पशुपालक भाइयों, आप सभी को एक बार फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार. और आज उन्नत कृषि में लेकर आई हूं मैं बटेर पालन के बारे में कुछ बातें. आप सभी ने मुर्गी पालन के बारे में बहुत सुना होगा. इसके अलावे अगर बात करें बटेर पालन की, यानी कि जो आज का हमारा विषय है इसके बारे में बात करें, तो आपको बता दें बटेर पालन को अगर आप एक व्यवसाय के तौर पर लेते हो, यानी कि इससे अगर आर्थिक मुनाफा आप कमाना चाहते हो, तो आप सभी को बता दूं मैं, मेरे दोस्तों और मेरे श्रोतागणों, कि ये बहुत ही अच्छा एक माध्यम है जिससे कि आपको कम अवधि में बहुत ही अच्छा मुनाफा होता है. अगर बात करें मुर्गी पालन की, तो उसमें समय भी ज्यादा लगता है और मुनाफा भी इतना नहीं होता है. तो सबसे पहले आज बहुत सारी बातें करने वाले हैं हम बटेर पालन के बारे में. अगर आपकी बटेर पालन शुरुआत करना चाहते हैं आप, तो इसके लिए आपको किन किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, तो आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्रोनॉमी बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से. डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस कार्यक्रम में. और सबसे पहले बटेर पालन की बात हो रही है, तो हम जानना चाहेंगे कि बटेर पालने के लिए हमारे पास इनके आवास का प्रबंधन कैसा होना चाहिए.
1: जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज बता दूं आपको कि बटेर पालन, बटेर को हम लोग क्वेल कहते हैं इंग्लिश में, जो जैपनीज बटेर है जिसका पालन पहले प्रोहिबिटेड था, जिसका कि पालन तो करते थे लेकिन इसके शिकार पर प्रतिबंध लगा हुआ है. लेकिन हम लोगों ने एक प्रजाति जो जैपनीज बटेर के नाम से है इसको विकसित किया, कैरी जो सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट है इज्जत नगर में, इसके द्वारा और इसको पॉपुलराइज किया गया.
0: जी जी.
1: इसकी कई प्रजातियां हैं जो पंख के रंगों के आधार पर फराव हैं, टॉक्सिडो हैं, इंग्लिश वाइट है, मैंचूरियन गोल्ड है. तो इस प्रकार से इनको विकसित किया गया कि जो कम समय में और काफ़ी मुनाफा देने वाला चीज़ है, जिसमें कि किसी प्रकार की कम से कम रोग होता है और इसमें किसी प्रकार के टीकाकरण की भी आवश्यकता नहीं है. अर्थात केवल रख रखाव पर ध्यान देके आप आसानी से मुनाफा कमा सकते हैं. और जहाँ तक जगह की बात है, जो आवास प्रबंधन की बात है, इसके लिए कोई बहुत बड़ा घर बनाने की आवश्यकता नहीं है. आपके पास, आप जिस प्रकार का व्यवसाय करना चाहते हैं, बड़े पैमाने पर, छोटे पैमाने पर, तो एक 10x10 का भी अगर कमरा है आपके पास, तो उसमें 10x10 में आप 400 बटेर तक का पालन कर सकते हैं.
0: जी.
1: और घर की ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं भी है तो काम चलेगा. लेकिन एक चीज़ है, ये उड़ने वाला पक्षी है, इसलिए इसको कंप्लीट जाली लगाकर या बंद करके आपको रखना पड़ेगा. और इसके रखने में आपको मुर्गियों से कम सावधानी रखने की ज़रूरत है. अर्थात नीचे कोई बेडिंग मटेरियल, हल्का बेडिंग मटेरियल आप दे सकते हैं, 4-5 इंच का बेडिंग मटेरियल होगा और नेचुरल डे लाइट काफ़ी है. लेकिन इसके आवास व्यवस्था में इसके जो बच्चे बहुत छोटे होते हैं, 10 ग्राम से भी कम वजन के होते हैं, तो उस समय इसको विशेष सावधानी की जरूरत होती है. लाइट देने की आवश्यकता पड़ती है, टेम्परेचर देने की आवश्यकता पड़ती है. तो हम लोग बात कर रहे हैं जैपनीज क्वेल, कुटर्निस जैपोनिका.
0: जी.
1: इसकी और इसके बारे में, आवास प्रबंधन के बारे में, आप जैसा मैंने बताया, एक 10x10 के रूम में भी इसका आप पालन करके आप आसानी से मुनाफा कमा सकते हैं.
0: तो डॉक्टर साहब, ये बात हो गई आवास प्रबंधन की, यानी कि कैसा उनका जगह रहना चाहिए जहां उनका पालन होना चाहिए. और उसके बाद आहार की अगर बात करते, तो उन्हें किस किस तरीके का आहार देना चाहिए.
1: जहां तक अलग अलग स्टेज के लिए अलग अलग इस तरह का राशन दिया जाता है, इसको दाना दिया जाता है. जैसे जब छोटा, जब चूजा रहता है, उस समय हम लोग इसको प्री स्टार्टर देते हैं. अगर आप बड़े पैमाने पर कर रहे हैं तो बटेर का दाना अलग से भी आता है. लेकिन अभी बाजार में जो मुर्गियों के लिए दाना है प्री स्टार्टर, आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं. और इसके बच्चे काफ़ी छोटे होते हैं, तो इनिशियल स्टेज में आप उसका जो महीन दाना है उसको दें. और फिर जब ये दूसरा सप्ताह का हो जाए, 2 सप्ताह से ऊपर हो जाए, तो फिर हम इसमें स्टार्टर क्रम्बल या स्टार्टर का जो दाना होता है, स्टार्टर क्रम्बल दे सकते हैं. और फिर फिनिशर 4-5वां सप्ताह में ये अपने वजन का 150 ग्राम से 200 ग्राम के बीच में आ जाता है, और उस समय आप बेच सकते हैं इसको और मीट पर्पस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं. लेकिन जहाँ तक अंडा देने की बात है, तो 6-7वां सप्ताह से ये अंडा देने लगती है, और 8वां सप्ताह होते होते ये फुल स्विंग में अंडा देना शुरू करती है. और पूरे साल में ये, अगर इसको दाना पानी अच्छा से मिलता रहा, इसके व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो 250 अंडा तक ये दे सकते हैं आसानी से. तो इसके लिए उस समय, लेकिन उस समय इसको लेयर फीड फिर चाहिए जिसमें कैल्शियम की अधिकता हो. तो अलग अलग समय में अलग अलग तरह का दाना देना है, और प्री स्टार्टर, स्टार्टर, फिनिशर और लेयर, चारों स्टेज का दाना इसमें अलग अलग स्टेज में हम लोग इस्तेमाल करते हैं।
0: मांसाहारी लोग हैं अगर उनकी बात करें जो मुर्गी खाते हैं, तो अगर मुर्गियों की बात करें तो बटेर पालन जो है वो मुर्गी पालन से किस तरीके से अलग है, उसके बारे में जानना चाहेंगे।
1: देखिए, मुर्गी पालन में सबसे बड़ी बात है कि बहुत टीकाकरण करने, बहुत बीमारियां होती हैं मुर्गियों में फ्रॉम द बिगिनिंग। एक दिन से लेके मैरेक्स का टीका पड़ता है, फिर रानी खेत का टीका पड़ता है, फिर गंबोरो का टीका पड़ता है, फिर उसका फाउल पॉक्स का टीका पड़ता है, रानी खेत का दूसरा टीका पड़ता है। तो इस प्रकार से अलग अलग स्टेज में मुर्गियों में
0: अलग अलग
1: अलग अलग टीके पड़ते रहते हैं। और लेकिन बटेर पालन में सबसे जो अच्छी बात है कि किसी भी प्रकार के टीकाकरण की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपको अगर हम चाहें तो जो आजकल का जो ट्रेंड है ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक विधि से भी हम बटेर पालन कर सकते हैं। जहाँ तक बटेर पालन का जो फीड है उसमें हम जो बोन मील, फिश मील इस्तेमाल करते हैं, उसके जगह सोयाबीन मील का इस्तेमाल करके भी हम इसका पालन कर सकते हैं। और एक जो एक मुर्गी के रहने की जगह के में कम से कम 8 से 10 बटेर एक साथ रह सकता है,
0: यानी कि तो कुल मिलाकर देखिए
1: जगह की कमी चाहिए और कम समय में 4 से, हालांकि मुर्गियों में भी आजकल जो हाइब्रिड मुर्गियां हैं वो भी 4 से 5 सप्ताह में 1.5 kg से ऊपर वेट कर लेती हैं और उनको भी हम सोल्ड कर सकते हैं। लेकिन जो अगर कैलोरी के हिसाब से देखें और कोलेस्ट्रॉल की बात करें, तो डॉक्टर के द्वारा भी सलाह दी जाती है कि वैसे जो पेशेंट हैं वो बटेर का मीट खा सकते हैं। तो बटेर पालन हर प्रकार से मुर्गी पालन व्यवसाय के साथ साथ भी किया जा सकता है, उसके अलावे भी अलग से भी किया जा सकता है। हालांकि अभी मार्केट में बटेर पालन, बटेर लोगों को बटेर के बारे में बहुत जानकारी नहीं है, जिसके चलते बहुत बड़ा मार्केट बटेर पालन का नहीं है। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ लोगों को जानकारी हो रही है और बटेर के लिए भी व्यवसाय को तौर पर बटेर को भी कई लोगों ने अपनाया है और मार्केटिंग व्यवस्था पर बल दिया है। तो अब इस व्यवसाय को भी हम बड़े तौर पर कर सकते हैं और मुर्गी पालन के साथ साथ भी कर सकते हैं, मुर्गी पालन के अतिरिक्त भी कर सकते हैं।
0: तो जैसा कि बताया आपको, तो श्रोतागणों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि मुर्गी पालन से ये कहीं ज़्यादा बेहतर है, जैसे कि इनके रखरखाव में आपको कम ध्यान रखना पड़ता है वनस्पत मुर्गी पालन के, और इसके बाद भी उन्होंने टीकाकरण की बात की, कोलेस्ट्रॉल की बात की, तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं बटेर पालन मुर्गी पालन से बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। और डॉक्टर साहब, सबसे पहले यहाँ पर बात हो गई कंपैरिजन के बारे में, मुर्गी पालन और बटेर पालन के कंपैरिजन की बात हो गई, तो अब यहाँ पर जानना चाहेंगे कि बटेर पालन अगर हम करते हैं तो इसकी खासियतें क्या है वो जानना चाहेंगे हम, ताकि जो लोग हैं इसे प्रभावित हों, और बटेर पालन को अगर व्यवसायिक तौर पर आप अपनाना चाहते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि उनकी खासियतें जानना, तो जानना चाहेंगे हम आपसे डॉक्टर साहब।
1: बटेर पालन प्रारंभिक अवस्था में बहुत इसलिए इसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया क्योंकि सरकार के द्वारा इस पर लाइसेंस व्यवस्था जारी की गई थी। लेकिन जब से इसका फार्मिंग स्टार्ट हुआ और आज के डेट में भी हमारा जो नेचुरल उड़ने वाला बटेर है, जो हमारा घरेलू प्रजाति है, उसके शिकार पर रोक लगी है। लेकिन अब जो प्रजाति की हम लोगों ने कैरी के द्वारा लाकर यहाँ, जिसका कि हम लोग ब्रूडिंग करके, उसका हैचिंग करके और उसका फैलाव किए, प्रचार प्रसार किए, तो इसके बाद धीरे धीरे इसका मार्केट आया।
0: हाँ।
1: और आज के डेट में ये स्थिति है कि अब लोगों को भी ये बटेर कुछ बातों को लेकर ज़्यादा प्रभावित करता है। एक तो ये छोटा होता है, जल्दी परिपक्व होता है, इसका मीट स्वादिष्ट होता है, जल्दी अंडा देने लगती है, बहुत काफ़ी अंडा देती है, और इसका मीट स्वादिष्ट होता है, इसका मेडिसिनल वैल्यू भी है। तो इस प्रकार से लोगों को इस बिजनेस के प्रति अट्रैक्शन हुआ। और इसमें जहाँ तक हमने एक बार बताया भी कि किसी भी प्रकार की दवाइयाँ या टीकाकरण के बिना भी बटेर पालन किया जा सकता है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोग मुर्गी पालन करते हैं, मुर्गी पालन में फास्ट ग्रोथ लाने के लिए कई प्रकार की

0: टाइप का हो गया। लोग छोटे जितने भी किसान थे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत मुर्गी पालन करके अब उनका मुनाफा बहुत कम हो गया है, तो इसके तहत आप वैकल्पिक स्रोत के रूप में इसको अपना के आप अतिरिक्त लाभ कमा सकते हैं।
1: तो यहाँ पर श्रोतागणों, आप सभी को डॉक्टर साहब ने बताया कि कैसे क्या खासियतें होती हैं और कैसे इसका पालन करना, या आवास व्यवस्था की बात हो गई, आहार किस प्रकार का देना चाहिए, और मुर्गी पालन और बटेर पालन के बीच के अंतर को इन्होंने बताया। और कहीं ना कहीं बटेर पालन, और अगर आप मांसाहारी हैं, आप मुर्गी खाते हैं या फिर मुर्गा खाते हैं, तो इस हिसाब से बटेर आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि डॉक्टर्स भी, अगर कोलेस्ट्रॉल की आपको दिक्कत है तो आपको भी डॉक्टर बटेर की ही सलाह देते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल ये उतना व्यापक तौर पर इसके बारे में जानकारी लोगों को नहीं है विस्तार में, तो इसीलिए आज डॉक्टर साहब हमारे साथ यहाँ पर थे। आप सभी को बहुत सारी जानकारियाँ भी मिली बटेर पालन के, और बटेर की जो खासियतें हैं उनके बारे में भी आप सभी को जानकारियाँ मिली। तो डॉक्टर साहब, आपको इन सभी जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद।
1: और इसके साथ ही श्रोतागणों, आप सभी से मुलाकातें होती रहेंगी, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें और आबाद रहें। उन्नत कृषि।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना?
5: खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
6: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
6: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
6: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
6: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
6: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
7: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
8: FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
9: उन्नत कृषि, किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है उन्नत कृषि में। और आज मैं हूं आप सभी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ, और वो विषय है बारिश के मौसम में पशुओं में होने वाली बीमारियां और उससे बचाव। तो मुझे पता है कि हमारे जो पशुपालक भाई हैं और किसान भाई हैं, उन्हें इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अगर रोगों का पहचान हो, उपचार हो, तो हमारे पशु स्वस्थ रहेंगे और आर्थिक स्तर पर भी आपको अच्छा मुनाफा होगा। तो यहाँ पर इस विषय पर चर्चा करने के लिए मैं बता दूँ कि हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। और डॉक्टर साहब, अक्सर देखा गया है कि जो पशु हैं

0: में बहुत सारे बारिश के मौसम में, खासकर बारिश के मौसम में हम बात कर रहे हैं, तो कई बीमारियां आती हैं, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो पशु हो, लेकिन पशु का या फिर यूँ कहें कि स्वच्छता का खास ख्याल नहीं रख सकते हैं। इस समय ज़रूरत होता है पशुपालक भाइयों का कि वो स्वच्छता का खास ख्याल रखें और उनमें यानी कि उनके जो पशु हैं उनमें रोगों का पहचान हो, उन्हें वो रोग पहचान सके और उनके उपचार को जान सके। तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बारिश के मौसम में पशुओं में कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं।
1: जैसा कि आप हम सभी जानते हैं कि बारिश के मौसम में बारिश होने से हमारे किसान भाइयों के चेहरे पर खुशी रहती है, चारों ओर हरियाली नज़र आती है, लेकिन बारिश का मौसम पशुओं के लिए खासकर उतना अच्छा नहीं होता है। क्योंकि इस ऋतु में एक तो जहां बारिश से चारों ओर जल जमाव रहता है,
0: संक्रमण होने
1: की संभावना रहती है, और अभी जो बात देखा जा रहा है कि बारिश के मौसम में तापक्रम में भी काफ़ी अधिकता है, तो तापमान में अधिकता, नमी और तापक्रम, ये दोनों, नमी में भी अधिकता होती है और तापक्रम भी काफ़ी होता है, जिसके चलते पशुओं में स्ट्रेस हो जाता है। और इस मौसम में वैसे भी पहले से पुराने समय से भी ये देखा जा रहा है कि कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जो बैक्टीरियल, जो जीवाणुओं के द्वारा फैलती हैं, उन बीमारियों का संक्रमण इस मौसम में प्रायः होता है, जिसमें प्रमुख हैं हम लोग उसको HS, हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया, जिसे हिंदी में गलघोंटू या अखड़िया रोग के नाम से जानते हैं। दूसरी बीमारी है लंगड़ी, इसके ब्लैक क्वार्टर, जिसका नाम से ही स्पष्ट है कि इस रोग में पशुओं में लंगड़ापन नज़र आता है, और ख़ास करके कम उम्र के पशुओं में, 2-3 साल से कम उम्र के पशुओं में लंगड़ापन आता है, और अगर प्रारंभिक अवस्था में इसकी चिकित्सा नहीं की गई तो प्रायः पशुओं के बछड़ों में, पशुओं में मृत्यु हो जाती है।
0: तो सर, आपने जिन रोगों के नाम बताए, लंगड़ी और गलघोटू, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रायः ये बीमारियां किन पशुओं में देखा गया है?
1: ये मुख्य रूप से गाय वंश के पशुओं में और भैंस वंश के पशुओं में ज्यादा होती हैं, और खास करके नए पशुओं में, अर्थात जिनकी, जो पशु तंदुरुस्त रहते हैं, और बछड़ों में, 3 साल से कम उम्र तक के पशुओं में इन दोनों रोग की संभावना काफ़ी अधिक रहती है, और खास करके वैसे पशु जो ज़्यादा तंदुरुस्त रहते हैं उन बछड़ों में और गाय भैंसों में ये इस रोग के होने की संभावना उतनी ही प्रबल रहती है।
0: यानी कि कम उम्र वाले पशुओं में ये ज़्यादातर देखा जाता है,
1: ज़्यादातर पाया ही जाता
0: और
1: है।
0: और सर, कुछ ऐसे सिम्टम्स जो कि हमारे पशुपालक भाई पहचान सके कि उनके जानवर को, उनके पशु को ये बीमारी लग चुकी है?
1: हाँ, गलघोंटू रोग नाम से ही स्पष्ट है कि इस रोग में, इसका नाम है अखड़िया, अर्थात अषाढ़ के मौसम में मुख्यतः यह होता था, और गलघोंटू इसका नाम भी है, अर्थात इस रोग में पशुओं में तीव्र ज्वर होता है, 105-106 डिग्री फारेनहाइट तक तापक्रम शरीर का बढ़ जाता है, पशुओं के मुंह से लार चलता है, और सांस लेने में तकलीफ होती है, मुंह से घरघराहट भरी आवाज सुनाई देती है सांस लेने के क्रम में,
0: और गला
1: में सूजन भी आ जाता है, गलघोंटू नाम है, और जिसके चलते कि पशुओं को सांस लेने में तकलीफ होती है, और प्रारंभिक अवस्था से अगर चिकित्सा नहीं की गई तो सांस लेने में बीमारी के चलते पशुओं में प्रायः मृत्यु हो जाती है।
0: और सर, एक बात और, अभी आपने लंगड़ी के बारे में कहा, तो ये भी गौ वंश में या फिर
1: भैंस वंश में ज्यादा होती है,
0: तो इसके लक्षण क्या?
1: ये नाम से ही स्पष्ट है, लंगड़ी, अर्थात इसमें पशुओं के पैर में या मांसल पोर्शन, जो भी मांस आगे का पैर का भाग या पीछे का पैर का भाग या जांग वाला पोर्शन, इसमें सूजन होता है, और ये सूजन एक खास प्रकार का सूजन होता है जिसको दबाने पर कसकसाहट भरी आवाज लगती है कि इसमें बालू भरा हुआ है या कोई चीज फ्लूइड भरा हुआ है, उस तरह का आवाज, कसकसाहट भरा आवाज दबाने पर रहता है। पशुओं में बहुत तेज दर्द होता है पैरों में या जहां पर सूजन हुआ वहां पर, और चलने में तकलीफ होती है, प्रारंभिक अवस्था में काफी तेज ज्वर होता है, लेकिन दूसरे दिन टेम्परेचर जो है शरीर का तापक्रम वो गिर जाता है, और अगर वहां पर जहां पर सूजन वाले पोर्शन पर चीरा लगाया जाए तो काला और मरा हुआ खून टाइप का उससे निकलता है, जो कि वहाँ पर गैंग्रीन हो जाता है। एक्चुअली ये जो बीमारी होती है ये बैक्टीरियल टॉक्सिन, अपने टॉक्सिन के चलते उस पूरे पोर्शन जितना दूर सूजन होता है वहाँ पर वो उसको गैंग्रीन कर देता है, अर्थात गला देता है, और जिसके चलते कि इस बीमारी में अगर पशु चिकित्सा के बाद बचता भी है तो जितना दूर सूजन हुआ उतना दूर घाव हो जाता है, उसमें मैगोट हो जाता है, और काफ़ी कष्टदायक होता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि इस प्रकार के लक्षण जैसे दिखाई दें प्रारंभिक अवस्था से ही अगर इसकी चिकित्सा की जाती है तो इसमें बचने की संभावना रहती है। और साथ ही साथ इसके साथ इनसे बचाव के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो टीकाकरण किया जाता है, उस पर विशेष बल देने की आवश्यकता है।
0: टीकाकरण पर विशेष बल देना है और प्रारंभिक अवस्था में ही इसका उपचार, यानी कि आप जो डॉक्टर्स होते हैं, पशु चिकित्सक होते हैं, उनके पास अपने पशुओं को ले जाएं। और डॉक्टर साहब, और मुख्य रोग के बारे में भी हमने सुना है जो पशुओं में देखा जाता है, तो उसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे।
1: देखिए, बरसात के मौसम में अन्य भी कई प्रकार की बीमारियाँ होती हैं, खुर और मुँह में होने वाले रोग भी होते हैं। खुर और मुँह में जो रोग होते हैं वो मुख्यतः बरसात के मौसम में तो नहीं, लेकिन अभी जो वातावरण में परिवर्तन हो रहा है, टेम्परेचर में जिस तरह से वेरिएशंस हो रहे हैं और तापमान अधिक और कम हो रहा है, तो इस मौसम में भी खुर और मुंह पका रोग हो रहा है। लेकिन इसके लिए खुर पका और मुंह पका रोग नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें खुर में और मुंह में,
0: यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी,
1: खुर में और मुंह में दोनों में घाव होता है।
0: अच्छा।
1: और ये एक विषाणु FMD वायरस के द्वारा फैलने वाला ये बीमारी है। और इसके साथ सबसे बड़ी जो विडंबना है कि प्रत्येक वर्ष टीकाकरण का कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा भी, व्यक्तिगत रूप से भी, लेकिन फिर भी इस रोग के जो वायरस हैं उनकी इतनी प्रकार की, उनकी इतनी प्रजातियां हैं कि उस वायरस का हम लोग जो टीकाकरण करवा रहे हैं उसके बावजूद भी खुर पका और मुंह पका रोग पर नियंत्रण करने में काफी कठिनाई हो रही है।
0: नियंत्रण
1: किया जा रहा है, लेकिन फिर भी नया स्ट्रेन वायरस का पैदा हो जा रहा है और उसके चलते जो बीमारी है वो टीकाकृत स्ट्रेन के अलावे जो स्ट्रेन हो जाता है उसके चलते ये बीमारी पर नियंत्रण काफी कठिनाई हो रही है। और इस रोग का आर्थिक पहलू है, इस रोग में खुरपका मुंहपका रोग में पशुओं में मृत्यु तो बहुत नहीं होती है, लेकिन आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि पशु जो मुख्य रूप से हम लोग पशुपालन करते हैं दूध के लिए या बैल पालते हैं काम के लिए, तो हम लोग जो
0: उनको नुकसान होता है,
1: दूध में काफ़ी कमी आ जाती है और चलने में पैर के, पशुओं के पैर में जो घाव होता है उसके चलते चल फिर नहीं सकते हैं, मुंह में जो छाला हो जाता है जिसके चलते खा नहीं सकते हैं, दुर्बल हो जाते हैं, तो जो सीधा आर्थिक नुकसान होता है, दूध उत्पादन कम जाता है, कार्य करने की क्षमता नहीं रहती है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इस रोग के चलते जो आफ्टर इफेक्ट होता है, जो पशु गाभिन पशु है उसमें एबॉर्शन का भी चांसेस रहता है, गर्भपात भी हो सकता है और परमानेंट स्टरिलिटी भी होता है, कि फिर उसके बाद जो हार्मोनल चेंज होता है शरीर के अंदर, एंडोक्राइन डिस्टर्बेंसेज होते हैं, उसके चलते पशुओं के बाल काफ़ी बढ़ जाते हैं, उसमें हीट, शरीर में जो गर्मी से लड़ने की क्षमता होती है वो समाप्त हो जाती है, थोड़ा भी गर्मी होने के बाद पशु हाँफने लगते हैं। और फिर जो हमने बताया कि उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम जाती है और वो इनफर्टाइल भी हो जाते हैं, अर्थात आगे फिर वो गर्भधारण नहीं करने की भी क्षमता, उनकी करने की क्षमता भी समाप्त हो जाती है। इस प्रकार इस रोग में होने से जो पशुपालक का कमर टूटता है उसकी आर्थिक नुकसान काफी ज्यादा होती है।
0: तो कहीं ना कहीं देखा भी जाता है कि जो पशुपालक भाई हैं हमारे, वो पशुओं को इसलिए पालते हैं क्योंकि उन्हें एक कमाने का अच्छा जरिया मिल जाए, और कहीं ना कहीं दुग्ध उत्पादन में भी बहुत ज्यादा ये मानी रखता है पशुपालन। और यहाँ पर डॉक्टर साहब, आपने इसके इफेक्ट के बारे में बताया कि असर क्या पड़ता है जानवरों पर, पशुओं पर, और डॉक्टर साहब ने बताया अब किसान भाइयों की जो है वो इनका दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है, साथ ही इनका रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाता है और इनफर्टाइल हो जाते हैं, यानी कि गर्भ ठहरने में उन्हें समय लग सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, तो ये असर पड़ता है पशुओं पर। और डॉक्टर साहब, अब जानना चाहेंगे मैं आपसे कि बारिश के मौसम में ये जो बीमारियां हैं पशुओं में प्रायः देखा जाता है, तो कैसे फैलती हैं ये?
1: जैसा कि हमने बताया कि बारिश के मौसम में जो एक तो जल जमाव, गंदगी का चारों तरफ प्रभाव, और फिर वातावरण में नमी की अधिकता और तापक्रम की अधिकता, जिसके चलते जानवर में स्ट्रेस होता है
0: और नमी में ही बैक्टीरिया जो है वो उत्पन्न होते हैं।
1: नमी के चलते जो भी जितने भी जीवाणु हैं उसका फैलाव बहुत ज्यादा होता है और गंदगी रहने से इसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है, तो इसके चलते ये बीमारियां काफी तेजी से फैलती हैं। तो साफ सफाई पर ध्यान देना आवश्यक है, लेकिन और सबसे बड़ी बात है कि जहां भी अपने पशुओं को रखें वहां जल जमाव नहीं हो। जल जमाव से एक और तो ये बैक्टीरिया तो फैलता ही है, इसके चलते चारों ओर बरसात के मौसम में आप देखेंगे कि मच्छर, मक्खी और चमोकन, जो किलनी, जू, इसकी भी संख्या बढ़ती है, जिसके चलते पशुओं में कई प्रकार के परजीवी रोग की भी संख्या बहुत बढ़ जाती है। तो हम जो हम लोग कोशिश करते हैं, पशुपालकों को सलाह देते हैं कि आप बरसात के समय ऐसे जगहों पर अपने पशुओं को रखें जहां जल जमाव न हो, और ऊंचे स्थान पर रखें। वहां शाम के समय अवश्य जो भी गंदगी है उसको झाड़ू लगा के उसको जला के धुआं कर दें, जिससे कि मक्खी मच्छर का प्रकोप भी कम हो। और राख जो बचे उसको अपने पशुशाला में छींटें, उसके क्षारीयता के चलते भी कुछ जीवाणु रोग से बचते हैं, साथ साथ वहाँ नमी की कमी रहती है।
0: तो डॉक्टर साहब, आपने जिन रोगों के नाम बताए, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये जो बीमारियां हैं वो एक पशु से क्या अन्य पशुओं में भी जा सकती हैं?
1: जी, ये सब सभी बीमारियां संक्रामक नेचर की हैं, और एक पशु से दूसरे पशु में छुआछूत के माध्यम से, उनके जो छींकने के माध्यम से, चारे के माध्यम से, या जो FMD वायरस है वो हवा के माध्यम से भी उसका प्रकोप, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जो अगल बगल पशु रहते हैं, छींकते हैं, खांसते हैं, उसके चलते भी, तो ये संक्रामक रोग हैं, और इनका संक्रमण एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है।
0: तो अगर ऐसा सिचुएशन हो, यानी कि ऐसी अवस्था हो हमारे पशुपालक भाइयों के साथ कि अगर उनका एक पशु बीमार हो गया है, तो उन्हें क्या करना चाहिए उस समय?
1: सबसे पहला तो है कि जब भी कोई पशु बीमार हो तो उसे स्वस्थ पशु से अलग कर दें।
0: अच्छा।
1: और उसके रखने की जगह जो है वो थोड़ी दूरी पर रखें। उसके बाद जो बरसात शुरू होने के पहले प्रायः अपने पशुशाला की सफाई करवा लें, और साथ ही साथ उसको ऊंचा कर लें ताकि वहां जल जमाव ना हो। और इन बीमारियों से बचने के लिए टीका उपलब्ध है। बरसात शुरू होने के पहले पशुपालकों को सलाह दी जाती है कि वो अपने पशुओं में HS और BQ अर्थात गलघोंटू और लंगड़ी का कंबाइंड टीका आता है, या फिर गलघोंटू, लंगड़ी और FMD तीनों का भी कंबाइंड टीका आता है।
0: अच्छा।
1: तो उस टीका का प्रयोग मई महीने में ही अपने पशुओं को कर दें, जिसके चलते कि आपके पशु बरसात के समय स्वस्थ रहेंगे। और ये जो तीन प्रमुख बीमारी है, HS, BQ
0: FMD.
1: और FMD, इस तीनों रोग से आपके पशु स्वस्थ रहेंगे।
0: यानी कि रोग का इंतजार नहीं करना है किसान भाइयों, उससे पहले ही टीकाकरण करवा दें मई के महीने में अपने पशुओं का, ज़्यादा अच्छा होगा। आपके पशु स्वस्थ रहेंगे और आपको आर्थिक स्तर पर भी अच्छी मजबूती मिलेगी इनसे। और इसके साथ ही डॉक्टर साहब, आपने बताया कि मतलब पशुओं को, जो बीमार पशु हैं उसको अलग कर देना चाहिए। साथ ही मैं आपको बता दूँ पशुपालक भाइयों की, अगर आप ये भी देख रहे हैं कि आपके बगल वाले जो पशुपालक हैं, अगर उनके पशु को बीमारी फैल चुकी है, तो आप अपने पशु को उस जगह पर ना ले जाएं जहां वो अपने पशु को चरा रहे हैं।
1: खास करके कॉमन चारागाह जो है, तो हम लोग ऐसे भी बरसात के मौसम में ये सलाह देते हैं कि उन जगहों पर जहां पर कि कॉमन चारागाह है,
0: जहां पर सभी पशु,
1: जहां बीमारी फैली हुई है, उस अवस्था में अपने पशुओं को उन चारागाह पर ना ले जाएं, या जहां जल जमाव है, जो जैसे बरसात के बाद भी जहां पानी जमा होता है, जहां घोंघे की अधिकता होती है, वहां पर अपने पशुओं को न ले जाएं, क्योंकि उन मौसम, इस मौसम में एक छेरा नामक बीमारी भी फैलती है, जो कि पशुओं में परजीवी के चलते फैलता है। तो हम लोग प्रयास करें कि बरसात के मौसम में अपने पशुओं को या तो अपने घर पर बांध के रखें, या खोलने के पहले स्वच्छ जल पूरी तरह से उसको पिलाकर ही बाहर ले जाएं, ताकि उस चारागाह पर जल, जो जल जमाव है, वहाँ का पानी नहीं पिएगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर उन चारागाह के चारा को अगर पशु चरते हैं, तो उसमें छेरा नामक बीमारी, जो फैसियोला हिपैटिका के चलती है, जिसे हम लोग, जिससे कि आपके पशु छेरा नामक बीमारी से प्रभावित हो सकते हैं, उससे बचने के लिए हम लोग सलाह देते हैं।
0: अच्छा सर, ये छेरा नामक बीमारी आपने कहा, तो इसके लक्षण क्या होते हैं?
1: ये छेरा स्पष्ट है कि पशुओं में पतला दस्त होता है।
0: अच्छा।
1: फोर्सफुल डायरिया, और इसका कारण जो है एक परजीवी है जो पशुओं में पाया जाता है, जिसे फैसियोला हिपैटिका के नाम से जानते हैं। तो इससे बचने के लिए हम लोग सलाह देते हैं कि एक तो उन जगहों पर न जाने दें, अगर जाते भी हैं तो वहाँ घोंघे अगर नजर आते हैं तो घोंघों को जमा करके कॉपर सल्फेट या नमक के साथ उसका ट्रीटमेंट करके उसको खत्म कर दें।
0: अच्छा।
1: और उसके बाद बरसात के पहले और बरसात के बाद अपने पशुओं को कृमिनाशक दवा अवश्य दें।
0: कृमिनाशक
1: दवा बरसात शुरू होने के पहले और बरसात समाप्त होने के बाद, ये प्रत्येक पशु औषधालय में सरकार के द्वारा भी मिलता है, और अपने व्यक्तिगत रूप से भी खरीद के इसका इसका इसका सेवन कर सकते हैं, दिला सकते हैं अपने पशुओं को। और इसके लिए ये इससे क्या होगा कि आपके पशु बरसात के मौसम में स्वस्थ रहेंगे, आप उनसे ज्यादा से ज्यादा उत्पादकता ले सकेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी।
0: तो हमारे किसान भाइयों और पशुपालक भाइयों, आप सभी को डॉक्टर साहब ने सुझाव दिया कि कृमि नाशक दवा बरसात स्टार्ट होने से यानी कि शुरू होने से पहले और बरसात खत्म होने के बाद आप छिड़काव करें, ताकि आपके पशु जो है वो बीमार ना पड़े। और अगर आपका ये कमाई का जरिया है तो आपको अच्छी कमाई मिले। और इसके साथ ही डॉक्टर साहब यहाँ पर उपचार की बात कर लेते हैं। आपने अभी छोटे मोटे उपचार के बारे में बताया, जैसे कि कृमि नाशक दवा के बारे में बताया, इसके अलावा भी कुछ और जो उपचार के अगर साधन मिल जाए हमारे किसान भाइयों को, पशुपालक भाइयों को, तो और अच्छा होगा उनके लिए।
1: यहाँ तक है जैसे ही आपके पशु को कोई भी लक्षण इस प्रकार का दिखाई दे जो एबनॉर्मल है, तो आप तुरंत निकट के चिकित्सालय से संपर्क करें, और अगर आपने टीका नहीं लगवाया तो टीका लगवा लें। और उसके बाद कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिसको जिसका कि जैसे HSBQ बीमारी के, हाँ, HS बीमारी में हम लोग सल्फाडिमाडिन का प्रयोग करते हैं। सल्फाडिमाडिन की जो इंजेक्टेबल इंजेक्शन आती है उसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा चूँकि HS हेमरेजिक सेप्टिसीमिया या गलघोंटू में निमोनिया का लक्षण भी पाया जाता है, तो निमोनिया का लक्षण पाया जाता है तो इसमें हम लोग, इसका नाम पास्चुरलोसिस भी है, तो इस केस में हम लोग लेटेस्ट जो भी आजकल थर्ड या फोर्थ जनरेशन की सिफेलोस्पोरिन दवाइयाँ आती हैं उसका भी हम लोग प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड का प्रयोग करते हैं। तो और सूजन चूँकि गला में रहता है तो सूजन के लिए NSAID का प्रयोग करते हैं। तो इन दवाओं का प्रयोग करने से और इनिशियल स्टेज से अगर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं तो ये बीमारियां ठीक हो जाती हैं और पूरी तरह ठीक हो जाती हैं। लेकिन जब अवस्था भींग के दूसरी तीसरी अवस्था में आ जाती है और उस समय प्रॉपर चिकित्सा नहीं मिलने से प्रायः देखा जाता है कि पशुओं की मृत्यु हो जाती है, तो इनिशियल सबको सबसे पहली बात यही है कि जैसे ही आप अपने पशुओं में देखें बरसात के समय कि कोई लक्षण जो सामान्य से अलग दिखाई दे रहा है, तो तत्काल निकट के पशु चिकित्सक से संपर्क करें। उसी प्रकार जो हमारा लंगड़ी बीमारी है, लंगड़ी बीमारी के लिए हम लोग बेंजाथिन पेंसिलिन, प्रोकेन पेंसिलिन या स्ट्रेप्टो पेंसिलिन का प्रयोग करते हैं। और इसके साथ ही साथ चूँकि सूजन रहता है तो सूजन के लिए भी हम लोग NSAID का प्रयोग करते हैं। और साथ ही साथ जो सूजन वाला पोर्शन को हम लोग जब देखते हैं कि उसमें काफ़ी क्रिप्टेटिंग साउंड है या कसकसाहट भरा आवाज़ है, तो वहाँ चीरा लगा के उसका ड्रेसिंग करवाना पड़ता है, क्योंकि जो भी टॉक्सिन के चलते जो वहाँ पर गैंग्रीन हुआ है उसकी सफाई जरूरी है। जब तक वो सफाई नहीं होगा घाव का, तब तक वो घाव जल्दी ठीक नहीं होगा। तो इस प्रकार से कुछ दवाओं का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। और साथ ही साथ सबसे ज़रूरी है कि चिकित्सा से जरूरी है जो इससे बचाव, तो बरसात के समय आप अपने पशुओं का टीकाकरण करवाएं और टीकाकरण करा के आप अपने पशुओं को सुरक्षित कर लें। अन्यथा चिकित्सा के बावजूद भी कभी कभी पाया जाता है कि लेट होने से पशुओं की मृत्यु होती है, और उसमें आपके खर्च होने के बावजूद भी आपके पशु बच नहीं पाते,
0: तो आर्थिक स्तर पर नुकसान होता है। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे सुझाव दिए और इसके बारे में बताया, यानी कि बारिश के मौसम में पशुओं में होने वाली बीमारियाँ और उसके बचाव के बारे में बताया। और आप सभी को बता दूं किसान भाइयों और हमारे पशुपालक भाइयों की, जैसा आप चाहते हैं कि आप अच्छे से ज़िंदगी बिताएं तो आपके पशु भी चाहते हैं, और आप जितना स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपके पशु भी चाहते हैं। तो उनका रखरखाव करें, देखभाल करें, ताकि आपका अगर आर्थिक स्रोत है पशुपालन तो आपको एक अच्छा आर्थिक स्तर पर मुनाफा मिल पाए। और आपको कहीं ना कहीं अगर शौक है पशुओं को पालने का तो आपको हमेशा अपने पशुओं को स्वस्थ रखना चाहिए। तो डॉक्टर साहब आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आप सभी से आगे भी मुलाकातें होती रहेंगी अलग विषय के साथ, अलग चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि
2: क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
3: जी
2: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
3: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा, और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
2: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
5: कौन सी कहानी टीकी?
4: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
6: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
4: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
5: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
4: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
7: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
8: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
0: नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उन्नत कृषि कार्यक्रम में, और मैं अनु आप सभी के लिए खास विषय लेकर आ चुकी हूँ, आम के मूल्य संवर्धन एवं परिरक्षण। इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं अनिता मैम। मैं आप सभी को बता दूं कि अनिता मैम SMS हैं KVK सबौर में और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के अंतर्गत। तो आज बहुत सारी बातें आज मैडम से हम जानेंगे, आम के मूल्य संवर्धित उत्पाद के बारे में, क्यों परिरक्षित करना चाहिए आम के मूल्य संवर्धित उत्पादों का या फिर आम को। तो आज इसके बारे में सबसे पहले मैम से जानते हैं कि आम के क्या कुछ फ़ायदे हैं। मैम,
9: हाँ, थैंक यू अनु। आम के फलों, आम को जो कहा जाता है हमारे यहाँ कि फलों का राजा, आम फलों का राजा है, तो आम फलों का राजा ये काफ़ी पुराने समय से कहा जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि आम फलों का राजा कहा जा रहा है उसके पीछे सही में कारण है। यह आम का फल काफ़ी पौष्टिक होता है, स्वादिष्ट होता है, गुणकारी होता है। इसके फल में विटामिन ए और कैरोटीन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। यहाँ 100 ग्राम जो है उसमें प्रति 100 ग्राम में 4500 IU पाया जाता है विटामिन ए, जो कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा हुआ। इसके अलावा इसमें विटामिन सी संतरा और सेब से कई गुना ज़्यादा पाया जाता है। और वैज्ञानिकों का कहना है कि आम में मक्खन, जो हम मक्खन कहते हैं, काफ़ी शक्तिवर्धक है, मक्खन के मुकाबले की शक्ति होती है।
0: अच्छा।
9: इसके अलावा इसकी गुठली, जिसको कि हम लोग सोचते हैं कि कोई काम का नहीं है, लेकिन उस गुठली से उसके जो गिरी होता है उसके अंदर, गुठली के अंदर जो गिरी होता है उसमें वसा और कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो इसलिए उसको हम लोग सुखा करके आटा के रूप में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। इसका छिलका जो है, उसका छिलका को हम सुखा कर जलाने के काम में ला सकते हैं। इसके गुठलियों के रेशा से बुश बनाया जाता है। इसके बाद यहाँ तक कि चिकित्सक कहते हैं कि आम जो है वह ब्लड और वजन बढ़ाने में कारगर साबित होता है, यदि इसको हम नियमित रूप से अपने डाइट में लें। यदि कितने लोग दुबले पतले हैं, वो वजन बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए आम एक बहुत अच्छा आहार है। और इसके अलावा इसके नियमित सेवन से त्वचा में निखार आता है, इसमें चूंकि विटामिन मिनरल्स पाया जाता है तो ऑटोमेटिक है और ये इनर्जी रिच फूड है तो इसमें त्वचा में निखार आता है। जो यूरिन संबंधित कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो दूर होता है और यूरिन मूत्र जो है हमारा खुलकर आता है, शरीर में स्फूर्ति आती है, नर्वस सिस्टम में किसी तरह का खराबी हो तो वो भी इसके सेवन से दूर होता है, नींद आने की किन्हीं को समस्या को नींद नहीं आती है तो इनका आप सेवन करेंगे तो आपको नींद भी आएगा। और जो गर्भवती स्त्रियां यदि इसका सेवन करती है तो उसके बच्चे सुंदर और स्वस्थ बच्चे को वजन देती है। इसका सेवन करने से कमजोरी दूर होता है और यदि हम रात में सोने से पूर्व ताजा रस का सेवन करें तो कब्ज दूर होता है और गुठली का जो गिरी होता है उसको जैसे कि मैंने पहले ही बताया उसको हम लोग आटे के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ उसको यदि महीन चूर्ण बना लें तो मंजन की भांति उसको हम दांत साफ करते हैं तो पायरिया आदि रोग से हम लोग को छुटकारा मिलता है। इस तरह से हम देखते हैं कि आम का बहुत फायदा है, यहाँ खाने को छोड़कर यदि उसका औषधीय भी गुण है, उसका काफी पौष्टिक वैल्यू है और उसको हम सेवन अवश्य करना चाहिए।
0: जी मैम, अब बात करते हैं परिरक्षण और मूल्य संवर्धन की, तो इसकी क्यों जरूरत पड़ी, क्यों करते हैं हम परिरक्षण और मूल्य संवर्धन?
9: अनु, ऐसा है कि जो भी हमारा फल सब्जी या भी कोई भी कृषि का उत्पाद होता है वह मौसमी होता है तो उसका उसमें अलग अलग कैटेगरी है। कुछ तो होते हैं कि जैसे कि हम उसका यदि तोड़ लिए तो 2-3 महीना तक भी हम उसको सुरक्षित आराम से रख सकते हैं, जैसे कि अनाज दलहन ये वगैरह है। और कुछ होते हैं कि आप 10-15 दिन ही रख सकते हैं, जैसे कि और से सब्जी फल में आते हैं। कुछ होते हैं कि 1 सप्ताह ही रख सकते हैं, जैसे कि आलू प्याज है उसको भी कई महीने रख सकते हैं, लेकिन जैसे फूल गोभी है तो 1 सप्ताह रख सकते हैं, वो भी मतलब 1 सप्ताह से तक में उसको खर्च कर देना, ख़त्म कर देना, उससे उसका क्वालिटी ख़राब होने लगता है, 2-3 दिन तक ही वो फ्रेश रहता है। कुछ चीज़ तो ऐसे है कि 1-2 दिन में ही हमारा ख़राब होने लगता है, तो उसकी सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंस है परिरक्षण एवं मूल्य संवर्धन का कि बेमौसम में उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना। यदि जो चीज़ की मौसमी है यदि उसका हम कोई प्रोसेसिंग नहीं, प्रसंस्करण नहीं करते हैं, परिरक्षण नहीं करते हैं, मूल्य संवर्धन नहीं करते हैं तो वो खराब हो जाएगा। लेकिन यदि हम इन प्रक्रियाओं को अपनाते हैं तो उसका हम लाइफ को बढ़ा देते हैं, वो जिस मौसम में उसकी उपलब्धता नहीं रहना चाहिए उस मौसम में भी वो उपलब्ध होता है। दूसरा कि यदि हम कोई जो किसी चीज़ को उत्पादन में जो खर्च लगता है उससे परिरक्षित करने में कम खर्च लगता है, तो जैसे कि हम आंकड़ों की यदि बात करें तो लगभग 40% जो हमारा फल सब्जी है वह उत्पादन होकर जो उपभोक्ता तक जाने से पहले ही खत्म हो जाता है। यदि उसको हम परिरक्षित करके बचा लेते हैं तो हम एक तरह से जो हमारा प्रोडक्शन है वो बढ़ा लिए, क्योंकि जो खराब हो रहा था उसको बचा लिए। इसके बाद यदि हम इसको घरेलू स्तर पर करके महिलाएं करती हैं अपने पर्सनल यूज के लिए तो वो ऑक्सीजन में यूज करती है तो खाद्य एवं पौष्टिक सुरक्षा हासिल होता है। इसके अलावा यदि वो इसको स्वरोजगार रूप में अपनाती है तो आमदनी भी होता है, रोजगार भी होता है, घर बैठे महिलाएं इसका करती है तो महिलाओं का सशक्तिकरण होता है, युवाएं इसको करते हैं तो युवाओं का पलायन हमारा रोकता है, उनको घर में अपने रोजगार मिल जाता है। इस तरह से हम काफी फल सब्जी का काफी महत्व है और इसको हम अवश्य करना चाहिए।
0: जी मैम, देखा जाता है कि तेल युक्त अचार तो बनाए जाते हैं आम के, लेकिन क्या लोगों के मन में सवाल है कि क्या तेल रहित अचार इसके बनाए जा सकते हैं?
9: बिल्कुल अनु, तेल रहित अचार हम बना सकते हैं और तेल रहित अचार आजकल बहुत लोकप्रिय भी हो रहा है।
0: अच्छा।
9: इसको बनाने के लिए कच्चे आम के छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, उसमें 20% नमक, 7.5% पीसी लाल मिर्च और 1% हींग जो है जो हमारा आम को मेजर कर लेते हैं उसके भार के अनुसार उसमें मिलाते हैं और मिश्रण को बार बार हिलाते हुए उसे कुछ घंटे धूप में रखते हैं, उसके बाद उसको बोतल में डाल देते हैं और 4-5 दिन तक उसको धूप में लगाते हैं, उसके बाद फिर वो खाने के लिए तैयार हो जाता है। उसको आप अच्छे स्वच्छ जगह पर भंडारित कर दीजिए, उसको उपयोग कीजिए, इसमें आपको तेल की कोई आवश्यकता नहीं है।
0: हाँ, मतलब आप अगर तेल आपको पसंद नहीं है और तेल रहित आप अचार बनाना चाहते हैं वो भी बन सकता है इससे। मैम, अब बात करते हैं आम के मूल्य संवर्धित उत्पाद की, ये जानकारी सभी लोग जानना चाहते हैं कि कौन कौन से मूल्य संवर्धित उत्पाद हम बना सकते हैं इससे।
9: आम के बहुत ढेरों सारे मूल्य संवर्धित उत्पाद है, जैसे एक तो आप तेल रहित अचार मैंने आपको बताया, इसके अलावा तेल युक्त अचार जो कि हम सदियों से बनाते हैं, ये घर की हर गृहिणियां बनाती हैं, इस पे हम लगता है चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अमचूर जो पाउडर बनाते हैं, वो भी लगभग हमको लगता है घर की हर महिलाएं बनाती ही है। तो अमचूर बनाती हैं महिलाएं जनरली, वो सुखा कर बनाती हैं आम की फांकों को, लेकिन उसमें हम थोड़ा सा चेंज करना चाहेंगे। यदि आम की फांकों को आप पोटासियम मेटाबसल्फाइड के 0.2% घोल में 5 मिनट तक डुबोने के पश्चात धूप में सुखाते हैं तो आमचूर का क्वालिटी गुणवत्ता आपका ज्यादा अच्छा होता है। ऐसे आमतौर पर महिलाएं उसको सीधे धूप में सुखा करके बनाती हैं, लेकिन यदि ये आप एक स्टेप कर लेती हैं तो आपका आमचूर का गुणवत्ता बढ़ जाता है। इसके अलावा आप पन्ना भी, आजकल जब धूप होता है तो हर घर में पन्ना बनता है, यहाँ तक कि चौक चौराहे पर भी पन्ना मिलता है और दिल्ली जैसे शहर में पैक्ड पैकेजिंग करके भी पन्ना बिकता है, मतलब इसका काफी मार्केट है। तो ये पन्ना आप बना सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, आम के कच्चे फलों को भून लें या उबाल लें, उसका गूदा निकाल लेते हैं और उसमें प्रति किलो गूदे में 0.8 kg शक्कर, 0.4 liter पानी, 80 ग्राम नमक, 20 ग्राम काली मिर्च और 20 ग्राम साइट्रिक अम्ल मिलाकर गर्म करते हैं। तब तो उसके बाद इसके जैसे स्क्वैश को हम लोग बोतल में भरते हैं उसी तरह बोतल में भर देते हैं और इसमें KMS पोटासियम मेटाबसल्फाइड बोतल में भरने से पूर्व उसमें हम लोग मिला देते हैं कि जैसे 5 लीटर है तो उसमें 3 ग्राम के अंदाज से उसमें के दर से उसमें मिला करके उसको पैक कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आमचूर बना सकते हैं, पन्ना बना सकते हैं। इसके अलावा जो आम का कच्चा आम हमारा काफी आंधी में गिर के बर्बाद हो जाता है, उस आम का हम लोग कच्चे आम का स्क्वैश बना सकते हैं। कच्चे आम का स्क्वैश बनाने के लिए आप आंधी में गिरे हुए फल भी ले सकते हैं या फिर प्रॉफ फल भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो ले सकते हैं। उन फलों को आप अच्छे से धो कर कर स्टील के चाकू से छिलका उसका हटा दें, टुकड़ों में काट लें। यदि गुठली वाला है तो टुकड़े में नहीं भी काटते हैं तो उसको पूरा डाल दें, लेकिन यदि गुठली नहीं हुआ है तो टुकड़े में काट करके बीज का जो आपका बीज है उसको निकालना अति आवश्यक है, नहीं तो उसको पकाएंगे तो वो चूंकि हार्ड नहीं हुआ रहता है तो वो स्वाद को खराब कर देता है। इसलिए यदि छोटा फल है तो उसको टुकड़ों में अवश्य काट करके बीज का जो बीज है उसको निकाल लीजिए। यदि आप का पूरा मैच्योर है तो गुठले में नहीं भी टुकड़े में काटते हैं तो उसको एज सच भी आप उबाल सकते हैं। तो या तो आप टुकड़े में काटिए या फिर गुठली सहित है तो आप उसको ऐसे छील करके बराबर पानी के साथ उसको हम लोग पूर्ण रूप से गल जाए तब तक उसको हम लोग उबालते हैं। उसके उबालने के बाद उसको या हमारे पास यदि मशीन है पल्पर है तो पल्पर में डाल करके उसको गूदा को अलग कर लेते हैं, रेशा बीज को अलग कर लेते हैं। यदि नहीं है तो हम हाथ से मसल करके गुठली को हटा देते हैं। मिक्सी है तो मिक्सी में उसको हम लोग थोड़ा पीस लेते हैं, उसके बाद कपड़े से मसलिन के कपड़ा मार्किन के कपड़ा से छान करके उसके गूदा को हटा लेते हैं, रेशा को साइड कर देते हैं। इसके बाद उस जो आपका गूदा हुआ है उस गूदे को हम लोग थोड़ा सा हल्का सा भफा लेते हैं, क्योंकि हम लोग हाथ लगाए हैं, भफा करके उसको रख लेते हैं, ठंडाने देते हैं और हम लोग जितना रस निकला उस रस को मेजर करके उसका 1.5 चीनी लेते हैं, चीनी का 1/2 पानी लेते हैं। चीनी पानी का हम लोग आंच पे चढ़ा करके जब तक चीनी नहीं गल जाए तब तक पकाते हैं, उसके बाद हाँ चाशनी बनाते हैं। उसके बाद प्रति केजी चीनी के उसमें हम लोग 4 से 5 ग्राम 4 ग्राम चूंकि कच्चे आम का बना रहे हैं इसलिए 4 ग्राम साइट्रिक एसिड डालते हैं। उसके बाद जब चाशनी हमारा चाशनी और आम दोनों जो आम का रस दोनों ठंडा जाता है तो धीरे धीरे आम के चाशनी को हम लोग आम में डालते हैं, गूदा में डालते हैं और धीरे धीरे चलाते रहते हैं। उसके बाद इसमें हम लोग जब पूरे अच्छे से मिल जाता है तो 5 लीटर स्क्वैश में आपको 3 ग्राम KMS की दर से थोड़े से पानी में घोल करके उसमें मिला देते हैं और आप इसको अब ये आपका बॉटलिंग कर देते हैं और इसको आप पैक करके रख दीजिए। इसको जब पीना हो तो 3 से 4 भाग पानी मिलाकर 1 भाग ये मिलाकर आप इसको पीजिए और इसका आनंद लीजिए। इसी तरह से आप पके आम का भी स्क्वैश बना सकते हैं, बिल्कुल यही प्रक्रिया है। आपको पके आम में जैसे यहाँ आप 4 ग्राम साइट्रिक एसिड डाले तो वहाँ 5 से 6 ग्राम साइट्रिक एसिड डालिए प्रति केजी चीनी के हिसाब से और उसको आपको कच्चा आम को आपको उबालना पड़ा पानी से तो उसमें उबालना नहीं, उसको सीधा छिलका को हटा करके उसके गूदे को निकाल लेना है, गूदा को भफा लेना है। भफा के जैसे कच्चे आम के लिए प्रक्रिया है उसी तरह पके आम के स्क्वैश बनाने की भी प्रक्रिया वही है। इसी तरह से आप उसका स्क्वैश बना सकते हैं। इसके बाद आपका आम का जैम बना सकते हैं, ये कच्चा और पके दोनों आम का जैम बना सकते हैं। इसके लिए मान लीजिए कच्चा आम है तो उसको छील करके टुकड़ों में काट लीजिए, फिर थोड़ा सा पानी में से गर्म करके गूदा को नरम कर लेते हैं। अब गूदे की मात्रा का 3/4 या बराबर मान लीजिए खट्टा आम है तो बराबर चीनी दे दीजिए, यदि पका आम है तो 3/4 में चीनी मिला करके पकाते हैं। उसी तरह यदि पका आम, ये तो कच्चे आम का हो गया, यदि पका आम हम लेते हैं तो पका आम का गुदा कर लेते हैं, उसी के मात्रा में चीनी डालकर उसको पकाते हैं। अब चाहे कच्चा आम को पका रहे हो चाहे पका आम को पका रहे हो, पकाने के बाद जो जितना आप चीनी डाले हैं प्रति केजी चीनी के हिसाब से 5 ग्राम साइट्रिक एसिड डाल देते हैं हम उसमें। यदि कच्चा आम है तो उसमें आप 4 ग्राम भी साइट्रिक एसिड डाल सकते हैं, और पका आम ज़्यादा पका है तो 6 ग्राम भी साइट्रिक एसिड डाल सकते हैं। उसके बाद जब इसका तापमान 105 से 180 डिग्री तक पहुंच जाए तब इसको हम लोग उतार करके इसमें 0.02% सोडियम बेंजोएट थोड़े से पानी में घोल करके उसमें मिला देते हैं, और इसके बाद उसको हम लोग अच्छे डब्बे में, साफ किया हुआ डब्बा में उसको गरम गरम ही डाल करके दे हैं। फिर जब ठंडा जाता है तो उसके ऊपर एक मोम का लेयर डाल करके उसको हम पैक कर देते हैं। इस तरह से हम लोग आम का जैम बना सकते हैं, इसी तरह से हम लोग आम का मुरब्बा भी बना सकते हैं। आम का मुरब्बा बनाने के लिए पूर्णतः विकसित और स्वस्थ एवं अधपका आम का चयन करना चाहिए। उसको अच्छे से पानी से धो लीजिए, फिर आम के छिलकों को हटा करके उसका 9 सेंटीमीटर मोटाई और आम की गोलाई में बड़े बड़े टुकड़े काट लीजिए। अब उसके बाद अब इन टुकड़ों को 2-3% नमक के घोल में डुबाएं ताकि इन्हें काला होने से बचाया जा सकता है। इन टुकड़ों को पतले कपड़े में लपेट कर खौलते पानी में 5-10 मिनट तक डुबोएं, बाद में इन्हें सूखे कपड़े पर फैलाकर सुखाएं। थोड़ी देर बाद इन टुकड़ों में जो स्टील या लकड़ी का सिकचा हो या फिर फॉर्क हो उससे थोड़ा छेद कर दीजिए, और एक बर्तन में आम के टुकड़े के वजन के बराबर चीनी लेकर पानी में चाशनी तैयार करें। पानी और चीनी का अनुपात 1:3 होना चाहिए। उसमें आप इसके 1.5-2 ग्राम प्रति किलो चीनी के हिसाब से साइट्रिक अम्ल मिला दें। चाशनी तैयार हो जाने पर उसमें आम के टुकड़े को डाल दें और तब तक गर्म करें जब तक चाशनी 3-4 तार ना छोड़ने लगे। अब मुरब्बे को ठंडा कर दें और ठंडा होने पर उसे स्वच्छ जीवाणु रहित बोतलों में भर दें, उसके बाद आप उसको पैक कर दीजिए। उसको चाहें तो उसके ढक्कन को मोम से भी सील कर सकते हैं, फिर आप इसका आनंद लीजिए। इस तरह से हम लोग विविध मूल्य संवर्धित उत्पाद बना सकते हैं, उसका परिरक्षण करके विविध परिरक्षित उत्पाद बना करके उसका सालों भर मजा ले सकते हैं, इसको रोजगार ले कर सकते हैं और अपने घर के खाद्य एवं पोषणिक सुरक्षा को भी पूर्ण कर सकते हैं।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, और श्रोताओं आशा करते हैं कि आप भी आम के जो मूल्य संवर्धित उत्पाद हैं बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बनाएं जैसे कि मैडम ने आपको बताया। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ हाजिर होंगे हम इसी फ्रिक्वेंसी पर, तब तक के लिए नमस्कार।
3: उन्नत कृषि सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
10: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
10: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
10: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
10: वो कहाँ पर?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
10: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 8 जुलाई से 12 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है, साथ ही इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 8 से 12 जुलाई के दौरान 15 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें पिछले कुछ दिनों में वर्षा हुई है, इसलिए आप वर्षा के जल का लाभ उठाते हुए धान की सबौर दीप किस्मों जैसे प्रभात, शुष्क सम्राट, सहभागी की बुआई 10 जुलाई तक जरूर कर दे। और किसान भाई बहनों, बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए कार्बन डाइजिम की 2 ग्राम मात्रा को 1 किलोग्राम बीज उपचारित करने के लिए इस्तेमाल करें। और ध्यान दें कि 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई जरूर करें।
8: मध्यम अवधि वाली धान की किस्में जैसे राजेंद्र नीलम, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र श्वेता की रोपाई कर सकते हैं और धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी की जा सकती है। किसान भाई बहनों, अगर आप श्री अन्न की खेती करना चाहते हैं तो ध्यान दें, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें और मड़ुआ की वकुला KMR 316 GPU 67 VL 379 राजेंद्र मड़ुआ RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1 इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, उचास जमीन में अरहर की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1, राजेंद्र अरहर 2 इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और ध्यान दें कि अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का उपयोग करना बिल्कुल न भूलें। और किसान भाई बहनों, अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना ना भूलें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3 और गंगा 11 है। जिनके खेत में मूंग लगा है उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो किसान भाई बहन सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, भिंडी, कद्दू, खीरा, निनुआ और लौकी जैसी फसलों में निराई गुड़ाई करते रहें और खरपतवार नियंत्रित रखें। ध्यान दें कि पत्ती खाने वाली सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करना जरूरी होता है और अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डायमेथो 830 ईसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में गोबर की खाद डालना बहुत जरूरी होता है। खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्री फाउंड, डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और ध्यान रखें कि बीज गिराने के पहले बीजोपचार जरूर कर ले। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचों में जरूरत के हिसाब से छटाई कर ले जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचे में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा कर हटा दे, इससे कीट और रोगों के प्रकोप में कमी आएगी और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलेगा। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, महीने के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, इसलिए ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में टीके नहीं लगाए हो तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दे। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

स्वस्थ रहे हम। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, घूमना फिरना किसे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कुछ लोगों की परेशानी ये होती है कि उन्हें मोशन सिकनेस होता है और ऐसी स्थिति में घूमना फिरना उनके लिए थोड़ा तो दुभर हो ही जाता है। तो मोशन सिकनेस क्या होता है, इसे कैसे बचा जा सकता है और ये क्यों होता है, इसके बारे में आज जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं हूं कौन। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त, रेडियो होस्ट उमा, और आज हम बातें करने वाले हैं ढेर सारी, बस आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले जानते हैं मोशन सिकनेस क्या होता है। दोस्तों, मोशन सिकनेस एक ऐसी स्थिति है जिसमें सफर के दौरान किसी इंसान को चक्कर आता है, उल्टी होती है या सिर दर्द होता है और कई बार बेचैनी भी होती है, और ये समस्या ज़्यादातर गाड़ी, बस, ट्रेन, जहाज या हवाई जहाज के यात्रा के दौरान होती है। और कुछ लोगों में ये समस्या इतनी ज़्यादा होती है कि उनके लिए कोई भी सफ़र बहुत मुश्किल हो जाता है। और पता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर संतुलन सही नहीं बैठ पाता है। मान लीजिए आप कार या बस में बैठे बैठे फ़ोन चला रहे हैं या फिर किताब पढ़ रहे हैं, और आपकी आंखें आपके दिमाग को क्या बता रही है कि आप स्थिर हैं, आप स्थिर होकर कोई काम कर रहे हैं, लेकिन आपके कानों के अंदर जो मौजूद संतुलन तंत्र है जो दिमाग को बताता है कि शरीर चल रहा है या नहीं, वो क्या बताएगा? हाँ, शरीर तो चल रहा है, पर आँखों ने बताया है कि नहीं, शरीर तो स्थिर है, वो कहीं नहीं जा रहा, स्थिर होकर काम कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में दिमाग को दो दो संकेत मिलते हैं, और जब दिमाग को अलग अलग तरह के संकेत मिलते हैं तो उसे लगता है कि हमारे शरीर में कुछ गड़बड़ी हो गई है, कोई जहरीली चीज अंदर आ गई है। और हमारा शरीर अपने अंदर गए किसी भी बुरी चीज को कैसे निकालता है? उल्टी करके। तो बस इसी वजह से हमारा जी मिचलाने लगता है, हमें उल्टी आने लगती है, हमें बेचैनी होने लगती है। अगर आपको ऐसा लगे तो इससे बचने का एक ही तरीका होता है कि आप खिड़की के बाहर दूर देखने लग जाएं, ताकि आपकी आंखों को भी पता लगे कि नहीं भाई, हम स्थिर नहीं हैं। तो आपके कानों के संतुलन तंत्र से जो संकेत जाएगा और आपकी आंखों से जो संकेत दिमाग तक पहुंचेगा, दोनों सेम होगा। तो ऐसी स्थिति में जी मिचलाने वाली स्थिति ही उत्पन्न नहीं होगी। अगर आपको लगता है कि मोशन सिकनेस से जूझने वाले आप अकेले इंसान हैं या बहुत रेयर ये स्थिति होती है, तो ऐसी बात नहीं है। साल 2015 में एक रिपोर्ट छपी थी और उस रिपोर्ट के मुताबिक मोशन सिकनेस एक ऐसी बीमारी है या एक ऐसी स्थिति है जो हर 3 में से 1 व्यक्ति को होती है। और साथ ही उस रिपोर्ट में ये भी पाया गया कि अनुमान आप ये नहीं लगा सकते हैं कि कौन कब इसकी चपेट में आ जाएगा, और इसका कोई सटीक इलाज भी नहीं है। जैसे कि हमने आपको अभी बताया कि मोशन सिकनेस इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर का संतुलन बनाने वाला सिस्टम ठीक से तालमेल नहीं बिठा पाता, और ये सिस्टम मुख्य रूप से कान के अंदर मौजूद होता है जो बैलेंस ऑर्गन यानी कि वेस्टिबुलर सिस्टम से जुड़ा होता है। हमारे शरीर के अंदर ना एक खास तरह का सेंसर होता है जिसे हम रिसेप्टर्स कहते हैं, और ये रिसेप्टर्स बाहरी और अंदरूनी बदलावों को महसूस करके उसकी जानकारी दिमाग तक पहुंचाता है। और जब जानकारी पहुंचती है और अलग अलग जानकारी पहुंचती है तो दिमाग को लगता है कहीं कुछ तो गड़बड़ हुआ है, और जब दिमाग को ये एहसास होता है कि हमारे शरीर के अंदर कोई तो गड़बड़ी हुई है, कुछ जहरीली चीज आ गई है, कुछ हानिकारक चीज आ गई है, तो हमारा दिमाग कहता है कि उल्टी करो और इसे बाहर निकालो। और सफर के दौरान ये उल्टी वाली समस्या या फिर ऐसी परेशानी सभी लोगों में एक जैसी नहीं होती है। कुछ लोगों को ना ये यात्रा शुरू होते ही बेचैनी महसूस होने लगती है, वहीं कुछ लोगों में ये परेशानी लंबे सफर के बाद सामने आती है, और कुछ लोगों को ये परेशानी तब होती है जब वो ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे जाते हैं, पहाड़ी रास्तों से गुजरते हैं या फिर गाड़ी के अंदर दुर्गंध फैली होती है, तो भी लोगों में ऐसी परेशानी आती है। डॉक्टर्स बताते हैं कि हमारे दिमाग के अंदर एक फ्लूइड होता है, और सफर के दौरान जब ये फ्लूइड हिलता है तो उसमें पैदा होने वाली कंपन यानी कि वाइब्रेशन गर्दन तक पहुंचती है, और गर्दन के मूवमेंट के साथ वो कंपन खोपड़ी तक जाती है। ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इस प्रक्रिया से दिमाग में संतुलन बिगड़ता है और इसके कारण चक्कर और बेचैनी जैसी समस्याएं हो सकती है, और जब ये बहुत ज्यादा हो जाता है तो फिर उल्टी भी हो सकती है। तो मोशन सिकनेस का दूसरा कारण ये भी होता है कि जब हमारे दिमाग के अंदर फ्लूइड में कंपन होता है तो भी उल्टी की समस्या हो सकती है। और पहला कारण तो बिल्कुल था ही कि जो संतुलन होता है वो ठीक ठीक नहीं बैठता, दिमाग को आंखें कुछ और बता रही होती है और कान कुछ और बता रहे होते हैं। तो अलग अलग लोगों में अलग अलग वजह से परेशानी देखी जा सकती है, और इन सब के अलावा
आप जब सफर पर निकलते हैं तो उस दौरान आपके पेट की स्थिति कैसी है, ये भी मोशन सिकनेस के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगर आप खाली पेट सफर करते हैं तो फिर आपके पेट की वेगस नर्व, जो कि हार्ट और गर्दन की नर्व से जुड़ी होती है, वो ज्यादा सक्रिय हो जाती है और फिर इसका असर दिमाग और शरीर पर पड़ता है और आपको चक्कर जैसा महसूस होता है। और अगर आप खाली पेट नहीं है, आपने पूरा भरकर भोजन किया हुआ है, यानी कि काफी ज्यादा आपने खाना खा लिया है और उसके तुरंत बाद आप सफर पर निकल गए हैं, तो ऐसे लोगों में भी उल्टी की समस्या हो सकती है। इसलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि जब भी आप सफर पर निकले तो हल्का खाना ही खाएं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल खाली पेट जाएं या फिर बहुत ज्यादा खा लें, हल्का खाकर निकले तो आपके पेट में भी ठीक ठाक संतुलन बना रहेगा और आपको ज्यादा परेशानी भी नहीं होगी। मोशन सिकनेस के बारे में जो अभी तक हमने समझा वो ये कि ये सफर के दौरान होता है, लेकिन कई बार ये सफर से जुड़ी हुई परेशानी नहीं होती बल्कि दिमाग की किसी बीमारी या फिर किसी दवा के साइड इफेक्ट की वजह से भी हो सकता है। ऐसा कुछ मामले में तो मोशन सिकनेस ब्रेन ट्यूमर का भी संकेत हो सकता है। इसलिए अगर आपको बार बार ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है, छोटे छोटे सफर भी आपके लिए मुश्किल हो रहे हैं या फिर आप सारी सावधानियां अपना रहे हैं, इसके बावजूद आपके अंदर मोशन सिकनेस जैसी बीमारी हो रही है, परेशानी हो रही है, तो फिर ये किसी गंभीर बीमारी का भी संकेत हो सकती है। इसलिए अगर परेशानी ज्यादा हो तो डॉक्टर से मिल लेना भी जरूरी होता है। कम से कम आपको तसल्ली हो जाती है कि हाँ चलो कुछ गलत नहीं है। और अब तक हमने बीमारी के बारे में बातें की, बीमारी के कारण के बारे में बातें की, अब हम आपको बताते हैं कि सफर में उल्टी रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो मैंने आपको बताया कि भारी भोजन से बचना चाहिए, खाली पेट भी नहीं जाना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि मोशन सिकनेस के लिए आप कोई दवा इस्तेमाल कर सकते हैं तो बिना डॉक्टर के सलाह के आप कोई भी दवा का इस्तेमाल नहीं करें। अगर जरूरी हो तो उल्टी रोकने वाली टेबलेट ली जा सकती है, लेकिन डॉक्टर की सलाह के बाद ही। और ध्यान रखें कि चलती गाड़ी में नहीं सोएं अगर आपको पहले से ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ता है तो। और अगर बहुत ज़्यादा उल्टी हो तो नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करें, ये किसी गंभीर बीमारी का भी संकेत हो सकता है। और ध्यान रखें कि अगर आपको मोशन सिकनेस वाली परेशानी है तो सफ़र के दौरान आप अपनी नज़रें नीचे करके फ़ोन न चलाने लग जाएं या फिर आप किताब पढ़ना पसंद करते हैं सफ़र के दौरान, तो यहाँ पर भी आपको निराशा ही हाथ लगेगी कि सफ़र के दौरान आपको किताब पढ़ने से भी बचना होगा, ताकि आपकी आंखें आपके दिमाग को संकेत दे पाए कि आप चल रहे हैं, आप स्थिर नहीं हैं। और आपके कान जो आपके दिमाग को संकेत देंगे, वो संकेत मिलेंगे तो आपका दिमाग भी स्थिर रहेगा। इसके साथ ही आप अपने शरीर की स्थिति को भी स्थिर रखें, यानी कि सिर, कंधे, कमर और घुटने की हलचल थोड़ा कम करें। और अगर आपको परेशानी हो तो आप आगे की ओर मुड़े हुए सीट पर बैठें या फिर सामने की सीट चुनें, ये आपकी परेशानी को थोड़ा कम करेंगे। और अगर संभव हो तो खुद ही आप ड्राइव करें, यानी कि वाहन चलाएं, तो इससे तो बिल्कुल आपका दिमाग, आपके कान, आपकी आंखें, आपके दिमाग तक यही संकेत पहुंचाएंगे कि हमारा शरीर मोशन में है, तो संकेत या संतुलन की वजह से तो मोशन सिकनेस आपको नहीं होंगे फिर। और इसके अलावा निकोटिन से बचें। जो लोग धूम्रपान करते हैं उनमें उल्टी की संभावना ज़्यादा होती है। और संगीत तो सबसे अच्छा साथी होता है, कोई भी परेशानी हो, किसी भी तरह की परेशानी हो, संगीत सामने आता है और कहता है मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी परेशानी को कम करने के लिए। एक रिसर्च में पाया गया कि अगर हल्का और सुखद संगीत सुने तो आपको सफर के दौरान मोशन सिकनेस की परेशानी कम होती है। अच्छा, इसके अलावा एक सवाल और आता है कि क्या महिलाओं में मोशन सिकनेस की समस्या ज़्यादा होती है? तो कुछ डॉक्टर्स बताते हैं कि हाँ, महिलाओं में मोशन सिकनेस की समस्या पुरुषों की तुलना में अधिक देखी जाती है और इसके पीछे शारीरिक और हार्मोनल कारण होते हैं। जानकारों का मानना यह है कि जो महिलाओं की जीवन शैली होती है वो पुरुषों से काफ़ी अलग होती है और यही एक वजह होती है कि महिलाओं में मोशन सिकनेस की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। और दूसरा कारण होता है महिलाओं का पोस्चर। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जो घर के कामकाज बहुत देर तक खड़ी रहकर करती है, खासकर रसोई में जब वो खाना बनाती है तो लगातार खड़ी रहती है, तो लगातार खड़े होने से भी ब्लड प्रेशर गिर सकता है जिसकी वजह से मोशन सिकनेस जैसी दिक्कतें बढ़ जाती है। इसके अलावा महिलाओं में

कार्यों के लिए जुड़े रहिए और फिलहाल के लिए मुझे यानी कि आपके रेडियो दोस्त और होस्ट उमा को दीजिए इजाजत। अपना और अपने अपनों का रखे खास ख्याल। नमस्कार। स्वस्थ रहे हम।

0: देखो नाटक देखो।
1: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
2: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
3: हाँ।
1: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
2: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
3: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
1: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
4: क्या क्या क्या?
2: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
4: अच्छा,
0: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
2: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: तीनू, नीनू, राजू, पिन्नी और...
2: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
2: टीकू, वो 11 दोस्त है जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्वस्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रखो,
5: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
7: उन्नत कृषि। नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 MHz और स्वागत है आप सभी का उन्नत कृषि कार्यक्रम में। ये है FM ग्रीन, जो आपको ले जाता है हरियाली से खुशहाली तक। तो आज जब फिर से एक बार उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम बातें करेंगे अमरूद के परिरक्षित उत्पाद के बारे में, या फिर यूँ कहें कि मौसमी फल जो होते हैं उसका परिरक्षण हम कैसे करें, सारी बातें विस्तार से हम आपको बताएंगे। तो इस विषय को लेकर आज हमारे बीच है अनीता मैम। मैं आपको बता दूं, ये विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं KVK सबौर, और साथ ही सबसे पहले तो मैडम आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में।
8: धन्यवाद अनु।
7: मैम, मौसमी फल की परिरक्षण की आवश्यकता क्यों है, सबसे पहले ये हमारे श्रोताओं को बताएं।
8: सबसे बड़ी बात तो है, जो मौसमी फल होते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। ये इसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। स्वस्थ शरीर के लिए फल का नियमित सेवन काफ़ी आवश्यक है। ये फल जो होते हैं वे विटामिन और खनिज पदार्थ से भरपूर होते हैं। इन्हें विटामिन एवं खनिज का आहार में खजाना भी कहा जाता है। और लेकिन ये फल जो होते हैं वो मौसमी होते हैं
7: जी।
8: वो सिर्फ न किसी विशेष मौसम में ही उपलब्ध होते हैं, और यदि उचित रख रखाव नहीं रखा जाए तो वो शीघ्र ही खराब भी हो जाता है। उस मौसम में भी तुराई के बाद यदि हम सही प्रबंधन ना करें, उचित रख रखाव ना करें, तो वो खराब होना शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि जो डाटा है वो आंकड़ा बताता है कि लगभग 33% फल बिना प्रयोग हुए बर्बाद हो जाता है। और यह हम लोग सभी जानते हैं कि फल का उत्पादन में बहुत खर्च लगता है, और लेकिन उससे काफ़ी कम लागत करके हम उसको परिरक्षित करके उपयोग योग्य बना

0: सकते हैं। परिरक्षित फल का हम वर्ष भर सेवन करते हैं। मान लो जैसे अभी कोई सीजन है, जो कोई अभी उदाहरण ले लेते हैं, अभी अमरूद का सीजन है, तो हम सिर्फ मौसम भर अमरूद का प्रयोग करते हैं, लेकिन यदि उसके हम उत्पाद बना लें तो वर्ष भर उसका प्रयोग हम कर सकते हैं, और साथ ही साथ अनावश्यक जो हमारी बर्बादी हो रहा था वो बर्बादी को बचा सकते हैं। प्लस ये जो हमारा जो स्वास्थ्य है, यदि साल भर उसका हम सेवन करेंगे तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होगा, और जो हम पौष्टिक सुरक्षा है वो भी हम हासिल कर सकते हैं। फल का विविध तरह का परिरक्षित उत्पाद, जैसे हम अचार, चटनी, मुरब्बा, सुखौता, स्क्वैश, जेली, जैम, ये सब बनाकर घर में आराम से रख सकते हैं। और इन सब के अलावा ये सब उत्पाद को यदि हम अपने प्रयोग के अलावा बेचते हैं तो ये एक अतिरिक्त आय का भी साधन होता है। और ग्रामीण महिलाएँ बड़े आराम से इन जो भी मौसमी फल उपलब्ध हो उनको विभिन्न तरह का उत्पाद बना सकते हैं। यदि उनको अपना पेड़ बाग नहीं हो तो वो चूंकि मौसम में सस्ता होता है, वो सस्ता खरीद कर भी उसके उत्पाद को बना करके रख सकती हैं, और विविध तरह तरीके से अपने व्यक्तिगत उपयोग में या फिर बाजार में बेच करके उसका उपयोग करके फ़ायदा ले सकती।
1: जी जी मैडम, अब बात आती है कि फल परिरक्षण में उपयोग होने वाले परिरक्षक के विषय में जाना, तो क्यों कौन कौन से परिरक्षक होते हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी।
0: हाँ, कुछ जो परिरक्षक है, जो कि यदि आप फल सब्जी परिरक्षण में काम करना चाहते हैं, साल भर विभिन्न तरह के जो मौसमी फल हैं उनका प्रिजर्वेशन करना चाहते हैं, परिरक्षण करना चाहते हैं, विविध तरह के उत्पाद बनाना चाहते हैं, तो कुछ परिरक्षक है जिसकी की जानकारी रखना चाहिए, और आप आवश्यकता अनुसार उसे मार्केट से ले भी सकते हैं। जैसे कि एक साइट्रिक एसिड है, साइट्रिक एसिड का उपयोग हम जो जैम, जेली, मुरब्बा, स्क्वैश ये सब बनाने में किया जाता है, लेकिन जो साइट्रिक एसिड की जगह पर हम नींबू का जो रस है उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। यदि साइट्रिक एसिड नहीं है तो कोई बात नहीं, यदि आपके पास नींबू का रस है तो नींबू का रस का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह ग्लेशियल एसिटिक एसिड है, ये इसका अचार, चटनी, सॉस ये सब इसका प्रयोग किया जाता है। सोडियम बेंजोएट है, इसका प्रयोग सॉस, चटनी, स्क्वैश तैयार करने में किया जाता है। मतलब सोडियम बेंजोएट का प्रयोग हम लोग जनरली जो गहरे रंगीन खाद्य पदार्थ होता है उसको परिरक्षण में करते हैं। इसके बाद आता है पोटासियम मेटाबासल्फाइट, इसका जो भी हल्के रंगीन स्क्वैश वगैरह होता है उसमें हम लोग पोटासियम मेटाबासल्फाइट का उपयोग करते हैं। ये मुख्यतः यही चार तरह के परिरक्षक हैं जो कि घरेलू स्तर पर हम लोग यदि फल का परिरक्षण करना चाहें तो इनका उपयोग होता है,
1: कर सकते हैं। जी, तो परिरक्षित उत्पाद को रखना बहुत ज़रूरी होता है मैडम, अगर सही तरीके से नहीं रखा जाए तो ये ख़राब भी हो सकता है, तो कैसे रखें, क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए इन उत्पादों को रखने में।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये जो परिरक्षित उत्पाद है इसके लिए जो हम जिसमें हम भंडारण इसका करेंगे उस बोतल को उसको बहुत अच्छे से साफ करना बहुत ज़रूरी है। तो उन बोतलों को हम लोग क्या करते हैं, पहले एक बड़े से बर्तन में, जितना आपके पास बोतल है उसके अनुसार, वो बड़े से बर्तन में उसका ढक्कन को हटा करके और ढक्कन हटा कर उसमें ढक्कन डाल देते हैं, और ढक्कन सहित उसको लगभग आधा घंटा उबालते हैं, फिर उन्हें अच्छी तरह से धूप में सुखाते हैं, और बोतल जब सूख जाता है तो उसके बाद ही उसमें हम लोग उत्पाद को रखते हैं, और हल्के गर्म अवस्था में ही उसको हम लोग सील भी करते हैं। मान लीजिए यदि आपके पास सीलिंग मशीन उपलब्ध नहीं है तो पिघले हुए मोम में मोम पिघला जो दिवाली वगैरह में जो मोम बच जाता है या मार्केट में भी मोम मिलता है उस मोम को ले आइए, उसको पिघला दीजिए, और पिघले हुए मोम का उपयोग करके हम लोग बोतल को ढक्कन को बंद करते हैं तो वो बिल्कुल शील्ड हो जाता है और हवा का आदान प्रदान नहीं हो पाता है उसके अंदर, और हमारा उत्पाद खराब नहीं होता है। इसके अलावा यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जब हम लोग बोतल में उत्पाद को भरते हैं तो लगभग एक इंच जगह ऊपर खाली रहना चाहिए, और मान लीजिए कभी किसी तरह का उसमें अशुद्धि रह जाता है तो फर्मेंटेशन वगैरह होता है तो उससे बोतल टूटे नहीं, इसलिए हमेशा ऊपर में एक इंच का जगह आपको खाली रखना चाहिए, और इस तरह से आप बोतल में यदि साफ सुथरा करके भंडारित करते हैं तो उत्पाद आपका अच्छा रहेगा। लेकिन यदि मान लीजिए धूप नहीं है, आप नहीं सुखा पा रहे हैं, तो उसमें उस कंडीशन में हम लोग जो आपको एक पोटासियम मेटाबासल्फाइट है उसके घोल से भी बोतल को हम लोग अच्छे तरह से गर्म पानी से धो लेते हैं तो फिर वो भी काम हो सकता है, लेकिन बेहतर होगा कि हम गर्म पानी में खौला करके तेज धूप में उसको सुखा लें। इसके अलावा फल संरक्षण में ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो जिस फल का भी हम लोग संरक्षण करें, उसका जो परिरक्षित उत्पाद बनाना चाहते हैं, वो स्वस्थ हो, अच्छे किस्म को हो और सड़े गले या चोट खाए फल का प्रयोग ना करें। उसके बाद साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें, लोहे का चाकू या बर्तन का प्रयोग ना करें, संरक्षित उत्पाद को हाथ व गीले चम्मच से ना निकालें और बर्तन जिसमें या जार जिसमें कि आपका उत्पाद, उसको बार बार ना खोलें और बोतलें जो है हमेशा साफ धुली व सूखी रहना चाहिए। और जो मान लीजिए कि कोई बोतल का ढक्कन है, यदि आप पुराना बोतल उपयोग कर रही हैं, उसमें यदि छेद हो या जंग लगा हो तो उसका प्रयोग नहीं कीजिए, उसके जगह पे प्लास्टिक का जो सिंथेटिक फ्लैप है उसका उपयोग कीजिए। फिर प्लास्टिक या धातु के बर्तन में परिरक्षण ना करें, इसके लिए कांच की बोतल इस्तेमाल करना चाहिए और हमेशा एयर टाइट बोतलों का ही इस्तेमाल करें।
1: जी मैम, अब बात करते हैं अमरूद के बारे में, तो अमरूद के परिरक्षित उत्पाद के बारे में बताएं, जैसे कि अमरूद के जेली भी बनाए जाते हैं, तो कैसे बनाए जाते हैं, क्या कुछ तरीके हैं उसके बारे में थोड़ी।
0: अमरूद का तो जो मुख्य रूप से जो जो प्रसिद्ध उत्पाद है जो कि जनरली यूज करते हैं, वो अमरूद की जेली है। और अमरूद की जेली हम लोग उसके जो जूस है उससे हम लोग बनाते हैं। अमरूद की जेली बनाने के लिए हम लोग पूर्ण रूप से डेवलप मैच्योर विकसित फल का चयन करते हैं, जो कि बिल्कुल जिसको कि हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं डम्भक फल, वो डम्भक फल हमें लेना चाहिए। और इसको खूब या खूब पका भी अमरूद नहीं होना चाहिए, कच्चा भी नहीं रहना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अमरूद का जो फल हो वो डम्भक होना चाहिए। उसको थोड़ा सा काट के यदि हम खाएं तो वो थोड़ा मीठा स्वाद लगना चाहिए उसका, है ना। इसके बाद उस अमरूद को अच्छी तरह से पानी से हम लोग धो लेते हैं और गोल गोल गोल गोलाई में उसके टुकड़ों को काटते हैं। फिर इसमें जो बर्तन में हम उसको उबाल रहे हैं, उस बर्तन में अमरूद के टुकड़ों को डाल देते हैं, उसके ऊपर से पानी इतना डालते हैं कि वो अच्छे से डूब जाए। उसके बाद उसको हम लोग पकाते हैं, जब वो पूरा सीज जाता है, पक जाता है, हम हाथ से टच करके देखते हैं कि अमरूद के टुकड़े अच्छी तरह से गलकर पानी में मिल जा रहा है, तब उसको हम लोग कपड़े से उसको छान करके
1: मतलब पेस्ट बन जाता है।
0: नहीं पेस्ट नहीं, उसको ये ध्यान रखना है कि जब हम लोग अमरूद को उबाल रहे हैं तो उसको चलाना नहीं है, उसमें अच्छा पेस्ट नहीं बनना चाहिए। तब जो यदि पेस्ट बनेगा तो अमरूद का जो जेली बनेगा वो थोड़ा गंदा धुंधला टाइप का बनेगा। यह ध्यान रखना है कि अमरूद उसका टुकड़ा उसमें गले नहीं, टूटे नहीं, लेकिन वो पक जाए गलने लायक। उसको हाथ में निकाल करके हम ऐसे देखेंगे वो बिल्कुल ऐसे गल जाता है तो हम समझते हैं कि ये हमारा रेडी हो गया है, ठीक है। लेकिन उसको बार बार चलाना नहीं है, यदि उसको बार बार चलाएंगे तो वो टूटेगा तो हमारा जेली का गुणवत्ता खराब होगा, थोड़ा धुंधला दिखेगा, ट्रांसपेरेंट जेली नहीं बनेगा, है ना। और बीच बीच में हल्का सा चलाना है कि वो पेंदा में वो सटे नहीं, जले नहीं, आपका जो अमरूद है टुकड़ा है वो जले नहीं, उस तरह से उसको हल्का सा उसको चलाना है बीच बीच में।
1: जी
0: इसके बाद अब इस टुकड़ों को हम लोग अच्छे से कपड़े से छान लेते हैं। छानने के क्रम में यह ध्यान रखना चाहिए कि रस जितना देर लगे उतना देर आपको अपने से लगने दीजिए रस को चूने में, उसको दबा करके रस निकालने की कोशिश नहीं कीजिए।
1: अच्छा
0: वो जनरली से गांव में कोई मेज है, टेबल है, टेबल को उलट दीजिए, उसका जो चारों पाया है उसमें कपड़े को बांध दीजिए और उसके नीचे एक बड़ा सा बर्तन रख दीजिए और जो कपड़े को बांधे हैं उसमें आप अमरूद के टुकड़े को डाल दीजिए, टप टप धीरे धीरे धीरे जूस नीचे जो बर्तन रखे हैं उसमें गिरेगा और उसको रस को गार करके नहीं निकालना है। इस बात को बहुत ध्यान से रखना है क्योंकि यह भी यदि आप करेंगे तो भी आपका जेली का गुणवत्ता सही नहीं होगा, जेली थोड़ा गंदला हो जाएगा, ठीक है। और चाहे आपको जितना समय लगे उसको अपने से होने दीजिए, ठीक है। उसका जब पूरा रस निकल गया तो अब रस का मात्रा को ज्ञात कर ले, नाप लें कि कितना रस है। यदि आप उसके पेक्टिन के लिए टेस्ट करना चाहते हैं तो पेक्टिन टेस्ट कर सकते हैं। पेक्टिन का टेस्ट करने के लिए शीशे का ग्लास या परखनली लें, घर में तो शीशे का ग्लास ही रहता है, वो ले लीजिए। उसमें एक चम्मच रस लेते हैं, उन पर रस का दुगुना स्प्रिट डाल देते हैं। रस जब मिल जाए तो उसमें बाहर टेबल पर उड़ेल देते हैं, गिरा हुआ जो उसमें अपक्षेप देखेंगे, जो अपक्षेप बना है यदि अपक्षेप बड़ा हो तो जूस में 900 ग्राम, यदि साधारण हो तो 700 ग्राम, और टूटा फूटा पतला हो तो 400-500 ग्राम के लगभग चीनी डालते हैं। मान लीजिए आप इतना नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप यह देखिए कि रस में अपने हाथ से लेके देखिए चटचटापन है क्या नहीं। यदि रस में चटचटापन है तो बरसाती अमरूद में, जैसे कहीं बरसाती अमरूद का समय है, तो जनरली आप यह ध्यान रखिए कि 500 से 600 ग्राम चीनी हम लोग 1 लीटर जूस में देंगे। यदि आपके पास यह साधन है कि यदि हम पेक्टिन टेस्ट कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो फिर ये इतना थोड़ा चीनी की मात्रा हम लोग 500-600 ग्राम डालेंगे, या नहीं तो आप अलग से पेक्टिन थोड़ी मात्रा में डाल सकते हैं तो आपका अमरूद का जेली सही जमेगा। ठीक है, इसके बाद आप हम लोग जो चीनी की मात्रा दे के उसको पकाते हैं, जब जूस और एक थर्मामीटर मिलता है, उस थर्मामीटर को से आप उसका टेम्परेचर को माप सकते हैं, जब जूस का तापमान लगभग 100 डिग्री तक पहुँच जाए तो उसमें हम लोग जितना चीनी है उसमें हम लोग डालते हैं, चीनी और रस डाल करके उसको उबालते हैं और 100 डिग्री पहुंच जाए, मान लीजिए नहीं थर्मामीटर है तो जब अच्छे से वो खोलने लगे तो समझिए वो टेम्परेचर पहुंच गया है। तो 4-5 ग्राम सैट्रिक एसिड प्रति केजी के हिसाब से हम लोग जूस में मिला देते हैं। इसके बाद उसका जब टेम्परेचर 106-107 डिग्री पहुंच जाता है तो हम उसको उतार लेते हैं, और यदि मान लीजिए थर्मामीटर नहीं है तो कैसे उतारेंगे, तो उसका है कि एक ग्लास लीजिए, शीशे का ग्लास, उसमें पानी डाल दीजिए और उसमें आप जो जेली पका रही हैं उस जेली को थोड़ा डालिए, यदि वो उसमें घुलेगा नहीं, नीचे जाके जम जाएगा और सॉफ्ट रहेगा तो इसका मतलब वो रेडी है। यदि इससे ज़्यादा पका देंगी तो जेली जम जाएगा, कड़ा हार्ड हो जाएगा, इसलिए उतारने का तापमान बहुत ध्यान से देना होता है कि इस तरह से हम लोग उसका चेक करें। दूसरा है कि यदि प्लेट में उसको डालेंगे तो उसके चारों तरफ पानी का लेयर नहीं होना चाहिए, तो भी हमारा जेली तैयार हो गया। तो इस तरह से हम लोग ये हम लोग जांच करेंगे कि हमारा जेली का उतारने लायक हुआ कि नहीं हुआ है। ये दो पॉइंट पे आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा कि हम जेली का अंतिम बिंदु का कैसे जांच करें, दूसरा कि जब जेली को चला रहे हों या फिर जब जेली का जब अमरूद का रस निकाल रहे हैं, पका रहे हैं जब उस वक्त, और रस जब निकाल रहे हैं तो उस वक्त उसको दबाएं नहीं। ये दो चीज़ का जेली की गुणवत्ता को सही रखने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आप इसको उतार करके और जेली को स्वच्छ चौड़ी मुंह वाले बोतल के शीशे में भर देते हैं, और उसके बाद उसमें मोम को पिघला करके उसके ऊपर डालते हैं ताकि उसका एक लेयर हो जाता है, और फिर जब मोम जमने वाला हो, देखिए जब जेली ठंडा जाए तब हम लोग मोम डालते हैं, और जब मोम जमने से पहले, मोम को पूरा जमने नहीं देंगे, मोम यदि पूरा जम गया तो साइड से छोड़ देता है, मोम को पूरा जमने के पहले उसके ढक्कन को लगा देते हैं और किसी सूखे व ठंडे जगह पर उसको हम लोग भंडारित करते हैं। इस तरह से हमारा अमरूद का जेली तैयार हो जाता है
1: जी।
0: इसके अलावा यदि अमरूद का आप जो जेली का जो ऊपर आपका पल्प बच गया, इसका यदि कुछ आप बनाना चाहते हैं तो उसका एक दिन के लिए उसको छोड़ दें, और एक दिन उसे छोड़ने के बाद उसको आटे के साथ, जो भी आटा आपके पास उपलब्ध हो, शक्तिमान मक्का हो या फिर मिश्रित आटा हो, उसके साथ जैसे आप घरों में खजूर बनाते हैं उस तरह से चीनी वगैरह या गुड़ डाल करके छान के बना लेते हैं तो वो बहुत टेस्टी लगता है, बच्चे बहुत प्रेम से खाते हैं और बहुत पौष्टिक भी है। इसके अलावा आपके पास यदि बेकिंग की सुविधा है तो उसके आप बिस्किट भी इसका बना सकती हैं, और यदि इसके किसी मच्छरदानी में डाल करके उसके बीज को हटा देते हैं तो उसका जो पल्प बचा, उस पल्प से को आप चीनी के साथ पका करके जैम के रूप में भी बना सकते हैं, और पूरे उत्पाद को बीज सहित यदि उसको आप पीस देते हैं तो उसको भी आप चीनी या गुड़ के साथ पका करके संरक्षित करके रख सकते हैं, ये काफ़ी फायदेमंद है। मतलब कि यदि आपके पास पशु है तो ये जो बचा है उसको आप पशु को भी दे सकते हैं, तो किसी चीज़ को फेंकने की आवश्यकता नहीं है, उसके उत्पाद बना करके आप इसका प्रयोग कर सकते हैं
1: जी। तो किसान भाइयों और हमारी महिलाओं खास तौर पर आप भी ये बना सकते हैं अपने घर पर ही। और तो आज का हमारा विषय था अमरूद का परिरक्षित उत्पाद, तो इसके बारे में आज आपने जाना। साथ ही मैडम ने बहुत सारे ऐसे जो हैं तरीके बताए हैं जिससे आप किसी भी फल का परिरक्षण कर सकते हैं, तो यहाँ पर बहुत अच्छी जानकारी देने के लिए मैडम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी पर, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे किसान भाई बहनों को संबोधित विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले एक ऐसे फसल के बारे में जो खास तौर से आजकल के जलवायु परिवर्तन के बारे में बात करें तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सावा मिलेट की उन्नत खेती के बारे में, और इस बारे में विस्तार से बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर महेश कुमार सिंह। सर, आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट, आप हैं सस्य विज्ञान विभाग से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद उमा जी।
1: सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि क्या जब हम सावा मिलेट्स की बात करते हैं तो ये जलवायु अनुकूल फसल है?
2: देखिए, सावा मिलेट्स जिसको हम बार्नयार्ड बोलते हैं, ये जलवायु अनुकूल फसल है। जलवायु अनुकूल का मतलब ही है कि ऐसी सभी फसलें जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट कम हो, जो कम पानी में आसानी से उग जाएं और उच्च तापमान में भी चल सके, क्योंकि मौसम परिवर्तन में सबसे अधिक समस्या हो रही है तापमान का बढ़ना और दूसरा पानी की कमी होना। इस वर्ष अगर हम बात करें तो देखिए कि इस वर्ष एल नीनो के प्रभाव से हमारे बिहार राज्य में लगभग 40% बरसात की कमी दर्ज की गई है। अर्थात जो बरसात आपके क्षेत्र में पिछली बार हुआ है या पिछले 30 वर्षों में हो रहा है उसकी तुलना में 40% कम होगा, अर्थात 2/3 से भी बरसात कम होगा। तो ऐसे समय में क्या हो संभावनाएं हैं कि जिन किसान भाई लोगों ने धान की खेती लगाया है या लगाने जा रहे हैं, विशेषकर ऊपरी जमीन या मध्यम जमीन में, उनकी धान की खेती प्रभावित होगी। प्रभावित होने का तात्पर्य है या तो उसका उत्पादन कम होगा, या कहीं कहीं जो विशेष ऊपरी जमीन होगी उस जमीन में जल धारण की क्षमता भी नहीं होगी, वहां धान की फसलें सूख भी सकती हैं। तो उत्पादन कम होने से धान की खेती इस वर्ष घाटे की सौदा हो सकती है, विशेषकर ऊपरी एवं मध्यम जमीन में असिंचित अवस्था में। जहां सिंचाई की सुविधा है वहां हम धान की सिंचित रोपाई करेंगे, लेकिन धान वहां भी इतना ज्यादा पानी का डिमांड हो सकता है कि धान बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होगा। तो ऐसे सभी असिंचित क्षेत्र जो ऊपरी जमीन है, मध्यम जमीन है, जहां जल का जमाव नहीं होता है, उनके लिए जलवायु अनुकूल फसलें जैसे रागी, सावा, कोदो, चीना, कुटकी, इन सभी फसलों को हम लोग श्री अन्न की फसलें बोलते हैं। 2023 से हम लोग हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वैश्विक लेवल पे इन सभी फसलों को श्री अन्न की फसलें बोलते हैं। तो ये सभी फसलें जलवायु अनुकूल हैं, अर्थात एडवर्स कंडीशन में, अर्थात विपरीत परिस्थितियों में भी ये आपको मुनाफे का सौदा करती हैं। आप इनको बो दीजिए, ये आपको कुछ न कुछ रिटर्न दे के ही जाएंगे। ये फसलें देखा जाए तो जलवायु अनुकूल ही नहीं, ये पारिस्थितिक अनुकूल भी हैं, क्योंकि हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में हम लोग भी शामिल होते हैं, ह्यूमन बीइंग भी होता है, एनिमल भी होता है, सब कुछ शामिल है। तो देखा जाए तो इन फसलों को लगाने से हमारा पर्यावरण भी स्वस्थ है, पर्यावरण को हानि भी कम होगी, खेत की उर्वरता का लाभ भी कम होता है, ग्रीन हाउस गैसेस भी कम निकलती हैं, इनको जल भी कम चाहिए, इनको खाद भी कम चाहिए। जब खाद कम देंगे, जल कम देंगे तो हमारा जो भूमिगत प्रदूषण है वो भी नहीं होगा, नाइट्रेट का उत्सर्जन भी नहीं होगा, ग्रीन हाउस गैस भी कम होगी और हमारा मानव स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, क्योंकि इनका जब हम सेवन करते हैं तो ये विभिन्न प्रकार के जो पोषण हैं, प्रोटीन, क्वालिटी प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, विभिन्न प्रकार के मिनरल्स जैसे कैल्शियम, जिंक, मैग्नीज, कॉपर इत्यादि से परिपूर्ण हैं। तो इसीलिए हमारे जो ऋषि मुनि अपने पुराने समय में इन्हीं सभी कंदन फसलें, इनको बोलते हैं कंदन फसलों को, का सेवन करते थे, जिनको आज हम श्री अन्न की फसलें कह रहे हैं, जिसमें सावा भी शामिल है। इन सब का सेवन करके इन सब के ऊपर आधारित थे। और देखिए कि वो लोग का औसत आयु जो है 250 वर्षों की होती थी। तो देखा जाए तो ये बिल्कुल पारिस्थितिक अनुकूल है, इकोसिस्टम के अनुकूल है। तो इस वर्ष हमारे पास चूंकि एल नीनो का प्रभाव की वजह से बरसात कम हो रही है, इसलिए किसान भाइयों इसकी खेती को आप अपना करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं।
1: जी सर, जैसे कि आपने बताया कि ये जलवायु अनुकूल तो है ही, साथ ही हमारी आय को बढ़ाता है और सबसे बेहतर बात कि हमारे स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। तो ऐसे में श्री अन्न और खास तौर से जब हम आज बात कर रहे हैं सावा मिलेट्स के बारे में, तो ये बहुत फायदेमंद हो जाता है। तो सर अभी सवाल ये है कि अब जो किसान भाई बहन अगर खेती करना चाहते हैं सावा मिलेट्स की, तो वो खेती कब करें और कैसे करें?
2: हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जैसा कि देखिए सावा मिलेट्स एक ऐसा फसल है जिसको हम अपने बिहार राज्य में वर्ष में दो बार अच्छे से बुआई कर सकते हैं, क्योंकि इसके जितनी भी प्रजातियां हैं सभी प्रजातियां 90 दिनों से कम अवधि में लगभग 85 दिन में पक कर के तैयार हो जाती हैं, 80 से 85 दिन में पक के तैयार हो जाती हैं। अर्थात 3 महीने की बुआई से 3 महीने के अंदर ही आप ये कट के तैयार हो जाती हैं। तो हम लोग देखिए इसकी बुआई इवन मसूर है, चना है, सरसों है और कुछ क्षेत्रों में गेहूं की कटाई के बाद भी गर्मी में इसका उपयोग बुआई कर लेते हैं। तो गर्मी में भी एक अच्छा समय होता है, 15 मार्च से लेके 15 अप्रैल के बीच में हम बुआई कर सकते हैं। दूसरा एक सबसे अच्छा समय चल रहा है जिसको हम खरीफ की फसल कहते हैं। तो खरीफ में हमको जो ही बरसात का पानी मिल जाता है हम बुआई कर दें। अभी देखिए इस बार बरसात थोड़ा सा लेट हो रहा है, तो अभी इसका उपयुक्त समय है। अभी हम आज के डेट से इसकी बुआई करें और 15 जुलाई तक इसकी बुआई कर लेंगे तो हमको ज्यादा लाभ मिलेगा। अब प्रश्न उठता है कि कैसे करें। तो देखिए सावा मिलेट एक बहुत ही मोटा अनाज की फसल है, अर्थात इसको हम कहीं भी थोड़ा बहुत जुताई करके सीड को किसान फेंक देता था तो भी कुछ न कुछ उत्पादन दे देता था। आज हम लोग इसको थोड़ा सा वैज्ञानिक तरीके से करने की सलाह देते हैं। तो इसके लिए होता है कि हम इसकी खेत की 2 से 3 बार अच्छे से जुताई कर लें, खेत जो है ऐसा कर रखें जिसमें पानी का कभी जमाव ना हो, ऊपरी जमीन में ही बुआई करें। तो खेत को अच्छे से तैयार करके अब हम इसमें बीज दर की बात करें तो प्रति एकड़ मात्र 4 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। और किसान भाई इसकी बुआई जो करें वो बेहतर हो कि कतारों में करें। कतार से कतार की दूरी हम लोग कहते हैं 22.5 सेंटीमीटर, अर्थात लगभग 9 इंच की दूरी पर कतार से कतार की दूरी रखना है। और गहराई जो बीज का हो उसका विशेष ध्यान देना है कि किसी भी दशा में 1 इंच से ज़्यादा गहराई पर बुआई इसकी नहीं करना है, अर्थात जो गहराई है बुआई की वो 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखनी है और कतार से कतार की दूरी 22.5 सेंटीमीटर अर्थात 9 इंच पर करना है। किसी कंडीशन में हम 25 सेंटीमीटर पर अर्थात 10 इंच की 9 से 10 इंच तक हम इसको कतार से कतार की दूरी रख सकते हैं। बहुत अच्छा इसका पौधा उत्पन्न होता है और अच्छा लाभ मिलता है। अब बात आता है इसमें जो है बोने की विधि का। तो बोने की हमारी कई विधियां हैं, जैसे हम कतारों में बोएं फ्लैट बेड पर, और जिन क्षेत्रों में थोड़ा बहुत जल जमाव की समस्या होती है वहां आजकल हम लोग क्या करते हैं चौड़ी चौड़ी बेड बना देते हैं। बेड की चौड़ाई हम लोग लगभग 90 सेंटीमीटर रखते हैं, उस पर 4 लाइन समा की जाती है जिसको हम लोग BBF मेकर बोलते हैं, ब्रॉड बेड एंड फरो मेकर। तो जिन किसान भाइयों के पास रेज बेड मेकर या BBF मेकर है वो लोग थोड़ा सा रेज बेड पर या BBF पर इसकी बुआई करें और वहाँ भी स्पेसिंग 9 से 10 इंच की दूरी पर कतार से कतार में बुआई करें। उससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर किसी दिन बहुत ज़्यादा बरसात हो जाती है तो जो BBF 90 सेंटीमीटर या BBF 150 सेंटीमीटर वाइड हम बेड बनाते हैं तो उसके बाद 30 सेंटीमीटर का फरो भी होता है, तो जो बरसात ज़्यादा होगा तो बेड पर का पानी फरो में जाते हुए कतार कूड़ों में जाते हुए वो बाहर निकल जाती है। तो इससे कहता है कभी भी पौधे के जड़ के पास जल जमाव नहीं होता, उससे फसल का उत्पादन जो है 20 से 25% बढ़ जाती है और कम खाद में 25% खाद भी कम देना पड़ता है उसमें। तो बेहतर होगा हमारे बिहार राज्य के सभी जिलों के किसानों से मैं जो है निवेदन करूंगा कि हो सके तो इसको रेज बेड या बीबी ब्रॉड बेड एंड फरो पर ही बुआई करें तो इससे ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब बात आती है इसमें जो है इसका कौन कौन सी प्रजातियां कल सिलेक्शन करें। तो देखिए प्रजातियों के जब सिलेक्शन की बात करते हैं तो अभी तक हमारे बिहार किसी विश्वविद्यालय में हम लोग बहुत से लोकेशन पर रिसर्च कर रहे हैं। अभी हम लोग भी अपनी प्रजातियों को निकालने के स्थिति में आ चुके हैं, एक साल में बाद हमारी प्रजातियां आ जाएंगी। लेकिन बाहर की जो प्रजातियां हम लोग टेस्ट किए हैं उसमें अधिक उत्पादन देने वाली एक प्रजाति है DHBM 23-3। ये प्रजाति इतनी अच्छी है कि इसकी उत्पादन क्षमता 12 क्विंटल प्रति एकड़ है और मात्र 85 दिन में पक्के तैयार हो जाती है। दूसरी प्रजाति राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय समस्तीपुर से निकली है, जिसको हम बोलते हैं RAU-3, और अगला प्रजाति है RAU-9। तो ये दोनों प्रजातियां राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय से निकली हुई हैं और इनकी उत्पादन क्षमता है करीब 9 क्विंटल प्रति एकड़ तक, तो इसको भी लगा सकते हैं और औसतन ये 85-86 दिन में पक्के तैयार हो जाती हैं। और कुछ प्रजातियां हैं बाहर की, VL-207, VL-172, ये दोनों प्रजातियां भी लगभग 9 क्विंटल प्रति एकड़ की उत्पादन देती हैं और लगभग 85 दिन में पक्के तैयार हो जाती हैं। VL-29 भी एक सावा की अच्छी प्रजाति है जिसकी उत्पादन क्षमता करीब करीब 10-11 क्विंटल है और ये बहुत ही हाई यील्डिंग है। इसकी भी प्रजाति कहीं से भी मिल जाए किसान भाइयों को तो लगा सकते हैं, तो VL-29 भी ले सकते हैं और इसका उत्पादन क्षमता है करीब 10 क्विंटल प्रति एकड़ और ये पककर तैयार होती है लगभग 88 दिन में। तो इस तरह से सांवा की जो 5-6 प्रजातियां हैं सिर्फ इन्हीं को लगाएं, और वैसे तो बहुत सी प्रजातियां हैं लेकिन कम उत्पादन वाली प्रजातियों को न लगाएं।
1: जी सर, अगर हम खरपतवार प्रबंधन की बात करें तो खरपतवार प्रबंधन किस प्रकार से किया जा सकता है?
2: देखिए सांवा मिलेट्स चूंकि एक तरह से ड्राई लैंड की फसल है, वर्षाधारित फसल है, तो इस सभी फसलों में खरपतवार का ज्यादा अतिक्रमण होता है। खरपतवार का समय पर नियंत्रण नहीं किया जाता है तो उत्पादन में भारी गिरावट हो जाती है। इन फसलों को कोशिश करना चाहिए कि बुआई के 10 दिन बाद से लेकर 35 दिन तक खेत जो है खरपतवार से मुक्त रहे। तो उसके लिए बहुत सी प्रजातियां, बहुत सी विधियां हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग खेत की तैयारी अच्छे से करें। अगर हो सके तो गर्मी में अगर हम खेत को 7-8 दिन जोत करके सूखने के लिए छोड़ देते हैं तो बहुत से खरपतवार जो पेरेनियल वीड्स हैं, बहुवर्षीय खरपतवार हैं, उनकी जो जड़ें हैं, सकर्स हैं, वो सब नष्ट हो जाती हैं धूप की वजह से। उसके बाद अगर हम देखें तो उसकी बुआई करें, और बहुत से हमारे ड्राई लैंड वीडर हैं जैसे कि सिंह हैंड हुआ है, शर्मा हैंड हुआ है। आजकल क्या है कि 20-22 हज़ार रुपये में जो पावर वीडर आ रहे हैं उसका भी उपयोग करके हम कतारों के बीच में मैकेनिकल वीडिंग कर सकते हैं। अगर हमें केमिकल उपयोग करना है तो बुआई के तुरंत बाद हम लोग हर्बिसाइड है पेंडीमिथिलीन, इसका उपयोग करते हैं। उसके लिए 750 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से देते हैं। अगर हम किसान भाइयों के शब्दों में बोलें तो प्रति टंकी पानी में लगभग एक टंकी में 15 लीटर पानी होता है, तो आपको 30 ml पेंडीमिथिलीन डालना है, 30 ml पेंडीमिथिलीन प्रति 15 लीटर पानी में डालना है, और एक एकड़ में करीब 8-9 टंकी पानी या 8-10 टंकी पानी उपयोग में करें। तो इस तरह से बुआई के 24 घंटे के भीतर, अर्थात आपने बुआई कर दिया, उसके तुरंत बाद आप इस पेंडीमिथिलीन को 30 ml प्रति 15 लीटर की टंकी में घोल करके आप स्प्रे कर दीजिए, तो अगले 7-8 दिन तक खरपतवार नहीं आते हैं। फिर उसके बाद इसमें एक दवा है 2,4-D, 2,4-D तीन ग्रुप में आती है, जो है एक 58% का होता है, एक जो है आपका करीब कम डोज का होता है 30% के आसपास। तो अब हमको देखना है कि हम कौन सा, एक पाउडर वाला होता है 80% का, तो अगर हम 58% वाला लेते हैं बाजार से तो उसका करीब 22 ml प्रति टंकी पानी यानी 1.5 ml प्रति लीटर की दर से देना है, और बुआई के 20-22 दिन पर हमें स्प्रे कर देना है। इससे क्या होगा, मुख्य रूप से जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और सकरी पत्ती वाले जो खरपतवार बचते हैं या जो थोड़ा बहुत और खरपतवार बचते हैं उसको हमें 2-4 लेबर लगा करके मैनुअली निराई करनी होती है। क्योंकि ये सभी फसलें जो है हमारे मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी होती हैं, इसलिए इसमें हम बहुत ज़्यादा हर्बिसाइड का प्रयोग करें या केमिकल का प्रयोग करें तो थोड़ा सा उचित नहीं होता है, इसलिए कम से कम हमें हर्बिसाइड का प्रयोग करना है। तो ये जो हमने विधि बताई, इस तरह से हम खरपतवार का कुछ हद तक प्रबंधन कर सकते हैं। बचा खोचा हमें मैनुअली ही मानव द्वारा खरपतवारों को निराई करके से बाहर करना है।
1: जी सर, अगर हम उर्वरक प्रबंधन की बात करें तो सावा मिलेट्स में उर्वरक प्रबंधन किस प्रकार किया जा सकता है?
2: ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जितने भी ये हमारी श्री अन्न की फसलें हैं, इनमें कम खाद कम पानी की जरूरत होती है। अब ये देखिए कि कम खाद कम पानी में आपको ज्यादा पोषण देती हैं, इसीलिए इनके पोषण वैल्यू को ध्यान में रखते हुए इनका नाम सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने पोषक अनाज रखा। फिर इनके महत्व को और देखते हुए इनको थोड़ा और सम्मान दिया गया, इनका नाम 2023 में श्री अन्न रखा गया। तो आज के डेट में हम श्री अन्न कहें या पोषक अनाज कहें या मोटा अनाज कहें, सब एक ही है। लेकिन मोटा अनाज अब कहने में थोड़ा सा कहीं न कहीं से इनके सम्मान को धूमिल करने के बराबर है, इसलिए श्री अन्न कह करके ही इनको हम थोड़ा सा सम्मान दें। तो जो श्री अन्न की फसलें जिसमें सावा भी शामिल है, इसमें जैसा हमने पहले कहा कि कम खाद की जरूरत पड़ती है, तो देखा जाए तो प्रति हेक्टेयर मात्र 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 25 से 30 किलोग्राम फास्फोरस और 25 किलोग्राम पोटाश की जरूरत पड़ती है। अगर किसान भाइयों को हम बोलें तो अपने फसल में ये लोग एक बोरी यूरिया, एक बोरी डीएपी और आधा बोरी पोटाश प्रति एकड़ व्यवहार करें। पोटाश एवं फास्फोरस की पूरी मात्रा बुआई के समय खेतों में कतारों के बीच में दें या खेतों में मिलाकर के जुताई कर दें, जबकि नाइट्रोजन को हम दो भाग में स्प्लिट करेंगे, दो भाग में बांट के देंगे। पहला नाइट्रोजन यूरिया के माध्यम से, जैसे हमने बोला एक बोरा यूरिया पर्याप्त हो जाता है, तो 25 किलोग्राम प्रति एकड़ बुआई के जो है 20 से 22 दिन पर, अगला 20 किलोग्राम हम बुआई के लगभग 50 दिन बाद जब इसमें बालियां निकलनी होती हैं। बालियां निकलने के करीब एक महीने बाद ये पक्के तैयार हो जाते हैं। अगर 50-52 दिन पर बालियां निकल रही हैं तो 82-84 दिन पर ये पक्के तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से यूरिया को कम से कम दो बार में बांटना है। तो किसान भाइयों, आपके लिए अगर हम थोड़ा सा आपकी भाषा में बात करें तो एक बोरा यूरिया, एक बोरा डीएपी और आधा बोरा पोटाश प्रति एकड़ आपको देना है। पोटाश और डीएपी की पूरी मात्रा बुआई के समय देना है, खेतों में मिला देना है, जबकि यूरिया का पहला डोज आपको 25 किलोग्राम से प्रति एकड़ देना है बुआई के 20 से 22 दिन पर। इससे देने से कल्ले और टिलर अच्छे निकलते हैं और ग्रोथ अच्छा होता है। दूसरा डोज देना है जब बालियां निकलने लगे, मतलब बुआई के लगभग 50 से 52 दिन पर, तो अच्छा आपको इसका लाभ मिलता है, उत्पादन अच्छी होती है। और मैं किसान भाइयों से बताना चाह रहा हूं कि हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय में सावा की जो अच्छी प्रजाति है DHBM 23-3, इसका बीज उपलब्ध है। इसकी उत्पादन क्षमता है 10 से 11 क्विंटल प्रति एकड़, मात्र 85 दिन में पक्के तैयार होने वाली प्रजाति है DHBM 23-3। इसका बीज यथाशीघ्र हमारे यहाँ से प्राप्त कर लें और ये बीज हम प्रगतिशील किसानों को निःशुल्क देंगे। दूसरी प्रजाति हमारे पास VL 29 भी है, इसका सीड थोड़ा कम है, लेकिन जो भी हमारे पास 10-20 किसान अभी आ जाएंगे उनको भी हम फ्री में ये बीज अभी देंगे, अपने खेतों पे लगाएं और लाभ उठाएं। धन्यवाद
1: जी सर। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि श्री अन्न की खेती किस प्रकार से किसान भाई बहन कर सकते हैं और ये बहुत ही उपयोगी है जैसा कि आपने बताया। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप सावा मिलेट्स की खेती करेंगे और आप अधिक मुनाफा भी कमाएंगे। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। उन्नत कृषि,
3: नमस्ते क्लास। टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
4: जी
3: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
4: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
3: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: इन पंछियों को मुझे आई एक भूली कहानी याद।
6: कौन सी कहानी टीकी?
5: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
7: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
5: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
6: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
5: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
8: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
5: सुनो सुनो सुनो सभी एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो, तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
9: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
5: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
8: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी।

0: करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
3: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
2: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
3: आपकी सेहत की बातें,
2: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
3: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
2: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
3: वो कहाँ पर?
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
3: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 8 जुलाई से 12 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। साथ ही इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 8 से 12 जुलाई के दौरान 15 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, पिछले कुछ दिनों में वर्षा हुई है, इसलिए आप वर्षा के जल का लाभ उठाते हुए धान की सबौर दीप किस्मों जैसे प्रभात, शुष्क सम्राट, सहभागी की बुआई 10 जुलाई तक जरूर कर दे। और किसान भाई बहनों, बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए कार्बन डाइजिन की 2 ग्राम मात्रा को 1 किलोग्राम बीज उपचारित करने के लिए इस्तेमाल करे। और ध्यान दे कि 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई जरूर करे। मध्यम अवधि वाली धान की किस्में जैसे राजेंद्र नीलम, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र श्वेता की रोपाई कर सकते हैं। और धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी की जा सकती है। किसान भाई बहनों, अगर आप श्री अन्न की खेती करना चाहते हैं तो ध्यान दें, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें और मड़ुआ की वकुला KMR 316 GPU 67 VL 379 राजेंद्र मड़ुआ RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1 इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, उचास जमीन में अरहर की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1, राजेंद्र अरहर 2 इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। और ध्यान दे कि अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का उपयोग करना बिल्कुल न भूले। और किसान भाई बहनों, अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दे, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना ना भूले। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3 और गंगा 11 है। जिनके खेत में मूंग लगा है उन्हें बता दे, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो किसान भाई बहन सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, भिंडी, कद्दू, खीरा, निनुआ और लौकी जैसी फसलों में निराई गुड़ाई करते रहें और खरपतवार नियंत्रित रखें। ध्यान दे कि पत्ती खाने वाली सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करना जरूरी होता है। और अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमेथोएट 30 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करे। ध्यान दे कि छिड़काव तभी करे जब आसमान साफ हो। खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। और स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में गोबर की खाद डालना बहुत जरूरी होता है। खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्री फाउंड डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और ध्यान रखें कि बीज गिराने के पहले बीजोपचार जरूर कर लें। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचों में जरूरत के हिसाब से छटाई कर लें, जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचे में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा कर हटा दें। इससे कीट और रोगों के प्रकोप में कमी आएगी और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलेगा। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, महीने के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, इसलिए ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में टीके नहीं लगाए हो तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जाँच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

that you know ki all the four stages will be available, egg, larva, pupa and adult. Aur ye charo jo alag alag stage hain, ye charo alag alag stage ka habit, habitat, food etc ka requirement alag alag hai. Aur ye alag alag hone ke karan, matlab alag alag hone se hi isko advantage mil raha hai ki they can access different types of food in different stages of their life cycle, right? And insects have various interesting types of defense mechanism. Some defense mechanisms behavioral hota hai, kuch hota hai structural, kuch hota hai colorational, kuch hota hai केमिकल सिक्रेट करने से. एक ऐसा इंसेक्ट है, मैं बताया था आपको, क्लिक बिटल बोल के एक इंसेक्ट है जिसको टच करने से वो मरने का ढोंग करते, मतलब एक तरह से दे प्रिटेंड एज इफ दे इट इज डेड. इस बिहेवियर को बोलते थैनाटोसिस. सो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है टू एस्केप इट्सेल्फ फ्रॉम इट्स एनिमी. So enemy will think that the prey is dead, or dead ke upar wo feed nahi karenge. So enemy will walk away or fly away, and once again when the enemy is gone, that click beetle will do its own work because it is not actually dead. Some structural defense mechanisms are also there. For example, beetles आप सभी लोगों ने देखा है, कलेक्शन भी किए हैं, क्लास में भी देखे हैं. उस beetles के ऊपर बहुत ही hardened फोर विंग्स रहते हैं जिसको हम लोग elytra भी बोलते हैं, राइट? तो वो एक स्ट्रक्चरल डिफेंस मैकेनिज्म है. आप एक beetle को पकड़ के अगर क्या बोलते हैं सरफेस में थ्रो भी करेंगे, it will not get died. Because it is having a very protective cover on its body. कुछ insects होते हैं जो बहुत ही beautifully camouflage करते हैं habitat में. इसको बोलते हैं colorational defense mechanism. मतलब habitat का जो color है उसका color भी same है. तो अगर color जिस for example किसी plant के leaf में है और आपको पता ही नहीं चल रहा कि वहां पे एक insect भी बैठा हुआ, क्योंकि leaf का color उसके color के साथ match कर रहा है. किसी फ्लावर में एक इंसेक्ट बैठा है, उस फ्लावर का जो कलर है उस इंसेक्ट का भी कलर वही है. सो दैट मींस ये जो कलरलेस कलरेशनल डिफेंस मैकेनिज्म है, ये एनिमीज को एक तरह से बुर्बक बनाते हैं कि वो ढूंढ नहीं पाते एक्चुअली वो इंसेक्ट वहां पे है या नहीं है. कुछ इंसेक्ट्स डिफेंस केमिकल भी सिक्रेट करते हैं. यू नो ब्लिस्टर बिटल, इफ यू टच द ब्लिस्टर बिटल immediately ऑरेंज कलर का एक डिफेंस केमिकल आपके हाथ में लगेंगे. आपके हाथ में लगेंगे मतलब क्या कि एनिमीज भी उसको टच करेंगे तो एनिमीज के बॉडी में लगेगा, तो एनिमीज के बॉडी के ऊपर इरिटेशन होगा एंड इट विल नॉट ट्राई टू फीड ऑन दैट वन. और आपको तो बीज वस्क के बारे में मालूम है ही कि आप बीज को कभी नहीं पकड़ना चाहते, वस्क को कभी नहीं पकड़ना चाहते, क्योंकि इट विल इमीडिएटली इंसर्ट इट्स स्टिंगर inside your body and it will insert the poison at the same time. And last but not the least, the factor which is important for dominance on this planet is hexapod locomotion. Sare insect ke case mein aapko malum hai ki they are having three pairs of legs. Ab ye three pairs of legs rehne ke karan इसको लोकोमोशन में बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलता है. सारे छह लेग वन स्टेप में, जब एक स्टेप जब लोकोमो एक स्टेप फॉर एग्जांपल वॉकिंग या रनिंग में जब एक कॉकरोच के बात करें तो क्या होता है, कोई तीन लेग मूव कर रहा होता है और बाकी तीन लेग, मतलब तीन पेयर है ना, तो तीन पेयर में से तीन लेग मूव कर रहा होता है और बाकी रेस्ट ऑफ द थ्री लेग्स दे आर बैलेंसिंग द बॉडी. एंड इट ऑल्टरनेटिवली जो
पहले बैलेंस कर रहा था, और नेक्स्ट स्टेप में वो क्या करेंगे,

0: लोकोमोशन में हेल्प करेंगे, बाकी बॉडी बैलेंस में काम हेल्प करेंगे। सो इस तरह से इसको बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी मिलता है और अल्टीमेटली इट हेल्प्स द इंसेक्ट इन डोमिनेटिंग द प्लैनेट। नेक्स्ट टॉपिक इज योर क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा आपको अप टू क्लासेस। सबसे पहले आपको आर्थ्रोपोडा का कैरेक्टरिस्टिक्स, जो 6-7 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने क्लास में आपको डिस्कस किए हैं, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आप बढ़िया से उसको गो थ्रू करेंगे। एंड देयर आफ्टर जो डिफरेंट क्लासेस हैं अंडर द फाइलम आर्थ्रोपोडा, फॉर एग्जांपल देयर आर हाउ मेनी क्लासेस अंडर द फाइलम आर्थ्रोपोडा, देयर आर 7 क्लासेस राइट। ऑनिकोफोरा, क्रस्टेशिया, चिलोपोडा, डिप्लोपोडा, एराक्निडा, ट्राइलोबीटा एंड हेक्सापोडा। ये जो क्लासेस है और उस क्लासेस का जो जो प्रोमिनेंट योर कैरेक्टरिस्टिक्स है अलोंग विद द योर सम एग्जांपल्स यू मस्ट रिमेंबर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वाज योर स्ट्रक्चर ऑफ हेड, व्हिच आई इन योर प्रैक्टिकल क्लासेस, इन योर थियोरी क्लासेस आई हैव डिस्कस्ड इन ग्रेट डिटेल। सो टू रिकॉल दैट वन, to help you recalling that one, and I'll suggest you to draw the diagram first regarding to remember the different sclerites and sutures which are available on the facial portion of the insect head. ये mid term में आपका question भी था, आप लोगों ने उसको किए भी है, but फिर से उसको practice करना is very important. And then different orientation of insect head, and you know that there are 3 different orientations. One is pronathus, means the head and the appendages of the mouth parts are projected forward, usko bolte pronathus. Ye pronathus condition aapko milta hai beetles mein, that's why this pronathus condition also is known as beetle type, or it is also known as coleopteroid type, correct. Next jo orientation of insect head tha, that is known as hyponathus. Hyponathus condition mein kya hota hai ki the appendages of the mouth parts, they are projected vertically, means the angle which is created between the long axis of the insect body and the long axis of the appendages of the mouth parts, that is 90 degree, right. And the last but not so, yes, what I was forgetting was this hyponathus type. Hypognathus bhi bol sakte ho, hyponathus bhi bol sakte ho, because G is silent here. Hyponathus type is found in case of your grasshoppers, cockroaches also you can get this hyponathus type. That's why it is also known as orthopteroid type, right. And then the last one, orientation of insect head, is known as your opisthonathus. In opisthonathus condition, what happens is the appendages of the mouth parts, they are projected backward. So an acute angle is created between the long axis of the body and the long axis of the proboscis or the mouth parts. And it is found in case of your bugs. And you know that bugs, they belong to the order Hemiptera. That's why this opisthonathus condition is also known as bug type or hemipteroid type. Isko iska ek aur naam hai opisthorhynchus. So main jab bol raha hu tab aap isko pause karke ya kabhi ek dobara sun ke aap usko note down bhi kar sakte hain. And then insect head mein bahut sare cheeze humne discussion kiye the, wo sare cheez is audio recording mein bolna sambhav nahi hai. But definitely you must remember different sclerites which are available on the insect head, for example vertex, fronds, clypeus, genera, and then your labrum also, and your different sutures like inverted bicipital suture is also known as epicranial suture or ectasial cleavage line. So aap isko diagram bana ke agar practice karenge to aapko आसानी रहेगा, क्वेश्चन में भी अगर ब्रॉड क्वेश्चन भी आता है तो आप डायग्राम बना के ही करेंगे, थोड़ा सा लिख लेंगे। एंड देन फ्रंटोक्लाइपियल सीवचर, इसका एक और नाम है, बहुत बार ये क्वेश्चन में आया हुआ है कि व्हाट इज एपिस्टोमल सीवचर। सो एपिस्टोमल सीवचर सुन के घबराने की जरूरत नहीं है, दैट इज एक्चुअली फ्रंटोक्लाइपियल सीवचर, मीन्स द सीवचर व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन फ्रॉन्स एंड क्लाइपियस राइट। आपका सीनियर्स का जो JRF क्वेश्चंस होते हैं, इसरे में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसी जगह से कि व्हाट इज द ट्रू सीवचर व्हिच इज अवेलेबल ऑन द इंसेक्ट हेड। एंड द ट्रू सीवचर आई प्रोबेबली हैड मेंशन्ड इन योर क्लास आल्सो, इट इज पोस्ट ऑसिपिटल सीवचर। नाउ द फंक्शंस ऑफ इंसेक्ट हेड, यू नो दैट इंसेक्ट हेड का फंक्शन मेनली फूड इंजेशन में होगा, सेंसरी परसेप्शन में होगा, कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडीली एक्टिविटीज में होंगे एंड प्रोटेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेटिंग सेंटर्स में होंगे, राइट। एक और चीज कि हाउ मेनी सेगमेंट्स आर देयर ऑन इंसेक्ट हेड। सो इन योर हैंडआउट एंड ऑल्सो द बुक विच इज नोन एज इंसेक्टा written by Raghumurthy and the other co-authors, they are telling that the insect head is composed of 6 different segments. But at the same time, the insect's structure and function, bolke jo kitab hai, very prominent author known as Chapman Saab, he says that recent molecular evidences suggesting that insect head is composed of 7 segments. So there are always an ambiguity ki what is the exact number of the segments which are present on the insect head, right? And then the next topic was your structure and modification of insect antennae. So I'm very glad that some of the students have submitted their assignments for the practical examination. They have submitted the diagrams of all the 15 different types of insect antennae. So my suggestion will be you draw once again on your copy and you practice it. And you must remember the example. And the other name of that type, for example, जेनिक्यूलेट एंटेना। तो जेनिक्यूलेट एंटेना को हम डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज एल्बो लाइक, दैट्स इट। एंड ऑन द राइट हैंड साइड यू कैन ड्रॉ द डायग्राम। सो इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द ब्रॉड क्वेश्चन सेक्शन, राइट डाउन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट एंटेनी और द मॉडिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट एंटेनी। सो यू ड्रॉ द डायग्राम्स ऑफ ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट एंटेनी यू आर रिमेंबरिंग एंड यू एक्सप्लेन इट इन 2-3 वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल जेनिक्यूलेट एंटेना का आपने डायग्राम ड्रॉ किए है तो राइट हैंड साइड में आप क्या लिखेंगे, या लेफ्ट हैंड साइड में अगर लिख रहे हैं तो राइट हैंड साइड में डायग्राम बनाएंगे तो लिखेंगे क्या कि एल्बो लाइक जेनिक्यूलेट एंटेना ब्रैकेट में एल्बो लाइक एंड यू गिव द एग्जांपल, यू नो इट कि एंट्स बीज वस्प एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल सीटासीएस एंटेना एट द सेम टाइम लाइक वाइज यू कैन राइट डाउन ब्रिसल लाइक एंड यू राइट डाउन द एग्जाम्पल्स लाइक ड्रैगन फ्लाई रैम्सल फ्लाई फिली फॉर्म थ्रेड लाइक मोनिली फॉर्म बीडेड टर्माइट सेरेट सॉ लाइक लॉन्गिकॉर्न बीटल यूनिपेक्टिनेट मीन्स वन साइडेड कॉम लाइक एग्जाम्पल सॉफ्ट लाइक। सो ऑलवेज यू ड्रॉ द डायग्राम बाइपेक्टिनेट ऑन बोथ द साइड कॉम्स विल बी प्रेजेंट सिल्क वर्म मॉथ वी गेट। क्लैबेट और कैपिटेट को हमने क्लास में एक साथ डिस्कशन किए थे, आपको आप याद करेंगे कि क्लैबेट में क्या होता है, ग्रेजुअल इंक्रीमेंट इन द डायमीटर ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ द एंटेना टुवर्ड्स टिप। In case of blister beetle, we get this your clavate type antenna. Capitate mein kya hota hai? Capitate mein suddenly the terminal segment of the antenna is swelled. In butterflies, we get this type. In lamellate, it is described as plate-like. In scarabate beetle, means your dung beetles, we get this lamellate type. Aristate, you have dissected in your practical your classes as well as in your practical examination. All of you have done well. It is found in housefly. So aristate matlab hai pouch like. Stylet antenna you have got in your rubber fly. Then plumose and pylos, ye dono humne ek sath discussion kiye the ki plumose matlab hai feathery and it is found in male mosquito, right? Pylos matlab less hairy. Between the segments jo hota hai antenna ke jo different segments, between the segments only hairs will come out from that part. But in case of plumose, all over the irrespective of the segment and the body of the segments, the hairs will be found. Geniculate I have already discussed, and flabellate means fan like and you get this type of antenna in case of your stylopids, right? So this was about structure and modification of insect antenna. So you have to remember the function of the antenna also. I hope that 4-5 functions you are remembering. I'm not discussing that one. And structure wise, you draw the diagram of geniculate, you practice the diagram of the geniculate antenna, and that can be the diagram of a generalized insect antenna, and you label the portions like your antennal sclerite, antennal suture, which is followed by your main part, the first part of the insect antenna, first segment, which is known as scape, and then pedicel, followed by flagellum. May I ask you, and all of you who are listening to this audio may try to answer it, inside which portion of the insect antenna Johnston's organ is found? I'm giving you 5 seconds time. So that is, you're right, that it is pedicel inside which Johnston's organ is found. So this Johnston's organ is composed of several ganglia, right? In fact, thousands of ganglia maybe. And in mosquitoes, that organ helps the mosquito in hearing. However, in other insects, वो सुनने के लिए अलग से appendage है, जिसको बोलते हैं tympanum. So this was about your structure and modification of insect antenna, and then I'm seeing the syllabus of this course, different types of mouth parts of insects. If you remember the second practical class, you had dissected the mouth parts of cockroach. और cockroach, grasshoppers, जो भी insects चबा चबा के खाने वाला होता है उसका mouth parts को बोला जाता है biting and chewing type mouth parts. So this is the primitive mouth parts which the insects were having. And till now, there are several groups of insects which are were having this type of your mouth parts. So this is the basic type of mouth parts जो आपको जिसका different appendages को draw करके diagram draw करके आपको याद रखना होगा, मतलब practice करना होगा. For example, जो first appendage upper part of the mouth parts में रहता है, mouth का रहता है, that is known as labrum. It is just like our upper lip. जैसे हम लोगों के केस में upper lip है, उनके केस में, insect के केस में भी chewing and biting type mouth parts में upper lip को बोलते हैं labrum. You know it. Or if you flip the labrum, then you get the labrum epipharynx. तो insect mouth में, insect का mouth cavity में कोई organ of taste नहीं रहता है. हम लोगों के केस में जैसे mouth cavity के अंदर tongue, T-O-N-G-U-E, तो that acts as organ of taste. But in insect, that labrum epipharynx acts as organ of taste. अब ये हो गया लैब्रम का बात. अब लैब्रम का आप छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, उसके पास में उसका स्ट्रक्चर लिखेंगे, फंक्शन लिखेंगे. फंक्शन जब लिखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा कि होल्डिंग द फूड फ्रॉम द टॉप. हम लोगों के लिप का जैसे फंक्शन है, उसका लिप का भी, अपर लिप का भी वही फंक्शन है. इन एडिशन टू दैट, जैसे हमारा लिप क्या करते हैं, हम लोगों का टीथ को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उनके केस में लैब्रम के ठीक नीचे दोनों तरफ मैंडिबल्स रहता है, उस मैंडिबल्स का बेस को प्रोटेक्ट करके रखते हैं. ये हो गया लैब्रम. देन यू कम टू मैंडिबल्स. मैंडिबल्स, एज आई हैव सेड, कि दोनों तरफ लैब्रम के ठीक नीचे मैंडिबल्स रहते हैं, और मैंडिबल्स आर द मेन, योर मेन और प्राइमरी जॉज यू कैन से. चीविंग एंड बाइटिंग टाइप माउथ पार्ट्स में मैंडिबल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज मैंडिबल्स में दो तरह का टीथ होते हैं. फ्यू टीथ दे आर एबल टू काट द फूड इंटू पीसेस which are available at the distal end of the mandibles, and some teeth are available at the base of the mandibles which are not very sharp, they are blunt, aur ye blunt hone ke karan hi they can masticate, wo crush kar sakte, masticate kar sakte, grind kar sakte, so they are known as molar teeth or grinder teeth. Diagram banaoge, function likhoge. मैंडिबल्स के ठीक नीचे और आ जाओ, दोनों तरफ यूल गेट मैग्जिला. मैग्जिला को सेकेंडरी जॉ भी कहते हैं. मैग्जिला का डायग्राम को रिकॉल करो, आपका जो क्लास में जो आप ड्रॉ किए थे उसमें देखेंगे कि सबसे प्रॉक्सिमल पोर्शन में पोर्शन इज नोन एज कार्डो विच इज अटैच्ड विद द क्रैनियम एंड कार्डो इज फॉलोड बाय लॉन्ग पोर्शन विच इज नोन एज स्टाइप्स. स्टाइप्स का बेस से मैक्सिलरी पल्प निकलता है, एंटेना जैसे दिखता है, सेगमेंटेड. हाँ, स्टाइप्स का एकदम डिस्टल एंड पे चले जाओ. डिस्टल एंड पे जाने के बाद आपको दो लोब दिखता है, टू लोब्स यू फाइंड. वन इज इनर लोब, अनदर इज आउटर लोब. इनर लोब इज स्पाइनी और इट इज हेयरी. दैट लोब इज नोन एज लैसिनिया. आउटर लोब इज ब्लंट, इट इज नोन एज गैलिया. सो ये हो गया आपका मैक्सिला स्ट्रक्चरली. फंक्शनली क्या होगा? डेफिनेटली जब आप मैक्सिला पेयर्ड स्ट्रक्चर है तो पेयर्ड स्ट्रक्चर होने के कारण विद द हेल्प ऑफ लैसिनिया एंड गैलिया, मेनली लैसिनिया एंड द मैक्सिलरी पल्प, दे कैन ग्रिप द फूड. फूड को ग्रिप करके एंड देयर आफ्टर इट ब्रिंग्स ऑल्सो टुगेदर, इट विल ब्रिंग द फूड इनसाइड द माउथ कैविटी. सो ग्रिपिंग द फूड एंड ब्रिंगिंग द फूड टुवर्ड फूड इनसाइड द माउथ कैविटी इज द मेन फंक्शन ऑफ दिस मैक्सिला. In addition to that, because maxillary pulps are present, pulpi are present, and pulpi always are sensory, you know. So, in sensing where exactly the food is there, it helps in detecting the presence of the food. And then, at the center of the mouth cavity, like us, हम लोगों के जैसा, हम लोगों का center of the mouth cavity में जैसे tongue है, T-O-N-G-U-E. In case of insects, in case of chewing and biting type mouthparts, they also are having a tongue-like structure. Because in your class, I have discussed that there is a difference between our tongue and insects' hypopharynx. So hypopharynx is a tongue-like structure, muscular structure. So the only function in chewing and biting type mouthparts regarding your hypopharynx is secretion of saliva. So the salivary duct opens through hypopharynx. That is its function, main function. Ab last jo appendage aapka chewing and biting type mouthparts mein hota hai, that is your labium. Jaise hum logo ke case mein lower lip hai, inke case mein labium hai. Ek complex structure zarur hai, डायग्राम बनाएंगे तो क्लियर होगा. लेबियम का जो प्रॉक्सिमल मोस्ट पोर्शन है, दैट इज नोन एज सबमेंटम. लेबियम का बिल्कुल बीच में एक इलिप्टिकल और ओवल शेप्ड एक सेगमेंट है, दैट इज नोन एज मेंटम. और जो डिस्टल पोर्शन है, बाकी रेस्ट ऑफ द पोर्शन है, दैट इज नोन एज प्रीमेंटम. प्रीमेंटम का बिल्कुल एपेक्स में, यानी कि डिस्टल एंड पे अगर आप जाएंगे, यू विल गेट टू पेयर्स ऑफ लोब्स. और ये टू पेयर्स ऑफ लोब्स में से जो इनर पेयर है, मतलब अंदर वाला जो पेयर है, दोज आर नोन एज ग्लॉसा. ग्लॉसा इज सिंगुलर, ग्लॉसी टुगेदर दे विल बी नोन एज ग्लॉसी. आउटर पेयर ऑफ लोब्स दे विल बी नोन एज, दे आर नोन एज पैराग्लॉसा. पैराग्लॉसी इज द प्लूरल. और अगर ग्लॉसा, पैराग्लॉसा, मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ ग्लॉसी एंड पैराग्लॉसी टुगेदर, दैट पोर्शन कैन बी लेवल्ड एज लिग्यूला. और ये जो प्रीमेंटम का जो अभी बात कर रहे हैं, प्रीमेंटम का बेस से आप देखे भी है कि वन पेयर ऑफ लेबियल पल्पी आर प्रेजेंट. एंड एज आई हैव सेड कि कोई भी पल्पी इंसेक्ट में प्रेजेंट हो तो उसका फंक्शन होगा सेंसरी. तो यहां पे लेबियल पल्पी का फंक्शन किस तरह का सेंसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट एक सेंसरी फंक्शन है, दैट इज डिटेक्शन ऑफ स्वीटेबिलिटी ऑफ द फूड. फूड के पास तो पहुंच गए इंसेक्ट ना, लेकिन वो फूड कंज्यूम करने लायक है कि नहीं, ये डिसाइड करेंगे कौन? ये डिसाइड करेंगे लेबियल पल्पी. सो दैट इज वन फंक्शन. अनदर फंक्शन इज डेफिनेटली होल्डिंग द फ्रूट फ्रॉम द बॉटम. जैसे हम लोग केस में लोअर लिप नीचे से फूड को होल्ड करते हैं, अपर लिप ऊपर से फूड को होल्ड करते हैं, सिमिलरली लैब्रम मतलब इंसेक्ट के केस में अपर लिप, ऊपर से फूड को होल्ड करते हैं. लेबियम इंसेक्ट के केस में लोअर लिप, नीचे से फूड को होल्ड करते हैं. सो ये हो गया आपका प्रिमिटिव माउथ पार्ट्स में से, जिसको बोलते हैं चीविंग एंड बाइटिंग टाइप. अब डिफरेंट मॉडिफाइड माउथ पार्ट्स भी हैं जो आपने क्लास में फॉलो किए हैं. मैंने एग्जाम्पल दिया था, मैंने आपको दिखाया भी था कि बटरफ्लाई के केस में. अब बटरफ्लाई को तो मैंडिबल्स का जरूरत नहीं है, बटरफ्लाई तो चबा चबा के नहीं खाएंगे. तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन, एक ग्रेट मॉडिफिकेशन होने का जरूरत है ना. तो वो मॉडिफिकेशन किस चीज का होगा, क्योंकि यू नो कि बटरफ्लाईज आर हैविंग ए कॉइल्ड लॉन्ग प्रोबोसिस. जब अनकॉइल करते तब लंबा दिखता है, कॉइल्ड रहता है तो स्प्रिंग लाइक रहता है. सो वेयर फ्रॉम दिस प्रोबोसिस इज अराइजिंग, व्हिच पार्ट ऑफ द प्रिमिटिव माउथ पार्ट्स हैज कन्वर्टेड इनटू प्रोबोसिस, दैट इज द गैलिया ऑफ मैक्सिली. दो जो मैक्सिली, मतलब दो मैक्सिले का दो गैलिया होगा आउटर लोब, ये इलोंगेटेड हो जाएंगे एंड दे आर जिपर्ड टुगेदर टू फॉर्म दिस कॉइल्ड प्रोबोसिस व्हिच इज अनकॉइल्ड व्हेन द बटरफ्लाई इज इन एक्शन, मींस व्हेन इट इज टेकिंग द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर. एंड दिस मॉडिफाइड माउथ पार्ट्स इज नोन एज साइफोनिंग टाइप माउथ पार्ट्स. ऑलराइट, अनदर मॉडिफिकेशन हाउस फ्लाई में आते हैं. यू नो कि हाउस फ्लाई के केस में एक स्पॉन्जी स्ट्रक्चर रहता है और वो स्पॉन्जी स्ट्रक्चर बाइलोब्ड होते हैं, मतलब दो लोब वाला स्पॉन्जी स्ट्रक्चर होगा. एंड दैट स्पॉन्जी स्ट्रक्चर इज नोन एज लैबेला, लैबेलम सिंगुलर, लैबेला प्लूरल. और वो लैबेला मतलब टिप ऑफ द प्रोबोसिस में माइन्यूट पोर्स रहेंगे, तभी तो वो स्पॉन्ज डेवलप करेंगे ना. वो माइन्यूट पोर्स को कहते हैं स्यूडो ट्रैकिया. सो यूजिंग दैट स्पॉन्जी स्ट्रक्चर कैपिलरी एक्शन के थ्रू द सेमी लिक्विड और सेमी सॉलिड फूड से वो लिक्विड को अपटेक कर लेते हैं. ये जो मॉडिफाइड माउथ पार्ट्स है जो हाउस फ्लाई में पाया जाता है, इसको बोलते हैं स्पॉन्जिंग टाइप माउथ पार्ट्स. इज दैट ऑल राइट? अपने डायग्राम बनाए थे, उस डायग्राम को फिर से प्रैक्टिस करेंगे और याद रखेंगे कि स्पॉन्जिंग टाइप माउथ पार्ट्स कहां पे पाया जाता है, हाउस फ्लाई में. देन लेट्स कम टू अनदर इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन, पियर्सिंग एंड सॉकिंग टाइप माउथ पार्ट्स. आप लोगों को पता है कि बग्स, कोई भी बग, वो भी तो चबा चबा के नहीं खाते, ना ही उसके पास कोई स्पॉन्जी स्ट्रक्चर है, ना ही उसके पास बटरफ्लाई जैसा कॉइल्ड प्रोबोसिस है. प्रोबोसिस जरूर है बट यहाँ पे अलग तरह का, क्योंकि मान लीजिए कि कोई एक बग प्लांट का टिश्यू से वो सैप को सक करना चाहते, सो इट हैज टू पियर्स द सरफेस ऑफ द प्लांट, चाहे लीफ हो या चाहे योर स्टेम हो. तो पियर्स करने के लिए उसको पियर्सिंग योर ऑर्गन चाहिए, अपेंडेज चाहिए. तो यहाँ पे ये जो बग्स होते हैं, वो बग्स में देयर विल बी फोर स्टाइलेट्स, चार स्टाइलेट होंगे और ये चार स्टाइलेट पियर्स करने का भी क्षमता रखता है, साकिंग करने का भी क्षमता रखता है. इसलिए ये जो माउथ पार्ट्स बग्स में पाया जाता है उसको बोलते हैं पियर्सिंग एंड साकिंग टाइप माउथ पार्ट्स. तो ये चार स्टाइलेट का ओरिजिन क्या है, ओरिजिन मतलब कौन सा प्रिमिटिव अपेंडेज ये स्टाइलेट फॉर्म करेगा. आपको पता है कि मैंडिबल्स प्रिमिटिव में कितना रहता है, दो. प्रिमिटिव में मैक्सिला कितना रहता है, दो. अब यहां पे बाघ में आके वो मैंडिबल फॉर्म में आ रहा है कि स्टाइलेट फॉर्म में कन्वर्टेड हो जाता है. तो दो मैंडिबल दो स्टाइलेट फॉर्म करते हैं, दो मैक्सिला अनदर टू स्टाइलेट में कन्वर्ट होते हैं. सो हाउ मेनी स्टाइलेट्स यू हैव गॉट, टू मैंडिबुलर स्टाइलेट, मैक्सिलरी स्टाइलेट्स, दैट मींस यू हैव गॉट फोर स्टाइलेट्स. सो द बाघ इज हैविंग फोर स्टाइलेट्स विद देम. अब ये स्टाइलेट के सहारे से वो पियर्स करेंगे और सक करेंगे. अब ये स्टाइलेट बहुत डेलिकेट भी होंगे ना, बहुत एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, बहुत डेलिकेट होंगे. और डेलिकेट होने के कारण इसका प्रोटेक्शन का भी जरूरत पड़ता है. मतलब व्हेन एट रेस्ट, व्हेन द बग इज नॉट फीडिंग, द स्टाइलेट्स रिक्वायर ए प्रोटेक्टिव कवर. हु विल गिव दिस स्टाइलेट्स ए प्रोटेक्टिव कवर? मॉडिफाइड लेबियम. लेबियम एक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है यहां पे, और उस ग्रुप के अंदर वो स्टाइलेट्स रेस्ट करते हैं व्हेन द बग इज नॉट फीडिंग. And this whole modified mouth purse is known as piercing and sucking type mouth purse. अब यहाँ पे एक और चीज हमको बताना जरूरी है, क्योंकि mosquito जो एक बाघ नहीं है, जो एक dipteran insect है, हम लोगों का blood suck करते हैं ना, उसके केस में भी ये piercing and sucking type mouth purse रहता है. हमने ये क्लास में बताया था. So सारे bugs और dipteran में mosquitoes they are having piercing and sucking type mouth purse. थोड़ा सा अंतर बाघ के साथ मॉस्किटो का है. वो किस तरह का है? बाघ में हाउ मेनी स्टाइलेट्स दे हैव? दे आर हैविंग 4 स्टाइलेट्स. बट इनके सब मॉस्किटो, जो मॉस्किटो हम लोगों को बाइट करते हैं, उस मॉस्किटो में 6 स्टाइलेट रहेगा. अब यहां पे मॉस्किटो में आके क्या होता है कि उसमें भी एक स्टाइलेट रिलेटेड एक सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है. दैट मीन्स फीमेल्स, मॉस्किटो के जो फीमेल्स होंगे दे आर हैविंग 6 stylets, but males they are having 4 stylets, just like bugs. अब यहाँ पे एक interesting बात यह है कि male mosquitoes आपको bite नहीं करते. मतलब आपको bite करने वाला कोई भी mosquito है तो वो female ही है, only female. And they have how many stylets? They have 6 stylet. और ये 6 stylet आएगा कहाँ से? वो 4 तो fix है, 2 mandibular, 2 maxillary. दो जो एक्स्ट्रा स्टाइलेट है वो कहां से आएंगे? वन विल बी फ्रॉम लैब्रम एपिफेरिंग्स. यहां पे लैब्रम एपिफेरिंग्स इलोंगेट होके एक स्टाइलेट फॉर्म करता है. अनदर इज योर हाइपोफेरिंजियल स्टाइलेट. मींस हाइपोफेरिंग्स यहां पे एक और स्टाइलेट फॉर्म करके फीमेल मॉस्किटो को 6 स्टाइलेट प्रोवाइड करता है. समझ में आ गया? अब अनदर, there are several other modifications also, but इसमें से एक important modification आपको याद रखना चाहिए, that is your thrips का जो mouth parts है. thrips का mouth parts को बोलते हैं, modified mouth parts को बोलते हैं rasping and sucking. ये क्या करता है? इस mouth parts में there will be 3 stylets, right mandible will be absent. And if you go through the previous year's questions, I mean your 5, 6 years, 10 years previous year's questions, then for several times the external examiner has asked ki, in which insect asymmetrical mouth parts is found? The answer is thrips. In which insects only 3 stylets are found? The answer is again thrips. Which insect is having mouth cone? The answer is again thrips. So वो tiny एक insect thrips, जिससे related ये बहुत सारे questions बनता है. Which insect is having rasping and sucking type mouth parts? The answer is thrips. So I hope that you will be revising things carefully. And the next topic I covered was wing venation modifications and wing coupling apparatus. Again, I'll be suggesting, please draw the diagram of generalized insect wing, label the different portions, different angles, different margins. आपको पता ही है कि humeral angle रहता है कहाँ पे रहता है. Anterior margin किसको कहते हैं? Anterior margin का एक और नाम है क्या है? Costal margin, apical margin, then anal margin, angles also. And thereafter you draw a typical insect wing having your longitudinal veins and cross veins, costa, subcosta, radius, media, cubitus, anal veins, and the cross veins like your humeral cross vein, radial cross vein, sectorial cross vein, radiomedial cross vein, M cross bend means medial cross bend, MCU मीडियो क्यूबिटल क्रॉस स्विंग, ये आप प्रैक्टिस करेंगे। और ये विंग वेनेशन कौन दिए थे, कौन साइंटिस्ट ये विंग वेनेशन ओपाइन किए थे, नेम इज कॉमस्टॉक एंड नीडहम, यू मस्ट रिमेंबर द नेम। एंड देन विंग कपलिंग मैकेनिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जुगेट विंग कपलिंग मैकेनिज्म, प्लीज रिकॉल माय क्लास, दैट क्लास, टू क्लासेस आई टुक रिगार्डिंग योर टू एक्सप्लेन दिस विंग कपलिंग मैकेनिज्म, जुगेट विंग कपलिंग मैकेनिज्म, फ्रेनेट विंग कपलिंग मैकेनिज्म, जुगो फ्रेनेट विंग कपलिंग मैकेनिज्म। मेल फ्रेनेट और फीमेल फ्रेनेट में आप लोगों को मॉडल के सहारे से भी बताने की कोशिश किए थे, चार्ट पेपर काट के मेल फ्रेनेट और फीमेल फ्रेनेट में अंतर क्या होता है। एंड देन हेमुलेट, वेरी इंपॉर्टेंट, इन हनीबीज यू गेट, इन वस्प्स यू गेट हमूली। हमूली वो हुक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो हाइंड विंग का कॉस्टल मार्जिन में रहता है, मोटा मोटी 20 हुक लाइक स्ट्रक्चर रहता है जो फोर विंग का एनल मार्जिन को पकड़ के रखता है जब इंसेक्ट फ्लाई करते हैं, उसको बोलते हैं हेमुलेट विंग कपलिंग मैकेनिज्म। अनदर टॉपिक जो मैं आपको प्रैक्टिकल क्लास में बहुत बार आपको बताया, दैट इज योर मॉडिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट विंग। मॉडिफिकेशन मतलब यहाँ पे डिफरेंट इंसेक्ट में कितना अलग अलग टाइप ऑफ इंसेक्ट विंग होते हैं, हॉल्टेयर किस में होते हैं, स्यूडो हॉल्टेयर किस में होते हैं, एलाइट्रा किस में होता है, हिम एलाइट्रा, हेमिलिट्रा जिसको आप बोलते हैं ना, हिम एलिट्रा किस में होते हैं, फ्रिंज्ड विंग्स किस में होते हैं, आपका मेम्ब्रेनस विंग्स किस में होते हैं, ये 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट विंग्स प्लीज गो थ्रू अलोंग विद द एग्जांपल्स। एंड देन डॉक्टर राव प्रोबेबली हैड कवर्ड मेटामॉर्फोसिस एंड डायपॉज इन इंसेक्ट्स, टाइप्स ऑफ लार्वा एंड प्यूपा, types of larvae and pupae, this topic was there in your midterm examination, all of you have tried that one and you have done well. Kitna alag alag types of metamorphosis hote hai, larvae ka different types you already had read it and I have checked your midterm copies ki apodous larva, polypod larva, oligopod larva, fir again there are classifications, pupae ke case mein bhi same, optect etc. Dr. Others probably has covered circulatory system, the systems means circulatory system, excretory system, respiratory, nervous, reproductive system. So regarding your systems, I'll suggest you to again practice the diagram of circulatory, khas karke excretory, digestive system definitely, and different modifications का जो examples है वो आप जरूर पढ़ के जाएंगे। And then regarding insect ecology, environment and its components, effect of biotic factors and abiotic factors. So you know that insect के ऊपर सबसे ज़्यादा अगर इम्पैक्ट है तो देर आर टू फैक्टर्स, वन इज बायोटिक फैक्टर्स, बायोटिक मीन्स डेफिनेटली ऑर्गेनिज्म के थ्रू कोई इंसेक्ट का पॉपुलेशन में, इंसेक्ट का रिप्रोडक्शन में कोई अगर अफेक्ट करेंगे तो उसको बायोटिक फैक्टर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल योर एनिमीज, नेचुरल एनिमीज ऑफ इंसेक्ट्स, सो दैट इज बायोटिक फैक्टर। इन एबायोटिक फैक्टर यू नो कि रेनफॉल, relative humidity, sunshine hours, temperature, these all are under your abiotic factors, right? Then categories of pests, you know, key pests, major pests, minor pests, sporadic pests, regular pests, occasional pests. So examples you have to remember. Then regarding systematics, taxonomy, Dr. Rao has covered this topic. So you know that the class Insecta is classified into two sub classes. वन इज एटेरिगोटा एंड अदर वन इज टेरिगोटा. अब यहां पे टेरा मीन्स विंग, ए मीन्स एबसेंट, एटेरिगोटा मीन्स द इंसेक्ट ऑर्डर्स द क्लासेस सब क्लास ऑफ द इंसेक्ट इंसेक्टा क्लास इंसेक्टा विच इज हैविंग द ऑर्डर्स वेयर नो इंसेक्ट इंसेक्ट विंग्स आर प्रेजेंट. मीन्स primarily those orders will be wingless. Or under this Atterigota, how many orders you have gone through? Four. So all these four orders, they lack the wings, right? Primarily they are wingless. And in case of Pterygota, means rest of the jo 25 insect orders hai, they are having wings. Means secondarily they may not have the insect wings, but primarily they have the wings. Atterigota or Pterygota mein ye main difference hai ki kaun sa primarily wingless hai aur kaun sa winged hai aur otherwise secondarily wingless hai. Another difference is your metamorphosis ke regarding. In case of Atterigota, either the metamorphosis is completely absent or it is very slight. In case of Pterygota, metamorphosis is there. Means either they will be having three stages in their life or otherwise they will be having four stages in their life. But in case of Pterygota, the metamorphosis is either completely absent or it is very slight. And then articulation of the mandible from point of view, say, be different. Say, in case of Pterygota orders, the head is monocondylic, that is articulation is single, mandible ka jo articulation hai, that is single articulation. But in case of Pterygota ka jitna bhi 25 insect orders hai usme it is dicondylic. Or bhi differences hai, but for the second semester this is enough. So what are the different orders which come under this Atterigota? Thysanura, Columbula, Proteura, Diplura. So I'll suggest you not to go into detail of these classes, of these orders. I'm talking of this Atterigota orders. But you must remember the examples of those. So Atterigota mein, there are four insect orders. Thysanura में silverfish आता है, Columbula में springtail आता है, Proteura में protuberans आता है, Diplura में japygetes आते हैं. ये examples आपको याद रखना. Regarding rest of the orders, means the subclass Pterygota, again दो division किया गया है यहाँ पर. मतलब 25 order आ रहा है ना, 25 को 16 और 9 में बटा गया है. 16 होगा Exopterygota, 9 होगा Endopterygota. अब ये दो जो डिवीजन है, समटाइम्स योर एक्सटर्नल एग्जामिनर में आस्क यू कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द एक्सोटेरिगोट एंड एंडोटेरिगोट. सो द मेन डिफरेंस इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ विंग डेवलपमेंट. इफ द विंग डेवलपमेंट इज एक्सटर्नल, मींस इट इज विजिबल दैट द विंग इज गेटिंग डेवलप्ड, देन द इंसेक्ट ऑर्डर्स विल बी अंडर एक्सोटेरिगोटा. दैट इज व्हाई द नेम एक्सोटेरिगोटा हैज बीन गिवन. And in the under the orders of Endopterygota, all are having your wing development, which takes place internally. Means within the case, the wing is getting developed, which cannot be visible from the outside. From metamorphosis point of view, very important difference is there between Exopterygota and Endopterygota. In Exopterygota, all will be having incomplete metamorphosis. Incomplete means, मैंने पहले भी बताया कि there will be three life stages. एक nymph adult. There is no existence of pupal stage with them. Whereas in case of Endopterygota, that pupal stage is there. So in Endopterygota there will be four life stages. Egg. अब यहाँ पे nymph ना बोल के हम लोग बोलेंगे larva, pupa, adult. How many stages? Egg, larva, pupa, adult, four stages. Therefore, यू कैन राइट डाउन दैट इन एक्सोटेरिकोटा प्यूपल स्टेज इज एब्सेंट, इन केस ऑफ एंडोटेरिकोटा प्यूपल स्टेज इज प्रेजेंट. Immature stages of exoterygota, either they will be called as your nade or nymph, aquatic stage, aquatic kuch order stages, nade bolte. For example, dragonfly ka jo jo jo jo jo immature stage hai, usko bolte hai nade. Hemiptera, matlab bugs ka jo immature stage hai, usko bolte hai nymph. But larva, that term is used to depict the immature stage of your stage of your endoterygote orders. So exoterygota mein kon kon sa insect order aata hai? Ephemeroptera odonata, Plecoptera gyroblatoria, Orthoptera phasmida, Dermaptera imbiptera, Dictyoptera isoptera, Sauroptera zoocoptera, Malophaga siphonoptera, Hemiptera and Thysanoptera. So sare insect orders aapko padhne ka zarurat nahi hai. सर ने भी आपको बताया होगा कि सारे इंसेक्ट ऑर्डर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं, बट सारे इंसेक्ट ऑर्डर्स का आपको एग्जांपल जरूर याद रखना है. फॉर एग्जांपल एफिमेरोप्टेरा का एग्जांपल है मे फ्लाई, जो मई महीना में आपका जो प्रिंसिपल ऑफिस का अपोजिट में एक टावर है जिसमें बहुत हेलोजन लाइट लगा हुआ रहता है, उसमें थाउजेंड्स ऑफ मे फ्लाई जो व्हाइट कलर के होते हैं उसमें अट्रैक्ट होते हैं, आप लोगों ने देखे हो. ओडोनाटा, यू नो ड्रैगन फ्लाई, डैमसल फ्लाई, तो सारे ऑर्डर्स के एग्जाम्पल्स आपको याद रखना होगा, बट कुछ इंसेक्ट ऑर्डर का डिटेल में भी जाना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल जिसको हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट ऑर्डर्स, ओडोनाटा एक एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट ऑर्डर है. कैसे? क्योंकि सारे ओडोनेट्स, सारे ड्रैगन फ्लाईज, डैम्सल फ्लाईज एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दे ऑल आर प्रेडेटर्स, दे फीड ऑन द अदर इंसेक्ट्स विच आर हार्मफुल, देयरफॉर इट इज एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट. सो यू मस्ट रिमेंबर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्डर ओडोनाटा विच यू ऑलरेडी नो. For example, you know कि dragonflies and damselflies के wings कैसा होता है? Membranous wings होता है. Wings में opaque spot को क्या बोलते हैं? Pterostigma. So these are the characteristics. Both the wings are membranous. किसमें होते हैं? Dragonflies में होते हैं. Basket-like legs dragonflies and damselflies में होते हैं to capture the prey. Maximum number of ummatidium किसी का अगर compoundize में होंगे तो that is your ड्रैगनफ्लाइज. अब देखो ये कॉम्पाउंडाइज ड्रैगनफ्लाइज का मैक्सिमम पोर्शन, मैक्सिमम एरिया ऑफ द हेड को कवर करता है. सो वो पीछे भी देख सकते हैं, साइड में भी देख सकते हैं, सामने में भी देख सकते हैं, मोटा मोटी 360 डिग्री उसका विजन है. और भी बहुत सारे एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंट इंसेक्ट ऑर्डर्स है, मैं कुछ मेंशन करता हूँ. फॉर एग्जाम्पल ऑर्थोप्टेरा, देन योर डिक्टाप्टेरा जिसमें कॉकरोच एंड प्रेइंग मैंटिस आते हैं, आइसोप्टेरा टर्माइट्स आते हैं, इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंट, व्हीट का पेस्ट होते हैं. देन हिमिप्टेरा डेफिनेटली, बहुत सारे प्रेडेटरी बग्स भी होते हैं, बहुत सारे फाइटोफैगस हार्मफुल बग्स भी होते हैं. थाइसनोप्टेरा जिसके एग्जाम्पल थ्रिप्स होते हैं ना, वो भी एग्रीकल्चरली बहुत इंपॉर्टेंट है. सो थ्रिप्स का भी जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपको मालूम ही है, मैंने बहुत बार का मतलब इसी जो जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसी में हमने बोला कि जो है एसिमेट्रिक माउथ पर्स किस में रहते हैं, माउथ कोन किस में रहते हैं, फ्रिंज्ड विंग्स किस में रहते हैं, थ्री स्टाइलेट्स किस में रहते हैं, वो सारे आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्डर थाइसनोप्टेरा, इजंट इट? एंड देन अंडर द योर डिविजन योर एंडोटेरिकोटा, यू नो दैट देयर आर 9 इंसेक्ट ऑर्डर्स. उसमें से एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट का अगर बात करें तो न्यूरोप्टेरा जिसमें जिसका एग्जाम्पल यू नो कि एफिड लायन, एंट लायंस, सो दे आर प्रेडेटर्स. As they are predators, they are agriculturally important. Then Lepidoptera, very important. So Lepidoptera ka characteristics, you know already, ki siphoning type mouthparts kis mein hote hai, scaly wings kis mein hote hai. So these are the characteristics of the order Lepidoptera. And examples, you know, ki butterflies and moths. What are the difference between the butterflies and moths? That has been discussed in your class also. Then Diptera, flies jis mein aata hai. फ्लाइज मतलब सिर्फ हाउस फ्लाई नहीं, फ्लाइज मतलब यहाँ पे रॉबर फ्लाई होता है, तुम्हारा आपका जो है हॉर्स फ्लाई होता है, विच अ प्रेडेटरी. सम पेस ऑल्सो आर कमिंग अंडर दिस ऑर्डर डिप्टेरा, देयरफॉर इट इज एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट. और डिप्टेरा में हाइंड विंग मॉडिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी है कि हॉल्टर प्रेजेंट रहता है, सारे डिप्टेरा में ही हॉल्टर प्रेजेंट रहता है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. साइफनिंग टाइप माउथ पर्स योर आइदर योर स्टाइलेट और एरिस्टेट एंटेना प्रेजेंट रहता है. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिप्टेरा. सो यू आर ऑलरेडी नोइंग द थिंग्स. ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू रिकलेक्ट द थिंग्स एंड यू हैव टू राइट इट डाउन. एंड देन हाइमेनोप्टेरा, मोस्ट ऑफ द बेनिफिशियल इंसेक्ट्स दे कम अंडर दिस हाइमेनोप्टेरा. अब यहाँ पे बेनिफिशियल इंसेक्ट मतलब आपके दिमाग में चलता है कि हनीबीज, बट हनीबीज तो एक छोटा पार्ट है. बहुत सारे पैरासिटोइड्स, अलग अलग पॉलिनेटर्स जो हनी प्रोड्यूस नहीं करते हैं वो भी इसी में आते हैं हाइमेनोप्टेरा में. देयरफॉर दिस ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा इज कंसिडर्ड एज कि जो है मोस्ट ऑफ द बेनिफिशियल इंसेक्ट्स. एक्सटर्नल एग्जामिनर अगर ये क्वेश्चन करेंगे कि कौन से इंसेक्ट ऑर्डर ऐसा है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स पाया जाता है, दैट इज योर हाइमेनोप्टेरा. बीज, वर्ब्स, एंट्स, डिफरेंट पैरासिटोइड्स. कोलियोप्टेरा इज द लार्जेस्ट इंसेक्ट ऑर्डर. सो कोलियोप्टेरा के भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मालूम है कि दे आर हैविंग एलाइट्रा विच इज मॉडिफाइड फोर विंग. सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, इजंट इट? कोलियोप्टेरा आर हैविंग योर प्रोनेथस ओरिएंटेशन ऑफ हेड. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट इंसेक्ट ऑर्डर्स, ओरिएंटेशन ऑफ हेड. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट इंसेक्ट ऑर्डर्स विच यू हैव टू गो थ्रू इन डिटेल. आई एम रिपीटिंग वंस अगेन विच आर द इंपॉर्टेंट इंसेक्ट ऑर्डर्स रिगार्डिंग विच यू हैव टू रिमेंबर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दोज. ओडोनाटा, ऑर्थोप्टेरा, डिक्टायोप्टेरा, आइसोप्टेरा, हेमिप्टेरा, थाइसनोप्टेरा, न्यूरोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, डिप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा एंड कोलियोप्टेरा. और डॉक्टर राव प्रोबली हैज कवर्ड सम फैमिलीज ऑल्सो. फ्यू फैमिलीज यू मे गो थ्रू. एंड आई होप दैट द होल सिलेबस आई हैव कवर्ड विद इन दिस वन आवर टाइम. आई थिंक यू विल बी प्रिपेयरिंग वेल. यू आर प्रिपेयरिंग वेल एंड यू विल बी appearing the examination with your full potential, utilizing your full potential. So I think some instructions I've also given that wherever you feel that diagram should be drawn, it has not been asked to draw, but it will be creating some value to your answer, quality of the answer. You please do not hesitate to draw that. I'm talking of your short answer type question and broad answer type question. No, I'm not talking of your about your the first part of your question, that is objective type. Objective type mein aapko wo scope nahi hai, but jaise hi aapko broad question ka mila, wherever you feel that you are capable of draw the diagram of that particular question related to that particular question, you don't hesitate to draw that, and thereafter you explain it very briefly. So all the best to all of you. Any questions, any queries, any doubts, you don't hesitate to text me at any point of time. I'll try my best to answer those questions. Thank you very much. All the best.
1: Thank you so much, sir.
0: Thank you, miss.
1: दोस्तों, उम्मीद है कि आपके लिए ये रेडियो रिवीजन काफी यूजफुल साबित होगा. तो एग्जाम बिल्कुल अच्छे से दीजिए. बेस्ट ऑफ लक.

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?

0: का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
1: अच्छा,
2: तो सबकी समझ में आ गया ना?
3: खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
0: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
4: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
0: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
0: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
0: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें 0 डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है, तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रखो,
4: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

दिनों में वर्षा हुई है, इसलिए आप वर्षा के जल का लाभ उठाते हुए धान की सबौर दीप किस्मों जैसे प्रभात, शुष्क सम्राट, सहभागी की बुआई 10 जुलाई तक जरूर कर दे। और किसान भाई बहनों, बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए कार्बन डाइजिन की 2 ग्राम मात्रा को 1 किलोग्राम बीज उपचारित करने के लिए इस्तेमाल करें। और ध्यान दें कि 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई जरूर करें। मध्यम अवधि वाली धान की किस्में जैसे राजेंद्र नीलम, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र श्वेता की रोपाई कर सकते हैं। और धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी की जा सकती है। किसान भाई बहनों, अगर आप श्री अन्न की खेती करना चाहते हैं तो ध्यान दें, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें और मड़ुआ की वकुला KMR 316, GPU 67, VL 379, राजेंद्र मड़ुआ RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1 इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, उचास जमीन में अरहर की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1, राजेंद्र अरहर 2 इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। और ध्यान दें कि अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का उपयोग करना बिल्कुल न भूलें। और किसान भाई बहनों, अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना ना भूले। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3 और गंगा 11 है। जिनके खेत में मूंग लगा है उन्हें बता दे, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो किसान भाई बहन सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, भिंडी, कद्दू, खीरा, निनुआ और लौकी जैसी फसलों में निराई गुड़ाई करते रहे और खरपतवार नियंत्रित रखे। ध्यान दे कि पत्ती खाने वाली सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करना जरूरी होता है और अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डायमेथो 830 ईसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दे कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। और स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में गोबर की खाद डालना बहुत जरूरी होता है। खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्री फाउंड, डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और ध्यान रखें कि बीज गिराने के पहले बीजोपचार जरूर कर ले। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। और जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दे, लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचों में जरूरत के हिसाब से छटाई कर ले जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचे में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा कर हटा दे, इससे कीट और रोगों के प्रकोप में कमी आएगी और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलेगा। पशुपालक भाई बहन ध्यान दे, महीने के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, इसलिए ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में टीके नहीं लगाए हो तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दे। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर

0: माना जाता है।
1: सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई।

first. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। वैसे बहनों को संबोधित है लेकिन यहां बातें ऐसी होती है जो सबके लिए फायदेमंद है। अब देखिए आज हम बात करने वाले हैं किताबों के बारे में, भला किताबें किनके लिए फायदेमंद नहीं साबित होती है। और जो किताबें पढ़ना पसंद करते हैं उन्हें पता है कि किताबें ना सबसे अच्छी दोस्त होती है। और जब फोन का जमाना है, सब कुछ फोन पे है, तब भी जो किताबों में सुकून है ना वो कहीं नहीं मिलता। और कई बार कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो आपको बहुत अच्छी बातें सिखा देती हैं और इस दुनिया को देखने का, यहाँ तक कि खुद को देखने का एक नया नजरिया देती हैं। और कई बार हमें उन किताबों को बहुत गहराई से पढ़ने की जरूरत होती है। कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप पूरी जिंदगी नहीं भुला सकते, और उन्हीं कुछ किताबों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और ख़ास तौर से उन किताबों के बारे में बात करने वाले हैं जो लेडीज़ को, जो महिलाएं हैं या फिर लड़कियां हैं, अपने टीन एज में हैं या फिर प्रौढ़ महिला भी हैं, उन्हें ये किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए। आज 10 ऐसी किताबों के बारे में बात होने वाली है जो आपको पढ़नी चाहिए, आपकी लाइब्रेरी में होनी चाहिए। और अगर आप पुरुष हैं, आप सुन रहे हैं, तो आप अपनी दोस्त को, अपनी मम्मी को या फिर आपकी बहन है उन्हें, आप आपके आसपास जो भी महिलाएं हैं उन्हें ये किताबें या इनमें से कुछ किताबें उन्हें आप ज़रूर गिफ्ट करिए। सबसे पहली किताब है मित्रों मरजानी। नाम कितना प्यारा है ना, और मित्रों मरजानी लिखा है कृष्णा सोपती ने। और अगर हम इस उपन्यास की बात करें तो ये उपन्यास मित्रों नाम की एक साहसी और बेबाक महिला की कहानी है जो कि समाज द्वारा महिला पर लगाए गए बंधनों को खुलकर चुनौती देती है। बहुत सारी बंधन है ना, आज के समय में भी आपको बहुत सारे बंधन मिलेंगे जिन्हें खत्म करने की जरूरत है। तो मित्रों यही काम करती है कि समाज जो महिलाओं पर बंधन लगाता है उसे वो चुनौती देती है। इस किताब में आपको स्त्री की इच्छाओं, उनकी स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का एक बहुत ही बेहतरीन चित्रण मिलेगा। और अगर हम बात करें ना तो ये किताब भले ही बहुत पहले लिखी गई हो लेकिन ये किताब अपने समय से बहुत आगे की सोच रखता है और ये किताब हर महिला को जरूर पढ़नी चाहिए। हिंदी साहित्य में इसे नारी विमर्श की महत्वपूर्ण कृति माना जाता है। अगली किताब है आपका बंटी। आपका बंटी मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा गया है और मन्नू भंडारी की भी जो शख्सियत है ना वो बहुत ही कमाल की है। आप उनके इंटरव्यूज देखेंगे या फिर आप उनकी और भी कहानियां पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई बहुत ही कमाल की शख्सियत और बहुत ही कमाल की इनकी लेखनी। और उनकी एक लेखनी है आपका बंटी, ये बहुत ही कमाल की किताब है। ये कहानी ना एक बच्चे बंटी की नज़र से आप पढ़ेंगे समझेंगे। बंटी की नज़र से आप देखते हैं कि किस तरीके से एक परिवार टूटता है तो बच्चे पर असर सबसे ज्यादा पड़ता है। जब माता पिता का तलाक हो जाता है तो बच्चे पर क्या असर पड़ता है, यही इसका मुख्य विषय है। और उपन्यास में आप देखेंगे कि स्त्री के संघर्ष और उसके भावनात्मक जीवन का भी काफी बेहतरीन चित्रण है। और सबसे अच्छी बात है इस किताब की कि भाषा बहुत ही सरल और बहुत ही प्रभावशाली है। कहते हैं ना कि कुछ चीजें सरल रहते हुए भी आपके ऊपर बहुत ही गजब का प्रभाव छोड़ जाती है, तो ये किताब उन्हीं किताबों में से एक है। और ये हिंदी की आपका बंटी हिंदी की सबसे चर्चित पारिवारिक उपन्यासों में से एक है। अगली किताब है अमृता प्रीतम की पिंजर। पिंजर उपन्यास की अगर हम बात करें तो भारत विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है ये उपन्यास, जिसमें नायिका का नाम पूरो है, हालांकि नायिका पूरो के जीवन के माध्यम से स्त्री के पीड़ा को दर्शाया गया है। जब भारत विभाजन हुआ था उस दौरान स्त्रियों को भी बहुत कुछ सहना पड़ा था। इस किताब में आप धर्म, पहचान और मानवता के प्रश्न से रूबरू होंगे। जब ये सारे प्रश्न उठते हैं ना तो आपको अंदर से कचोट देते हैं। कहानी बेहद ही मार्मिक और संवेदनशील है। अगर हम विभाजन साहित्य की बात करें तो उनमें से श्रेष्ठ कृतियों में से पिंजर का नाम गिना जाता है, अमृता प्रीतम की लिखी पिंजर। अगली किताब है मन्नू भंडारी की लिखी हुई महाभोज। महाभोज अगर हम इस किताब की बात करें तो ये एक राजनीतिक व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर तीखा व्यंग है।
कहानी एक गरीब युवक की है और जब उस युवक की मृत्यु हो जाती है ना, उसके बाद इस कहानी की शुरुआत होती है। किस तरीके से सत्ता और राजनीति आम जनता का शोषण करती है ये दिखाया गया है बहुत ही कमाल के तरीके से महाभोज में। और अगर हम इस उपन्यास की बात करें तो ये उपन्यास सामाजिक अन्याय को उजागर करता है और बहुत ही बेहतरीन ढंग से करता है, और आज भी ये उपन्यास उतना ही प्रासंगिक माना जाता है। महाभोज एक बार जरूर पढ़िए, ये आपको समाज को देखने का, आपके आसपास के व्यवस्था को, भ्रष्टाचार को समझने का एक नजरिया देता है। अगली किताब है चाक, मैत्रेयी पुष्पा की लिखी चाक, समाज में महिलाओं के संघर्ष की कहानी है। उपन्यास में आप पढ़ेंगे जाति, पितृसत्ता और सामाजिक भेदभाव को, और किस तरीके से नायिका अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। भाषा में ग्रामीण जीवन की एक सजीव झलक आपको दिखती है, और ये किताब स्त्री सशक्तिकरण की एक महत्वपूर्ण कृति है, आपको जरूर पढ़नी चाहिए, मैत्रेयी पुष्पा की लिखी चाक। कुछ किताबें ऐसी होती है जिन्हें पढ़कर रोना आता है, कुछ किताबें ऐसी होती है जो आपको हंसाती है, और कुछ किताबें ऐसी होती है जो आपके ऊपर प्रभाव नहीं छोड़ती है, और कुछ किताबें ऐसी होती है जो ना रुलाती है ना हंसाती है बल्कि आपको कचोटती है। आप बहुत असहाय से महसूस करते हैं, आपको समझ नहीं आता कि क्या कर दे, काश उस नायिका के पास हम पहुंच जाएं और उसकी जिंदगी ठीक कर दे, उसे समझा दे, या फिर बहुत ही आपको असहाय महसूस होगा, आप विचलित होंगे पर आपके हाथों में कुछ नहीं होगा। ये किताब है कांता भारती की लिखी रेत की मछली। कांता भारती की बात करें तो कांता भारती ने सिर्फ एक किताब लिखी, रेत की मछली, और इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक स्त्री संघर्ष करती है, आत्मसम्मान के लिए लड़ती है और अपने अस्तित्व की खोज में निकल पड़ती है। इस किताब में पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं की स्थिति को बहुत ही संवेदनशील तरीके से चित्रित किया गया है। नायिका सामाजिक बंधनों और अन्याय के विरुद्ध अपनी पहचान बनाने का प्रयास करती है, लेकिन उसके पहले जो उसे जीवन में झेलना पड़ता है ना, अपनों से जो उसे धोखा मिलता है, दगा मिलता है, वो आपको कचोट देती है अंदर से। भाषा बहुत ही सरल है लेकिन बहुत ही प्रभावशाली, और भावनात्मक गहराई इतनी है कि किताब पढ़ते हुए मैंने आपसे कहा ना, आप बहुत ही असहाय महसूस करेंगे। ये किताब स्त्री अधिकार, आत्मनिर्भरता और सामाजिक बदलाव के प्रश्नों को उठाती है, और अगर आप 10 प्रभावशाली हिंदी पुस्तकों की लिस्ट बना रहे हैं, सूची बना रहे हैं, तो रेत की मछली को शामिल करना एक बहुत ही अच्छा चयन हो सकता है। अगली किताब है मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा की लिखी हुई ये किताब है, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी युवती की संघर्ष गाथा है। नायिका अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत ही कठिन रास्ता चुनती है, और वो कला, रंगमंच, आधुनिक समाज आप इसमें देख पाएंगे, आपको इसमें झलक मिलेगी मुझे चांद चाहिए किताब में। पुस्तक स्त्री के स्वतंत्र पहचान की भी बात करती है, और मुझे चांद चाहिए उपन्यास की कहानी आपको बहुत ही प्रेरणादायक लगेगी और साथ ही यथार्थवादी भी लगेगी। अगली किताब मैत्रेयी पुष्पा की ही लिखी हुई कस्तूरी कुंडल बसे। इस किताब की खास बात यह है कि ये खुद मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है, इसमें उनके बचपन, संघर्ष और जीवन यात्रा का आपको बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। ग्रामीण परिवेश में स्त्री जीवन की कठिनाइयों को दर्शाया गया है इस किताब में, साथ ही ये किताब आपको आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का संदेश देती है, जो बहुत जरूरी होता है किसी भी इंसान के लिए और खास तौर से एक महिला के लिए। ये हिंदी की चर्चित आत्मकथाओं में से एक है, कस्तूरी कुंडल बसे मैत्रेयी पुष्पा के लिखी। अगली किताब भी कृष्णा सोपती की ही लिखी हुई है, जिंदगी नामा। ये उपन्यास पंजाब के ग्रामीण जीवन को अच्छी तरीके से प्रस्तुत करता है, बहुत ही विस्तृत तरीके से प्रस्तुत करता है। इसमें अनेक पात्र आपको मिलेंगे और उनकी जीवन शैली किस तरीके से है उसका बहुत ही सजीव वर्णन है, साथ ही सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहलुओं को भी बहुत ही खूबसूरती से उकेरा गया है जिंदगी नामा में। भाषा और शैली इसे विशेष बनाती है, साथ ही इसे हिंदी साहित्य की महान कृतियों में से भी गिना जाता है। अगली किताब है मन्नू भंडारी की ही एक कहानी ये भी ना मन्नू भंडारी की आत्मकथा है। इसमें उनके साहित्यिक जीवन और उनके जो व्यक्तिगत संघर्ष रहे उसका वर्णन है। लेखिका ने अपने वैवाहिक जीवन के अनुभव भी इस किताब में साझा किए हैं। इस किताब को बहुत ही ईमानदारी और संवेदनशीलता से लिखा गया है, और
जब आप इस किताब को पढ़कर खत्म करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि आपके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास है और आत्मचिंतन की प्रेरणा मिलती है आपको इस किताब से। हालांकि 10 किताबें हो चुकी हैं, लेकिन एक और किताब मैं जो अंत में जोड़ना चाहूंगी वो है टेढ़ी लकीर, इस्मत चुगताई की लिखी हुई है। ये उपन्यास ना शम्मन नाम की एक लड़की की है और उसके जीवन और उसके आत्मविकास की कहानी है। इस किताब में आप पाएंगे स्त्री स्वतंत्रता की बातें, शिक्षा, प्रेम, समाज की रूढ़ियों पर एक बहुत ही गहरा विमर्श मिलता है आपको इस किताब में। और इस्मत चुगताई ने महिलाओं की भावनाओं को और उनके संघर्षों को बहुत ही बेबाकी से प्रस्तुत किया है। हालांकि इस्मत चुगताई खुद भी एक बेबाक महिला रही थी और बहुत ही कमाल की इनकी भी शख्सियत रही है। आप अगर पढ़ेंगे ये किताब टेढ़ी लकीर, तो ये उस दौर के मध्यम वर्गीय समाज और उसकी मानसिकता का एक बहुत ही सजीव चित्रण आपको पेश करती है। अगर हम इस किताब की बात करें तो इस किताब को यानी कि टेढ़ी लकीर को भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे महत्वपूर्ण नारीवादी उपन्यासों में से गिना जाता है। तो ये किताबें आप जरूर पढ़ें। और लास्ट में जो मैंने ऐड की है टेढ़ी लकीर इस्मत चुगताई की लिखी हुई, इसे भी जरूर अपने लिस्ट में शामिल करें। बहुत ही कमाल की ये किताबें हैं। इनमें से एक दो भी आप पढ़ लेंगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ, आज मैंने कुछ अलग ही किया है। आपको एक अलग सा सुकून मिलेगा। और उसके साथ जो सबसे अच्छी बात होती है ना, वो ये होता है कि आप आत्मचिंतन करेंगे। जब आप उस किताब के किरदार के साथ जुड़ जाएंगे, उनके साथ हंसेंगे, उनके साथ खुश होंगे और उनके साथ रोएंगे, और कभी उनके साथ विचलित होंगे, असहाय महसूस करेंगे, तो फिर वो बात ही अलग होती है। और इन किताबों को पढ़िए। और कहते हैं कि किताबें सबसे अच्छी साथी होती है, तो ज़रूर इनमें से अगर आप सारी किताबें पढ़ सकते हैं तो क्या ही कहने, लेकिन आप एक दो किताबें पढ़ लेते हैं, जो भी आपको किताब अच्छी लगे उसे पढ़िए। और फिलहाल आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। उम्मीद है कि हमारा आज का ये कार्यक्रम, लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम, आपको अच्छा लगा होगा। और आज के कार्यक्रम में जो हमने किताबों के बारे में बातें की, उन किताबों से आप बहुत कुछ जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। और सबसे बेहतर ये होगा कि आप अपने बारे में जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। फिलहाल के लिए मैं चलती हूँ, लेकिन जाने से पहले खास बात की अपना और अपने अपनों का और अपने सपनों का रखे विशेष ध्यान। खुश रहे, स्वस्थ रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। आपकी अपनी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। और हाँ, हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहे। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
6: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
7: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
8: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
7: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
8: आपकी सेहत की बातें,
7: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
8: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
7: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
8: वो कहाँ पर?
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
8: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
9: नमस्कार साथियों, आपने ट्यून किया है 90.8 MHz और आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। और आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम फिर से एक खास विषय लेकर आए हैं। वैसे अगर बात करें तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन कहते हैं ना कि देखन में छोटन लागे है, घाव करे गंभीर। तो उसी प्रकार अगर ये छोटी सी चीज़ आपकी सब्जियों में डल जाए तो उसका टेस्ट ही कुछ अलग बना देता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हरी मिर्च की। और हरी मिर्च हमारे इंडिया में, हमारे भारत देश में इसकी कितनी महत्ता है आप सभी जानते हैं जो भारतीय हैं। तो आज हरी मिर्च की खेती के बारे में हम जानेंगे और इसकी उपयोगिता, कैसे पौध तैयार करें और सिंचाई क्या कुछ कैसे किया जाता है, वो सारी बातें आज हमें बताएंगे डॉक्टर संगीता श्री मैम। मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो सबसे पहले तो स्वागत है मैम आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
10: धन्यवाद अनु।
9: इन जो खेती कर रहे हैं विस्तृत तौर पर, तो उनके लिए बहुत जरूरी होता है कि हर बात की जानकारी उनके पास रहे इसकी खेती से जुड़े। तो हरी मिर्च की उपयोगिता सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें।
10: धन्यवाद अनु। आपने ठीक ही कहा कि इसको हम कहीं भी उगा सकते हैं, लेकिन अगर बात करें तो ये एक व्यावसायिक खेती के रूप में किया जा सकता है। मिर्च एक नकदी फसल है जिसकी व्यावसायिक खेती करके अधिक लाभ कमाया जा सकता है। मिर्च में विटामिन ए और सी और कुछ खनिज लवण भी बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। मिर्च का इस्तेमाल अचार एवं मसालों में भी किया जाता है।
9: जी,
10: मिर्च पर पाले का असर ज्यादा होता है, इसलिए जहां पाला पड़ता है उन इलाकों में इसकी अगेती फसल लेनी चाहिए। ज्यादा गर्मी होने पर फूलों व फलों का झड़ना शुरू हो जाता है। मिर्च की खेती के लिए 15 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त माना जाता है। 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होने पर इसके फूल व फल गिरने लगते हैं, रात्रि तापमान 16 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड फल विकास व परिपक्वता के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। मिर्च की खेती यूं तो सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है, परंतु अच्छे जल निकास वाली एवं कार्बनिक युक्त बलुई लाल दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 6 से 7 हो मिर्च की खेती के लिए उपयुक्त होती है। इस फसल की प्रमुख किस्में जिसको हम उन्नत किस्में कहते हैं वो है पूसा ज्वाला, पंत C1, G3, G5, पूसा सदाबहार, पंत C2, जवाहर 218, अर्का लोहित, अर्का सुफल, अर्का श्वेता, अर्का हरिता आदि। खरीफ की फसल के लिए मई से जून में व गर्मी की फसल के लिए फरवरी से मार्च में पौधशाला में बीजों की बुआई की जाती है। एक हेक्टेयर हेतु पौध तैयार करने के लिए 1 से 1.5 किलोग्राम बीज और संकर किस्मों के लिए 250 ग्राम बीज पर्याप्त होता है। नर्सरी वाली स्थान की गहरी जुताई करके खरपतवार रहित बनाकर 1 मीटर चौड़ी, 3 मीटर लंबी और 10 से 15 सेंटीमीटर जमीन से उठी हुई क्यारियां तैयार करें। बीजों की बुआई से पहले कप्तान या वेबस्टिन की 2 ग्राम प्रति किलोग्राम मात्रा से बीज की दर से उपचारित करें। बीजों की बुआई कतारों में करनी चाहिए और पौधशाला में कीड़ों की रोकथाम हेतु एसिफेट 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का पौधों पर छिड़काव करें। नर्सरी में विषाणु रोगों से बचाव के लिए मिर्च की पौध को सफेद नायलॉन नेट से ढक कर रखें। नर्सरी में बुआई के 4 से 5 सप्ताह बाद पौध रोपण के लिए तैयार हो जाती है। गर्मी की फसल में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेंटीमीटर व पौध से पौध की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। खरीफ फसल हेतु पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर व पौध से पौध की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। रोपाई शाम के समय करें और रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई कर दें। पौधों को 40 ग्राम एजोस्पायरलम 2 लीटर पानी के घोल में 15 मिनट डुबोकर रोपाई करें। खेत की अंतिम जुताई से पहले 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर अच्छी तरह सरी हुई गोबर की खाद खेत में डालकर अच्छी तरह मिला दें। इसके अलावा 70 किलोग्राम नत्रजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस व 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से उर्वरकों का प्रयोग करें। नत्रजन की अधिक मात्रा खेत की तैयारी के समय व शेष बची हुई आधी मात्रा 30 व 45 दिनों के बाद ट्रॉप ड्रेसिंग द्वारा खेत में डालें एवं तुरंत सिंचाई कर दें। गर्मी में 5 से 7 दिनों के अंतर पर और बरसात में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करनी चाहिए। मिर्च के फूल और फल लगने के समय भूमि में नमी होना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि पानी की कमी से पौधों का विकास रुक जाता है। इसकी वजह से फलों के गिरने की संभावना बढ़ जाती है। खरपतवारों का रोकथाम हेतु समय समय पर निराई गुराई करनी चाहिए। 200 ग्राम ऑक्सीफ्लोरोफेन 600 से 700 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। अब उपज की बात करें तो बताए गए तरीकों से खेती करेंगे तो हरी मिर्च के लिए तुराई फल लगने से 15 से 20 दिनों बाद कर सकते हैं। पहली तुराई से दूसरी तुराई का अंतर 12 से 15 दिनों तक रखें। हरी मिर्च की पैदावार 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तथा सूखी लाल मिर्च की उपज 15 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है।
11: तो ये सारी बातें तो खेती से जुड़ी हुई, लेकिन अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारे किसान भाइयों को ध्यान देने योग्य है अपने फसलों को बचाना है बर्बाद होने से, तो वो है रोग और कीटों के प्रबंधन को जानना। तो इसके बारे में मैम बता दें कि कैसे किसान भाइयों को करना चाहिए।
10: जी हाँ, मिर्च फसल में रोग व कीट प्रबंधन का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है। इसमें लगने वाले प्रमुख कीट हैं सफेद लट, कीट की लटों पौधों की जड़ों को खाकर नुकसान पहुंचाती है। इनकी रोकथाम के लिए कार्बेफिरॉन 3G का 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से रोपाई से पहले जमीन में मिलाएं। सफेद मक्खी व थ्रिप्स, इन्हें रोकने के लिए मालाथियॉन 50 EC या इमिडाक्लोरपेट 3 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। 15 से 20 दिनों के बाद दोबारा छिड़काव करना चाहिए। इन रसायनों के साथ नीम का तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर भी मिश्रित कर सकते हैं। अब मिर्च फसल में लगने वाले प्रमुख रोग की बात करते हैं, तो प्रमुख रोग हैं आद्र गलन, श्याम वर्ण, पर्ण कुंचन व मोज़ेक विषाणु रोग। आद्र गलन रोग का प्रभाव छोटे पौधों पर होता है। इस रोग का प्रभाव जमीन की सतह पर स्थित तने का भाग काला पड़ जाता और कमजोर होकर गिर कर मरने लगते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए बीजों की बुआई से पहले थीरम या कप्तान 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर करें। श्याम वर्ण एक ऐसा रोग है जिसमें पत्तियों पर छोटे छोटे काले धब्बे बन जाते हैं और पत्तियां झड़ने लगती हैं। जब इसका असर ज्यादा होता है तो शाखाएं ऊपर से नीचे की तरफ सूखने लगती हैं। पके फलों पर भी बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर 2 से 3 बार छिड़काव 15 दिनों के अंतराल पर करें। पर्ण कुंचन व मोज़ेक विषाणु रोग बहुत ही घातक रोग है। पर्ण कुंचन रोग के असर से पत्ते सिकुड़कर छोटे रह जाते हैं और उन पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। मोज़ेक विषाणु रोग के कारण पत्तियों पर गहरे व हल्का पीलापन लिए हुए धब्बे बन जाते हैं। रोगों को फैलाने में कीट सहायक होते हैं। इसकी रोकथाम के लिए रोग लगे पौधों को उखाड़कर जला देना चाहिए। रोग को आगे फैलने से रोकने के लिए डायमिथेट 3 EC का 0.1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के दर से छिड़काव करें। किसान भाई, अगर आप बताए गए विधि से मिर्च फसल की खेती करेंगे तो अवश्य ही अधिक मुनाफा कमा पाएंगे।
11: जी, तो इस प्रकार किसान भाइयों, हरी मिर्च की खेती आप कर सकते हैं। सारी बातें आपको आज के वार्ता में बताई गई हैं और आशा करते हैं कि आपको जरूर लाभ मिलेगा आज इस वार्ता को सुनकर। तो अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी, याद रखें 90.8 MHz। नमस्कार।
12: नमस्ते क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
13: जी
12: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
13: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
12: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
1: उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
5: कौन सी कहानी टीकी?
1: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
14: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
1: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
14: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
1: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल। अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
5: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
1: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
15: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
8: FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
16: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। किसान भाई बहनों, उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे, साथ ही अपने फसलों की भी अच्छी निगरानी कर रहे होंगे। जब हम अपने फसलों की निगरानी करते हैं तो उसमें खरपतवार दिखते हैं और ये किसान भाई बहनों के लिए बड़ी चिंता का सबब होते हैं। खरपतवार नाशी का इस्तेमाल भी करते हैं लेकिन खरपतवार नाशी कई बार गहरे प्रभाव भी छोड़ते हैं और ये प्रभाव नकारात्मक होते हैं, यानी कि अन्य फसलों पर भी प्रभाव देखा जाता है। तो बदलते वक्त के साथ खेती गृहस्थी भी थोड़ी बदली है और चीजें आसान भी हुई है। खेती गृहस्थी को आसान बनाने के लिए कुछ नई चीजें भी आ रही है, उन्हीं में से एक है नैनो हर्बिसाइड्स, यानी कि नैनो शाकनाशी या नैनो खरपतवार नाशी। और इसके बारे में आज विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर अभिषेक कुमार, आप हैं डिपार्टमेंट ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी से। तो आइए आज के वैज्ञानिक डॉक्टर अभिषेक कुमार से हम बातचीत करते हैं और जानते हैं नैनो हर्बिसाइड्स के बारे में। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
17: धन्यवाद
16: सर। आपसे पहला सवाल तो मैं यही पूछना चाहूंगी कि नैनो शाकनाशी क्या है?
17: यह जो है आज के परिप्रेक्ष्य में आपका जो प्रश्न है बहुत उपयुक्त है, क्योंकि जो अभी का जो समय चल रहा है, जो परंपरागत खरपतवार नाशी हम प्रयोग करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होते हैं। तो उसी के चलते अभी जो रिसर्च के द्वारा नए चीज आए हैं किसान भाइयों के लिए, जिसे कि हम नैनो शाकनाशी भी कहते हैं, नैनो खरपतवार नाशी भी बोलते हैं, या अंग्रेजी में नैनो हर्बिसाइड भी बोलते हैं। यह एक खरपतवार नाशी है जिसे नैनो तकनीकी का उपयोग करके बनाया जाता है, जिसमें कि खरपतवार नाशक तत्व जो होते हैं लगभग 1 से 100 नैनोमीटर के भीतर समाहित रहता है, या नैनो कण के वाहक के रूप में उपयोग किया जाता है, जो अत्यधिक कुशल एवं लक्षित होता है और इसे ही नैनो खरपतवार नाशी कहा जाता है।
16: तो नैनो खरपतवार नाशी किसे कहा जाता है ये तो हमने जान लिया, लेकिन पहले से बाजार में बहुत सारे खरपतवार नाशी मौजूद हैं, नैनो खरपतवार नाशी की क्या जरूरत है सर, अभी इसका महत्व क्या है?
17: यह जो परंपरागत जो हम यूज करते थे, जो प्रयोग में लाते थे हमारे किसान भाई जो खरपतवार नाशी, उसके तुलना में अभी जो यह नैनो हर्बिसाइड है या नैनो खरपतवार नाशी है, यह जो है ना, इसका बहुत सारे विशेषताएं हैं, जैसे कि यह लक्षित वितरण प्रणाली पे काम करते हैं, मतलब कि यह एकदम जो है ना टू द पॉइंट जहां पे हमको यूज करना है वहां पे यह काम करता है, और परंपरागत जो हम यूज करते थे उसके तुलना में यह अत्यधिक कुशल भी होते हैं, और साथ ही साथ इसमें जो आवश्यक रसायन की मात्रा होती है वह बहुत कम होती है, और इससे भी अधिक जो इसका महत्वपूर्ण चीज है अभी के परिपेक्ष में, जो पर्यावरण जो प्रदूषित हो रहा है, जो बार बार हम कह रहे हैं कि अपना पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, तो यह जो नैनो हर्बिसाइड है या नैनो खर पतवार नाशी है, यह जो है ना पर्यावरण सुरक्षा में भी बहुत भूमिका अदा करती है, क्योंकि इसका रेसिडुअल इफेक्ट कम होता है, मतलब अवशेष मात्रा इसका कम होता है, और भी देखें साथ ही साथ तो यह नियंत्रित रिलीज प्रदान करता है, जिससे कि मात्रा जो है ना कम हो जाता है, और साथ ही साथ जो है ना जो आगे जो भी फसल भी आएंगे उसके लिए भी यह जो है ना बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है, और यह उपयोग की मात्रा भी अगर देखें तो परंपरागत के तुलना में इसका उपयोग बहुत ही कम होता है, ऐसे समझा जाए कि लगभग दसवां हिस्सा हम लोग यूज करते हैं परंपरागत के तुलना में। और यह धीरे धीरे भी काम करता है, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया कि इसका जो है ना टारगेट डिलीवरी होता है, तो इसीलिए यह जो है ना धीरे धीरे काम करता है। और भी देखें तो बीज का जो छिलका होता है

0: आसानी से जो छोटे छोटे उसमें छिद्र होते हैं उसके द्वारा भी अंदर चले जाते हैं। दूसरी बात है कि अभी जो हम सुन रहे हैं कि जो बहुत सारे जो परंपरागत खरपतवार नाशी हैं उससे जो है ना प्रतिरोधी क्षमता आ रहा है, तो उसको भी जो है ना उसको भी अगर हम देखते हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आज के परिप्रेक्ष्य में हम नैनो खरपतवार नाशी का प्रयोग करें तो अच्छा है। और साथ ही साथ पौधे के विकास में भी बहुत सहायक होते हैं क्योंकि यह बहुत छोटे होते हैं, पौधे के विभिन्न भागों में जाते हैं। उसके बाद है कि जो नीचे का पानी जो लेवल था परंपरागत खरपतवार नाशी से दूषित हो रहा था, तो उसके अदूषित जो प्रभाव है इसके उपयोग से कम होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और इससे इसके चलते जो कृषि की पैदावार है उसमें भी बढ़ोतरी की बहुत संभावना है। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आने वाले समय में हम जो है ना किसानों की आय दुगुनी करें, तो उसमें हम समझते हैं कि यह जो है ना टेक्नोलॉजी जो आने वाला समय है अपने किसान भाइयों के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने के कगार पे हैं। और ओवरऑल देखेंगे कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यह जो है ना स्वास्थ्य पर भी जो है ना चूँकि कम प्रभाव होगा, चूँकि इसका जो है ना रेसिडुअल इफेक्ट अवशेष का जो प्रभाव है कम है, तो इससे कुल मिलाकर स्वास्थ्य पर भी बहुत इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा।
1: तो सर अभी जैसे कि आपने बताया तो लग रहा है कि ये बहुत फायदेमंद है और ये बहुत कम मात्रा में और अवशेष भी कम छोड़ता है, तो कम मात्रा में इस्तेमाल करने के बाद भी इतने फायदे इसके होते हैं, आखिर ये काम कैसे करता है इसके बारे में बताइए
0: जी। यह क्या है कि जैसे कि हमने अभी कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदुएं थी उसमें भी हमने अभी बात भी किया, उसी में है कि यह जैसे सबसे जो पहला और जो प्रथम इसका जो यह है नैनो खरपतवार नाशी का, यह पूरा लक्षित जो करता है या जो है ना लक्षित क्रिया द्वारा काम करता है कि मतलब हमको जहाँ पे डालना है वहीं पे भी जाता है, जिससे कि जो है ना जो खरपतवार नाशी जो पौधे के विशिष्ट भाग होते हैं जैसे बीज है या प्रकंद है तो उसके जो है ना सभी अंगों में यह आसानी से चला जाता है, क्योंकि इसका जो है ना आकार हमने जैसा कि बताया था इसके परिभाषा में भी कि इसका जो साइज होता है 1 से 100 नैनोमीटर के रेंज में होता है जो बहुत ही सूक्ष्म होता है, इसके चलते यह जो है ना पूरा जो है ना लक्षित करके जाता है और उसके लगभग सभी भागों को यह लक्षित करता है। और दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो है ना इसका प्रवेश भी बहुत बेहतर तरीके से होता है, जो हम परंपरागत यूज करते थे चूँकि उसके साइज में अंतर था लेकिन इसका साइज छोटा होता है तो इसका जो है ना वो जो है ना प्रवेश भी बहुत बेहतर होता है। और साथ ही साथ प्रवेश बेहतर के साथ साथ जो इसका जो ऊपर का सतही क्षेत्रफल जितना छोटा कण होगा उसका उतना ही सतही क्षेत्रफल भरा होता है, तो इसके चलते क्या होता है कि यह बड़ा प्रभावी होता है क्योंकि वह जो है ना उसका जो कार्य क्षमता है बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि सतही का जो क्षेत्रफल है वह बहुत ज़्यादा हो जाता है। और तीसरा क्या है कि यह जो रासायनिक संजय और बहाव को कम करने में भी बहुत बड़ा भूमिका निभाती है क्योंकि इसका जो है ना अवशिष्ट कम होता है तो इसलिए जो है ना यह अत्यधिक टिकाऊ होता है। तो इस तरह से यह जो है ना यह तीन जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि यह जो है पूरा लक्षित होके काम करता है, बेहतर ढंग से प्रवेश करता है और रासायनिक संजय के अवशिष्ट को जो है ना वह कम करते हुए अपना टिकाऊपन बनाए रखता है।
1: मतलब सबसे बड़ी बात है कि लक्षित होके काम करता है और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है
0: जी,
1: कि
0: जी,
1: जिस चीज को खत्म करना है ये उसी को खत्म करता है और अवशेष भी नहीं रहता
0: जी।
1: सर काम कैसे करता है ये तो हमने जान लिया, लेकिन नैनो हर्बिसाइड को बनाया कैसे जाता है?
0: तो इसका जो है बनाने का जो तरीका है तो मुख्यतः दो तरह से इसको बनाए जाते हैं, जिसको कि अंग्रेजी में डायरेक्ट नैनो कण का उपयोग करते हैं लोग बोलते हैं डायरेक्ट नैनो कण, और प्रत्यक्ष रूप से जो कि हम क्या करते हैं कि जो कुछ ऐसे चीज हैं जो डायरेक्ट खरपतवार नाशी की तरह काम करते हैं और उसको जो है ना नैनो रेंज में हम ला के उसका उपयोग करते हैं। और दूसरा क्या करते हैं कि नैनो

0: दोनों को समाहित करके भी हम बनाते हैं। इसमें जो है ना, जो परंपरागत जो अपना खरपतवार नासी है उसको नैनो कण के साथ समाहित करके भी हम इसका बनाते हैं, जिससे कि इसका जो है ना कार्य क्षमता में जो है ना कई गुना बढ़ोतरी होती है। क्योंकि जो नैनो जो कण होते हैं या छोटे छोटे हैं होते हैं, इसका कार्यशीलता बहुत ज़्यादा होता है। सतह का जो जो ऊर्जा है वह भी ज़्यादा हो जाता है, उसके बाद सतह क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो कि परंपरागत में ऐसा नहीं हो पा रहा था। तो अब क्या है कि अब दो प्रकार है बनाने का, उसमें जैसे कि प्रत्यक्ष जिसमें नैनो कणों का हम उपयोग करते हैं, उसमें जो परंपरागत जो सक्रिय अवयव होते हैं वह उसको जो है ना नैनो रेंज में स्केल में डिलीवरी सिस्टम में शामिल किया जाता है। इससे क्या हो जाता है ना, इसका जो है ना प्रभावशीलता बढ़ जाती है और पर्यावरण का कि पे जो है ना जो बुरा प्रभाव है वह कम हो जाता है। और तीसरा जो ऑलरेडी हम लोगों ने चर्चा भी पहले भी किया कि जो यह टारगेट होता है और कंट्रोल रिलीज होते हैं, हम आपको जो इसमें जो है ना जो हम प्रयोग करते हैं वह बहुत लक्षित तरह से होता है, और इसका नियंत्रण जो हम रिलीज का नियंत्रण है वह भी बहुत प्रभावी होता है। साथ ही साथ जो हमने चर्चा किया था कि इसका उपयोग जो है ना जो धीरे धीरे जो होता है ना, तो इसको जो है ना कि जितना जहाँ जिस पौधे को चाहिए उस तरह से काम करके या जो है ना अपना कुशलता से उस पौधे को नाश करने में या खरपतवार नाशी को हटाने में बहुत भूमिका निभाती है। और जो दूसरा जो है नैनो कण समाहित जो करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि जो बहुत ही जो उपयुक्त होता है, जैसे पॉलीमर जो यूज होता है, पॉलीमर आधारित जो हम लोग बाहक यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पॉली के प्रेक्टो पीसीएल जो यूज करते हैं, यह जो है ना बहुत ही उसके लिए जो है ना कंफर्टेबल होता है, जो है ना बहुत उसके लिए सहयोगपन का काम करता है। दूसरा है कि मिट्टी के आधारित पे भी हम लोग बाहक का यूज करते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्ले वेस्ट बाहक। तो उसमें उसका खासियत यह है कि जो क्ले हम यूज करते हैं वह तो ऑलरेडी प्राकृतिक चीज़ है, हम उसमें वहाँ रसायन का उपयोग करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो यहाँ से भी इसकी जो है ना महत्ता और भी बढ़ जाती है, चूँकि यह प्राकृतिक रूप से हम इसका यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है, सबसे बड़ा किसान भाइयों के लिए क्या होता है कि इसमें खर्च जो है ना कम हो जाती है, लागत कम हो जाती है, क्योंकि जो है ना अच्छे गुणवत्ता अगर हम मिट्टी क्ले को यूज करते हैं तो उसमें भी जो है ना नैनो कण को समाहित करने में बड़ा अच्छी भूमिका निभाती है। और साथ ही साथ जो है ना इसमें क्या होता है कि सोखने की भी क्षमता बढ़ जाती है।
1: अच्छा
0: जी, जिसमें सोखने की क्षमता बढ़ जाती है, तो इस तरह से जो है ना और भी है, जैसे सिलिका आधारित बाहक है जिसको कि मेसोपोरस सिलिका नैनो कण भी बोलते हैं, उसी तरह कार्बन आधारित बाहक होते हैं जिसमें कि मुख्यतः जो है ना तेल वगैरह का भी जो है ना यूज करते हैं, तो इसमें जो है ना जो मुख्य जो चीज होते हैं इसमें जो है ना कार्बन होते हैं, और कार्बन से जो संबंधित है जैसे ग्राफीन वगैरह होता है उसका जो है ना उपयोग जो है ना बड़े पैमाने पे किया जाता है। तो इस तरह से जो है ना दो इसका मुख्य तरीका है बनाने का कि जिसमें कि हम नैनो कण को हम जो है ना प्रत्यक्ष रूप से हम यूज करते हैं, दूसरा नैनो कणों को डिफरेंट तरह के पॉलीमर में या क्ले में या सिलिका वेस्ट बाहक में उसको समाहित करके जो है ना अपना जो खरपतवार नाशी है उसको यूज करके बनाने से क्या होता है कि इसकी जो है ना कार्य क्षमता जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
1: सर आपने बताया कि इसे कैसे बनाया जाता है, दो प्रकार से इसे बनाया जाता है
0: जी।
1: और दो प्रकार से बनाया जाता है तो इसके प्रकार भी कई तरह के होते होंगे
0: जी, जी।
1: तो नैनो हर्बिसाइड्स कितने प्रकार के मौजूद हैं?
0: अच्छा अच्छा जी, यह जो है ना मुख्यतः अगर देखेंगे तो यह तीन तरह के होते हैं, जैसे कि पहला इसको बोलते हैं कार्बनिक खरपतवार नाशी, दूसरा अकार्बनिक खरपतवार नाशी, और तीसरा है जो है ना संयुक्त नैनो खरपतवार नाशी। तो यह जो है ना जो तीनों का जो नाम से ही पता चल रहा है। जैसे कार्बनिक खरपतवार नाशी के रूप में जो नैनो खरपतवार नाशी होता है, इसमें मुख्यतः मुख्य चीज जो होता है ना कार्बनिक चीज का उपयोग किया जाता है, जैसे तेल वगैरह का उपयोग किया जाता है, तो जिससे कि इसकी जो है ना क्षमता में बढ़ोतरी होती है और धीरे धीरे इसका जो है ना उपयोगिता बढ़ता है। तो और दूसरा है कि कार्बनिक खरपतवार जो नाशी होता है इसमें हम लोग मुख्यतः जो धातु युक्त जो है ना नैनो कण होता है जो बहुलता से मिल जाता है वैसे नैनो खरपतवार नाशी का यूज करते हैं, जिससे कि इसमें जो इसकी खासियत क्या है और कार्बनिक खरपतवार नाशी का इसमें जो धातु कण यूज करते हैं ना तो उसमें जो है ना छिद्र पोरस चीज होता है और उसमें जो पोरस में आसानी से जो अपना परंपरागत जो खरपतवार नाशी जैसे एट्राजिन है, सेमाजिन है, ग्लूफोसाइनेट ग्लेफोसाइनेट है तो यह सब जो है ना बहुत आसानी से उसमें समाहित हो जाते हैं, इससे इसकी जो है ना कार्य क्षमता में बढ़ोतरी हो जाती है। और जो तीसरा है इसको संयुक्त नैनो शाकनाशी भी बोलते हैं, तो इसमें दोनों तरह के चीज यूज करते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक।
1: अच्छा,
0: तो यह देखते हुए कि कहीं दोनों के उपयोग से इसकी जो है ना कार्य क्षमता में बढ़ोतरी हो जाए तो तीसरा जो है ना संयुक्त नैनो शाकनाशी का भी इसमें यूज होता है। इसमें संयुक्त रूप से कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों मिला रहता है। और उदाहरण तौर पे जो हम लोग यहाँ एक आया है जैसे है ना बेंटाजोन इनकेप्सुलेटेड इन कैल्शियम फॉस्फेट नैनो पार्टिकल्स में, तो यह जो है ना जो हर्बिसाइड का उदाहरण है नैनो हर्बिसाइड का जो कि बेंटाजोन इनकेप्सुलेटेड इन कैल्शियम फॉस्फेट नैनो पार्टिकल्स में, तो इसमें जो है ना किसान भाई लोग इस तरह के जो है ना नैनो हर्बिसाइड का यूज कर सकते हैं। उसी तरह जो है ना पीसीएल जो है ना एटीजेन एनपीएस है, पीसीएल जो एक पॉलीमर है और एट्राजिन नैनो पार्टिकल बेस्ड है, उसी तरह पीसीएल एमेट्रॉन है नैनो पार्टिकल है, पीसीएल सिमाजिन्स नैनो पार्टिकल्स है, तो इसमें जो है ना दोनों तरह के इसमें जो परंपरागत जो खरपतवार नाशी है उसको नैनो कण के साथ मिक्सित जब करते हैं तो इसकी कार्य क्षमता कई गुना बढ़ जाता है।
1: मतलब बनाया दो प्रकार से जाता है लेकिन अभी जो मौजूद है तीन प्रकार के हैं, एक कार्बन बेस्ड है, दूसरा जो कि अकार्बनिक है और तीसरा संयुक्त है जिसमें दोनों प्रकार के मिलाए हुए हैं। अब तक हमने नैनो खरपतवार नाशी से जुड़ी लगभग हर बात जान ली है लेकिन सबसे अहम बात जो किसान भाई बहन के लिए ज़रूरी होती है कि इसे उपयोग कैसे करेंगे, नैनो खरपतवार नाशी का उपयोग करने का क्या तरीका है, ये सर बताएं आप।
0: यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमने बहुत चीज़ देखा कि इसको कैसे बनाया जाता है, यह है क्या, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इसका उपयोग।
1: जी जी,
0: क्योंकि इसका उपयोग जो है ना बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसका जो कण बहुत छोटा होता है, अपना जो सूक्ष्म जो मतलब इतने छोटे छोटे हैं अपने आँख से इसको देख नहीं पाते हैं, तो इसलिए इसकी उपयोगिता में बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है और इसका उपयोग निश्चित तौर पर सुरक्षात्मक ढंग से ही करना चाहिए। और दूसरी जो बात है कि जितना ज़रूरत हो उतना ही उपयोग किया जाए। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि किसान भाई भावनात्मक में आके या किसी तरह के दूसरे को देख के भी जो है ना तो कभी कभी ज़्यादा यूज कर लेते हैं।
1: जी, जी।
0: तो उस तरह से हमको बचना चाहिए, जहाँ पे जितना ज़रूरत हो उतना ही उपयोग करें, क्योंकि यह टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा भी है तो इसके साथ सावधानी भी बरतने की उतनी ही ज़रूरत हो जाती है। और जो तीसरा जो है कि इसका जो उपयोग पौधों के सक्रिय चरणों के आधार पे करें तो और अच्छा होता है कि जो पौधा जो खरपतवार जो पौधे होते हैं तो उसका जो विकसित जो पूरा सक्रिय फेज जो होता है अगर उस समय टारगेट करें तो जो है ना नैनो हर्बिसाइड या नैनो खरपतवार नाशी या जो है ना अच्छा परिणाम देता है, क्योंकि उस फेज में यह बहुत एक्टिव तरह से काम करेगा, बहुत सक्रिय रूप से काम करेगा, जिससे कि उसमें जो है ना खरपतवार नाशी पे जो है ना बुरा इफेक्ट तो पड़ना है पड़ना चाहिए ताकि वह पौधा मर जाए और जो अपना जो जो खाद्य पौधा है उसको जो है ना विकास व्यवहार अच्छा हो। और भी इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यतः इसको जो है ना बहुत तरह से यूज करते हैं, लेकिन जो अभी तक देखा गया है कि इस जब हम स्प्रे करते हैं तो उसका परिणाम भी अच्छा आता है, तो इसलिए किसान भाइयों को इसका उपयोग जो है ना स्प्रे तरह से करें तो अच्छा है। और जो और भी महत्वपूर्ण बातें हैं कि इसका उपयोग तभी करें जब देखें कि हवा की बहाव नहीं है। अच्छा। उसमें बहाव होने से जो है जब हम उसका प्रयोग करते हैं तो हो सकता है कि बहाव के साथ कुछ जो है ना खरपतवार नाशी जो नैनो खरपतवार नाशी है अपने खाद्य पौधे पे भी आ जाए तो उससे जो है ना उसमें हानि की संभावना है। तो हम यहाँ किसान भाई को जरूर यह चीज़ बताएंगे कि जिस समय हवा का बहाव कम हो और उस समय जो है नहीं करें तो यह ज़्यादा कारगर भी होगा और इसका हानिकारक जो प्रभाव है कम है। और किसान भाई जब भी यूज करें तो जरूर या उपयोग करें तो उस समय जरूर मुंह पे कुछ कपड़ा हो या जो मास्क है उसका यूज करें, क्योंकि यह हमने बताया था प्रारंभ में यह बहुत छोटे होते हैं तो जितना ही छोटा होगा तो हो सकता है कि उसका प्रभाव ही उतना ही होगा। और तीसरी और जो आगे की बात है कि किसान भाई अगर नहीं जानते हैं किसी तरह का कि हम कितना लें क्या करें, तो जो परंपरागत हम यूज करते थे प्रयोग करते थे उसका जो है ना दसवां हिस्सा से
1: काम हो जाता
0: है। हाँ, के तुलना में आप लें, अगर पहले एक लीटर लेते थे तो उसका दसवां हिस्सा 0.1 हो जाएगा। इस तरह से जो है ना किसान भाई ध्यान में रखें इसका उपयोग, और जब जरूरत हो तभी करें
1: जी।
0: हाँ, जब जरूरत हो तभी करें और जरूर बुद्धिमत्ता को प्रयोग करके ही करें। भावनात्मक में दूसरे को देखा होसी करके किसान भाई इसका उपयोग नहीं करें, जहाँ जितना जरूरत हो उतना ही करें।
1: तो मतलब नैनो खरपतवार नाशी बहुत फायदेमंद है, लेकिन जितनी इसकी आवश्यकता होती है उतनी ही उतना ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए, और हवा का बहाव ये भी ध्यान में रखना चाहिए, और साथ ही इसकी मात्रा कितनी है ये तो ज़रूरी है ही, और मास्क पहनना भी बहुत ज़रूरी है। तो सर आपने बहुत सारी अच्छी बातें बताई और उम्मीद है कि ये हमारे किसान भाई बहनों के काम आएगी। और जो परंपरागत खरपतवार नाशी है उसका एक विकल्प है, क्योंकि उसमें बहुत नुकसान भी होते थे, तो उसका एक ये बेहतरीन विकल्प है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारियां दी।
0: धन्यवाद।
1: किसान भाई बहनों आज के लिए इतना ही, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ हाँ हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
6: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
7: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन, आइए जान

वर्षा हुई है, इसलिए आप वर्षा के जल का लाभ उठाते हुए धान की सबौर दीप किस्मों जैसे प्रभात, शुष्क सम्राट, सहभागी की बुआई 10 जुलाई तक जरूर कर दे। और किसान भाई बहनों, बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए कार्बन डाइजिन की 2 ग्राम मात्रा को 1 किलोग्राम बीज उपचारित करने के लिए इस्तेमाल करें। और ध्यान दें कि 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई जरूर करें। मध्यम अवधि वाली धान की किस्में जैसे राजेंद्र नीलम, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र श्वेता की रोपाई कर सकते हैं। और धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी की जा सकती है। किसान भाई बहनों, अगर आप श्री अन्न की खेती करना चाहते हैं तो ध्यान दें, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें और मड़ुआ की वकुला KMR 316, GPU 67, VL 379, राजेंद्र मड़ुआ RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1 इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, उचास जमीन में अरहर की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1, राजेंद्र अरहर 2 इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। और ध्यान दें कि अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का उपयोग करना बिल्कुल न भूलें। और किसान भाई बहनों, अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना ना भूलें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3 और गंगा 11 है। जिनके खेत में मूंग लगा है उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो किसान भाई बहन सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, भिंडी, कद्दू, खीरा, निनुआ और लौकी जैसी फसलों में निराई गुड़ाई करते रहें और खरपतवार नियंत्रित रखें। ध्यान दें कि पत्ती खाने वाली सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करना जरूरी होता है और अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डायमेथो 830 ईसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। और स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में गोबर की खाद डालना बहुत जरूरी होता है। खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्री फाउंड, डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और ध्यान रखें कि बीज गिराने के पहले बीजोपचार जरूर कर ले। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। और जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचों में जरूरत के हिसाब से छटाई कर ले जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचे में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा कर हटा दे। इससे कीट और रोगों के प्रकोप में कमी आएगी और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलेगा। पशुपालक भाई बहन ध्यान दे, महीने के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, इसलिए ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में टीके नहीं लगाए हो तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दे। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है।

0: सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: माँ पिता भगवान का वो अनमोल उपहार हैं जिनका प्रेम और आशीर्वाद जीवन को हर कठिनाई से पार करा देता है।
0: बहुत बहुत सुंदर विचार, इसके लिए आपका धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी का। लिखते हैं,
2: विमलेश जी, अजीत जी नमस्कार, जय जोहार। 18 तारीख को चिड़िया की बच्ची कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। अच्छी प्रस्तुति के लिए NCERT उमंग के साथ विमलेश जी और अजीत जी को बहुत बहुत बधाई।
0: और बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार और नियति कुमारी।
2: मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर।
0: और गांव बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से अमन वर्मा, रमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा, डॉक्टर मदन लाल वर्मा और वर्मा परिवार के सभी सदस्य।
2: और कुतुबपुर तहसील हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा।
0: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों को भेजने के लिए। और आइए एक बार फिर से चलते हैं हमारी आपकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में कुछ और नई और रोचक जानकारियों के साथ।
2: श्रोताओं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पेड़ों की। जैसा कि हमने इस सप्ताह की पहली कड़ी में सुना था, पेड़ सिर्फ पेड़ ही नहीं, वे इस धरती के सबसे प्राचीन जीव हैं। उनके आने के बाद ही दूसरा जीव जगत शुरू हो सका, क्योंकि वे वर्षा, भोजन, औषधि और श्वसन के मुख्य स्रोत हैं।
0: श्रोताओं, क्या आप जानना चाहेंगे कि पेड़ों की उत्पत्ति कैसे हुई? तो चलिए आपको बताते हैं।
2: पेड़ों की उत्पत्ति पृथ्वी के इतिहास की सबसे अद्भुत घटनाओं में से एक है। कहते हैं लगभग 4 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर पेड़ नहीं थे, केवल सूक्ष्म जीव थे। कालांतर में समुद्रों में शैवाल जैसे जीव विकसित हुए जो तैरते थे और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते थे।
0: धीरे धीरे ये शैवाल जैसे जीव समुद्र से निकलकर भूमि पर आए, इन्हीं से प्रथम स्थलीय पौधों का विकास हुआ।
2: प्रश्न ये है कि इन पौधों ने क्यों बढ़ना शुरू किया? इसका कारण ये था कि जीने के लिए वे अधिक सूर्य का प्रकाश पा सकें और दूसरे पौधों से प्रतिस्पर्धा कर सकें। इसी क्रम में ये पौधे बढ़ते बढ़ते पेड़ बन गए। ध्यान दें तो इस प्रक्रिया में विकासवाद का सिद्धांत काम करता है, यानी सफलतम ही टिका रहता है।
0: तो श्रोताओ, ये थी पेड़ों की उत्पत्ति की वैज्ञानिक कथा। अब जरा ध्यान दें, गर्मी का मौसम है, राह चलते चलते जब बहुत गर्मी लगती है तो आप किसी पेड़ की छाया में शरण लेते हैं
2: जी।
0: क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ठीक उस समय जब आप उसकी छाया का आनंद ले रहे होते हैं, उस समय वो पेड़ क्या क्या कर रहा होता है?
2: ध्यान से सुनिए मित्रों, उस समय वो हवा को ठंडा कर रहा होता है, क्योंकि वो वाष्पोत्सर्जन द्वारा एक प्रकार से प्राकृतिक एसी की तरह काम कर रहा होता है।
0: श्रोताओं, ठीक उस समय वो हमें ऑक्सीजन दे रहा होता है और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को अवशोषित कर रहा होता है जो हमारे लिए हानिकारक है।
2: उस समय वो शोर को कम कर रहा होता है, क्योंकि पत्तियां और शाखाएं प्रदूषित वायु को ही नहीं शोर को भी अवशोषित करती हैं। तभी तो कहते हैं पेड़ों के नीचे या जंगलों में एक शांति का आभास होता है।
0: श्रोताओं, एक बात और, ठीक उस समय वो पेड़ वर्षा और जल संरक्षण में योगदान दे रहा होता है, जिससे भविष्य में हमें भूजल और वर्षा का जल लगातार मिलता रहे।
2: उस समय वो हजारों कीटों, कवकों, पक्षियों और जीवों को आश्रय देकर प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में मदद कर रहा होता है।
0: सचमुच श्रोताओं, एक पेड़ हमारे और दूसरों के लिए मौन रहकर भी इतनी सेवा कर रहा होता है। वह बेशक मौन है, लेकिन मानो कहता है, मैं तुम्हारे लिए हवा को शुद्ध कर रहा हूँ, धरती को ठंडा करके जलवायु परिवर्तन की गति को यथासंभव रोक रहा हूँ,
2: स्वयं धूप सहकर तुम्हें छाया दे रहा हूँ, वर्षा लाने में सहायता कर रहा हूँ, मिट्टी के कटाव को रोक रहा हूँ। बदले में मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे और अन्य पेड़ों को जीवित रहने दो। हम सभी पेड़ धरती के फेफड़े हैं।
0: जी हाँ श्रोताओ, अब जब किसी पेड़ को देखें तो इन बातों को जरूर स्मरण कीजिएगा। पेड़ वास्तव में हमारे लिए प्रकृति के मौन लेकिन सबसे बहुमूल्य उपहार हैं।
2: तो ये थी पेड़ों के बारे में हमारी रोचक जानकारी इस सप्ताह की श्रृंखला में। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
0: जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो उस समय वो क्या क्या कर रहा होता है? कोई 2 या 3 कारण बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो उस समय क्या क्या कर रहा होता है, कोई दो या तीन कारण बताइए।
0: 8800440559 पर जो हमारा IVRS नंबर है और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम जो एक गीत के रूप में देश को समर्पित है। शीर्षक है प्यारा भारत।
2: ये कक्षा 3 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक सितार की एक नज्म पर आधारित है। श्रोताओं, ये खूबसूरत नज्म आपको ले जाएगी भारत के गगनचुंबी पर्वतों, कलकल करती नदियों, लहलहाती फसलों के मैदानों, घाटियों और फलों के बगीचों में।
0: तो आइए करते हैं भारत भ्रमण इस नज्म के साथ। शीर्षक है भारत प्यारा।

0: भारत।
1: अभी आप सुन रहे थे गीत भारत प्यारा।
2: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मौर्य कालीन पाटलिपुत्र।
1: इस कार्यक्रम में मौर्य साम्राज्य के महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के बारे में विस्तार से बताया गया है। विशेषकर ये उल्लेख किया गया है कि उनके शासन काल में जनतांत्रिक मूल्य कितने ऊंचे थे, खुफिया व्यवस्था कैसी थी और चीन के यात्रियों ने उनकी कीर्ति की कैसी प्रशंसा की।

मेरा नाम है पाटलिपुत्र। अब लोग मुझे बिहार प्रदेश की राजधानी पटना के नाम से जानते हैं। मेरा इतिहास बहुत पुराना है। इस बात को 2000 वर्ष से भी अधिक बीत चुके हैं जब एक छोटा सा गांव था मैं। नाम था पाटली। यहां वहां कुछ खेत, कुछ झोपड़ियां, पास में कल कल करती गंगा की निर्मल धारा। एक घाट था गंगा पार जाने के लिए। वहां एक दो नौकाएं खड़ी रहती। उसी घाट से महात्मा बुद्ध ने नदी पार की थी वैशाली जाने के लिए।

0: महात्मा बुद्ध का नाम मशहूर हो रहा था।
1: उन दिनों मगध पर मौर्यों का राज्य था, जो बिहार के पटना और गया जिलों में फैला हुआ था। मगध की सीमाओं को बढ़ाया बिंबिसार ने। एक बार वहां भयानक आग लग गई। इसके बाद बिंबिसार ने पास ही में नई राजधानी राजगृह का निर्माण करवाया।

0: राजा बिंबिसार के बाद मगध के सिंहासन पर बैठा अजात शत्रु। महात्मा बुद्ध के सम्मान में अजात शत्रु ने घोषणा करवाई,
1: सुने सुने सुने सभी ग्रामवासी सुने, सम्राट अजात शत्रु ने महात्मा बुद्ध के सम्मान में ये घोषणा की है कि आज से पाटली दुर्ग का मुख्य द्वार गौतम द्वार और गंगा नदी का घाट गौतम घाट कहलाएगा। सुने

महात्मा बुद्ध ने पाटली के विषय में भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में पाटली एक प्रमुख नगर और व्यापार का बड़ा केंद्र बन जाएगा।

जब बुद्ध पाटलीग्राम आए थे तो वे 79 वर्ष के थे। इसके एक वर्ष बाद ही कुशीनगर में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया।

0: अजात शत्रु ने वैशाली को जीत लिया। उसके बाद पाटली दुर्ग का महत्व और भी बढ़ गया।
1: अजात शत्रु के बाद राजा बना उसका पुत्र उदयभद्र। उदयभद्र अपने पिता अजात शत्रु की तरह विजेता तो न था, पर उसे नए नए राजमहल बनवाने का शौक था। उदयभद्र ने ही मुझे मगध की राजधानी बनाया।

0: समय बदला, मगध का सिंहासन महापद्म नंद के पास चला गया। इसी ने नंद वंश चलाया था।
1: पर मैं खुश नहीं था। मैं एक बड़ा नगर जरूर बन गया था। मेरा नाम दूर दूर तक मशहूर हो गया था, लेकिन मगध की जनता दुखी थी। महापद्म नंद के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे।

0: 他是爬狗，爬狗小妹，他是爬狗，他是西班牙的，他是爬狗小妹，他是爬狗。
1: महापद्म नंद के बाद मगध का राजा बना धननंद। बड़ी सेना, अपार धन संपत्ति थी उसके पास, मगर था वो बहुत ही घमंडी। धननंद ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी जो उसके पतन का कारण बनी। उसने तक्षशिला के प्रसिद्ध आचार्य कौटिल्य का भरे दरबार में अपमान कर दिया। अपमानित कौटिल्य ने प्रतिज्ञा की,

0: अत्याचारी धननंद, मैं कौटिल्य आज प्रतिज्ञा करता हूं कि तेरा सर्वनाश करूंगा, सर्वनाश।
1: और अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को चुना। मौर्य कुल का वो वीर युवक अपना देश छोड़कर भटक रहा था। कौटिल्य ने उसे तक्षशिला में शिक्षा दी।
2: और उधर भारत से बहुत दूर मैसिडोनिया में साहसी सिकंदर अपने पिता फिलिप के बाद राजा बना था। समय था ईसा से 336 वर्ष पूर्व। सिकंदर का सपना था विश्व विजेता बनने का। उसकी आंधी सारी दुनिया पर छा जाने के लिए उमड़ने लगी।
3: सिकंदर बड़े

सिकंदर बढ़ता गया, उसकी आंधी बढ़ती गई। 11 वर्षों में हर तरफ अपनी जीत के डंके बजाता हुआ सिकंदर भारत की सीमा पर आ खड़ा हुआ। छोटे छोटे राज्यों में बटा था तब का भारत। लोग वीर थे लेकिन आपस में लड़ते रहते थे। अभिसार के राजकुमार आम्भी ने सिकंदर का स्वागत किया, लेकिन राजा पुरु ने सिकंदर का डट कर मुकाबला किया।

पुरु की पराजय हुई। सिकंदर जीत तो गया, परंतु अब उसके सैनिक थक गए थे, उनका मनोबल गिरता जा रहा था, उन्हें कदम कदम पर कड़ी टक्कर मिल रही थी, आगे बढ़ने की हिम्मत खत्म हो रही थी।

0: गजब हो गया, सेना आगे बढ़ने से मना कर रही है वीर से गद्दार।
1: क्या आगे बढ़ने से मना कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैसिडोनिया का विश्व विजयी बनने का सपना चूर चूर हो जाएगा?
2: वीर सिकंदर, आप स्वयं सैनिकों से बात क्यों नहीं करते?
1: मैं ऐसा ही करूंगा। जाओ, सारे सैनिकों को एक जगह इकट्ठा करो, ये सिकंदर का आदेश है।
3: जी सम्राट, ऐसा ही होगा।
2: ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा।
1: मेरे वीर सैनिकों, क्या मैंने ठीक सुना है कि मैसिडोनिया की बहादुर सेना ने अब आगे बढ़ने से इनकार कर दिया है और वो वापस लौटना चाहती है? मैं पूछता हूं, ऐसा क्यों? जिस काम के लिए हमने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा, जिस काम में हमने अपने बहादुर साथियों की जान की बाजी तक लगा दी, आज उसी काम से तुम सब भागना चाहते हो? याद है तुम्हें, हमारी आंधी के सामने बड़े बड़े सम्राट तक उखड़ गए और आज चारों ओर सिकंदर का डंका बज रहा है। चुप क्यों हो? मुझे जवाब चाहिए। क्या हमारी तलवारों की धार खत्म हो गई है? क्या हमारी भुजाएं खोखली हो गई है? ये व्यास नदी देख रहे हो ना, इस नदी को पार करते ही
3: हम वापस लौटना चाहते हैं।
1: सुनो मेरे वीरों, व्यास नदी को पार करते ही हमें दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिलेगा।
3: हमें कुछ नहीं चाहिए, हम नहीं सकते हैं।
0: मैसिडोनिया चलो,
3: वापस चलो सम्राट।
1: सुनो मेरे वीरों, सुनो मेरे वीरों,
3: सबर करो साथियों।
2: अरे कुछ तो सबर करो साथियों, जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो आगे क्यों ना बढ़ा जाए? अगर मैसिडोनिया वापस चले भी गए तो लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? हम सम्राट की बात नहीं डाल सकते।
1: शाबाश मेरे वीरों, मुझे तुमसे यही आशा थी।

0: तुम सब सैनिकों के घेरे में हो। इस निर्जन खंडहर में आधी रात को क्या षड्यंत्र हो रहा था हम जान चुके हैं।
1: महाराज चंद्रगुप्त आप?
0: हाँ
2: महाराज, देखिए आचार्य कौटिल्य भी आ रहे हैं।
0: आचार्य प्रणाम। आप इस वक्त यहाँ?
3: आश्चर्य न करो चंद्र, मगध को असंख्य नेत्रों वाली गुप्तचर व्यवस्था चाहिए। मैं सावधान हूँ।
0: धन्य हो आचार्य, मौर्य साम्राज्य को आपकी बहुत आवश्यकता है।
4: धन्य हो आचार्य।
5: मगध सुखी था। चंद्रगुप्त प्रजा की भलाई करने वाला न्यायप्रिय शासक था, मगर एक बार फिर संकट सिकंदर के सेनापति निकेटर सेल्यूकस के रूप में बढ़ा आ रहा था।

0: सेल्यूकस भारत को जीतने का सपना लेकर आ रहा था, लेकिन अब भारत बदल चुका था। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को बुरी तरह पराजित किया।
1: बेचारा सेल्यूकस भारत को जीतने आया था, पर उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। मेगस्थनीस सेल्यूकस का राजदूत बनकर आया था। वो 4 वर्ष तक दरबार में रहा।

समय बदला। चंद्रगुप्त के शासन के 25 वर्ष बाद बिंदुसार राजा बना और फिर बारी आई उसके मझले बेटे अशोक मौर्य की। अशोक बहुत वीर था। उसने उज्जैनी और तक्षशिला के विद्रोह को सफलतापूर्वक शांत कर दिया और फिर हुआ कलिंग युद्ध।

ये क्या कर डाला मैंने, इतना रक्तपात सिर्फ विजय प्राप्त करने के लिए? नहीं नहीं, आगे ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अशोक मौर्य प्रतिज्ञा करता हूं, कभी युद्ध नहीं करूंगा। अब कभी युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, अब कभी युद्ध नहीं करूंगा।

उसने बौद्ध विहार बनवाए, शिलालेख खुदवाए। अगर अशोक का स्तंभ लेख न होता तो हम कभी ना जान पाते कि बुद्ध का जन्म कहां हुआ था। तभी श्रीलंका के राजा तिस्स का मैत्री संदेश आया, तो अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। इसी तरह बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा एशिया के और हिस्सों में भी हुआ। अशोक के बाद मौर्य वंश सशक्त नेतृत्व के अभाव में बिखरता चला गया। सम्राट आए, सम्राट गए, किसी को ऐश्वर्य मिला, किसी की सत्ता छीनी, पर मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं। समय के बहाव को देखते हुए और भारत की गोद में अपना स्थान बनाए हुए,

0: मौर्यकालीन पाटलिपुत्र अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और श्रोताओं इसी कार्यक्रम के साथ अब हम अपने कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए
0: नमस्कार
2: उमंग उमंग उमंग उमंग
3: नमस्ते क्लास टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है टीचर जी
4: जी
3: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं
4: जी सर आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी उपचार चल सकता है और भी लंबा
3: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं टीबी हारेगा देश जीतेगा
5: उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद
6: कौन सी कहानी टीकी
5: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार
7: हमें भी वो कहानी बताओ ना
5: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ माथा पीटता रह गया शिकारी एक भी चिड़िया लगी ना हाथ तो दोस्तों बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल
6: तो इस राक्षस से कैसे बचना है
5: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा सभी सुनो एक जरूरी बात अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ टीका सुरक्षित है टीका जाने व बीमारियों से बचाता है
8: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें
9: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है चक्कर आता है स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है जिसे काम करने की डेली एनर्जी सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं समझ रहे हैं ना लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें संतुलित पौष्टिक आहार खाएं नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन
10: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें
9: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें
10: आपकी सेहत की बातें
9: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें
10: युवाओं के रोजगार करियर की बातें
9: वो सब कुछ एक ही जगह पर
10: वो कहाँ पर
9: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर
10: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक
9: उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे किसान भाई बहनों को संबोधित विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में दोस्तों अभी गर्मा सब्जियों का मौसम चल रहा है और अगर गर्मा सब्जियों में या फिर किसी भी तरह के सब्जी में कीट लग जाते हैं तो फिर किसानों की आय बहुत घट जाती है ऐसे में जरूरी होता है कि उन कीटों की पहचान करें और उनका प्रबंधन करें। आइए इस बारे में हम विस्तार से जानते हैं डॉक्टर श्याम बाबू साह से जो हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट आप हैं कीट विज्ञान विभाग से सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में
11: धन्यवाद
9: सर आप गर्मा सब्जियों की खेती करने वाले किसान भाई बहनों को विस्तार से बताइए कि कौन कौन से कीट होते हैं जो गर्मा सब्जियों में लगते हैं और उनका प्रबंधन कैसे किया जाए
11: नमस्ते किसान भाइयों सबसे ज़्यादा जो कद्दू वर्गीय जो सब्जी है जो इस मौसम में लगते हैं अब इस कद्दू वर्गीय में कौन कौन है तो इसमें जो नेनुआ है उसके बाद करेला है उसके बाद आपको जो है विभिन्न प्रकार के खीरा है और कद्दू है, ये सारी चीज़ें जो है, परवल है, ये सब जो है कद्दू वर्गीय में आती हैं। उसके बाद किसान भाइयों की भिंडी भी इस सीजन में लगता है, तो ये मुख्यतः जो है इस मौसम में लगने वाले जो है ये विभिन्न प्रकार के फसल है। अब हम इसमें बात करते हैं कि किन किन फसलों में कौन कौन से कीट लगते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कद्दू वर्गीय में। कद्दू वर्गीय में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसमें जो हम लोग बात करें तो जैसे करेला की बात करते हैं, तो करेला में क्या होता है कि शुरुआती कंडीशन में इसमें जो शक करने वाले होते हैं, जो पौधे के पत्तियों से रस चूसने वाले कीट होते हैं, तो वो आपको दिखाई देंगे। और इसके चलते क्या होता है कि आप देखेंगे कि करेला के जो पत्तियां हैं, पौधे में जो पत्तियां पाई जाती हैं, तो वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। कभी कभार क्या होता है कि इसमें जो है ये थोड़ा थोड़ा स्पॉट्स आएंगे और बाद में क्या होता है कि ये सूखने लगते हैं, उनकी जो पत्तियां हैं सो सूखने लगती हैं। और ये जो है एक सकिंग टाइप का जो पेस्ट है उसके चलते होता है, जैसे जो थ्रिप्ट है या वाइट फ्लाई है इसके चलते होता है। तो इनसे हम लोग, दूसरी बात क्या है कि, और जो दूसरा है इसमें फ्रूट फ्लाई का प्रकोप होता है, तो फ्रूट फ्लाई इसके चलते क्या होगा, जो करेला का जो फल होता है तो इसके जो शिशु होते हैं वो वहाँ पे जा करके पहले से छोटा सा होल क्रिएट करते हैं, छिद्र क्रिएट करते हैं, और बाद में जो है ये करेले के अंदर उसको खा करके और करेला को नष्ट कर देते हैं। तो इनसे हमको बचाव के लिए, अगर हम जैसे कि इनके फ्रूट फ्लाई के लिए अगर बात करें, तो इसके लिए विभिन्न प्रकार के आजकल जो है कि प्रपंच या ट्रैप बोलते हैं अंग्रेजी में, वो आ गया है। और इसके ट्रैप में जो एक क्यू लियोर ट्रैप है, उस क्यू लियोर ट्रैप में क्या होता है कि एक ऐसा लकड़ी का चीज जो है कि उसमें लगा होता है और उसके अंदर ऐसा सेंट निकलता है कि उसमें लगता है कि इसमें मादा का सेंट निकल रहा है, जिसके चलते जो कीट का, जो फ्रूट फ्लाई का जो कीट का नर होता है उसमें ट्रैप में जाके फंस जाता है। और फंसने के बाद क्या होता है कि जो नर की संख्या है वो बहुत कम हो जाती है, और जिसके चलते पुनः जो है इस कीटों का जो जनसंख्या है उतना नहीं बढ़ पाता है, और हमारा जो करेला का जो फल है वो बच जाता है। दूसरा जो है, जो रस चूसने वाले जो कीट है उसको, उसके बचाव करने के लिए हम जो येलो स्टिकी ट्रैप का इस्तेमाल करते हैं, और ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें एक कार्ड का, जैसे कि हम लोग जो एक जो पढ़ने वाला जो पेपर होता है वो, या लिखते जो हम लोग हैं, उसी साइज का एक कार्ड होता है, और वो कार्ड जो होता है पीला रंग के होता है, और इस पीले रंग के कार्ड पे इस पे गोंद लगा होता है, और इस जो गोंद लगे हुए जो कार्ड है, जो पीले कार्ड है, इसको हम लोग किसी लकड़ी के माध्यम से करेले के फील्ड में लगभग 1.5 फीट ऊंचाई पे इसको हम लोग लगाते हैं। इसमें होता क्या है कि जितने भी रस चूसने वाले जो कीट है उनको लगता है कि ये उसका करेला का फूल है, और उस करेले के फूल को समझ करके वो उस पर जाते हैं, और जाने के बाद क्या होता है वो उसी में चिपक जाते हैं, जिसके चलते क्या है कि पुनः जो है कि ये जो कीट है उसकी संख्या कम हो जाती है, और जो हमारे जो करेला के फसल में जो विभिन्न प्रकार के जो ये रोग का भी ये फैलाव करते हैं उससे बचाव हो जाता है। तो ये आपके करेला पे हो गया। और पुनः जब हम लोग बात करें तो जैसे कि खीरा है, तो खीरे में भी लगभग ये फ्रूट फ्लाई का ही प्रकोप जो है सबसे ज़्यादा होता है, और खीरे में भी हम इस प्रकार के ट्रैप को प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जिसको जो नेनुआ बोलते हैं किसान भाइयों, तो नेनुआ में भी सेम टाइप की बात आती है। इसके बाद क्या है कि ठीक है आपको अगर ट्रैप नहीं मिलता है तब क्या करें, तो उस कंडीशन में चूंकि ये सब्जियां हैं जिसको हम लोग बहुत जल्दी मतलब पेस्टिसाइड छिड़कने के बाद इसको लंबे टाइम तक नहीं रखते, तुरंत उसको हम लोग सब्जी खा लेते हैं, तो इसमें क्या है कि बहुत जो विषाक्त जो कीटनाशी है उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके इस्तेमाल करने से क्या है कि वो हमारे जो शरीर है उस पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है और विभिन्न प्रकार के असाध्य रोगों का हम लोगों का ये कारण बनता है। तो उसे इसे में है कि नीम का तेल जो होता है, नीम ऑयल जिसको बोलते हैं, उसको 1500 ppm जो है उसकी 4 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में हम लोग इसको शाम के समय में जो है कि इसको छिड़काव कर सकते हैं। अब इसके बाद भी जो है कि अगर लगता है कि नहीं सो अगर ये कंट्रोल नहीं हो रहा है अगर नीम के वायल से, लेकिन मुख्यतः ये है देखा गया है कि नीम के वायल को अगर हर एक हफ्ते पे अगर हम रिपीट करते हैं मतलब दोहराते हैं तो ये इंसेक्ट की संख्या कम रहती है और आपको रासायनिक कीटनाशी की ओर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन अगर किसान भाइयों अगर ये भी उपलब्ध है आपको नहीं है तो अगर ये फ्रूट फ्लाई से समस्या है तब उस कंडीशन में जो है इसमें जो इमामेक्टिन बेंजोएट एक दवा है उसकी जो है 0.4 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में इस और उसमें कुछ स्टिकर मिला करके इसको छिड़काव करें, तो इससे जो है कि आपको इसे निदान हो जाएगा। अब जो बात करते हैं इस कुकुरबिट्स या लतीदार के अलावे, तो लतीदार में किसान भाइयों एक और कीट है जिसको हम लोग को उस पर चर्चा करना चाहिए, जैसे कि उसको बोलते हैं अंग्रेजी में बोलते हैं रेड पम्पकिन बिटिल, जो लौकी में जनरली आप देखते होंगे जहाँ पे भी कद्दू जो लगता है तो उसके झांका पे या नीचे में भी आपको देखते हैं तो लाल लाल टाइप के आपको कीट दिखाई देते हैं जिसको लाल भ्रिंग हम लोग कहते हैं। तो ये लाल भ्रिंग को रोकथाम करने के लिए शुरुआती कंडीशन में क्या होता है कि अगर राख है किसान भाइयों के पास उपलब्ध है राख, तो इसको राख का भुड़काव सवेरे के समय में करने से ये जो कीट है ये भाग जाते हैं और भागने के कारण आपको कोई रासायनिक कीटनाशी इस्तेमाल किए बिना इसे आप बच सकते हैं। ये कीट जो है मुख्यतः जो है आपके जो ज़मीन में जो सटे पहले तो ये पत्तियों को खाते हैं पत्तियों, उसके बाद क्या है कि अगर आपका फल निकलता है कद्दू का निकलता है जो ज़मीन से सटे हुए रहता है तो उसमें भी ये हल्का सा छिद्र बनाता है और बाद में जो है इसके अंदर खा करके और सब्जी को जो है मतलब वो ख़राब कर देता है, वो उसके मार्केट वैल्यू को जो है कम कर देता है। तो ये है एक तो राख छिड़काव करना है, दूसरा जो है इसमें एक फेनभल का जो पाउडर आता है उसका 2% मात्रा जो है उसे 10 से 15 केजी जो है प्रति हेक्टेयर की दर से जो है उसको सवेरे के समय में भुड़काव करने से ये जो लाल भ्रिंग है इससे भी आप छुटकारा पा सकते हैं। तो ये तो हुई आपको कद्दू वर्गीय सब्जियों के लिए। अब जो एक बहुत जो इम्पॉर्टेंट जो पेस्ट है वो है भिंडी, तो भिंडी के लिए भी भिंडी में जो है कौन कौन जनरली कीट लगते हैं, तो भिंडी में सबसे ज़्यादा जो है आप देखते होंगे कि जो उसका जो फल है तो फल को आप देखते होंगे कि उसमें छोटा सा पहले छिद्र करता है फिर बाद में क्या होता है कि आपके भिंडी को टेढ़े मेढ़े कर देता है वो, तो ये फल एवं प्ररोह बेधक कीट इसको बोलते हैं। तो ये इसके चलते क्या होता है ये आपका दो तरह से क्षति करता है, एक शुरुआती कंडीशन में ये क्या करता है कि जो भिंडी का जो छोटे पौधे होते हैं जो बढ़ने वाला पोर्शन होता है तो ये इसके जो शिशु है उसी में उसके बढ़ने वाला पोर्शन में ही उसको काट देता है और काट देने के बाद क्या होता है कि जो उसको बढ़ने वाला जो कली होता है चूँकि उसी को काट देता है तो पुनः जो है कि नीचे से या बगल से कली निकलती है, जिसके चलते जो है कि उत्पादन पे बहुत मतलब इसका प्रभाव पड़ता है। तो एक तो ये है शुरुआती कंडीशन में, और बाद की कंडीशन में जो है कि आपके फल को ये टेढ़े मेढ़े कर देते हैं। और आपका जो है कि कभी कभी आप देखेंगे क्या कि जो भिंडी का जो बढ़ने वाला जो एरिया है, जो भाग है ऊपरी वाला भाग, वो झुका हुआ नीचे की ओर गिरा हुआ है, क्योंकि उसको काट देते हैं इसके शिशु। तो अब इससे हम लोग कैसे इसका बचाव कैसे करें, तो सबसे पहले तो इसमें ये है कि आप अगर ऐसे भिंडी आपके अगर में दिखती है तो उसको आपको तोड़ करके खेत में कभी नहीं फेंकें, उसको एक जगह जमा करें और उसको मिट्टी में दबा दें। तो पहला काम तो ये है। उसके बाद क्या है कि नीम आधारित जो है कि कीटनाशी हम लोग जो है कि इसमें छिड़काव कर सकते हैं। जैसे कि हमने बताया कि नीम की 1500 ppm की मात्रा जो है 4 liter पानी में प्रति लीटर पानी में इसको छिड़काव करना है। दूसरा जो कीटनाशी है वो है इमामेक्टिन बेंजोएट। ये इमामेक्टिन बेंजोएट पुनः जो है 0.4 ग्राम प्रति लीटर पानी में, या यूँ कहें तो 10 लीटर पानी में 4 ग्राम इमामेक्टिन बेंजोएट की दवा इसमें देना है। अब इमामेक्टिन बेंजोएट जो है ये लिक्विड के फॉर्म में नहीं होता है, ये एक झिल्ली के तरह होता है। तो पहले इसको हम लोग को घुला लेना है, और घुलाने के बाद तब इसको जो है हमारा स्प्रेयर है उस स्प्रेयर में डालना है, और उसमें कुछ स्टिकर की मात्रा, जैसे कि अगर स्टिकर आपके पास नहीं हो तो 1 rupee वाला जो शैम्पू का सैसे आता है वो इसमें डालिए, और पुनः उसको अच्छी ढंग से मिला लेने के बाद इसको जो है कि शाम के समय 4 बजे के बाद इसको जो है छिड़काव करिए। तो ये हो गया। दूसरा जो कीटनाशी है वो स्पाइनोसेड है, स्पाइनोसेड 45 EC। यह एक लिक्विड के फॉर्म में ये कीटनाशी पाया जाता है, और इसका जो है आधा ml मात्रा जो है प्रति लीटर पानी में छिड़काव करने से आप इसे जो है कि रोकथाम कर इससे हो जाता है। अब दूसरा जो है कि एक है जो लाल बग होता है एक भिंडी में, और ये क्या करता है कि ये इसके जो शिशु और जो वयस्क होते हैं वो रस चूसते हैं आपके जो भिंडी के जो पत्तियां होती है उसके, और जिसके चलते क्या होता है कि ये पत्तियां सूख जाती है। तो चूंकि ये एक बग है, रस चूसने वाली कीट है, इसलिए इसके कंट्रोल के लिए मैनेजमेंट के लिए थायोमेथोक्जम का जो है 35 AC का 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसको छिड़काव करना है, ठीक है। थायोमेथोक्जम 75 AC। और दूसरी जो दवा है इसको हम लोग जो इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें है इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL। इसकी जो है 1 ml मात्रा जो है प्रति 3 liter पानी में इसका छिड़काव करना है। अगर संख्या ज़्यादा हो तो आधा ml प्रति लीटर पानी में, साथ में हम किसान भाइयों बराबर बोलते हैं कि स्टिकर इसमें मिलाना ही मिलाना है। स्टिकर के मिलाने से, अगर स्टिकर या शैम्पू के मिलाने से ये कीटनाशी की क्षमता को बढ़ा देता है, और ये कीटों के रोकने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है, इसलिए स्टिकर आप ज़रूर लगाएं। तो ये भिंडी में लगने वाले जो मुख्यतः जो कीट है। दूसरा, अब चूंकि बीच बीच में किसान भाइयों पानी भी हो जा रहा है जो इस साल जो हम लोग देख रहे हैं, तो वहाँ पे जो क्या होता है कि आप देखेंगे कि आपका जो भिंडी का जो पूरा पत्ती है तो उसमें जो भेन होता है वो पीला दिखता है, और बाद में क्या होता है कि पूरी जो भिंडी का जो पत्ती है वो चितकावर टाइप से हो जाती है, पीली टाइप से हो जाती है। और एडवर्स कंडीशन में जब और ज़्यादा जब इसकी व्यापकता होती है तो कभी कभी आपका भिंडी भी पीला पीला जब निकलने लगता है, तो ये भी जो सफ़ेद मक्खी है उसके चलते होती है, और यही जो मक्खी है सफ़ेद मक्खी ये इसके विषाणु को एक पौधे से दूसरे पौधे पे स्थानांतरित करती है। इसीलिए जब किसान भाइयों आपको अगर आपके खेत में ऐसा दिखता है पत्तियों पे ऐसा अगर ऐसा सिम्टम दिखता है ऐसा, तो आपको क्या करना है कि जहाँ पे दिखे अगर किसी ब्रांच में है तो उस ब्रांच को मतलब किसी चीज से काटिए और काटने के बाद उसको मिट्टी में दबा देना। अगर पूरे पौधे में ही अगर है तो पूरे पौधे को ही नीचे से जड़ से उखाड़ करके और उसको खेत में नहीं छोड़ना है। उसको जितने भी अगर 5-10 पौधे में है आपके खेत में तो उसको उखाड़ करके और उसको जो है मिट्टी के अंदर दबा दीजिए। चूँकि अगर आप किसान भाई उखाड़ करके अगर फील्ड में ही छोड़ देंगे, खेत में ही छोड़ देंगे, तो उसमें जो उस कीट का जो जीवन चक्र के जो रहता है तो पुनः आपका जो स्वस्थ पौधा है उसके ऊपर वो जाता है और जाने के बाद उसको पुनः उसमें जो विषाणु है उस विषाणु को वो अंतरित कर देता है, उसमें डाल देता है और जिसके चलते हैं कि आपका जो अच्छा पौधा है भिंडी का उसमें भी ये रोग फैल जाएगा। तो इन चीज़ों को आपको किसान भाई ख्याल रखना है और मतलब इन चीज़ों के करने से हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो जो गर्मी के गर्मा का जो सब्जी लगा हुआ है इसको आप अच्छे से कीटों से नियंत्रित कर सकेंगे और अपनी उत्पादकता को बढ़ा करके आप अपनी आमदनी को बढ़ा सकेंगे। धन्यवाद।
12: थैंक यू सो मच सर। उम्मीद है कि किसान भाई बहन आप सर के द्वारा जो भी बताए गए उपाय हैं उन्हें अपनाएंगे और कीटों का बेहतर प्रबंधन करेंगे। अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले कुछ खास बात की अपना और अपनी फसलों का रखें खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
13: उन्नत कृषि

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ हाँ हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
6: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
7: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases.
8: So, see you at the vaccination center soon.
9: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
10: FM Green, हरियाली से खुशहाली तक।
11: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 8 जुलाई से 12 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। साथ ही इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 8 से 12 जुलाई के दौरान 15 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, पिछले कुछ दिनों में वर्षा हुई है, इसलिए आप वर्षा के जल का लाभ उठाते हुए धान की सबौर दीप किस्मों जैसे प्रभात, शुष्क सम्राट, सहभागी की बुआई 10 जुलाई तक जरूर कर दें। और किसान भाई बहनों, बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए कार्बन डाइजिन की 2 ग्राम मात्रा को 1 किलोग्राम बीज उपचारित करने के लिए इस्तेमाल करें। और ध्यान दें कि 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई जरूर करें। मध्य

की खेती करते हैं उन्हें बता दे उचास जमीन में अरहर की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1, राजेंद्र अरहर 2 इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और ध्यान दे कि अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का उपयोग करना बिल्कुल न भूले। और किसान भाई बहनों, अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दे खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना ना भूले। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3 और गंगा 11 है। जिनके खेत में मूंग लगा है उन्हें बता दे मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो किसान भाई बहन सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे भिंडी, कद्दू, खीरा, निनुआ और लौकी जैसी फसलों में निराई गुड़ाई करते रहें और खरपतवार नियंत्रित रखें। ध्यान दे कि पत्ती खाने वाली सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करना जरूरी होता है और अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डायमेथो 830 ईसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दे कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में गोबर की खाद डालना बहुत जरूरी होता है। खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्री फाउंड, डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और ध्यान रखें कि बीज गिराने के पहले बीजोपचार जरूर कर ले। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दे लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचों में जरूरत के हिसाब से छटाई कर ले जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचे में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा कर हटा दे। इससे कीट और रोगों के प्रकोप में कमी आएगी और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलेगा। पशुपालक भाई बहन ध्यान दे महीने के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है इसलिए ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में टीके नहीं लगाए हो तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दे। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। यहाँ हम बातें करते हैं सेहत की, घर परिवार की और उन सवालों की जो अक्सर हमारे मन में तो आते हैं पर जुबान पर नहीं आते। आज का विषय है गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्वाइकल कैंसर से बचाव और HPV वैक्सीन को लेकर फैलती अफवाहें। कई घरों में ये बात अभी नहीं है। कहीं कहा जाता है कि ये टीका जरूरी नहीं, कहीं कहा जाता है कि इससे शरीर पर असर पड़ता है, और कहीं कोई व्हाट्सएप पर वीडियो भेज देता है तो पूरा घर असमंजस में पड़ जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम अपने बच्चों का भविष्य किसी फॉरवर्ड के भरोसे छोड़ सकते हैं, या हमें सही जानकारी, डॉक्टर की सलाह और सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा करना चाहिए। आज हमारे साथ हैं हमारी अपनी टीकन देवी, जो हर मुश्किल बात को आसान भाषा में समझाती हैं। और थोड़ी देर में हम सुनेंगे एक माँ की कहानी, डर, उलझन, गुस्सा और फिर धीरे धीरे भरोसे तक पहुंचने की कहानी। टीकन भाभी, स्वागत है।
1: धन्यवाद। और मैं तो यही कहूंगी कि किस भी नई दवाई, तकनीक या सही सुझाव के बारे में डर होना गलत नहीं है, लेकिन उसके बारे में सही जानकारी पाना, डॉक्टर के पास जाना या स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों के बारे में सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके डर कर बैठ जाना सबसे बड़ी गलती होती है। अगर हम आज HPV वैक्सीन की चर्चा कर रहे हैं तो माँ बाप डरते हैं, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की चिंता होती है कि कई लोग अपने अपने घरों में डर का हाथ पकड़कर बैठ गए हैं और अफवाह पर विश्वास कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि सच कहीं बाहर इस सब अफवाहों के बीच छिप गया है। हम आज उसी सच को घर के भीतर बुलाएंगे।
0: बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं। मान लीजिए एक साधारण सा घर है, शाम का समय है, खाना बन रहा है, बेटी स्कूल से कोई जानकारी लेकर आई है। माँ थकी हुई है, लेकिन मन में एक और थकान है जो सुन सुनकर जमा हुई है। उस घर में आपको ले चलता हूं।
1: बिल्कुल, चलिए चलते हैं उस घर के भीतर।
2: अरे टीकन भाभी, बड़े सही वक्त पर आई हैं। देखिए तो जरा, पायल अभी स्कूल से आई है और बस ये कागज मुझे पकड़ाकर चली गई ट्यूशन के लिए।
1: हाँ सुनीता, मुझे इस कागज की जानकारी है, तभी तो मैं आई हूँ। ये कागज जरा अलग है। स्कूल में आशा दीदी बता रही हैं कि 14 साल की लड़कियों के लिए HPV का टीका लगेगा। मुझे लग रहा था कि तुम परेशान हो जाओगी। तुम्हारे पति तो दूसरे प्रदेश में जंगलों के बीच सड़क बनाने का काम कर रहे हैं, रोज उनसे बात भी नहीं पाती हो, तो मैंने सोचा कि मैं ही तुमसे बात कर लूं।
2: अरे भाभी, ये HPV वे या जो भी नाम ही है इसका, एक मुसीबत हो गई है। 3 दिन से न जाने कितने तो मैसेज आ चुके हैं, कितने फोन आ रहे हैं। को कह रहा है सरकारी टीका है, लगवा दो। कुछ कह रहे हैं अरे बिल्कुल मत लगवाना, पता नहीं क्या असर हो। अब तो बैग 6 इतने छोटे हैं। कुछ लोगों ने तो फोन पर वीडियो भेज दिया, कह रही थी इससे लड़कियों के पीरियड्स खराब हो जाते हैं। कोई कह रहा है बांझ जो जाएंगी बेटियां, किसकी सुने। ये तो बहुत बड़ा निर्णय लेना होगा।
1: और तुमने वीडियो देखा?
2: देखा, सफेद कोट पहनी एक औरत बोल रही थी कि मेरी क्लिनिक में ऐसे ऐसे केस आए। अब हम कैसे माने क्या सही है क्या गलत, हम डॉक्टर थोड़े हैं।
0: सुनीता, तुम तो पढ़ी लिखी हो, यही पढ़ाई लिखाई का सबसे बड़ा फायदा होता है। जब कोई बिना ठोस स्रोत के बस सफेद कोट पहनकर कैमरे में देखकर कुछ बोल दे तो वो सच नहीं बन जाता। हमारे पास, क्या तुम्हारे अपने सामुदायिक रेडियो पर जो सामग्री स्वास्थ्य मंत्रालय की जागरूकता सामग्री में है, उसमें साफ कहा गया है कि क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन की एक ही डोज प्रभावी है, ये मासिक धर्म पर असर नहीं डालती और बांझपन का कारण नहीं बनती। ये जानकारी वर्षों के वैज्ञानिक अध्ययन और निगरानी पर आधारित है। लेकिन सुनते हैं सुनीता के मन में और क्या चल रहा है।
2: टीकन भाभी, एक बात कहूं, हमारे यहाँ जो भी नई चीज आती है, पहले हम साधारण लोगों पर और गरीबों पर ही क्यों आजमाते हैं, ये भी मन में आता है। ऊपर से ये भी सुनने को मिला कि पहले 3 डोज लगती थी, अब 1 बोल रहे हैं। कोई कह रहा है ये जल्दीबाजी है।
1: तुम्हारा सवाल ठीक है और ऐसे सवाल पूछने भी चाहिए, लेकिन जवाब सही जगह से लेना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की सामग्री कहती है कि अब जो क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन दी जा रही है उसकी 1 डोज प्रभावी मानी गई है। ये कोई हवा में लिया फैसला नहीं है, दुनिया भर में शोध, सुरक्षा निगरानी और विशेषज्ञों की सलाह के बाद ये नीति बनी है। और ये वैक्सीन कोई आज की चीज नहीं है, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है। 100-125 नहीं, 160 से ज्यादा देशों में इसका इस्तेमाल हुआ है। इतने साल की निगरानी के बाद ही इसे सार्वजनिक कार्यक्रम में लाया गया है।
2: पर देखो, हमें तो यही डर लगता है कि कहीं बेटी के आगे चलकर शादी ब्याह, बच्चा होने में कोई दिक्कत ना हो जाए।
1: यही अफवाह सबसे ज्यादा फैल रही है। पर मंत्रालय के मिथक बनाम तथ्य वाले संदेशों में साफ लिखा है, एचपीवी वैक्सीन से बांझपन नहीं होता, बल्कि ये भविष्य को मजबूत करती है, नुकसान नहीं पहुंचाती। और सिर्फ पोस्टर नहीं, जिन्होंने वैक्सीन ली उनकी गवाही भी है। किसी ने 13 साल की उम्र में वैक्सीन ली और कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ। एक और महिला की कहानी है, उन्होंने 2010 में वैक्सीन ली थी और आज वो माँ है। यानी जो डर फैलाया जा रहा है उसका आधार नहीं है।
0: यह बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। आज माँ है वाला प्रमाण सिर्फ भावनात्मक नहीं, अफवाह के एक बड़े झूठ को तोड़ता है। और यही SSLK की ताकत है, मन की घबराहट को तथ्य और अनुभव दोनों से संभालना।
2: अच्छा, मान लिया कि बांझपन वाली बात झूठ है, पर पीरियड्स के बारे में? लड़कियों का शरीर नाजुक होता है, कोई गड़बड़ हुई तो?
1: देखो, इस पर भी साफ जानकारी है, एचपीवी वैक्सीन मासिक धर्म को प्रभावित नहीं करती और पीरियड्स के दौरान भी ये सुरक्षित है। पीरियड्स बिगड़ जाएंगे वाली बात अफवाह है। जब डॉक्टर, मंत्रालय और वैज्ञानिक सामग्री एक ही बात कह रहे हैं तो फिर सोशल मीडिया की बात क्यों माने?
2: इसलिए कि सोशल मीडिया वाले डर जल्दी बेच देते हैं, सच तो धीरे धीरे समझ में आता है।
1: बिल्कुल, अफवाह तेज भागती है, सच धीरे चलता है, इसलिए हमें सच को बैठकर सुनना पड़ता है। तुम अपनी बेटी का चेहरा देखो और सोचो, क्या उसे एक ऐसे कैंसर से बचाने का मौका छोड़ दोगी जो रोका जा सकता है?
0: ठीक है भाभी, यही तो जरूरी सवाल है। हमारे पास उपलब्ध सार्वजनिक जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है कि सर्वाइकल कैंसर रोका जा सकता है। ये उन कुछ कैंसरों में है जिनकी रोकथाम संभव है। HPV संक्रमण अक्सर बिना लक्षण फैलता है, पर समय के साथ गंभीर रूप ले सकता है। वैक्सीन उस कहानी को शुरू होने से पहले बदल सकती है।
2: एक बात और, अगर ये इतना अच्छा है तो खर्चा कितना आएगा? सच कहूं टीकन भाभी, दवा इलाज का नाम सुनते ही जेब का डर भी लगने लगता है।
1: ये सवाल भी बड़ा है और जरूरी है, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि अच्छा इलाज मतलब महंगा इलाज। लेकिन ये वैक्सीन 14 साल की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध है, यानी मुफ्त। यही नहीं, कई संदेशों में बार बार कहा गया है, सुरक्षा किसी की जेब पर निर्भर नहीं होनी चाहिए।
2: मुफ्त? सच में?
1: हाँ, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर। और जहां व्यवस्था हो वहां यूविन जैसे प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट की भी जानकारी दी जा रही है। मगर यदि ये सब समझ में ना आए तो सीधा अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, PHC, CHC या जिला अस्पताल में पूछो। डॉक्टर से पूछो, ANM से पूछो, आशा से पूछो। फॉरवर्ड भेजने वाले से क्यों पूछना है?
2: सुनने में आसान लगता है, पर घर वाले भी तो माने। कोई सास कुछ कहेगी, कोई पड़ोसन कुछ, फिर पति कहेगा, देख लो तुम जैसा ठीक समझो। लेकिन जिम्मेदारी माँ के सिर पर आ गिरती है।
1: इसीलिए तो मैं कहती हूँ, माँ को अकेला मत छोड़ो। ये सिर्फ माँ का फैसला नहीं, परिवार की समझ का फैसला होना चाहिए। पर अगर परिवार उलझ रहा है तब भी माँ को तथ्य पकड़ना चाहिए। देखो, कोई भी समझदार फैसला 3 चीजों पर टिकता है, वैज्ञानिक प्रमाण, डॉक्टर की सलाह और विश्वसनीय सरकारी जानकारी। बाकी सब शोर है।
0: श्रोताओं, जरा सोचिए, यदि किसी घर में बच्ची के लिए स्कूल से सूचना आए और उसी शाम मोबाइल पर डर फैलाने वाला वीडियो आ जाए तो कौन जीतेगा? वही जीतेगा जिसकी आवाज आप ज्यादा सुनेंगे। इसलिए सही जानकारी को जोर से बोलना पड़ेगा।
2: लो, फिर मैसेज आया। पड़ोस वाली कमला लिख रही है, मत लगवाना, हमारी रिश्तेदारी में किसी को बुखार आ गया था। अब बताओ ये क्या माने?
1: कभी कभी हल्का बुखार, इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द, लालपन जैसी हल्की प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन यही हर इंजेक्शन में संभव है। इससे ये नहीं साबित होता कि टीका खतरनाक है। बड़ी बात यह है कि गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ बताए गए हैं और सुरक्षा निगरानी लगातार होती है। इसे ही विज्ञान कहते हैं, निगरानी, प्रमाण, समीक्षा। अफवाह क्या करती है? एक घटना उठाती है, उसे बढ़ाकर पूरा सच बना देती है।
2: अच्छा, मान लो मैं कल स्वास्थ्य केंद्र चली गई, वहां क्या पूछूं?
1: सीधा पूछो, मेरी बेटी 14 साल की है, क्या एचपीवी वैक्सीन यहाँ मुफ्त उपलब्ध है? क्या ये एक डोज है? क्या इसे पीरियड्स के दौरान भी दिया जा सकता है? क्या इससे फर्टिलिटी पर असर पड़ता है? डॉक्टर तुम्हें साफ जवाब देंगे, और अगर तुम चाहो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी।
2: तुम चलोगी तो हिम्मत रहेगी। सच कहूं, मुझे अपनी बेटी के लिए डर तो है, लेकिन मुझे अपनी अज्ञानता से भी डर लगता है। कहीं मैं ही गलत फैसला ना कर दूं।
1: यही तो समझदारी है, जो नहीं पता उसे मान लेना कि मुझे नहीं पता, उसके बाद सही जगह से जानना। कई लोग तो यही गलती करते हैं कि बिना समझे जोर से बोलने लगते हैं, और जोर की आवाज को सच समझ लिया जाता है।
0: इसीलिए सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम बिल्कुल सही जानकारी देता है और दूरदृष्टि के साथ आपके लिए कार्यक्रम लाता है। ये कार्यक्रम खास तौर पर उन परिवारों के लिए है जो दुविधा में होते हैं, जिनमें सरकारी महकमों, जानकारियों, मुफ्त इलाज के प्रति भ्रम होता है और साथ ही डर होते हैं। अपने डर को नकारिए मत, उसे सही रास्ता दीजिए, परंतु उस रास्ते के अंत में डॉक्टर हो, डेटा हो और भरोसेमंद जानकारी हो, न कि अफवाह। सही जानकारी ही लाभकारी होती है।
2: टीकन, तुमने एक बात कही, सर्वाइकल कैंसर रोका जा सकता है। ये बात मेरे मन में अटक गई। हम तो कैंसर का नाम सुनते ही सोचते हैं कि बस अब बचना मुश्किल।
1: इसलिए जागरूकता जरूरी है। महिलाओं के लिए आगे चलकर नियमित स्क्रीनिंग भी महत्वपूर्ण है। जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है, कम उम्र की लड़कियों के लिए टीकाकरण और महिलाओं के लिए समय समय पर जांच, दोनों मिलकर सुरक्षा की दीवार बनाते हैं। छोटी उम्र में सुरक्षा, बड़ी उम्र में समय पर पहचान, यही समझ घर घर जानी चाहिए।
2: यानी मेरी बेटी के लिए टीका और हमारे लिए जांच की समझ।
1: बिल्कुल, क्योंकि महिलाओं की सेहत को अक्सर घर में आखिरी नंबर मिलता है। पहले सबका खाना, सबका काम, सबकी चिंता, पर अपनी सेहत के बारे में कब सोचती हैं? जब बीमारी बढ़ जाती है। ये बदलना होगा।
0: यही SSLK का मकसद है, सिर्फ जानकारी देना नहीं, घरेलू सोच बदलना। अब सुनते हैं सुनीता ने क्या फैसला लिया।
2: टीकन भाभी, मैंने ठान लिया है, कल सुबह स्वास्थ्य केंद्र चलेंगे, वहां डॉक्टर से बात किए बिना मैं ना हाँ कहूंगी ना ना। लेकिन एक बात पक्की है, अब मैं फॉरवर्ड देखकर फैसला नहीं करूंगी।
1: बस यही जीत है। सही सवाल पूछना ही आधी सुरक्षा है,
2: और अगर डॉक्टर वही कहे जो तुम कह रही हो तो मैं अपनी बेटी को टीका लगवाऊंगी। फिर जो पड़ोसन पूछेगी उसे भी यही कहूंगी, फॉरवर्ड नहीं, तथ्य देखो।
1: और अगर कोई बोले कि हमारे जमाने में तो नहीं लगा, तो कहना हमारे जमाने में बहुत सी अच्छी चीजें नहीं थी, इसलिए आज जो उपलब्ध है उसे अपनाने में समझदारी है, ठुकराने में नहीं।
0: जाने से पहले एक छोटा सा संवाद और। कई बार लोग कहते हैं हम तो गांव में रहते हैं, हमें ऐसी बीमारियां कहां। ये भी गलतफहमी है। बीमारी जगह देखकर नहीं आती। जानकारी और बचाव भी शहर गांव देखकर नहीं रुकना चाहिए। सरकार इसलिए कार्यक्रम बना रही है कि सुरक्षा पहुंच में हो, सिर्फ बड़े अस्पतालों तक सीमित न रहे।
2: सच है, कई बार हम सोचते हैं कि बड़ी बीमारी सिर्फ बड़े लोगों की होती है, पर जब घर में किसी को कुछ हो जाता है तब समझ आता है कि बीमारी जात, धन, जगह देखकर नहीं आती।
1: और इसलिए रोकथाम सबसे बराबरी वाली चीज है। जब टीका सरकारी केंद्र पर मुफ्त उपलब्ध है तो ये सिर्फ स्वास्थ्य नहीं, न्याय की बात भी है। जो चीज सिर्फ पैसे वालों तक सीमित थी वो अब आम परिवारों तक पहुंच रही है। इसे शक से नहीं समझ से देखना चाहिए।
2: पर हाँ, व्यवस्था में कमी हो तो पूछना भी चाहिए।
1: बिल्कुल, कोई चीज समझ ना आए तो पूछो, कोई कागज चाहिए तो पूछो, अपॉइंटमेंट कैसे होगा पूछो। जानकारी मांगना अधिकार है, यही नागरिक समझ है।
0: और एक जरूरी बात, यदि किसी माँ को अभी भी डर लग रहा है तो वो अकेली नहीं है। डर होना सामान्य है, लेकिन डर के साथ बैठकर सही जानकारी सुनना भी उतना ही जरूरी है। कई सरकारी जागरूकता संदेशों में यही कहा गया है कि स्वास्थ्य के फैसले डॉक्टर, विज्ञान और प्रमाण से गाइडेड होने चाहिए, वायरल फॉरवर्ड से नहीं। ये सिर्फ एक नारा नहीं, जीवन बचाने वाली बात है।
2: मैं सोच रही हूँ कल केंद्र से लौटकर अपनी देवरानी को भी बताऊंगी। उसकी बेटी भी इसी उम्र की है, वो तो मोबाइल पर जो आता है वही मान लेती है।
1: उसे साथ लेकर जाओ, दो लोग जाएंगे तो दो घरों का डर टूटेगा, फिर शायद चार घरों में बात पहुंचेगी। सेहत की जानकारी भी चूल्हे की आग की तरह है, एक घर से दूसरे घर गर्मी पहुंचाती है।
0: ये पंक्ति नोट कर लीजिए, अफवाह अकेले फैलती है पर भरोसा मिलकर बनता है, और भरोसा तब बनता है जब आशा कार्यकर्ता, ANM, डॉक्टर, माँ, पड़ोस, स्कूल सब मिलकर एक ही सच्ची बात बोले।
2: अच्छा टीकन, अगर मेरी बेटी पूछे अम्मा आपने पहले क्यों डर किया, तो मैं क्या कहूँ?
1: कहना क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। लेकिन प्यार सिर्फ डर नहीं, सही जानकारी जुटाने की हिम्मत भी है। बच्चों के सामने ये स्वीकार करना कि मैं पहले उलझी हुई थी अब समझ गई हूँ, इससे उनका भरोसा भी बढ़ता है।
0: बहुत सुंदर, और यही इस कार्यक्रम का सामाजिक पहलू भी है। हम सिर्फ टीके की बात नहीं कर रहे, हम उस रिश्ते की बात कर रहे हैं जिसमें माँ बेटी के बीच डर के बजाय संवाद हो। यही संवाद भविष्य बदलता है।
1: और जिन घरों में मोबाइल पति के पास रहता है या सास कहती हैं हमें ये सब नहीं आता, वहां भी रास्ता है। सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाओ, स्कूल से पूछो, आशा से पूछो। जानकारी का दरवाजा एक नहीं कई है।
2: अब मुझे लग रहा है कि फैसला थोड़ा साफ हो गया है। डर अभी भी है, पर अब डर के सामने जवाब भी है।
1: बस यही चाहिए, सवाल रहे जवाब भी रहे, तभी घर सही निर्णय तक पहुंचता है।
0: शुक्रिया टीकन भाभी आपका, और सुनीता जी आपका भी। साथियों, अब अंत से पहले आज की मुख्य बातें संक्षेप में। पहली, क्वाड्रिवेलेंट HPV वैक्सीन की एक डोज प्रभावी है। दूसरी, ये मासिक धर्म पर असर नहीं डालती और पीरियड्स के दौरान भी सुरक्षित है। तीसरी, ये बांझपन का कारण नहीं बनती। चौथी, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है और 160 से अधिक देशों में उपयोग में है। पांचवी, 14 साल की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध है। छठी, स्वास्थ्य संबंधी निर्णय सोशल मीडिया फॉरवर्ड से नहीं, डॉक्टर और प्रमाणित जानकारी से लें।
1: और मेरी तरफ से एक बात और, मां होना सिर्फ डरना नहीं है, पूछना भी है, और पूछकर सही जवाब तक पहुंचना वही असली जिम्मेदारी है।
2: और मेरी तरफ से, मैं अब अपने डर को छुपाऊंगी नहीं, पर उसे झूठ से पालूंगी भी नहीं, सही जानकारी लेकर ही फैसला करूंगी।
0: यही है सेहत सही लाभ कई की सीख, चिंता से समझ तक और समझ से सुरक्षा तक। यदि आपकी बेटी 14 साल की है तो अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, PHC, CHC या जिला अस्पताल में जानकारी लें, और घर की महिलाओं के लिए स्क्रीनिंग की जानकारी भी अवश्य पूछें। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे उन दो अफवाहों की जो सबसे ज्यादा फैल रही हैं, पीरियड्स बिगड़ना और बांझपन। तब तक याद रखिए, तथ्य चुनिए, सुरक्षा चुनिए। अब एक उपयोगी सूचना, यदि आपके पास स्मार्टफोन है और आपके इलाके में UWIN पंजीकरण की सुविधा सक्रिय है तो आप वहां अपॉइंटमेंट और पंजीकरण की जानकारी ले सकते हैं। यदि ये आपके लिए कठिन है तो भी चिंता की बात नहीं, अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र या आशा ANM से सीधे संपर्क करें। याद रखिए, डिजिटल सुविधा मदद के लिए है, बाधा बनने के लिए नहीं।
3: नमस्ते क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
4: जी
3: प्लीज बताइए, आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
4: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
3: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
6: कौन सी कहानी टीकी?
5: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
7: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
5: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
7: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
5: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल। अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
6: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
5: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात। अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
7: टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
8: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 MHz और एक बार फिर उन्नत कृषि कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे अनु FM ग्रीन पर। जी हाँ श्रोता, उन्नत कृषि कार्यक्रम में हर रोज़ कुछ अच्छी बातें होती हैं, हमारे किसान भाइयों और बहनों के लिए ज़रूरी बातें होती हैं, खेती बाड़ी से जुड़ी बातें होती हैं। तो आज मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि मिट्टी, जी हाँ मिट्टी अगर ना हो तो हम खेती की कल्पना नहीं कर सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसे तरह की खेती हैं जैसे कि मशरूम है, उसे हम घर में छांव वाले घर में उगा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे फसल जो सदियों से हमारे किसान भाई उगा रहे हैं वो धरती पर, वो मिट्टी पर उगा रहे हैं, और परंपरा से ये खेती बाड़ी की रीत चलती आ रही है। लेकिन ज़रूरी ये है कि हम मिट्टी भी अच्छे तरीके से जांचें कि उस मिट्टी में पोषक तत्व मौजूद है या नहीं, ये हमारे फसलों को पोषक तत्व प्रदान करेगी या नहीं, तभी हमारा जो मेहनत है, जो हम मेहनत उस खेती बाड़ी में उस फसल को उगाने में लगा रहे हैं वो सार्थक होता है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि जब भी हमारे किसान भाई और बहन खेती करें, फसल उत्पादन करें, कुछ बोएं, गेहूं बोएं या आप धान बोते हैं, कुछ भी बोते हैं, तो आप उससे पहले मिट्टी का जांच ज़रूर कर लें, बहुत ज़रूरी है ये। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि आप मिट्टी का जांच ज़रूर करेंगे, इसकी जो महत्व है वो आप ज़रूर जान लेंगे, लेकिन एक तरीका होता है मिट्टी के सैंपल को उठाना धरती पर से, फिर उसको लैब तक ले जाना, तो ये एक नियम है, ये तरीका है, ये एक प्रोसेस है, आपको उससे गुजरना होगा। अगर आप इस तरीके से, आप इस प्रोसेस से मिट्टी को लैब तक ले जाते हो जांच करवाने के लिए, तभी आपको एक सही रिजल्ट मिलता है। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, और हमारे बीच हैं आज डॉक्टर राज किशोर कुमार, और मैं आपको बता दूं ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय से और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ये मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग से। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
9: थैंक यू मैडम। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि अभी मैंने बस संक्षिप्त में बताया कि बहुत ज़रूरी होता है कि पोषक तत्व मिले मिट्टी से हमारे फसलों को, तो आप थोड़ा विस्तार में बताएं कि मिट्टी के नमूने जो हम लेते हैं धरती पर से जांच के लिए, उसका क्या उद्देश्य होता है?
10: मैडम, मिट्टी के नमूने प्राप्त करने की विधि और प्रक्रिया उद्देश्य के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। मिट्टी के नमूने का विश्लेषण फसलों के लिए मिट्टी की उर्वरता मूल्यांकन और उर्वरक का सिफारिशों के लिए किया जाता है। बहुत सावधानी से किए गए मिट्टी विश्लेषण के परिणाम भी उतने अच्छे नहीं आते हैं। अतः मृदा परीक्षण की दक्षता, देखभाल और कौशल जिसके साथ मिट्टी के नमूने एकत्र किए जाते हैं उस पर निर्भर करती है। मिट्टी विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण चरण प्रयोगशाला में नहीं बल्कि खेत से प्रारंभ होता है, जहां से नमूने लिए जाते हैं। अलग अलग जगहों पर मिट्टी अलग अलग प्रकार की होती है। इसे देखते हुए ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए कि ऐसे नमूने का चयन करें जो सारे क्षेत्र का एक साथ समान प्रतिनिधित्व करे।
9: जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अलग अलग क्षेत्र के मिट्टी जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, और इसीलिए अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग फसल जो है वो उगाए जाते हैं। चाहे हमारे बिहार क्षेत्र में अगर यहाँ की मिट्टी अलग है तो यहाँ पे कुछ फसल ऐसे हैं जो उगाए जाते हैं जो दूसरे क्षेत्र में, दूसरे राज्यों में नहीं उगाए जा सकते क्योंकि मिट्टी समान नहीं है। तो डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी और हमारे किसान भाई भी ये जानना चाहते हैं कि मृदा परीक्षण के लिए क्या विशेष तकनीक है, किन विशेष तकनीक से उन्हें गुजरना होगा?
10: मैडम, मृदा परीक्षण के लिए सबसे पहले मृदा हम ये जानना हमको आपको ये बता दें कि मृदा संसाधन प्रबंधन एक अनिवार्य घटक है। एकत्र किए गए प्रत्येक नमूने को क्षेत्र का एक सच्चा प्रतिनिधि होना चाहिए। प्रयोगशाला विश्लेषण से प्राप्त परिणामों की उपयोगिता नमूने की शुद्धता पर निर्भर करती है, इसलिए बड़ी संख्या में नमूने का संग्रह उचित है ताकि उप नमूने द्वारा वांछित आकार का नमूना प्राप्त किया जा सके। सामान्य तौर पर नमूनाकरण प्रत्येक 2 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए एक नमूने की दर से किया जाता है। हालांकि 5 हेक्टेयर के अधिकतम क्षेत्र के लिए कम से कम एक नमूना एकत्र किया जाना ही चाहिए। मृदा सर्वेक्षण कार्य के लिए हम विशेष तरह एक मिट्टी प्रोफाइल प्रतिनिधि से आसपास के क्षेत्र के मिट्टी के नमूने एकत्र कर सकते हैं।
9: तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर आपने ये बताया कि तकनीक क्या है, तो हम ये अब जानना चाहते हैं कि चलिए हम मृदा परीक्षण के लिए अपने फील्ड में चले गए, हमें जहाँ से मिट्टी उठानी है, लेकिन इसके लिए ऐसा थोड़ी है कि हम अपने हाथ से खोद लें या खुरपी से खोद लें और ऐसे उठा के लेके चले जाएँ। उसके लिए कुछ सामग्री की भी ज़रूरत होगी जिसके अनुसार हम उसे लैब तक ले जाएँ। तो कौन कौन से सामग्री हम यूज़ कर सकते हैं मृदा परीक्षण के लिए?
10: मैडम, मृदा परीक्षण के लिए सबसे पहले हम कुदाल या मिट्टी भरमा ये जैसे सामग्री यूज करते हैं। जैसे ये मिट्टी भरमा एक ट्यूब भरमा, पोस्ट होल या स्क्रू प्रकार भरमा या कुदाल भी हो सकता है। दूसरा खुरपी, तीसरा कोर नमूना, चौथा नमूना बैग। नमूना बैग या विशिष्ट प्रकार के कपड़े का बैग होता है। पाँचवा प्लास्टिक की ट्रे या बाल्टी मिट्टी। ये उप नमूना के लिए हम लोग मिश्रण के लिए एक साफ बाल्टी या ट्रे या साफ कपड़ा लेते हैं। उसके बाद मिट्टी का नमूना के लिए सूचना पत्र, इसमें कपड़ों के थैलियों के बांधने के लिए चिन्हों और टैग के लिए पेंसिल से नकल करने की जरूरत पड़ती है।
9: अच्छा, तो ये कुछ तरीके होते हैं। यहाँ पर तरीकों के साथ डॉक्टर साहब ने आपको ये भी बताया कि आपको कौन कौन सी चीज़ आपके पास रहनी चाहिए जब आप मृदा परीक्षण के लिए आप जाते हो। तो इसके बाद डॉक्टर साहब, आपने इकाई की बात कही, तो हम जानना चाहते हैं कि मृदा परीक्षण में जो नमूना इकाई है इसका हम कैसे चयन कर सकते हैं?
10: इसके लिए किसी क्षेत्र का एक दृश्य सर्वेक्षण वास्तविक नमूने लेने से पहले होना चाहिए, जिसके अनुसार फील्ड को समान भागों में विभाजित करें और जिनमें से प्रत्येक को अलग से नमूना लिया जाता है। और यदि क्षेत्र की सभी स्थितियां समान हैं तो एक क्षेत्र से एक एकल नमूना इकाई के रूप में माना जाता है। ऐसी इकाई 1 से 2 हेक्टेयर से अधिक होनी नहीं चाहिए, और यह एक ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जो किसानों की एक देख रेख में हो, जहां 20 से 50 हेक्टेयर के क्षेत्र में एक नमूना एकत्र किया जा सके और उसका संग्रह किया जा सके।
9: जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर लवण जो प्रभावित मिट्टी होती है, अगर हमें उसका नमूना लेना हो तो हम कैसे लें?
10: इसके लिए सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि लवण प्रभावित मिट्टी का कारण क्या है, उसका स्रोत की पारगम्यता क्या है, मौसमी वर्षा का क्या स्रोत है, जल जमाव का क्या स्थिति है, जल तालिका की क्या स्थिति है, मृदा प्रबंधन का इतिहास क्या है, फसल की सिंचाई आवृत्ति प्रजातियों और पौधों के कवर और कड़े पैन या सांद्रता की गहराई कितनी है, इसके लिए ये सब पहले चिन्हित करनी चाहिए। उसके बाद लवण प्रभावित मिट्टी को दो तरीकों से नमूना लिया जाता है, जिसका उपयोग जिप्सम की आवश्यकता की निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इसके लिए नमूनों के एक से चार हेक्टेयर में के स्थानों को दो स्थानों में हटाया जा सकता है। यदि मिट्टी समान रूप से लवण से प्रभावित हो और यदि पैच विशिष्ट हो, मतलब उसका जो पैच बहुत क्षारीय मिट्टी का सब ज़्यादा हो, तो इसके लिए बड़े पैच के लिए अलग से नमूने लिए जाते हैं। और कभी भी अगर लवण की मात्रता ज़्यादा हो तो मिट्टी के विभिन्न गहराइयों जैसे 0 से 15 सेंटीमीटर, 15 से 30 सेंटीमीटर, 30 से 60 सेंटीमीटर और 60 से 100 सेंटीमीटर तक के मिट्टी की गहराई का नमूने लिया जा सके, जिससे उसकी उचित सांद्रता कितनी है उसका आंकलन हम कर सकते हैं।
9: जी जी, तो डॉक्टर साहब अभी आपने कहा कि हमें हमारे पास एक जानकारी पत्र भी रहना चाहिए जब हम मृदा परीक्षण के लिए जाते हैं फील्ड पर, तो ऐसे में अगर जो कोई हमारे किसान भाई और बहन नमूने की पहचान करना चाहते हैं तो जानकारी पत्र में उन्हें क्या क्या लिखना है?
10: इसके लिए सबसे पहले उसमें जानकारी पत्र के लिए किसान का नाम होना चाहिए, खेत का स्थान होना चाहिए, सर्वेक्षण संख्या होना चाहिए, पिछली फसल उगाई गई उसका डिटेल होना चाहिए, अगले मौसम में क्या वो लगाएंगे उसका आकलन होना चाहिए, संग्रह की तारीख होना चाहिए, नमूनाकर्ता जो मिट्टी का जो कलेक्शन किया है उनका नाम होना चाहिए, ये सब इत्यादि जानकारी एक बैग के ऊपर लेवल के रूप में करना चाहिए। और दूसरा बात ये है कि अप्रमाणिक साइट है जहाँ से असामान्य सेचित दलदला जमीन, पुराना रास्ता, चैनल, पुराने बंड, पेड़ के पास के क्षेत्र, पिछले अगर कंपोस्ट के ढेर हो, अन्य इस तरह के क्षेत्र का कब से कभी नमूना नहीं लेना चाहिए।
9: जी बिल्कुल, ये तो आपने जान लिया हमारे श्रोताओं, हमारे किसान भाइयों और बहनों की आपको कहाँ से नमूना नहीं लेना है और आपको उसमें क्या क्या जो आपकी जानकारी पत्र है उसमें आपको याद रखने के लिए क्या क्या नोट डाउन करना है वो भी आपने जान लिया। तो डॉक्टर साहब अब बाढ़ी आती है कि हम अपने किसान भाइयों और बहनों को बताएं कि नमूना इकाई का चयन करने के बाद जो हम सैंपल बनाते हैं उसकी प्रक्रिया कैसे होती है?
10: इसके लिए अलग अलग सैंपलिंग यूनिट दिखाने के लिए सर्वेक्षण में शामिल किए जाने वाले क्षेत्र का नक्शा तैयार करना पड़ता है। इसमें विभिन्न क्षेत्र को पत्र ए बी सी आदि द्वारा मानचित्र पर निर्देशित किया जाता है। हल परत का एक टुकड़ा जो 1520 चरणों के अंतराल पर काटा जाता है या कवर किए जाने वाले क्षेत्र के अनुसार किया जाता है। आमतौर पर एक के लिए 10 से 20 स्पॉट लेना चाहिए और क्षेत्र के आधार पर समग्र नमूना लेना चाहिए।
9: जी,
10: मिट्टी का 1 से 2 सेंटीमीटर भी ही लेना चाहिए। नमूना कुदाल के ब्लेड पर एकत्र किया जा सके और एक साफ बाल्टी में दिया जाता है। इसी तरह चिन्हित सभी स्थानों पर नमूने को एकत्र किया जाता है। बाल्टी से मिट्टी को साफ कागज या कपड़े के टुकड़े पर डालें और अच्छी तरह से मिलाएं और मिट्टी के समान रूप से फैलाएं और इसे 4 तिबाहियों में विभाजित करें, 2 और 2 विपरीत को अस्वीकार करें, क्वार्टर और बाकी मिट्टी को फिर से मिलाए, लगभग आधे के साथ छोड़ दे, जब तक प्रक्रिया को जुलाए जब तक मिट्टी की आधा किलो बच जाए और इसे इकट्ठा करे और एक साफ कपड़े के साथ थैली में डाले। नमूने के लिए इस्तेमाल किया गया बैग हमेशा साफ होना चाहिए।
9: जी, तो ये तो हुआ कि नमूना इकाई का चयन करने के बाद आप सैंपल कैसे बनाते हैं, पूरी प्रक्रिया डॉक्टर साहब ने आपको बताई। अगर आपको ऐसे में समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ भी आ सकते हैं, हमारे वैज्ञानिक से इसकी जानकारी भी ले सकते हैं, वो आपको अच्छे तरीके से लिख कर इसकी जानकारी दे देंगे। इसके बाद डॉक्टर साहब अब आगे बढ़ते हैं, जो सबसे हमारा जो मेन पॉइंट है, जो सबसे अहम प्रक्रिया है इसमें, वो है कि मिट्टी तो हम मतलब जिस भी प्रोसेस से जिस भी तरीके से आपने कहा कि हमारे पास ये सामग्री होनी चाहिए मिट्टी परीक्षण के लिए, इसके बाद हमें कौन से जगह की या किस तरह के मिट्टी के नमूने नहीं लेने हैं वो भी आपने बताया, और साथ ही यहाँ पर सैंपल बनाने की प्रक्रिया भी आपने बताई। तो अब ये सारी चीज़ें करने के बाद हम इसे लैब भेजेंगे यानी कि प्रयोगशाला भेजेंगे, तो मृदा नमूनों को हम कैसे भेजेंगे अब प्रयोगशाला में?
10: इसके लिए ये किसान द्वारा परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी के नमूने भेजने से पहले यह सूचित करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उचित पहचान चिन्ह नमूना बैग के साथ लेबल पर भी मौजूद रहे। अधिकांश जानकारी मुद्रित के साथ मृदा परीक्षण प्रयोगशाला से मिट्टी के नमूने बैग या अमिट स्याही के साथ उन पर प्रेषण सूची के साथ बैग पर संख्या विवरण की तुलना करें। पहचान चिन्ह लगाकर विभिन्न स्थानों की संख्याओं को अलग किया जाना चाहिए। किसान मिट्टी के नमूने सीधे प्रयोगशाला में ले आ सकते हैं तथा नमूनों को फील्ड एक्सटेंशन स्टाफ के माध्यम से प्रयोगशाला में ले जा सकते हैं। यदि मृदा परीक्षण प्रयोगशाला कर्मचारी नमूने खुद एकत्र करते हैं तो पर्याप्त फील्ड नोट हो सकता है। सभी अज्ञात नमूनों को छोड़ दिया जाना चाहिए। अगर नमूने के बारे में विशिष्ट जानकारी हो तो उसको 66 नंबर रजिस्टर पर उसको दर्ज करना चाहिए और उसको प्रत्येक नमूने के एक प्रयोगशाला नंबर भी दिया जाना चाहिए।
9: जी बिल्कुल, जैसे कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया श्रोताओं की जो नमूने हैं सीधे आप प्रयोगशाला में ले जा सकते हैं या फिर नमूनों को फील्ड एक्सटेंशन जो स्टाफ हैं वो उनके द्वारा आप प्रयोगशाला में भेज सकते हैं। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं कि किस तरीके से आप प्रयोगशाला तक मिट्टी को पहुंचा सकते हैं, उसके सैंपल को पहुंचा सकते हैं। तो अब यहाँ पर नमूने अगर हम संग्रह कर रहे हैं डॉक्टर साहब, तो इसके बाद मिट्टी के नमूनों को हम सुखाएं कैसे?
10: इस प्रयोगशाला में जो भी मिट्टी आते हैं उनमें प्राप्त नमी कम होती है, हो सकते हैं। मिट्टी को ट्रे या हवा में सुखाया जाता है। सुखाने के दौरान ट्रे को क्रमांकित किया जा सकता है या उसमें प्लास्टिक टैग संलग्न किया जाना चाहिए। इसको एक गर्म हवा कैबिनेट के रेक में रखा जाता है जिसका तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से नहीं अधिक नहीं होना चाहिए तथा आर्द्रता भी इससे 30-60% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और मिट्टी के ओवन में सुखाना चाहिए। मौजूदा अधिकांश पोषक तत्व की उपलब्धता को भी प्रभावित करते, इसलिए हमेशा हवा से सुखाने की सिफारिश किया जाना चाहिए। सुखाने के बाद नमूनों को तैयारी कक्ष में ले लिया जाता है जो प्रयोगशाला से अलग, मुख्य प्रयोगशाला से अलग होता है। मिट्टी के नमूने को लकड़ी के दराज में, कार्डबोर्ड बक्से में इत्यादि में संग्रह किया जाना चाहिए और पीसने के बाद मिट्टी के 2 mm की छलनी के माध्यम से ही छलनी के माध्यम से जमीन के नमूने के केवल एक हिस्से को पारित करना और त्यागना शेष त्रुटिपूर्ण है। कणों के ठीक होने तक दोहराते रहे और पीसते रहे छलनी को पारित करने के लिए पर्याप्त है और केवल कंकड़, जैविक अवशेष, कंक्रीट रहते हैं उसे बाहर कर देना चाहिए। यदि मिट्टी को मिट्टी के लिए हमें ट्रेस एलिमेंट जैसे आयरन, कॉपर, जिंक, ये सब का अगर हमें परीक्षण करना है तो इस सब से बने कंटेनरों से में स्टोर करने या उससे पीसने से हमें सदा हमेशा बचना चाहिए।
9: जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। मृदा जांच बहुत ज़रूरी होता है, क्यों ज़रूरी है ये भी हमने आपको शुरू में बताया था कि जो आपके उस मिट्टी में मौजूदा पोषक तत्व हैं या नहीं जो आपके फसलों को चाहिए, क्योंकि हमारी जो फसल है वो मिट्टी से ही पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। अगर बंजर ज़मीन होगी तो आप जितनी मेहनत कर रहे हैं फसल की बुआई में वो सही रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब ने आपको यहाँ पर पूरी प्रक्रिया बताई है कि आप कैसे परीक्षण कर सकते हैं, कैसे नमूना उठा सकते हैं मिट्टी का, और इसके साथ ही आप उसको लैब तक कैसे ले जा सकते हैं, कौन से जगह से आपको नमूने नहीं लेने हैं और उसके बाद आप नमूनों को कैसे सुखाएंगे। तो इस तरीके से पूरी जानकारी आप सभी को मिली है 90.8 MHz पर। और हमारे साथ स्टूडियो में इस जानकारी के साथ मौजूद थे डॉक्टर राज किशोर कुमार जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।
10: थैंक यू मैडम।
9: किसान भाइयों, आपसे फिर मुलाकात होगी इसी फ्रिक्वेंसी, सुनते रहिए उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार।
11: उन्नत कृषि

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ हाँ,
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना?
5: खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
6: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
6: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
6: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
6: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
6: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
7: याद रखो,
8: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
9: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
10: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
9: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
10: आपकी सेहत की बातें,
9: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
10: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
9: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
10: वो कहाँ पर?
9: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
10: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
9: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, आज उन्नत कृषि में हम एक वार्ता सुनने वाले हैं। वार्ता का विषय है मृदा मानचित्रण। वार्ताकार हैं डॉक्टर अंशुमान कोहली सर। आप हैं प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष मृदा विज्ञान विभाग से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
11: प्यारे किसान भाइयों और बहनों, आप सभी को स्वयं मेरी तरफ से और बिहार कृषि महाविद्यालय के मृदा विज्ञान विभाग की तरफ से एक सप्रेम नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सबसे एक सरल प्रश्न पूछकर अपनी वार्ता की शुरुआत करना चाहता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पैरों के नीचे क्या है? हम हर दिन मिट्टी पर चलते हैं, लेकिन शायद ही कभी रुक कर सोचते हैं कि यह कितनी महत्वपूर्ण है। मिट्टी सिर्फ धूल नहीं है, यह कृषि, पारिस्थितिकी तंत्र और हमारे अस्तित्व की नींव है। आज मैं मृदा मानचित्रण अर्थात सॉयल मैपिंग के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो एक शक्तिशाली साधन है जिससे कि हम इस मृदा रूपी छिपे हुए संसाधन को समझने में बहुत मदद ले सकते हैं। अब आखिर मृदा मानचित्रण क्या है? मृदा मानचित्रण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी क्षेत्र की विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की पहचान, विश्लेषण और वर्गीकरण किया जाता है, और फिर हम इस जानकारी को एक मानचित्र पर प्रदर्शित करते हैं, और यह मानचित्र हमें बताता है कि इस क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी मौजूद है, उसकी उर्वरता कितनी है, वह कितना जल धारण कर सकती है, क्या वह खेती, निर्माण या संरक्षण कार्यों के लिए उपयुक्त है, और उपयुक्त है तो उसकी उपयुक्तता विभिन्न कार्यों के लिए कितनी है। सरल शब्दों में मृदा मानचित्रण हमें बिना हर जगह खुदाई किए मिट्टी को देखने में मदद करता है। अब प्रश्न यह आता है कि मृदा मानचित्रण इतना महत्वपूर्ण क्यों है। मृदा मानचित्रण कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मसलन कृषि। किसान भाई मृदा मानचित्रों का उपयोग यह तय करने के लिए कर सकते हैं कि कौन सी फसल उगानी है, उर्वरक व सिंचाई का प्रबंधन कैसे करना है, और ऐसी जानकारी होने से उनका उत्पादन बढ़ता है और अपव्यय कम होता है। साथ ही साथ मृदा मानचित्रण की एक भूमिका पर्यावरण संरक्षण में भी है। मृदा मानचित्रण उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है जहां कटाव, प्रदूषण या भूमि क्षरण का खतरा होता है, जिससे बेहतर संरक्षण योजना बनाई जा सकती है। साथ ही साथ शहरी योजना बनाने में भी मृदा मानचित्रण का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इंजीनियर और योजनाकार भवन, सड़क और अन्य संरचनाएं बनाने से पहले मृदा मानचित्रों का उपयोग करते हैं ताकि सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा जलवायु अध्ययन में भी मृदा मानचित्रण का की अहम भूमिका है। मिट्टी में कार्बन संग्रहित होता है, इसका मानचित्रण वैज्ञानिकों को कार्बन चक्र और जलवायु परिवर्तन को समझने में मदद करता है। अब प्रश्न यह आता है कि यह मृदा मानचित्रण किया कैसे जाता है। ऐसा नहीं कि मृदा मानचित्रण बिल्कुल एक नई तकनीक है, यह तकनीक पिछले कई दशकों से एक प्रभावी माध्यम है प्लानिंग का, योजना बनाने का। परंपरागत रूप से मृदा मानचित्रण में फील्ड सर्वे शामिल होते थे। मृदा वैज्ञानिक मृदा के नमूने एकत्रित करते थे, उन्हें प्रयोगशाला में विश्लेषित करते थे और फिर हाथ से मानचित्र बनाते थे। परंतु आज आधुनिक तकनीकों ने इस प्रक्रिया को बदल दिया है। अब उपग्रहों के माध्यम से रिमोट सेंसिंग की जाती है, भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग किया जाता है, GPS तकनीक का प्रयोग किया जाता है और इन सब के साथ डिजिटल मृदा मानचित्रण मॉडल तैयार किया जाता है। यह सब तकनीकें मृदा मानचित्रण को अधिक तेज, सटीक और विस्तृत बनाते हैं। मृदा के मानचित्र कई प्रकार के हो सकते हैं। अपने उद्देश्य के आधार पर हम मृदा मानचित्र तैयार करते हैं। मसलन सामान्य मृदा मानचित्र, यह एक बड़े क्षेत्र का अवलोकन देते हैं, जैसे कि एक प्रदेश, पूरा देश या फिर एक जिला। और विस्तृत मृदा मानचित्र, यह छोटे खेतों या छोटे क्षेत्रों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते हैं, क्योंकि यह छोटी से छोटी जो विविधता है खेत में उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा हमें विषयगत मानचित्र भी देखने को मिलते हैं, मसलन pH, नमी या जैविक तत्व इत्यादि जैसे विशेष गुणों पर केंद्रित करते हुए अगर मानचित्र बनाए जाते हैं तो वह एक विषयगत मानचित्र की श्रृंखला में आते हैं। अब मृदा मानचित्रण करना यूं तो कहने को बहुत आसान सी प्रक्रिया है और कई दशकों से इस पर वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं, परंतु मृदा का मानचित्रण करने में कई प्रकार की चुनौतियां आती हैं। इसके लाभों के बावजूद जो विभिन्न चुनौतियां मृदा वैज्ञानिक देखते हैं उनमें से मुख्य हैं कि छोटे क्षेत्रों में भी मिट्टी में काफ़ी विविधता होती है। तो जब हम छोटे क्षेत्रों का मानचित्रण करते हैं तो यह विविधता दर्शाने में हमें कई उन्नत तकनीकों का सामना करना पड़ता है, कई उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है और हमारी जो मृदा में मानचित्रण करना है उसकी कॉस्ट भी बहुत ऊपर चली जाती है। डेटा संग्रहण समय लेने वाला और महंगा हो सकता है। तो आजकल विभिन्न तकनीकों से डेटा संग्रहण कर रहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ें भी एक प्राइस के साथ आती हैं। तो कोई भी मृदा मानचित्रण की प्रक्रिया समय लेने वाली और महंगी हो सकती है। साथ ही साथ इसमें कुशल विशेषज्ञों और उन्नत तकनीक की आवश्यकता होती है, जो कि सब जगह सुलभ नहीं होती। हालांकि नई तकनीकें जैसा मैंने ऊपर बताया उपग्रहों भौगोलिक सूचना प्रणाली जीपीएस तकनीक इत्यादि का यूज करके इन समस्याओं से निपटा जा सकता है, परंतु फिर भी यह चुनौतियां हमेशा हमारे सामने रहती हैं। इन चुनौतियों के चलते हम मृदा मानचित्रण के भविष्य को कैसे देखते हैं? भविष्य, इस तकनीक का भविष्य बहुत आशाजनक है। आज के जमाने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और उपग्रह इमेजिंग में प्रगति के साथ मृदा मानचित्रण अधिक सटीक और सुलभ तकनीक बन गई है। मृदा मानचित्र अधिक से अधिक सटीक और सुलभ होते जा रहे हैं। भविष्य में किसान अपने स्मार्टफोन पर वास्तविक समय में मृदा डेटा का उपयोग करके तुरंत निर्णय ले सकेंगे और हम यह कह सकते हैं अंत में कि मृदा मानचित्रण केवल एक वैज्ञानिक गतिविधि नहीं है, यह सतत विकास के लिए एक महत्वपूर्ण चरण है। मिट्टी को बेहतर समझकर हम अधिक भोजन उगा सकते हैं, पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं और सुरक्षित समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप जमीन पर चलें, याद रखें आपके पैरों के नीचे एक पूरी दुनिया है जिसे समझा जाना बाकी है। धन्यवाद
9: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और मृदा मानचित्रण के बारे में इतनी सारी बातें आपने विस्तार से बताई। उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहनों को आज की वार्ता से बहुत सारी बातें सीखने को मिली होगी, जानने को मिली होगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। उन्नत कृषि
7: क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
12: जी
7: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
12: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
7: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
10: हरियाली से खुशहाली तक।
9: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 8 जुलाई से 12 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। साथ ही इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 8 से 12 जुलाई के दौरान 15 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे पिछले कुछ दिनों में वर्षा हुई है, इसलिए आप वर्षा के जल का लाभ उठाते हुए धान की सबौर दीप किस्मों जैसे प्रभात, शुष्क सम्राट, सहभागी की बुआई 10 जुलाई तक जरूर कर दे। और किसान भाई बहनों, बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए कार्बन डाइजिन की 2 ग्राम मात्रा को 1 किलोग्राम बीज उपचारित करने के लिए इस्तेमाल करें। और ध्यान दें कि 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई जरूर करें। मध्यम अवधि वाली धान की किस्में जैसे राजेंद्र नीलम, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र श्वेता की रोपाई कर सकते हैं। और धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी की जा सकती है। किसान भाई बहनों, अगर आप श्री अन्न की खेती करना चाहते हैं तो ध्यान दें, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें और मड़ुआ की वकुला KMR 316 GPU 67 VL 379 राजेंद्र मड़ुआ RU 8

हेक्टेयर है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दे, खरीफ मक्का की बुआई तभी करे जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डाले और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना ना भूले। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3 और गंगा 11 है। जिनके खेत में मूंग लगा है उन्हें बता दे, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो किसान भाई बहन सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, भिंडी, कद्दू, खीरा, निनुआ और लौकी जैसी फसलों में निराई गुड़ाई करते रहें और खरपतवार नियंत्रित रखें। ध्यान दे कि पत्ती खाने वाली सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करना जरूरी होता है और अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डायमेथो 830 ईसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करे। ध्यान दे कि छिड़काव तभी करे जब आसमान साफ हो। खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करे जब आसमान साफ हो और स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में गोबर की खाद डालना बहुत जरूरी होता है। खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्री फाउंड डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करे और ध्यान रखें कि बीज गिराने के पहले बीजोपचार जरूर कर ले। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखे और जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दे, लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचों में जरूरत के हिसाब से छटाई कर ले जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचे में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा कर हटा दे। इससे कीट और रोगों के प्रकोप में कमी आएगी और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलेगा। पशुपालक भाई बहन ध्यान दे, महीने के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है इसलिए ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में टीके नहीं लगाए हो तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दे। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
1: कौन सी कहानी टीकी?
0: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
2: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
0: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
3: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
0: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
1: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
0: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
3: टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
4: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 8 जुलाई से 12 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। साथ ही इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 8 से 12 जुलाई के दौरान 15 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, पिछले कुछ दिनों में वर्षा हुई है, इसलिए आप वर्षा के जल का लाभ उठाते हुए धान की सबौर दीप किस्मों जैसे प्रभात, शुष्क सम्राट, सहभागी की बुआई 10 जुलाई तक जरूर कर दे। और किसान भाई बहनों, बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए कार्बन डाइजिम की 2 ग्राम मात्रा को 1 किलोग्राम बीज उपचारित करने के लिए इस्तेमाल करें। और ध्यान दें कि 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई जरूर करें। मध्यम अवधि वाली धान की किस्में जैसे राजेंद्र नीलम, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र श्वेता की रोपाई कर सकते हैं। और धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी की जा सकती है। किसान भाई बहनों, अगर आप श्री अन्न की खेती करना चाहते हैं तो ध्यान दें, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें और मड़ुआ की वकुला KMR 316 GPU 67, VL 379 राजेंद्र मड़ुआ RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, उचास जमीन में अरहर की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1, राजेंद्र अरहर 2, इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। और ध्यान दे कि अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का उपयोग करना बिल्कुल न भूले। और किसान भाई बहनों, अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दे, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना ना भूले। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3 और गंगा 11 है। जिनके खेत में मूंग लगा है उन्हें बता दे, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो किसान भाई बहन सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, भिंडी, कद्दू, खीरा, निनुआ और लौकी जैसी फसलों में निराई गुड़ाई करते रहें और खरपतवार नियंत्रित रखें। ध्यान दें कि पत्ती खाने वाली सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करना जरूरी होता है और अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डायमेथो 8 30 ईसी की 1 मिलीलीटर लीटर मात्रा को एक लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। और स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में गोबर की खाद डालना बहुत जरूरी होता है। खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्री फाउंड डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और ध्यान रखें कि बीज गिराने के पहले बीजोपचार जरूर कर लें। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। और जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचों में जरूरत के हिसाब से

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: കൃഷി. आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन एफएम और आप सभी के साथ हैं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे अनु. मेरे किसान भाइयों और पशुपालक भाइयों, आप सभी को एक बार फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार. और आज उन्नत कृषि में लेकर आई हूं मैं बटेर पालन के बारे में कुछ बातें. आप सभी ने मुर्गी पालन के बारे में बहुत सुना होगा. इसके अलावा अगर बात करें बटेर पालन की, यानी कि जो आज का हमारा विषय है इसके बारे में बात करें, तो आपको बता दें बटेर पालन को अगर आप एक व्यवसाय के तौर पर लेते हो, यानी कि इससे अगर आर्थिक मुनाफा आप कमाना चाहते हो, तो आप सभी को बता दूं मैं, मेरे दोस्तों और मेरे श्रोतागणों, कि ये बहुत ही अच्छा एक माध्यम है जिससे कि आपको कम अवधि में बहुत ही अच्छा मुनाफा होता है. अगर बात करें मुर्गी पालन की, तो उसमें समय भी ज्यादा लगता है और मुनाफा भी इतना नहीं होता है. तो सबसे पहले आज बहुत सारी बातें करने वाले हैं बटेर पालन के बारे में. अगर आपकी बटेर पालन शुरुआत करना चाहते हैं आप, तो इसके लिए आपको किन किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, तो आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्रोनॉमी बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से. डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस कार्यक्रम में. और सबसे पहले बटेर पालन की बात हो रही है, तो हम जानना चाहेंगे कि बटेर पालने के लिए हमारे पास इनके आवास का प्रबंधन कैसा होना चाहिए.
1: जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज बता दूं आपको कि बटेर पालन, बटेर को हम लोग क्वेल कहते हैं इंग्लिश में, जो जैपनीज बटेर है जिसका पालन पहले प्रोहिबिटेड था, जिसका कि पालन तो करते थे लेकिन इसके शिकार पर प्रतिबंध लगा हुआ है. लेकिन हम लोगों ने एक प्रजाति जो जैपनीज बटेर के नाम से है इसको विकसित किया, कैरी जो सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट है इज्जत नगर में, इसके द्वारा और इसको पॉपुलराइज किया गया.
0: जी जी.
1: इसकी कई प्रजातियां हैं जो पंख के रंगों के आधार पर फराव हैं, टॉक्सिडो हैं, इंग्लिश वाइट है, मैंचूरियन गोल्ड है. तो इस प्रकार से इनको विकसित किया गया कि जो कम समय में और काफ़ी मुनाफा देने वाला चीज़ है, जिसमें कि किसी प्रकार की कम से कम रोग होता है और इसमें किसी प्रकार के टीकाकरण की भी आवश्यकता नहीं है. अर्थात केवल रख रखाव पर ध्यान देके आप आसानी से मुनाफा कमा सकते हैं.

0: सकते हैं। और जहाँ तक जगह की बात है, जो आवास प्रबंधन की बात है, इसके लिए कोई बहुत बड़ा घर बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास, आप जिस प्रकार का व्यवसाय करना चाहते हैं, बड़े पैमाने पर, छोटे पैमाने पर, तो एक 10x10 का भी अगर कमरा है आपके पास, तो उसमें 10x10 में आप 400 बटेर तक का पालन कर सकते हैं। और घर की ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं भी है तो काम चलेगा। लेकिन एक चीज़ है, ये उड़ने वाला पक्षी है, इसलिए इसको कंप्लीट जाली लगाकर या बंद करके आपको रखना पड़ेगा। और इसके रखने में आपको मुर्गियों से कम सावधानी रखने की ज़रूरत है, अर्थात नीचे कोई बेडिंग मटेरियल, हल्का बेडिंग मटेरियल आप दे सकते हैं, 4-5 इंच का बेडिंग मटेरियल होगा और नेचुरल डे लाइट काफ़ी है। लेकिन इसके आवास व्यवस्था में इसके जो बच्चे बहुत छोटे होते हैं, 10 ग्राम से भी कम वजन के होते हैं, तो उस समय इसको विशेष सावधानी की जरूरत होती है, लाइट देने की आवश्यकता पड़ती है, टेम्परेचर देने की आवश्यकता पड़ती है। तो हम लोग बात कर रहे हैं जैपनीज क्वेल, कुटर्निस जैपोनिका
1: जी,
0: इसकी। और इसके बारे में, आवास प्रबंधन के बारे में, आप जैसा मैंने बताया, एक 10x10 के रूम में भी इसका आप पालन करके आप आसानी से मुनाफा कमा सकते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, ये बात हो गई आवास प्रबंधन की, यानी कि कैसा उनका जगह रहना चाहिए जहाँ उनका पालन होना चाहिए। और उसके बाद आहार की अगर बात करते तो उन्हें किस किस तरीके का आहार देना चाहिए?
0: जहाँ तक अलग अलग स्टेज के लिए अलग अलग इस तरह का राशन दिया जाता है, इसको दाना दिया जाता है। जैसे जब छोटा, जब चूजा रहता है, उस समय हम लोग इसको प्री स्टार्टर देते हैं। अगर आप बड़े पैमाने पर कर रहे हैं तो बटेर का दाना अलग से भी आता है, लेकिन अभी बाजार में जो मुर्गियों के लिए दाना है प्री स्टार्टर, आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके बच्चे काफ़ी छोटे होते हैं, तो इनिशियल स्टेज में आप उसका जो महीन दाना है उसको दें। और फिर जब ये दूसरा सप्ताह का हो जाए, 2 सप्ताह से ऊपर हो जाए, तो फिर हम इसमें स्टार्टर क्रम्बल या स्टार्टर का जो दाना होता है, स्टार्टर क्रम्बल दे सकते हैं। और फिर फिनिशर 4-5 सप्ताह में ये अपने वजन का 150 ग्राम से 200 ग्राम के बीच में आ जाता है, और उस समय आप बेच सकते हैं इसको और मीट पर्पस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक अंडा देने की बात है, तो 6-7 सप्ताह से ये अंडा देने लगती है, और 8 सप्ताह होते होते ये फुल स्विंग में अंडा देना शुरू करती है। और पूरे साल में ये, अगर इसको दाना पानी अच्छा से मिलता रहा, इसके व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो 250 अंडा तक ये दे सकते हैं आसानी से। तो इसके लिए उस समय, लेकिन उस समय इसको लेयर फीड फिर चाहिए जिसमें कैल्शियम की अधिकता हो। तो अलग अलग समय में अलग अलग तरह का दाना देना है, और प्री स्टार्टर, स्टार्टर, फिनिशर और लेयर, चारों स्टेज का दाना इसमें अलग अलग स्टेज में हम लोग इस्तेमाल करते हैं।
1: मांसाहारी लोग हैं, अगर उनकी बात करें जो मुर्गी खाते हैं, तो अगर मुर्गियों की बात करें तो बटेर पालन जो है वो मुर्गी पालन से किस तरीके से अलग है, उसके बारे में जानना चाहेंगे।
0: देखिए, मुर्गी पालन में सबसे बड़ी बात है कि बहुत टीकाकरण करने, बहुत बीमारियां होती हैं मुर्गियों में। फ्रॉम द बिगिनिंग, एक दिन से लेके मैरेक्स का टीका पड़ता है, फिर रानी खेत का टीका पड़ता है, फिर गंबोरों का टीका पड़ता है, फिर उसका फाउल पॉक्स का टीका पड़ता है, रानी खेत का दूसरा टीका पड़ता है। तो इस प्रकार से अलग अलग स्टेज में मुर्गियों में
1: अलग अलग
0: अलग अलग टीके पड़ते रहते हैं। और लेकिन बटेर पालन में सबसे जो अच्छी बात है कि किसी भी प्रकार के टीकाकरण की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपको, अगर हम चाहें तो जो आजकल का जो ट्रेंड है ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक विधि से भी हम बटेर पालन
1: कर सकते हैं।
0: जहाँ तक बटेर पालन का जो फीड है, उसमें हम जो बोन मील, फिश मील इस्तेमाल करते हैं, उसके जगह सोयाबीन मील का इस्तेमाल करके भी हम इसका पालन कर सकते हैं। और एक जो एक मुर्गी के रहने की जगह के में कम से कम 8-10 बटेर एक साथ रह सकता है,
1: यानी कि तो कुल मिलाकर देखिए
0: जगह की कमी चाहिए। और कम समय में हालांकि मुर्गियों में भी आजकल जो हाइब्रिड मुर्गियां हैं वो भी 4-5 सप्ताह में 1.5 केजी से ऊपर वेट कर लेती हैं, और उनको भी हम सोल्ड कर सकते हैं। लेकिन जो अगर कैलोरी के हिसाब से देखें और कोलेस्ट्रॉल की बात करें, तो डॉक्टरों के द्वारा भी सलाह दी जाती है कि वैसे जो पेशेंट हैं वो बटेर का मीट खा सकते हैं। तो बटेर पालन हर प्रकार से, मुर्गी पालन व्यवसाय के साथ साथ भी किया जा सकता है, उसके अलावे भी अलग से भी किया जा सकता है। हालांकि अभी मार्केट में बटेर पालन, बटेर लोगों को बटेर के बारे में बहुत जानकारी नहीं है, जिसके चलते बहुत बड़ा मार्केट बटेर पालन का नहीं है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ लोगों को जानकारी हो रही है और बटेर के लिए भी व्यवसाय को तौर पर बटेर को भी कई लोगों ने अपनाया है और मार्केटिंग व्यवस्था पर बल दिया है। तो अब इस व्यवसाय को भी हम बड़े तौर पर कर सकते हैं और मुर्गी पालन के साथ साथ भी कर सकते हैं, मुर्गी पालन के अतिरिक्त भी कर सकते हैं।
1: तो जैसा कि बताया आपको, तो श्रोतागणों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि मुर्गी पालन से कहीं ज़्यादा बेहतर है, जैसे कि इनके रखरखाव में आपको कम ध्यान रखना पड़ता है वनस्पत मुर्गी पालन के, और इसके बाद भी उन्होंने टीकाकरण की बात की, कोलेस्ट्रॉल की बात की, तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं बटेर पालन मुर्गी पालन से बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। और डॉक्टर साहब, सबसे पहले यहाँ पर बात हो गई कंपैरिजन के बारे में, मुर्गी पालन और बटेर पालन के कंपैरिजन की बात हो गई, तो अब यहाँ पर जानना चाहेंगे कि बटेर पालन अगर हम करते हैं तो इसकी खासियतें क्या है, वो जानना चाहेंगे हम, ताकि जो लोग हैं इसे प्रभावित हों, और बटेर पालन को अगर व्यावसायिक तौर पर आप अपनाना चाहते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि उनकी खासियतें जानना, तो जानना चाहेंगे हम आपसे डॉक्टर साहब।
0: बटेर पालन प्रारंभिक अवस्था में बहुत इसलिए इसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया क्योंकि सरकार के द्वारा इस पर लाइसेंस व्यवस्था जारी की गई थी, लेकिन जब से इसका फार्मिंग स्टार्ट हुआ और आज के डेट में भी हमारा जो नेचुरल उड़ने वाला बटेर है, जो हमारा घरेलू प्रजाति है, उसके शिकार पर रोक लगी है। लेकिन अब जो प्रजाति की हम लोगों ने कैरी के द्वारा लाकर यहाँ, जिसका कि हम लोग ब्रूडिंग करके उसका हैचिंग करके और उसका फैलाव किए, प्रचार प्रसार किए, तो इसके बाद धीरे धीरे इसका मार्केट आया। हाँ। और आज के डेट में ये स्थिति है कि अब लोगों को भी ये बटेर कुछ बातों को लेकर ज़्यादा प्रभावित करता है। एक तो ये छोटा होता है, जल्दी परिपक्व होता है, इसका मीट स्वादिष्ट होता है, जल्दी अंडा देने लगती है, बहुत काफ़ी अंडा देती है, और इसका मीट स्वादिष्ट होता है, इसका मेडिसिनल वैल्यू भी है। तो इस प्रकार से लोगों को इस बिजनेस के प्रति अट्रैक्शन हुआ। और इसमें जहाँ तक हमने एक बार बताया भी कि किसी भी प्रकार की दवाइयाँ या टीकाकरण के बिना भी बटेर पालन किया जा सकता है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोग मुर्गी पालन करते हैं, मुर्गी पालन में फास्ट ग्रोथ लाने के लिए कई प्रकार की दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है। तो एक तरह से जो स्वास्थ्य के प्रति लोग सचेत रह रहे हैं, तो उसके हिसाब से भी बटेर का मीट खाना, जिसमें किसी प्रकार की दवा, किसी प्रकार के टीका की भी आवश्यकता नहीं है, हर तरह से सुरक्षित है और वो स्वास्थ्यवर्धक भी है
1: जी।
0: तो जरूरत है कि हम मुर्गी पालन के वैकल्पिक स्रोत के रूप में, और अभी जो स्थिति है मुर्गी पालन व्यवसाय पर, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज का कब्जा टाइप का हो गया है, लोग छोटे जितने भी किसान थे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत मुर्गी पालन करके अब उनका मुनाफा बहुत कम हो गया है। तो इसके तहत आप वैकल्पिक स्रोत के रूप में इसको अपना के आप अतिरिक्त लाभ कमा सकते हैं।
1: तो यहाँ पर श्रोतागणों, आप सभी को डॉक्टर साहब ने बताया कि कैसे क्या खासियतें होती हैं और कैसे इसका पालन करना, या आवास व्यवस्था की बात हो गई, आहार किस प्रकार का देना चाहिए, और मुर्गी पालन और बटेर पालन के बीच के अंतर को इन्होंने बताया, और कहीं ना कहीं बटेर पालन, और अगर आप मांसाहारी हैं, आप मुर्गी खाते हैं या फिर मुर्गा खाते हैं, तो इस हिसाब से बटेर आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि डॉक्टर्स भी, अगर कोलेस्ट्रॉल की आपको दिक्कत है तो आपको भी डॉक्टर बटेर की ही देते हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये उतना व्यापक तौर पर इसके बारे में जानकारी लोगों को नहीं है विस्तार में। तो इसीलिए आज डॉक्टर साहब हमारे साथ यहाँ पर थे, आप सभी को बहुत सारी जानकारियाँ भी मिली बटेर पालन के, और बटेर की जो खासियतें हैं उनके बारे में भी आप सभी को जानकारियाँ मिली। तो डॉक्टर साहब, आपको इन सभी जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, धन्यवाद।
1: और इसके साथ ही श्रोतागणों, आप सभी से मुलाकातें होती रहेंगी, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें और आबाद रहें। उन्नत कृषि,
2: नाइन्टी पॉइंट एट FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम रेडियो रिवीजन में। रेडियो रिवीजन जो आपके परीक्षा से पहले प्रसारित होता है और आपके सेकेंड सेमेस्टर्स के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, और आज हमारे साथ आपके कोर्स लीडर मौजूद हैं डॉक्टर तारकनाथ गोस्वामी। जी हाँ, आज आपके कोर्स AEZ 1-1 का रिवीजन होने वाला है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मंडे को आपका AEZ 1-1 फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी का इंटर्म एग्जामिनेशन है, और ये 2+1 वाला कोर्स था आपका इस सेमेस्टर का, सेकंड सेमेस्टर का। तो आप आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव गॉन थ्रू द सिलेबस केयरफुली, और मैं धीरे धीरे आपको सारे जो टॉपिक्स है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि पूरा डिटेल में हम नहीं जा पाएंगे रिकॉर्डिंग्स में। तो फर्स्ट टॉपिक इज हिस्ट्री ऑफ एंटोमोलॉजी इन इंडिया। तो आपको आपका स्टडी मटेरियल में आप जाएंगे तो उसमें कुछ पॉइंट्स वहाँ पे है, उस पॉइंट्स में देखिएगा कुछ कुछ चीज़ें हाईलाइट किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, सिस्टम ऑफ नेचुरी बोल के एक किताब का नाम है, विच वॉज रिटन बाय कैरोलस लिनियस और कार्ल लिनियस, एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट मेनी टाइम्स योर एक्सलेंट एग्जामिनर हैज गिवन दिस क्वेश्चन। 10th एडिशन ऑफ सिस्टम ऑफ नेचुरी रिटन बाय कार्ल लिनियस, इन विच ईयर इट वॉज पब्लिश्ड, एंड द आंसर इज 1758, राइट। एंड देर आर मेनी अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑल्सो विच यू हैव टू रिमेंबर। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट हु मेड एक्सटेंसिव स्टडी ऑफ इंडियन इंसेक्ट्स एंड दैट साइंटिस्ट वॉज फैब्रिसियस, राइट। एंड सम अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर आर प्रोफेसर मैक्सवेल लेफ्रॉय, हु सक्सीडेड निसेविली एज एंटोमोलॉजिस्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट, इन 1903, एंड बिफोर हिम इट वॉज लियोलन डी निसेविली हु वॉज पोस्टेड एज फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। So it was in the year 1901. And some important books and their authors also you have to remember. For example, Indian Insect Pests, ये किताब का नाम है, ये प्रोफेसर लेफ्रॉय ने लिखे थे। Indian Insect Life भी ये प्रोफेसर लेफ्रॉय का लिखा हुआ किताब है। Some South Indian Insects, this book was written by T.B. Fletcher. So these things you must remember. Handbook of Economic Entomology of South India, very important book. It was written by T.V. Ramakrishna Iyer. So these things you must remember. In addition to that, you may also remember Insect Pests of Crops. This was written by very prominent entomologist whose name is Dr. Pradhan, maybe. Now, if you go through your syllabus, then the next your broad heading is major points related to dominance of insects in animal kingdom and thereafter classification of phylum Arthropoda. So these two, topics I had covered in your class in great detail. If you recall those classes, it will be very easy for you. In the class, I had discussed that there are 10 important points to remember regarding the factors behind the dominance by the insects in this planet. And under those 10 points, the first point was capacity for flight as the insects possess wings. And you know that the wings are the lateral extension of the exoskeleton. So, मैंने ये आपको क्लास में कहा था, ये कोई पक्षी नहीं था जो इस प्लेनेट में पहले उड़े थे, ये कोई इंसेक्ट था जो सबसे पहले इस प्लेनेट में उड़ने का क्षमता, उड़ने का एबिलिटी एक्वायर किए थे। So why this, how this capacity for flight help the insects in dominating this planet over the other animals or the other organisms? You know that as they are having the wings, so that they can fly with that, with the help of the wings, and they can seek for food, mate, shelter, oviposition, etc. They can colonize in a new habitat. They can escape from the enemies and also from the unfavorable conditions. They can also migrate with the help of this type of your special capacity, that is flight, which they are having. But the next factor was more adaptability or universality. As you know that the insects are the earliest groups to make their life on the earth,
2: and to occupy vast habitats of soil and water. Thereby, they are found, these insects are found in a wide, very wide range of climatic conditions, and they can survive even at minus 50 degrees centigrade and also in the plus 50 degrees centigrade. So you can imagine the range of temperature they can survive. They can, you're tolerant. Some examples, some extreme examples I'll be citing here. I also had given you the study material. There also you can go through. One insect is there. Its name is Xylopa petroli. Ye petroli sun ki aapko petrol ka yaad aa raha hoga. And its name isliye hua ki it can survive well in crude petroleum oil. Even in the high salt concentration also, you can find some insects like Ephydra fly. And I can cite many examples, an extreme kind of examples where the insects can survive. So you can imagine that they are having a great deal of adaptability or universal. Anywhere in this planet you can find the insects. So this was the second point, second factor. The third factor is the smaller size they have. You know that most of the insects, they are small in their size. And how this small in size help them in dominating this planet. You know that they will be requiring less space as they are having smaller size. They require less food, less energy, and also the less gravitational effect on them, right? And also, because they are very tiny, they can escape from the enemies very easily. So capturing a tiny one by a large predator, for example, their enemies, is not very easy. Therefore, third important factor was small in size. Now, the fourth factor, presence of exoskeleton, very important. In fact, not only the insects, but also the other arthropod also are having this exoskeleton on their body, you know it. And this, your exoskeleton means it is a cuticular protein, and it is also known as chitin, right? So how this presence of exoskeleton help the insects in dominating the planet? It is because it gives them the strength or the rigidity and also the flexibility to the insect body. Now, another factor is resistance to desiccation. You know that as their body is covered with the exoskeleton, so definitely the water loss is minimized, right? Because water is very important for any organism. Another factor is prevention of water loss. You know that they're having in their epicuticle, they're having lipids and polyphenols, and those lipids and polyphenols act as waterproof material. Also, some insects are having wax layer that also prevents the water loss. Also, they're having spiracles which they can close whenever they wish to close those. The spiracle closing mechanism or opening closing mechanism that also prevents the water loss, right? Now, insects, you know that mainly terrestrial insects, they are having tracheal system of respiration. And this insects, this tracheal respiration also, it helps in restricting the loss of water and thereby help them in having wider adaptability in extreme conditions also. Another factor is high reproductive potential. Class mein hum isko detail mein discussion kiye the, if you remembered. And I cited a few examples. For example, queen termite. Matlab main ye batana cha raha hu ki kitna level ho sakta hai reproduction ka. Can you imagine ki ek queen termite ek din mein 6000 se 7000 anda matlab egg lay kar sakti hai. And it continues for 15 long years. Thereby, kind of unlimited number of individuals they produce. The queen termite I'm talking of. There are other examples also. Insects are having some special type of reproduction. For example, polyembryony means one embryo, means one egg, but it is having many embryos. Means from one egg, many individuals can take birth. Then parthenogenesis also is very common in many insects. In parthenogenesis, they don't, require any mating for giving birth to the offsprings, right? In aphids, we see that. Some insects are there, jisme एडल्ट का जरूरत नहीं पड़ता है, एडल्ट बनने का जरूरत नहीं पड़ता रिप्रोडक्शन के लिए. इमैच्योर स्टेज देमसेल्व्स कैन गिव बर्थ टू द ऑफस्प्रिंग्स इन गॉल्मी जूसी. नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस. मेटामॉर्फोसिस एंड डायपोज का चैप्टर आप लोगों ने पढ़े हो, उसमें दो तरह का मेटामॉर्फोसिस मेनली आपको पढ़ाया गया है. एक है कॉम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, अनदर इज योर इनकॉम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस. उसके बीच में डिफरेंस भी आपको पता है. सो इन मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स कॉम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस इज ऑब्जर्व्ड. अब कॉम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है ये दैट यू नो कि ऑल द फोर स्टेजेस विल बी अवेलेबल, एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट. और ये चारों जो अलग अलग स्टेज हैं, ये चारों अलग अलग स्टेज का हैबिट, हैबिटेट, फूड एटसेट्रा का रिक्वायरमेंट अलग अलग है. और ये अलग अलग होने के कारण, मतलब अलग अलग होने से ही इसको एडवांटेज मिल रहा है कि दे कैन एक्सेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ साइकिल, राइट. एंड इंसेक्ट्स हैव वेरियस इंटरेस्टिंग टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म. सम डिफेंस मैकेनिज्म्स बिहेवियरल होते हैं, कुछ होता है स्ट्रक्चरल, कुछ होता है कलरेशनल, कुछ होते हैं केमिकल्स सीक्रेट करने से. एक ऐसा इंसेक्ट है, मैं बताया था आपको, क्लिक बिटल बोल के एक इंसेक्ट है जिसको टच करने से वो मरने का ढोंग करते हैं, मतलब एक तरह से दे प्रिटेंड एज इफ दे इट इज डेड. इस बिहेवियर को बोलते थैनाटोसिस. सो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है टू एस्केप इटसेल्फ फ्रॉम इट्स एनिमी. सो एनिमी विल थिंक दैट द प्रे इज डेड और डेड के ऊपर वो फीड नहीं करेंगे. सो एनिमी विल वॉक अवे और फ्लाई अवे. एंड वंस अगेन when the enemy is gone, that click beetle will do its own work because it is not actually dead. Some structural defense mechanisms are also there. For example, beetles आप सभी लोगों ने देखा है, collection भी किए हैं, class में भी देखे हैं. उस beetles के ऊपर बहुत ही hardened four wings रहते हैं जिसको हम लोग इलाइट्रा भी बोलते हैं, राइट. तो वो एक स्ट्रक्चरल डिफेंस मैकेनिज्म है. आप एक बिटल को पकड़ के अगर क्या बोलते हैं सरफेस में थ्रो भी करेंगे, इट विल नॉट गेट डाइट बिकॉज इट इज हैविंग ए वेरी प्रोटेक्टिव कवर ऑन इट्स बॉडी. कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो बहुत ही ब्यूटिफुली केमोफ्लेज करते हैं हैबिटेट में, इसको बोलते हैं कलरेशनल डिफेंस मैकेनिज्म. मतलब हैबिटेट का जो कलर है उसका कलर भी सेम है. तो अगर कलर जिस फॉर एग्जांपल किसी प्लांट की लीफ में है और आपको पता ही नहीं चल रहा कि वहां पे एक इंसेक्ट भी बैठा हुआ, क्योंकि लीफ का कलर उसके कलर के साथ मैच कर रहा है. किसी फ्लावर में एक इंसेक्ट बैठा है, उस फ्लावर का जो कलर है उस इंसेक्ट का भी कलर वही है. सो दैट मीन्स ये जो कलरलेस कलरेशनल डिफेंस मैकेनिज्म है, ये एनिमीज को एक तरह से बुर्बक बनाते हैं कि वो ढूंढ नहीं पाते एक्चुअली वो इंसेक्ट वहां पे है या नहीं है. कुछ इंसेक्ट्स डिफेंस केमिकल भी सीक्रेट करते हैं. यू नो ब्लिस्टर बीटल, इफ यू टच द ब्लिस्टर बीटल इमीडिएटली ऑरेंज कलर का एक डिफेंस केमिकल आपके हाथ में लगेंगे. आपके हाथ में लगेंगे मतलब क्या कि एनिमीज भी उसको टच करेंगे तो एनिमीज के बॉडी में लगेगा, तो एनिमीज के बॉडी के ऊपर इरिटेशन होगा एंड इट विल नॉट ट्राई टू फीड ऑन दैट वन. और आपको तो बीज वस के बारे में मालूम है कि आप बीज को कभी नहीं पकड़ना चाहते, वस को कभी नहीं पकड़ना चाहते, क्योंकि इट विल इमीडिएटली इंसर्ट इट्स स्टिंगर इनसाइड योर बॉडी एंड इट विल इंसर्ट द पॉइजन एट द सेम टाइम. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, द फैक्टर विच इज इंपॉर्टेंट फॉर डोमिनेंस ऑन दिस प्लैनेट इज हेक्सापोड लोकोमोशन. सारे इंसेक्ट के केस में आपको मालूम है कि दे आर हैविंग थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स.
1: अब ये थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स रहने के कारण इसको लोकोमोशन में बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलता है. सारे छह लेग वन स्टेप में, जब एक स्टेप, जब लोकोमो एक स्टेप फॉर एग्जांपल वॉकिंग या रनिंग में जब एक कॉकरोच की बात करें तो क्या होता है, कोई तीन लेग मूव कर रहा होता है और बाकी तीन लेग, मतलब तीन पेयर है ना, तो तीन पेयर में से तीन लेग मूव कर रहा होता है और बाकी रेस्ट ऑफ द थ्री लेग्स दे आर बैलेंसिंग द बॉडी. एंड इट अल्टरनेटिवली जो पहले बैलेंस कर रहा था नेक्स्ट स्टेप में वो क्या करेंगे, लोकोमोशन में हेल्प करेंगे, बाकी बॉडी बैलेंस में काम हेल्प करेंगे. सो इस तरह से इसको बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी मिलता है और अल्टीमेटली इट हेल्प्स द इंसेक्ट इन डोमिनेटिंग द प्लैनेट. नेक्स्ट टॉपिक इज योर क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा आपको अप टू क्लासेस. सबसे पहले आपको आर्थ्रोपोडा का कैरेक्टरिस्टिक्स, जो छह सात कैरेक्टरिस्टिक्स हमने क्लास में आपको डिस्कस किए हैं, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आप बढ़िया से उसको गो थ्रू करेंगे. एंड देयर आफ्टर जो डिफरेंट क्लासेस हैं अंडर द फाइलम आर्थ्रोपोडा, फॉर एग्जांपल देयर आर हाउ मेनी क्लासेस अंडर द फाइलम आर्थ्रोपोडा, देयर आर सेवन क्लासेस राइट. ऑनिकोफोरा, क्रस्टेशिया, चिलोपोडा, डिप्लोपोडा, एराक्निडा, ट्राइलोबीटा एंड हेक्सापोडा. ये जो क्लासेस है और उस क्लासेस का जो जो प्रोमिनेंट योर कैरेक्टरिस्टिक्स है अलोंग विद द योर सम एग्जांपल्स यू मस्ट रिमेंबर. द नेक्स्ट टॉपिक वाज योर स्ट्रक्चर ऑफ हेड, व्हिच आई इन योर प्रैक्टिकल क्लासेस, इन योर थियोरी क्लासेस आई हैव डिस्कस्ड इन ग्रेट डिटेल. सो टू रिकॉल दैट वन, to help you recalling that one, and I'll suggest you to draw the diagram first regarding to remember the different sclerites and sutures which are available on the facial portion of the insect head. ये मिड टर्म में आपका क्वेश्चन भी था, आप लोगों ने उसको किए भी है, बट फिर से उसको प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ इंसेक्ट हेड, एंड यू नो दैट देर आर थ्री डिफरेंट ओरिएंटेशंस. वन इज प्रोनाथस, मीन्स द हेड and the appendages of the mouth parts are projected forward, usko bolte pronathus. ye pronathus condition aapko milta hai beetles mein, that's why this pronathus condition also is known as beetle type, or it is also known as coleopteroid type, correct. next jo orientation of insect head tha, that is known as hyponathus. hyponathus condition mein kya hota hai ki the appendages of the mouth parts, they are projected vertically, means the angle which is created between the long axis of the insect body and the long axis of the appendages of the mouth parts, that is 90 degree, right. And the last but not so, yes, what I was forgetting was this hyponathus type. Hypognathus bhi bol sakte ho, hyponathus bhi bol sakte ho, because G is silent here. Hyponathus type is found in case of your grasshoppers, cockroaches also you can get this hyponathus type. That's why it is also known as orthopteroid type, right. And then the last one, orientation of insect head, is known as your opisthonathus. In opisthonathus condition, what happens is the appendages of the mouth parts, they are projected backward. So an acute angle is created between the long axis of the body and the long axis of the proboscis or the mouth parts. And it is found in case of your bugs. And you know that bugs, they belong to the order Hemiptera. That's why this opisthonathus condition is also known as bug type or hemipteroid type. इसको इसका एक और नाम है opisthorhynchus. So मैं जब बोल रहा हूँ तब आप इसको pause करके या कभी एक दोबारा सुन के आप उसको note down भी कर सकते हैं. And then insect head में बहुत सारे चीजें हमने discussion किए थे, वो सारे चीज इस audio recording में बोलना संभव नहीं है. But definitely you must remember different sclerites which are available on the insect head. For example, vertex, fronds, clypeus, genus, and then your labrum also. And
2: your different sutures, like inverted bicipet suture is also known as epicranial suture or ectasial cleavage line. So aap isko diagram bana ke agar practice karenge to aapko aasani rahega. Question mein bhi agar broad question mein bhi aata hai to aap diagram bana ke hi karenge, thoda sa likh lenge. And then frontoclypeal suture, iska ek aur naam hai, bahut bar ye question mein aaya hua hai ki what is epistomal suture. So epistomal suture सुनके घबराने की जरूरत नहीं है. दैट इज एक्चुअली फ्रंटोक्लाइपियल सीवचर, मींस द सीवचर व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन फ्रॉन्स एंड क्लाइपियस, राइट. आपका सीनियर्स का जो जेआरएफ क्वेश्चंस होते हैं, एसआरएफ में जो क्वेश्चंस आते हैं, उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसी जगह से कि व्हाट इज द ट्रू सीवचर व्हिच इज अवेलेबल ऑन द इंसेक्ट हेड. एंड द ट्रू सीवचर आई प्रोबेबली हैड मेंशनड इन योर क्लास आल्सो, इट इज पोस्ट ऑसिपिटल सीवचर. नाउ the functions of insect head, you know that insect head ka function mainly food ingestion mein hoga, sensory perception mein hoga, coordination of bodily activities mein honge, and protection of the coordinating centers mein honge, right. Ek aur cheez ki how many segments are there on the insect head. So in your handout and also the book which is known as Insecta, written by Raghumurthy and the other co-authors, they are telling that the insect head is composed of 6 different segments. But at the same time, the insect's structure and function, bolke jo kitab hai, very prominent author known as Chapman Saab, he says that recent molecular evidences suggesting that insect head is composed of 7 segments. So there are always an ambiguity ki what is the exact number of the segments which are present on the insect head, right. And then the next topic was your structure and modification of insect antennae. So I'm very glad that some of the students have submitted their assignments for the practical examination. They have submitted the diagrams of all the 15 different types of insect antennae. So my suggestion will be you draw once again on your copy and you practice it. And you must remember the example. And the other name of that type, for example, geniculate antenna. So geniculate antenna ko hum define kaise karenge? It is elbow-like. That's it. And on the right-hand side, you can draw the diagram. So if the question is asked in the broad question section, write down different types of insect antennae or the modification of insect antennae. So you draw the diagrams of all the different types of insect antennae you are remembering. And you explain it in 2-3 words. For example, geniculate antenna ka aapne diagram draw kiye hai, to right hand side mein aap kya likhenge? Ya left hand side mein agar likh rahe to right hand side mein diagram banayenge, to likhenge kya ki elbow like, geniculate antenna bracket mein elbow like. And you give the example. You know it ki ants, bees, wasps, etc. For example, cetaceous antenna, at the same time, likewise you can write down bristle like. And you write down the examples like dragonfly, damselfly, filiform, thread-like, moniliform, beaded, termite, serrate, saw-like, longicorn beetle, unipectinate, means one-sided comb-like, example, sawfly. So always you draw the diagram. Bipectinate, on the both the side, combs will be present. Silkworm, moth we get. Clavate or capitate ko humne class mein ek sath discussion kiye the, aap yaad karenge. कि क्लैबेट में क्या होता है, ग्रेजुअल इंक्रीमेंट इन द डायमीटर ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ द एंटीना टुवर्ड्स टिप. इन केस ऑफ ब्लिस्टर बिटल वी गेट दिस योर क्लैबेट टाइप एंटीना. कैपिटेट में क्या होता है, कैपिटेट में सडनली द टर्मिनल सेगमेंट ऑफ द एंटीना इज स्वेल्ड. इन बटरफ्लाईज वी गेट दिस टाइप. इन लैमेलेट इट इज डिस्क्राइब्ड एज प्लेट लाइक. इन स्कैराबिट बिटल मीन्स योर डंग बिटल्स वी गेट दिस लैमेलेट टाइप. Aristate you have dissected in your practical classes as well as in your practical examination. All of you have done well. It is found in house fly. So aristate matlab hai pouch like. Stylet antenna you have got in your rubber fly. Then plumose and pylos, ye dono humne ek saath discussion kiye the. Ki plumose matlab hai feathery and it is found in male mosquito, right? Pylos matlab less hairy. Between the segments jo hota hai, antenna ke jo different segments, between the segments only hairs will come out from that part. But in case of plumose, all over the, irrespective of the segment and the body of the segments, the hairs will be found. Geniculate I have already discussed, and flabulate means fan like, and you get this type of antenna in case of your stylopids, right? So this was about structure and modification of insect antenna. So you have to remember the function of the antenna also. I hope that 4-5 functions you are remembering. I'm not discussing that one. And structure wise, you draw the diagram of geniculate, you practice the diagram of the geniculate antenna, and that can be the diagram of a generalized insect antenna, and you label the portions like your antennal sclerite, antennal suture, which is followed by your main part, the first part of the insect antenna, first segment, which is known as scape, and then pedicel, followed by flagellum. May I ask you, and all of you who are listening to this audio may try to answer it, inside which portion of the insect antenna Johnston's organ is found? I'm giving you 5 seconds time. So that is, you're right, that it is pedicel inside which Johnston's organ is found. So this Johnston's organ is composed of several ganglia, right? In fact, thousands of ganglia maybe. And in mosquitoes, that organ helps the mosquito in hearing. However, in other insects, वो सुनने के लिए अलग से appendage है, जिसको बोलते हैं tympanum. So this was about your structure and modification of insect antenna, and then I'm seeing the syllabus of this course, different types of mouth parts of insects. If you remember the second practical class, you had dissected the mouth parts of cockroach or cockroach grasshoppers. जो भी insects चबा चबा के खाने वाला होता है उसका mouth parts को बोला जाता है biting and chewing type mouth parts. So this is the primitive mouth parts which the insects were having. And till now, there are several groups of insects which are were having this type of your mouth parts. So this is the basic type of mouth parts जो आपको जिसका different appendages को draw करके diagram draw करके आपको याद रखना होगा, मतलब practice करना होगा. For example, जो first appendage upper part of the mouth parts में रहता है, mouth का रहता है, that is known as labrum. It is just like our upper lip. जैसे हम लोगों के केस में अपर लिप है, उनके केस में, इंसेक्ट के केस में भी चीविंग एंड बाइटिंग टाइप माउथ पर्स में अपर लिप को बोलते हैं लैब्रम, यू नो इट. और इफ यू फ्लिप द लैब्रम देन यू गेट द लैब्रम एपिफेरिंग्स. तो इंसेक्ट माउथ में, इंसेक्ट का माउथ कैविटी में कोई ऑर्गन ऑफ टेस्ट नहीं रहता है. हम लोगों के केस में जैसे माउथ कैविटी के अंदर टंग, TONGUE, so that acts as organ of taste. But in insect, that labrum epipharynx acts as organ of taste. Ab ye ho gaya labrum ka baat. Ab labrum ka aap chota sa diagram banayenge, uske paas mein uska structure likhenge, function likhenge. Function jab likhenge to sabse important function hoga ki holding the food from the top. हम लोगों के लिप का जैसे फंक्शन है, उसका लिप का भी, अपर लिप का भी वही फंक्शन है. इन एडिशन टू दैट, जैसे हमारा लिप क्या करते हैं, हम लोगों का टीथ को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उनके केस में लैब्रम के ठीक नीचे दोनों तरफ मैंडिबल्स रहता है, उस मैंडिबल्स का बेस को प्रोटेक्ट करके रखते हैं. ये हो गया लैब्रम. देन यू कम टू मैंडिबल्स. मैंडिबल्स एज आई हैव सेड कि दोनों तरफ लैब्रम के ठीक नीचे मैंडिबल्स रहते हैं, और मैंडिबल्स आर द मेन, योर मेन और प्राइमरी जॉज यू कैन से. चीविंग एंड बाइटिंग टाइप माउथ पर्ट्स में
1: मैंडिबल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज मैंडिबल्स में दो तरह का टीथ होते हैं. फ्यू टीथ दे आर एबल टू काट द फूड इंटू पीसेस विच आर अवेलेबल एट द डिस्टल एंड ऑफ द मैंडिबल्स, एंड सम टीथ आर अवेलेबल एट द बेस ऑफ द मैंडिबल्स विच आर नॉट वेरी शार्प, दे आर ब्लंट. और ये ब्लंट होने के कारण ही दे कैन मैस्टिकेट, वो क्रॉस कर सकते, मैस्टिकेट कर सकते, ग्राइंड कर सकते. सो दे आर नोन एज मोलर टीथ और ग्राइंडर टीथ. डायग्राम बनाओगे, फंक्शन लिखोगे. मैंडिबल्स के ठीक नीचे और आ जाओ दोनों तरफ, यू विल गेट मैक्सिला. मैक्सिला को सेकेंडरी जॉ भी कहते हैं. मैक्सिला का डायग्राम को रिकॉल करो, आपका जो क्लास में जो आप ड्रॉ किए थे उसमें देखेंगे कि सबसे प्रॉक्सिमल पोर्शन में द पोर्शन इज नोन एज कार्डो विच इज अटैच्ड विद द क्रैनियम, एंड कार्डो इज फॉलोड बाय लॉन्ग पोर्शन विच इज नोन एज स्टाइप्स. स्टाइप्स का बेस से मैक्सिलरी पल्प निकलता है, एंटेना जैसे दिखता है, सेगमेंटेड. स्टाइप्स का एकदम डिस्टल एंड पे चले जाओ, डिस्टल एंड पे जाने के बाद आपको दो लोब दिखता है, टू लोब्स यू फाइंड, वन इज इनर लोब, अनदर इज आउटर लोब. इनर लोब इज स्पाइनी और इट इज हेयरी, दैट लोब इज नोन एज लैसिनिया. आउटर लोब इज ब्लंट, इट इज नोन एज गैलिया. सो ये हो गया आपका मैक्सिला स्ट्रक्चरली. फंक्शनली क्या होगा? डेफिनेटली जब आप मैक्सिला पेयर्ड स्ट्रक्चर है तो पेयर्ड स्ट्रक्चर होने के कारण विद द हेल्प ऑफ लैसिनिया एंड गैलिया, मेनली लैसिनिया एंड द मैक्सिलरी पल्प, दे कैन ग्रिप द फूड, फूड को ग्रिप करके, एंड देयर आफ्टर इट ब्रिंग्स ऑल्सो टुगेदर, इट विल ब्रिंग द फूड इनसाइड द माउथ कैविटी. So gripping the food and bringing the food towards food inside the mouth cavity is the main function of this maxilla. In addition to that, because maxillary pulps are present, pulpi are present, and pulpi always are sensory, you know. So in sensing where exactly the food is there, it helps. It helps in detecting the presence of the food. And then at the center of the mouth cavity, like us. हम लोगों के जैसा, हम लोगों का सेंटर ऑफ द माउथ कैविटी में जैसे टंग है, TONGUE, इन केस ऑफ इंसेक्ट्स, इन केस ऑफ चीविंग एंड बाइटिंग टाइप माउथ बर्ड्स, दे ऑल्सो आर हैविंग ए टंग लाइक स्ट्रक्चर. बिकॉज इन योर क्लास आई हैव डिस्कस दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आवर टंग एंड इंसेक्ट्स हाइपोफायरिंग्स. सो हाइपोफायरिंग्स इज अ टंग लाइक स्ट्रक्चर, मस्क्यूलर स्ट्रक्चर. So the only function in chewing and biting the mouth parts regarding your hypopharynx is secretion of saliva. So the salivary duct opens through hypopharynx. That is its function, main function. Ab last jo appendage aapka chewing and biting type mouth parts mein hota hai, that is your labium. जैसे हम लोगों के केस में लोअर लिप है, इनके केस में लेबियम है. एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जरूर है, डायग्राम बनाएंगे तो क्लियर होगा. लेबियम का जो प्रॉक्सिमल मोस्ट पोर्शन है दैट इज नोन एज सबमेंटम. लेबियम का बिल्कुल बीच में एक इलिप्टिकल और ओवल शेप्ड एक सेगमेंट है, दैट इज नोन एज मेंटम. और जो डिस्टल पोर्शन है, बाकी रेस्ट ऑफ द पोर्शन है, दैट इज नोन एज प्रीमेंटम. प्रीमेंटम का बिल्कुल एपेक्स में, यानी कि डिस्टल एंड पे अगर आप जाएंगे, यू विल गेट टू पेयर्स ऑफ लोब्स. और ये टू पेयर्स ऑफ लोब्स में से जो इनर पेयर है, मतलब अंदर वाला जो पेयर है, दोज आर नोन एज ग्लॉसा. ग्लॉसा इज सिंगुलर, ग्लॉसी. Together they will be known as glossy.
2: outer pair of lobes, they will be known as, they are known as paraglossa. Paraglossy is the plural. Or agar glossa, paraglossa, matlab irrespective of glossy and paraglossy together, that portion can be leveled as ligula. Or ye jo prementum ka jo abhi baat kar rahe hain, prementum ka base se aap dekhe bhi hai ki one pair of labial palpi are present. And as I have said ki koi bhi palpi insect mein present ho to uska function hoga sensory. तो यहां पे लेबियल पाल्पिक का फंक्शन किस तरह का सेंसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट एक सेंसरी फंक्शन है, दैट इज डिटेक्शन ऑफ स्वीटेबिलिटी ऑफ द फूड. फूड के तरह, फूड के पास तो पहुंच गए इंसेक्ट ना, लेकिन वो फूड कंज्यूम करने लायक है कि नहीं, ये डिसाइड करेंगे कौन, ये डिसाइड करेंगे लेबियल पाल्पी. सो दैट इज वन फंक्शन. अनदर फंक्शन इज डेफिनेटली होल्डिंग द फ्रूट फ्रॉम द बॉटम. जैसे हम लोग केस में लोअर लिप नीचे से फूड को होल्ड करते हैं, अपर लिप ऊपर से फूड को होल्ड करते हैं. सिमिलरली लैब्रम मतलब इंसेक्ट के केस में अपर लिप ऊपर से फूड को होल्ड करते हैं, लेबियम इंसेक्ट के केस में लोअर लिप नीचे से फूड को होल्ड करते. सो ये हो गया आपका प्रिमिटिव माउथ पर्स में से जिसको बोलते हैं चीविंग एंड बाइटिंग टाइप. अब डिफरेंट मॉडिफाइड माउथ पर्स भी हैं जो आपने क्लास में फॉलो किए हैं. मैंने एग्जांपल दिया था, मैंने आपको दिखाया भी था कि बटरफ्लाई के केस में. अब बटरफ्लाई को तो मैंडिबल्स का जरूरत नहीं है, बटरफ्लाई तो चबा चबा के नहीं खाएंगे. तो यहां पे मॉडिफिकेशन, एक ग्रेट मॉडिफिकेशन होने का जरूरत है ना. तो वो मॉडिफिकेशन किस चीज का होगा, क्योंकि यू नो कि बटरफ्लाईज आर हैविंग ए कॉइल्ड लॉन्ग प्रोबोसिस. जब अनकॉइल करते तब लंबा दिखता है, कॉइल्ड रहता है तो स्प्रिंग लाइक रहता है. सो वेयर फ्रॉम दिस प्रोबोसिस इज अराइजिंग, विच पार्ट ऑफ द प्रिमिटिव माउथ पार्ट्स हैज कन्वर्टेड इनटू प्रोबोसिस, दैट इज द गैलिया ऑफ मैक्सिली. दो जो मैक्सिली मतलब दो मैक्सिले का दो गैलिया होगा आउटर लोब, ये इलोंगेटेड हो जाएंगे एंड दे आर जिपर्ड टूगेदर टू फॉर्म दिस कॉइल्ड प्रोबोसिस विच इज अनकॉइल्ड when the butterfly is in action, means when it is taking the nectar from the flower. And this modified mouth parts is known as siphoning type mouth parts. All right. Another modification, housefly mein aate. You know ki housefly ke case mein ek spongy structure rehta hai. और वो स्पॉन्जी स्ट्रक्चर बाइलोब्ड होते हैं, मतलब दो लोब वाला स्पॉन्जी स्ट्रक्चर होगा. एंड दैट स्पॉन्जी स्ट्रक्चर इज नोन एज लैबेल्ला. लैबेल्लम सिंगुलर, लैबेल्ला प्लूरल. और वो लैबेल्ला मतलब टिप ऑफ द प्रोबोसिस में माइन्यूट पोर्स रहेंगे, तभी तो वो स्पॉन्ज डेवलप करेंगे ना. वो माइन्यूट पोर्स को कहते हैं स्यूडो ट्रैकिया. सो यूजिंग दैट स्पॉन्जी स्ट्रक्चर कैपिलरी एक्शन के थ्रू द सेमी लिक्विड और सेमी सॉलिड फूड से वो लिक्विड को अपटेक कर लेते हैं. ये जो मॉडिफाइड माउथ पर्स है जो हाउस फ्लाई में पाया जाता है, इसको बोलते हैं स्पॉन्जिंग टाइप. Is that all right? अपने डायग्राम बनाए थे, उस डायग्राम को फिर से प्रैक्टिस करेंगे और याद रखेंगे कि स्पॉन्जिंग टाइप माउथ पर्स कहां पे पाया जाता है, हाउस फ्लाई में. Then let's come to another important modification, piercing and sucking type माउथ पर्स. अब लोगों को पता है कि बग्स, कोई भी बग, वो भी तो चबा चबा के नहीं खाते, ना ही उसके पास कोई स्पॉन्जी स्ट्रक्चर है, ना ही उसके पास बटरफ्लाई जैसा कॉइल्ड प्रोबोसिस है. प्रोबोसिस जरूर है बट यहां पे अलग तरह का, क्योंकि मान लीजिए कि कोई एक बाग प्लांट का टिश्यू से वो सैप को सक करना चाहते, सो इट हैज टू पियर्स द सरफेस ऑफ द प्लांट, चाहे लीफ हो या चाहे योर स्टेम हो. तो पियर्स करने के लिए उसको पियर्सिंग योर ऑर्गन चाहिए, अपेंडिक्स चाहिए. तो यहां पर ये जो बग्स होते हैं, वो बग्स में देयर विल बी फोर स्टाइलेट्स, चार स्टाइलेट होंगे, और ये चार स्टाइलेट पियर्स करने का भी क्षमता रखता है
1: साकिंग करने का भी क्षमता रखते हैं। इसलिए ये जो माउथ पर्ट्स बाग्स में पाए जाते हैं उसको बोलते हैं पियर्सिंग एंड साकिंग टाइप माउथ पर्ट्स। तो ये चार स्टाइलेट का ओरिजिन क्या है, ओरिजिन मतलब कौन सा प्रिमिटिव अपेंडेज ये स्टाइलेट फॉर्म करेगा। आपको पता है कि मैंडिबल्स प्रिमिटिव में कितना रहता है, दो। प्रिमिटिव में मैक्सिला कितना रहता है, दो। अब यहां पे बाघ में आके वो मैंडिबल फॉर्म में आ रहा है कि स्टाइलेट फॉर्म में कन्वर्टेड हो जाता है। तो दो मैंडिबल दो स्टाइलेट फॉर्म करते हैं, दो मैक्सिला अनदर टू स्टाइलेट में कन्वर्ट होते हैं। सो हाउ मेनी स्टाइलेट्स यू हैव गॉट, टू मैंडिबुलर स्टाइलेट मैक्सिलरी स्टाइलेट्स, दैट मींस यू हैव गॉट फोर स्टाइलेट्स। सो द बाघ इज हैविंग फोर स्टाइलेट्स विद देम। अब ये स्टाइलेट के सहारे से वो पियर्स करेंगे और साक करेंगे। अब ये स्टाइलेट बहुत डेलिकेट भी होंगे ना, बहुत थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, बहुत डेलिकेट होंगे, और डेलिकेट होने के कारण इसका प्रोटेक्शन का भी जरूरत पड़ता है। मतलब व्हेन इट रेस्ट, व्हेन द बग इज नॉट फीडिंग, द स्टाइलेट्स रिक्वायर ए प्रोटेक्टिव कवर। हु विल गिव दिस स्टाइलेट्स ए प्रोटेक्टिव कवर? मॉडिफाइड लेबियम। लेबियम एक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है यहां पे, और उस ग्रुप के अंदर वो स्टाइलेट्स रेस्ट करते हैं व्हेन द बग इज नॉट फीडिंग, एंड दिस होल मॉडिफाइड माउथ पर्स इज नोन एज पियर्सिंग एंड साकिंग टाइप माउथ पर्स। अब यहां पे एक और चीज हमको बताना जरूरी है, क्योंकि मॉस्किटो जो एक बाघ नहीं है, जो एक डिप्टेरन इंसेक्ट है, हम लोगों का ब्लड सक करते हैं ना, उसके केस में भी ये पियर्सिंग एंड साकिंग टाइप माउथ पर्स रहता है, हमने ये क्लास में बताया था। सो सारे बाघ्स और डिप्टेरन में मॉस्किटोज दे आर हैविंग पियर्सिंग एंड साकिंग टाइप माउथ पर्स। थोड़ा सा अंतर बाघ के साथ मॉस्किटो का है, वो किस तरह का है। बाघ में हाउ मेनी स्टाइलेट्स दे हैव, दे आर हैविंग फोर स्टाइलेट्स, बट इन केस ऑफ मॉस्किटो, जो मॉस्किटो हम लोगों को बाइट करते हैं उस मॉस्किटो में छह स्टाइलेट रहेगा। अब यहां पे मॉस्किटो में आके क्या होता है कि उसमें भी एक स्टाइलेट रिलेटेड एक सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, दैट मींस फीमेल्स मॉस्किटो के जो फीमेल्स होंगे दे आर हैविंग सिक्स स्टाइलेट्स, बट मेल्स दे आर हैविंग फोर स्टाइलेट्स, जस्ट लाइक बग्स। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेल मॉस्किटोज आपको बाइट नहीं करते, मतलब आपको बाइट करने वाला कोई भी मॉस्किटो है तो वो फीमेल ही है, ओनली फीमेल, एंड दे हैव हाउ मेनी स्टाइलेट्स, दे हैव सिक्स स्टाइलेट। और ये छह स्टाइलेट आएगा कहां से, वो चार तो फिक्स है, दो मैंडिबुलर दो मैक्सिलरी। दो जो एक्स्ट्रा स्टाइलेट है वो कहां से आएंगे, वन विल बी फ्रॉम लैब्रम एपिफेरिंग्स। यहां पे लैब्रम एपिफेरिंग्स इलोंगेट होके एक स्टाइलेट फॉर्म करता है। Another is your hypopharyngeal stylet. Means hypopharynx यहाँ पे एक और stylet form करके female mosquito को छह stylet provide करता है। समझ में आ गया? अब another there are several other modifications also, but इसमें से एक important modification आपको याद रखना चाहिए, that is your thrips का जो mouth parts है। थ्रिप्स का माउथ पर्स को बोलते हैं, मॉडिफाइड माउथ पर्स को बोलते हैं रैस्पिंग एंड साकिंग। ये क्या करते हैं, इस माउथ पर्स में देयर विल बी थ्री स्टाइलेट्स, राइट मैंडिबल विल बी एब्सेंट। इफ यू गो थ्रू द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, आई मीन योर 5-6 ईयर्स 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, देन फॉर सेवरल टाइम्स द एक्सटर्नल एग्जामिनर हैज आस्क्ड कि इन व्हिच इंसेक्ट asymmetrical mouth parts is found. The answer is thrips. In which insects only three stylets are found? The answer is again thrips. Which insect is having mouth cone? The answer is again thrips. So wo tiny ek insect thrips jisse related ye bahut sare questions banta hai. Which insect is having rasping and sucking type mouth parts? The answer is thrips. So I hope that you will be revising things carefully. And the next topic I covered was wing venation modifications and wing coupling apparatus. again I'll be suggesting, please draw the diagram of generalized insect wing, label the different portions, different angles, different margins. आपको पता ही है कि humeral angle रहता है कहाँ पे रहता है, हाँ, anterior margin किसको कहते हैं, anterior margin का एक और नाम है क्या है, costal margin, apical margin, then anal margin,

मीडियो क्यूबिटल क्रॉस स्विंग, ये आप प्रैक्टिस करेंगे। और ये विंग वेनेशन कौन दिए थे, कौन साइंटिस्ट थे विंग वेनेशन ओपाइन किए थे, नेम इज कॉमस्टॉक एंड नीडहम, यू मस्ट रिमेंबर द नेम। एंड देन विंग कपलिंग मैकेनिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जुगेट विंग कपलिंग मैकेनिज्म, प्लीज रिकॉल माय क्लास, दैट क्लास, टू क्लासेस आई टुक रिगार्डिंग योर टू एक्सप्लेन दिस विंग कपलिंग मैकेनिज्म, जुगेट विंग कपलिंग मैकेनिज्म, फ्रेनेट विंग कपलिंग मैकेनिज्म, जुगो फ्रेनेट विंग कपलिंग मैकेनिज्म। मेल फ्रेनेट और फीमेल फ्रेनेट में आप लोगों को मॉडल के सहारे से भी बताने की कोशिश किए थे, चार्ट पेपर काट के मेल फ्रेनेट और फीमेल फ्रेनेट में अंतर क्या होता है। एंड देन हैमुलेट, वेरी इंपॉर्टेंट, इन हनीबीज यू गेट, इन वस्प्स यू गेट हमूली। हमूली वो हुक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो हाइंड विंग का कॉस्टल मार्जिन में रहता है, मोटा मोटी 20 हुक लाइक स्ट्रक्चर रहता है जो फोर विंग का एनल मार्जिन को पकड़ के रखता है जब इंसेक्ट फ्लाई करते हैं, उसको बोलते हैं हैमुलेट विंग कपलिंग मैकेनिज्म। अनदर टॉपिक जो मैं आपको प्रैक्टिकल क्लास में बहुत बार आपको बताया, दैट इज योर मॉडिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट विंग। मॉडिफिकेशन मतलब यहाँ पे डिफरेंट इंसेक्ट में कितना अलग अलग टाइप ऑफ इंसेक्ट विंग होते हैं, हॉल्टेयर किस में होते हैं, स्यूडो हॉल्टेयर किस में होते हैं, एलाइट्रा किस में होता है, हेम एलाइट्रा, हेमिलिट्रा जिसको आप बोलते हैं ना, हेम एलिट्रा किस में होते हैं, फ्रिंज्ड विंग्स किस में होते हैं, आपका मेम्ब्रेनस विंग्स किस में होते हैं, ये 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट विंग्स, प्लीज गो थ्रू अलोंग विद द एग्जांपल्स। एंड देन डॉक्टर राव प्रोबेबली हैड कवर्ड मेटामॉर्फोसिस एंड डायपॉज इन इंसेक्ट्स, टाइप्स ऑफ लार्वा एंड प्यूपा, types of larvae and pupae, this topic was there in your midterm examination, all of you have tried that one and you have done well. Kitna alag alag types of metamorphosis hote hai, larvae ka different types you already had read it and I have checked your midterm copies ki apodous larva, polypod larva, oligopod larva, fir again there are classifications, pupae ke case mein bhi same, optect etc. Dr. Others probably has covered circulatory system, the systems means circulatory system, excretory system, respiratory, nervous, reproductive system. So regarding your systems, I'll suggest you to again practice the diagram of circulatory, khas karke excretory, digestive system definitely, and different modifications का जो examples है वो आप जरूर पढ़ के जाएंगे। And then regarding insect ecology, environment and its components, effect of biotic factors and abiotic factors. So you know that insect के ऊपर सबसे ज़्यादा अगर इम्पैक्ट है तो देर आर टू फैक्टर्स, वन इज बायोटिक फैक्टर्स, बायोटिक मीन्स डेफिनेटली ऑर्गेनिज्म के थ्रू कोई इंसेक्ट का पॉपुलेशन में, इंसेक्ट का रिप्रोडक्शन में कोई अगर अफेक्ट करेंगे तो उसको बायोटिक फैक्टर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल योर एनिमीज, नेचुरल एनिमीज ऑफ इंसेक्ट्स, सो दैट इज बायोटिक फैक्टर। इन एबायोटिक फैक्टर यू नो कि रेनफॉल, relative humidity, sunshine hours, temperature, these all are under your abiotic factors, right? Then categories of pests, you know, key pests, major pests, minor pests, sporadic pests, regular pests, occasional pests. So examples you have to remember. Then regarding systematics, taxonomy, Dr. Rao has covered this topic. So you know that the class Insecta is classified into two sub classes.

0: One is aterigota and other one is terigota. Ab yahan pe tera means wing, a means absent, aterigota means the insect orders, the classes, subclass of the insect, insecta, class insecta, which is having the orders where no insect insect wings are present. Means primarily those orders will be wingless. Or under this aterigota, how many orders you have gone through? 4. So all these 4 orders, they lack the wings, right? Primarily they are wingless. And in case of pterygota, means rest of the jo 25 insect orders, they are having wings. Means secondarily they may not have the insect wings, but primarily they have the wings. Aterigota or pterygota mein ye main difference hai ki kaun sa primarily wingless hai aur kaun sa winged hai aur otherwise secondarily wingless hai. Another difference is your metamorphosis ke regarding. In case of aterigota, either the metamorphosis is completely absent or it is very slight. In case of pterygota, metamorphosis is there. Means either they will be having three stages in their life, or otherwise they will be having 4 stages in their life. But in case of aterigota, the metamorphosis is either completely absent or it is very slight. And then articulation of the mandible from point of view, say, be different. Say, in case of aterigota orders, the head is monocondylic. That is, articulation is single. Mandible ka jo articulation hai, that is single articulation. But in case of pterygota, pterygota ka jitna bhi 25 insect orders hai, usme it is dicondylic. Or bhi differences hai, but for the second semester, this is enough. So what are the different orders which come under this aterigota? Thysanura, Columbula, Proteura, Diplura. So I'll suggest you not to go into detail of these classes, of these orders. I'm talking of this aterigota orders, but you must remember the examples of those. So aterigota mein there are 4 insect orders. Thysanura mein silverfish aata hai, Columbula mein springtail aata hai, Proteura mein protuberans aata hai, Diplura mein japygetes aate hai. Ye examples aapko yaad rakhna. Regarding rest of the orders, means the subclass pterygota, again do division kiya gaya hai yahan pe. Matlab 25 order aa raha hai na, 25 ko 16 aur 9 mein bata gaya hai. 16 hoga exoterigota, 9 hoga endoterigota. अब ये दो जो डिवीजन है, समटाइम्स योर एक्सटर्नल एग्जामिनर में आस्क यू कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द एक्सोटेरिगोट एंड एंडोटेरिगोट. सो द मेन डिफरेंस इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ विंग डेवलपमेंट. इफ द विंग डेवलपमेंट इज एक्सटर्नल, मींस इट इज विजिबल दैट द विंग इज गेटिंग डेवलप्ड, देन द इंसेक्ट ऑर्डर्स विल बी अंडर एक्सोटेरिगोटा. दैट इज व्हाई द नेम एक्सोटेरिगोटा हैज बीन गिवन. And in the under the orders of endoterigota, all are having your wing development, which takes place internally. Means within the case, the wing is getting developed, which cannot be visible from the outside. From metamorphosis point of view, very important difference is there between exoterigota and endoterigota. In exoterigota, all will be having incomplete metamorphosis. Incomplete means, मैंने पहले भी बताया कि there will be 3 life stages. एक nymph adult. There is no existence of pupal stage with them. Whereas in case of endoterigota, that pupal stage is there. So in endoterigota there will be 4 life stages. Egg. अब यहाँ पे nymph ना बोल के हम लोग बोलेंगे larva, pupa, adult. How many stages? Egg, larva, pupa, adult. 4 stages. Therefore, You can write down that in exoterygota, pupal stage is absent. In case of endoterygota, pupal stage is present. Immature stages of exoterygota, either they will be called as your nade or nymph. Aquatic stage, aquatic kuch order stages, nade bolte. For example, dragonfly ka jo immature stage hai, usko bolte hai nade. Hemiptera, matlab bugs ka jo immature stage hai, usko bolte hai nymph. But larva, that term is used to depict the immature stage of your stage of your endoterygote orders. So exoterygota mein kaun kaun sa insect order aata hai? Ephemeroptera odonata, Plecoptera gyroblatoria, Orthoptera phasmida, Dermaptera, Imbaptera, Dictyoptera, Isoptera, Soraptera, Zoocoptera, Malophaga, Siphonoptera, Hemiptera and Thysanoptera. So sare insect orders aapko padhne ka zarurat nahi hai. Sir ne bhi aapko bataya hoga ki sare insect orders ka characteristics padhne ka zarurat nahi, but sare insect orders ka aapko example zarur yaad rakhna hai. For example, Ephemeroptera example hai mayfly, jo may mahina mein aap का जो प्रिंसिपल ऑफिस का अपोजिट में एक टावर है जिसमें बहुत हेलोजन लाइट लगा हुआ रहता है, उसमें थाउजेंड्स ऑफ मेफ्लाई जो व्हाइट कलर के होते हैं उसमें अट्रैक्ट होते हैं, आप लोगों ने देखे हो. ओडोनाटा, यू नो, ड्रैगन फ्लाई, डैमसल फ्लाई. तो सारे ऑर्डर्स के एग्जाम्पल्स आपको याद रखना होगा, बट कुछ इंसेक्ट ऑर्डर का डिटेल में भी जाना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, जिसको हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट ऑर्डर्स, ओडोनाटा एक एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट ऑर्डर है. कैसे? क्योंकि सारे ओडोनेट्स, सारे ड्रैगन फ्लाइज, डैमसल फ्लाइज एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दे ऑल आर प्रेडेटर्स, दे फीड ऑन द अदर इंसेक्ट्स व्हिच आर हार्मफुल, देयरफॉर इट इज एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट. सो यू मस्ट रिमेंबर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्डर ओडोनाटा, व्हिच यू ऑलरेडी नो. फॉर एग्जाम्पल, यू नो कि ड्रैगन फ्लाइज एंड डैमसल फ्लाइज का विंग्स कैसा होता है, मेम्ब्रेनस विंग्स होता है. विंग्स में ओपेक स्पॉट को क्या बोलते हैं? टेरोस्टिग्मा. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स. Both the wings are membranous. किसमें होते? Dragonflies में होते. Basket-like legs, dragonflies and damselflies में होते. To capture the prey. Maximum number of ummatidium, किसी का अगर compoundized में होंगे, तो that is your dragonflies. अब देखो ये compoundized dragonflies का maximum portion, maximum area of the head को cover करता है. So, वो पीछे भी देख सकते हैं, साइड में भी देख सकते हैं, सामने भी देख सकते हैं. मोटा मोटी 360 डिग्री उसका विजन है. और भी बहुत सारे एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंट इंसेक्ट ऑर्डर्स है, मैं कुछ मेंशन करता हूँ. फॉर एग्जांपल, ऑर्थोप्टेरा, देन योर डिक्टाप्टेरा जिसमें कॉकरोच एंड प्रेइंग मैंटिस आते हैं, आइसोप्टेरा, टर्माइट्स आते हैं, इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंट, व्हीट का पेस्ट होते हैं. देन हेमिप्टेरा, डेफिनेटली बहुत सारे प्रेडेटरी बग्स भी होते हैं, बहुत सारे फाइटोफैगस हार्मफुल बग्स भी होते हैं. थाइसनोप्टेरा जिसके एग्जाम्पल थ्रिप्स होते हैं ना, वो भी एग्रीकल्चरली बहुत इंपॉर्टेंट है. सो थ्रिप्स का भी जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपको मालूम ही है, मैंने बहुत बार का मतलब इसी जो जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसी में हमने बोला कि जो है एसिमेट्रिक माउथ पर्स किस में रहते हैं, माउथ कोन किस में रहते हैं, फ्रिंज्ड विंग्स किस में रहते हैं, थ्री स्टाइलेट्स किस में रहते हैं, वो सारे आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्डर थाइसनोप्टेरा, इजंट इट. एंड देन अंडर द your division, your endoterygota, you know that there are 9 insect orders. उसमें से agriculturally important insect का अगर बात करें तो Neuroptera, जिसमें जिसका example you know कि aphid lion, ant lions, so they are predators. As they are predators, they are agriculturally important. Then Lepidoptera, very important. So Lepidoptera का characteristics, you know, already कि siphoning type mouthparts किस में होते हैं, scaly wings किस में होते हैं. So these are the characteristics of the order Lepidoptera. And examples, you know, कि butterflies and moths, what are the difference between the butterflies and moths, that has been discussed in your class also. Then Diptera, flies जिसमें आता है. Flies मतलब सिर्फ house fly नहीं, flies मतलब यहाँ पे robber fly होता है, तुम्हारा आपका जो है हॉर्स फ्लाई होते हैं, विच आर प्रेडेटरी. सम पेस्ट ऑल्सो आर कमिंग अंडर दिस ऑर्डर डिप्टेरा, देयरफॉर इट इज एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट. और डिप्टेरा में हाइंड विंग मॉडिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी है कि कि हॉल्टर प्रेजेंट रहता है, सारे डिप्टेरा में ही हॉल्टर प्रेजेंट रहता है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. साइफनिंग टाइप माउथ पर्स योर आइदर योर स्टाइलेट और एरिस्टेट एंटेना प्रेजेंट रहता है. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिप्टेरा. सो यू आर ऑलरेडी नोइंग द थिंग्स. ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू रिकलेक्ट द थिंग्स एंड यू हैव टू राइट इट डाउन. एंड देन हाइमेनोप्टेरा, मोस्ट ऑफ द बेनिफिशियल इंसेक्ट्स दे कम अंडर दिस हाइमेनोप्टेरा. अब यहाँ पे बेनिफिशियल इंसेक्ट मतलब आपके दिमाग में चलता है कि हनीबीज, बट हनीबीज तो एक छोटा पार्ट है. बहुत सारे पैरासिटोइड्स, अलग अलग पॉलिनेटर्स जो हनी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, वो भी इसी में आते हैं हाइमेनोप्टेरा में. देयरफॉर दिस ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा इज कंसिडर्ड एज कि जो है मोस्ट ऑफ द बेनिफिशियल इंसेक्ट्स. एक्सटर्नल एग्जामिनर अगर ये क्वेश्चन करेंगे कि कौन से इंसेक्ट ऑर्डर ऐसा है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स पाया जाता है, दैट इज योर हाइमेनोप्टेरा. बीज, वर्म्स, एंट्स, डिफरेंट पैरासिटोइड्स. कोलियोप्टेरा इज द लार्जेस्ट इंसेक्ट ऑर्डर. सो कोलियोप्टेरा के भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मालूम है कि दे आर हैविंग एलाइट्रा विच इज मॉडिफाइड फोर विंग. सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, इजंट इट? कोलियोप्टेरा आर हैविंग योर प्रोनेथस ओरिएंटेशन ऑफ हेड. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट इंसेक्ट ऑर्डर्स विच यू हैव टू गो थ्रू इन डिटेल. I'm repeating once again which are the important insect orders regarding which you have to remember the characteristics of those. Odonata, Orthoptera, Dictyoptera, Isoptera, Hemiptera, Thysanoptera, Neuroptera, Lepidoptera, Diptera, Hymenoptera and Coleoptera. Or Dr. Rao probably has covered some families also, few families you may go through. And I hope that the whole syllabus I have covered within this 1 hour time. I think you will be preparing well, you are preparing well, and you will be appearing the examination with your full potential, utilizing your full potential. So I think some instructions I've also given that wherever you feel that diagram should be drawn, it has not been asked to draw, but it will be creating some value to your answer, quality of the answer, you please do not hesitate to draw that. I'm talking of your short answer type question and broad answer type question. No, I'm not talking of your about your the first part of your question, that is objective type. Objective type mein aapko wo scope nahi hai. But jaise aapko broad question ka mila, wherever you feel that you are capable of draw the diagram of that particular question related to that particular question, you don't hesitate to draw that. And thereafter you explain it very briefly. So all the best to all of you. Any questions, any queries, any doubts, you don't hesitate to text me at any point of time. I'll try my best to answer those questions. Thank you very much. All the best.
1: Thank you so much, sir.
0: Thank you, miss.
1: दोस्तों, उम्मीद है कि आपके लिए ये रेडियो रिवीजन काफी यूजफुल साबित होगा. तो एग्जाम बिल्कुल अच्छे से दीजिए. बेस्ट ऑफ लक.

0: देखो नाटक देखो।
1: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
2: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
3: हाँ हाँ हाँ।
1: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
2: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
3: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
1: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
2: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
1: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
2: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
4: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
2: और तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
2: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं, खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है। तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं। इसलिए, क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM, CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है। देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा। बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है। बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा। जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा, इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों, याद रखिए, अफवाह से नहीं, सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही, लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अफवाहों से बचें। नमस्कार।
2: कितने दोस्त हैं?
4: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
2: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
2: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
4: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
5: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम रेडियो रिवीजन में। रेडियो रिवीजन जो आपकी परीक्षा से पहले प्रसारित होता है और आपके सेकेंड सेमेस्टर्स के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, और आज हमारे साथ आपके कोर्स लीडर मौजूद हैं डॉक्टर तारकनाथ गोस्वामी। जी हाँ, आज आपके कोर्स AEZ 121 का रिवीजन होने वाला है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मंडे को आपका AEZ 121 फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी का इंटर्म एग्जामिनेशन है, और ये 2+1 वाला कोर्स था आपका इस सेमेस्टर का, सेकंड सेमेस्टर का। तो आप आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव गॉन थ्रू द सिलेबस केयरफुली, और मैं धीरे धीरे आपको सारे जो टॉपिक्स है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि पूरा डिटेल में हम नहीं जा पाएंगे रिकॉर्डिंग्स में। तो फर्स्ट टॉपिक इज हिस्ट्री ऑफ एंटोमोलॉजी इन इंडिया। तो आपको आपका स्टडी मटेरियल में आप जाएंगे तो उसमें कुछ पॉइंट्स वहाँ पे है, उस पॉइंट्स में देखिएगा कुछ कुछ चीज़ें हाईलाइट किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, सिस्टम ऑफ नेचुरी बोल के एक किताब का नाम है, विच वॉज रिटन बाय कैरोलस लिनियस और कार्ल लिनियस, एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट मेनी टाइम्स योर एक्सलेंट एग्जामिनर हैज गिवन दिस क्वेश्चन। 10th एडिशन ऑफ सिस्टम ऑफ नेचुरी रिटन बाय कार्ल लिनियस, इन विच ईयर इट वॉज पब्लिश्ड, एंड द आंसर इज 1758, राइट। एंड देर आर मेनी अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑल्सो विच यू हैव टू रिमेंबर। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट हु मेड extensive study of Indian insects, and that scientist was Fabricius, right? And some other important things to remember are Professor Maxwell Lefroy, who succeeded Nisavili as entomologist to Government of India, right, in 1903. And before him, it was Leolin D. Nisavili, who was posted as first entomologist to Government of India. So it was in the year 1901. And some important books and their authors also you have to remember. For example, Indian Insect Pests, ये किताब का नाम है, ये प्रोफेसर लेफ्रॉय ने लिखे थे। Indian Insect Life भी ये प्रोफेसर लेफ्रॉय का लिखा हुआ किताब है। Some South Indian Insects, this book was written by T.B. Fletcher. So these things you must remember. Handbook of Economic Entomology of South India, very important book. It was written by T.V. Ramakrishna Iyer. So these things you must remember. In addition to that, you may also remember Insect Pests of Crops. This was written by very prominent entomologist whose name is Dr. Pradhan, maybe. Now, if you go through your syllabus, then the next your broad heading is major points related to dominance of insects in animal kingdom, and thereafter classification of phylum Arthropoda. So these two, topics I had covered in your class in great detail. If you recall those classes, it will be very easy for you. In the class, I had discussed that there are 10 important points to remember regarding the factors behind the dominance by the insects in this planet. And under those 10 points, the first point was capacity for flight, as the insects possess wings. And you know that the wings are the lateral extension of the exoskeleton. So, मैंने ये आपको क्लास में कहा था, ये कोई पक्षी नहीं था जो इस प्लेनेट में पहले उड़े थे, ये कोई इंसेक्ट था जो सबसे पहले इस प्लेनेट में उड़ने का क्षमता, उड़ने का एबिलिटी एक्वायर किए थे। So why this, how this capacity for flight help the insects in dominating this planet over the other animals or the other organisms? You know that as they are having the wings, so that they can fly with that, with the help of the wings, and they can seek for food, mate, shelter, oviposition, etc. They can colonize in a new habitat. They can escape from the enemies and also from the unfavorable conditions. They can also migrate with the help of this type of your spatial capacity, that is flight, which they are having. Now the next factor was more adaptability or universality. As you know that the insects are the earliest groups to make their life on the earth
2: and to occupy vast habitats of soil and water. Thereby, they are found, these insects are found in a wide, very wide range of climatic conditions, and they can survive even at minus 50 degrees centigrade and also in the plus 50 degrees centigrade. So you can imagine the range of temperature they can survive. They can, I mean, you're tolerate. Some examples, some extreme examples I'll be citing here. I also had given you the study material. There also you can go through. One insect is there. Its name is Xylopa petroli. Ye petroli sun ke aapko petrol ka yaad aa raha hoga. And its name isliye hua ki it can survive well in crude petroleum oil. Even in the high salt concentration also, you can find some insects like Ephydra fly. And I can cite many examples, an extreme kind of examples where they can, the insects can survive. So we can imagine that they are having a great deal of adaptability or universal. Anywhere in this planet, you can find the insects. So this was the second point, second factor. The third factor is the smaller size they have. You know that most of the insects, they are small in their size. And how this small in size help them in dominating this planet. You know that they will be requiring less space as they are having smaller size. They require less food, less energy, and also the less gravitational effect on them, right? And also, because they are very tiny, they can escape from the enemies very easily. So capturing them, capturing a tiny one by a large predator, for example, their enemies, is not very easy. Therefore, third important factor was small in size. Now, the fourth factor, presence of exoskeleton, very important. In fact, not only the insects, but also the other arthropod also are having this exoskeleton on their body, you know it. And this, your exoskeleton means it is a cuticular protein and it is also known as chitin, right? So how this presence of exoskeleton help the insects in dominating the planet? It is because it gives them the strength or the rigidity and also the flexibility to the insect body. Now, another factor is resistance to desiccation. You know that as their body is covered with the exoskeleton, so definitely the water loss is minimized, right? Because water is very important for any organism. Another factor is prevention of water loss. You know that they're having in their epicuticle, they're having lipids and polyphenols, and those lipids and polyphenols act as waterproof material. Also, some insects are having wax layer that also prevents the water loss. Also, they're having spiracles which they can close whenever they wish to close those. The spiracle closing mechanism or opening closing mechanism that also prevents the water loss, right? Now, insects, you know that mainly terrestrial insects, they are having tracheal system of respiration. And this insects, this tracheal respiration also, it helps in restricting the loss of water and thereby help them in having wider adaptability in extreme conditions also. Another factor is high reproductive potential. Class mein hum isko detail mein discussion kiye the, if you remembered. And I cited a few examples. For example, queen termite. Matlab main ye batana cha raha hu ki kitna level ho sakta hai reproduction ka. Can you imagine ki ek queen termite ek din mein 6000 se 7000 anda matlab egg lay kar sakti hai. And it continues for 15 long years. Thereby, kind of unlimited number of individuals they produce. I mean, the queen termite I'm talking of. There are other examples also. Insects are having some special type of reproduction. For example, polyembryony means one embryo, means one egg, but it is having many embryos. Means from one egg, many individuals can take birth. Then parthenogenesis also is very common in many insects. In parthenogenesis, they don't, require any mating for giving birth to the offsprings, right? In aphids, we see that. Some insects are there, jisme एडल्ट का जरूरत नहीं पड़ता है, एडल्ट बनने का जरूरत नहीं पड़ता रिप्रोडक्शन के लिए. इमैच्योर स्टेज देमसेल्व्स कैन गिव बर्थ टू द ऑफस्प्रिंग्स इन गॉल्मी जुसी. नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस. मेटामॉर्फोसिस एंड डायपोज का चैप्टर आप लोगों ने पढ़े हो, उसमें दो तरह का मेटामॉर्फोसिस मेनली आपको पढ़ाया गया है. एक है कॉम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, अनदर इज योर इनकॉम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस. उसके बीच में डिफरेंस भी आपको पता है. सो इन मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स कॉम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस इज ऑब्जर्व्ड. अब कॉम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है ये दैट यू नो कि ऑल द फोर स्टेजेस विल बी अवेलेबल, एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट. और ये चारों जो अलग अलग स्टेज हैं, ये चारों अलग अलग स्टेज का हैबिट, हैबिटेट, फूड एटसेट्रा का रिक्वायरमेंट अलग अलग है. और ये अलग अलग होने के कारण, मतलब अलग अलग होने से ही इसको एडवांटेज मिल रहा है कि दे कैन एक्सेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ साइकिल, राइट. एंड इंसेक्ट्स हैव वेरियस इंटरेस्टिंग टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म. सम डिफेंस मैकेनिज्म्स बिहेवियरल होते हैं, कुछ होता है स्ट्रक्चरल, कुछ होता है कलरेशनल, कुछ होते हैं केमिकल्स सीक्रेट करने से. एक ऐसा इंसेक्ट है, मैं बताया था आपको, क्लिक बिटल बोल के एक इंसेक्ट है जिसको टच करने से वो मरने का ढोंग करते हैं, मतलब एक तरह से दे प्रिटेंड एज इफ दे इट इज डेड. इस बिहेवियर को बोलते थैनाटोसिस. सो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है टू एस्केप इटसेल्फ फ्रॉम इट्स एनिमी. सो एनिमी विल थिंक दैट द प्रे इज डेड और डेड के ऊपर वो फीड नहीं करेंगे. सो एनिमी विल वॉक अवे और फ्लाई अवे. एंड वंस अगेन when the enemy is gone, that click beetle will do its own work because it is not actually dead. Some structural defense mechanisms are also there. For example, beetles आप सभी लोगों ने देखा है, collection भी किए हैं, class में भी देखे हैं. उस beetles के ऊपर बहुत ही hardened four wings रहते हैं जिसको हम लोग इलाइट्रा भी बोलते हैं, राइट. तो वो एक स्ट्रक्चरल डिफेंस मैकेनिज्म है. आप एक बिटल को पकड़ के अगर क्या बोलते हैं सरफेस में थ्रो भी करेंगे, इट विल नॉट गेट डाइट बिकॉज इट इज हैविंग ए वेरी प्रोटेक्टिव कवर ऑन इट्स बॉडी. कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो बहुत ही ब्यूटिफुली कैमोफ्लेज करते हैं हैबिटेट में, इसको बोलते हैं कलरेशनल डिफेंस मैकेनिज्म. मतलब हैबिटेट का जो कलर है उसका कलर भी सेम है. तो अगर कलर जिस फॉर एग्जांपल किसी प्लांट की लीफ में है और आपको पता ही नहीं चल रहा कि वहां पे एक इंसेक्ट भी बैठा हुआ, क्योंकि लीफ का कलर उसके कलर के साथ मैच कर रहा है. किसी फ्लावर में एक इंसेक्ट बैठा है, उस फ्लावर का जो कलर है उस इंसेक्ट का भी कलर वही है. सो दैट मीन्स ये जो कलरलेस कलरेशनल डिफेंस मैकेनिज्म है, ये एनिमीज को एक तरह से बुर्बक बनाते हैं कि वो ढूंढ नहीं पाते एक्चुअली वो इंसेक्ट वहां पे है या नहीं है. कुछ इंसेक्ट्स डिफेंस केमिकल भी सीक्रेट करते हैं. यू नो ब्लिस्टर बीटल, इफ यू टच द ब्लिस्टर बीटल इमीडिएटली ऑरेंज कलर का एक डिफेंस केमिकल आपके हाथ में लगेंगे. आपके हाथ में लगेंगे मतलब क्या कि एनिमीज भी उसको टच करेंगे तो एनिमीज के बॉडी में लगेगा, तो एनिमीज के बॉडी के ऊपर इरिटेशन होगा एंड इट विल नॉट ट्राई टू फीड ऑन दैट वन. और आपको तो बीज वस्क के बारे में मालूम है ही कि आप बीज को कभी नहीं पकड़ना चाहते, वस्क को कभी नहीं पकड़ना चाहते, क्योंकि इट विल इमीडिएटली इंसर्ट इट्स स्टिंगर इनसाइड योर बॉडी एंड इट विल इंसर्ट द पॉइजन एट द सेम टाइम. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, द फैक्टर विच इज इंपॉर्टेंट फॉर डोमिनेंस ऑन दिस प्लैनेट इज हेक्सापोड लोकोमोशन. सारे इंसेक्ट के केस में आपको मालूम है कि दे आर हैविंग थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स. अब ये थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स रहने के कारण इसको लोकोमोशन में बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलता है. सारे छह लेग वन स्टेप में, जब एक स्टेप, जब लोकोमो एक स्टेप फॉर एग्जांपल वॉकिंग या रनिंग में जब एक कॉकरोच की बात करें तो क्या होता है, कोई तीन लेग मूव कर रहा होता है और बाकी तीन लेग, मतलब तीन पेयर है ना, तो तीन पेयर में से तीन लेग मूव कर रहा होता है और बाकी रेस्ट ऑफ द थ्री लेग्स दे आर बैलेंसिंग द बॉडी. एंड इट अल्टरनेटिवली जो पहले बैलेंस कर रहा था वो नेक्स्ट स्टेप में वो क्या करेंगे, लोकोमोशन में हेल्प करेंगे, बाकी बॉडी बैलेंस में काम हेल्प करेंगे. सो इस तरह से इसको बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी मिलता है और अल्टीमेटली इट हेल्प्स द इंसेक्ट इन डोमिनेटिंग द प्लैनेट. नेक्स्ट टॉपिक इज योर क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा आपको अप टू क्लासेस. सबसे पहले आपको आर्थ्रोपोडा का कैरेक्टरिस्टिक्स, जो छः सात कैरेक्टरिस्टिक्स हमने क्लास में आपको डिस्कस किए हैं, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आप बढ़िया से उसको गो थ्रू करेंगे. एंड देयर आफ्टर जो डिफरेंट क्लासेस हैं अंडर द फाइलम आर्थ्रोपोडा, फॉर एग्जांपल देयर आर हाउ मेनी क्लासेस अंडर द फाइलम आर्थ्रोपोडा, देयर आर सेवन क्लासेस राइट. ऑनिकोफोरा, क्रस्टेशिया, चिलोपोडा, डिप्लोपोडा, एराक्निडा, ट्राइलोबीटा एंड एक्सापोडा. ये जो क्लासेस है और उस क्लासेस का जो जो प्रोमिनेंट योर कैरेक्टरिस्टिक्स है अलोंग विद द योर सम एग्जांपल्स यू मस्ट रिमेंबर. द नेक्स्ट टॉपिक वाज योर स्ट्रक्चर ऑफ हेड, व्हिच आई इन योर प्रैक्टिकल क्लासेस, इन योर थियोरी क्लासेस आई हैव डिस्कस्ड इन ग्रेट डिटेल. सो टू रिकॉल दैट वन, to help you recalling that one, and I'll suggest you to draw the diagram first regarding to remember the different sclerites and sutures which are available on the facial portion of the insect head. ये मिड्डम में आपका क्वेश्चन भी था, आप लोगों ने उसको किए भी है, बट फिर से उसको प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ इंसेक्ट हेड, एंड यू नो दैट देर आर थ्री डिफरेंट ओरिएंटेशंस. वन इज प्रोनाथस, मीन्स द हेड and the appendages of the mouth parts are projected forward, usko bolte pronathus. ye pronathus condition aapko milta hai beetles mein, that's why this pronathus condition also is known as beetle type, or it is also known as coleopteroid type, correct. next jo orientation of insect head tha, that is known as hyponathus. hyponathus condition mein kya hota hai ki the appendages of the mouth parts, they are projected vertically, means the angle which is created between the long axis of the insect body and the long axis of the appendages of the mouth parts, that is 90 degree, right. And the last but not so, yes, what I was forgetting was this hyponathus type. Hypognathus bhi bol sakte ho, hyponathus bhi bol sakte ho, because G is silent here. Hyponathus type is found in case of your grasshoppers, cockroaches also you can get this hyponathus type. That's why it is also known as orthopteroid type, right. And then the last one, orientation of insect head, is known as your opisthonathus. In opisthonathus condition, what happens is the appendages of the mouth parts, they are projected backward. So an acute angle is created between the long axis of the body and the long axis of the proboscis or the mouth parts. And it is found in case of your bugs. And you know that bugs, they belong to the order Hemiptera. That's why this opisthonathus condition is also known as bug type or hemipteroid type. इसको इसका एक और नाम है opisthorhynchus. So मैं जब बोल रहा हूँ तब आप इसको pause करके या कभी एक दोबारा सुन के आप उसको note down भी कर सकते हैं. And then insect head में बहुत सारे चीजें हमने discussion किए थे, वो सारे चीज इस audio recording में बोलना संभव नहीं है. But definitely you must remember different sclerites which are available on the insect head. For example, vertex, fronds, clypeus, genus, and then your labrum also. And your different sutures, like inverted bicuspid suture is also known as epicranial suture or ectasial cleavage line. So aap isko diagram bana ke agar practice karenge to aapko aasani rahega. Question mein bhi agar broad question mein bhi aata hai to aap diagram bana ke hi karenge, thoda sa likh lenge. And then frontoclypeal suture, iska ek aur naam hai, bahut bar ye question mein aaya hua hai ki what is epistomal suture. So epistomal suture सुनके घबराने की जरूरत नहीं है. दैट इज एक्चुअली फ्रंटोक्लाइपियल सीवचर, मींस द सीवचर व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन फ्रॉन्स एंड क्लाइपियस, राइट. आपका सीनियर्स का जो जेआरएफ क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसी जगह से कि व्हाट इज द ट्रू सीवचर व्हिच इज अवेलेबल ऑन द इंसेक्ट हेड. एंड द ट्रू सीवचर आई प्रोबेबली हैड मेंशनड इन योर क्लास आल्सो, इट इज पोस्ट ऑसिपिटल सीवचर. नाउ the functions of insect head, you know that insect head ka function mainly food ingestion mein hoga, sensory perception mein hoga, coordination of bodily activities mein honge, and protection of the coordinating centers mein honge, right. Ek aur cheez ki how many segments are there on the insect head. So in your handout and also the book which is known as Insecta, written by Raghumurthy and the other co-authors, they are telling that the insect head is composed of 6 different segments. But at the same time, the insect's structure and function, bolke jo kitab hai, very prominent author known as Chapman Saab, he says that recent molecular evidences suggesting that insect head is composed of 7 segments. So there are always an ambiguity ki what is the exact number of the segments which are present on the insect head, right. And then the next topic was your structure and modification of insect antennae. So I'm very glad that some of the students have submitted their assignments for the practical examination. They have submitted the diagrams of all the 15 different types of insect antennae. So my suggestion will be you draw once again on your copy and you practice it. And you must remember the example. And the other name of that type, for example, geniculate antenna. So geniculate antenna ko hum define kaise karenge? It is elbow-like. That's it. And on the right-hand side, you can draw the diagram. So if the question is asked in the broad question section, you write down different types of insect antennae or the modification of insect antennae. So you draw the diagrams of all the different types of insect antennae you are remembering. And you explain it in 2-3 words. For example, geniculate antenna ka aapne diagram draw kiya hai, to right hand side mein aap kya likhenge? Ya left hand side mein agar likh rahe to right hand side mein diagram banayenge, to likhenge kya ki elbow like geniculate antenna bracket mein elbow like. And you give the example. You know it ki ants, bees, wasps, etc. For example, cetaceous antenna, at the same time, likewise you can write down bristle like. And you write down the examples like dragonfly, damselfly, filiform, thread-like, moniliform, beaded, termite, serrate, saw-like, longicorn beetle, unipectinate, means one-sided comb-like, example, sawfly. So always you draw the diagram. Bipectinate, on the both the side, combs will be present. Silkworm moth we get. Clavate or capitate ko humne class mein ek sath discussion kiye the, aap yaad karenge. कि क्लैबेट में क्या होता है, ग्रेजुअल इंक्रीमेंट इन द डायमीटर ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ द एंटीना टुवर्ड्स टिप. इन केस ऑफ ब्लिस्टर बिटल वी गेट दिस योर क्लैबेट टाइप एंटीना. कैपिटेट में क्या होता है, कैपिटेट में सडनली द टर्मिनल सेगमेंट ऑफ द एंटीना इज स्वेल्ड. इन बटरफ्लाईज वी गेट दिस टाइप. इन लैमेलेट इट इज डिस्क्राइब्ड एज प्लेट लाइक. इन स्कैराबिट बिटल मीन्स योर डंग बिटल्स वी गेट दिस लैमेलेट टाइप. Aristate you have dissected in your practical classes as well as in your practical examination All of you have done well. It is found in house fly. So aristate matlab hai pouch like. Stylet antenna you have got in your rubber fly. Then plumose and pylos, ye dono humne ek sath discussion kiye the. Ki plumose matlab hai feathery and it is found in male mosquito, right? Pylos matlab less hairy. Between the segments jo hota hai, antenna ke jo different segments, between the segments only hairs will come out from that part. But in case of plumose, all over the, irrespective of the segment and the body of the segments, the hairs will be found. Geniculate I have already discussed, and flabellate means fan like, and you get this type of antenna in case of your stylopids, right? So this was about structure and modification of insect antenna. So you have to remember the function of the antenna also. I hope that 4-5 functions you are remembering. I'm not discussing that one. And structure wise, you draw the diagram of geniculate, you practice the diagram of the geniculate antenna, and that can be the diagram of a generalized insect antenna, and you label the portions like your antennal sclerite, antennal suture, which is followed by your main part, the first part of the insect antenna, first segment, which is known as scape, and then pedicel, followed by flagellum. May I ask you, and all of you who are listening to this audio may try to answer it, inside which portion of the insect antenna Johnston's organ is found? I'm giving you 5 seconds time. So that is, you're right, that it is pedicel inside which Johnston's organ is found. So this Johnston's organ is composed of several ganglia, right? In fact, thousands of ganglia maybe. And in mosquitoes, that organ helps the mosquito in hearing. However, in other insects, वो सुनने के लिए अलग से appendage है, जिसको बोलते हैं tympanum. So this was about your structure and modification of insect antenna, and then I'm seeing the syllabus of this course, different types of mouth parts of insects. If you remember the second practical class, you had dissected the mouth parts of cockroach or cockroach grasshoppers. जो भी insects चबा चबा के खाने वाला होता है उसका mouth parts को बोला जाता है biting and chewing type mouth parts. So this is the primitive mouth parts which the insects were having. And till now, there are several groups of insects which are were having this type of your mouth parts. So this is the basic type of mouth parts जो आपको जिसका different appendages को draw करके diagram draw करके आपको याद रखना होगा, मतलब practice करना होगा. For example, जो first appendage upper part of the mouth parts में रहता है, mouth का रहता है, that is known as labrum. It is just like our upper lip. जैसे हम लोगों के केस में अपर लिप है, उनके केस में, इंसेक्ट के केस में भी चीविंग एंड बाइटिंग टाइप माउथ पर्स में अपर लिप को बोलते हैं लैब्रम, यू नो इट. और इफ यू फ्लिप द लैब्रम देन यू गेट द लैब्रम एपिफेरिंग्स. तो इंसेक्ट माउथ में, इंसेक्ट का माउथ कैविटी में कोई ऑर्गन ऑफ टेस्ट नहीं रहता है. हम लोगों के केस में जैसे माउथ कैविटी के अंदर टंग, TONGUE, so that acts as organ of taste. But in insect, that labrum epipharynx acts as organ of taste. Ab ye ho gaya labrum ka baat. Ab labrum ka aap chota sa diagram banayenge, uske paas mein uska structure likhenge, function likhenge. Function jab likhenge to sabse important function hoga ki holding the food from the top. हम लोगों के लिप का जैसे फंक्शन है, उसका लिप का भी, अपर लिप का भी वही फंक्शन है. इन एडिशन टू दैट, जैसे हमारा लिप क्या करते हैं, हम लोगों का टीथ को प्रोटेक्ट करके रखते हैं. उनके केस में लैब्रम के ठीक नीचे दोनों तरफ मैंडिबल्स रहता है, उस मैंडिबल्स का बेस को प्रोटेक्ट करके रखते हैं. ये हो गया लैब्रम. देन यू कम टू मैंडिबल्स. मैंडिबल्स एज आई हैव सेड कि दोनों तरफ लैब्रम के ठीक नीचे मैंडिबल्स रहते हैं, और मैंडिबल्स आर द मेन, योर मेन और प्राइमरी जॉज यू कैन से. चीविंग एंड बाइटिंग टाइप माउथ पर्ट्स में
1: मैंडिबल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज मैंडिबल्स में दो तरह का टीथ होते हैं. फ्यू टीथ दे

उसके ठीक नीचे और आ जाओ दोनों तरफ, यूल गेट मैगजिला। मैगजिला को सेकेंडरी जॉ भी कहते हैं। मैगजिला का डायग्राम को रिकॉल करो, आपका जो क्लास का क्लास में जो आप ड्रॉ किए थे उसमें देखेंगे कि सबसे प्रॉक्सिमल पोर्शन में पोर्शन इज नोन एज कार्डो विच इज अटैच्ड विद द क्रैनियम एंड कार्डो इज फॉलोड बाय लॉन्ग पोर्शन विच इज नोन एज स्टाइप्स। स्टाइप्स का बेस से मैक्सिलरी पल्प निकलता है, एंटीना जैसे दिखता है, सेगमेंटेड। स्टाइप्स का एकदम डिस्टल एंड पे चले जाओ, डिस्टल एंड पे जाने के बाद आपको दो दो लोब दिखता है, टू लोब्स यू फाइंड, वन इज इनर लोब एंड अदर इज आउटर लोब। इनर लोब इज स्पाइनी और इट इज हेयरी, दैट लोब इज नोन एज लैसिनिया। आउटर लोब इज ब्लंट, इट इज नोन एज गैलिया। सो ये हो गया आपका मैक्सिला स्ट्रक्चरली। फंक्शनली क्या होगा? डेफिनेटली जब आप मैक्सिला पेयर्ड स्ट्रक्चर है तो पेयर्ड स्ट्रक्चर होने के कारण विद द हेल्प ऑफ लैसिनिया एंड गैलिया, मेनली लैसिनिया एंड द मैक्सिलरी पल्प, दे कैन ग्रिप द फूड, फूड को ग्रिप करके एंड देयर आफ्टर इट ब्रिंग्स ऑल्सो टुगेदर, इट विल ब्रिंग द फूड इनसाइड द माउथ कैविटी। सो ग्रिपिंग द फूड एंड ब्रिंगिंग द फूड टुवर्ड फूड इनसाइड द माउथ कैविटी इज द मेन फंक्शन ऑफ दिस मैक्सिला। In addition to that, because maxillary pulps are present, pulpi are present, and pulpi always are sensory, you know. So, in sensing where exactly the food is there, it helps. It helps in detecting the presence of the food. And then, at the center of the mouth cavity, like us, हम लोगों के जैसा, हम लोगों का center of the mouth cavity में जैसे tongue है, T-O-N-G-U-E. In case of insects, in case of chewing and biting type mouthparts, they also are having a tongue-like structure. Because in your class, I have discussed that there is a difference between our tongue and insects' hypopharynx. So hypopharynx is a tongue-like structure, muscular structure. So the only function in chewing and biting type mouthparts regarding your hypopharynx is secretion of saliva. So the salivary duct opens through hypopharynx. That is its function, main function. Ab last jo appendage aapka chewing and biting type mouthparts mein hota hai, that is your labium. Jaise hum logo ke case mein lower lip hai, inke case mein labium hai. Ek complex structure jarur hai, डायग्राम बनाएंगे तो क्लियर होगा। लेबियम का जो प्रॉक्सिमल मोस्ट पोर्शन है दैट इज नोन एज सबमेंटम। लेबियम का बिल्कुल बीच में एक इलिप्टिकल और ओवल शेप्ड एक सेगमेंट है दैट इज नोन एज मेंटम, और जो डिस्टल पोर्शन है, बाकी रेस्ट ऑफ द पोर्शन है दैट इज नोन एज प्रीमेंटम। प्रीमेंटम का बिल्कुल एपेक्स में, यानी कि डिस्टल एंड पे अगर आप जाएंगे, यू विल गेट टू पेयर्स ऑफ लोब्स, और ये टू पेयर्स ऑफ लोब्स में से जो इनर पेयर है, मतलब अंदर वाला जो पेयर है, दोज आर नोन एज ग्लॉसा। ग्लॉसा इज सिंगुलर, ग्लॉसी टुगेदर दे विल बी नोन एज ग्लॉसी। आउटर पेयर ऑफ लोब्स दे विल बी नोन एज, दे आर नोन एज पैराग्लॉसा। पैराग्लॉसी इज द प्लूरल। और अगर ग्लॉसा पैराग्लॉसा, मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ ग्लॉसी एंड पैराग्लॉसी टुगेदर, दैट पोर्शन कैन बी लेवल्ड एज लिग्यूला। और ये जो प्रीमेंटम का जो अभी बात कर रहे हैं, प्रीमेंटम का बेस से आप देखे भी है कि वन पेयर ऑफ लेबियल पल्पी आर प्रेजेंट। एंड एज आई हैव सेड कि कोई भी पल्पी इंसेक्ट में प्रेजेंट हो तो उसका फंक्शन होगा सेंसरी। तो यहां पे लेबियल पल्पी का फंक्शन किस तरह का सेंसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट एक सेंसरी फंक्शन है, दैट इज डिटेक्शन ऑफ स्वीटेबिलिटी ऑफ द फूड। फूड के पास तो पहुंच गए इंसेक्ट ना,

0: लेकिन वो फूड कंज्यूम करने लायक है कि नहीं, ये डिसाइड करेंगे कौन? ये डिसाइड करेंगे लेबियल पल्पी. सो दैट इज वन फंक्शन. अनदर फंक्शन इज डेफिनेटली होल्डिंग द फ्रूट फ्रॉम द बॉटम. जैसे हम लोग के केस में लोअर लिप नीचे से फूड को होल्ड करते हैं, अपर लिप ऊपर से फूड को होल्ड करते हैं. सिमिलरली लैब्रम मतलब इंसेक्ट के केस में अपर लिप ऊपर से फूड को होल्ड करते हैं, लेबियम इंसेक्ट के केस में लोअर लिप नीचे से फूड को होल्ड करते. सो ये हो गया आपका प्रिमिटिव माउथ पार्ट्स में से जिसको बोलते हैं चीविंग एंड बाइटिंग टाइप. अब डिफरेंट मॉडिफाइड माउथ पार्ट्स भी हैं जो आपने क्लास में फॉलो किए हैं. मैंने एग्जाम्पल दिया था, मैंने आपको दिखाया भी था कि बटरफ्लाई के केस में. अब बटरफ्लाई को तो मैंडिबल्स का जरूरत नहीं है, बटरफ्लाई तो चबा चबा के नहीं खाएंगे. तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन, एक ग्रेट मॉडिफिकेशन होने का जरूरत है, है ना? तो वो मॉडिफिकेशन किस चीज का होगा? क्योंकि यू नो कि बटरफ्लाईज आर हैविंग ए कॉइल्ड लॉन्ग प्रोबोसिस. जब अनकॉइल करते तब लंबा दिखता है, कॉइल्ड रहता है तो स्प्रिंग लाइक रहता है. सो वेयर फ्रॉम दिस प्रोबोसिस इज अराइजिंग, विच पार्ट ऑफ द प्रिमिटिव माउथ पार्ट्स हैज कन्वर्टेड इनटू प्रोबोसिस? That is the galea of maxillae. दो जो maxillae, मतलब दो maxillae का दो galea होगा outer lobe. ये elongated हो जाएंगे and they are zippered together to form this coiled proboscis which is uncoiled when the butterfly is in action, means when it is taking the nectar from the flower. And this modified mouth parts is known as siphoning type mouthparts. All right. Another modification. Housefly में आते. You know कि housefly के केस में एक spongy structure रहता है. और वो spongy structure bilobed होते हैं. मतलब दो lobe वाला spongy structure होगा. And that spongy structure is known as labella. Labellum singular, labella plural. और वो labella मतलब टिप ऑफ द proboscis में माइन्यूट पोर्स रहेंगे, तभी तो वो स्पॉन्ज डेवलप करेंगे ना. वो माइन्यूट पोर्स को कहते हैं स्यूडो ट्रैकिया. सो यूजिंग दैट स्पॉन्जी स्ट्रक्चर कैपिलरी एक्शन के थ्रू द सेमी लिक्विड और सेमी सॉलिड फूड से वो लिक्विड को अपटेक कर लेते हैं. ये जो मॉडिफाइड माउथ पार्ट्स हैं जो हाउस फ्लाई में पाया जाता है, इसको बोलते हैं स्पॉन्जिंग टाइप माउथ पार्ट्स. इज दैट ऑल राइट? अपने डायग्राम बनाए थे, उस डायग्राम को फिर से प्रैक्टिस करेंगे और याद रखेंगे कि स्पॉन्जिंग टाइप माउथ पार्ट्स कहां पे पाया जाता है, हाउस फ्लाई में. देन लेट्स कम टू अनदर इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन, पियर्सिंग एंड सॉकिंग टाइप माउथ पार्ट्स. आप लोगों को पता है कि बग्स, कोई भी बग, वो भी तो चबे चबा चबा के नहीं खाते. ना ही उसके पास कोई स्पॉन्जी स्ट्रक्चर है, ना ही उसके पास बटरफ्लाई जैसा कॉइल्ड प्रोबोसिस है. प्रोबोसिस जरूर है बट यहाँ पे अलग तरह का. क्योंकि मान लीजिए कि कोई एक बाग प्लांट का टिश्यू से वो सैप को सक करना चाहते, सो इट हैज टू पियर्स द सरफेस ऑफ द प्लांट, चाहे लीफ हो या चाहे योर स्टेम हो. तो पियर्स करने के लिए उसको पियर्सिंग योर ऑर्गन चाहिए, अपेंडेज चाहिए. तो यहाँ पे ये जो बग्स होते हैं, वो बग्स में देयर विल बी फोर स्टाइलेट्स, चार स्टाइलेट होंगे. और ये चार स्टाइलेट पियर्स करने का भी क्षमता रखता है, साकिंग करने का भी क्षमता रखता है. इसलिए ये जो माउथ पार्ट्स बग्स में पाया जाता है उसको बोलते हैं पियर्सिंग एंड साकिंग टाइप माउथ पार्ट्स. तो ये चार स्टाइलेट का ऑरिजिन क्या है? ऑरिजिन मतलब कौन सा प्रिमिटिव अपेंडेज ये स्टाइलेट फॉर्म करेगा? आपको पता है कि मैंडिबल्स प्रिमिटिव में कितना रहता है? दो. प्रिमिटिव में मैक्सिला कितना रहता है? दो. अब यहां पे बाघ में आके वो मैंडिबल फॉर्म में आ रहा है कि स्टाइलेट फॉर्म में कन्वर्टेड हो जाता है. तो दो मैंडिबल दो स्टाइलेट फॉर्म करते हैं, दो मैक्सिला अनदर टू स्टाइलेट में कन्वर्ट होते हैं. सो हाउ मेनी स्टाइलेट्स यू हैव गॉट? two mandibular stylet, maxillary stylets. That means you have got four stylets. So the bug is having four stylets with them. अब ये stylet के सहारे से वो pierce करेंगे और suck करेंगे. अब ये stylet बहुत delicate भी होंगे ना, बहुत thread like structure होगा, बहुत delicate होंगे. और डेलीकेट होने के कारण इसका प्रोटेक्शन का भी जरूरत पड़ता है. मतलब व्हेन एट रेस्ट, व्हेन द बग इज नॉट फीडिंग, द स्टाइलेट्स रिक्वायर ए प्रोटेक्टिव कवर. हु विल गिव दिस स्टाइलेट्स ए प्रोटेक्टिव कवर? मॉडिफाइड लेबियम. लेबियम एक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है यहां पे, और उस ग्रुप के अंदर वो स्टाइलेट्स रेस्ट करते हैं व्हेन द बग इज नॉट फीडिंग. And this whole modified mouthparts is known as piercing and sucking type mouthparts. अब यहाँ पे एक और चीज हमको बताना जरूरी है, क्योंकि mosquito जो एक बाग नहीं है, जो एक dipteran insect है, हम लोगों का blood suck करते हैं ना, उसके केस में भी ये piercing and sucking type mouthparts रहता है. हमने ये क्लास में बताया था. So सारे bugs और dipteran में mosquitoes they are having piercing and sucking type mouthparts. थोड़ा सा अंतर बाग के साथ मॉस्किटो का है. वो किस तरह का है? बाग में हाउ मेनी स्टाइलेट्स दे हैव? दे आर हैविंग फोर स्टाइलेट्स. बट इनके सब मॉस्किटो, जो मॉस्किटो हम लोगों को बाइट करते हैं, उस मॉस्किटो में छह स्टाइलेट रहेगा. अब यहां पे मॉस्किटो में आके क्या होता है कि उसमें भी एक स्टाइलेट रिलेटेड एक सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है. दैट मीन्स फीमेल्स, मॉस्किटो का जो फीमेल्स होंगे दे आर हैविंग six stylets, but males they are having four stylets just like bugs. अब यहाँ पे एक interesting बात यह है कि male mosquitoes आपको bite नहीं करते. मतलब आपको bite करने वाला कोई भी mosquito है तो वो female ही है, only female. And they have how many stylets? They have six stylet. और ये छह stylet आएगा कहाँ से? वो चार तो fix है, दो mandibular, दो maxillary. दो जो एक्स्ट्रा स्टाइलेट है वो कहां से आएंगे? वन विल बी फ्रॉम लैब्रम एपिफेरिंग्स. यहां पे लैब्रम एपिफेरिंग्स इलोंगेट होके एक स्टाइलेट फॉर्म करता है. अनदर इज योर हाइपोफेरिंजियल स्टाइलेट. मींस हाइपोफेरिंग्स यहां पे एक और स्टाइलेट फॉर्म करके फीमेल मॉस्किटो को छह स्टाइलेट प्रोवाइड करता है. समझ में आ गई? अब अनदर, there are several other modifications also, but इसमें से एक important modification आपको याद रखना चाहिए, that is your thrips का जो mouthparts है. thrips का mouthparts को बोलते हैं, modified mouthparts को बोलते हैं rasping and sucking. ये क्या करता है? इस mouthparts में there will be three stylets, right mandible will be absent. And if you go through the previous year's questions, I mean your 5, 6 years, 10 years previous year's questions, then for several times the external examiner has asked ki, in which insect asymmetrical mouthparts is found? The answer is thrips. In which insects only three stylets are found? The answer is again thrips. Which insect is having mouth cone? The answer is again thrips. So वो tiny एक insect thrips, जिससे related ये बहुत सारे questions बनता है. Which insect is having rasping and sucking type mouthparts? The answer is thrips. So I hope that you will be revising things carefully. And the next topic I covered was wing venation modifications and wing coupling apparatus. Again, I'll be suggesting, please draw the diagram of generalized insect wing, label the different portions, different angles, different margins. आपको पता ही है कि humeral angle रहता है कहां पे रहता है. Anterior margin किसको कहते हैं? Anterior margin का एक और नाम है क्या है? Costal margin, apical margin, then anal margin, angles also. And thereafter you draw a typical insect wing having your longitudinal veins and cross veins. कॉस्टा सब कॉस्टा रेडियस मीडिया क्यूबिटस एनल वेन्स एंड द क्रॉस वेन्स लाइक योर ह्यूबरल क्रॉस वेन रेडियल क्रॉस वेन सेक्टोरियल क्रॉस वेन रेडियो मीडियल क्रॉस वेन एम क्रॉस वेन मीन्स मीडियल क्रॉस वेन एम सी यू मीडियो क्यूबिटल क्रॉस वेन ये आप प्रैक्टिस करेंगे. और ये विंग वेनेशन कौन दिए थे, कौन साइंटिस्ट थे विंग वेनेशन ओपाइन किए थे, नेम इज कॉमस्टॉक एंड नीडहम, यू मस्ट रिमेंबर द नेम. एंड देन विंग कपलिंग मैकेनिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जुगेट विंग कपलिंग मैकेनिज्म, प्लीज रिकॉल माय क्लास दैट क्लास टू क्लासेस आई टुक रिगार्डिंग योर टू एक्सप्लेन दिस विंग कपलिंग मैकेनिज्म जुगेट विंग कपलिंग मैकेनिज्म फ्रेनेट विंग कपलिंग मैकेनिज्म जूगो फ्रेनेट विंग कपलिंग मैकेनिज्म. मेल फ्रेनेट और फीमेल फ्रेनेट में आप लोगों को मॉडल के सहारे से भी बताने की कोशिश किए थे, चार्ट पेपर काट के मेल फ्रेनेट और फीमेल फ्रेनेट में अंतर क्या होता है. एंड देन हैमुलेट वेरी इंपॉर्टेंट इन हनीबीज यू गेट इन वस्प्स यू गेट हमूली वो हुक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो हाइंड विंग का कॉस्टल मार्जिन में रहता है, मोटा मोटी 20 हुक लाइक स्ट्रक्चर रहता है जो फोर विंग का एनल मार्जिन को पकड़ के रखता है जब इंसेक्ट फ्लाई करते हैं, उसको बोलते हैं हैमुलेट विंग कपलिंग मैकेनिज्म. अनदर टॉपिक जो मैं आपको प्रैक्टिकल क्लास में बहुत बार आपको बताया, दैट इज योर मॉडिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट विंग. मॉडिफिकेशन मतलब यहाँ पे डिफरेंट इंसेक्ट में कितना अलग अलग टाइप ऑफ इंसेक्ट विंग होते हैं, हॉल्टेयर किस में होते हैं, स्यूडो हॉल्टेयर किस में होते हैं, एलाइट्रा किस में होता है, हेम एलाइट्रा हेमिलिट्रा जिसको आप बोलते हैं ना, हेम एलिट्रा किस में होते हैं, फ्रिंज्ड विंग्स किस में होते हैं, आपका मेम्ब्रेनस विंग्स किस में होते हैं, ये 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट विंग्स प्लीज गो थ्रू अलोंग विद द एग्जांपल्स. एंड देन डॉक्टर राव प्रोबेबली हैड कवर्ड मेटामॉर्फोसिस एंड डायपोज इन इंसेक्ट्स, टाइप्स ऑफ लार्वी एंड प्यूपी, टाइप्स ऑफ लार्वी एंड प्यूपी, दिस टॉपिक वॉज देयर इन योर मिड टर्म एग्जामिनेशन, ऑल ऑफ यू हैव ट्राइड दैट वन एंड यू हैव डन वेल. कितना अलग अलग टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस होते हैं, लार्वी का डिफरेंट टाइप्स यू ऑलरेडी हैड रीड एंड आई हैव चेक्ड योर मिड टर्म एग्जाम मिड टर्म कॉपीज की एपोडस लार्वा पॉलीपोड लार्वा ऑलिगोपोड लार्वा, फिर अगेन देर आर क्लासिफिकेशन पीपल के केस में भी सेम ऑप्टेक्ट एक्सेट्रा. डॉक्टर आदर्स प्रोबली हैज कवर्ड सर्कुलेटरी सिस्टम द सिस्टम्स मीन्स सर्कुलेटरी सिस्टम एक्सक्रेटरी सिस्टम रेस्पिरेटरी नर्वस रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो रिगार्डिंग योर सिस्टम्स आई सजेस्ट यू टू अगेन प्रैक्टिस डायग्राम ऑफ सर्कुलेटरी खास करके एक्सक्रेटरी डाइजेस्टिव सिस्टम डेफिनेटली. एंड डिफरेंट मॉडिफिकेशंस का जो एग्जांपल्स है वो आप जरूर पढ़ के जाएंगे. एंड देन रिगार्डिंग इंसेक्ट इकोलॉजी एनवायरमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स इफेक्ट ऑफ biotic factors and abiotic factors. So you know that insect ke upar sabse jyada agar impact hai to there are two factors. One is biotic factors. Biotic means definitely organism ke through koi insect ka population mein insect ka reproduction mein koi agar affect karenge to usko biotic factor bolenge. For example your enemies, natural enemies of insects. So that is a biotic factor. In abiotic factor, you know, rainfall, relative humidity, sunshine hours, temperature, these all are under your abiotic factors, right? Then categories of pests, you know, key pests, major pests, minor pests, sporadic pests, regular pest, occasional pest. So examples you have to remember.
1: then regarding systematics, taxonomy, Dr. Rao has covered this topic. So you know that the class Insecta is classified into two subclasses. One is Aterigota and other one is Terigota. Ab yahan pe tera means wing, A means absent, Aterigota means the insect orders, the classes, subclass of the insect, Insecta, class Insecta, which is having the orders where no insect wings are present. Means primarily those orders will be wingless. Or under this Aterigota, how many orders you have gone through? Four. So all these four orders, they lack the wings, right? Primarily they are wingless. And in case of Terigota, means rest of the jo 25 insect orders, they are having wings. Means secondarily they may not have the insect wings, but primarily they have the wings. Aterigota or Terigota mein ye main difference hai ki kaun sa primarily wingless hai aur kaun sa winged hai aur otherwise secondarily wingless hai. Another difference is your metamorphosis ke regarding. In case of Aterigota, either the metamorphosis is completely absent or it is very slight. In case of Terigota, metamorphosis is there. Means either they will be having three stages in their life or otherwise they will be having four stages in their life. But in case of Aterigota, the metamorphosis is either completely absent or it is very slight. And then articulation of the mandible from point of view, say, be different. In case of Aterigota orders, the head is monocondylic. That is, articulation is single. Mandible ka jo articulation hai, that is single articulation. But in case of Terigota, Terigota ka jitna bhi 25 insect orders hai, usme it is dicondylic. Or bhi differences hai, but for the second semester, this is enough. So what are the different orders which come under this Aterigota? Thysanura, Columbula, Proteura, Diplura. So I'll suggest you not to go into detail of these classes, of these orders. I'm talking of this Aterigota orders. But you must remember the examples of those. So Aterigota mein, there are four insect orders. Thysanura mein silverfish aata hai, Columbula mein springtail aata hai, Proteura mein protuberans aata hai, Diplura mein japygetes aate hai. Ye examples aapko yaad rakhna hoga. Regarding rest of the orders, means the subclass Terigota, again do division kiya gaya hai yahan pe. Matlab 25 order aa raha hai na, 25 ko 16 aur 9 mein bata gaya hai. 16 होगा एक्सोटेरिगोटा, 9 होगा एंडोटेरिगोटा. अब ये दो जो डिवीजन है, समटाइम्स योर एक्सटर्नल एग्जामिनर में आस्क यू कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द एक्सोटेरिगोट एंड एंडोटेरिगोट. सो द मेन डिफरेंस इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ विंग डेवलपमेंट. इफ द विंग डेवलपमेंट इज एक्सटर्नल, मींस इट इज विजिबल दैट द विंग इज गेटिंग डेवलप्ड, देन द इंसेक्ट ऑर्डर्स विल बी अंडर Exoterigota. That is why the name Exoterigota has been given. And in the under the orders of Endoterigota, all are having your wing development, which takes place internally. Means within the case, the wing is getting developed, which cannot be visible from the outside. From metamorphosis point of view, very important difference is there between Exoterigota and Endoterigota. In Exoterigota, all will be having incomplete metamorphosis. Incomplete means, मैंने पहले भी बताया कि there will be three life stages. Egg, nymph, adult. There is no existence of
0: pupal stage with them. Whereas in case of endoterygota, that pupal stage is there. So in endoterygota, there will be four life stages. Egg. अब यहां पे nymph ना बोल के हम लोग बोलेंगे larva, pupa, adult. How many stages? Egg, larva, pupa, adult. Four stages. Therefore, you can write down that in exoterygota, pupal stage is absent. In case of endoterygota, pupal stage is present. Immature stages of exoterygota, either they will be called as your nade or nymph. Aquatic stage, aquatic कुछ order से जिसमें nade बोलते हैं. For example, dragonfly का जो जो जो जो जो immature stage है, उसको बोलते हैं nade. Hemiptera मतलब bugs का जो immature stage है, उसको बोलते हैं nymph. But larva, that term is used to depict the immature stage of your stage of your endoterygote orders. So exoterygota में कौन कौन सा इंसेक्ट ऑर्डर आता है? Ephemeroptera odonata, Plecoptera gyroblatoria, Orthoptera phasmida, Dermaptera, Imbioptera, Dictyoptera, Isoptera, Soraptera, Zoocoptera, Malophaga, Siphonoptera, Hemiptera and Thysanoptera. So सारे इंसेक्ट ऑर्डर्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है. सर ने भी आपको बताया होगा कि सारे इंसेक्ट ऑर्डर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं, बट सारे इंसेक्ट ऑर्डर्स का आपको एग्जाम्पल जरूर याद रखना है. फॉर एग्जाम्पल Ephemeroptera एग्जाम्पल है मे फ्लाई, जो मई महीना में आपका जो प्रिंसिपल ऑफिस का अपोजिट में एक टावर है जिसमें बहुत हेलोजन लाइट लगा हुआ रहता है, उसमें थाउजेंड्स ऑफ मे फ्लाई जो व्हाइट कलर के होते हैं उसमें अट्रैक्ट होते हैं, आप लोगों ने देखे हो. ओडोनाटा यू नो, ड्रैगन फ्लाई, डैमसल फ्लाई, तो सारे ऑर्डर्स के एग्जाम्पल्स आपको याद रखना होगा, बट कुछ इंसेक्ट ऑर्डर का डिटेल में भी जाना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल जिसको हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट ऑर्डर्स, ओडोनाटा एक एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट ऑर्डर है. कैसे? क्योंकि सारे ओडोनेट्स, सारे ड्रैगन फ्लाईज, डैमसल फ्लाईज एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दे ऑल आर प्रेडेटर्स, दे फीड ऑन द अदर इंसेक्ट्स विच आर हार्मफुल, देयरफॉर इट इज एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट. सो यू मस्ट रिमेंबर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्डर ओडोनाटा विच यू ऑलरेडी नो. फॉर एग्जाम्पल यू नो कि ड्रैगन फ्लाईज एंड डैमसल फ्लाईज का विंग्स कैसा होता है, मेम्ब्रेनस विंग्स होता है. विंग्स में ओपेक स्पॉट को क्या बोलते हैं? टेरोस्टिग्मा. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स. बोथ द विंग्स एंड मेम्ब्रेनस किसमें होते हैं? ड्रैगन फ्लाईज में होते. बास्केट लाइक लेग्स ड्रैगन फ्लाईज एंड डैमसल फ्लाईज में होते टू कैप्चर द प्रे. मैक्सिमम नंबर ऑफ ओमाटिडियम किसी का अगर कंपाउंडाइज में होंगे तो दैट इज योर ड्रैगन फ्लाईज. अब देखो ये कंपाउंडाइज ड्रैगन फ्लाईज का मैक्सिमम पोर्शन, मैक्सिमम एरिया ऑफ द हेड को कवर करता है. सो वो पीछे भी देख सकते हैं, साइड में भी देख सकते हैं, सामने भी देख सकते, मोटा मोटी 360 डिग्री उसका विजन है. और भी बहुत सारे एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंट इंसेक्ट ऑर्डर्स है, मैं कुछ मेंशन करता हूँ. फॉर एग्जाम्पल Orthoptera, देन योर Dictyoptera जिसमें कॉकरोच एंड प्रिंग मैंटिस आते हैं, Isoptera टर्माइट्स आते हैं, इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंट, व्हीट का पेस्ट होते हैं. देन Hemiptera डेफिनेटली बहुत सारे प्रेडेटरी बग्स भी होते हैं, बहुत सारे फाइटोफैगस हार्मफुल बग्स भी होते हैं. Thysanoptera जिसके एग्जाम्पल थ्रिप्स होते हैं ना, वो भी एग्रीकल्चरली बहुत इंपॉर्टेंट है. सो थ्रिप्स का भी जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपको मालूम ही है, मैंने बहुत बार का मतलब इसी जो जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसी में हमने बोला कि जो है एसिमेट्रिक माउथ पर्ट्स किस में रहते हैं, माउथ कोन किस में रहते हैं, फ्रिंज्ड विंग्स किस में रहते हैं, थ्री स्टाइलेट्स किस में रहते हैं, वो सारे आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्डर Thysanoptera, इजंट इट? एंड देन अंडर द योर डिविजन योर एंडोटेरिगोटा यू नो दैट देयर आर 9 इंसेक्ट ऑर्डर्स. उसमें से एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट का अगर बात करें तो Neuroptera जिसमें जिसका एग्जाम्पल यू नो कि एफिड लायन, एंट लायंस, सो दे आर प्रेडेटर्स. As they are predators, they are agriculturally important. Then Lepidoptera, very important. So Lepidoptera ka characteristics, you know already, ki siphoning type mouthparts kis mein hote hai, scaly wings kis mein hote hai. So these are the characteristics of the order Lepidoptera. And examples you know ki butterflies and moths. What are the differences between the butterflies and moths?
1: that has been discussed in your class also.
0: Then diptera, flies जिसमें आता है. Flies मतलब सिर्फ house fly नहीं, flies मतलब यहाँ पे robber fly होता है, तुम्हारा आपका जो है horse fly होते हैं, which is predatory. Some pests also are coming under this order diptera. Therefore it is agriculturally important. और diptera में hind wing modification is very important. और वो important characteristics भी है कि halter present रहता है. सारे diptera में ही halter present रहता है. So that is very important. Siphoning type mouthparts. Your either your stylet or aristate antenna present रहता है. So these are the characteristics of the order diptera. So you are already knowing the things. Only thing is that you have to recollect the things and you have to write it down. And then hymenoptera. Most of the beneficial insects, they come under this hymenoptera. अब यहाँ पे beneficial insect मतलब आपके दिमाग में चलता है कि honeybees. But honeybees तो एक छोटा पार्ट है. बहुत सारे parasitoids, अलग अलग pollinators जो honey produce नहीं करते हैं, वो भी इसी में आते हैं hymenoptera में. Therefore this order hymenoptera is considered as कि जो है most of the beneficial insects. एक्सटर्नल एग्जामिनर अगर ये क्वेश्चन करेंगे कि कौन से इंसेक्ट ऑर्डर ऐसा है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स पाया जाता है, दैट इज योर हाइमेनोप्टेरा, बीज, वर्ब्स, एंट्स, डिफरेंट पैरासिटोइड्स. कोलियोप्टेरा इज द लार्जेस्ट इंसेक्ट ऑर्डर. सो कोलियोप्टेरा के भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मालूम है कि दे आर हैविंग एलाइट्रा व्हिच इज मॉडिफाइड फोर विंग. That is most important characteristic, isn't it? Coleoptera are having your pronathous orientation of head. So these are the important insect orders which you have to go through in detail. I'm repeating once again which are the important insect orders regarding which you have to remember the characteristics of those. Odonata, Orthoptera, Dictyoptera, Isoptera, Hemiptera, Thysanoptera, Neuroptera, Lepidoptera, Diptera, Hymenoptera and Coleoptera.
1: Or Dr. Rao probably has covered some families also, few families you may go through. And I hope that the whole syllabus I have covered within this 1 hour time. I think you will be preparing well. You are preparing well and you will be appearing the examination with your full potential, utilizing your full potential. So I think some instructions I've also given that wherever you feel that diagram should be drawn, it has not been asked to draw. But it will be creating some value to your answer, quality of the answer. You please do not hesitate to draw that. I'm talking of your short answer type question and broad answer type question. No, I'm not talking of your about your the first part of your question, that is objective type. Objective type mein aapko wo scope nahi hai. But jaise aapko broad question ka mila, wherever you feel that you are capable of draw the diagram of that particular question related to that particular question, you don't hesitate to draw that. And thereafter, you explain it very briefly. So all the best to all of you. Any questions, any queries, any doubts, you don't hesitate to text me at any point of time. I'll try my best to answer those questions. Thank you very much. All the best.
2: Thank you so much, sir.
1: Thank you, miss.
2: दोस्तों, उम्मीद है कि आपके लिए ये रेडियो रिवीजन काफी यूजफुल साबित होगा. तो एग्जाम बिल्कुल अच्छे से दीजिए. बेस्ट ऑफ लक.

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्वस्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
4: याद रखो,
0: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि, किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है उन्नत कृषि में। और आज मैं हूं आप सभी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ, और वो विषय है बारिश के मौसम में पशुओं में होने वाली बीमारियां और उससे बचाव। तो मुझे पता है कि हमारे जो पशुपालक भाई हैं और किसान भाई हैं, उन्हें इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अगर रोगों का पहचान हो, उपचार हो, तो हमारे पशु स्वस्थ रहेंगे और आर्थिक स्तर पर भी आपको अच्छा मुनाफा होगा। तो यहाँ पर इस विषय पर चर्चा करने के लिए मैं बता दूं कि हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। और डॉक्टर साहब, अक्सर देखा गया है कि जो पशु हैं उनमें बहुत सारे बारिश के मौसम में, खासकर बारिश के मौसम में हम बात कर रहे हैं, तो कई बीमारियां आती हैं, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो पशु हो, लेकिन पशु या फिर यूँ कहें कि स्वच्छता का खास ख्याल नहीं रख सकते हैं। इस समय ज़रूरत होता है पशुपालक भाइयों का कि वो स्वच्छता का खास ख्याल रखें और उनमें, यानी कि उनके जो पशु हैं उनमें रोगों का पहचान हो, उन्हें वो रोग पहचान सके और उनके उपचार को जान सके। तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बारिश के मौसम में पशुओं में कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं।
7: जैसा कि आप, हम सभी जानते हैं कि बारिश के मौसम में बारिश होने से हमारे किसान भाइयों के चेहरे पर खुशी रहती है, चारों ओर हरियाली नजर आती है, लेकिन बारिश का मौसम पशुओं के लिए खासकर उतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इस ऋतु में एक तो जहां बारिश से चारों ओर जल जमाव रहता है,
6: संक्रमण होने
7: की संभावना रहती है, और अभी जो बात देखा जा रहा है कि बारिश के मौसम में तापक्रम में भी काफ़ी अधिकता है, तो तापमान में अधिकता, नमी और तापक्रम, ये दोनों, नमी में भी अधिकता होती है और तापक्रम भी काफ़ी होता है, जिसके चलते पशुओं में स्ट्रेस हो जाता है। और इस मौसम में वैसे भी पहले से, पुराने समय से भी ये देखा जा रहा है कि कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जो बैक्टीरियल, जो जीवाणुओं के द्वारा फैलती हैं, उन बीमारियों का संक्रमण इस मौसम में प्रायः होता है, जिसमें प्रमुख हैं, हम लोग उसको HS हिमोरेजिक सेप्टिसिमिया, जिसे हिंदी में गलघोंटू या अखड़िया रोग के नाम से जानते हैं। दूसरी बीमारी है लंगड़ी, इसके ब्लैक क्वार्टर, जिसका नाम से ही स्पष्ट है कि इस रोग में पशुओं में लंगड़ापन नज़र आता है, और ख़ास करके कम उम्र के पशुओं में, 2 साल 3 साल से कम उम्र के पशुओं में लंगड़ापन आता है, और अगर प्रारंभिक अवस्था में इसकी चिकित्सा नहीं की गई तो प्रायः पशुओं के बछड़ों में, पशुओं में मृत्यु हो जाती है।
6: तो सर, आपने जिन रोगों के नाम बताए, लंगड़ी और गलघोटू, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रायः ये बीमारियां किन पशुओं में देखा गया है?
7: ये मुख्य रूप से गाय वंश के पशुओं में और भैंस वंश के पशुओं में ज्यादा होती हैं, और खास करके नए पशुओं में, अर्थात जिनकी जो पशु तंदुरुस्त रहते हैं, और बछड़ों में, 3 साल से कम उम्र तक के पशुओं में इन दोनों रोग की संभावना काफी अधिक रहती है, और खास करके वैसे पशु जो ज्यादा तंदुरुस्त रहते हैं उन बछड़ों में और गाय भैंसों में ये इस रोग के होने की संभावना उतनी ही प्रबल रहती है।
6: यानी कि कम उम्र वाले पशुओं में ये ज्यादातर देखा जाता है,
7: ये ज्यादातर पाया ही जाता
6: है। और सर, कुछ ऐसे सिम्टम्स जो कि हमारे पशुपालक भाई पहचान सके कि उनके जानवर को, उनके पशु को ये बीमारी लग चुकी है?
7: हाँ, गलघोंटू रोग नाम से ही स्पष्ट है कि इस रोग में, इसका नाम है अखड़िया, अर्थात अषाढ़ के मौसम में मुख्यतः यह होता था, और गलघोंटू इसका नाम भी है, अर्थात इस रोग में पशुओं में तीव्र ज्वर होता है, 105-6 डिग्री फारेनहाइट तक तापक्रम शरीर का बढ़ जाता है, पशुओं के मुंह से लार चलता है, और सांस लेने में तकलीफ होती है, मुंह से घरघराहट भरी आवाज सुनाई देती है सांस लेने के क्रम में,
6: और गला
7: में सूजन भी आ जाता है, गलघोंटू नाम है, और जिसके चलते कि पशुओं को सांस लेने में तकलीफ होती है, और प्रारंभिक अवस्था से अगर चिकित्सा नहीं की गई तो सांस लेने में बीमारी के चलते पशुओं में प्रायः मृत्यु हो जाती है।
6: और सर, एक बात और, अभी आपने लंगड़ी के बारे में कहा, तो ये भी गौ वंश में या फिर
7: भैंस वंश में ज्यादा होती है,
6: तो इसके लक्षण क्या है?
7: ये नाम से ही स्पष्ट है, लंगड़ी, अर्थात इसमें पशुओं के पैर में या मांसल पोर्शन, जो भी मांस आगे का पैर का भाग या पीछे का पैर का भाग या जांघ वाला पोर्शन, इसमें सूजन होता है, और यह सूजन एक खास प्रकार का सूजन होता है जिसको दबाने पर कसकसाहट भरी आवाज लगती है कि इसमें बालू भरा हुआ है या कोई चीज फ्लूइड भरा हुआ है, उस तरह का आवाज, कसकसाहट भरा आवाज दबाने पर रहता है। पशुओं में बहुत तेज दर्द होता है पैरों में या जहां पर सूजन हुआ वहां पर, और चलने में तकलीफ होती है, प्रारंभिक अवस्था में काफी तेज ज्वर होता है, लेकिन दूसरे दिन टेम्परेचर जो है शरीर का तापक्रम वो गिर जाता है, और अगर वहां पर जहां पर सूजन वाले पोर्शन पर चीरा लगाया जाए तो काला और मरा हुआ खून टाइप का उससे निकलता है, जो कि वहाँ पर गैंग्रीन हो जाता है। एक्चुअली ये जो बीमारी होती है ये बैक्टीरियल टॉक्सिन, अपने टॉक्सिन के चलते उस पूरे पोर्शन जितना दूर सूजन होता है वहाँ पर वो उसको गैंग्रीन कर देता है, अर्थात गला देता है, और जिसके चलते कि इस बीमारी में अगर पशु चिकित्सा के बाद बचता भी है तो जितना दूर सूजन हुआ उतना दूर घाव हो जाता है, उसमें मैगोट हो जाता है, और काफ़ी कष्टदायक होता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि इस प्रकार के लक्षण जैसे दिखाई दें प्रारंभिक अवस्था से ही अगर इसकी चिकित्सा की जाती है तो इसमें बचने की संभावना रहती है, और साथ ही साथ इसके साथ इनसे बचाव के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो टीकाकरण किया जाता है, उस पर विशेष बल देने की आवश्यकता है।
6: टीकाकरण पर विशेष बल देना है, और प्रारंभिक अवस्था में ही इसका उपचार, यानी कि आप जो डॉक्टर्स होते हैं, पशु चिकित्सक होते हैं, उनके पास अपने पशुओं को ले जाएं। और डॉक्टर साहब, और मुख्य रोग के बारे में भी हमने सुना है जो पशुओं में देखा जाता है, तो उसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे।
7: देखिए, बरसात के मौसम में अन्य भी कई प्रकार की बीमारियाँ होती हैं, खुर और मुँह में होने वाले रोग भी होते हैं।
6: खुर और मुँह,
7: हाँ, तो खुर और मुँह में जो रोग होते हैं वो मुख्यतः बरसात के मौसम में तो नहीं, लेकिन अभी जो वातावरण में परिवर्तन हो रहा है, टेम्परेचर में जिस तरह से वेरिएशंस हो रहे हैं और तापमान अधिक और कम हो रहा है, तो इस मौसम में भी खुर और मुंह पका रोग हो रहा है। लेकिन इसके लिए खुर पका और मुंह पका रोग नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें खुर में और मुंह में,
6: यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी,
7: खुर में और मुंह में दोनों में घाव होता है।
6: अच्छा।
7: और ये एक विषाणु FMD वायरस के द्वारा फैलने वाला ये बीमारी है, और इसके साथ सबसे बड़ी जो विडंबना है कि प्रत्येक वर्ष टीकाकरण का कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा भी, व्यक्तिगत रूप से भी, लेकिन फिर भी इस रोग के जो वायरस हैं उनकी इतनी प्रकार की, उनकी इतनी प्रजातियां हैं कि उस वायरस का हम लोग जो टीकाकरण करवा रहे हैं उसके बावजूद भी खुरपका और मुंह पका रोग पर नियंत्रण करने में काफी कठिनाई हो रही है।
6: नियंत्रण
7: किया जा रहा है लेकिन फिर भी नया स्ट्रेन वायरस का पैदा हो जा रहा है और उसके चलते जो बीमारी है वो टीकाकृत स्ट्रेन के अलावे जो स्ट्रेन हो जाता है उसके चलते ये बीमारी पर नियंत्रण काफी कठिनाई हो रही है। और इस रोग का आर्थिक पहलू है, इस रोग में खुरपका मुंहपका रोग में पशुओं में मृत्यु तो बहुत नहीं होती है लेकिन आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि पशु जो मुख्य रूप से हम लोग पशुपालन करते हैं दूध के लिए या बैल पालते हैं काम के लिए, तो हम लोग जो
6: उनको नुकसान होता है,
7: दूध में काफी कमी आ जाती है और चलने में पैर के पशुओं के पैर में जो घाव होता है उसके चलते चल फिर नहीं सकते हैं, मुंह में जो छाला हो जाता है जिसके चलते खा नहीं सकते हैं, दुर्बल हो जाते हैं, तो जो सीधा आर्थिक नुकसान होता है दूध उत्पादन कम जाता है, कार्य करने की क्षमता नहीं रहती है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इस रोग के चलते जो आफ्टर इफेक्ट होता है, जो पशु गाभिन पशु है उसमें एबॉर्शन का भी चांसेस रहता है, गर्भपात भी हो सकता है और परमानेंट स्टरिलिटी भी होता है कि फिर उसके बाद जो हार्मोनल चेंज होता है शरीर के अंदर, एंडोक्राइन डिस्टर्बेंसेज होते हैं उसके चलते पशुओं के बाल काफ़ी बढ़ जाते हैं, उसमें हीट शरीर में जो गर्मी से लड़ने की क्षमता होती है वो समाप्त हो जाती है, थोड़ा भी गर्मी होने के बाद पशु हाँफने लगते हैं और फिर जो हमने बताया कि उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम जाती है और वो इनफर्टाइल भी हो जाते हैं, अर्थात आगे फिर वो गर्भधारण नहीं करने की भी क्षमता, उनकी करने की क्षमता भी समाप्त हो जाती है। इस प्रकार इस रोग में होने से जो पशुपालक का कमर टूटता है उसकी आर्थिक नुकसान काफी ज्यादा होती है।
6: तो कहीं ना कहीं देखा भी जाता है कि जो पशुपालक भाई हैं हमारे वो पशुओं को इसलिए पालते हैं क्योंकि उन्हें एक कमाने का अच्छा जरिया मिल जाए और कहीं ना कहीं दुग्ध उत्पादन में भी बहुत ज्यादा ये मानी रखता है पशुपालन। और यहाँ पर डॉक्टर साहब आपने इसके इफेक्ट के बारे में बताया कि असर क्या पड़ता है जानवरों पर, पशुओं पर, और डॉक्टर साहब ने बताया किसान भाइयों की जो है वो इनके दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है, साथ ही इनका रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाता है और इनफर्टाइल हो जाते हैं, यानी कि गर्भ ठहरने में उन्हें समय लग सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, तो ये असर पड़ता है पशुओं पर। और डॉक्टर साहब अब जानना चाहेंगे मैं आपसे कि बारिश के मौसम में ये जो बीमारियां हैं पशुओं में प्रायः देखा जाता है, तो कैसे फैलती हैं ये?
7: जैसा कि हमने बताया कि बारिश के मौसम में जो एक तो जल जमाव, गंदगी का चारों तरफ प्रभाव और फिर वातावरण में नमी की अधिकता और तापक्रम की अधिकता जिसके चलते जानवर में स्ट्रेस होता है
6: और नमी में ही बैक्टीरिया जो है वो उत्पन्न होते हैं।
7: नमी के चलते जो भी जितने भी जीवाणु हैं उसका फैलाव बहुत ज्यादा होता है और गंदगी रहने से इसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है, तो इसके चलते ये बीमारियां काफी तेजी से फैलती है, तो साफ सफाई पर ध्यान देना आवश्यक है। लेकिन और सबसे बड़ी बात है कि जहां भी अपने पशुओं को रखें वहां जल जमाव नहीं हो। जल जमाव से एक और तो ये बैक्टीरिया तो फैलता ही है, इसके चलते चारों ओर बरसात के मौसम में आप देखेंगे कि मच्छर, मक्खी और चमोकन, जो किलनी, जू, इसकी भी संख्या बढ़ती है जिसके चलते पशुओं में कई प्रकार के परजीवी रोग की भी संख्या बहुत बढ़ जाती है। तो हम लोग कोशिश करते हैं, पशुपालकों को सलाह देते हैं कि आप बरसात के समय ऐसे जगहों पर अपने पशुओं को रखें जहाँ जल जमाव न हो और ऊँचे स्थान पर रखें, वहाँ शाम के समय अवश्य जो भी गंदगी है उसको झाड़ू लगा के उसको जला के धुआं कर दें जिससे कि मक्खी मच्छर का प्रकोप भी कम हो, और राख जो बचे उसको अपने पशुशाला में छींटें, उसके क्षारीयता के चलते भी कुछ जीवाणु रोग से बचते हैं, साथ साथ वहाँ नमी की कमी रहती है।
6: तो डॉक्टर साहब आपने जिन रोगों के नाम बताए तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये जो बीमारियाँ हैं वो एक पशु से क्या अन्य पशुओं में भी जा सकती है?
7: जी, ये सब सभी बीमारियां संक्रामक नेचर की हैं और एक पशु से दूसरे पशु में छुआछूत के माध्यम से, उनके जो छींकने के माध्यम से, चारे के माध्यम से, या जो FMD वायरस है वो हवा के माध्यम से भी उसका प्रकोप, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जो अगल बगल पशु रहते हैं, छींकते हैं, खांसते हैं, उसके चलते भी, तो ये संक्रामक रोग है और इनका संक्रमण एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है।
6: तो अगर ऐसा सिचुएशन हो, यानी कि ऐसी अवस्था हो हमारे पशुपालक भाइयों के साथ कि अगर उनका एक पशु बीमार हो गया है तो उन्हें क्या करना चाहिए उस समय?
7: सबसे पहला तो है कि जब भी कोई पशु बीमार हो तो उसे स्वस्थ पशु से अलग कर दें।
6: अच्छा।
7: और उसके रखने की जगह जो है वो थोड़ी दूरी पर रखें। उसके बाद जो बरसात शुरू होने के पहले प्रायः अपने पशुशाला की सफाई करवा लें और साथ ही साथ उसको ऊंचा कर लें ताकि वहां जल जमाव ना हो। और इन बीमारियों से बचने के लिए टीका उपलब्ध है। बरसात शुरू होने के पहले पशुपालकों को सलाह दी जाती है कि वो अपने पशुओं में HS और BQ अर्थात गलघोंटू और लंगड़ी का कंबाइंड टीका आता है, या फिर गलघोंटू लंगड़ी और FMD तीनों का भी कंबाइंड टीका आता है।
6: अच्छा।
7: तो उस टीका का प्रयोग मई महीने में ही अपने पशुओं को कर दें, जिसके चलते कि आपके पशु बरसात के समय स्वस्थ रहेंगे। और ये जो तीन प्रमुख बीमारी है HS, BQ और FMD, इस तीनों रोग से आपके पशु स्वस्थ रहेंगे।
6: यानी कि रोग का इंतजार नहीं करना है किसान भाइयों, उससे पहले ही टीकाकरण करवा दें मई के महीने में अपने पशुओं का, ज़्यादा अच्छा होगा। आपके पशु स्वस्थ रहेंगे और आपको आर्थिक स्तर पर भी अच्छी मजबूती मिलेगी इनसे। और इसके साथ ही डॉक्टर साहब आपने बताया कि मतलब पशुओं को, जो बीमार पशु हैं उसको अलग कर देना चाहिए। साथ ही मैं आपको बता दूँ पशुपालक भाइयों की, अगर आप ये भी देख रहे हैं कि आपके बगल वाले जो पशुपालक हैं अगर उनके पशु को बीमारी फैल चुकी है तो आप अपने पशु को उस जगह पर ना ले जाएं जहां वो अपने पशु को चरा रहे हैं।
7: खास करके कॉमन चारागाह जो है, तो हम लोग ऐसे भी बरसात के मौसम में ये सलाह देते हैं कि उन जगहों पर जहां पर कि कॉमन चारागाह है,
6: जहां पर सभी पशु,
7: जहां बीमारी फैली हुई है, उस अवस्था में अपने पशुओं को उन चारागाह पर ना ले जाएं, या जहां जल जमाव है, जो जैसे बरसात के बाद भी जहां पानी जमा होता है, जहां घोंघे की अधिकता होती है, वहां पर अपने पशुओं को न ले जाएं, क्योंकि उन मौसम, इस मौसम में एक छेरा नामक बीमारी भी फैलती है जो कि पशुओं में परजीवी के चलते फैलता है। तो हम लोग प्रयास करें कि बरसात के मौसम में अपने पशुओं को या तो अपने घर पर बांध के रखें या खोलने के पहले स्वच्छ जल पूरी तरह से उसको पिलाकर ही बाहर ले जाएं, ताकि उस चारागाह पर जल, जो जल जमाव है, वहाँ का पानी नहीं पिएगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर उन चारागाह के चारा को अगर पशु चरते हैं तो उसमें छेरा नामक बीमारी जो फैसियोला हिपैटिका के चलती है, जिसे हम लोग, जिससे कि आपके पशु छेरा नामक बीमारी से प्रभावित हो सकते हैं, उससे बचने के लिए हम लोग सलाह देते हैं।
6: अच्छा सर, ये छेरा नामक बीमारी आपने कहा, तो इसके लक्षण क्या होते हैं?
7: ये छेरा स्पष्ट है कि पशुओं में पतला दस्त होता है।
6: अच्छा।
7: फोर्सफुल डायरिया, और इसका कारण जो है एक परजीवी है जो पशुओं में पाया जाता है, जिसे फैसियोला हिपैटिका के नाम से जानते हैं। तो इससे बचने के लिए हम लोग सलाह देते हैं कि एक तो उन जगहों पर न जाने दें, अगर जाते भी हैं तो वहाँ घोंघे अगर नजर आते हैं तो घोंघों को जमा करके कॉपर सल्फेट या नमक के साथ उसका ट्रीटमेंट करके उसको खत्म कर दें।
6: अच्छा।
7: और उसके बाद बरसात के पहले और बरसात के बाद अपने पशुओं को कृमिनाशक दवा अवश्य दें।
6: कृमिनाशक
7: दवा बरसात शुरू होने के पहले और बरसात समाप्त होने के बाद, ये प्रत्येक पशु औषधालय में सरकार के द्वारा भी मिलता है, और अपने व्यक्तिगत रूप से भी खरीद के इसका इसका इसका सेवन कर सकते हैं, दिला सकते हैं अपने पशुओं को। और इसके लिए ये, इससे क्या होगा कि आपके पशु बरसात के मौसम में स्वस्थ रहेंगे, आप उनसे ज्यादा से ज्यादा उत्पादकता ले सकेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी।
6: तो हमारे किसान भाइयों और पशुपालक भाइयों, आप सभी को डॉक्टर साहब ने सुझाव दिया कि कृमि नाशक दवा बरसात स्टार्ट होने से, यानी कि शुरू होने से पहले और बरसात खत्म होने के बाद आप छिड़काव करें, ताकि आपके पशु जो हैं वो बीमार ना पड़े, और अगर आपका ये कमाई का जरिया है तो आपको अच्छी कमाई मिले। और इसके साथ ही डॉक्टर साहब यहाँ पर उपचार की बात कर लेते हैं। आपने अभी छोटी मोटी उपचार के बारे में बताया, जैसे कि कृमि नाशक दवा के बारे में बताया, इसके अलावे भी कुछ और जो उपचार के अगर साधन मिल जाए हमारे किसान भाइयों को, पशुपालक भाइयों को, तो और अच्छा होगा उनके लिए।
7: यहाँ तक है, जैसे ही आपके पशु को कोई भी लक्षण इस प्रकार का दिखाई दे जो एबनॉर्मल है, तो आप तुरंत निकट के चिकित्सालय से संपर्क करें, और अगर आपने टीका नहीं लगवाया तो टीका लगवा लें। और उसके बाद कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिसको, जिसका कि जैसे HSBQ बीमारी के, HS बीमारी में हम लोग सल्फाडिमाडिन का प्रयोग करते हैं। सल्फाडिमाडिन की जो इंजेक्टेबल इंजेक्शन आती है उसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावे, चूँकि HS हेमरेजिक सेप्टिसीमिया या गलघोंटू में निमोनिया का लक्षण भी पाया जाता है। तो निमोनिया का लक्षण पाया जाता है तो इसमें हम लोग, इसका नाम पास्चुरलोसिस भी है, तो इस केस में हम लोग लेटेस्ट जो भी आजकल थर्ड या फोर्थ जनरेशन की सिफेलोस्पोरिन दवाइयाँ आती हैं उसका भी हम लोग प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड का प्रयोग करते हैं। तो और सूजन चूँकि गला में रहता है तो सूजन के लिए NSAID का प्रयोग करते हैं। तो इन दवाओं का प्रयोग करने से और इनिशियल स्टेज से अगर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं तो ये बीमारियां ठीक हो जाती हैं और पूरी तरह ठीक हो जाती हैं। लेकिन जब अवस्था भींग के दूसरी तीसरी अवस्था में आ जाती है और उस समय प्रॉपर चिकित्सा नहीं मिलने से प्रायः देखा जाता है कि पशुओं की मृत्यु हो जाती है। तो इनिशियल सबको सबसे पहली बात यही है कि जैसे ही आप अपने पशुओं में देखें बरसात के समय कि कोई लक्षण जो सामान्य से अलग दिखाई दे रहा है तो तत्काल निकट के पशु चिकित्सक से संपर्क करें। उसी प्रकार जो हमारा लंगड़ी बीमारी है, लंगड़ी बीमारी के लिए हम लोग बेंजाथिन पेंसिलिन, प्रोकेन पेंसिलिन या स्ट्रेप्टो पेंसिलिन का प्रयोग करते हैं। और इसके साथ ही साथ चूँकि सूजन रहता है तो सूजन के लिए भी हम लोग NSAID का प्रयोग करते हैं। और साथ ही साथ जो सूजन वाला पोर्शन को हम लोग जब देखते हैं कि उसमें काफ़ी क्रिप्टेटिंग साउंड है या कसकसाहट भरा आवाज़ है तो वहाँ चीरा लगा के उसका ड्रेसिंग करवाना पड़ता है, क्योंकि जो भी टॉक्सिन के चलते जो वहाँ पर गैंग्रीन हुआ है उसकी सफाई जरूरी है। जब तक वो सफाई नहीं होगा घाव का तब तक वो घाव जल्दी ठीक नहीं होगा। तो इस प्रकार से कुछ दवाओं का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। और साथ ही साथ सबसे जरूरी है कि चिकित्सा से जरूरी है जो इससे बचाव, तो बरसात के समय आप अपने पशुओं का टीकाकरण करवाएं और टीकाकरण करा के आप अपने पशुओं को सुरक्षित कर लें। अन्यथा चिकित्सा के बावजूद भी कभी कभी पाया जाता है कि लेट होने से पशुओं की मृत्यु होती है और उसमें आपके खर्च होने के बावजूद भी आपके पशु बच नहीं पाते,
6: तो आर्थिक स्तर पर नुकसान होता है। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे सुझाव दिए और इसके बारे में बताया, यानी कि बारिश के मौसम में पशुओं में होने वाली बीमारियाँ और उसके बचाव के बारे में बताया। और आप सभी को बता दूं किसान भाइयों और हमारे पशुपालक भाइयों की जैसा आप चाहते हैं कि आप अच्छे से ज़िंदगी बिताएं तो आपके पशु भी चाहते हैं, और आप जितना स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपके पशु भी चाहते हैं। तो उनका रखरखाव करें, देखभाल करें, ताकि आपका अगर आर्थिक स्रोत है पशुपालन तो आपको एक अच्छा आर्थिक स्तर पर मुनाफा मिल पाए। और आपको कहीं ना कहीं अगर शौक है पशुओं को पालने का तो आपको हमेशा अपने पशुओं को स्वस्थ रखना चाहिए। तो डॉक्टर साहब आप हमारे इस कार्यक्रम में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों आप सभी से आगे भी मुलाकातें होती रहेंगी अलग विषय के साथ, अलग चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि
8: क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
9: जी
8: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
9: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
8: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
10: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
11: कौन सी कहानी टीकी?
10: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
12: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
10: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
11: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
10: तो
1: 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
13: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
14: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को

0: 8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उन्नत कृषि कार्यक्रम में, और मैं अनु आप सभी के लिए खास विषय लेकर आ चुकी हूँ, आम के मूल्य संवर्धन एवं परिरक्षण। इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं अनिता मैम। मैं आप सभी को बता दूं कि अनिता मैम SMS हैं KVK सबौर में और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के अंतर्गत। तो आज बहुत सारी बातें आज मैडम से हम जानेंगे, आम के मूल्य संवर्धित उत्पाद के बारे में, क्यों परिरक्षित करना चाहिए आम के मूल्य संवर्धित उत्पादों का या फिर आम को। तो आज इसके बारे में सबसे पहले मैम से जानते हैं कि आम के क्या कुछ फायदे हैं। मैम,
1: हाँ, थैंक यू अनु। आम के फलों, आम को जो कहा जाता है हमारे यहाँ कि फलों का राजा, आम फलों का राजा है। तो आम फलों का राजा ये काफ़ी पुराने समय से कहा जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि आम फलों का राजा कहा जा रहा है उसके पीछे सही में कारण है। यह आम का फल काफ़ी पौष्टिक होता है, स्वादिष्ट होता है, गुणकारी होता है। इसके फल में विटामिन ए और कैरोटीन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। यहाँ 100 ग्राम जो है उसमें प्रति 100 ग्राम में 4500 IU पाया जाता है विटामिन ए, जो कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा हुआ। इसके अलावा इसमें विटामिन सी संतरा और सेब से कई गुना ज़्यादा पाया जाता है। और वैज्ञानिकों का कहना है कि आम में मक्खन, जो हम मक्खन कहते हैं, काफ़ी शक्तिवर्धक है, मक्खन के मुकाबले की शक्ति होती है।
0: अच्छा।
1: इसके अलावा इसकी गुठली, जिसको कि हम लोग सोचते हैं कि कोई काम का नहीं है, लेकिन उस गुठली से उसके जो गिरी होता है उसके अंदर, गुठली के अंदर जो गिरी होता है उसमें वसा और कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो इसलिए उसको हम लोग सुखा करके आटा के रूप में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। इसका छिलका जो है, उसका छिलका को हम सुखा कर जलाने के काम में ला सकते हैं। इसके गुठलियों के रेशा से बुश बनाया जाता है। इसके बाद यहाँ तक के चिकित्सक कहते हैं कि आम जो है वह ब्लड और वजन बढ़ाने में कारगर साबित होता है, यदि इसको हम नियमित रूप से अपने डाइट में लें। यदि कितने लोग दुबले पतले हैं, वो वजन बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए आम एक बहुत अच्छा आहार है। और इसके अलावा इसके नियमित सेवन से त्वचा में निखार आता है। इसमें चूंकि विटामिन मिनरल्स पाया जाता है, तो ऑटोमेटिक है, और ये एनर्जी रिच फूड है, तो इसमें त्वचा में निखार आता है। जो यूरिन संबंधित कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो दूर होता है, और यूरिन मूत्र जो है हमारा खुलकर आता है। शरीर में स्फूर्ति आती है, नर्वस सिस्टम में किसी तरह का खराबी हो तो वो भी इसके सेवन से दूर होता है। नींद आने की किन्हीं को समस्या, को नींद नहीं आती है, तो इनका आप सेवन करेंगे तो आपको नींद भी आएगा। और जो गर्भवती स्त्रियां यदि इसका सेवन करती है तो उसके बच्चे सुंदर और स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। इसका सेवन करने से कमजोरी दूर होता है। और यदि हम रात में सोने से पूर्व ताज़ा रस का सेवन करें तो कब्ज दूर होता है। और गुठली का जो गिरी होता है उसको, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, उसको हम लोग आटे के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ उसको यदि महीन चूर्ण बना लें तो मंजन की भांति उसको हम दांत साफ करते हैं तो पायरिया आदि रोग से हम लोग को
0: छुटकारा मिलता है।
1: इस तरह से हम देखते हैं कि आम का बहुत फायदा है। यहाँ खाने को छोड़कर यदि उसका औषधीय भी गुण है, उसका काफी पौष्टिक वैल्यू है, और उसको हम सेवन अवश्य करना चाहिए।
0: जी मैम, अब बात करते हैं परिरक्षण और मूल्य संवर्धन की, तो इसकी क्यों जरूरत पड़ी, क्यों करते हैं हम परिरक्षण और मूल्य संवर्धन?
1: अनु, ऐसा है कि जो भी हमारा फल सब्जी या भी कोई भी कृषि का उत्पाद होता है वह मौसमी होता है, तो उसका उसमें अलग अलग कैटेगरी है। कुछ तो होते हैं कि जैसे कि हम उसका यदि तोड़ लिए तो 2-3 महीना तक भी हम उसको सुरक्षित आराम से रख सकते हैं, जैसे कि अनाज दलहन ये वगैरह है। और कुछ होते हैं कि आप 10-15 दिन ही रख सकते हैं, जैसे कि और से सब्जी फल में आते हैं। कुछ होते हैं कि 1 सप्ताह ही रख सकते हैं, जैसे कि आलू प्याज है उसको भी कई महीने रख सकते हैं, लेकिन जैसे फूल गोभी है तो 1 सप्ताह रख सकते हैं। वो भी मतलब 1 सप्ताह से तक में उसको खर्च कर देना, ख़त्म कर देना, उससे उसका क्वालिटी ख़राब होने लगता है। 2-3 दिन तक ही वो फ्रेश रहता है। कुछ चीज़ तो ऐसे है कि 1-2 दिन में ही हमारा ख़राब होने लगता है। तो उसकी सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंस है परिरक्षण एवं मूल्य संवर्धन का, कि बेमौसम में उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना। यदि जो चीज़ की मौसमी है, यदि उसका हम कोई प्रोसेसिंग नहीं, प्रसंस्करण नहीं करते हैं, परिरक्षण नहीं करते हैं, मूल्य संवर्धन नहीं करते हैं, तो वो खराब हो जाएगा। लेकिन यदि हम इन प्रक्रियाओं को अपनाते हैं तो उसका हम लाइफ को बढ़ा देते हैं। वो जिस मौसम में उसकी उपलब्धता नहीं रहना चाहिए उस मौसम में भी वो उपलब्ध होता है। दूसरा कि यदि हम कोई जो किसी चीज़ को उत्पादन में जो खर्च लगता है

0: उससे परिरक्षित करने में कम खर्च लगता है। तो जैसे कि हम आंकड़ों की यदि बात करें तो लगभग 40% जो हमारा फल सब्जी है वह उत्पादन होकर जो उपभोक्ता तक जाने से पहले ही खत्म हो जाता है। यदि उसको हम परिरक्षित करके बचा लेते हैं तो हम एक तरह से जो हमारा प्रोडक्शन है वो बढ़ा लिए, क्योंकि जो खराब हो रहा था उसको बचा लिए। इसके बाद यदि हम इसको घरेलू स्तर पर करके महिलाएं करती हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो ऑक्सीजन में यूज करती है तो खाद्य एवं पौष्टिक सुरक्षा हासिल होता है। इसके अलावा यदि वो इसको स्वरोजगार रूप में अपनाती है तो आमदनी भी होता है, रोजगार भी होता है। घर बैठे महिलाएं इसका करती है तो महिलाओं का सशक्तिकरण होता है। युवाएं इसको करते हैं तो युवाओं का पलायन हमारा रोकता है, उनको घर में अपने रोजगार मिल जाता है। इस तरह से हम काफी फल सब्जी का काफी महत्व है और इसको हम अवश्य करना चाहिए।
1: जी मैम, देखा जाता है कि तेल युक्त अचार तो बनाए जाते हैं आम के, लेकिन क्या लोगों के मन में सवाल है कि क्या तेल रहित अचार इसके बनाए जा सकते हैं?
0: बिल्कुल अनु, तेल रहित अचार हम बना सकते हैं और तेल रहित अचार आजकल बहुत लोकप्रिय भी हो रहा है।
1: अच्छा।
0: इसको बनाने के लिए कच्चे आम के छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, उसमें 20% नमक, 7.5% पीसी लाल मिर्च और 1% हींग जो है जो हमारा आम को मेजर कर लेते हैं उसके भार के अनुसार उसमें मिलाते हैं और मिश्रण को बार बार हिलाते हुए उसे कुछ घंटे धूप में रखते हैं। उसके बाद उसको बोतल में डाल देते हैं और 4-5 दिन तक उसको धूप में लगाते हैं। उसके बाद फिर वो खाने के लिए तैयार हो जाता है। उसको आप अच्छे स्वच्छ जगह पर भंडारित कर दीजिए, उसको उपयोग कीजिए, इसमें आपको तेल की कोई आवश्यकता नहीं है।
1: हाँ, मतलब आप अगर तेल आपको पसंद नहीं है और तेल रहित आप अचार बनाना चाहते हैं वो भी बन सकता है इससे। मैम अब बात करते हैं आम के मूल्य संवर्धित उत्पाद की। ये जानकारी सभी लोग जानना चाहते हैं कि कौन कौन से मूल्य संवर्धित उत्पाद हम बना सकते हैं इससे।
0: आम के बहुत ढेरों सारे मूल्य संवर्धित उत्पाद है, जैसे एक तो आप तेल रहित अचार मैंने आपको बताया, इसके अलावा तेल युक्त अचार जो कि हम सदियों से बनाते हैं, ये घर की हर गृहिणियां बनाती हैं, जिस पे हम लगता है चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अमचूर जो पाउडर बनाते हैं वो भी लगभग हमको लगता है घर की हर महिलाएं बनाती ही है। तो अमचूर बनाती हैं महिलाएं जनरली, वो सुखा कर बनाती हैं आम की फांकों को, लेकिन उसमें हम थोड़ा सा चेंज करना चाहेंगे। यदि आम की फांकों को आप पोटासियम मेटाबसल्फाइड के 0.2% घोल में 5 मिनट तक डुबोने के पश्चात धूप में सुखाते हैं तो आमचूर का क्वालिटी गुणवत्ता आपका ज्यादा अच्छा होता है। ऐसे आमतौर पर महिलाएं उसको सीधे धूप में सुखा करके बनाती हैं, लेकिन यदि ये आप एक स्टेप कर लेती हैं तो आपका आमचूर का गुणवत्ता बढ़ जाता है। इसके अलावा आप पन्ना भी, आजकल जब धूप होता है तो हर घर में पन्ना बनता है, यहाँ तक कि चौक चौराहे पर भी पन्ना मिलता है और दिल्ली जैसे शहर में पैक्ड पैकेजिंग करके भी पन्ना बिकता है, मतलब इसका काफी मार्केट है। तो ये पन्ना आप बना सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, आम के कच्चे फलों को भून लें या उबाल लें, उसका गूदा निकाल लेते हैं और उसमें प्रति किलो गूदे में 0.8 kg शक्कर, 0.4 liter पानी, 80 ग्राम नमक, 20 ग्राम काली मिर्च और 20 ग्राम साइट्रिक अम्ल मिलाकर गर्म करते हैं। तो उसके बाद इसके जैसे स्क्वैश को हम लोग बोतल में भरते हैं उसी तरह बोतल में भर देते हैं और इसमें KMS पोटासियम मेटाबसल्फाइड बोतल में भरने से पूर्व उसमें हम लोग मिला देते हैं कि जैसे 5 लीटर है तो उसमें 3 ग्राम के अंदाज से उसमें के दर से उसमें मिला करके उसको पैक कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आमचूर बना सकते हैं, पन्ना बना सकते हैं। इसके अलावा जो आम का कच्चा आम हमारा काफी आंधी में गिर के बर्बाद हो जाता है, उस आम का हम लोग कच्चे आम का स्क्वैश बना सकते हैं। कच्चे आम का स्क्वैश बनाने के लिए आप आंधी में गिरे हुए फल भी ले सकते हैं या फिर प्रॉप फल भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो ले सकते हैं। उन फलों को आप अच्छे से धो कर कर स्टील के चाकू से छिलका उसका हटा दें, टुकड़ों में काट लें। यदि गुठली वाला है तो टुकड़े में नहीं भी काटते हैं तो उसको पूरा डाल दें, लेकिन यदि गुठली नहीं हुआ है तो टुकड़े में काट करके बीज का जो आपका बीज है उसको निकालना अति आवश्यक है, नहीं तो उसको पकाएंगे तो वो चूंकि हार्ड नहीं हुआ रहता है तो वो स्वाद को खराब कर देता है। इसलिए यदि छोटा फल है तो उसको टुकड़ों में अवश्य काट करके बीज का जो बीज है उसको निकाल लीजिए। यदि आप पूरा मैच्योर है तो गुठले में नहीं भी टुकड़े में काटते हैं तो उसको एज सच भी आप उबाल सकते हैं, तो या तो आप टुकड़े में काटिए या फिर गुठली सहित है तो आप उसको ऐसे छील करके बराबर पानी के साथ उसको हम लोग पूर्ण रूप से गल जाए तब तक उसको हम लोग उबालते हैं। उसके उबालने के बाद उसको, या हमारे पास यदि मशीन है, पल्पर है, तो पल्पर में डाल करके उसको गुदा को अलग कर लेते हैं, रेशा बीज को अलग कर लेते हैं। यदि नहीं है तो हम हाथ से मसल करके गुठली को हटा देते हैं। मिक्सी है तो मिक्सी में उसको हम लोग थोड़ा पीस लेते हैं। उसके बाद कपड़े से, मसलिन के कपड़ा, मार्किन के कपड़ा से छान करके उसके गुदा को हटा लेते हैं, रेशा को साइड कर देते हैं। इसके बाद उस जो आपका गुदा हुआ है, उस गुदे को हम लोग थोड़ा सा हल्का सा भफा लेते हैं, क्योंकि हम लोग हाथ लगाए हैं, भफा करके उसको रख लेते हैं, ठंडाने देते हैं। और हम लोग जितना रस निकला उस रस को मेजर करके उसका डेढ़ा चीनी लेते हैं, चीनी का आधा पानी लेते हैं। चीनी पानी का हम लोग आँच पे चढ़ा करके जब तक चीनी नहीं गल जाए तब तक पकाते हैं, उसके बाद हाँ चाशनी बनाते हैं। उसके बाद प्रति केजी चीनी के उसमें हम लोग 4 से 5 ग्राम, 4 ग्राम चूँकि कच्चे आम का बना रहे हैं इसलिए 4 ग्राम सैट्रिक एसिड डालते हैं। उसके बाद जब चाशनी हमारा, चाशनी और आम दोनों, जो आम का रस दोनों ठंडा जाता है, तो धीरे धीरे आम के चाशनी को हम लोग आम में डालते हैं, गूदा में डालते हैं और धीरे धीरे चलाते रहते हैं। उसके बाद इसमें हम लोग जब पूरे अच्छे से मिल जाता है तो 5 लीटर स्क्वैश में आपको 3 ग्राम KMS की दर से थोड़े से पानी में घोल करके उसमें मिला देते हैं। और आप इसको अब ये आपका बॉटलिंग कर देते हैं और इसको आप पैक करके रख दीजिए। इसको जब पीना हो तो 3 से 4 भाग पानी मिलाकर 1 भाग ये मिलाकर आप इसको पीजिए और इसका आनंद लीजिए। इसी तरह से आप पके आम का भी स्क्वैश बना सकते हैं। बिल्कुल यही प्रक्रिया है। आपको पके आम में जैसे यहाँ आप 4 ग्राम सैट्रिक एसिड डाले तो वहाँ 5 से 6 ग्राम सैट्रिक एसिड डालिए प्रति केजी चीनी के हिसाब से। और उसको आपको कच्चा आम को आपको उबालना पड़ा पानी से, तो उसमें उबालना नहीं, उसको सीधा छिलका को हटा करके उसके गुदे को निकाल लेना है, गुदा को भफा लेना है। भफा के जैसे कच्चे आम के लिए प्रक्रिया है, उसी तरह पके आम के स्क्वैश बनाने की भी प्रक्रिया वही है। इसी तरह से आप उसका स्क्वैश बना सकते हैं। इसके बाद आपका आम का जैम बना सकते हैं। ये कच्चा और पके दोनों आम का जैम बना सकते हैं। इसके लिए मान लीजिए कच्चा आम है तो उसको छील करके टुकड़ों में काट लीजिए, फिर थोड़ा सा पानी में इसे गर्म करके गुदा को नरम कर लेते हैं। अब गुदे की मात्रा का 3/4 या बराबर, मान लीजिए खट्टा आम है तो बराबर चीनी दे दीजिए, यदि पका आम है तो 3/4 में चीनी मिला करके पकाते हैं। उसी तरह यदि पका आम, ये तो कच्चे आम का हो गया, यदि पका आम हम लेते हैं तो पका आम का गुदा कर लेते हैं, उसी के मात्रा में चीनी डालकर उसको पकाते हैं। अब चाहे कच्चा आम को पका रहे हो चाहे पका आम को पका रहे हो, पकाने के बाद जो जितना आप चीनी डाले हैं प्रति केजी चीनी के हिसाब से 5 ग्राम सैट्रिक एसिड डाल देते हैं हम उसमें। यदि कच्चा आम है तो उसमें आप 4 ग्राम भी सैट्रिक एसिड डाल सकते हैं, और पका आम ज़्यादा पका है तो 6 ग्राम भी सैट्रिक एसिड डाल सकते हैं। उसके बाद जब इसका तापमान 105 से 180 डिग्री तक पहुंच जाए तब इसको हम लोग उतार करके इसमें 0.02% सोडियम बेंजोएट थोड़े से पानी में घोल करके उसमें मिला देते हैं। और इसके बाद उसको हम लोग अच्छे डब्बे में, साफ किया हुआ डब्बा में उसको गरम गरम ही डाल करके देते हैं। फिर जब ठंडा जाता है तो उसके ऊपर एक मोम का लेयर डाल करके उसको हम पैक कर देते हैं। इस तरह से हम लोग आम का जैम बना सकते हैं। इसी तरह से हम लोग आम का मुरब्बा भी बना सकते हैं। आम का मुरब्बा बनाने के लिए पूर्णतः विकसित और स्वस्थ एवं अधपका आम का चयन करना चाहिए। उसको अच्छे से पानी से धो लीजिए, फिर आम के छिलकों को हटा करके उसका 9 सेंटीमीटर मोटाई और आम की गोलाई में बड़े बड़े टुकड़े काट लीजिए। अब उसके बाद अब इन टुकड़ों को 2 से 3% नमक के घोल में डुबाएं ताकि इन्हें काला होने से बचाया जा सकता है। इन टुकड़ों को पतले कपड़े में लपेट कर खौलते पानी में 5 से 10 मिनट तक डुबोएं। बाद में इन्हें सूखे कपड़े पर फैलाकर सुखाएं। थोड़ी देर बाद इन टुकड़ों में जो स्टील या लकड़ी का सिकचा हो या फिर फॉर्क हो उसे थोड़ा छेद कर दीजिए, और एक बर्तन में आम के टुकड़े के वजन के बराबर चीनी लेकर पानी में चाशनी तैयार करें। पानी और चीनी का अनुपात 1:3 होना चाहिए। उसमें आप इसके 1.5 से 2 ग्राम प्रति किलो चीनी के हिसाब से सैट्रिक अम्ल मिला दें। चाशनी तैयार हो जाने पर उसमें आम के टुकड़े को डाल दें और तब तक गर्म करें जब तक चाशनी 3-4 तार ना छोड़ने लगे। अब मुरब्बे को ठंडा कर दें और ठंडा होने पर उसे स्वच्छ जीवाणु रहित बोतलों में भर दें। उसके बाद आप उसको पैक कर दीजिए। उसको चाहें तो उसके ढक्कन को मोम से भी सील कर सकते हैं। फिर आप इसका आनंद लीजिए। इस तरह से हम लोग विविध मूल्य संवर्धित उत्पाद बना सकते हैं, उसका परिरक्षण करके विविध परिरक्षित उत्पाद बना करके उसका सालों भर मजा ले सकते हैं, इसको रोजगार ले कर सकते हैं और अपने घर के खाद्य एवं पौष्टिक सुरक्षा को भी पूर्ण कर सकते हैं।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, और श्रोताओं आशा करते हैं कि आप भी आम के जो मूल्य संवर्धित उत्पाद हैं बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बनाएं जैसे कि मैडम ने आपको बताया। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ हाजिर होंगे हम इसी फ्रिक्वेंसी पर, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 8 जुलाई से 12 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। साथ ही इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 8 से 12 जुलाई के दौरान 15 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, पिछले कुछ दिनों में वर्षा हुई है, इसलिए आप वर्षा के जल का लाभ उठाते हुए धान की सबौर दीप किस्मों जैसे प्रभात, शुष्क सम्राट, सहभागी की बुआई 10 जुलाई तक जरूर कर दे। और किसान भाई बहनों, बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए कार्बन डाइजिन की 2 ग्राम मात्रा को 1 किलोग्राम बीज उपचारित करने के लिए इस्तेमाल करें। और ध्यान दें कि 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई जरूर करें। मध्यम अवधि वाली धान की किस्में जैसे राजेंद्र नीलम, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र श्वेता की रोपाई कर सकते हैं। और धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी की जा सकती है। किसान भाई बहनों, अगर आप श्री अन्न की खेती करना चाहते हैं तो ध्यान दें, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें और मड़ुआ की वकुला KMR 316 GPU 67 VL 379 राजेंद्र मड़ुआ RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1 इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, उचास जमीन में अरहर की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1, राजेंद्र अरहर 2 इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। और ध्यान दें कि अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का उपयोग करना बिल्कुल न भूलें। और किसान भाई बहनों, अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दे, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना ना भूले। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3 और गंगा 11 है। जिनके खेत में मूंग लगा है उन्हें बता दे, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो किसान भाई बहन सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, भिंडी, कद्दू, खीरा, निनुआ और लौकी जैसी फसलों में निराई गुड़ाई करते रहें और खरपतवार नियंत्रित रखें। ध्यान दें कि पत्ती खाने वाली सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करना जरूरी होता है और अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डायमेथो 8 30 ईसी की 1 मिलीलीटर
3: लीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। और स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में गोबर की खाद डालना बहुत जरूरी होता है। खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्री फाउंड डार्क रेड अर्का कल्याण भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और ध्यान रखें कि बीज गिराने के पहले बीजोपचार जरूर कर लें। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। और जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचों में जरूरत के हिसाब से छटाई कर लें, जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचे में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा कर हटा दें। इससे कीट और रोगों के प्रकोप में कमी आएगी और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलेगा। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, महीने के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, इसलिए ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें। गलाघोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में टीके नहीं लगाए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

स्वस्थ रहे हम। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, घूमना फिरना किसे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कुछ लोगों की परेशानी ये होती है कि उन्हें मोशन सिकनेस होता है और ऐसी स्थिति में घूमना फिरना उनके लिए थोड़ा तो दुभर हो ही जाता है। तो मोशन सिकनेस क्या होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है और ये क्यों होता है, इसके बारे में आज जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं हूं कौन। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त, रेडियो होस्ट उमा, और आज हम बातें करने वाले हैं ढेर सारी, बस आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले जानते हैं मोशन सिकनेस क्या होता है। दोस्तों, मोशन सिकनेस एक ऐसी स्थिति है जिसमें सफर के दौरान किसी इंसान को चक्कर आता है, उल्टी होती है या सिर दर्द होता है और कई बार बेचैनी भी होती है, और ये समस्या ज़्यादातर गाड़ी, बस, ट्रेन, जहाज़ या हवाई जहाज़ के यात्रा के दौरान होती है। और कुछ लोगों में ये समस्या इतनी ज़्यादा होती है कि उनके लिए कोई भी सफ़र बहुत मुश्किल हो जाता है। और पता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर संतुलन सही नहीं बैठ पाता है। मान लीजिए आप कार या बस में बैठे बैठे फ़ोन चला रहे हैं या फिर किताब पढ़ रहे हैं, और आपकी आंखें आपके दिमाग को क्या बता रही है कि आप स्थिर हैं, आप स्थिर होकर कोई काम कर रहे हैं, लेकिन आपके कानों के अंदर जो मौजूद संतुलन तंत्र है जो दिमाग को बताता है कि शरीर चल रहा है या नहीं, वो क्या बताएगा? हाँ, शरीर तो चल रहा है, पर आँखों ने बताया है कि नहीं, शरीर तो स्थिर है, वो कहीं नहीं जा रहा, स्थिर होकर काम कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में दिमाग को दो दो संकेत मिलते हैं, और जब दिमाग को अलग अलग तरह के संकेत मिलते हैं तो उसे लगता है कि हमारे शरीर में कुछ गड़बड़ी हो गई है, कोई जहरीली चीज अंदर आ गई है। और हमारा शरीर अपने अंदर गए किसी भी बुरी चीज को कैसे निकालता है? उल्टी करके। तो बस इसी वजह से हमारा जी मिचलाने लगता है, हमें उल्टी आने लगती है, हमें बेचैनी होने लगती है। अगर आपको ऐसा लगे तो इससे बचने का एक ही तरीका होता है कि आप खिड़की के बाहर दूर देखने लग जाएं, ताकि आपकी आंखों को भी पता लगे कि नहीं भाई, हम स्थिर नहीं हैं। तो आपके कानों के संतुलन तंत्र से जो संकेत जाएगा और आपकी आंखों से जो संकेत दिमाग तक पहुंचेगा, दोनों सेम होगा। तो ऐसी स्थिति में जी मिचलाने वाली स्थिति ही उत्पन्न नहीं होगी। अगर आपको लगता है कि मोशन सिकनेस से जूझने वाले आप अकेले इंसान हैं या बहुत रेयर ये स्थिति होती है, तो ऐसी बात नहीं है। साल 2015 में एक रिपोर्ट छपी थी और उस रिपोर्ट के मुताबिक मोशन सिकनेस एक ऐसी बीमारी है या एक ऐसी स्थिति है जो हर 3 में से 1 व्यक्ति को होती है। और साथ ही उस रिपोर्ट में ये भी पाया गया कि अनुमान आप ये नहीं लगा सकते हैं कि कौन कब इसकी चपेट में आ जाएगा, और इसका कोई सटीक इलाज भी नहीं है। जैसे कि हमने आपको अभी बताया कि मोशन सिकनेस इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर का संतुलन बनाने वाला सिस्टम ठीक से तालमेल नहीं बिठा पाता, और ये सिस्टम मुख्य रूप से कान के अंदर मौजूद होता है जो बैलेंस ऑर्गन यानी कि वेस्टिबुलर सिस्टम से जुड़ा होता है। हमारे शरीर के अंदर ना एक खास तरह का सेंसर होता है जिसे हम रिसेप्टर्स कहते हैं, और ये रिसेप्टर्स बाहरी और अंदरूनी बदलावों को महसूस करके उसकी जानकारी दिमाग तक पहुंचाता है। और जब जानकारी पहुंचती है और अलग अलग जानकारी पहुंचती है तो दिमाग को लगता है कहीं कुछ तो गड़बड़ हुआ है, और जब दिमाग को ये एहसास होता है कि हमारे शरीर के अंदर कोई तो गड़बड़ी हुई है, कुछ जहरीली चीज आ गई है, कुछ हानिकारक चीज आ गई है, तो हमारा दिमाग कहता है कि उल्टी करो और इसे बाहर निकालो। और सफर के दौरान ये उल्टी वाली समस्या या फिर ऐसी परेशानी सभी लोगों में एक जैसी नहीं होती है। कुछ लोगों को ना ये यात्रा शुरू होते ही बेचैनी महसूस होने लगती है, वहीं कुछ लोगों में ये परेशानी लंबे सफर के बाद सामने आती है, और कुछ लोगों को ये परेशानी तब होती है जब वो ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे जाते हैं, पहाड़ी रास्तों से गुजरते हैं या फिर गाड़ी के अंदर दुर्गंध फैली होती है, तो भी लोगों में ऐसी परेशानी आती है। डॉक्टर्स बताते हैं कि हमारे दिमाग के अंदर एक फ्लूइड होता है, और सफर के दौरान जब ये फ्लूइड हिलता है तो उसमें पैदा होने वाली कंपन यानी कि वाइब्रेशन गर्दन तक पहुंचती है, और गर्दन के मूवमेंट के साथ वो कंपन खोपड़ी तक जाती है। ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इस प्रक्रिया से दिमाग में संतुलन बिगड़ता है और इसके कारण चक्कर और बेचैनी जैसी समस्याएं हो सकती है, और जब ये बहुत ज्यादा हो जाता है तो फिर उल्टी भी हो सकती है। तो मोशन सिकनेस का दूसरा कारण ये भी होता है कि जब हमारे दिमाग के अंदर फ्लूइड में कंपन होता है तो भी उल्टी की समस्या हो सकती है। और पहला कारण तो बिल्कुल था ही कि जो संतुलन होता है वो ठीक ठीक नहीं बैठता, दिमाग को आंखें कुछ और बता रही होती है और कान कुछ और बता रहे होते हैं। तो अलग अलग लोगों में अलग अलग वजह से परेशानी देखी जा सकती है, और इन सब के अलावा
आप जब सफर पर निकलते हैं तो उस दौरान आपके पेट की स्थिति कैसी है, ये भी मोशन सिकनेस के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगर आप खाली पेट सफर करते हैं तो फिर आपके पेट की वेगस नर्व, जो कि हार्ट और गर्दन की नर्व से जुड़ी होती है, वो ज्यादा सक्रिय हो जाती है और फिर इसका असर दिमाग और शरीर पर पड़ता है और आपको चक्कर जैसा महसूस होता है। और अगर आप खाली पेट नहीं है, आपने पूरा भरकर भोजन किया हुआ है, यानी कि काफी ज्यादा आपने खाना खा लिया है और उसके तुरंत बाद आप सफर पर निकल गए हैं, तो ऐसे लोगों में भी उल्टी की समस्या हो सकती है। इसलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि जब भी आप सफर पर निकले तो हल्का खाना ही खाएं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल खाली पेट जाएं या फिर बहुत ज्यादा खा लें, हल्का खाकर निकले तो आपके पेट में भी ठीक ठाक संतुलन बना रहेगा और आपको ज्यादा परेशानी भी नहीं होगी। मोशन सिकनेस के बारे में जो अभी तक हमने समझा वो ये कि ये सफर के दौरान होता है, लेकिन कई बार ये सफर से जुड़ी हुई परेशानी नहीं होती बल्कि दिमाग की किसी बीमारी या फिर किसी दवा के साइड इफेक्ट की वजह से भी हो सकता है। ऐसा कुछ मामले में तो मोशन सिकनेस ब्रेन ट्यूमर का भी संकेत हो सकता है। इसलिए अगर आपको बार बार ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है, छोटे छोटे सफर भी आपके लिए मुश्किल हो रहे हैं या फिर आप सारी सावधानियां अपना रहे हैं, इसके बावजूद आपके अंदर मोशन सिकनेस जैसी बीमारी हो रही है, परेशानी हो रही है, तो फिर ये किसी गंभीर बीमारी का भी संकेत हो सकती है। इसलिए अगर परेशानी ज्यादा हो तो डॉक्टर से मिल लेना भी जरूरी होता है। कम से कम आपको तसल्ली हो जाती है कि हाँ चलो कुछ गलत नहीं है। और अब तक हमने बीमारी के बारे में बातें की, बीमारी के कारण के बारे में बातें की, अब हम आपको बताते हैं कि सफर में उल्टी रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो मैंने आपको बताया कि भारी भोजन से बचना चाहिए, खाली पेट भी नहीं जाना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि मोशन सिकनेस के लिए आप कोई दवा इस्तेमाल कर सकते हैं तो बिना डॉक्टर के सलाह के आप कोई भी दवा का इस्तेमाल नहीं करें। अगर जरूरी हो तो उल्टी रोकने वाली टेबलेट ली जा सकती है, लेकिन डॉक्टर की सलाह के बाद ही। और ध्यान रखें कि चलती गाड़ी में नहीं सोएं अगर आपको पहले से ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ता है तो। और अगर बहुत ज्यादा उल्टी हो तो नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करें, ये किसी गंभीर बीमारी का भी संकेत हो सकता है। और ध्यान रखें कि अगर आपको मोशन सिकनेस वाली परेशानी है तो सफर के दौरान आप अपनी नजरें नीचे करके फोन न चलाने लग जाएं या फिर आप किताब पढ़ना पसंद करते हैं सफर के दौरान, तो यहाँ पर भी आपको निराशा ही हाथ लगेगी कि सफर के दौरान आपको किताब पढ़ने से भी बचना होगा ताकि आपकी आंखें आपके दिमाग को संकेत दे पाए कि आप चल रहे हैं, आप स्थिर नहीं है। और आपके कान जो आपके दिमाग को संकेत देंगे, वो संकेत मिलेंगे तो आपका दिमाग भी स्थिर रहेगा। इसके साथ ही आप अपने शरीर की स्थिति को भी स्थिर रखें, यानी कि सिर, कंधे, कमर और घुटने की हलचल थोड़ा कम करें। और अगर आपको परेशानी हो तो आप आगे की ओर मुड़े हुए सीट पर बैठें या फिर सामने की सीट चुनें, ये आपकी परेशानी को थोड़ा कम करेंगे। और अगर संभव हो तो खुद ही आप ड्राइव करें, यानी कि वाहन चलाएं, तो इससे तो बिल्कुल आपका दिमाग, आपके कान, आपकी आंखें, आपके दिमाग तक यही संकेत पहुंचाएंगे कि हमारा शरीर मोशन में है। तो संकेत या संतुलन की वजह से तो मोशन सिकनेस आपको नहीं होंगे फिर। और इसके अलावा निकोटिन से बचें। जो लोग धूम्रपान करते हैं उनमें उल्टी की संभावना ज्यादा होती है। और संगीत तो सबसे अच्छा साथी होता है, कोई भी परेशानी हो, किसी भी तरह की परेशानी हो, संगीत सामने आता है और कहता है मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी परेशानी को कम करने के लिए। एक रिसर्च में पाया गया कि अगर हल्का और सुखद संगीत सुने तो आपको सफर के दौरान मोशन सिकनेस की परेशानी कम होती है। अच्छा, इसके अलावा एक सवाल और आता है कि क्या महिलाओं में मोशन सिकनेस की समस्या ज़्यादा होती है? तो कुछ डॉक्टर्स बताते हैं कि हाँ, महिलाओं में मोशन सिकनेस की समस्या पुरुषों की तुलना में अधिक देखी जाती है और इसके पीछे शारीरिक और हार्मोनल कारण होते हैं। जानकारों का मानना यह है कि जो महिलाओं की जीवन शैली होती है वो पुरुषों से काफी अलग होती है और यही एक वजह होती है कि महिलाओं में मोशन सिकनेस की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। और दूसरा कारण होता है महिलाओं का पोस्चर। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जो घर के कामकाज बहुत देर तक खड़ी रहकर करती है, खासकर रसोई में जब वो खाना बनाती है तो लगातार खड़ी रहती है, तो लगातार खड़े होने से भी ब्लड प्रेशर गिर सकता है जिसकी वजह से मोशन सिकनेस जैसी दिक्कतें बढ़ जाती है। इसके अलावा महिलाओं में हार्मोनल बदलाव नियमित रूप से होते हैं और ये भी एक अहम वजह है मोशन सिकनेस के लिए। और पीरियड्स के दौरान तो शरीर में नमक, पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन लगातार बदलता रहता है जिसकी वजह से भी मोशन सिकनेस जैसी परेशानी। तो मोशन सिकनेस के बारे में आज हमने बहुत सारी बातें की, उम्मीद है कि आप
और अगर आपको ऐसी किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है तो आज जिन भी बातों के बारे में मैंने आपको बताया उन बातों का आप ध्यान रखेंगे और मोशन सिकनेस जैसी परेशानी से आप खुद को बचा पाएंगे। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ ऐसी ही जानकारियों के लिए जुड़े रहिए और फिलहाल के लिए मुझे यानी कि आपके रेडियो दोस्त और होस्ट उमा को दीजिए इजाजत। अपना और अपने अपनों का रखे खास ख्याल। नमस्कार। स्वस्थ रहे हम।

0: देखो नाटक देखो।
1: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
2: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
3: हाँ हाँ हाँ।
1: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
2: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
3: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
1: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
2: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
1: तो सबकी समझ में आ गया ना, खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
2: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
4: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
2: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
2: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
6: उन्नत कृषि। नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 MHz और स्वागत है आप सभी का उन्नत कृषि कार्यक्रम में। ये है FM ग्रीन, जो आपको ले जाता है हरियाली से खुशहाली तक। तो आज जब फिर से एक बार उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम बातें करेंगे अमरूद के परिरक्षित उत्पाद के बारे में, या फिर यूँ कहें कि मौसमी फल जो होते हैं उसका परिरक्षण हम कैसे करें, सारी बातें विस्तार से हम आपको बताएंगे। तो इस विषय को लेकर आज हमारे बीच है अनीता मैम। मैं आपको बता दूं, ये विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं KVK सबौर, और साथ ही सबसे पहले तो मैडम आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में।
7: धन्यवाद अनु।
6: मैम, मौसमी फल के परिरक्षण की आवश्यकता क्यों है, सबसे पहले ये हमारे श्रोताओं को बताएं।
7: सबसे बड़ी बात तो है, जो मौसमी फल होते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। ये इसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। स्वस्थ शरीर के लिए फल का नियमित सेवन काफ़ी आवश्यक है। ये फल जो होते हैं वे विटामिन और खनिज पदार्थ से भरपूर होते हैं। इन्हें विटामिन एवं खनिज का आहार में खजाना भी कहा जाता है। और लेकिन ये फल जो होते हैं वो मौसमी होते हैं
6: जी।
7: वो सिर्फ न किसी विशेष मौसम में ही उपलब्ध होते हैं, और यदि उचित रख रखाव नहीं रखा जाए तो वो शीघ्र ही खराब भी हो जाता है। उस मौसम में भी तुराई के बाद यदि हम सही प्रबंधन ना करें, उचित रख रखाव ना करें, तो वो खराब होना शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि जो डाटा है वो आंकड़ा बताता है कि लगभग 33% फल बिना प्रयोग हुए बर्बाद हो जाता है। और यह हम लोग सभी जानते हैं कि फल का उत्पादन में बहुत खर्च लगता है, और लेकिन उससे काफ़ी कम लागत करके हम उसको परिरक्षित करके उपयोग योग्य बना सकते हैं। परिरक्षित फल का हम वर्ष भर सेवन करते हैं। मान लो जैसे अभी कोई सीजन है, जो कोई अभी उदाहरण ले लेते हैं, अभी अमरूद का सीजन है, तो हम सिर्फ मौसम भर अमरूद का प्रयोग करते हैं, लेकिन यदि उसके हम उत्पाद बना लें तो वर्ष भर उसका प्रयोग हम कर सकते हैं, और साथ ही साथ अनावश्यक जो हमारी बर्बादी हो रहा था वो बर्बादी को बचा सकते हैं। प्लस ये जो हमारा जो स्वास्थ्य है, यदि साल भर उसका हम सेवन करेंगे तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होगा और जो हम पौष्टिक सुरक्षा है वो भी हम हासिल कर सकते हैं। फल का विविध तरह का परिरक्षित उत्पाद जैसे हम अचार, चटनी, मुरब्बा, सुखौता, स्क्वैश, जेली, जैम, ये सब बनाकर घर में आराम से रख सकते हैं। और इन सब के अलावा ये सब उत्पाद को यदि हम अपने प्रयोग के अलावा बेचते हैं तो ये एक अतिरिक्त आय का भी साधन होता है। और ग्रामीण महिलाएं बड़े आराम से इन जो भी मौसमी फल उपलब्ध हो उनको विभिन्न तरह का उत्पाद बना सकते हैं। यदि उनको अपना पेड़ बाग नहीं हो तो वो चूंकि मौसम में सस्ता होता है वो सस्ता खरीद कर भी उसके उत्पाद को बना करके रख सकती हैं और विविध तरह तरीके से अपने व्यक्तिगत उपयोग में या फिर बाजार में बेच करके उसका उपयोग करके फायदा ले सकती।
6: जी जी मैडम, अब बात आती है कि फल परिरक्षण में उपयोग होने वाले परिरक्षक के विषय में जाना, तो क्यों कौन कौन से परिरक्षक होते हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी।
7: हाँ, कुछ जो परिरक्षक है जो कि यदि आप फल सब्जी परिरक्षण में काम करना चाहते हैं, साल भर विभिन्न तरह के जो मौसमी फल हैं उनका प्रिजर्वेशन करना चाहते हैं, परिरक्षण करना चाहते हैं, विविध तरह के उत्पाद बनाना चाहते हैं, तो कुछ परिरक्षक है जिसकी की जानकारी रखना चाहिए और आप आवश्यकता अनुसार उसे मार्केट से ले भी सकते हैं। जैसे कि एक साइट्रिक एसिड है, साइट्रिक एसिड का उपयोग हम जो जैम, जेली, मुरब्बा, स्क्वैश ये सब बनाने में किया जाता है, लेकिन जो साइट्रिक एसिड की जगह पर हम नींबू का जो रस है उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। यदि साइट्रिक एसिड नहीं है तो कोई बात नहीं, यदि आपके पास नींबू का रस है तो नींबू का रस का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह ग्लेशियल एसिटिक एसिड है, ये इसका अचार, चटनी, सॉस ये सब इसका प्रयोग किया जाता है। सोडियम बेंजोएट है, इसका प्रयोग सॉस, चटनी, स्क्वैश तैयार करने में किया जाता है। तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग हम लोग जनरली जो गहरे रंगीन खाद्य पदार्थ होता है उसको परिरक्षण में करते हैं। इसके बाद आता है पोटासियम मेटाबासल्फाइट, इसका जो भी हल्के रंगीन स्क्वैश वगैरह होता है उसमें हम लोग पोटासियम मेटाबासल्फाइट का उपयोग करते हैं। ये मुख्यतः यही चार तरह के परिरक्षक हैं जो कि घरेलू स्तर पर हम लोग यदि फल का परिरक्षण करना चाहें तो इनका उपयोग होता है,
6: कर सकते हैं। जी, तो परिरक्षित उत्पाद को रखना बहुत जरूरी होता है मैडम, अगर सही तरीके से नहीं रखा जाए तो ये खराब भी हो सकता है, तो कैसे रखें, क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए इन उत्पादों को रखने में।
7: बिल्कुल बिल्कुल, ये जो परिरक्षित उत्पाद है इसके लिए जो हम जिसमें हम भंडारण इसका करेंगे उस बोतल को उसको बहुत अच्छे से साफ करना बहुत जरूरी है। तो उन बोतलों को हम लोग क्या करते हैं, पहले एक बड़े से बर्तन में, जितना आपके पास बोतल है उसके अनुसार वो बड़े से बर्तन में उसका ढक्कन को हटा करके और ढक्कन हटा कर उसमें ढक्कन डाल देते हैं और ढक्कन सहित तो उसको लगभग आधा घंटा उबालते हैं, फिर उन्हें अच्छी तरह से धूप में सुखाते हैं और बोतल जब सूख जाता है तो उसके बाद ही उसमें हम लोग उत्पाद को रखते हैं और हल्के गर्म अवस्था में ही उसको हम लोग सील भी करते हैं। मान लीजिए यदि आपके पास सीलिंग मशीन उपलब्ध नहीं है तो पिघले हुए मोम में मोम पिघला जो दिवाली वगैरह में जो मोम बच जाता है या मार्केट में भी मोम मिलता है उस मोम को ले आइए, उसको पिघला दीजिए और पिघले हुए मोम का उपयोग करके हम लोग बोतल को ढक्कन को बंद करते हैं तो वो बिल्कुल शील्ड हो जाता है और हवा का आदान प्रदान नहीं हो पाता है उसके अंदर और हमारा उत्पाद खराब नहीं होता है। इसके अलावा यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जब हम लोग बोतल में उत्पाद को भरते हैं तो लगभग एक इंच जगह ऊपर खाली रहना चाहिए और मान लीजिए कभी किसी तरह का उसमें अशुद्धि रह जाता है तो फर्मेंटेशन वगैरह होता है तो उससे बोतल टूटे नहीं, इसलिए हमेशा ऊपर में एक इंच का जगह आपको खाली रखना चाहिए। और इस तरह से आप बोतल में यदि साफ सुथरा करके भंडारित करते हैं तो उत्पाद आपका अच्छा रहेगा। लेकिन यदि मान लीजिए धूप नहीं है, आप नहीं सुखा पा रहे हैं, तो उसमें उस कंडीशन में हम लोग जो आपको एक पोटासियम मेटाबासल्फाइट है उसके घोल से भी बोतल को हम लोग अच्छे तरह से गर्म पानी से धो लेते हैं तो फिर वो भी काम हो सकता है, लेकिन बेहतर होगा कि हम गर्म पानी में खौला करके तेज धूप में उसको सुखा लें। इसके अलावा फल संरक्षण में ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो जिस फल का भी हम लोग संरक्षण करें उसका जो परिरक्षित उत्पाद बनाना चाहते हैं वो स्वस्थ हो, अच्छे किस्म को हो और सड़े गले या चोट खाए फल का प्रयोग ना करें। उसके बाद साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें, लोहे का चाकू या बर्तन का प्रयोग ना करें, संरक्षित उत्पाद को हाथ व गीले चम्मच से ना निकालें और बर्तन जिसमें या जार जिसमें कि आपको उत्पाद उसको बार बार ना खोलें और बोतलें जो है हमेशा साफ धुली व सूखी रहना चाहिए। और जो मान लीजिए कि कोई बोतल का ढक्कन है यदि आप पुराना बोतल उपयोग कर रही हैं उसमें यदि छेद हो या जंग लगा हो तो उसका प्रयोग नहीं कीजिए, उसके जगह पे प्लास्टिक का जो सिंथेटिक फ्लैप है उसका उपयोग कीजिए। फिर प्लास्टिक या धातु के बर्तन में परिरक्षण ना करें, इसके लिए कांच की बोतल इस्तेमाल करना चाहिए और हमेशा एयर टाइट बोतलों का ही इस्तेमाल करें।
6: जी मैम, अब बात करते हैं अमरूद के बारे में, तो अमरूद के परिरक्षित उत्पाद के बारे में बताएं, जैसे कि अमरूद के जेली भी बनाए जाते हैं, तो कैसे बनाए जाते हैं, क्या कुछ तरीके हैं उसके बारे में थोड़ी।
7: अमरूद का तो जो मुख्य रूप से जो जो प्रसिद्ध उत्पाद है जो कि जनरली यूज करते हैं वो अमरूद की जेली है। और अमरूद की जेली हम लोग उसके जो जूस है उससे हम लोग बनाते हैं। अमरूद की जेली बनाने के लिए हम लोग पूर्ण रूप से डेवलप मैच्योर विकसित फल का चयन करते हैं, जो कि बिल्कुल जिसको कि हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं डम्भक फल, वो डम्भक फल हमें लेना चाहिए। और इसको खूब या खूब पका भी अमरूद नहीं होना चाहिए, कच्चा भी नहीं रहना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अमरूद का जो फल हो वो डम्भक होना चाहिए। उसको थोड़ा सा काट के यदि हम खाएं तो वो थोड़ा मीठा स्वाद लगना चाहिए उसका, है ना। इसके बाद उस अमरूद को अच्छी तरह से पानी से हम लोग धो लेते हैं और गोल गोलाई में उसके टुकड़ों को काटते हैं। फिर इसमें जो बर्तन में हम उसको उबाल रहे हैं उस बर्तन में अमरूद के टुकड़ों को डाल देते हैं, उसके ऊपर से पानी इतना डालते हैं कि वो अच्छे से डूब जाए। उसके बाद उसको हम लोग पकाते हैं, जब वो पूरा सीज जाता है, पक जाता है, हम हाथ से टच करके देखते हैं कि अमरूद के टुकड़े अच्छी तरह से गलकर पानी में मिल जा रहा है, तब उसको हम लोग कपड़े से उसको छान करके
6: मतलब पेस्ट बन जाता है।
7: नहीं पेस्ट नहीं, उसको ये ध्यान रखना है कि जब हम लोग अमरूद को उबाल रहे हैं तो उसको चलाना नहीं है, उसमें अच्छा पेस्ट नहीं बनना चाहिए। तब जो यदि पेस्ट बनेगा तो अमरूद का जो जेली बनेगा वो थोड़ा गंदा धुंधला टाइप का बनेगा। यह ध्यान रखना है कि अमरूद उसका टुकड़ा उसमें गले नहीं, टूटे नहीं, लेकिन वो पक जाए गलने लायक। उसको हाथ में निकाल करके हम ऐसे देखेंगे वो बिल्कुल ऐसे गल जाता है तो हम समझते हैं कि ये हमारा रेडी हो गया है, ठीक है। लेकिन उसको बार बार चलाना नहीं है, यदि उसको बार बार चलाएंगे तो वो टूटेगा तो हमारा जेली का गुणवत्ता खराब होगा, वो थोड़ा धुंधला दिखेगा, ट्रांसपेरेंट जेली नहीं बनेगा, है ना। और बीच बीच में हल्का सा चलाना है कि वो पेंदा में वो सटे नहीं, जले नहीं, आपका जो अमरूद है टुकड़ा है वो जले नहीं, उस तरह से उसको हल्का सा उसको चलाना है बीच बीच में
6: जी।
7: इसके बाद अब इस टुकड़ों को हम लोग अच्छे से कपड़े से छान लेते हैं। छानने के क्रम में यह ध्यान रखना चाहिए कि रस जितना देर लगे उतना देर आपको अपने से लगने दीजिए रस को चूने में, उसको दबा करके रस निकालने की कोशिश नहीं कीजिए।
6: अच्छा,
7: वो जनरली से गांव में कोई मेज है, टेबल है, टेबल को उलट दीजिए, उसका जो चारों पाया है उसमें कपड़े को बांध दीजिए और उसके नीचे एक बड़ा सा बर्तन रख दीजिए और जो कपड़े को बांधे हैं उसमें आप अमरूद के टुकड़े को डाल दीजिए, टप टप धीरे धीरे धीरे जूस नीचे जो बर्तन रखे उसमें गिरेगा और उसको रस को गार करके नहीं निकालना। इस बात को बहुत ध्यान से रखना है क्योंकि यह भी यदि आप करेंगे तो भी आपका जेली का गुणवत्ता सही नहीं होगा, जेली थोड़ा गंदला हो जाएगा, ठीक है। और चाहे आपको जितना समय लगे उसको अपने से होने दीजिए, ठीक है। उसका जब पूरा रस निकल गया तो अब रस का मात्रा को ज्ञात कर ले, नाप लें कि कितना रस है। यदि आप उसके पेक्टिन के लिए टेस्ट करना चाहते हैं तो पेक्टिन टेस्ट कर सकते हैं। पेक्टिन का टेस्ट करने के लिए शीशे का ग्लास या परखनली लें, घर में तो शीशे का ग्लास ही रहता है, वो ले लीजिए। उसमें एक चम्मच रस लेते हैं, उन पर रस का दुगुना स्प्रिट डाल देते हैं। रस जब मिल जाए तो उसमें बाहर टेबल पर उड़ेल देते हैं। गिरा हुआ जो उसमें अवक्षेप देखेंगे, जो अवक्षेप बना है, यदि अवक्षेप बड़ा हो तो जूस में 900 ग्राम, यदि साधारण हो तो 700 ग्राम और टूटा फूटा पतला हो तो 400-500 ग्राम के लगभग चीनी डालते हैं। मान लीजिए आप इतना नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप यह देखिए कि रस में अपने हाथ से लेके देखिए चटचटापन है क्या नहीं। यदि रस में चटचटापन है तो बरसाती अमरूद में, जैसे कहीं बरसात अमरूद का समय है, तो जनरली आप यह ध्यान रखिए कि 500 से 600 ग्राम चीनी हम लोग एक लीटर जूस में देंगे। यदि आपके पास यह साधन है कि यदि हम पेक्टिन टेस्ट कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो फिर ये इतना थोड़ा चीनी की मात्रा हम लोग 500 से 600 ग्राम डालेंगे, या नहीं तो आप अलग से पेक्टिन थोड़ी मात्रा में डाल सकते हैं तो आपका अमरूद का जेली सही जमेगा, ठीक है। इसके बाद आप, हम लोग जो चीनी की मात्रा दे के उसको पकाते हैं, जब जूस, और एक थर्मामीटर मिलता है, उस थर्मामीटर को से आप उसका टेम्परेचर को माप सकते हैं, जब जूस का तापमान लगभग 100 डिग्री तक पहुँच जाए तो उसमें हम लोग जितना चीनी है उसमें हम लोग डालते हैं, चीनी और रस डाल करके उसको उबालते हैं और 100 डिग्री पहुंच जाए, मान लीजिए नहीं थर्मामीटर है, तो जब अच्छे से वो खोलने लगे तो समझिए वो टेम्परेचर पहुंच गया है। तो 4 से 5 ग्राम साइट्रिक एसिड प्रति केजी के हिसाब से हम लोग जूस में मिला देते हैं। इसके बाद उसका जब टेम्परेचर 106 से 107 डिग्री पहुँच जाता है तो हम उसको उतार लेते हैं, और यदि मान लीजिए थर्मामीटर नहीं है तो कैसे उतारेंगे, तो उसका है कि एक ग्लास लीजिए, शीशे का ग्लास, उसमें पानी डाल दीजिए और उसमें आप जो जेली पका रही हैं उस जेली को थोड़ा डालिए, यदि वो उसमें घुलेगा नहीं, नीचे जाके जम जाएगा और सॉफ्ट रहेगा, तो इसका मतलब वो रेडी है। यदि इससे ज़्यादा पका देंगी तो जेली जम जाएगा, कड़ा हार्ड हो जाएगा, इसलिए उतारने का तापमान बहुत ध्यान से देना होता है कि इस तरह से हम लोग उसका चेक करें। दूसरा है कि यदि प्लेट में उसको डालेंगे तो उसके चारों तरफ पानी का लेयर नहीं होना चाहिए, तो भी हमारा जेली तैयार हो गया। तो इस तरह से हम लोग जांच करेंगे कि हमारा जेली का उतारने लायक हुआ कि नहीं हुआ है। ये दो पॉइंट पे आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा कि हम जेली का अंतिम बिंदु का कैसे जांच करें, दूसरा कि जब जेली को चला रहे हों या फिर जब जेली का जब अमरूद का रस निकाल रहे हैं, पका रहे हैं जब, उस वक्त और रस जब निकाल रहे हैं तो उस वक्त उसको दबाए नहीं। ये दो चीज़ का जेली की गुणवत्ता को सही रखने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आप इसको उतार करके और जेली को स्वच्छ चौड़ी मुंह वाले बोतल के शीशे में भर देते हैं, और उसके बाद उसमें मोम को पिघला करके उसके ऊपर डालते हैं ताकि उसका एक लेयर हो जाता है, और फिर जब मोम जमने वाला हो, देखिए जब जेली ठंडा जाए तब हम लोग मोम डालते हैं, और जब मोम जमने से पहले, मोम को पूरा जमने नहीं देंगे, मोम यदि पूरा जम गया तो साइड से छोड़ देता है, मोम को पूरा जमने के पहले उसके ढक्कन को लगा देते हैं और किसी सूखे व ठंडे जगह पर उसको हम लोग भंडारित करते हैं। इस तरह से हमारा अमरूद का जेली तैयार हो जाता है
0: जी।
7: इसके अलावा यदि अमरूद का आप जो जेली का जो ऊपर आपका पल्प बच गया, इसका यदि कुछ आप बनाना चाहते हैं तो उसका एक दिन के लिए उसको छोड़ दें, और एक दिन उसे छोड़ने के बाद उसको आटे के साथ, जो भी आटा आपके पास उपलब्ध हो, शक्तिमान मक्का हो या फिर मिश्रित आटा हो, उसके साथ जैसे आप घरों में खजूर बनाते हैं उस तरह से चीनी वगैरह या गुड़ डाल करके छान के बना लेते हैं तो वो बहुत टेस्टी लगता है, बच्चे बहुत प्रेम से खाते हैं और बहुत पौष्टिक भी है। इसके अलावा आपके पास यदि बेकिंग की सुविधा है तो उसके आप बिस्किट भी इसका बना सकती हैं, और यदि इसके किसी मच्छरदानी में डाल करके उसके बीज को हटा देते हैं तो उसका जो पल्प बचा, उस पल्प से को आप चीनी के साथ पका करके जैम के रूप में ही बना सकते हैं, और पूरे उत्पाद को बीज सहित यदि उसको आप पीस देते हैं तो उसको भी आप चीनी या गुड़ के साथ पका करके संरक्षित करके रख सकते हैं, ये काफ़ी फायदेमंद है। मतलब कि यदि आपके पास पशु है तो ये जो बचा है उसको आप पशु को भी दे सकते हैं, तो किसी चीज़ को फेंकने की आवश्यकता नहीं है, उसके उत्पाद बना करके आप इसका प्रयोग कर सकते हैं
6: जी। तो किसान भाइयों और हमारी महिलाओं खास तौर पर आप भी ये बना सकते हैं अपने घर पर ही। और तो आज का हमारा विषय था अमरूद का परिरक्षित उत्पाद, तो इसके बारे में आज आपने जाना। साथ ही मैडम ने बहुत सारे ऐसे जो हैं तरीके बताए हैं जिससे आप किसी भी फल का परिरक्षण कर सकते हैं, तो यहाँ पर बहुत अच्छी जानकारी देने के लिए मैडम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी पर, तब तक के लिए नमस्कार।
8: उन्नत कृषि आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे किसान भाई बहनों को संबोधित विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले एक ऐसे फसल के बारे में जो खास तौर से आजकल के जलवायु परिवर्तन के बारे में बात करें तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सावा मिलेट की उन्नत खेती के बारे में, और इस बारे में विस्तार से बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर महेश कुमार सिंह। सर आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट, आप हैं शस्य विज्ञान विभाग से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
9: बहुत बहुत धन्यवाद उमा जी।
0: सर सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि क्या जब हम सावा मिलेट्स की बात करते हैं तो ये जलवायु अनुकूल फसल है?
9: देखिए सावा मिलेट्स जिसको हम बार्नयार्ड बोलते हैं, ये जलवायु अनुकूल फसल है। जलवायु अनुकूल का मतलब ही है कि ऐसी सभी फसलें जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट कम हो, जो कम पानी में आसानी से उग जाएं और उच्च तापमान में भी चल सके, क्योंकि मौसम परिवर्तन में सबसे अधिक समस्या हो रही है तापमान का बढ़ना और दूसरा पानी की कमी होना। इस वर्ष अगर हम बात करें तो देखिए कि इस वर्ष एल नीनो के प्रभाव से हमारे बिहार राज्य में लगभग 40% बरसात की कमी दर्ज की गई है। अर्थात जो बरसात आपके क्षेत्र में पिछली बार हुआ है या पिछले 30 वर्षों में हो रहा है उसकी तुलना में 40% कम होगा, अर्थात 2/3 से भी बरसात कम होगा। तो ऐसे समय में क्या हो संभावनाएं हैं कि जिन किसान भाई लोगों ने धान की खेती लगाया है या लगाने जा रहे हैं, विशेषकर ऊपरी जमीन या मध्यम जमीन में, उनकी धान की खेती प्रभावित होगी। प्रभावित होने का तात्पर्य है या तो उसका उत्पादन कम होगा, या कहीं कहीं जो विशेष ऊपरी जमीन होगी उस जमीन में जल धारण की क्षमता भी नहीं होगी, वहां धान की फसलें सूख भी सकती हैं। तो उत्पादन कम होने से धान की खेती इस वर्ष घाटे की सौदा हो सकती है, विशेषकर ऊपरी एवं मध्यम जमीन में असिंचित अवस्था में। जहां सिंचाई की सुविधा है वहां हम धान की सिंचित रोपाई करेंगे, लेकिन धान वहां भी इतना ज्यादा पानी का डिमांड हो सकता है कि धान बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होगा। तो ऐसे सभी असिंचित क्षेत्र जो ऊपरी जमीन है, मध्यम जमीन है, जहां जल का जमाव नहीं होता है, उनके लिए जलवायु अनुकूल फसलें जैसे रागी, सावा, कोदो, चीना, कुटकी, इन सभी फसलों को हम लोग श्री अन्न की फसलें बोलते हैं। 2023 से हम लोग हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वैश्विक लेवल पे इन सभी फसलों को श्री अन्न की फसलें बोलते हैं। तो ये सभी फसलें जलवायु अनुकूल हैं, अर्थात एडवर्स कंडीशन में अर्थात विपरीत परिस्थितियों में भी ये आपको मुनाफे का सौदा करती हैं। आप इनको बो दीजिए, ये आपको कुछ न कुछ रिटर्न दे के ही जाएंगे। ये फसलें देखा जाए तो जलवायु अनुकूल ही नहीं, ये पारिस्थितिक अनुकूल भी हैं, क्योंकि हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में हम लोग भी शामिल होते हैं, ह्यूमन बींग भी होता है, एनिमल भी होता है, सब कुछ शामिल है। तो देखा जाए तो इन फसलों को लगाने से हमारा पर्यावरण भी स्वस्थ है, पर्यावरण को हानि भी कम होगी, खेत की उर्वरता का लाभ भी कम होता है, ग्रीन हाउस गैसेस भी कम निकलती हैं, इनको जल भी कम चाहिए, इनको खाद भी कम चाहिए। जब खाद कम देंगे, जल कम देंगे तो हमारा जो भूमिगत प्रदूषण है वो भी नहीं होगा, नाइट्रेट का उत्सर्जन भी नहीं होगा, ग्रीन हाउस गैस भी कम होगी और हमारा मानव स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, क्योंकि इनका जब हम सेवन करते हैं तो ये विभिन्न प्रकार के जो पोषण हैं, प्रोटीन, क्वालिटी प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, विभिन्न प्रकार के मिनरल्स जैसे कैल्शियम, जिंक, मैग्नीज, कॉपर इत्यादि से परिपूर्ण हैं। तो इसीलिए हमारे जो ऋषि मुनि अपने पुराने समय में इन्हीं सभी कंदन फसलें, इनको बोलते हैं कंदन फसलों को, का सेवन करते थे, जिनको आज हम श्री अन्न की फसलें कह रहे हैं, जिसमें सावा भी शामिल है, इन सब का सेवन करके इन सब के ऊपर आधारित थे। और देखिए कि वो लोग का औसत आयु जो है 250 वर्षों की होती थी। तो देखा जाए तो ये बिल्कुल पारिस्थितिक अनुकूल है, इकोसिस्टम के अनुकूल है। तो इस वर्ष हमारे पास चूंकि एल नीनो का प्रभाव की वजह से बरसात कम हो रही है, इसलिए किसान भाइयों इसकी खेती को आप अपना करके ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते हैं।
0: जी सर, जैसे कि आपने बताया कि ये जलवायु अनुकूल तो है ही, साथ ही हमारी आय को बढ़ाता है और सबसे बेहतर बात कि हमारे स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। तो ऐसे में श्री अन्न और खास तौर से जब हम आज बात कर रहे हैं सावा मिलेट्स के बारे में, तो ये बहुत फायदेमंद हो जाता है। तो सर अभी सवाल ये है कि अब जो किसान भाई बहन अगर खेती करना चाहते हैं सावा मिलेट्स की, तो वो खेती कब करें और कैसे करें?
9: हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जैसा कि देखिए, सावा मिलेट्स एक ऐसा फसल है जिसको हम अपने बिहार राज्य में वर्ष में दो बार अच्छे से बुआई कर सकते हैं, क्योंकि इसके जितनी भी प्रजातियां हैं सभी प्रजातियां 90 दिनों से कम अवधि में, लगभग 85 दिन में पककर के तैयार हो जाती हैं, 80 से 85 दिन में पक के तैयार हो जाती हैं, अर्थात 3 महीने की बुआई से 3 महीने के अंदर ही आपके ये कट के तैयार हो जाती हैं। तो हम लोग देखिए, इसकी बुआई इवन मसूर है, चना है, सरसों है, और कुछ क्षेत्रों में गेहूं की कटाई के बाद भी गर्मी में इसका उपयोग बुआई कर लेते हैं। तो गर्मी में भी एक अच्छा समय होता है, 15 मार्च से लेके 15 अप्रैल के बीच में हम बुआई कर सकते हैं। दूसरा एक सबसे अच्छा समय चल रहा है जिसको हम खरीफ की फसल कहते हैं, तो खरीफ में हमको जो ही बरसात का पानी मिल जाता है हम बुआई कर दें। अभी देखिए इस बार बरसात थोड़ा सा लेट हो रहा है, तो अभी इसका उपयुक्त समय है, अभी हम आज के डेट से इसकी बुआई करें और 15 जुलाई तक इसकी बुआई कर लेंगे तो हमको ज्यादा लाभ मिलेगा। अब प्रश्न उठता है कि कैसे करें। तो देखिए, सावा मिलेट एक बहुत ही मोटा अनाज की फसल है, अर्थात इसको हम कहीं भी थोड़ा बहुत जुताई करके सीड को किसान फेंक देता था तो भी कुछ न कुछ उत्पादन दे देता था। आज हम लोग इसको थोड़ा सा वैज्ञानिक तरीके से करने की सलाह देते हैं। तो इसके लिए होता है कि हम इसकी खेत की 2 से 3 बार अच्छे से जुताई कर लें, खेत जो है ऐसा कर रखें जिसमें पानी का कभी जमाव ना हो, ऊपरी जमीन में ही बुआई करें। तो खेत को अच्छे से तैयार करके अब हम इसमें बीज दर की बात करें तो प्रति एकड़ मात्र 4 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है, और किसान भाई इसकी बुआई जो करें वो बेहतर हो कि कतारों में करें। कतार से कतार की दूरी हम लोग कहते हैं 22.5 सेंटीमीटर, अर्थात लगभग 9 इंच की दूरी पर कतार से कतार की दूरी रखना है, और गहराई जो बीज का हो उसका विशेष ध्यान देना है कि किसी भी दशा में

0: और जिन क्षेत्रों में थोड़ा बहुत जल जमाव की समस्या होती है वहां आजकल हम लोग क्या करते हैं, चौड़ी चौड़ी बेड बना देते हैं। बेड की चौड़ाई हम लोग लगभग 90 सेंटीमीटर रखते हैं, उस पर चार लाइन समा की जाती है, जिसको हम लोग BBF मेकर बोलते हैं, ब्रॉड बेड एंड फरो मेकर। तो जिन किसान भाइयों के पास रेज बेड मेकर या BBF मेकर है, वो लोग थोड़ा सा रेज बेड पर या BBF पर इसकी बुआई करें और वहाँ भी स्पेसिंग 9 से 10 इंच की दूरी पर कतार से कतार में बुआई करें। उससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर किसी दिन बहुत ज़्यादा बरसात हो जाती है तो जो BBF 90 सेंटीमीटर या BBF 150 सेंटीमीटर वाइड हम बेड बनाते हैं, तो उसके बाद 30 सेंटीमीटर का फरो भी होता है, तो जो बरसात ज़्यादा होगा तो बेड पर का पानी फरो में जाते हुए कूड़ों में जाते हुए वो बाहर निकल जाती है। तो इससे कहता है कभी भी पौधे के जड़ के पास जल जमाव नहीं होता, उससे फसल का उत्पादन जो है 20-25% बढ़ जाती है और कम खाद में 25% खाद भी कम देना पड़ता है उसमें। तो बेहतर होगा हमारे बिहार राज्य के सभी जिलों के किसानों से मैं जो है निवेदन करूंगा कि हो सके तो इसको रेज बेड या बीबी ब्रॉड बेड एंड फरो पर ही बुआई करें तो इससे ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब बात आती है इसमें जो है इसका कौन कौन सी प्रजातियां कल सिलेक्शन करें। तो देखिए प्रजातियों के जब सिलेक्शन की बात करते हैं तो अभी तक हमारे बिहार किसी विश्वविद्यालय में हम लोग बहुत से लोकेशन पर रिसर्च कर रहे हैं, अभी हम लोग भी अपनी प्रजातियों को निकालने के स्थिति में आ चुके हैं, एक साल में बाद हमारी प्रजातियां आ जाएंगी। लेकिन बाहर की जो प्रजातियां हम लोग टेस्ट किए हैं उसमें अधिक उत्पादन देने वाली एक प्रजाति है DHBM 23-3। ये प्रजाति इतनी अच्छी है कि इसकी उत्पादन क्षमता 12 क्विंटल प्रति एकड़ है और मात्र 85 दिन में पक्के तैयार हो जाती है। दूसरी प्रजाति राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय समस्तीपुर से निकली है, जिसको हम बोलते हैं RAU 3, और अगला प्रजाति है RAU 9। तो ये दोनों प्रजातियां राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय से निकली हुई हैं और इनकी उत्पादन क्षमता है करीब 9 क्विंटल प्रति एकड़ तक, तो इसको भी लगा सकते हैं और औसतन ये 85-86 दिन में पक्के तैयार हो जाती हैं। और कुछ प्रजातियां हैं बाहर की, VL 207, VL 172, ये दोनों प्रजातियां भी लगभग 9 क्विंटल प्रति एकड़ की उत्पादन देती हैं और लगभग 85 दिन में पक्के तैयार हो जाती हैं। VL 29 भी एक सावा की अच्छी प्रजाति है, जिसकी उत्पादन क्षमता करीब करीब 10-11 क्विंटल है और ये बहुत ही हाई यील्डिंग है, इसकी भी प्रजाति कहीं से भी मिल जाए किसान भाइयों को तो लगा सकते हैं, तो VL 29 भी ले सकते हैं और इसका उत्पादन क्षमता है करीब 10 क्विंटल प्रति एकड़ और ये पक कर तैयार होती है लगभग 88 दिन में। तो इस तरह से सावा की जो 5-6 प्रजातियां हैं सिर्फ इन्हीं को लगाएं, और वैसे तो बहुत सी प्रजातियां लेकिन कम उत्पादन वाली प्रजातियों को न लगाएं।
1: जी सर, अगर हम खरपतवार प्रबंधन की बात करें तो खरपतवार प्रबंधन किस प्रकार से किया जा सकता है?
0: देखिए सावा मिलेट्स चूंकि एक तरह से ड्राई लैंड की फसल है, वर्षा आधारित फसल है, तो इस सभी फसलों में खरपतवार का ज्यादा अतिक्रमण होता है। खरपतवार का समय पर नियंत्रण नहीं किया जाता है तो उत्पादन में भारी गिरावट हो जाती है। इन फसलों को कोशिश करना चाहिए कि बुआई के 10 दिन बाद से लेकर 35 दिन तक खेत जो है खरपतवार से मुक्त रहे। तो उसके लिए बहुत सी प्रजातियां, बहुत सी विधियां हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग खेत की तैयारी अच्छे से करें। अगर हो सके तो गर्मी में अगर हम खेत को 7-8 दिन जोत करके सूखने के लिए छोड़ देते हैं तो बहुत से खरपतवार जो पेरेनियल वीड्स हैं, बहुवर्षीय खरपतवार हैं, उनकी जो जड़ें हैं, सकर्स हैं, वो सब नष्ट हो जाती हैं धूप की वजह से। उसके बाद अगर हम देखें तो उसकी बुआई करें, और बहुत से हमारे ड्राई लैंड वीडर हैं जैसे कि सिंह हैंड हुआ है, शर्मा हैंड हुआ है, आजकल क्या है कि 20-22 हज़ार रुपये में जो पावर वीडर आ रहे हैं उसका भी उपयोग करके हम कतारों के बीच में मैकेनिकल वीडिंग कर सकते हैं। अगर हमें केमिकल उपयोग करना है तो बुआई के तुरंत बाद हम लोग हर्बिसाइड है पेंडीमिथिलीन, इसका उपयोग करते हैं। उसके लिए 750 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से देते हैं। अगर हम किसान भाइयों के शब्दों में बोलें तो प्रति टंकी पानी में लगभग एक टंकी में 15 लीटर पानी होता है, तो आपको 30 ml पेंडीमिथिलीन डालना है, 30 ml पेंडीमिथिलीन प्रति 15 लीटर पानी में डालना है, और एक एकड़ में करीब 8-9 टंकी पानी या 8-10 टंकी पानी उपयोग में करें। तो इस तरह से बुआई के 24 घंटे के भीतर, अर्थात आपने बुआई कर दिया, उसके तुरंत बाद आप इस पेंडीमिथिलीन को 30 ml प्रति 15 लीटर की टंकी में घोल करके आप स्प्रे कर दीजिए, तो अगले 7-8

0: और दिन तक खरपतवार नहीं आते हैं। फिर उसके बाद इसमें एक दवा है 2,4-D। 2,4-D तीन ग्रुप में आती है, जो है एक 58% का होता है, एक जो है आपका करीब कम डोज का होता है 30% के आसपास। तो अब हमको देखना है कि हम कौन सा, एक पाउडर वाला होता है 80% का, तो अगर हम 58% वाला लेते हैं बाजार से तो उसका करीब 22 ml प्रति टंकी पानी यानी 1.5 ml प्रति लीटर की दर से देना है, और बुआई के 20 से 22 दिन पर हमें स्प्रे कर देना है। इससे क्या होगा, मुख्य रूप से जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और सकरी पत्ती वाले जो खरपतवार बचते हैं या जो थोड़ा बहुत और खरपतवार बचते हैं उसको हमें 2-4 लेबर लगा करके मैनुअली निराई करनी होती है। क्योंकि ये सभी फसलें जो है हमारे मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी होती हैं, इसलिए इसमें हम बहुत ज़्यादा हर्बिसाइड का प्रयोग करें या केमिकल का प्रयोग करें तो थोड़ा सा उचित नहीं होता है, इसलिए कम से कम हमें हर्बिसाइड का प्रयोग करना है। तो ये जो हमने विधि बताई, इस तरह से हम खरपतवार का कुछ हद तक प्रबंधन कर सकते हैं, बचा खोचा हमें मैनुअली ही मानव द्वारा खरपतवारों को निराई करके से बाहर करना है।
1: जी सर, अगर हम उर्वरक प्रबंधन की बात करें तो सावा मिलेट्स में उर्वरक प्रबंधन किस प्रकार किया जा सकता है?
0: ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जितने भी ये हमारी श्री अन्न की फसलें हैं इनमें कम खाद कम पानी की जरूरत होती है। अब ये देखिए कि कम खाद कम पानी में आपको ज्यादा पोषण देती हैं, इसीलिए इनके पोषण वैल्यू को ध्यान में रखते हुए इनका नाम सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने पोषक अनाज रखा, फिर इनके महत्व को और देखते हुए इनको थोड़ा और सम्मान दिया गया, इनका नाम 2023 में श्री अन्न रखा गया। तो आज के डेट में हम श्री अन्न कहें या पोषक अनाज कहें या मोटा अनाज कहें, सब एक ही है, लेकिन मोटा अनाज अब कहने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं से इनके सम्मान को धूमिल करने के बराबर है, इसलिए श्री अन्न कह करके ही इनको हम थोड़ा सा सम्मान दें। तो जो श्री अन्न की फसलें जिसमें सावा भी शामिल है, इसमें जैसा हमने पहले कहा कि कम खाद की जरूरत पड़ती है, तो देखा जाए तो प्रति हेक्टेयर मात्र 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 25 से 30 किलोग्राम फास्फोरस और 25 किलोग्राम पोटाश की जरूरत पड़ती है। अगर किसान भाइयों को हम बोलें तो अपने फसल में ये लोग 1 बोरी यूरिया, 1 बोरी DAP और 0.5 बोरी पोटाश प्रति एकड़ व्यवहार करें। पोटाश एवं फास्फोरस की पूरी मात्रा बुआई के समय खेतों में कतारों के बीच में दें या खेतों में मिला करके जुताई कर दें, जबकि नाइट्रोजन को हम 2 भाग में स्प्लिट करेंगे, 2 भाग में बांट के देंगे। पहला नाइट्रोजन यूरिया के माध्यम से, जैसे हमने बोला 1 बोरा यूरिया पर्याप्त हो जाता है, तो 25 किलोग्राम प्रति एकड़ बुआई के जो है 20 से 22 दिन पर, अगला 20 किलोग्राम हम बुआई के लगभग 50 दिन बाद जब इसमें बालियां निकलनी होती हैं, बालियां निकलने के करीब 1 महीने बाद ये पक्के तैयार हो जाते हैं। अगर 50-52 दिन पर बालियां निकल रही हैं तो 82-84 दिन पर ये पक्के तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से यूरिया को कम से कम 2 बार में बांटना है। तो किसान भाइयों, आपके लिए अगर हम थोड़ा सा आपकी भाषा में बात करें तो 1 बोरा यूरिया, 1 बोरा DAP और 0.5 बोरा पोटास प्रति एकड़ आपको देना है। पोटास और DAP की पूरी मात्रा बुआई के समय देना है, खेतों में मिला देना है, जबकि यूरिया का पहला डोज आपको 25 किलोग्राम से प्रति एकड़ देना है बुआई के 20 से 22 दिन पर। इससे देने से कल्ले और टीलर अच्छे निकलते हैं और ग्रोथ अच्छा होता है। दूसरा डोज देना है जब बालियां निकलने लगे, मतलब बुआई के लगभग 50-52 दिन पर, तो अच्छा आपको इसका लाभ मिलता है, उत्पादन अच्छी होती है। और मैं किसान भाइयों से बताना चाह रहा हूं कि हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय में सावा की जो अच्छी प्रजाति है DHBM 23-3, इसका बीज उपलब्ध है। इसकी उत्पादन क्षमता है 10 से 11 क्विंटल प्रति एकड़, मात्र 85 दिन में पक्के तैयार होने वाली प्रजाति है DHBM 23-3। इसका बीज यथाशीघ्र हमारे यहाँ से प्राप्त कर लें और ये बीज हम प्रगतिशील किसानों को निःशुल्क देंगे। दूसरी प्रजाति हमारे पास VL 29 भी है, इसका सीड थोड़ा कम है, लेकिन जो भी हमारे पास 10-20 किसान अभी आ जाएंगे उनको भी हम फ्री में ये बीज अभी देंगे, अपने खेतों पे लगाएं और लाभ उठाएं। धन्यवाद।
1: जी सर, सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि श्री अन्न की खेती किस प्रकार से किसान भाई बहन कर सकते हैं और ये बहुत ही उपयोगी है जैसा कि आपने बताया। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप सावा मिलेट्स की खेती करेंगे और आप अधिक मुनाफा भी कमाएंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। कृषि।
2: नमस्ते क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
3: जी
2: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
3: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
2: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
5: कौन सी कहानी टीकी?
4: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
6: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
4: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
5: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
4: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
7: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, A&M दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
4: सुनो सुनो सुनो सभी एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात, बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
8: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
4: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
7: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, A&M दीदी या नजदीकी

0: करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
3: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
2: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
3: आपकी सेहत की बातें,
2: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
3: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
2: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
3: वो कहाँ पर?
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
3: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 8 जुलाई से 12 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। साथ ही इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 8 से 12 जुलाई के दौरान 15 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, पिछले कुछ दिनों में वर्षा हुई है, इसलिए आप वर्षा के जल का लाभ उठाते हुए धान की सबौर दीप किस्मों जैसे प्रभात, शुष्क सम्राट, सहभागी की बुआई 10 जुलाई तक जरूर कर दे। और किसान भाई बहनों, बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए कार्बन डाइजिन की 2 ग्राम मात्रा को 1 किलोग्राम बीज उपचारित करने के लिए इस्तेमाल करें। और ध्यान दें कि 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई जरूर करें। मध्यम अवधि वाली धान की किस्में जैसे राजेंद्र नीलम, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र श्वेता की रोपाई कर सकते हैं। और धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी की जा सकती है। किसान भाई बहनों, अगर आप श्री अन्न की खेती करना चाहते हैं तो ध्यान दें, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें और मड़ुआ की वकुला KMR 316 GPU 67 VL 379 राजेंद्र मड़ुआ RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1 इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, उचास जमीन में अरहर की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1, राजेंद्र अरहर 2 इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। और ध्यान दें कि अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का उपयोग करना बिल्कुल न भूले। और किसान भाई बहनों, अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दे, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना ना भूले। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3 और गंगा 11 है। जिनके खेत में मूंग लगा है उन्हें बता दे, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो किसान भाई बहन सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, भिंडी, कद्दू, खीरा, निनुआ और लौकी जैसी फसलों में निराई गुड़ाई करते रहें और खरपतवार नियंत्रित रखें। ध्यान दें कि पत्ती खाने वाली सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करना जरूरी होता है और अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमेथोएट 30 ईसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में गोबर की खाद डालना बहुत जरूरी होता है। खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्री फाउंड डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और ध्यान रखें कि बीज गिराने के पहले बीजोपचार जरूर कर लें। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचों में जरूरत के हिसाब से छटाई कर लें, जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचे में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा कर हटा दें। इससे कीट और रोगों के प्रकोप में कमी आएगी और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलेगा। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, महीने के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, इसलिए ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में टीके नहीं लगाए हो तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
1: नाटक देखो आओ सारे नाटक देखो, खसरा और रुबेला की कुछ जरूरी बातें सुन लो। नाटक देखो आओ।
2: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
3: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ। इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
3: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
4: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
5: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
6: क्या क्या क्या?
3: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
6: अच्छा,
5: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
3: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
7: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
3: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
7: 11 दोस्त?
3: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
7: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
3: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
7: लेकिन ऐसा क्यों?
3: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
7: टीकी, तो इसका हल क्या है?
3: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 8 जुलाई से 12 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। साथ ही इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 8 से 12 जुलाई के 15 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, पिछले कुछ दिनों में वर्षा हुई है, इसलिए आप वर्षा के जल का लाभ उठाते हुए धान की सबौर दीप किस्मों जैसे प्रभात, शुष्क सम्राट, सहभागी की बुआई 10 जुलाई तक जरूर कर दे। और किसान भाई बहनों, बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए कार्बन डाइजिन की 2 ग्राम मात्रा को 1 किलोग्राम बीज उपचारित करने के लिए इस्तेमाल करें। और ध्यान दें कि 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई जरूर करें। मध्यम अवधि वाली धान की किस्में जैसे राजेंद्र नीलम, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र श्वेता की रोपाई कर सकते हैं। और धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी की जा सकती है। किसान भाई बहनों, अगर आप श्री अन्न की खेती करना चाहते हैं तो ध्यान दें, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें और मड़ुआ की वकुला KMR 316 GPU 67 VL 379 राजेंद्र मड़ुआ RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1 इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, उचास जमीन में अरहर की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1, राजेंद्र अरहर 2 इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। और ध्यान दें कि अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का उपयोग करना बिल्कुल न भूले। और किसान भाई बहनों, अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दे, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना ना भूले। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3 और गंगा 11 है। जिनके खेत में मूंग लगा है उन्हें बता दे, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो किसान भाई बहन सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, भिंडी, कद्दू, खीरा, निनुआ और लौकी जैसी फसलों में निराई गुड़ाई करते रहे और खरपतवार नियंत्रित रखे। ध्यान दे कि पत्ती खाने वाली सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करना जरूरी होता है। और अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डायमेथो 8 इसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दे कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। और स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में गोबर की खाद डालना बहुत जरूरी होता है। खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्री फाउंड डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और ध्यान रखें कि बीज गिराने के पहले बीजोपचार जरूर कर ले। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। और जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दे, लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचों में जरूरत के हिसाब से छटाई कर ले जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचे में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा कर हटा दे। इससे कीट और रोगों के प्रकोप में कमी आएगी और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलेगा। पशुपालक भाई बहन ध्यान दे, महीने के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, इसलिए ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में टीके नहीं लगाए हो तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दे। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

first. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। वैसे बहनों को संबोधित है लेकिन यहां बातें ऐसी होती है जो सबके लिए फायदेमंद है। अब देखिए आज हम बात करने वाले हैं किताबों के बारे में, भला किताबें किनके लिए फायदेमंद नहीं साबित होती है। और जो किताबें पढ़ना पसंद करते हैं उन्हें पता है कि किताबें ना सबसे अच्छी दोस्त होती है। और जब फोन का जमाना है, सब कुछ फोन पे है, तब भी जो किताबों में सुकून है ना वो कहीं नहीं मिलता। और कई बार कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो आपको बहुत अच्छी बातें सिखा देती हैं और इस दुनिया को देखने का, यहाँ तक कि खुद को देखने का एक नया नजरिया देती हैं। और कई बार हमें उन किताबों को बहुत गहराई से पढ़ने की जरूरत होती है। कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप पूरी जिंदगी नहीं भुला सकते, और उन्हीं कुछ किताबों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और ख़ास तौर से उन किताबों के बारे में बात करने वाले हैं जो लेडीज़ को, जो महिलाएं हैं या फिर लड़कियां हैं, अपने टीन एज में हैं या फिर प्रौढ़ महिला भी हैं, उन्हें ये किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए। आज 10 ऐसी किताबों के बारे में बात होने वाली है जो आपको पढ़नी चाहिए, आपकी लाइब्रेरी में होनी चाहिए। और अगर आप पुरुष हैं, आप सुन रहे हैं, तो आप अपनी दोस्त को, अपनी मम्मी को या फिर आपकी बहन है उन्हें, आप आपके आसपास जो भी महिलाएं हैं उन्हें ये किताबें या इनमें से कुछ किताबें उन्हें आप ज़रूर गिफ्ट करिए। सबसे पहली किताब है मित्रों मरजानी। नाम कितना प्यारा है ना, और मित्रों मरजानी लिखा है कृष्णा सोपती ने। और अगर हम इस उपन्यास की बात करें तो ये उपन्यास मित्रों नाम की एक साहसी और बेबाक महिला की कहानी है जो कि समाज द्वारा महिला पर लगाए गए बंधनों को खुलकर चुनौती देती है। बहुत सारी बंधन है ना, आज के समय में भी आपको बहुत सारे बंधन मिलेंगे जिन्हें खत्म करने की जरूरत है। तो मित्रों यही काम करती है कि समाज जो महिलाओं पर बंधन लगाता है उसे वो चुनौती देती है। इस किताब में आपको स्त्री की इच्छाओं, उनकी स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का एक बहुत ही बेहतरीन चित्रण मिलेगा। और अगर हम बात करें ना तो ये किताब भले ही बहुत पहले लिखी गई हो लेकिन ये किताब अपने समय से बहुत आगे की सोच रखता है, और ये किताब हर महिला को जरूर पढ़नी चाहिए। हिंदी साहित्य में इसे नारी विमर्श की महत्वपूर्ण कृति माना जाता है। अगली किताब है आपका बंटी। आपका बंटी मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा गया है, और मन्नू भंडारी की भी जो शख्सियत है ना वो बहुत ही कमाल की है। आप उनके इंटरव्यूज देखेंगे या फिर आप उनकी और भी कहानियां पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई बहुत ही कमाल की शख्सियत और बहुत ही कमाल की इनकी लेखनी। और उनकी एक लेखनी है आपका बंटी, ये बहुत ही कमाल की किताब है। ये कहानी ना एक बच्चे बंटी की नज़र से आप पढ़ेंगे, समझेंगे। बंटी की नज़र से आप देखते हैं कि किस तरीके से एक परिवार टूटता है तो बच्चे पर असर सबसे ज्यादा पड़ता है। जब माता पिता का तलाक हो जाता है तो बच्चे पर क्या असर पड़ता है, यही इसका मुख्य विषय है। और उपन्यास में आप देखेंगे कि स्त्री के संघर्ष और उसके भावनात्मक जीवन का भी काफी बेहतरीन चित्रण है। और सबसे अच्छी बात है इस किताब की कि भाषा बहुत ही सरल और बहुत ही प्रभावशाली है। कहते हैं ना कि कुछ चीजें सरल रहते हुए भी आपके ऊपर बहुत ही गजब का प्रभाव छोड़ जाती है, तो ये किताब उन्हीं किताबों में से एक है। और ये हिंदी की आपका बंटी हिंदी की सबसे चर्चित पारिवारिक उपन्यासों में से एक है। अगली किताब है अमृता प्रीतम की पिंजर। पिंजर उपन्यास की अगर हम बात करें तो भारत विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है ये उपन्यास, जिसमें नायिका पूरो के जीवन के माध्यम से स्त्री की पीड़ा को दर्शाया गया है। जब भारत विभाजन हुआ था उस दौरान स्त्रियों को भी बहुत कुछ सहना पड़ा था। इस किताब में आप धर्म, पहचान और मानवता के प्रश्न से रूबरू होंगे। जब ये सारे प्रश्न उठते हैं ना तो आपको अंदर से कचोट देते हैं। कहानी बेहद ही मार्मिक और संवेदनशील है। अगर हम विभाजन साहित्य की बात करें तो उनमें से श्रेष्ठ कृतियों में से पिंजर का नाम गिना जाता है, अमृता प्रीतम की लिखी पिंजर। अगली किताब है मन्नू भंडारी की लिखी हुई महाभोज। महाभोज अगर हम इस किताब की बात करें तो ये एक राजनीतिक व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर तीखा व्यंग है।
कहानी एक गरीब युवक की है और जब उस युवक की मृत्यु हो जाती है ना, उसके बाद इस कहानी की शुरुआत होती है। किस तरीके से सत्ता और राजनीति आम जनता का शोषण करती है ये दिखाया गया है बहुत ही कमाल के तरीके से महाभोज में। और अगर हम इस उपन्यास की बात करें तो ये उपन्यास सामाजिक अन्याय को उजागर करता है और बहुत ही बेहतरीन ढंग से करता है, और आज भी ये उपन्यास उतना ही प्रासंगिक माना जाता है। महाभोज एक बार जरूर पढ़िए, ये आपको समाज को देखने का, आपके आसपास के व्यवस्था को, भ्रष्टाचार को समझने का एक नजरिया देता है। अगली किताब है चाक, मैत्रेयी पुष्पा की लिखी चाक, समाज में महिलाओं के संघर्ष की कहानी है। उपन्यास में आप पढ़ेंगे जाति, पितृसत्ता और सामाजिक भेदभाव को, और किस तरीके से नायिका अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। भाषा में ग्रामीण जीवन की एक सजीव झलक आपको दिखती है और ये किताब स्त्री सशक्तिकरण की एक महत्वपूर्ण कृति है, आपको जरूर पढ़नी चाहिए, मैत्रेयी पुष्पा की लिखी चाक। कुछ किताबें ऐसी होती है जिन्हें पढ़कर रोना आता है, कुछ किताबें ऐसी होती है जो आपको हंसाती है, और कुछ किताबें ऐसी होती है जो आपके ऊपर प्रभाव नहीं छोड़ती है, और कुछ किताबें ऐसी होती है जो ना रुलाती है ना हंसाती है बल्कि आपको कचोटती है। आप बहुत असहाय से महसूस करते हैं, आपको समझ नहीं आता कि क्या कर दे, काश उस नायिका के पास हम पहुंच जाएं और उसकी जिंदगी ठीक कर दे, उसे समझा दे, या फिर बहुत ही आपको असहाय महसूस होगा, आप विचलित होंगे पर आपके हाथों में कुछ नहीं होगा। ये किताब है कांता भारती की लिखी रेत की मछली। कांता भारती की बात करें तो कांता भारती ने सिर्फ एक किताब लिखी, रेत की मछली, और इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक स्त्री संघर्ष करती है, आत्मसम्मान के लिए लड़ती है और अपने अस्तित्व की खोज में निकल पड़ती है। इस किताब में पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं की स्थिति को बहुत ही संवेदनशील तरीके से चित्रित किया गया है। नायिका सामाजिक बंधनों और अन्याय के विरुद्ध अपनी पहचान बनाने का प्रयास करती है, लेकिन उसके पहले जो उसे जीवन में झेलना पड़ता है ना, अपनों से जो उसे धोखा मिलता है, दगा मिलता है, वो आपको कचोट देती है अंदर से। भाषा बहुत ही सरल है लेकिन बहुत ही प्रभावशाली, और भावनात्मक गहराई इतनी है कि किताब पढ़ते हुए मैंने आपसे कहा ना, आप बहुत ही असहाय महसूस करेंगे। ये किताब स्त्री अधिकार, आत्मनिर्भरता और सामाजिक बदलाव के प्रश्नों को उठाती है, और अगर आप 10 प्रभावशाली हिंदी पुस्तकों की लिस्ट बना रहे हैं, सूची बना रहे हैं, तो रेत की मछली को शामिल करना एक बहुत ही अच्छा चयन हो सकता है। अगली किताब है मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा की लिखी हुई ये किताब है, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी युवती की संघर्ष गाथा है। नायिका अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत ही कठिन रास्ता चुनती है, और वो कला, रंगमंच, आधुनिक समाज आप इसमें देख पाएंगे, आपको इसमें झलक मिलेगी मुझे चांद चाहिए किताब में। पुस्तक स्त्री के स्वतंत्र पहचान की भी बात करती है, और मुझे चांद चाहिए उपन्यास की कहानी आपको बहुत ही प्रेरणादायक लगेगी और साथ ही यथार्थवादी भी लगेगी। अगली किताब मैत्रेयी पुष्पा की ही लिखी हुई कस्तूरी कुंडल बसे। इस किताब की खास बात यह है कि ये खुद मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है, इसमें उनके बचपन, संघर्ष और जीवन यात्रा का आपको बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। ग्रामीण परिवेश में स्त्री जीवन की कठिनाइयों को दर्शाया गया है इस किताब में, साथ ही ये किताब आपको आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का संदेश देती है जो बहुत जरूरी होता है किसी भी इंसान के लिए और खास तौर से एक महिला के लिए। ये हिंदी की चर्चित आत्मकथाओं में से एक है, कस्तूरी कुंडल बसे, मैत्रेयी पुष्पा के लिखी। अगली किताब भी कृष्णा सोपती की ही लिखी हुई है, जिंदगी नामा। ये उपन्यास पंजाब के ग्रामीण जीवन को अच्छी तरीके से प्रस्तुत करता है, बहुत ही विस्तृत तरीके से प्रस्तुत करता है। इसमें अनेक पात्र आपको मिलेंगे और उनकी जीवन शैली किस तरीके से है उसका बहुत ही सजीव वर्णन है, साथ ही सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहलुओं को भी बहुत ही खूबसूरती से उकेरा गया है जिंदगी नामा में। भाषा और शैली इसे विशेष बनाती है, साथ ही इसे हिंदी साहित्य की महान कृतियों में से भी गिना जाता है। अगली किताब है मन्नू भंडारी की ही एक कहानी ये भी ना मन्नू भंडारी की आत्मकथा है। इसमें उनके साहित्यिक जीवन और उनके जो व्यक्तिगत संघर्ष रहे उसका वर्णन है। लेखिका ने अपने वैवाहिक जीवन के अनुभव भी इस किताब में साझा किए हैं। इस किताब को बहुत ही ईमानदारी और संवेदनशीलता से लिखा गया है, और
जब आप इस किताब को पढ़कर खत्म करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि आपके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास है और आत्मचिंतन की प्रेरणा मिलती है आपको इस किताब से। हालांकि 10 किताबें हो चुकी है, लेकिन एक और किताब मैं जो अंत में जोड़ना चाहूंगी वो है टेढ़ी लकीर, इस्मत चुगताई की लिखी हुई है। ये उपन्यास ना शम्मन नाम की एक लड़की की है और उसके जीवन और उसके आत्मविकास की कहानी है। इस किताब में आप पाएंगे स्त्री स्वतंत्रता की बातें, शिक्षा, प्रेम, समाज की रूढ़ियों पर एक बहुत ही गहरा विमर्श मिलता है आपको इस किताब में। और इस्मत चुगताई ने महिलाओं की भावनाओं को और उनके संघर्षों को बहुत ही बेबाकी से प्रस्तुत किया है। हालांकि इस्मत चुगताई खुद भी एक बेबाक महिला रही थी और बहुत ही कमाल की इनकी भी शख्सियत रही है। आप अगर पढ़ेंगे ये किताब टेढ़ी लकीर, तो ये उस दौर के मध्यम वर्गीय समाज और उसकी मानसिकता का एक बहुत ही सजीव चित्रण आपको पेश करती है। अगर हम इस किताब की बात करें तो इस किताब को यानी कि टेढ़ी लकीर को भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे महत्वपूर्ण नारीवादी उपन्यासों में से गिना जाता है। तो ये किताबें आप जरूर पढ़ें। और लास्ट में जो मैंने ऐड की है टेढ़ी लकीर इस्मत चुगताई की लिखी हुई, इसे भी जरूर अपने लिस्ट में शामिल करें। बहुत ही कमाल की ये किताबें हैं, इनमें से एक दो भी आप पढ़ लेंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ आज मैंने कुछ अलग ही किया है। आपको एक अलग सा सुकून मिलेगा और उसके साथ जो सबसे अच्छी बात होती है ना वो ये होता है कि आप आत्मचिंतन करेंगे। जब आप उस किताब के किरदार के साथ जुड़ जाएंगे, उनके साथ हंसेंगे, उनके साथ खुश होंगे और उनके साथ रोएंगे और कभी उनके साथ विचलित होंगे, असहाय महसूस करेंगे, तो फिर वो बात ही अलग होती है। और इन किताबों को पढ़िए, और कहते हैं कि किताबें सबसे अच्छी साथी होती है, तो ज़रूर इनमें से अगर आप सारी किताबें पढ़ सकते हैं तो क्या ही कहने, लेकिन आप एक दो किताबें पढ़ लेते हैं, जो भी आपको किताब अच्छी लगे उसे पढ़िए। और फिलहाल आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। उम्मीद है कि हमारा आज का ये कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा और आज के कार्यक्रम में जो हमने किताबों के बारे में बातें की उन किताबों से आप बहुत कुछ जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और सबसे बेहतर ये होगा कि आप अपने बारे में जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। फिलहाल के लिए मैं चलती हूँ, लेकिन जाने से पहले खास बात की अपना और अपने अपनों का और अपने सपनों का रखे विशेष ध्यान। खुश रहे, स्वस्थ रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। आपकी अपनी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। और हाँ, हमारे साथ यानी कि 90.8 एफएम ग्रीन के साथ बने रहे। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ हाँ,
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: टीनू, नीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
4: याद रखो,
5: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
6: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
6: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
6: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
8: नमस्कार साथियों, आपने ट्यून किया है 90.8 MHz और आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। और आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम फिर से एक खास विषय लेकर आए हैं। वैसे अगर बात करें तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन कहते हैं ना कि देखन में छोटन लागे है, घाव करे गंभीर। तो उसी प्रकार अगर ये छोटी सी चीज़ आपकी सब्जियों में डल जाए तो उसका टेस्ट ही कुछ अलग बना देता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हरी मिर्च की। और हरी मिर्च हमारे इंडिया में, हमारे भारत देश में इसकी कितनी महत्ता है आप सभी जानते हैं जो भारतीय हैं। तो आज हरी मिर्च की खेती के बारे में हम जानेंगे और इसकी उपयोगिता, कैसे पौध तैयार करें और सिंचाई क्या कुछ कैसे किया जाता है, वो सारी बातें आज हमें बताएंगे डॉक्टर संगीता श्री मैम। मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो सबसे पहले तो स्वागत है मैम आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
9: धन्यवाद अनु।
8: इन जो खेती कर रहे हैं विस्तृत तौर पर, तो उनके लिए बहुत जरूरी होता है कि हर बात की जानकारी उनके पास रहे इसकी खेती से जुड़े। तो हरी मिर्च की उपयोगिता सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें।
9: धन्यवाद अनु। आपने ठीक ही कहा कि इसको हम कहीं भी उगा सकते हैं, लेकिन अगर बात करें तो ये एक व्यावसायिक खेती के रूप में किया जा सकता है। मिर्च एक नकदी फसल है जिसकी व्यावसायिक खेती करके अधिक लाभ कमाया जा सकता है। मिर्च में विटामिन ए और सी और कुछ खनिज लवण भी बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। मिर्च का इस्तेमाल अचार एवं मसालों में भी किया जाता है।
8: जी,
9: मिर्च पर पाले का असर ज्यादा होता है, इसलिए जहां पाला पड़ता है उन इलाकों में इसकी अगेती फसल लेनी चाहिए। ज्यादा गर्मी होने पर फूलों व फलों का झड़ना शुरू हो जाता है। मिर्च की खेती के लिए 15 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त माना जाता है। 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होने पर इसके फूल व फल गिरने लगते हैं, रात्रि तापमान 16 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड फल विकास व परिपक्वता के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। मिर्च की खेती यूं तो सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है, परंतु अच्छे जल निकास वाली एवं कार्बनिक युक्त बलुई लाल दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 6 से 7 हो मिर्च की खेती के लिए उपयुक्त होती है। इस फसल की प्रमुख किस्में जिसको हम उन्नत किस्में कहते हैं वो है पूसा ज्वाला, पंत C1, G3, G5, पूसा सदाबहार, पंत C2, जवाहर 218, अर्का लोहित, अर्का सुफल, अर्का श्वेता, अर्का हरिता आदि। खरीफ की फसल के लिए मई से जून में व गर्मी की फसल के लिए फरवरी से मार्च में पौधशाला में बीजों की बुआई की जाती है। एक हेक्टेयर हेतु पौध तैयार करने के लिए 1 से 1.5 किलोग्राम बीज और संकर किस्मों के लिए 250 ग्राम बीज पर्याप्त होता है। नर्सरी वाली स्थान की गहरी जुताई करके खरपतवार रहित बनाकर 1 मीटर चौड़ी, 3 मीटर लंबी और 10 से 15 सेंटीमीटर जमीन से उठी हुई क्यारियां तैयार करें। बीजों की बुआई से पहले कप्तान या वेबस्टिन की 2 ग्राम प्रति किलोग्राम मात्रा से बीज की दर से उपचारित करें। बीजों की बुआई कतारों में करनी चाहिए और पौधशाला में कीड़ों की रोकथाम हेतु एसिफेट 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का पौधों पर छिड़काव करें। नर्सरी में विषाणु रोगों से बचाव के लिए मिर्च की पौध को सफेद नायलॉन नेट से ढक कर रखें। नर्सरी में बुआई के 4 से 5 सप्ताह बाद पौध रोपण के लिए तैयार हो जाती है। गर्मी की फसल में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेंटीमीटर व पौध से पौध की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। खरीफ फसल हेतु पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर व पौध से पौध की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। रोपाई शाम के समय करें और रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई कर दें। पौधों को 40 ग्राम एजोस्पायरलम 2 लीटर पानी के घोल में 15 मिनट डुबोकर रोपाई करें। खेत की अंतिम जुताई से पहले 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर अच्छी तरह सरी हुई गोबर की खाद खेत में डालकर अच्छी तरह मिला दें। इसके अलावा 70 किलोग्राम नत्रजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस व 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से उर्वरकों का प्रयोग करें। नत्रजन की अधिक मात्रा खेत की तैयारी के समय व शेष बची हुई आधी मात्रा 30 व 45 दिनों के बाद ट्रॉप ड्रेसिंग द्वारा खेत में डालें एवं तुरंत सिंचाई कर दें। गर्मी में 5 से 7 दिनों के अंतर पर और बरसात में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करनी चाहिए। मिर्च के फूल और फल लगने के समय भूमि में नमी होना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि पानी की कमी से पौधों का विकास रुक जाता है। इसकी वजह से फलों के गिरने की संभावना बढ़ जाती है। खरपतवारों का रोकथाम हेतु समय समय पर निराई गुराई करनी चाहिए। 200 ग्राम ऑक्सीफ्लोरोफेन 600 से 700 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। अब उपज की बात करें तो बताए गए तरीकों से खेती करेंगे तो हरी मिर्च के लिए तुराई फल लगने से 15 से 20 दिनों बाद कर सकते हैं। पहली तुराई से दूसरी तुराई का अंतर 12 से 15 दिनों तक रखें। हरी मिर्च की पैदावार 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तथा सूखी लाल मिर्च की उपज 15 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है।
10: तो ये सारी बातें तो खेती से जुड़ी हुई, लेकिन अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारे किसान भाइयों को ध्यान देने योग्य है अपने फसलों को बचाना है बर्बाद होने से, तो वो है रोग और कीटों के प्रबंधन को जानना। तो इसके बारे में मैम बता दें कि कैसे किसान भाइयों को करना चाहिए।
9: जी हाँ, मिर्च फसल में रोग व कीट प्रबंधन का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है। इसमें लगने वाले प्रमुख कीट हैं सफेद लट, कीट की लटों पौधों की जड़ों को खाकर नुकसान पहुंचाती है। इनकी रोकथाम के लिए कार्बेफिरॉन 3G का 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से रोपाई से पहले जमीन में मिलाएं। सफेद मक्खी व थ्रिप्स, इन्हें रोकने के लिए मालाथियॉन 50 ईसी या इमिडाक्लोरपेट 3 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। 15 से 20 दिनों के बाद दोबारा छिड़काव करना चाहिए। इन रसायनों के साथ नीम का तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर भी मिश्रित कर सकते हैं। अब मिर्च फसल में लगने वाले प्रमुख रोग की बात करते हैं, तो प्रमुख रोग हैं आद्र गलन, श्याम वर्ण, पर्ण कुंचन व मोज़ेक विषाणु रोग। आद्र गलन रोग का प्रभाव छोटे पौधों पर होता है। इस रोग का प्रभाव जमीन की सतह पर स्थित तने का भाग काला पड़ जाता और कमजोर होकर गिर कर मरने लगते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए बीजों की बुआई से पहले थिरम या कप्तान 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर करें। श्याम वर्ण एक ऐसा रोग है जिसमें पत्तियों पर छोटे छोटे काले धब्बे बन जाते हैं और पत्तियां झड़ने लगती हैं। जब इसका असर ज्यादा होता है तो शाखाएं ऊपर से नीचे की तरफ सूखने लगती हैं। पके फलों पर भी बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर 2 से 3 बार छिड़काव 15 दिनों के अंतराल पर करें। पर्ण कुंचन व मोज़ेक विषाणु रोग बहुत ही घातक रोग है। पर्ण कुंचन रोग के असर से पत्ते सिकुड़कर छोटे रह जाते हैं और उन पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। मोज़ेक विषाणु रोग के कारण पत्तियों पर गहरे व हल्का पीलापन लिए हुए धब्बे बन जाते हैं। रोगों को फैलाने में कीट सहायक होते हैं। इसकी रोकथाम के लिए रोग लगे पौधों को उखाड़कर जला देना चाहिए। रोग को

0: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
1: FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
2: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। किसान भाई बहनों, उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे, साथ ही अपने फसलों की भी अच्छी निगरानी कर रहे होंगे। जब हम अपने फसलों की निगरानी करते हैं तो उसमें खरपतवार दिखते हैं और ये किसान भाई बहनों के लिए बड़ी चिंता का सबब होते हैं। खरपतवार नाशी का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन खरपतवार नाशी कई बार गहरे प्रभाव भी छोड़ते हैं और ये प्रभाव नकारात्मक होते हैं, यानी कि अन्य फसलों पर भी प्रभाव देखा जाता है। तो बदलते वक्त के साथ खेती गृहस्थी भी थोड़ी बदली है और चीजें आसान भी हुई है। खेती गृहस्थी को आसान बनाने के लिए कुछ नई चीजें भी आ रही है, उन्हीं में से एक है नैनो हर्बिसाइड्स, यानी कि नैनो शाकनाशी या नैनो खरपतवार नाशी। और इसके बारे में आज विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर अभिषेक कुमार। आप हैं डिपार्टमेंट ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी से। तो आइए आज के वैज्ञानिक डॉक्टर अभिषेक कुमार से हम बातचीत करते हैं और जानते हैं नैनो हर्बिसाइड्स के बारे में। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद
2: सर। आपसे पहला सवाल तो मैं यही पूछना चाहूंगी कि नैनो शाकनाशी क्या है?
3: यह जो है आज के परिप्रेक्ष्य में आपका जो प्रश्न है बहुत उपयुक्त है, क्योंकि जो अभी का जो समय चल रहा है, जो परंपरागत खरपतवार नाशी हम प्रयोग करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होते हैं। तो उसी के चलते अभी जो रिसर्च के द्वारा नए चीज आए हैं किसान भाइयों के लिए, जिसे कि हम नैनो शाकनाशी भी कहते हैं, नैनो खरपतवार नाशी भी बोलते हैं, या अंग्रेजी में नैनो हर्बिसाइड भी बोलते हैं। यह एक खरपतवार नाशी है जिसे नैनो तकनीकी का उपयोग करके बनाया जाता है, जिसमें कि खरपतवार नाशक तत्व जो होते हैं लगभग 1 से 100 नैनोमीटर के भीतर समाहित रहता है, या नैनो कण के वाहक के रूप में उपयोग किया जाता है, जो अत्यधिक कुशल एवं लक्षित होता है और इसे ही नैनो खरपतवार नाशी कहा जाता है।
2: तो नैनो खरपतवार नाशी किसे कहा जाता है ये तो हमने जान लिया, लेकिन पहले से बाजार में बहुत सारे खरपतवार नाशी मौजूद हैं, नैनो खरपतवार नाशी की क्या जरूरत है सर, अभी इसका महत्व क्या है?
3: यह जो परंपरागत जो हम यूज करते थे, जो प्रयोग में लाते थे हमारे किसान भाई जो खरपतवार नाशी, उसके तुलना में अभी जो यह नैनो हर्बिसाइड है या नैनो खरपतवार नाशी है, यह जो है ना, इसका बहुत सारे विशेषताएं हैं, जैसे कि यह लक्षित वितरण प्रणाली पे काम करते हैं, मतलब कि यह एकदम जो है ना टू द पॉइंट जहां पे हमको यूज करना है वहां पे यह काम करता है, और परंपरागत जो हम यूज करते थे उसके तुलना में यह अत्यधिक कुशल भी होते हैं, और साथ ही साथ इसमें जो आवश्यक रसायन की मात्रा होती है वह बहुत कम होती है, और इससे भी अधिक जो इसका महत्वपूर्ण चीज़ है अभी के परिप्रेक्ष्य में, जो पर्यावरण जो प्रदूषित हो रहा है, जो बार बार हम कह रहे हैं कि अपना पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, तो यह जो नैनो हर्बिसाइड है या नैनो खर पतवार नाशी है, यह जो है ना पर्यावरण सुरक्षा में भी बहुत भूमिका अदा करती है, क्योंकि इसका रेसिडुअल इफेक्ट कम होता है, मतलब अवशेष मात्रा इसका कम होता है, और भी देखें साथ ही साथ तो यह नियंत्रित रिलीज प्रदान करता है, जिससे कि मात्रा जो है ना कम हो जाता है, और साथ ही साथ जो है ना जो आगे जो भी फसल भी आएंगे उसके लिए भी यह जो है ना बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है, और यह उपयोग की मात्रा भी अगर देखें तो परंपरागत के तुलना में इसका उपयोग बहुत ही कम होता है, ऐसे समझा जाए कि लगभग 10वां हिस्सा हम लोग यूज करते हैं परंपरागत के तुलना में, और यह धीरे धीरे भी काम करता है, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया कि इसका जो है ना टारगेट डिलीवरी होता है, तो इसीलिए यह जो है ना धीरे धीरे काम करता है, और भी देखें तो बीज का जो छिलका होता है उसमें भी जो खरपतवार नाशी बहुत

0: पौधे के जो बीज होते हैं, कुछ कुछ बीज बहुत कठोर होते हैं, उस कठोरता के में भी यह जो है बहुत आसानी से जो छोटे छोटे उसमें छिद्र होते हैं उसके द्वारा भी अंदर चले जाते हैं। दूसरी बात है कि अभी जो हम सुन रहे हैं कि जो बहुत सारे जो परंपरागत खर पतवार नाशी हैं उससे जो है ना प्रतिरोधी क्षमता आ रहा है, तो उसको भी जो है ना उसको भी अगर हम देखते हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आज के परिप्रेक्ष्य में हम नैनो खर पतवार नाशी का प्रयोग करें तो अच्छा है। और साथ ही साथ पौधे के विकास में भी बहुत सहायक होते हैं, क्योंकि यह बहुत छोटे होते हैं, पौधे के विभिन्न भागों में जाते हैं। उसके बाद है कि जो नीचे का पानी जो लेवल था परंपरागत खरपतवार नाशी से दूषित हो रहा था, तो उसके अदूषित जो प्रभाव है इसके उपयोग से कम होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और इससे इसके चलते जो कृषि की पैदावार है उसमें भी बढ़ोतरी की बहुत संभावना है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आने वाले समय में हम जो है ना किसानों की आय दुगुनी करें। तो उसमें हम समझते हैं कि यह जो है ना टेक्नोलॉजी जो आने वाला समय है अपने किसान भाइयों के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने के कगार पे हैं। और ओवरऑल देखेंगे, कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यह जो है ना स्वास्थ्य पर भी जो है ना चूँकि कम प्रभाव होगा, चूँकि इसका जो है ना रेसिडुअल इफेक्ट अवशेष का जो प्रभाव है कम है, तो इससे कुल मिलाकर स्वास्थ्य पर भी बहुत इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा।
1: तो सर अभी जैसे कि आपने बताया तो लग रहा है कि ये बहुत फायदेमंद है और ये बहुत कम मात्रा में और अवशेष भी कम छोड़ता है, तो कम मात्रा में इस्तेमाल करने के बाद भी इतने फायदे इसके होते हैं, आखिर ये काम कैसे करता है इसके बारे में बताइए।
0: जी यह क्या है कि जैसे कि हमने अभी कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदुएं थी उसमें भी हमने अभी बात भी किया, उसी में है कि यह जैसे सबसे जो पहला और जो प्रथम इसका जो यह है नैनो खर पतवार नाशी का, यह पूरा लक्षित जो करता है या जो है ना लक्षित क्रिया द्वारा काम करता है, कि मतलब हमको जहाँ पे डालना है वहीं पे भी जाता है, जिससे कि जो है ना जो खरपतवार नाशी के जो पौधे के विशिष्ट भाग होते हैं जैसे बीज है या प्रकंद है, तो उसके जो है ना सभी अंगों में यह आसानी से चला जाता है, क्योंकि इसका जो है ना आकार हमने जैसा कि बताया था इसके परिभाषा में भी कि इसका जो साइज होता है 1 से 100 नैनोमीटर के रेंज में होता है, जो बहुत ही सूक्ष्म होता है, इसके चलते यह जो है ना पूरा जो है ना लक्षित करके जाता है और उसके लगभग सभी भागों को यह लक्षित करता है। और दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो है ना इसका प्रवेश भी बहुत बेहतर तरीके से होता है, जो हम परंपरागत यूज करते थे चूँकि उसके साइज में अंतर था लेकिन इसका साइज छोटा होता है, तो इसका जो है ना प्रवेश भी बहुत बेहतर होता है। और साथ ही साथ प्रवेश बेहतर के साथ साथ जो इसका जो ऊपर का सतही क्षेत्रफल जितना छोटा कण होगा उसका उतना ही सतही क्षेत्रफल भरा होता है, तो इसके चलते क्या होता है कि यह बड़ा प्रभावी होता है, क्योंकि वह जो है ना उसका जो कार्य क्षमता है बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि सतही का जो क्षेत्रफल है वह बहुत ज़्यादा हो जाता है। और तीसरा क्या है कि यह जो रासायनिक संजय और बहाव को कम करने में भी बहुत बड़ा भूमिका निभाती है, क्योंकि इसका जो है ना अवशिष्ट कम होता है, तो इसलिए जो है ना यह अत्यधिक टिकाऊ होता है। तो इस तरह से यह जो है ना यह तीन जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि यह जो है पूरा लक्षित होकर काम करता है, बेहतर ढंग से प्रवेश करता है और रासायनिक संजय के अवशिष्ट को जो है ना वह कम करते हुए अपना टिकाऊपन बनाए रखता है।
1: मतलब सबसे बड़ी बात है कि लक्षित होकर काम करता है और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जिस चीज को खत्म करना है ये उसी को खत्म करता है और अवशेष भी नहीं रहता।
0: जी,
1: सर काम कैसे करता है ये तो हमने जान लिया, लेकिन नैनो हर्बिसाइड को बनाया कैसे जाता है?
0: तो इसका जो है बनाने का जो तरीका है तो मुख्यतः दो तरह से इसको बनाए जाते हैं, जिसको कि अंग्रेजी में डायरेक्ट नैनो कण का उपयोग करते हैं, लोग बोलते हैं डायरेक्ट नैनो कण, और प्रत्यक्ष रूप से जो कि हम क्या करते हैं कि जो कुछ ऐसे चीज हैं जो डायरेक्ट खरपतवार नाशी की तरह काम करते हैं और उसको जो है ना नैनो रेंज में हम लाके उसका उपयोग करते हैं। और दूसरा क्या करते हैं कि नैनो कणों को समाहित करके भी हम बनाते हैं। इसमें जो है ना जो परंपरागत जो अपना खरपतवार नाशी है उसको नैनो कण के साथ समाहित करके भी हम इसका बनाते हैं, जिससे कि इसका जो है ना कार्य क्षमता में जो है ना कई गुना बढ़ोतरी होती है। क्योंकि जो नैनो जो कण होते हैं या छोटे छोटे हैं होते हैं, इसका कार्यशीलता बहुत ज़्यादा होता है। सतह का जो जो ऊर्जा है वह भी ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद सतह क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो कि परंपरागत में ऐसा नहीं हो पा रहा था। तो अब क्या है कि अब दो जो दो प्रकार है बनाने का, उसमें जैसे कि प्रत्यक्ष जिसमें नैनो कणों का हम उपयोग करते हैं, उसमें जो परंपरागत जो सक्रिय अवयव होते हैं वह उसको जो है ना नैनो रेंज में स्केल में डिलीवरी सिस्टम में शामिल किया जाता है। इससे क्या हो जाता है ना, इसका जो है ना प्रभावशीलता बढ़ जाती है और पर्यावरण का कि पे जो है ना जो बुरा प्रभाव है वह कम हो जाता है। और तीसरा जो ऑलरेडी हम लोगों ने चर्चा भी पहले भी किया कि जो यह टारगेट होता है और कंट्रोल रिलीज होते हैं, हम आपको जो इसमें जो है ना जो हम प्रयोग करते हैं वह बहुत लक्षित तरह से होता है और इसका नियंत्रण जो हम रिलीज का नियंत्रण है वह भी बहुत प्रभावी होता है। साथ ही साथ जो हमने चर्चा किया था कि इसका उपयोग जो है ना जो धीरे धीरे जो होता है ना, तो इसको जो है ना कि जितना जहाँ जिस पौधे को चाहिए उस तरह से काम करके या जो है ना अपना कुशलता से उस पौधे को नाश करने में या खरपतवार नाशी को हटाने में बहुत भूमिका निभाती है। और जो दूसरा जो है नैनो कण समाहित जो करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि जो बहुत ही जो उपयुक्त होता है, जैसे पॉलीमर जो यूज होता है, पॉलीमर आधारित जो हम लोग बाहक यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पॉली के प्रेक्टो पीसीएल जो यूज करते हैं, यह जो है ना बहुत ही उसके लिए जो है ना कंफर्टेबल होता है, जो है ना बहुत उसके लिए सहयोगपन का काम करता है। दूसरा है कि मिट्टी के आधारित पे भी हम लोग बाहक का यूज करते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्ले वेस्ट बाहक। तो उसमें उसका खासियत यह है कि जो क्ले हम यूज करते हैं वह तो ऑलरेडी प्राकृतिक चीज है, हम उसमें वहाँ रसायन का उपयोग करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो यहाँ से भी इसकी जो है ना महत्ता और भी बढ़ जाती है, चूँकि यह प्राकृतिक रूप से हम इसका यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है, सबसे बड़ा किसान भाइयों के लिए क्या होता है कि इसमें खर्च जो है ना कम हो जाती है, लागत कम हो जाती है, क्योंकि जो है ना अच्छे गुणवत्ता अगर हम मिट्टी क्ले को यूज करते हैं तो उसमें भी जो है ना नैनो कण को समाहित करने में बड़ा अच्छी भूमिका निभाती है। और साथ ही साथ जो है ना इसमें क्या होता है कि सोखने की भी क्षमता बढ़ जाती है।
1: अच्छा
0: जी, इसमें सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। तो इस तरह से जो है ना और भी है, जैसे सिलिका आधारित बाहक है जिसको कि मेसोपोरस सिलिका नैनो कण भी बोलते हैं, उसी तरह कार्बन आधारित बाहक होते हैं जिसमें कि मुख्यतः जो है ना तेल वगैरह का भी जो है ना यूज करते हैं। तो इसमें जो है ना जो मुख्य जो चीज होते हैं इसमें जो है ना कार्बन होते हैं, और कार्बन से जो संबंधित है जैसे ग्राफीन वगैरह होता है, उसका जो है ना उपयोग जो है ना बड़े पैमाने पे किया जाता है। तो इस तरह से जो है ना दो इसका मुख्य तरीका है बनाने का कि जिसमें कि हम नैनो कण को हम जो है ना प्रत्यक्ष रूप से हम यूज करते हैं, दूसरा नैनो कणों को डिफरेंट तरह के पॉलीमर में या क्ले या सिलिका वेस्ट बाहक में उसको समाहित करके जो है ना अपना जो खरपतवार नाशी है उसको यूज करके बनाने से क्या होता है कि इसकी जो है ना कार्य क्षमता जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
1: सर आपने बताया कि इसे कैसे बनाया जाता है, दो प्रकार से इसे बनाया जाता है
0: जी।
1: और दो प्रकार से बनाया जाता है तो इसके प्रकार भी कई तरह के होते होंगे
0: जी, जी।
1: तो नैनो हर्बिसाइड्स कितने प्रकार के मौजूद हैं?
0: अच्छा अच्छा जी, यह जो है ना मुख्यतः अगर अगर देखेंगे तो यह तीन तरह के होते हैं, जैसे कि पहला इसको बोलते हैं कार्बनिक खरपतवार नाशी, दूसरा अकार्बनिक खरपतवार नाशी, और तीसरा है जो है ना संयुक्त नैनो खरपतवार नाशी। तो यह जो है ना जो तीनों का जो नाम से ही पता चल रहा है, जैसे कार्बनिक खरपतवार नाशी के रूप में जो नैनो खरपतवार नाशी होता है, इसमें मुख्यतः मुख्य चीज जो होता है ना कार्बनिक चीज का उपयोग किया जाता है, जैसे तेल वगैरह का उपयोग किया जाता है, तो जिससे कि इसकी जो है ना क्षमता में बढ़ोतरी होती है और धीरे धीरे इसका जो है ना उपयोगिता बढ़ता है। तो और दूसरा है कि कार्बनिक खरपतवार जो नाशी होता है, इसमें हम लोग मुख्यतः जो धातु युक्त जो है ना नैनो कण होता है जो बहुलता से मिल जाता है, वैसे नैनो खरपतवार नाशी का यूज करते हैं, जिससे कि इसमें जो इसकी खासियत क्या है और कार्बनिक खरपतवार नाशी का, इसमें जो धातु कण यूज करते हैं ना तो उसमें जो है ना छिद्र पोरस चीज होता है, और उसमें जो पोरस में आसानी से जो अपना परंपरागत जो खरपतवार नाशी जैसे एट्राजिन है, सेमाजिन है, ग्लूफोसाइनेट ग्लेफोसाइनेट है, तो यह सब जो है ना बहुत आसानी से उसमें समाहित हो जाते हैं, इससे इसकी जो है ना कार्य क्षमता में बढ़ोतरी हो जाती है। और जो तीसरा है इसको संयुक्त नैनो शाकनाशी भी बोलते हैं, तो इसमें दोनों तरह के चीज यूज करते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक।
1: अच्छा,
0: तो यह देखते हुए कि कहीं दोनों के उपयोग से इसकी जो है ना कार्य क्षमता में बढ़ोतरी हो जाए, तो तीसरा जो है ना संयुक्त नैनो शाकनाशी का भी इसमें यूज होता है, इसमें संयुक्त रूप से कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों मिला रहता है। और उदाहरण तौर पे जो हम लोग यहाँ एक आया है जैसे है ना बेंटाजोन इनकेप्सुलेटेड इन कैल्शियम फॉस्फेट नैनो पार्टिकल्स में, तो यह जो है ना जो हर्बिसाइड का उदाहरण है नैनो हर्बिसाइड का, जो कि बेंटाजोन इनकेप्सुलेटेड इन कैल्शियम फॉस्फेट नैनो पार्टिकल्स में, तो इसमें जो है ना किसान भाई लोग इस तरह के जो है ना नैनो हर्बिसाइड का यूज कर सकते हैं। उसी तरह जो है ना पीसीएल जो है ना एटीजेन एनपीएस है, पीसीएल जो एक पॉलीमर है और एट्राजिन नैनो पार्टिकल बेस्ड है, उसी तरह पीसीएल एमेट्रॉन है नैनो पार्टिकल है, पीसीएल सिमाजिन्स नैनो पार्टिकल्स है, तो इसमें जो है ना दोनों तरह के, इसमें जो परंपरागत जो खरपतवार नाशी है उसको नैनो कण के साथ मिक्सित जब करते हैं तो इसकी कार्य क्षमता कई गुना बढ़ जाता है।
1: मतलब बनाया दो प्रकार से जाता है लेकिन अभी जो मौजूद है तीन प्रकार के हैं, एक कार्बन बेस्ड है, दूसरा जो कि अकार्बनिक है, और तीसरा संयुक्त है जिसमें दोनों प्रकार के मिलाए हुए हैं। अब तक हमने नैनो खरपतवार नाशी से जुड़ी लगभग हर बात जान ली है, लेकिन सबसे अहम बात जो किसान भाई बहन के लिए ज़रूरी होती है कि इसे उपयोग कैसे करेंगे, नैनो खरपतवार नाशी का उपयोग करने का क्या तरीका है, ये सर बताएं
0: आप। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमने बहुत चीज़ देखा कि इसको कैसे बनाया जाता है, यह है क्या, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इसका उपयोग।
1: जी जी,
0: क्योंकि इसका उपयोग जो है ना बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसका जो कण बहुत छोटा होता है, अपना जो सूक्ष्म जो मतलब इतने छोटे छोटे हैं अपने आँख से इसको देख नहीं पाते हैं, तो इसलिए इसकी उपयोगिता में बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है और इसका उपयोग निश्चित तौर पर सुरक्षात्मक ढंग से ही करना चाहिए। और दूसरी जो बात है कि जितना ज़रूरत हो उतना ही उपयोग किया जाए। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि किसान भाई भावनात्मक में आके या किसी तरह के दूसरे को देख के भी जो है ना तो कभी कभी ज़्यादा यूज कर लेते हैं, तो उस तरह से हमको बचना चाहिए, जहाँ पे जितना ज़रूरत हो उतना ही उपयोग करें, क्योंकि यह टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा भी है तो इसके साथ सावधानी भी बरतने की उतनी ही ज़रूरत हो जाती है। और जो तीसरा जो है कि इसका जो उपयोग पौधों के सक्रिय चरणों के आधार पे करें तो और अच्छा होता है, कि जो पौधा जो खरपतवार जो पौधे होते हैं तो उसका जो विकसित जो जो पूरा सक्रिय फेज जो होता है अगर उस समय टारगेट करें तो जो है ना नैनो हर्बिसाइड या नैनो खरपतवार नाशी या जो है ना अच्छा परिणाम देता है, क्योंकि उस फेज में यह बहुत एक्टिव तरह से काम करेगा, बहुत सक्रिय रूप से काम करेगा, जिससे कि उसमें जो है ना खरपतवार नाशी पे जो है ना बुरा इफेक्ट तो पड़ना है, पड़ना चाहिए ताकि वह पौधा मर जाए और जो अपना जो जो खाद्य पौधा है उसको जो है ना विकास व्यवहार अच्छा हो। और भी इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यतः इसको जो है ना बहुत तरह से यूज करते हैं, लेकिन जो अभी तक देखा गया है कि इस जब हम स्प्रे करते हैं तो उसका परिणाम भी अच्छा आता है, तो इसलिए किसान भाइयों को इसका उपयोग जो है ना स्प्रे तरह से करें तो अच्छा है। और जो और भी महत्वपूर्ण बातें हैं कि इसका उपयोग तभी करें जब देखें कि हवा की बहाव नहीं है। अच्छा। उसमें बहाव होने से जो है जब हम उसका प्रयोग करते हैं तो हो सकता है कि बहाव के साथ कुछ जो है ना खरपतवार नाशी जो नैनो खरपतवार नाशी है अपने खाद्य पौधे पे भी आ जाए तो उससे जो है ना उसमें हानि की संभावना है। तो हम यहाँ किसान भाई को जरूर यह चीज़ बताएंगे कि जिस समय हवा का बहाव कम हो और उस समय जो है नहीं करें तो यह ज़्यादा कारगर भी होगा और इसका हानिकारक जो प्रभाव है कम है। और किसान भाई जब भी यूज करें तो जरूर या उपयोग करें तो उस समय जरूर मुंह पे कुछ कपड़ा हो या जो मास्क है उसका यूज करें, क्योंकि यह हमने बताया था प्रारंभ में यह बहुत छोटे होते हैं तो जितना ही छोटा होगा तो हो सकता है कि उसका प्रभाव ही उतना ही होगा। और तीसरी और जो आगे की बात है कि किसान भाई अगर नहीं जानते हैं किसी तरह का कि हम कितना लें क्या करें तो जो परंपरागत हम यूज करते थे प्रयोग करते थे उसका जो है ना दसवां हिस्सा से
1: काम हो जाता
0: है। हाँ, के तुलना में आप लें अगर पहले एक लीटर लेते थे तो उसका दसवां हिस्सा 0.1 हो जाएगा। इस तरह से जो है ना किसान भाई ध्यान में रखें इसका उपयोग और जब जरूरत हो तभी करें
1: जी।
0: हाँ, जब जरूरत हो तभी करें और जरूर बुद्धिमत्ता को प्रयोग करके ही करें। भावनात्मक में दूसरे को देखा होसी करके किसान भाई इसका उपयोग नहीं करें, जहाँ जितना जरूरत हो उतना ही करें।
1: तो मतलब नैनो खरपतवार नाशी बहुत फायदेमंद है, लेकिन जितनी इसकी आवश्यकता होती है उतनी ही उतना ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए और हवा का बहाव ये भी ध्यान में रखना चाहिए और साथ ही इसकी मात्रा कितनी है ये तो ज़रूरी है ही और मास्क पहनना भी बहुत ज़रूरी है। तो सर आपने बहुत सारी अच्छी बातें बताई और उम्मीद है कि ये हमारे किसान भाई बहनों के काम आएगी। और जो परंपरागत खरपतवार नाशी है उसका एक विकल्प है, क्योंकि उसमें बहुत नुकसान भी होते थे तो उसका एक ये बेहतरीन विकल्प है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारियां दी।
0: धन्यवाद
1: किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।

0: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनम दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रखो,
0: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
3: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 8 जुलाई से 12 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। साथ ही इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 8 से 12 जुलाई के दौरान 15 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, पिछले कुछ दिनों में वर्षा हुई है, इसलिए आप वर्षा के जल का लाभ उठाते हुए धान की सबौर दीप किस्मों जैसे प्रभात, शुष्क सम्राट, सहभागी की बुआई 10 जुलाई तक जरूर कर दे। और किसान भाई बहनों, बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए कार्बन डाइजिन की 2 ग्राम मात्रा को 1 किलोग्राम बीज उपचारित करने के लिए इस्तेमाल करें। और ध्यान दें कि 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई जरूर करें। मध्यम अवधि वाली धान की किस्में जैसे राजेंद्र नीलम, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र श्वेता की रोपाई कर सकते हैं। और धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी की जा सकती है। किसान भाई बहनों, अगर आप श्री अन्न की खेती करना चाहते हैं तो ध्यान दें, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें और मड़ुआ की वकुला KMR 316 GPU 67 VL 379 राजेंद्र मड़ुआ RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1 इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, उचास जमीन में अरहर की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1, राजेंद्र अरहर 2 इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। और ध्यान दें कि अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का उपयोग करना बिल्कुल न भूले। और किसान भाई बहनों, अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दे, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना ना भूले। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3 और गंगा 11 है। जिनके खेत में मूंग लगा है उन्हें बता दे, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो किसान भाई बहन सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, भिंडी, कद्दू, खीरा, निनुआ और लौकी जैसी फसलों में निराई गुड़ाई करते रहें और खरपतवार नियंत्रित रखें। ध्यान दें कि पत्ती खाने वाली सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करना जरूरी होता है। और अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डायमेथो 8-30 इसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करे। ध्यान दे कि छिड़काव तभी करे जब आसमान साफ हो। खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करे जब आसमान साफ हो। और स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में गोबर की खाद डालना बहुत जरूरी होता है। खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्री फाउंड डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करे और ध्यान रखें कि बीज गिराने के पहले बीजोपचार जरूर कर ले। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। और जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दे, लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचों में जरूरत के हिसाब से छटाई कर ले, जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचे में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा कर हटा दे, इससे कीट और रोगों के प्रकोप में कमी आएगी।

और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलेगा। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, महीने के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, इसलिए ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में टीके नहीं लगाए हो तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: माँ पिता भगवान का वो अनमोल उपहार हैं जिनका प्रेम और आशीर्वाद जीवन को हर कठिनाई से पार करा देता है।
0: बहुत बहुत सुंदर विचार, इसके लिए आपका धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी का। लिखते हैं,
2: विमलेश जी, अजीत जी नमस्कार, जय जोहार। 18 तारीख को चिड़िया की बच्ची कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। अच्छी प्रस्तुति के लिए NCERT उमंग के साथ विमलेश जी और अजीत जी को बहुत बहुत बधाई।
0: और बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार और नियति कुमारी।
2: मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर।
0: और गांव बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से अमन वर्मा, रमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा, डॉक्टर मदन लाल वर्मा और वर्मा परिवार के सभी सदस्य।
2: और कुतुबपुर तहसील हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा।
0: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों को भेजने के लिए। और आइए एक बार फिर से चलते हैं हमारी आपकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में कुछ और नई और रोचक जानकारियों के साथ।
2: श्रोताओं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पेड़ों की। जैसा कि हमने इस सप्ताह की पहली कड़ी में सुना था, पेड़ सिर्फ पेड़ ही नहीं, वे इस धरती के सबसे प्राचीन जीव हैं। उनके आने के बाद ही दूसरा जीव जगत शुरू हो सका, क्योंकि वे वर्षा, भोजन, औषधि और श्वसन के मुख्य स्रोत हैं।
0: श्रोताओं, क्या आप जानना चाहेंगे कि पेड़ों की उत्पत्ति कैसे हुई? तो चलिए आपको बताते हैं।
2: पेड़ों की उत्पत्ति पृथ्वी के इतिहास की सबसे अद्भुत घटनाओं में से एक है। कहते हैं लगभग 4 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर पेड़ नहीं थे, केवल सूक्ष्म जीव थे। कालांतर में समुद्रों में शैवाल जैसे जीव विकसित हुए जो तैरते थे और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते थे।
0: धीरे धीरे ये शैवाल जैसे जीव समुद्र से निकलकर भूमि पर आए, इन्हीं से प्रथम स्थलीय पौधों का विकास हुआ।
2: प्रश्न ये है कि इन पौधों ने क्यों बढ़ना शुरू किया? इसका कारण ये था कि जीने के लिए वे अधिक सूर्य का प्रकाश पा सकें और दूसरे पौधों से प्रतिस्पर्धा कर सकें। इसी क्रम में ये पौधे बढ़ते बढ़ते पेड़ बन गए। ध्यान दें तो इस प्रक्रिया में विकासवाद का सिद्धांत काम करता है, यानी सफलतम ही टिका रहता है।
0: तो श्रोताओ, ये थी पेड़ों की उत्पत्ति की वैज्ञानिक कथा। अब जरा ध्यान दें, गर्मी का मौसम है, राह चलते चलते जब बहुत गर्मी लगती है तो आप किसी पेड़ की छाया में शरण लेते हैं
2: जी।
0: क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ठीक उस समय जब आप उसकी छाया का आनंद ले रहे होते हैं, उस समय वो पेड़ क्या क्या कर रहा होता है?
2: ध्यान से सुनिए मित्रों, उस समय वो हवा को ठंडा कर रहा होता है, क्योंकि वो वाष्पोत्सर्जन द्वारा एक प्रकार से प्राकृतिक एसी की तरह काम कर रहा होता है।
0: श्रोताओं, ठीक उस समय वो हमें ऑक्सीजन दे रहा होता है और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को अवशोषित कर रहा होता है जो हमारे लिए हानिकारक है।
2: उस समय वो शोर को कम कर रहा होता है, क्योंकि पत्तियां और शाखाएं प्रदूषित वायु को ही नहीं शोर को भी अवशोषित करती हैं। तभी तो कहते हैं पेड़ों के नीचे या जंगलों में एक शांति का आभास होता है।
0: श्रोताओं, एक बात और, ठीक उस समय वो पेड़ वर्षा और जल संरक्षण में योगदान दे रहा होता है, जिससे भविष्य में हमें भूजल और वर्षा का जल लगातार मिलता रहे।
2: उस समय वो हजारों कीटों, कवकों, पक्षियों और जीवों को आश्रय देकर प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में मदद कर रहा होता है।
0: सचमुच श्रोताओ, एक पेड़ हमारे और दूसरों के लिए मौन रहकर भी इतनी सेवा कर रहा होता है। वह बेशक मौन है, लेकिन मानो कहता है, मैं तुम्हारे लिए हवा को शुद्ध कर रहा हूँ, धरती को ठंडा करके जलवायु परिवर्तन की गति को यथासंभव रोक रहा हूँ,
2: स्वयं धूप सहकर तुम्हें छाया दे रहा हूँ, वर्षा लाने में सहायता कर रहा हूँ, मिट्टी के कटाव को रोक रहा हूँ। बदले में मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे और अन्य पेड़ों को जीवित रहने दो। हम सभी पेड़ धरती के फेफड़े हैं।
0: जी हाँ श्रोताओ, अब जब किसी पेड़ को देखें तो इन बातों को जरूर स्मरण कीजिएगा। पेड़ वास्तव में हमारे लिए प्रकृति के मौन लेकिन सबसे बहुमूल्य उपहार हैं।
2: तो ये थी पेड़ों के बारे में हमारी रोचक जानकारी इस सप्ताह की श्रृंखला में। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
0: जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो उस समय वो क्या क्या कर रहा होता है? कोई 2 या 3 कारण बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो उस समय क्या क्या कर रहा होता है, कोई दो या तीन कारण बताइए।
0: 8800440559 पर जो हमारा IVRS नंबर है और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम जो एक गीत के रूप में देश को समर्पित है। शीर्षक है प्यारा भारत।
2: ये कक्षा 3 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक सितार की एक नज्म पर आधारित है। श्रोताओं, ये खूबसूरत नज्म आपको ले जाएगी भारत के गगनचुंबी पर्वतों, कलकल करती नदियों, लहलहाती फसलों के मैदानों, घाटियों और फलों के बगीचों में।
0: तो आइए करते हैं भारत भ्रमण इस नज्म के साथ। शीर्षक है भारत प्यारा।

0: भारत। अभी आप सुन रहे थे गीत भारत प्यारा,
1: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मौर्य कालीन पाटलिपुत्र।
0: इस कार्यक्रम में मौर्य साम्राज्य के महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के बारे में विस्तार से बताया गया है। विशेषकर ये उल्लेख किया गया है कि उनके शासन काल में जनतांत्रिक मूल्य कितने ऊंचे थे, खुफिया व्यवस्था कैसी थी, और चीन के यात्रियों ने उनकी कीर्ति की कैसी प्रशंसा की।

मेरा नाम है पाटलिपुत्र। अब लोग मुझे बिहार प्रदेश की राजधानी पटना के नाम से जानते हैं। मेरा इतिहास बहुत पुराना है। इस बात को 2000 वर्ष से भी अधिक बीत चुके हैं जब एक छोटा सा गांव था मैं। नाम था पाटली। यहां वहां कुछ खेत, कुछ झोपड़ियां, पास में कल कल करती गंगा की निर्मल धारा। एक घाट था गंगा पार जाने के लिए। वहां एक दो नौकाएं खड़ी रहती। उसी घाट से महात्मा बुद्ध ने नदी पार की थी वैशाली जाने के लिए।

0: महात्मा बुद्ध का नाम मशहूर हो रहा था।
1: उन दिनों मगध पर मौर्यों का राज्य था, जो बिहार के पटना और गया जिलों में फैला हुआ था। मगध की सीमाओं को बढ़ाया बिंबिसार ने। एक बार वहां भयानक आग लग गई। इसके बाद बिंबिसार ने पास ही में नई राजधानी राजगृह का निर्माण करवाया।

0: राजा बिंबिसार के बाद मगध के सिंहासन पर बैठा अजात शत्रु। महात्मा बुद्ध के सम्मान में अजात शत्रु ने घोषणा करवाई,
1: सुने सुने सुने सभी ग्रामवासी सुने, सम्राट अजात शत्रु ने महात्मा बुद्ध के सम्मान में ये घोषणा की है कि आज से पाटली दुर्ग का मुख्य द्वार गौतम द्वार और गंगा नदी का घाट गौतम घाट कहलाएगा। सुने सुने

महात्मा बुद्ध ने पाटली के विषय में भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में पाटली एक प्रमुख नगर और व्यापार का बड़ा केंद्र बन जाएगा।

जब बुद्ध पाटलीग्राम आए थे तो वे 79 वर्ष के थे। इसके एक वर्ष बाद ही कुशीनगर में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया।

0: अजात शत्रु ने वैशाली को जीत लिया। उसके बाद पाटली दुर्ग का महत्व और भी बढ़ गया।
1: अजात शत्रु के बाद राजा बना उसका पुत्र उदयभद्र। उदयभद्र अपने पिता अजात शत्रु की तरह विजेता तो न था, पर उसे नए नए राजमहल बनवाने का शौक था। उदयभद्र ने ही मुझे मगध की राजधानी बनाया।

0: समय बदला, मगध का सिंहासन महापद्म नंद के पास चला गया। इसी ने नंद वंश चलाया था।
1: पर मैं खुश नहीं था। मैं एक बड़ा नगर जरूर बन गया था। मेरा नाम दूर दूर तक मशहूर हो गया था, लेकिन मगध की जनता दुखी थी। महापद्म नंद के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे।

0: 还是爬到啊李小妹来他这里他这里把杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨
1: महापद्म नंद के बाद मगध का राजा बना धन नंद। बड़ी सेना अपार धन संपत्ति थी उसके पास, मगर था वो बहुत ही घमंडी। धननंद ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी जो उसके पतन का कारण बनी। उसने तक्षशिला के प्रसिद्ध आचार्य कौटिल्य का भरे दरबार में अपमान कर दिया। अपमानित कौटिल्य ने प्रतिज्ञा की

0: अत्याचारी धननंद, मैं कौटिल्य आज प्रतिज्ञा करता हूं कि तेरा सर्वनाश करूंगा, सर्वनाश।
1: और अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को चुना। मौर्य कुल का वो वीर युवक अपना देश छोड़कर भटक रहा था। कौटिल्य ने उसे तक्षशिला में शिक्षा दी।
2: और उधर भारत से बहुत दूर मैसिडोनिया में साहसी सिकंदर अपने पिता फिलिप के बाद राजा बना था। समय था ईसा से 336 वर्ष पूर्व। सिकंदर का सपना था विश्व विजेता बनने का। उसकी आंधी सारी दुनिया पर छा जाने के लिए उमड़ने लगी।
3: सिकंदर बढ़े चलो।

सिकंदर बढ़ता गया, उसकी आंधी बढ़ती गई। 11 वर्षों में हर तरफ अपनी जीत के डंके बजाता हुआ सिकंदर भारत की सीमा पर आ खड़ा हुआ। छोटे छोटे राज्यों में बटा था तब का भारत। लोग वीर थे लेकिन आपस में लड़ते रहते थे। अभिसार के राजकुमार आम्भी ने सिकंदर का स्वागत किया, लेकिन राजा पुरु ने सिकंदर का डटकर मुकाबला किया।

पोरू की पराजय हुई। सिकंदर जीत तो गया, परंतु अब उसके सैनिक थक गए थे, उनका मनोबल गिरता जा रहा था, उन्हें कदम कदम पर कड़ी टक्कर मिल रही थी, आगे बढ़ने की हिम्मत खत्म हो रही थी।

0: गजब हो गया, सेना आगे बढ़ने से मना कर रही है वीर से गद्दार।
1: क्या आगे बढ़ने से मना कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैसिडोनिया का विश्व विजयी बनने का सपना चूर चूर हो जाएगा?
2: वीर सिकंदर, आप स्वयं सैनिकों से बात क्यों नहीं करते?
1: मैं ऐसा ही करूंगा। जाओ, सारे सैनिकों को एक जगह इकट्ठा करो, ये सिकंदर का आदेश है।
3: जी सम्राट, ऐसा ही होगा।
2: ऐसा ही होगा,
3: ऐसा ही होगा।
1: मेरे वीर सैनिकों, क्या मैंने ठीक सुना है कि मैसिडोनिया की बहादुर सेना ने अब आगे बढ़ने से इनकार कर दिया है और वो वापस लौटना चाहती है? मैं पूछता हूं, ऐसा क्यों? जिस काम के लिए हमने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा, जिस काम में हमने अपने बहादुर साथियों की जान की बाजी तक लगा दी, आज उसी काम से तुम सब भागना चाहते हो? याद है तुम्हें, हमारी आंधी के सामने बड़े बड़े सम्राट तक उखड़ गए और आज चारों ओर सिकंदर का डंका बज रहा है। चुप क्यों हो? मुझे जवाब चाहिए। क्या हमारी तलवारों की धार खत्म हो गई है? क्या हमारी भुजाएं खोखली हो गई है? ये व्यास नदी देख रहे हो ना, इस नदी को पार करते ही
3: हम वापस लौटना चाहते हैं।
1: सुनो मेरे वीरों, व्यास नदी को पार करते ही हमें दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिलेगा।
3: हमें कुछ नहीं चाहिए, हम
0: मैसिडोनिया चलो, वापस चलो, चलो
3: साथियों। अरे कुछ तो सबर करो साथियों, जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो आगे क्यों ना बढ़ा जाए? अगर मैसिडोनिया वापस चले भी गए तो लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? हम सम्राट की बात नहीं टाल सकते।
1: शाबाश मेरे वीरों, मुझे तुमसे यही आशा थी।

0: तुम सब सैनिकों के घेरे में हो। इस निर्जन खंडहर में आधी रात को क्या षड्यंत्र हो रहा था हम जान चुके हैं।
1: महाराज चंद्रगुप्त आप?
0: हाँ
2: महाराज, देखिए आचार्य कौटिल्य भी आ रहे हैं।
0: आचार्य प्रणाम, आप इस वक्त यहाँ?
3: आश्चर्य न करो चंद्र, मगध को असंख्य नेत्रों वाली गुप्तचर व्यवस्था चाहिए। मैं सावधान हूँ।
0: धन्य हो आचार्य, मौर्य साम्राज्य को आपकी बहुत आवश्यकता है।
4: धन्य हो आचार्य।
5: मगध सुखी था। चंद्रगुप्त प्रजा की भलाई करने वाला न्यायप्रिय शासक था, मगर एक बार फिर संकट सिकंदर के सेनापति निकेटर सेल्यूकस के रूप में बढ़ा आ रहा था।

0: सेल्यूकस भारत को जीतने का सपना लेकर आ रहा था, लेकिन अब भारत बदल चुका था। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को बुरी तरह पराजित किया।
1: बेचारा सेल्यूकस भारत को जीतने आया था, पर उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। मेगस्थनीस सेल्यूकस का राजदूत बनकर आया था। वो 4 वर्ष तक दरबार में रहा।

0: समय बदला। चंद्रगुप्त के शासन के 25 वर्ष बाद बिंदुसार राजा बना और फिर बारी आई उसके मझले बेटे अशोक मौर्य की। अशोक बहुत वीर था। उसने उज्जैनी और तक्षशिला के विद्रोह को सफलतापूर्वक शांत कर दिया और फिर हुआ कलिंग युद्ध।
1: ये क्या कर डाला मैंने, इतना रक्तपात सिर्फ विजय प्राप्त करने के लिए? नहीं नहीं, आगे ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अशोक मौर्य प्रतिज्ञा करता हूं, कभी युद्ध नहीं करूंगा। अब कभी युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, अब कभी युद्ध नहीं करूंगा।
0: कलिंग ने अशोक का जीवन बदल डाला। उसकी रुचि अहिंसा में, बौद्ध धर्म में हो गई।

उसने बौद्ध विहार बनवाए, शिलालेख खुदवाए। अगर अशोक का स्तंभ लेख न होता तो हम कभी ना जान पाते कि बुद्ध का जन्म कहां हुआ था। तभी श्रीलंका के राजा तिस्स का मैत्री संदेश आया, तो अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। इसी तरह बौद्ध धर्म

0: मौर्यकालीन पाटलिपुत्र अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और श्रोताओं इसी कार्यक्रम के साथ अब हम अपने कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए नमस्कार
2: उमंग उमंग उमंग उमंग
3: नमस्ते क्लास टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है टीचर जी
4: जी
3: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं
4: जी सर आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी उपचार चल सकता है और भी लंबा
3: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं टीबी हारेगा देश जीतेगा
5: एक साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद
6: कौन सी कहानी टीकी
5: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार
7: हमें भी वो कहानी बताओ ना
5: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ माथा पीटता रह गया शिकारी एक भी चिड़िया लगी ना हाथ तो दोस्तों बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल
6: तो इस राक्षस से कैसे बचना है
5: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा सभी सुनो एक जरूरी बात अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ टीका सुरक्षित है टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है
8: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें
9: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है चक्कर आता है स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है जिसे काम करने की डेली एनर्जी सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं समझ रहे हैं ना लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें संतुलित पौष्टिक आहार खाएं नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन
10: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें
9: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें
10: आपकी सेहत की बातें
9: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें
10: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें
9: वो सब कुछ एक ही जगह पर
10: वो कहाँ पर
9: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर
10: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक
9: उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे किसान भाई बहनों को संबोधित विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में दोस्तों अभी गर्मा सब्जियों का मौसम चल रहा है और अगर गर्मा सब्जियों में या फिर किसी भी तरह के सब्जी में कीट लग जाते हैं तो फिर किसानों की आय बहुत घट जाती है ऐसे में जरूरी होता है कि उन कीटों की पहचान करें और उनका प्रबंधन करें। आइए इस बारे में हम विस्तार से जानते हैं डॉक्टर श्याम बाबू साह से जो हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट आप हैं कीट विज्ञान विभाग से सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में
11: धन्यवाद
9: सर आप गर्मा सब्जियों की खेती करने वाले किसान भाई बहनों को विस्तार से बताइए कि कौन कौन से कीट होते हैं जो गर्मा

0: सब्जियों में लगते हैं और उनका प्रबंधन कैसे किया जाए।
1: नमस्ते किसान भाइयों, सबसे ज़्यादा जो कद्दू वर्गीय जो सब्जी है जो इस मौसम में लगते हैं, अब इस कद्दू वर्गीय में कौन कौन है, तो इसमें जो नेनुआ है, उसके बाद करेला है, उसके बाद आपको जो है विभिन्न प्रकार के खीरा है और कद्दू है, ये सारी चीज़ें जो है, परवल है, ये सब जो है कद्दू वर्गीय में आती हैं। उसके बाद किसान भाइयों की भिंडी भी इस सीजन में लगता है, तो ये मुख्यतः जो है इस मौसम में लगने वाले जो है ये विभिन्न प्रकार के फसल है। अब हम इसमें बात करते हैं कि किन किन फसलों में कौन कौन से कीट लगते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कद्दू वर्गीय में। कद्दू वर्गीय में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसमें जो हम लोग बात करें तो जैसे करेला की बात करते हैं, तो करेला में क्या होता है कि शुरुआती कंडीशन में इसमें जो शक करने वाले होते हैं, जो पौधे के पत्तियों से रस चूसने वाले कीट होते हैं, तो वो आपको दिखाई देंगे। और इसके चलते क्या होता है कि आप देखेंगे कि करेला का जो पत्तियां हैं, पौधे में जो पत्तियां पाई जाती हैं, तो वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। कभी कभार क्या होता है कि इसमें जो है ये थोड़ा थोड़ा स्पॉट्स आएंगे और बाद में क्या होता है कि ये सूखने लगते हैं, उनकी जो पत्तियां हैं सो सूखने लगती हैं। और ये जो है एक सकिंग टाइप का जो पेस्ट है उसके चलते होता है, जैसे जो थ्रिप्ट है या वाइट फ्लाई है, इसके चलते होता है। तो इनसे हम लोग, दूसरी बात क्या है कि, और जो दूसरा है इसमें फ्रूट फ्लाई का प्रकोप होता है, तो फ्रूट फ्लाई इसके चलते क्या होगा, जो करेला का जो फल होता है, तो इसके जो शिशु होते हैं वो वहाँ पे जा कर के पहले से छोटा सा होल क्रिएट करते हैं, छिद्र क्रिएट करते हैं, और बाद में जो है ये करेले के अंदर उसको खा करके और करेला को नष्ट कर देते हैं। तो इनसे हमको बचाव के लिए, अगर हम जैसे कि इनके फ्रूट फ्लाई के लिए अगर बात करें, तो इसके लिए विभिन्न प्रकार के आजकल जो है कि प्रपंच या ट्रैप बोलते हैं अंग्रेजी में, वो आ गया है। और इसके ट्रैप में जो एक क्यू ल्योर ट्रैप है, उस क्यू ल्योर ट्रैप में क्या होता है कि एक ऐसा लकड़ी का चीज जो है कि उसमें लगा होता है और उसके अंदर ऐसा सेंट निकलता है कि उसमें लगता है कि इसमें मादा का सेंट निकल रहा है, जिसके चलते जो कीट का, जो फ्रूट फ्लाई का जो कीट का नर होता है, उसमें ट्रैप में जाके फंस जाता है। और फंसने के बाद क्या होता है कि जो नर की संख्या है वो बहुत कम हो जाती है, और जिसके चलते पुनः जो है इस कीटों का जो जनसंख्या है उतना नहीं बढ़ पाता है, और हमारा जो करेला का जो फल है वो बच जाता है। दूसरा जो है, जो रस चूसने वाले जो कीट है उसको, उसके बचाव करने के लिए हम जो येलो स्टिकी ट्रैप का इस्तेमाल करते हैं, और ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें एक कार्ड का, जैसे कि हम लोग जो एक जो पढ़ने वाला जो पेपर होता है वो, या लिखते जो हम लोग हैं, उसी साइज का एक कार्ड होता है, और वो कार्ड जो होता है पीला रंग के होता है, और इस पीले रंग के कार्ड पे इस पे गोंद लगा होता है, और इस जो गोंद लगे हुए जो कार्ड है, जो पीले कार्ड है, इसको हम लोग किसी लकड़ी के माध्यम से करेले के फील्ड में लगभग 1.5 फीट ऊंचाई पे इसको हम लोग लगाते हैं। इसमें होता क्या है कि जितने भी रस चूसने वाले जो कीट है उनको लगता है कि ये उसका करेला का फूल है, और उस करेले के फूल को समझ करके वो उस पे जाते हैं, और जाने के बाद क्या होता है वो उसी में चिपक जाते हैं, जिसके चलते क्या है कि पुनः जो है कि ये जो कीट है उसकी संख्या कम हो जाती है, और जो हमारे जो करेला की फसल में जो विभिन्न प्रकार के जो ये रोग का भी ये फैलाव करते हैं उससे बचाव हो जाता है। तो ये आपके करेला पे हो गया। और पुनः जब हम लोग बात करें तो जैसे कि खीरा है, तो खीरे में भी लगभग ये फ्रूट फ्लाई का ही प्रकोप जो है सबसे ज़्यादा होता है, और खीरे में भी हम इस प्रकार के ट्रैप को प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जिसको जो नेनुआ बोलते हैं किसान भाइयों, तो नेनुआ में भी सेम टाइप की बात आती है। इसके बाद क्या है कि ठीक है आपको अगर ट्रैप नहीं मिलता है तब क्या करें, तो उस कंडीशन में चूंकि ये सब्जियां हैं जिसको हम लोग बहुत जल्दी मतलब पेस्टिसाइड छिड़कने के बाद इसको लंबे टाइम तक नहीं रखते, तुरंत उसको हम लोग सब्जी खा लेते हैं, तो इसमें क्या है कि बहुत जो विषाक्त जो कीटनाशी है उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके इस्तेमाल करने से क्या है कि वो हमारे जो शरीर है उस पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है और विभिन्न प्रकार के असाध्य रोगों का हम लोगों का ये कारण बनता है। तो उसे इसे में है कि नीम का तेल जो होता है, नीम ऑयल जिसको बोलते हैं, उसको 1500 ppm जो है उसकी 4 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में हम लोग इसको शाम के समय में जो है कि इसको छिड़काव कर सकते हैं। अब इसके बाद भी जो है कि अगर लगता है कि नहीं सो अगर ये कंट्रोल नहीं हो रहा है अगर नीम के वायल से, लेकिन मुख्यतः ये है देखा गया है कि नीम के वायल को अगर हर एक हफ्ते पे अगर हम रिपीट करते हैं मतलब दोहराते हैं तो ये इंसेक्ट की संख्या कम रहती है और आपको रासायनिक कीटनाशी की ओर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन अगर किसान भाइयों अगर ये भी उपलब्ध है आपको नहीं है तो अगर ये फ्रूट फ्लाई से समस्या है तब उस कंडीशन में जो है इसमें जो इमामेक्टिन बेंजोएट एक दवा है उसकी जो है 0.4 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में इस और उसमें कुछ स्टिकर मिला करके इसको छिड़काव करें, तो इससे जो है कि आपको इससे निदान हो जाएगा। अब जो बात करते हैं इस कुकुरबिट्स या लतीदार के अलावे, तो लतीदार में किसान भाइयों एक और कीट है जिसको हम लोग को उस पर चर्चा करना चाहिए, जैसे कि उसको बोलते हैं अंग्रेजी में बोलते हैं रेड पम्पकिन बिटिल, जो लौकी में जनरली आप देखते होंगे जहाँ पे भी कद्दू जो लगता है तो उसके झांका पे या नीचे में भी आपको देखते हैं तो लाल लाल टाइप के आपको कीट दिखाई देते हैं जिसको लाल भृंग हम लोग कहते हैं। तो ये लाल भृंग को रोकथाम करने के लिए शुरुआती कंडीशन में क्या होता है कि अगर राख है किसान भाइयों के पास उपलब्ध है राख, तो इसको राख का भुड़काव सवेरे के समय में करने से ये जो कीट है ये भाग जाते हैं और भागने के कारण आपको कोई रासायनिक कीटनाशी इस्तेमाल किए बिना इसे आप बच सकते हैं। ये कीट जो है मुख्यतः जो है आपके जो ज़मीन में जो सटे पहले तो ये पत्तियों को खाते हैं पत्तियों, उसके बाद क्या है कि अगर आपका फल निकलता है कद्दू का निकलता है जो ज़मीन से सटे हुए रहता है तो उसमें भी ये हल्का सा छिद्र बनाता है और बाद में जो है इसके अंदर खा करके और सब्जी को जो है मतलब वो ख़राब कर देता है, वो उसके मार्केट वैल्यू को जो है कम कर देता है। तो ये है एक तो राख छिड़काव करना है, दूसरा जो है इसमें एक फेनभल का जो पाउडर आता है उसका 2% मात्रा जो है उसे 10 से 15 केजी जो है प्रति हेक्टेयर की दर से जो है उसको सवेरे के समय में भुड़काव करने से ये जो लाल भृंग है इससे भी आप छुटकारा पा सकते हैं। तो ये तो हुई आपको कद्दू वर्गीय सब्जियों के लिए। अब जो एक बहुत जो इम्पॉर्टेंट जो पेस्ट है वो है भिंडी, तो भिंडी के लिए भी भिंडी में जो है कौन कौन जनरली कीट लगते हैं, तो भिंडी में सबसे ज़्यादा जो है आप देखते होंगे कि जो उसका जो फल है तो फल को आप देखते होंगे कि उसमें छोटा सा पहले छिद्र करता है फिर बाद में क्या होता है कि आपके भिंडी को टेढ़े मेढ़े कर देता है वो, तो ये फल एवं प्ररोह बेधक कीट इसको बोलते हैं। तो ये इसके चलते क्या होता है ये आपका दो तरह से क्षति करता है, एक शुरुआती कंडीशन में ये क्या करता है कि जो भिंडी का जो छोटे पौधे होते हैं जो बढ़ने वाला पोर्शन होता है तो ये इसके जो शिशु है उसी में उसके बढ़ने वाला पोर्शन में ही उसको काट देता है और काट देने के बाद क्या होता है कि जो उसको बढ़ने वाला जो कली होता है चूँकि उसी को काट देता है तो पुनः जो है है कि नीचे से या बगल से कली निकलती है, जिसके चलते जो है कि उत्पादन पे बहुत मतलब इसका प्रभाव पड़ता है। तो एक तो ये है शुरुआती कंडीशन में, और बाद की कंडीशन में जो है कि आपके फल को ये टेढ़े मेढ़े कर देते हैं, और आपका जो है कि कभी कभी आप देखेंगे क्या कि जो भिंडी का जो बढ़ने वाला जो एरिया है, जो भाग है ऊपरी वाला भाग, वो झुका हुआ नीचे की ओर गिरा हुआ है, क्योंकि उसको काट देते हैं इसके शीशु। तो अब इससे हम लोग कैसे इसका बचाव कैसे करें, तो सबसे पहले तो इसमें ये है कि आप अगर ऐसे भिंडी आपके अगर में दिखती है तो उसको आपको तोड़ करके खेत में कभी नहीं फेंके, उसको एक जगह जमा करें और उसको मिट्टी में दबा दें। तो पहला काम तो ये है। उसके बाद क्या है कि नीम आधारित जो है कि कीटनाशी हम लोग जो है कि इसमें छिड़काव कर सकते हैं। जैसे कि हमने बताया कि नीम की 1500 ppm की मात्रा जो है 4 लीटर पानी में प्रति लीटर पानी में इसको छिड़काव करना है। दूसरा जो दवा कीटनाशी है वो है इमामेक्टिन बेंजोएट। ये इमामेक्टिन बेंजोएट पूना जो है 0.4 ग्राम प्रति लीटर पानी में, या यूँ कहें तो 10 लीटर पानी में 4 ग्राम इमामेक्टिन बेंजोएट की दवा इसमें देना है। अब इमामेक्टिन बेंजोएट जो है ये लिक्विड के फॉर्म में नहीं होता है, ये एक झिल्ली के तरह होता है। तो पहले इसको हम लोगों को घुला लेना है, और घुलाने के बाद तब इसको जो है हमारा स्प्रेयर है उस स्प्रेयर में डालना है, और उसमें कुछ स्टिकर की मात्रा, जैसे कि अगर स्टिकर आपके पास नहीं हो तो 1 रुपये वाला जो शैम्पू का सैसे आता है वो इसमें डालिए, और पुनः उसको अच्छी ढंग से मिला लेने के बाद इसको जो है कि शाम के समय 4 बजे के बाद इसको जो है छिड़काव करिए। तो ये हो गया। दूसरा जो कीटनाशी है वो स्पाइनोसेड है, स्पाइनोसेड 45 EC। यह एक लिक्विड के फॉर्म में यह कीटनाशी पाया जाता है, और इसका जो है आधा ml मात्रा जो है प्रति लीटर पानी में छिड़काव करने से आप इसे जो है कि रोकथाम कर इससे हो जाता है। अब दूसरा जो है कि एक है जो लाल बग होता है एक भिंडी में, और ये क्या करता है कि ये इसके जो शिशु और जो वयस्क होते हैं वो रस चूसते हैं आपके जो भिंडी के जो पत्तियां होती है उसके, और जिसके चलते क्या होता है कि ये पत्तियां सूख जाती है। तो चूंकि ये एक बग है, रस चूसने वाली कीट है, इसीलिए इसके कंट्रोल के लिए मैनेजमेंट के लिए थायोमेथोक्जम का जो है 35 AC का 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसको छिड़काव करना है, ठीक है। थायोमेथोक्जम 75 AC। और दूसरी जो दवा है इसको हम लोग जो इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें है इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL। इसकी जो है 1 ml मात्रा जो है प्रति 3 लीटर पानी में इसका छिड़काव करना है। अगर संख्या ज़्यादा हो तो 0.5 ml प्रति लीटर पानी में, साथ में हम किसान भाइयों बराबर बोलते हैं कि स्टिकर इसमें मिलाना ही मिलाना है। स्टिकर के मिलाने से, अगर स्टिकर या शैम्पू के मिलाने से ये कीटनाशी की क्षमता को बढ़ा देता है, और ये कीटों के रोकने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है, इसलिए स्टिकर आप जरूर लगाएं। तो ये भिंडी में लगने वाले जो मुख्यतः जो कीट है। दूसरा, अब चूंकि बीच बीच में किसान भाइयों पानी भी हो जा रहा है जो इस साल जो हम लोग देख रहे हैं, तो वहाँ पे जो क्या होता है कि आप देखेंगे कि आपका जो भिंडी का जो पूरा पत्ती है तो उसमें जो वेन होता है वो पीला दिखता है, और बाद में क्या होता है कि पूरी जो भिंडी का जो पत्ती है वो चितकावर टाइप से हो जाती है, पीली टाइप से हो जाती है, और एडवर्स कंडीशन में जब और ज़्यादा जब इसकी व्यापकता होती है तो कभी कभी आपका भिंडी भी पीला पीला जब निकलने लगता है। तो ये भी जो सफ़ेद मक्खी है उसके चलते होती है, और यही जो मक्खी है सफ़ेद मक्खी ये इसके विषाणु को एक पौधे से दूसरे पौधे पे स्थानांतरित करती है। इसीलिए जब किसान भाइयों आपको अगर आपके खेत में ऐसा दिखता है पत्तियों पे ऐसा अगर ऐसा सिम्टम दिखता है ऐसा, तो आपको क्या करना है कि जहाँ पे दिखे अगर किसी ब्रांच में है तो उस ब्रांच को मतलब किसी चीज से काटिए और काटने के बाद उसको मिट्टी में दबा देना। अगर पूरे पौधे में ही अगर है तो पूरे पौधे को ही नीचे से जड़ से उखाड़ करके और उसको खेत में नहीं छोड़ना है, उसको जितने भी अगर 5-10 पौधे में है आपके खेत में तो उसको उखाड़ करके और उसको जो है मिट्टी के अंदर दबा दीजिए। चूंकि अगर आप किसान भाई उखाड़ करके अगर फील्ड में ही छोड़ देंगे, खेत में ही छोड़ देंगे, तो उसमें जो उस कीट का जो जीवन चक्र के जो रहता है तो पुनः आपका जो स्वस्थ पौधा है उसके ऊपर वो जाता है और जाने के बाद उसको पुनः उसमें जो विषाणु है उस विषाणु को वो अंतरित कर देता है, उसमें डाल देता है, और जिसके चलते हैं कि आपका जो अच्छा पौधा है भिंडी का उसमें भी ये रोग फैल जाएगा। तो इन चीज़ों को आपको किसान भाई ख्याल रखना है और मतलब इन चीज़ों के करने से हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो गर्मी के गर्मा का जो सब्जी लगा हुआ है इसको आप अच्छे से कीटों से नियंत्रित कर सकेंगे और अपनी उत्पादकता को बढ़ा करके आप अपनी आमदनी को बढ़ा सकेंगे। धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच सर। उम्मीद है कि किसान भाई बहन आप सर के द्वारा जो भी बताए गए उपाय हैं उन्हें अपनाएंगे और कीटों का बेहतर प्रबंधन करेंगे। अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले कुछ खास बात की अपना और अपनी फसलों का रखें खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त है जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
4: याद रखो,
6: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
7: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases.
8: So, see you at the vaccination center soon.
9: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
10: FM Green, हरियाली से खुशहाली तक।
11: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 8 जुलाई से 12 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। साथ ही इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 8 से 12 जुलाई के दौरान 15 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, पिछले कुछ दिनों में वर्षा हुई है, इसलिए आप वर्षा के जल का लाभ उठाते हुए धान की सबौर दीप किस्मों जैसे प्रभात, शुष्क सम्राट, सहभागी की बुआई 10 जुलाई तक जरूर कर दें। और किसान भाई बहनों, बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए कार्बन डाइजिन की 2 ग्राम मात्रा को 1 किलोग्राम बीज उपचारित करने के लिए इस्तेमाल करें। और ध्यान दें कि 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई जरूर करें। मध्यम अवधि वाली धान की किस्में जैसे राजेंद्र नीलम, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र श्वेता की रोपाई कर सकते हैं और धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी की जा सकती है। किसान भाई बहनों, अगर आप श्री अन्न की खेती करना चाहते हैं तो ध्यान दें, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें और मड़ुआ की वकुला KMR 316 GPU 67 VL 379 राजेंद्र मड़ुआ RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1 इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, उचास जमीन में अरहर की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1, राजेंद्र अरहर 2 इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और ध्यान दें कि अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का उपयोग करना बिल्कुल न भूलें। और किसान भाई बहनों, अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना ना भूलें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3 और गंगा 11 है। जिनके खेत में मूंग लगा है उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो किसान भाई बहन सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, भिंडी, कद्दू, खीरा, निनवा और लौकी जैसी फसलों में निराई गुड़ाई करते रहें और खरपतवार नियंत्रित रखें। ध्यान दें कि पत्ती खाने वाली सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करना जरूरी होता है और अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डायमेथो 830 ईसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में गोबर की खाद डालना बहुत जरूरी होता है। खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्री फाउंड डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और ध्यान रखें कि बीज गिराने के पहले बीजोपचार जरूर कर ले। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचों में जरूरत के हिसाब से छटाई कर ले जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचे में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा कर हटा दे। इससे कीट और रोगों के प्रकोप में कमी आएगी और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलेगा। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, महीने के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, इसलिए ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में टीके नहीं लगाए हो तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दे। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभकारी। यहाँ हम बातें करते हैं सेहत की, घर परिवार की और उन सवालों की जो अक्सर हमारे मन में तो आते हैं पर जुबान पर नहीं आते। आज का विषय है गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्वाइकल कैंसर से बचाव और HPV वैक्सीन को लेकर फैलती अफवाहें। कई घरों में ये बात अभी नहीं है। कहीं कहा जाता है कि ये टीका जरूरी नहीं, कहीं कहा जाता है कि इससे शरीर पर असर पड़ता है, और कहीं कोई व्हाट्सएप पर वीडियो भेज देता है तो पूरा घर असमंजस में पड़ जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम अपने बच्चों का भविष्य किसी फॉरवर्ड के भरोसे छोड़ सकते हैं, या हमें सही जानकारी, डॉक्टर की सलाह और सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा करना चाहिए। आज हमारे साथ हैं हमारी अपनी टीकन देवी, जो हर मुश्किल बात को आसान भाषा में समझाती हैं। और थोड़ी देर में हम सुनेंगे एक माँ की कहानी, डर, उलझन, गुस्सा और फिर धीरे धीरे भरोसे तक पहुंचने की कहानी। टीकन भाभी, स्वागत है।
1: धन्यवाद। और मैं तो यही कहूंगी कि किस भी नई दवाई, तकनीक या सही सुझाव के बारे में डर होना गलत नहीं है, लेकिन उसके बारे में सही जानकारी पाना, डॉक्टर के पास जाना या स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों के बारे में सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके डर कर बैठ जाना सबसे बड़ी गलती होती है। अगर हम आज HPV वैक्सीन की चर्चा कर रहे हैं तो माँ बाप डरते हैं, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की चिंता होती है कि कई लोग अपने अपने घरों में डर का हाथ पकड़कर बैठ गए हैं और अफवाह पर विश्वास कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि सच कहीं बाहर इस सब अफवाहों के बीच छिप गया है। हम आज उसी सच को घर के भीतर बुलाएंगे।
0: बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं। मान लीजिए एक साधारण सा घर है, शाम का समय है, खाना बन रहा है, बेटी स्कूल से कोई जानकारी लेकर आई है। माँ थकी हुई है, लेकिन मन में एक और थकान है जो सुन सुनकर जमा हुई है। उस घर में आपको ले चलता हूं।
1: बिल्कुल, चलिए चलते हैं उस घर के भीतर।
2: अरे टीकन भाभी, बड़े सही वक्त पर आई हैं। देखिए तो जरा, पायल अभी स्कूल से आई है और बस ये कागज मुझे पकड़ाकर चली गई ट्यूशन के लिए।
1: हाँ सुनीता, मुझे इस कागज की जानकारी है, तभी तो मैं आई हूँ। ये कागज जरा अलग है। स्कूल में आशा दीदी बता रही हैं कि 14 साल की लड़कियों के लिए HPV का टीका लगेगा। मुझे लग रहा था कि तुम परेशान हो जाओगी। तुम्हारे पति तो दूसरे प्रदेश में जंगलों के बीच सड़क बनाने का काम कर रहे हैं, रोज उनसे बात भी नहीं पाती हो, तो मैंने सोचा कि मैं ही तुमसे बात कर लूं।
2: अरे भाभी, ये HPV वे या जो भी नाम ही इसका एक मुसीबत हो गई है। 3 दिन से न जाने कितने तो मैसेज आ चुके हैं, कितने फोन आ रहे हैं। को कह रहा है सरकारी टीका है, लगवा दो। कुछ कह रहे हैं अरे बिल्कुल मत लगवाना, पता नहीं क्या असर हो। अब तो बैक छे इतने छोटे हैं। कुछ लोगों ने तो फोन पर वीडियो भेज दिया, कह रही थी इससे लड़कियों के पीरियड्स खराब हो जाते हैं। कोई कह रहा है बांझ जो जाएंगी बेटियां, किसकी सुने। ये तो बहुत बड़ा निर्णय लेना होगा।
1: और तुमने वीडियो देखा?
2: देखा। सफेद कोट पहनी एक औरत बोल रही थी कि मेरी क्लिनिक में ऐसे ऐसे केस आए। अब हम कैसे माने क्या सही है क्या गलत, हम डॉक्टर थोड़े हैं।
0: सुनीता, तुम तो पढ़ी लिखी हो, यही पढ़ाई लिखाई का सबसे बड़ा फायदा होता है। जब कोई बिना ठोस स्रोत के बस सफेद कोट पहनकर कैमरे में देखकर कुछ बोल दे तो वो सच नहीं बन जाता। हमारे पास, क्या तुम्हारे अपने सामुदायिक रेडियो पर जो सामग्री स्वास्थ्य मंत्रालय की जागरूकता सामग्री में है, उसमें साफ कहा गया है कि क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन की एक ही डोज प्रभावी है, ये मासिक धर्म पर असर नहीं डालती और बांझपन का कारण नहीं बनती। ये जानकारी वर्षों के वैज्ञानिक अध्ययन और निगरानी पर आधारित है। लेकिन सुनते हैं सुनीता के मन में और क्या चल रहा है।
2: टीकन भाभी, एक बात कहूं, हमारे यहाँ जो भी नई चीज आती है पहले हम साधारण लोगों पर और गरीबों पर ही क्यों आजमाते हैं, ये भी मन में आता है। ऊपर से ये भी सुनने को मिला कि पहले 3 डोज लगती थी, अब 1 बोल रहे हैं। कोई कह रहा है ये जल्दीबाजी है।
1: तुम्हारा सवाल ठीक है और ऐसे सवाल पूछने भी चाहिए, लेकिन जवाब सही जगह से लेना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की सामग्री कहती है कि अब जो क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन दी जा रही है उसकी 1 डोज प्रभावी मानी गई है। ये कोई हवा में लिया फैसला नहीं है, दुनिया भर में शोध, सुरक्षा निगरानी और विशेषज्ञों की सलाह के बाद ये नीति बनी है। और ये वैक्सीन कोई आज की चीज नहीं है, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है। 100-125 नहीं, 160 से ज्यादा देशों में इसका इस्तेमाल हुआ है। इतने साल की निगरानी के बाद ही इसे सार्वजनिक कार्यक्रम में लाया गया है।
2: पर देखो, हमें तो यही डर लगता है कि कहीं बेटी के आगे चलकर शादी ब्याह, बच्चा होने में कोई दिक्कत ना हो जाए।
1: यही अफवाह सबसे ज्यादा फैल रही है। पर मंत्रालय के मिथक बनाम तथ्य वाले संदेशों में साफ लिखा है, एचपीवी वैक्सीन से बांझपन नहीं होता, बल्कि ये भविष्य को मजबूत करती है, नुकसान नहीं पहुंचाती। और सिर्फ पोस्टर नहीं, जिन्होंने वैक्सीन ली उनकी गवाही भी है। किसी ने 13 साल की उम्र में वैक्सीन ली और कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ। एक और महिला की कहानी है, उन्होंने 2010 में वैक्सीन ली थी और आज वो माँ है। यानी जो डर फैलाया जा रहा है उसका आधार नहीं है।
0: यह बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। आज माँ है वाला प्रमाण सिर्फ भावनात्मक नहीं, अफवाह के एक बड़े झूठ को तोड़ता है। और यही SSLK की ताकत है, मन की घबराहट को तथ्य और अनुभव दोनों से संभालना।
2: अच्छा, मान लिया कि बांझपन वाली बात झूठ है, पर पीरियड्स के बारे में? लड़कियों का शरीर नाजुक होता है, कोई गड़बड़ हुई तो?
1: देखो, इस पर भी साफ जानकारी है, HPV वैक्सीन मासिक धर्म को प्रभावित नहीं करती और पीरियड्स के दौरान भी ये सुरक्षित है। पीरियड्स बिगड़ जाएंगे वाली बात अफवाह है। जब डॉक्टर, मंत्रालय और वैज्ञानिक सामग्री एक ही बात कह रहे हैं तो फिर सोशल मीडिया की बात क्यों माने?
2: इसलिए कि सोशल मीडिया वाले डर जल्दी बेच देते हैं, सच तो धीरे धीरे समझ में आता है।
1: बिल्कुल, अफवाह तेज भागती है, सच धीरे चलता है, इसलिए हमें सच को बैठकर सुनना पड़ता है। तुम अपनी बेटी का चेहरा देखो और सोचो, क्या उसे एक ऐसे कैंसर से बचाने का मौका छोड़ दोगी जो रोका जा सकता है?
0: ठीकन भाभी, यही तो जरूरी सवाल है। हमारे पास उपलब्ध सार्वजनिक जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है कि सर्वाइकल कैंसर रोका जा सकता है। ये उन कुछ कैंसरों में है जिनकी रोकथाम संभव है। HPV संक्रमण अक्सर बिना लक्षण फैलता है, पर समय के साथ गंभीर रूप ले सकता है। वैक्सीन उस कहानी को शुरू होने से पहले बदल सकती है।
2: एक बात और, अगर ये इतना अच्छा है तो खर्चा कितना आएगा? सच कहूं टीकन भाभी, दवा इलाज का नाम सुनते ही जेब का डर भी लगने लगता है।
1: ये सवाल भी बड़ा है और जरूरी है, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि अच्छा इलाज मतलब महंगा इलाज। लेकिन ये वैक्सीन 14 साल की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध है, यानी मुफ्त। यही नहीं, कई संदेशों में बार बार कहा गया है, सुरक्षा किसी की जेब पर निर्भर नहीं होनी चाहिए।
2: मुफ्त? सच में?
1: हाँ, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर। और जहां व्यवस्था हो वहां यूविन जैसे प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट की भी जानकारी दी जा रही है। मगर यदि ये सब समझ में ना आए तो सीधा अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, PHC, CHC या जिला अस्पताल में पूछो। डॉक्टर से पूछो, ANM से पूछो, आशा से पूछो। फॉरवर्ड भेजने वाले से क्यों पूछना है?
2: सुनने में आसान लगता है, पर घर वाले भी तो माने। कोई सास कुछ कहेगी, कोई पड़ोसन कुछ, फिर पति कहेगा, देख लो तुम जैसा ठीक समझो। लेकिन जिम्मेदारी माँ के सिर पर आ गिरती है।
1: इसीलिए तो मैं कहती हूँ, माँ को अकेला मत छोड़ो। ये सिर्फ माँ का फैसला नहीं, परिवार की समझ का फैसला होना चाहिए। पर अगर परिवार उलझ रहा है तब भी माँ को तथ्य पकड़ना चाहिए। देखो, कोई भी समझदार फैसला 3 चीजों पर टिकता है, वैज्ञानिक प्रमाण, डॉक्टर की सलाह और विश्वसनीय सरकारी जानकारी। बाकी सब शोर है।
0: श्रोताओं, जरा सोचिए, यदि किसी घर में बच्ची के लिए स्कूल से सूचना आए और उसी शाम मोबाइल पर डर फैलाने वाला वीडियो आ जाए तो कौन जीतेगा? वही जीतेगा जिसकी आवाज आप ज्यादा सुनेंगे। इसलिए सही जानकारी को जोर से बोलना पड़ेगा।
2: लो, फिर मैसेज आया। पड़ोस वाली कमला लिख रही है, मत लगवाना, हमारी रिश्तेदारी में किसी को बुखार आ गया था। अब बताओ ये क्या माने?
1: कभी कभी हल्का बुखार, इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द, लालपन जैसी हल्की प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन यही हर इंजेक्शन में संभव है। इससे ये नहीं साबित होता कि टीका खतरनाक है। बड़ी बात यह है कि गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ बताए गए हैं और सुरक्षा निगरानी लगातार होती है। इसे ही विज्ञान कहते हैं, निगरानी, प्रमाण, समीक्षा। अफवाह क्या करती है? एक घटना उठाती है, उसे बढ़ाकर पूरा सच बना देती है।
2: अच्छा, मान लो मैं कल स्वास्थ्य केंद्र चली गई, वहां क्या पूछूं?
1: सीधा पूछो, मेरी बेटी 14 साल की है, क्या एचपीवी वैक्सीन यहाँ मुफ्त उपलब्ध है? क्या ये एक डोज है? क्या इसे पीरियड्स के दौरान भी दिया जा सकता है? क्या इससे फर्टिलिटी पर असर पड़ता है? डॉक्टर तुम्हें साफ जवाब देंगे, और अगर तुम चाहो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी।
2: तुम चलोगी तो हिम्मत रहेगी। सच कहूं, मुझे अपनी बेटी के लिए डर तो है, लेकिन मुझे अपनी अज्ञानता से भी डर लगता है। कहीं मैं ही गलत फैसला ना कर दूं।
1: यही तो समझदारी है, जो नहीं पता उसे मान लेना कि मुझे नहीं पता, उसके बाद सही जगह से जानना। कई लोग तो यही गलती करते हैं कि बिना समझे जोर से बोलने लगते हैं, और जोर की आवाज को सच समझ लिया जाता है।
0: इसीलिए सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम बिल्कुल सही जानकारी देता है और दूरदृष्टि के साथ आपके लिए कार्यक्रम लाता है। ये कार्यक्रम खास तौर पर उन परिवारों के लिए है जो दुविधा में होते हैं, जिनमें सरकारी महकमों, जानकारियों, मुफ्त इलाज के प्रति भ्रम होता है और साथ ही डर होते हैं। अपने डर को नकारिए मत, उसे सही रास्ता दीजिए, परंतु उस रास्ते के अंत में डॉक्टर हो, डेटा हो और भरोसेमंद जानकारी हो, न कि अफवाह। सही जानकारी ही लाभकारी होती है।
2: टीकन, तुमने एक बात कही, सर्वाइकल कैंसर रोका जा सकता है। ये बात मेरे मन में अटक गई। हम तो कैंसर का नाम सुनते ही सोचते हैं कि बस अब बचना मुश्किल।
1: इसलिए जागरूकता जरूरी है। महिलाओं के लिए आगे चलकर नियमित स्क्रीनिंग भी महत्वपूर्ण है। जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है, कम उम्र की लड़कियों के लिए टीकाकरण और महिलाओं के लिए समय समय पर जांच दोनों मिलकर सुरक्षा की दीवार बनाते हैं। छोटी उम्र में सुरक्षा, बड़ी उम्र में समय पर पहचान, यही समझ घर घर जानी चाहिए।
2: यानी मेरी बेटी के लिए टीका और हमारे लिए जांच की समझ।
1: बिल्कुल, क्योंकि महिलाओं की सेहत को अक्सर घर में आखिरी नंबर मिलता है। पहले सबका खाना, सबका काम, सबकी चिंता, पर अपनी सेहत के बारे में कब सोचती हैं? जब बीमारी बढ़ जाती है। ये बदलना होगा।
0: यही SSLK का मकसद है, सिर्फ जानकारी देना नहीं, घरेलू सोच बदलना। अब सुनते हैं सुनीता ने क्या फैसला लिया।
2: टीकन भाभी, मैंने ठान लिया है, कल सुबह स्वास्थ्य केंद्र चलेंगे, वहां डॉक्टर से बात किए बिना मैं ना हाँ कहूंगी ना ना। लेकिन एक बात पक्की है, अब मैं फॉरवर्ड देखकर फैसला नहीं करूंगी।
1: बस यही जीत है। सही सवाल पूछना ही आधी सुरक्षा है,
2: और अगर डॉक्टर वही कहे जो तुम कह रही हो तो मैं अपनी बेटी को टीका लगवाऊंगी। फिर जो पड़ोसन पूछेगी उसे भी यही कहूंगी, फॉरवर्ड नहीं तथ्य देखो।
1: और अगर कोई बोले कि हमारे जमाने में तो नहीं लगा, तो कहना हमारे जमाने में बहुत सी अच्छी चीजें नहीं थी, इसलिए आज जो उपलब्ध है उसे अपनाने में समझदारी है, ठुकराने में नहीं।
0: जाने से पहले एक छोटा सा संवाद और। कई बार लोग कहते हैं हम तो गांव में रहते हैं, हमें ऐसी बीमारियां कहां। ये भी गलत फहमी है, बीमारी जगह देखकर नहीं आती। जानकारी और बचाव भी शहर गांव देखकर नहीं रुकना चाहिए। सरकार इसलिए कार्यक्रम बना रही है कि सुरक्षा पहुंच में हो, सिर्फ बड़े अस्पतालों तक सीमित न रहे।
2: सच है, कई बार हम सोचते हैं कि बड़ी बीमारी सिर्फ बड़े लोगों की होती है, पर जब घर में किसी को कुछ हो जाता है तब समझ आता है कि बीमारी जात, धन, जगह देखकर नहीं आती।
1: और इसलिए रोकथाम सबसे बराबरी वाली चीज है। जब टीका सरकारी केंद्र पर मुफ्त उपलब्ध है तो ये सिर्फ स्वास्थ्य नहीं, न्याय की बात भी है। जो चीज सिर्फ पैसे वालों तक सीमित थी वो अब आम परिवारों तक पहुंच रही है। इसे शक से नहीं समझ से देखना चाहिए।
2: पर हाँ, व्यवस्था में कमी हो तो पूछना भी चाहिए।
1: बिल्कुल, कोई चीज समझ ना आए तो पूछो, कोई कागज चाहिए तो पूछो, अपॉइंटमेंट कैसे होगा पूछो। जानकारी मांगना अधिकार है, यही नागरिक समझ है।
0: और एक जरूरी बात, यदि किसी माँ को अभी भी डर लग रहा है तो वो अकेली नहीं है। डर होना सामान्य है, लेकिन डर के साथ बैठकर सही जानकारी सुनना भी उतना ही जरूरी है। कई सरकारी जागरूकता संदेशों में यही कहा गया है कि स्वास्थ्य के फैसले डॉक्टर, विज्ञान और प्रमाण से गाइडेड होने चाहिए, वायरल फॉरवर्ड से नहीं। ये सिर्फ एक नारा नहीं, जीवन बचाने वाली बात है।
2: मैं सोच रही हूँ कल केंद्र से लौटकर अपनी देवरानी को भी बताऊंगी। उसकी बेटी भी इसी उम्र की है, वो तो मोबाइल पर जो आता है वही मान लेती है।
1: उसे साथ लेकर जाओ, दो लोग जाएंगे तो दो घरों का डर टूटेगा, फिर शायद चार घरों में बात पहुंचेगी। सेहत की जानकारी भी चूल्हे की आग की तरह है, एक घर से दूसरे घर गर्मी पहुंचाती है।
0: ये पंक्ति नोट कर लीजिए, अफवाह अकेले फैलती है पर भरोसा मिलकर बनता है, और भरोसा तब बनता है जब आशा कार्यकर्ता, ANM, डॉक्टर, माँ, पड़ोस, स्कूल सब मिलकर एक ही सच्ची बात बोले।
2: अच्छा टीकन, अगर मेरी बेटी पूछे अम्मा आपने पहले क्यों डर किया, तो मैं क्या कहूँ?
1: कहना क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। लेकिन प्यार सिर्फ डर नहीं, सही जानकारी जुटाने की हिम्मत भी है। बच्चों के सामने ये स्वीकार करना कि मैं पहले उलझी हुई थी अब समझ गई हूँ, इससे उनका भरोसा भी बढ़ता है।
0: बहुत सुंदर, और यही इस कार्यक्रम का सामाजिक पहलू भी है। हम सिर्फ टीके की बात नहीं कर रहे, हम उस रिश्ते की बात कर रहे हैं जिसमें माँ बेटी के बीच डर के बजाय संवाद हो। यही संवाद भविष्य बदलता है।
1: और जिन घरों में मोबाइल पति के पास रहता है या सास कहती हैं हमें ये सब नहीं आता, वहां भी रास्ता है। सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाओ, स्कूल से पूछो, आशा से पूछो। जानकारी का दरवाजा एक नहीं कई हैं।
2: अब मुझे लग रहा है कि फैसला थोड़ा साफ हो गया है। डर अभी भी है, पर अब डर के सामने जवाब भी है।
1: बस यही चाहिए, सवाल रहे जवाब भी रहे, तभी घर सही निर्णय तक पहुंचता है।
0: शुक्रिया टीकन भाभी आपका, और सुनीता जी आपका भी। साथियों, अब अंत से पहले आज की मुख्य बातें संक्षेप में। पहली, क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन की एक डोज प्रभावी है। दूसरी, ये मासिक धर्म पर असर नहीं डालती और पीरियड्स के दौरान भी सुरक्षित है। तीसरी, ये बांझपन का कारण नहीं बनती। चौथी, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है और 160 से अधिक देशों में उपयोग में है। पांचवी, 14 साल की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध है। छठी, स्वास्थ्य संबंधी निर्णय सोशल मीडिया फॉरवर्ड से नहीं, डॉक्टर और प्रमाणित जानकारी से लें।
1: और मेरी तरफ से एक बात और, मां होना सिर्फ डरना नहीं है, पूछना भी है, और पूछकर सही जवाब तक पहुंचना वही असली जिम्मेदारी है।
2: और मेरी तरफ से, मैं अब अपने डर को छुपाऊंगी नहीं, पर उसे झूठ से पालूंगी भी नहीं, सही जानकारी लेकर ही फैसला करूंगी।
0: यही है सेहत सही लाभ कई की सीख, चिंता से समझ तक और समझ से सुरक्षा तक। यदि आपकी बेटी 14 साल की है तो अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, PHC, CHC या जिला अस्पताल में जानकारी लें, और घर की महिलाओं के लिए स्क्रीनिंग की जानकारी भी अवश्य पूछें। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे उन दो अफवाहों की जो सबसे ज्यादा फैल रही हैं, पीरियड्स बिगड़ना और बांझपन। तब तक याद रखिए, तथ्य चुनिए, सुरक्षा चुनिए। अब एक उपयोगी सूचना, यदि आपके पास स्मार्टफोन है और आपके इलाके में UWIN पंजीकरण की सुविधा सक्रिय है तो आप वहां अपॉइंटमेंट और पंजीकरण की जानकारी ले सकते हैं। यदि ये आपके लिए कठिन है तो भी चिंता की बात नहीं, अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र या आशा ANM से सीधे संपर्क करें। याद रखिए, डिजिटल सुविधा मदद के लिए है, बाधा बनने के लिए नहीं।
3: नमस्ते क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
4: जी
3: प्लीज बताइए, आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
4: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
3: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
6: कौन सी कहानी टीकी?
5: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
7: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
5: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
8: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
5: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल। अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
6: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
5: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात। अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
8: टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
9: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 MHz और एक बार फिर उन्नत कृषि कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे अनु FM ग्रीन पर। जी हाँ श्रोता, उन्नत कृषि कार्यक्रम में हर रोज़ कुछ अच्छी बातें होती हैं, हमारे किसान भाइयों और बहनों के लिए ज़रूरी बातें होती हैं, खेती बाड़ी से जुड़ी बातें होती हैं। तो आज मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि मिट्टी, जी हाँ मिट्टी अगर ना हो तो हम खेती की कल्पना नहीं कर सकते। हाँ, कुछ ऐसे तरह की खेती हैं जैसे कि मशरूम है, उसे हम घर में छांव वाले घर में उगा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे फसल जो सदियों से हमारे किसान भाई उगा रहे हैं वो धरती पर, वो मिट्टी पर उगा रहे हैं, और परंपरा से ये खेती बाड़ी की रीत चलती आ रही है। लेकिन ज़रूरी ये है कि हम मिट्टी भी अच्छे तरीके से जांचें कि उस मिट्टी में पोषक तत्व मौजूद है या नहीं, ये हमारे फसलों को पोषक तत्व प्रदान करेगी या नहीं, तभी हमारा जो मेहनत है, जो हम मेहनत उस खेती बाड़ी में, उस फसल को उगाने में लगा रहे हैं, वो सार्थक होता है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि जब भी हमारे किसान भाई और बहन खेती करें, फसल उत्पादन करें, कुछ बोएं, गेहूं बोएं या आप धान बोते हैं, कुछ भी बोते हैं, तो आप उससे पहले मिट्टी का जांच ज़रूर कर लें, बहुत ज़रूरी है ये। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि आप मिट्टी का जांच ज़रूर करेंगे, इसकी जो महत्व है वो आप ज़रूर जान लेंगे, लेकिन एक तरीका होता है मिट्टी के सैंपल को उठाना धरती पर से, फिर उसको लैब तक ले जाना, तो ये एक नियम है, ये तरीका है, ये एक प्रोसेस है, आपको उससे गुजरना होगा। अगर आप इस तरीके से, आप इस प्रोसेस से मिट्टी को लैब तक ले जाते हो जांच करवाने के लिए, तभी आपको एक सही रिजल्ट मिलता है। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, और हमारे बीच हैं आज डॉक्टर राज किशोर कुमार, और मैं आपको बता दूं ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय से और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ये मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग से। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
10: थैंक यू मैडम। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि अभी मैंने बस संक्षिप्त में बताया कि बहुत ज़रूरी होता है कि पोषक तत्व तो मिले मिट्टी से हमारी फसलों को, तो आप थोड़ा विस्तार में बताएं कि मिट्टी के नमूने जो हम लेते हैं धरती पर से जांच के लिए, उसका क्या उद्देश्य होता है?
11: मैडम, मिट्टी के नमूने प्राप्त करने की विधि और प्रक्रिया उद्देश्य के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। मिट्टी के नमूने का विश्लेषण फसलों के लिए मिट्टी की उर्वरता मूल्यांकन और उर्वरक का सिफारिशों के लिए किया जाता है। बहुत सावधानी से किए गए मिट्टी विश्लेषण के परिणाम भी उतनी अच्छे नहीं आते हैं, अतः मृदा परीक्षण की दक्षता, देखभाल और कौशल जिसके साथ मिट्टी के नमूने एकत्र किए जाते हैं उस पर निर्भर करती है। मिट्टी विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण चरण प्रयोगशाला में नहीं बल्कि खेत से प्रारंभ होता है, जहाँ से नमूने लिए जाते हैं। अलग अलग जगहों पर मिट्टी अलग अलग प्रकार की होती है। इसे देखते हुए ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए कि ऐसे नमूने का चयन करें जो सारे क्षेत्र का एक साथ समान प्रतिनिधित्व करे।
10: जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अलग अलग क्षेत्र के मिट्टी जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, और इसीलिए अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग फसल जो है वो उगाए जाते हैं। चाहे हमारे बिहार क्षेत्र में अगर यहाँ की मिट्टी अलग है तो यहाँ पे कुछ फसल ऐसे हैं जो उगाए जाते हैं जो दूसरे क्षेत्र में, दूसरे राज्य में नहीं उगाए जा सकते क्योंकि मिट्टी समान नहीं है। तो डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी और हमारे किसान भाई भी ये जानना चाहते हैं कि मृदा परीक्षण के लिए क्या विशेष तकनीक है, किन विशेष तकनीक से उन्हें गुजरना होगा?
11: मैडम, मृदा परीक्षण के लिए सबसे पहले मृदा आपको ये बता दे कि मृदा संसाधन प्रबंधन एक अनिवार्य घटक है। एकत्र किए गए प्रत्येक नमूने को क्षेत्र का एक सच्चा प्रतिनिधि होना चाहिए। प्रयोगशाला विश्लेषण से प्राप्त परिणामों की उपयोगिता नमूने की शुद्धता पर निर्भर करती है, इसलिए बड़ी संख्या में नमूने का संग्रह उचित है ताकि उप नमूने द्वारा वांछित आकार का नमूना प्राप्त किया जा सके। सामान्य तौर पर नमूनाकरण प्रत्येक 2 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए एक नमूने की दर से किया जाता है। हालांकि 5 हेक्टेयर के अधिकतम क्षेत्र के लिए कम से कम एक नमूना एकत्र किया जाना ही चाहिए। मृदा सर्वेक्षण कार्य के लिए हम विशेष तरह एक मिट्टी प्रोफाइल प्रतिनिधि से आसपास के क्षेत्र के मिट्टी के नमूने एकत्र कर सकते हैं।
10: तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर आपने ये बताया कि तकनीक क्या है, तो हम ये अब जानना चाहते हैं कि चलिए हम मृदा परीक्षण के लिए अपने फील्ड में चले गए, हमें

0: प्लास्टिक की ट्रे या बाल्टी मिट्टी, ये उपनमूना के लिए हम लोग मिश्रण के लिए एक साफ बाल्टी या ट्रे या साफ कपड़ा लेते हैं। उसके बाद मिट्टी का नमूना के लिए सूचना पत्र, इसमें कपड़ों के थैलियों के बांधने के लिए चिन्हों और टैग के लिए पेंसिल से नकल करने की जरूरत पड़ती है।
1: अच्छा, तो ये कुछ कुछ तरीके होते हैं यहाँ पर, तरीकों के साथ डॉक्टर साहब ने आपको ये भी बताया कि आपको कौन कौन सी चीज़ आपके पास रहनी चाहिए जब आप मृदा परीक्षण के लिए आप जाते हो। तो इसके बाद डॉक्टर साहब आपने इकाई की बात कही, तो हम जानना चाहते हैं कि मृदा परीक्षण में जो नमूना इकाई है इसका हम कैसे चयन कर सकते हैं।
0: इसके लिए किसी क्षेत्र का एक दृश्य सर्वेक्षण वास्तविक नमूने लेने से पहले होना चाहिए, जिसके अनुसार फील्ड को समान भागों में विभाजित करें और जिनमें से प्रत्येक को अलग से नमूना लिया जाता है, और यदि क्षेत्र की सभी स्थितियां समान हैं तो एक क्षेत्र से एक एकल नमूना इकाई के रूप में माना जाता है। ऐसी इकाई 1 से 2 हेक्टेयर से अधिक होनी नहीं चाहिए, और यह एक ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जो किसानों की एक देख रेख में हो, जहां 20 से 50 हेक्टेयर के क्षेत्र में एक नमूना एकत्र किया जा सके और उसका संग्रह किया जा सके।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर लवण जो प्रभावित मिट्टी होती है, अगर हमें उसका नमूना लेना हो तो हम कैसे लें।
0: इसके लिए सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि लवण प्रभावित मिट्टी का कारण क्या है, उसका स्रोत की पारगम्यता क्या है, मौसम में वर्षा का क्या स्रोत है, जल जमाव का क्या स्थिति है, जल तालिका की क्या स्थिति है, मृदा प्रबंधन का इतिहास क्या है, फसल की सिंचाई आवृत्ति प्रजातियों और पौधों के कवर और कड़े पैन या सांद्रता की गहराई कितनी है। इसके लिए ये सब पहले चिन्हित करनी चाहिए। उसके बाद लवण प्रभावित मिट्टी को 2 तरीकों से नमूना लिया जाता है, इसका उपयोग जिप्सम की आवश्यकता की निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इसके लिए नमूनों के 1 से 4 हेक्टेयर में के स्थानों को 2 स्थानों में हटाया जा सकता है। यदि मिट्टी समान रूप से लवण से प्रभावित हो और यदि पैच विशिष्ट हो, मतलब उसका जो पैच बहुत क्षारीय मिट्टी का सब ज़्यादा हो, तो इसके लिए बड़े पैच के लिए अलग से नमूने लिए जाते हैं। और कभी भी अगर लवण की मात्रता ज़्यादा हो तो मिट्टी के विभिन्न गहराइयों जैसे 0 से 15 सेंटीमीटर, 15 से 30 सेंटीमीटर, 30 से 60 सेंटीमीटर और 60 से 100 सेंटीमीटर तक के मिट्टी की गहराई का नमूने लिया जा सके, जिससे उसकी उचित सांद्रता कितनी है उसका आंकलन हम कर सकते हैं।
1: जी जी, तो डॉक्टर साहब अभी आपने कहा कि हमें हमारे पास एक जानकारी पत्र भी रहना चाहिए जब हम मृदा परीक्षण के लिए जाते हैं फील्ड पर, तो ऐसे में अगर जो कोई हमारे किसान भाई और बहन नमूने की पहचान करना चाहते हैं तो जानकारी पत्र में उन्हें क्या क्या लिखना है।
0: इसके लिए सबसे पहले उसमें जानकारी पत्र के लिए किसान का नाम होना चाहिए, खेत का स्थान होना चाहिए, सर्वेक्षण संख्या होना चाहिए, पिछली फसल उगाई गई उसका डिटेल होना चाहिए, अगले मौसम में क्या वो लगाएंगे उसका आकलन होना चाहिए, संग्रह की तारीख होना चाहिए, नमूनाकर्ता जो मिट्टी का जो कलेक्शन किया है उनका नाम होना चाहिए। ये सब इत्यादि जानकारी एक बैग के ऊपर लेवल के रूप में करना चाहिए। और दूसरा बात ये है कि अप्रमाणिक साइट जहाँ से असामान्य सेचित दलदला जमीन, पुराना रास्ता, चैनल, पुराने बंड, पेड़ के पास के क्षेत्र, पिछले अगर कंपोस्ट के ढेर हो, अन्य इस तरह के क्षेत्र का कब से कभी नमूना नहीं लेना चाहिए।
1: जी बिल्कुल, ये तो आपने जान लिया हमारे श्रोताओं, हमारे किसान भाइयों और बहनों की आपको कहाँ से नमूना नहीं लेना है, और आपको उसमें क्या क्या जो आपकी जानकारी पत्र है उसमें आपको याद रखने के लिए क्या क्या नोट डाउन करना है वो भी आपने जान लिया। तो डॉक्टर साहब अब बारी आती है कि हम अपने किसान भाइयों और बहनों को बताएं कि नमूना इकाई का चयन करने के बाद जो हम सैंपल बनाते हैं उसकी प्रक्रिया कैसे होती है।
0: इसके लिए अलग अलग सैंपलिंग यूनिट दिखाने के लिए सर्वेक्षण में शामिल किए जाने वाले क्षेत्र का नक्शा तैयार करना पड़ता है। इसमें विभिन्न क्षेत्र को पत्र ABC आदि द्वारा मानचित्र पर निर्दिष्टित किया जाता है। हल परत का एक टुकड़ा जो 1520 चरणों के अंतराल पर काटा जाता है या कवर किए जाने वाले क्षेत्र के अनुसार किया जाता है। आमतौर पर एक के लिए 10 से 20 स्पॉट लेना चाहिए और क्षेत्र के आधार पर समग्र नमूना लेना चाहिए।
1: जी,
0: मिट्टी का 1 से 2 सेंटीमीटर भी ही लेना चाहिए। नमूना कुदाल के ब्लेड

0: पर एकत्र किया जा सके और एक साफ बाल्टी में दिया जाता है। इसी तरह चिन्हित सभी स्थानों पर नमूने को एकत्र किया जाता है। बाल्टी से मिट्टी को साफ कागज या कपड़े के टुकड़े पर डालें और अच्छी तरह से मिलाएं और मिट्टी के समान रूप से फैलाएं और इसे चार तिबाहियों में विभाजित करें, दो और दो विपरीत को अस्वीकार करें। क्वार्टर और बाकी मिट्टी को फिर से मिलाए लगभग आधे के साथ छोड़ दे, जब तक प्रक्रिया को जुलाए जब तक मिट्टी की आधा किलो बच जाए, और इसे इकट्ठा करे और एक साफ कपड़े के साथ थैली में डाले। नमूने के लिए इस्तेमाल किया गया बैग हमेशा साफ होना चाहिए।
1: जी, तो ये तो हुआ कि नमूना इकाई का चयन करने के बाद आप सैंपल कैसे बनाते हैं, पूरी प्रक्रिया डॉक्टर साहब ने आपको बताई। अगर आपको ऐसे में समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ भी आ सकते हैं, हमारे वैज्ञानिक से इसकी जानकारी भी ले सकते हैं, वो आपको अच्छे तरीके से लिख कर इसकी जानकारी दे देंगे। इसके बाद डॉक्टर साहब अब आगे बढ़ते हैं, जो सबसे हमारा जो मेन पॉइंट है, जो सबसे अहम प्रक्रिया है इसमें, वो है कि मिट्टी तो हम मतलब जिस भी प्रोसेस से, जिस भी तरीके से आपने कहा कि हमारे पास ये सामग्री होनी चाहिए मिट्टी परीक्षण के लिए, इसके बाद हमें कौन से जगह की या किस तरह के मिट्टी के नमूने नहीं लेने हैं वो भी आपने बताया, और साथ ही यहाँ पर सैंपल बनाने की प्रक्रिया भी आपने बताई। तो अब ये सारी चीज़ें करने के बाद हम इसे लैब भेजेंगे, यानी कि प्रयोगशाला भेजेंगे, तो मृदा नमूनों को हम कैसे भेजेंगे अब प्रयोगशाला में?
0: इसके लिए ये किसान द्वारा परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी के नमूने भेजने से पहले यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उचित पहचान चिन्ह नमूना बैग के साथ लेबल पर भी मौजूद रहे। अधिकांश जानकारी मुद्रित के साथ मृदा परीक्षण प्रयोगशाला से मिट्टी के नमूने बैग या अमिट स्याही के साथ उन पर प्रेषण सूची के साथ बैग पर संख्या विवरण की तुलना करें। पहचान चिन्ह लगाकर विभिन्न स्थानों की संख्याओं को अलग किया जाना चाहिए। किसान मिट्टी के नमूने सीधे प्रयोगशाला में ले आ सकते हैं तथा नमूनों को फील्ड एक्सटेंशन स्टाफ के माध्यम से प्रयोगशाला में ले जा सकते हैं। यदि मृदा परीक्षण प्रयोगशाला कर्मचारी नमूने खुद एकत्र करते हैं तो पर्याप्त फील्ड नोट हो सकता है। सभी अज्ञात नमूनों को छोड़ दिया जाना चाहिए। अगर नमूने के बारे में विशिष्ट जानकारी हो तो उसको 66 नंबर रजिस्टर पर उसको दर्ज करना चाहिए और उसको प्रत्येक नमूने के एक प्रयोगशाला नंबर भी दिया जाना चाहिए।
1: जी बिल्कुल, जैसे कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया श्रोताओं कि जो नमूने हैं सीधे आप प्रयोगशाला में ले जा सकते हैं या फिर नमूनों को फील्ड एक्सटेंशन जो स्टाफ हैं वो उनके द्वारा आप प्रयोगशाला में भेज सकते हैं। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं कि किस तरीके से आप प्रयोगशाला तक मिट्टी को पहुँचा सकते हैं, उसके सैंपल को पहुँचा सकते हैं। तो अब यहाँ पर नमूने अगर हम संग्रह कर रहे हैं डॉक्टर साहब, तो इसके बाद मिट्टी के नमूनों को हम सुखाएँ कैसे?
0: प्रयोगशाला में जो भी मिट्टी आते हैं उनमें प्राप्त नमी कम होती है, हो सकते हैं। मिट्टी को ट्रे या हवा में सुखाया जाता है। सुखाने के दौरान ट्रे को क्रमांकित किया जा सकता है या उसमें प्लास्टिक टैग संलग्न किया जाना चाहिए। इसको एक गर्म हवा कैबिनेट के रेक में रखा जाता है जिसका तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से नहीं अधिक नहीं होना चाहिए तथा आर्द्रता भी इससे 30-60% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और मिट्टी के ओवन में सुखाना चाहिए। मौजूदा अधिकांश पोषक तत्व की उपलब्धता को भी प्रभावित कर, इसलिए हमेशा हवा से सुखाने की सिफारिश किया जाना चाहिए। सुखाने के बाद नमूनों को तैयारी कक्ष में ले लिया जाता है जो प्रयोगशाला से अलग, मुख्य प्रयोगशाला से अलग होता है। मिट्टी के नमूने को लकड़ी के दराज में, कार्डबोर्ड बक्से में इत्यादि में संग्रह किया जाना चाहिए और पीसने के बाद मिट्टी के 2 mm की छलनी के माध्यम से ही जाना चाहिए। छलनी के माध्यम से जमीन के नमूने के केवल एक हिस्से को पारित करना और त्यागना शेष त्रुटिपूर्ण है। कणों को ठीक होने तक दोहराते रहे और पीसते रहे। छलनी को पारित करने के लिए पर्याप्त है और केवल कंकड़, जैविक अवशेष, कंक्रीट रहते हैं, उसे बाहर कर देना चाहिए। यदि मिट्टी कि मिट्टी के लिए हमें ट्रेस एलिमेंट जैसे आयरन, कॉपर, जिंक, ये सब का अगर हमें परीक्षण करना है तो इस सब से बने कंटेनरों से में स्टोर करने या उससे पीसने से हमें सदा हमेशा बचना चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। मृदा जांच बहुत ज़रूरी होता है, क्यों ज़रूरी है ये भी हमने आपको शुरू में बताया था कि जो आपके उस मिट्टी में मौजूदा पोषक तत्व हैं या नहीं जो आपके फसलों को चाहिए, क्योंकि हमारी जो फसल है वो मिट्टी से ही पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। अगर बंजर ज़मीन होगी तो आप जितनी मेहनत कर रहे हैं फसल की बुआई में वो सही रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब ने आपको यहाँ पर पूरी प्रक्रिया बताई है कि आप कैसे परीक्षण कर सकते हैं, कैसे नमूना उठा सकते हैं मिट्टी का, और इसके साथ ही आप उसको लैब तक कैसे ले जा सकते हैं, कौन से जगह से आपको नमूने नहीं लेने हैं, और उसके बाद आप नमूनों को कैसे सुखाएंगे। तो इस तरीके से पूरी जानकारी आप सभी को मिली है 90.8 MHz पर। और हमारे साथ स्टूडियो में इस जानकारी के साथ मौजूद थे डॉक्टर राज किशोर कुमार जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।
0: थैंक यू मैडम।
1: किसान भाइयों, आपसे फिर मुलाकात होगी इसी फ्रिक्वेंसी, सुनते रहिए उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार। उन्नत कृषि

0: देखो नाटक देखो।
1: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
2: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
1: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
2: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
3: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
1: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
4: क्या क्या क्या?
2: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
4: अच्छा,
0: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
2: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
2: और तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
2: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनकी जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रखो,
5: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
6: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
6: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
6: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
6: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, आज उन्नत कृषि में हम एक वार्ता सुनने वाले हैं। वार्ता का विषय है मृदा मानचित्रण। वार्ताकार हैं डॉक्टर अंशुमान कोहली सर, आप हैं प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष मृदा विज्ञान विभाग से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
8: प्यारे किसान भाइयों और बहनों, आप सभी को स्वयं मेरी तरफ से और बिहार कृषि महाविद्यालय के मृदा विज्ञान विभाग की तरफ से एक सप्रेम नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सबसे एक सरल प्रश्न पूछकर अपनी वार्ता की शुरुआत करना चाहता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पैरों के नीचे क्या है? हम हर दिन मिट्टी पर चलते हैं, लेकिन शायद ही कभी रुक कर सोचते हैं कि यह कितनी महत्वपूर्ण है। मिट्टी सिर्फ धूल नहीं है, यह कृषि, पारिस्थितिकी तंत्र और हमारे अस्तित्व की नींव है। आज मैं मृदा मानचित्रण अर्थात सॉयल मैपिंग के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो एक शक्तिशाली साधन है जिससे कि हम इस मृदा रूपी छिपे हुए संसाधन को समझने में बहुत मदद ले सकते हैं। अब आखिर मृदा मानचित्रण क्या है? मृदा मानचित्रण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी क्षेत्र की विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की पहचान, विश्लेषण और वर्गीकरण किया जाता है, और फिर हम इस जानकारी को एक मानचित्र पर प्रदर्शित करते हैं, और यह मानचित्र हमें बताता है कि इस क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी मौजूद है, उसकी उर्वरता कितनी है, वह कितना जल धारण कर सकती है, क्या वह खेती, निर्माण या संरक्षण कार्यों के लिए उपयुक्त है और उपयुक्त है तो उसकी उपयुक्तता विभिन्न कार्यों के लिए कितनी है। सरल शब्दों में मृदा मानचित्रण हमें बिना हर जगह खुदाई किए मिट्टी को देखने में मदद करता है। अब प्रश्न यह आता है कि मृदा मानचित्रण इतना महत्वपूर्ण क्यों है। मृदा मानचित्रण कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मसलन कृषि। किसान भाई मृदा मानचित्रों का उपयोग यह तय करने के लिए कर सकते हैं कि कौन सी फसल उगानी है, उर्वरक व सिंचाई का प्रबंधन कैसे करना है, और ऐसी जानकारी होने से उनका उत्पादन बढ़ता है और अपव्यय कम होता है। साथ ही साथ मृदा मानचित्रण की एक भूमिका पर्यावरण संरक्षण में भी है। मृदा मानचित्रण उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है जहां कटाव, प्रदूषण या भूमि क्षरण का खतरा होता है, जिससे बेहतर संरक्षण योजना बनाई जा सकती है। साथ ही साथ शहरी योजना बनाने में भी मृदा मानचित्रण का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इंजीनियर और योजनाकार भवन, सड़क और अन्य संरचनाएं बनाने से पहले मृदा मानचित्रों का उपयोग करते हैं ताकि सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा जलवायु अध्ययन में भी मृदा मानचित्रण का की अहम भूमिका है। मिट्टी में कार्बन संग्रहित होता है, इसका मानचित्रण वैज्ञानिकों को कार्बन चक्र और जलवायु परिवर्तन को समझने में मदद करता है। अब प्रश्न यह आता है कि यह मृदा मानचित्रण किया कैसे जाता है। ऐसा नहीं कि मृदा मानचित्रण बिल्कुल एक नई तकनीक है, यह तकनीक पिछले कई दशकों से एक प्रभावी माध्यम है प्लानिंग का, योजना बनाने का। परंपरागत रूप से मृदा मानचित्रण में फील्ड सर्वे शामिल होते थे। मृदा वैज्ञानिक मृदा के नमूने एकत्रित करते थे, उन्हें प्रयोगशाला में विश्लेषित करते थे और फिर हाथ से मानचित्र बनाते थे। परंतु आज आधुनिक तकनीकों ने इस प्रक्रिया को बदल दिया है। अब उपग्रहों के माध्यम से रिमोट सेंसिंग की जाती है, भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग किया जाता है, GPS तकनीक का प्रयोग किया जाता है और इन सब के साथ डिजिटल मृदा मानचित्रण मॉडल तैयार किया जाता है। यह सब तकनीकें मृदा मानचित्रण को अधिक तेज, सटीक और विस्तृत बनाते हैं। मृदा के मानचित्र कई प्रकार के हो सकते हैं। अपने उद्देश्य के आधार पर हम मृदा मानचित्र तैयार करते हैं। मसलन सामान्य मृदा मानचित्र, यह एक बड़े क्षेत्र का अवलोकन देते हैं, जैसे कि एक प्रदेश, पूरा देश या फिर एक जिला। और विस्तृत मृदा मानचित्र, यह छोटे खेतों या छोटे क्षेत्रों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते हैं, क्योंकि यह छोटी से छोटी जो विविधता है खेत में उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा हमें विषयगत मानचित्र भी देखने को मिलते हैं, मसलन pH, नमी या जैविक तत्व इत्यादि जैसे विशेष गुणों पर केंद्रित करते हुए अगर मानचित्र बनाए जाते हैं तो वह एक विषयगत मानचित्र की श्रृंखला में आते हैं। अब मृदा मानचित्रण करना यूं तो कहने को बहुत आसान सी प्रक्रिया है और कई दशकों से इस पर वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं, परंतु मृदा का मानचित्रण करने में कई प्रकार की चुनौतियां आती हैं। इसके लाभों के बावजूद जो विभिन्न चुनौतियां मृदा वैज्ञानिक देखते हैं उनमें से मुख्य हैं कि छोटे क्षेत्रों में भी मिट्टी में काफ़ी विविधता होती है। तो जब हम छोटे क्षेत्रों का मानचित्रण करते हैं तो यह विविधता दर्शाने में हमें कई उन्नत तकनीकों का सामना करना पड़ता है, कई उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है और हमारी जो मृदा में मानचित्रण करना है उसकी कॉस्ट भी बहुत ऊपर चली जाती है। डेटा संग्रहण समय लेने वाला और महंगा हो सकता है। तो आजकल विभिन्न तकनीकों से डेटा संग्रहण कर रहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ें भी एक प्राइस के साथ आती हैं। तो कोई भी मृदा मानचित्रण की प्रक्रिया समय लेने वाली और महंगी हो सकती है। साथ ही साथ इसमें कुशल विशेषज्ञों और उन्नत तकनीक की आवश्यकता होती है जो कि सब जगह सुलभ नहीं होती। हालांकि नई तकनीकें जैसा मैंने ऊपर बताया उपग्रहों, भौगोलिक सूचना प्रणाली, जीपीएस तकनीक इत्यादि का यूज करके इन समस्याओं से निपटा जा सकता है, परंतु फिर भी यह चुनौतियां हमेशा हमारे सामने रहती हैं। इन चुनौतियों के चलते हम मृदा मानचित्रण के भविष्य को कैसे देखते हैं? भविष्य, इस तकनीक का भविष्य बहुत आशाजनक है। आज के जमाने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और उपग्रह इमेजिंग में प्रगति के साथ मृदा मानचित्रण अधिक सटीक और सुलभ तकनीक बन गई है। मृदा मानचित्र अधिक से अधिक सटीक और सुलभ होते जा रहे हैं। भविष्य में किसान अपने स्मार्टफोन पर वास्तविक समय में मृदा डेटा का उपयोग करके तुरंत निर्णय ले सकेंगे और हम यह कह सकते हैं अंत में कि मृदा मानचित्रण केवल एक वैज्ञानिक गतिविधि नहीं है, यह सतत विकास के लिए एक महत्वपूर्ण चरण है। मिट्टी को बेहतर समझकर हम अधिक भोजन उगा सकते हैं, पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं और सुरक्षित समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप जमीन पर चलें, याद रखें आपके पैरों के नीचे एक पूरी दुनिया है जिसे समझा जाना बाकी है। धन्यवाद
6: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और मृदा मानचित्रण के बारे में इतनी सारी बातें आपने विस्तार से बताई। उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहनों को आज की वार्ता से बहुत सारी बातें सीखने को मिली होगी, जानने को मिली होगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। उन्नत कृषि
9: क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
10: जी
9: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
10: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
9: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
7: FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 8 जुलाई से 12 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। साथ ही इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 8 से 12 जुलाई के दौरान 15 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, पिछले कुछ दिनों में वर्षा हुई है, इसलिए आप वर्षा के जल का लाभ उठाते हुए धान की सबौर दीप किस्मों जैसे प्रभात, शुष्क सम्राट, सहभागी की बुआई 10 जुलाई तक जरूर कर दे। और किसान भाई बहनों, बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए कार्बन डाइजिम की 2 ग्राम मात्रा को 1 किलोग्राम बीज उपचारित करने के लिए इस्तेमाल करे। और ध्यान दे कि 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई जरूर करे। मध्यम अवधि वाली धान की किस्में जैसे राजेंद्र नीलम, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र श्वेता की रोपाई कर सकते हैं और धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी की जा सकती है। किसान भाई बहनों, अगर आप श्री अन्न की खेती करना चाहते हैं तो ध्यान दें, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें और मड़ुआ की वकुला KMR 316 GPU 67 VL 379 राजेंद्र मड़ुआ RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1 इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें, उचास जमीन में अरहर की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1, राजेंद्र अरहर 2 इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और ध्यान दें कि अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का उपयोग करना बिल्कुल न भूलें। और किसान भाई बहनों, अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना ना भूलें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3 और गंगा 11 है। जिनके खेत में मूंग लगा है उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो किसान भाई बहन सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, भिंडी, कद्दू, खीरा, निनुआ और लौकी जैसी फसलों में निराई गुड़ाई करते रहें और खरपतवार नियंत्रित रखें। ध्यान दें कि पत्ती खाने वाली सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करना जरूरी होता है और अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डायमेथो 830 ईसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में गोबर की खाद डालना बहुत जरूरी होता है। खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्री फाउंड, डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और ध्यान रखें कि बीज गिराने के पहले बीजोपचार जरूर कर ले। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचों में जरूरत के हिसाब से छटाई कर ले जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचे में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा कर हटा दे, इससे कीट और रोगों के प्रकोप में कमी आएगी और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलेगा। पशुपालक भाई बहन ध्यान दे, महीने के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है इसलिए ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में टीके नहीं लगाए हो तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दे। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जाँच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: sides. Next, the sum of the angle measures in a quadrilateral is 360 degrees. Here we have a picture in which we find that a big oval shape represents parallelogram, and inside this there is another oval shape which is green in color representing rectangle. Here there is a picture of a Venn diagram in which we have a large oval shape purple in color representing trapezium. We have another oval shape representing parallelograms which is green in color. Inside this another oval shape represents rectangle, and there's another oval shape which is yellow in color, and it covers all the three oval shapes and it represents kite. Rhombus is the portion which is common to rectangle and kite, and square is a portion which is common to kite and rectangle. Page number 111. It's puzzle time. Which quad? Gameplay. First, fold a sheet into half. Second, now fold it once more into a quarter. Third one, make a triangular crease at the corner, that is at the middle of the paper. Fourth one, open the sheet. What is the shape formed by the creases? Fifth one, how would you fold the quarter paper to get the kinds of creases given in the following image? Sixth point, how would you fold the quarter paper such that a square is formed? Here, we are also provided with a picture of kids. They are thinking about the activity given here. The activity has been explained with the help of paper folding. Chapter 4 ends here.
1: Ganit Prakash, you are just listening to this audiobook, textbook of mathematics for grade 8. Narration, Swarnalata Sharma. Sound recordist, Virendra Rawat. Production assistant, Chetna Sharma. Directed and produced by Vimlesh Chaudhary. This audiobook is brought to you by CIET NCERT, New Delhi, India.
2: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद.
3: कौन सी कहानी टीकी?
2: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार.
4: हमें भी वो कहानी बताओ ना.
2: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ. माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ. तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल. अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल.
3: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
2: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात. अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ. टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है.
5: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें.
6: नाटक देखो, आओ सारे नाटक देखो. खसरा और रुबेला की कुछ जरूरी बातें सुन लो. नाटक देखो, आओ.
7: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
2: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
7: हाँ हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा.
2: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं. अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है.
8: ये तो गंभीर समस्या है भाई.
9: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय.
10: क्या क्या क्या?
2: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है.
10: अच्छा
11: तो सबकी समझ में आ गया ना,
12: खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
2: टीकू तेरे कितने दोस्त हैं?
13: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
2: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
13: 11 दोस्त?
2: टीकू वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
13: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
13: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
13: टीकी तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर A&M दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्वस्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
14: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
15: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चियों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की, और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं, खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है। तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं। इसलिए क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं, और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है, और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM, CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है, और ये बीमारी महिलाओं में होती है। इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में माँ बनने पर असर पड़ेगा। बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका माँ बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है। बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा। जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा। इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों याद रखिए, अफवाह से नहीं सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की, स्वस्थ रहे, खुश रहे और अफवाहों से बचे। नमस्कार।
10: नमस्ते क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
16: जी
10: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं।
16: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
10: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
3: कौन सी कहानी टीकी?
2: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
4: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
2: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल। अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
3: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
2: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
5: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
17: अटेंशन अटेंशन अटेंशन ऑल द लेडीज एंड जेंटलमैन, This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal.
2: Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
18: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.

0: पक्षियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
1: कौन सी कहानी टीकी?
0: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
2: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
0: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
3: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
0: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
1: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
0: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
3: टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
4: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 8 जुलाई से 12 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। साथ ही इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 8 से 12 जुलाई के दौरान 15 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, पिछले कुछ दिनों में वर्षा हुई है, इसलिए आप वर्षा के जल का लाभ उठाते हुए धान की सबौर दीप किस्मों जैसे प्रभात, शुष्क सम्राट, सहभागी की बुआई 10 जुलाई तक जरूर कर दे। और किसान भाई बहनों, बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए कार्बन डाइजिम की 2 ग्राम मात्रा को 1 किलोग्राम बीज उपचारित करने के लिए इस्तेमाल करे। और ध्यान दे कि 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई जरूर करे। मध्यम अवधि वाली धान की किस्में जैसे राजेंद्र नीलम, राजेंद्र कस्तूरी और राजेंद्र श्वेता की रोपाई कर सकते हैं। और धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी की जा सकती है। किसान भाई बहनों, अगर आप श्री अन्न की खेती करना चाहते हैं तो ध्यान दें, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें और मड़ुआ की वकुला KMR 316, GPU 67, VL 379, राजेंद्र मड़ुआ RU 8 और RU 3 और कौनी की राजेंद्र कौनी 1, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, उचास जमीन में अरहर की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1, राजेंद्र अरहर 2, इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। और ध्यान दे कि अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का उपयोग करना बिल्कुल न भूले। और किसान भाई बहनों, अरहर के लिए अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दे, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना ना भूले। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3 और गंगा 11 है। जिनके खेत में मूंग लगा है उन्हें बता दे, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दे। जो किसान भाई बहन सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, भिंडी, कद्दू, खीरा, निनुआ और लौकी जैसी फसलों में निराई गुड़ाई करते रहें और खरपतवार नियंत्रित रखें। ध्यान दे कि पत्ती खाने वाली सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करना जरूरी होता है। और अगर अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डायमेथो 8-30 इसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करे। ध्यान दे कि छिड़काव तभी करे जब आसमान साफ हो। खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करे जब आसमान साफ हो और स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में गोबर की खाद डालना बहुत जरूरी होता है। खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्री फाउंड डार्क रेड अर्का कल्याण भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और ध्यान रखें कि बीज गिराने के पहले बीजोपचार जरूर कर लें। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचों में जरूरत के हिसाब से छटाई कर लें जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचे में गिरे हुए पत्तों सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा कर हटा दें। इससे कीट और रोगों के प्रकोप में कमी आएगी और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलेगा। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, महीने के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है इसलिए ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून महीने में टीके नहीं लगाए हो तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: കൃഷി. आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन एफएम और आप सभी के साथ हैं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे अनु. मेरे किसान भाइयों और पशुपालक भाइयों, आप सभी को एक बार फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार. और आज उन्नत कृषि में लेकर आई हूं मैं बटेर पालन के बारे में कुछ बातें. आप सभी ने मुर्गी पालन के बारे में बहुत सुना होगा. इसके अलावा अगर बात करें बटेर पालन की, यानी कि जो आज का हमारा विषय है इसके बारे में बात करें, तो आपको बता दें बटेर पालन को अगर आप एक व्यवसाय के तौर पर लेते हो, यानी कि इससे अगर आर्थिक मुनाफा आप कमाना चाहते हो, तो आप सभी को बता दूं मैं, मेरे दोस्तों और मेरे श्रोतागणों, कि ये बहुत ही अच्छा एक माध्यम है जिससे कि आपको कम अवधि में बहुत ही अच्छा मुनाफा होता है. अगर बात करें मुर्गी पालन की, तो उसमें समय भी ज्यादा लगता है और मुनाफा भी इतना नहीं होता है. तो सबसे पहले आज बहुत सारी बातें करने वाले हैं बटेर पालन के बारे में. अगर आपकी बटेर पालन शुरुआत करना चाहते हैं आप, तो इसके लिए आपको किन किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, तो आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्रोनॉमी, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से. डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस कार्यक्रम में. और सबसे पहले बटेर पालन की बात हो रही है, तो हम जानना चाहेंगे कि बटेर पालने के लिए हमारे पास इनके आवास का प्रबंधन कैसा होना चाहिए.
1: जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज बता दूं आपको कि बटेर पालन, बटेर को हम लोग क्वेल कहते हैं इंग्लिश में, जो जैपनीज बटेर है जिसका पालन पहले प्रोहिबिटेड था, जिसका कि पालन तो करते थे लेकिन इसके शिकार पर प्रतिबंध लगा हुआ है. लेकिन हम लोगों ने एक प्रजाति जो जैपनीज बटेर के नाम से है इसको विकसित किया, कैरी जो सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट है इज्जत नगर में, इसके द्वारा और इसको पॉपुलराइज किया गया.
0: जी जी.
1: इसकी कई प्रजातियां हैं जो पंख के रंगों के आधार पर, फराव हैं, टॉक्सिडो हैं, इंग्लिश वाइट है, मैंचूरियन गोल्ड है, तो इस प्रकार से इनको विकसित किया गया कि जो कम समय में और काफ़ी मुनाफा देने वाला चीज़ है, जिसमें कि किसी प्रकार की कम से कम रोग होता है और इसमें किसी प्रकार के टीकाकरण की भी आवश्यकता नहीं है. अर्थात केवल रख रखाव पर ध्यान दे के आप आसानी से मुनाफा कमा सकते हैं. और जहाँ तक जगह की बात है, जो आवास प्रबंधन की बात है, इसके लिए कोई बहुत बड़ा घर बनाने की आवश्यकता नहीं है. आपके पास, आप जिस प्रकार का व्यवसाय करना चाहते हैं, बड़े पैमाने पर, छोटे पैमाने पर, तो एक 10x10 का भी अगर कमरा है आपके पास, तो उसमें 10x10 में आप 400 बटेर तक का पालन कर सकते हैं.
0: जी.
1: और घर की ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं भी है तो काम चलेगा. लेकिन एक चीज़ है, ये उड़ने वाला पक्षी है, इसलिए इसको कंप्लीट जाली लगाकर या बंद करके आपको रखना पड़ेगा. और इसके रखने में आपको मुर्गियों से कम सावधानी रखने की ज़रूरत है. अर्थात नीचे कोई बेडिंग मटेरियल, हल्का बेडिंग मटेरियल आप दे सकते हैं, 4-5 इंच का बेडिंग मटेरियल होगा और नेचुरल डे लाइट काफ़ी है. लेकिन इसके आवास व्यवस्था में इसके जो बच्चे बहुत छोटे होते हैं, 10 ग्राम से भी कम वजन के होते हैं, तो उस समय इसको विशेष सावधानी की जरूरत होती है. लाइट देने की आवश्यकता पड़ती है, टेम्परेचर देने की आवश्यकता पड़ती है. तो हम लोग बात कर रहे हैं जैपनीज क्वेल, कुटर्निस जैपोनिका.
0: जी.
1: इसकी और इसके बारे में, आवास प्रबंधन के बारे में, आप जैसा मैंने बताया, एक 10x10 के रूम में भी इसका आप पालन करके आप आसानी से मुनाफा कमा सकते हैं.
0: तो डॉक्टर साहब, ये बात हो गई आवास प्रबंधन की, यानी कि कैसा उनका जगह रहना चाहिए जहाँ उनका पालन होना चाहिए. और उसके बाद आहार की अगर बात करते, तो उन्हें किस किस तरीके का आहार देना चाहिए.
1: जहाँ तक अलग अलग स्टेज के लिए अलग अलग इस तरह का राशन दिया जाता है, इसको दाना दिया जाता है. जैसे जब छोटा, जब चूजा रहता है, उस समय हम लोग इसको प्री स्टार्टर देते हैं. अगर आप बड़े पैमाने पर कर रहे हैं तो बटेर का दाना अलग से भी आता है. लेकिन अभी बाजार में जो मुर्गियों के लिए दाना है प्री स्टार्टर, आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं. और इसके बच्चे काफी छोटे होते हैं, तो इनिशियल स्टेज में आप उसका जो महीन दाना है उसको दें. और फिर जब ये दूसरा सप्ताह का हो जाए, 2 सप्ताह से ऊपर हो जाए, तो फिर हम इसमें स्टार्टर क्रम्बल या स्टार्टर का जो दाना होता है, स्टार्टर क्रम्बल दे सकते हैं. और फिर फिनिशर 4-5 सप्ताह में ये अपने वजन का 150-200 ग्राम के बीच में आ जाता है, और उस समय आप बेच सकते हैं इसको और मीट पर्पस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं. लेकिन जहाँ तक अंडा देने की बात है, तो 6-7 सप्ताह से ये अंडा देने लगती है और 8 सप्ताह होते होते ये फुल स्विंग में अंडा देना शुरू करती है. और पूरे साल में ये, अगर इसको दाना पानी अच्छा से मिलता रहा, इसके व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो 250 अंडा तक ये दे सकते हैं आसानी से. तो इसके लिए उस समय, लेकिन उस समय इसको लेयर फीड फिर चाहिए जिसमें कैल्शियम की अधिकता हो. तो अलग अलग समय में अलग अलग तरह का दाना देना है, और प्री स्टार्टर, स्टार्टर, फिनिशर और लेयर, चारों स्टेज का दाना इसमें अलग अलग स्टेज में हम लोग इस्तेमाल करते हैं।
0: मांसाहारी लोग हैं अगर उनकी बात करें जो मुर्गी खाते हैं, तो अगर मुर्गियों की बात करें तो बटेर पालन जो है वो मुर्गी पालन से किस तरीके से अलग है, उसके बारे में जानना चाहेंगे।
1: देखिए, मुर्गी पालन में सबसे बड़ी बात है कि बहुत टीकाकरण करने, बहुत बीमारियां होती हैं मुर्गियों में। फ्रॉम द बिगिनिंग, एक दिन से लेके मैरेक्स का टीका पड़ता है, फिर रानीखेत का टीका पड़ता है, फिर गंबोरो का टीका पड़ता है, फिर उसका फाउल पॉक्स का टीका पड़ता है, रानीखेत का दूसरा टीका पड़ता है। तो इस प्रकार से अलग अलग स्टेज में मुर्गियों में
0: अलग
1: अलग टीके पड़ते रहते हैं। और लेकिन बटेर पालन में सबसे जो अच्छी बात है कि किसी भी प्रकार के टीकाकरण की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपको अगर हम चाहें तो जो आजकल का जो ट्रेंड है ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक विधि से भी हम बटेर पालन कर सकते हैं। जहां तक बटेर पालन का जो फीड है उसमें हम जो बोन मील, फिश मील इस्तेमाल करते हैं, उसके जगह सोयाबीन मील का इस्तेमाल करके भी हम इसका पालन कर सकते हैं। और एक जो एक मुर्गी के रहने की जगह के में कम से कम 8 से 10 बटेर एक साथ रह सकता है,
0: यानी कि तो कुल मिलाकर देखिए
1: जगह
0: तो
1: की कमी चाहिए। और कम समय में 4 से, हालांकि मुर्गियों में भी आजकल जो हाइब्रिड मुर्गियां हैं वो भी 4 से 5 सप्ताह में 1.5 kg से ऊपर वेट कर लेती हैं, और उनको भी हम सोल्ड कर सकते हैं। लेकिन जो अगर कैलोरी के हिसाब से देखें और कोलेस्ट्रॉल की बात करें, तो डॉक्टरों के द्वारा भी सलाह दी जाती है कि वैसे जो पेशेंट हैं वो बटेर का मीट खा सकते हैं। तो बटेर पालन हर प्रकार से मुर्गी पालन व्यवसाय के साथ साथ भी किया जा सकता है, उसके अलावे भी अलग से भी किया जा सकता है। हालांकि अभी मार्केट में बटेर पालन, बटेर लोगों को बटेर के बारे में बहुत जानकारी नहीं है, जिसके चलते बहुत बड़ा मार्केट बटेर पालन का नहीं है। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ लोगों को जानकारी हो रही है, और बटेर के लिए भी व्यवसाय को तौर पर बटेर को भी कई लोगों ने अपनाया है और मार्केटिंग व्यवस्था पर बल दिया है। तो अब इस व्यवसाय को भी हम बड़े तौर पर कर सकते हैं, और मुर्गी पालन के साथ साथ भी कर सकते हैं, मुर्गी पालन के अतिरिक्त भी कर सकते हैं।
0: तो जैसा कि बताया आपको, तो श्रोतागणों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि मुर्गी पालन से कहीं ज़्यादा बेहतर है, जैसे कि इनके रखरखाव में आपको कम ध्यान रखना पड़ता है वनस्पत मुर्गी पालन के। और इसके बाद भी उन्होंने टीकाकरण की बात की, कोलेस्ट्रॉल की बात की, तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं बटेर पालन मुर्गी पालन से बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। और डॉक्टर साहब, सबसे पहले यहाँ पर बात हो गई कंपैरिजन के बारे में, मुर्गी पालन और बटेर पालन के कंपैरिजन की बात हो गई, तो अब यहाँ पर जानना चाहेंगे कि बटेर पालन अगर हम करते हैं तो इसकी खासियतें क्या है, वो जानना चाहेंगे हम, ताकि जो लोग हैं इससे प्रभावित हों। और बटेर पालन को अगर व्यावसायिक तौर पर आप अपनाना चाहते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि उनकी खासियतें जानना, तो जानना चाहेंगे हम आपसे डॉक्टर साहब।
1: बटेर पालन प्रारंभिक अवस्था में बहुत इसलिए इसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया क्योंकि सरकार के द्वारा इस पर लाइसेंस व्यवस्था जारी की गई थी। लेकिन जब से इसका फार्मिंग स्टार्ट हुआ और आज के डेट में भी हमारा जो नेचुरल उड़ने वाला बटेर है, जो हमारा घरेलू प्रजाति है, उसके शिकार पर रोक लगी है। लेकिन अब जो प्रजाति की हम लोगों ने कैरी के द्वारा लाकर यहाँ, जिसका कि हम लोग ब्रूडिंग करके उसका हैचिंग करके और उसका फैलाव किए, प्रचार प्रसार किए, तो इसके बाद धीरे धीरे इसका मार्केट आया। और आज के डेट में ये स्थिति है कि अब लोगों को भी ये बटेर कुछ बातों को लेकर ज़्यादा प्रभावित करता है। एक तो ये छोटा होता है, जल्दी परिपक्व होता है, इसका मीट स्वादिष्ट होता है, जल्दी अंडा देने लगती है, बहुत काफ़ी अंडा देती है, और इसका मीट स्वादिष्ट होता है, इसका मेडिसिनल वैल्यू भी है। तो इस प्रकार से लोगों को इस बिजनेस के प्रति अट्रैक्शन हुआ। और इसमें जहाँ तक हमने एक बार बताया भी कि किसी भी प्रकार की दवाइयाँ या टीकाकरण के बिना भी बटेर पालन किया जा सकता है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोग मुर्गी पालन करते हैं, मुर्गी पालन में फास्ट ग्रोथ लाने के लिए कई प्रकार की दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है। तो एक तरह से जो स्वास्थ्य के प्रति लोग सचेत रह रहे हैं
0: तो उनके
1: उसके हिसाब से भी बटेर का मीट खाना, जिसमें किसी प्रकार की दवा, किसी प्रकार के टीका की भी आवश्यकता नहीं है, हर तरह से सुरक्षित है और वो स्वास्थ्यवर्धक भी है
0: जी।
1: तो जरूरत है कि हम मुर्गी पालन के वैकल्पिक स्रोत के रूप में, और अभी जो स्थिति है मुर्गी पालन व्यवसाय पर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज का कब्जा टाइप का हो गया है। लोग छोटे जितने भी किसान थे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत मुर्गी पालन करके अब उनका मुनाफा बहुत कम हो गया है। तो इसके तहत आप वैकल्पिक स्रोत के रूप में इसको अपना के आप अतिरिक्त लाभ कमा सकते हैं।
0: तो यहाँ पर श्रोतागणों, आप सभी को डॉक्टर साहब ने बताया कि कैसे क्या खासियतें होती हैं और कैसे इसका पालन करना, या आवास व्यवस्था की बात हो गई, आहार किस प्रकार का देना चाहिए, और मुर्गी पालन और बटेर पालन के बीच के अंतर को इन्होंने बताया। और कहीं ना कहीं बटेर पालन, और अगर आप मांसाहारी हैं, आप मुर्गी खाते हैं या फिर मुर्गा खाते हैं, तो इस हिसाब से बटेर आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि डॉक्टर्स भी, अगर कोलेस्ट्रॉल की आपको दिक्कत है तो आपको भी डॉक्टर बटेर की ही सलाह देते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल ये उतना व्यापक तौर पर इसके बारे में जानकारी लोगों को नहीं है विस्तार में, तो इसीलिए आज डॉक्टर साहब हमारे साथ यहाँ पर थे। आप सभी को बहुत सारी जानकारियाँ भी मिली बटेर पालन के, और बटेर की जो खासियतें हैं उनके बारे में भी आप सभी को जानकारियाँ मिली। तो डॉक्टर साहब, आपको इन सभी जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद।
0: और इसके साथ ही श्रोतागणों, आप सभी से मुलाकातें होती रहेंगी, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें और आबाद रहें। उन्नत कृषि।
2: नाइन्टी पॉइंट एट FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम रेडियो रिवीजन में। रेडियो रिवीजन जो आपके परीक्षा से पहले प्रसारित होता है और आपके सेकेंड सेमेस्टर्स के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, और आज हमारे साथ आपके कोर्स लीडर मौजूद हैं डॉक्टर तारकनाथ गोस्वामी। जी हाँ, आज आपके कोर्स AEZ 121 का रिवीजन होने वाला है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मंडे को आपका AEZ 121 फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी का इंटर्म एग्जामिनेशन है, और ये 2+1 वाला कोर्स था आपका इस सेमेस्टर का, सेकेंड सेमेस्टर का। तो आप आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव गॉन थ्रू द सिलेबस केयरफुली, और मैं धीरे धीरे आपको सारे जो टॉपिक्स है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि पूरा डिटेल में हम नहीं जा पाएंगे रिकॉर्डिंग्स में। तो फर्स्ट टॉपिक इज हिस्ट्री ऑफ एंटोमोलॉजी इन इंडिया। तो आपको आपका स्टडी मटेरियल में आप जाएंगे तो उसमें कुछ पॉइंट्स वहाँ पे है, उस पॉइंट्स में देखिएगा कुछ कुछ चीज़ें हाईलाइट किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, सिस्टम ऑफ नेचर बोल के एक किताब का नाम है, विच वॉज रिटन बाय कैरोलस लिनियस और कार्ल लिनियस, एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट मेनी टाइम्स योर एक्सलेंट एग्जामिनर हैज गिवन दिस क्वेश्चन। 10th edition of System of Nature written by Carl Linnaeus. In which year it was published? And the answer is 1758, right? And there are many other important things also which you have to remember. For example, the first entomologist who made extensive study of Indian insects, and that scientist was Fabricius, right? And some other important things to remember are Professor Maxwell Lefroy, who succeeded Nisavili as entomologist to Government of India, right, in 1903. And before him, it was Leolin D. Nisavili, who was posted as first entomologist to Government of India. So it was in the year 1901. And some important books and their authors also you have to remember. For example, Indian Insect Pests, ye kitab ka naam hai, ये प्रोफेसर लेफ्रॉय ने लिखे थे। इंडियन इंसेक्ट लाइफ भी ये प्रोफेसर लेफ्रॉय का लिखा हुआ किताब है। सम साउथ इंडियन इंसेक्ट्स, दिस बुक वाज रिटन बाय टीबी फ्लेचर। सो दीज थिंग्स यू मस्ट रिमेंबर। हैंडबुक ऑफ इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी ऑफ साउथ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, इट वॉज रिटन बाय टीवी रामाकृष्ण अय्यर। सो दीज थिंग्स you must remember. In addition to that, you may also remember Insect Pests of Crops. This was written by very prominent entomologist whose name is Dr. Pradhan, maybe. Now, if you go through your syllabus, then the next, your broad heading is major points related to dominance of insects in animal kingdom and thereafter classification of phylum Arthropoda. So these two topics I had covered in your class in great detail. If you recall those classes, it will be very easy for you. In the class, I had discussed that there are 10 important points to remember regarding the factors behind the dominance by the insects in this planet. And under those 10 points, the first point was capacity for flight as the insects possess wings. And you know that the wings are the lateral extension of the exoskeleton. So, मैंने ये आपको क्लास में कहा था, ये कोई पक्षी नहीं था जो इस प्लेनेट में पहले उड़े थे, ये कोई इंसेक्ट था जो सबसे पहले इस प्लेनेट में उड़ने का क्षमता, उड़ने का एबिलिटी एक्वायर किए थे। So, why this, how this capacity for flight helped the insects in dominating this planet over the other animals or the other organisms? You know that as they are having the wings so that they can fly with that, with the help of the wings, and they can seek for food, mate, shelter, oviposition, etc. They can colonize in a new habitat. They can escape from the enemies and also from the unfavorable conditions. They can also migrate with the help of this type of your spatial capacity, that is flight, which they are having. Now the next factor was more adaptability or universality. As you know that the insects are the earliest groups to make their life on the earth,
2: and to occupy vast habitats of soil and water. Thereby, they are found, these insects are found in a wide, very wide range of climatic conditions, and they can survive even at minus 50 degrees centigrade and also in the plus 50 degrees centigrade. So you can imagine the range of temperature they can survive. They can, you're tolerate. Some examples, some extreme examples I'll be citing here. I also had given you the study material. There also you can go through. One insect is there. Its name is Xylopa petroli. ये पेट्रोली सुन के आपको पेट्रोल का याद आ रहा होगा. एंड इसका नाम इसलिए हुआ कि इट कैन सर्वाइव वेल इन क्रूड पेट्रोलियम ऑयल. इवन इन द हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन ऑल्सो यू कैन फाइंड सम इंसेक्ट्स लाइक इफाइड्रा फ्लाई. एंड आई कैन साइट मेनी एग्जाम्पल्स इन एक्सट्रीम काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स वेयर दे कैन द इंसेक्ट्स कैन सर्वाइव. सो यू कैन इमेजिन दैट दे आर हैविंग ग्रेट डील ऑफ एडेप्टेबिलिटी or universal, anywhere in this planet you can find the insects. So this was the second point, second factor. The third factor is the smaller size they have. You know that most of the insects, they are small in their size, and how this small in size help them in dominating this planet. You know that they will be requiring less space as they are having smaller size. They require less food, less energy, and also the less gravitational effect on them, right? And also, because they are very tiny, they can escape from the enemies very easily. So capturing a tiny one by a large predator, for example, their enemies, is not very easy. Therefore, third important factor was small in size. Now, the fourth factor, presence of exoskeleton, very important. In fact, not only the insects, but also the other arthropod also are having this exoskeleton on their body, you know it. And this, your exoskeleton means it is a cuticular protein, and it is also known as chitin, right? So how this presence of exoskeleton help the insects in dominating the planet? It is because it gives them the strength or the rigidity and also the flexibility to the insect body. Now, another factor is resistance to desiccation. You know that as their body is covered with the exoskeleton, so definitely the water loss is minimized, right? Because water is very important for any organism. Another factor is prevention of water loss. You know that they're having in their epicuticle, they're having lipids and polyphenols, and those lipids and polyphenols act as waterproof material. Also, some insects are having wax layer that also prevents the water loss. Also, they're having spiracles which they can close whenever they wish to close those. The spiracle closing mechanism or opening closing mechanism that also prevents the water loss. Right? Now, insects, you know that mainly your terrestrial insects, they're having tracheal system of respiration. And this insects, this tracheal respiration also, it helps in restricting the loss of water and thereby help them in having wider adaptability in extreme conditions also. Another factor is high reproductive potential. Class mein hum isko detail mein discussion kiye the, if you remembered. And I cited a few examples. For example, queen termite. मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कितना लेवल हो सकता है रिप्रोडक्शन का. क्योंकि इमेजिन कि एक क्वीन टर्माइट एक दिन में 6,000 से 7,000 अंडा मतलब एग ले कर सकती है. एंड इट कंटिन्यूज फॉर 15 लॉन्ग ईयर्स. देयर बाई काइंड ऑफ अनलिमिटेड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दे प्रोड्यूस. आई मीन द क्वीन टर्माइट आई एम टॉकिंग ऑफ. देर आर अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो. Insects are having some special type of reproduction. For example, polyembryony means one embryo, means one egg, but it is having many embryos. Means from one egg, many individuals can take birth. Then parthenogenesis also is very common in many insects. In parthenogenesis, they don't, require any mating for giving birth to the offsprings, right? In aphids, we see that. Some insects are there जिसमें एडल्ट का जरूरत नहीं पड़ता है, एडल्ट बनने का जरूरत नहीं पड़ता रिप्रोडक्शन के लिए. इमैच्योर स्टेज देमसेल्व्स कैन गिव बर्थ टू द ऑफस्प्रिंग्स इन गॉल्मी ज्यूसी. नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस. मेटामॉर्फोसिस एंड डायपोज का चैप्टर आप लोगों ने पढ़े हो, उसमें दो तरह का मेटामॉर्फोसिस मेनली आपको पढ़ाया गया है. एक है कॉम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, अनदर इज योर इनकॉम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस. उसके बीच में डिफरेंस भी आपको पता है. सो इन मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स कॉम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस इज ऑब्जर्व्ड. अब कॉम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है ये दैट यू नो कि ऑल द फोर स्टेजेस विल बी अवेलेबल, एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट. और ये चारों जो अलग अलग स्टेज हैं, ये चारों अलग अलग स्टेज का हैबिट, हैबिटेट, फूड एटसेट्रा का रिक्वायरमेंट अलग अलग है. और ये अलग अलग होने के कारण, मतलब अलग अलग होने से ही इसको एडवांटेज मिल रहा है कि दे कैन एक्सेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ साइकिल, राइट. एंड इंसेक्ट्स हैव वेरियस इंटरेस्टिंग टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म. सम डिफेंस मैकेनिज्म्स बिहेवियरल होता है, कुछ होता है स्ट्रक्चरल, कुछ होता है कलरेशनल, कुछ होते हैं केमिकल सिक्रेट करने से. एक ऐसा इंसेक्ट है, मैं बताया था आपको, क्लिक बिटल बोल के एक इंसेक्ट है जिसको टच करने से वो मरने का ढोंग करते हैं, मतलब एक तरह से दे प्रिटेंड एज इफ दे इट इज डेड. इस बिहेवियर को बोलते थैनाटोसिस. सो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है टू एस्केप इटसेल्फ फ्रॉम इट्स एनिमी. सो एनिमी विल थिंक दैट द प्रे इज डेड और डेड के ऊपर वो फीड नहीं करेंगे. सो एनिमी विल वॉक अवे और फ्लाई अवे. एंड वंस अगेन when the enemy is gone, that click beetle will do its own work because it is not actually dead. Some structural defense mechanisms are also there. For example, beetles आप सभी लोगों ने देखा है, collection भी किए हैं, class में भी देखे हैं. उस beetles के ऊपर बहुत ही hardened four wings रहते हैं जिसको हम लोग इलाइट्रा भी बोलते हैं, राइट. तो वो एक स्ट्रक्चरल डिफेंस मैकेनिज्म है. आप एक बिटल को पकड़ के अगर क्या बोलते हैं सरफेस में थ्रो भी करेंगे, इट विल नॉट गेट डाइट बिकॉज इट इज हैविंग ए वेरी प्रोटेक्टिव कवर ऑन इट्स बॉडी. कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो बहुत ही ब्यूटिफुली कैमोफ्लेज करते हैं हैबिटेट में. इसको बोलते हैं कलरेशनल डिफेंस मैकेनिज्म. मतलब हैबिटेट का जो कलर है उसका कलर भी सेम है. तो अगर कलर जिस फॉर एग्जांपल किसी प्लांट की लीफ में है और आपको पता ही नहीं चल रहा कि वहां पे एक इंसेक्ट भी बैठा हुआ, क्योंकि लीफ का कलर उसके कलर के साथ मैच कर रहा है. किसी फ्लावर में एक इंसेक्ट बैठा है, उस फ्लावर का जो कलर है उस इंसेक्ट का भी कलर वही है. सो दैट मीन्स ये जो कलरलेस कलरेशनल डिफेंस मैकेनिज्म है, ये एनिमीज को एक तरह से बुर्बक बनाते हैं कि वो ढूंढ नहीं पाते एक्चुअली वो इंसेक्ट वहां पे है या नहीं है. कुछ इंसेक्ट्स डिफेंस केमिकल भी सीक्रेट करते हैं. यू नो ब्लिस्टर बिटल, इफ यू टच द ब्लिस्टर बिटल इमीडिएटली ऑरेंज कलर का एक डिफेंस केमिकल आपके हाथ में लगेंगे. आपके हाथ में लगेंगे मतलब क्या कि एनिमीज भी उसको टच करेंगे तो एनिमीज के बॉडी में लगेगा, तो एनिमीज के बॉडी के ऊपर इरिटेशन होगा एंड इट विल नॉट Try to feed on that one. और आपको तो बीज वस्क के बारे में मालूम है ही कि आप बीज को कभी नहीं पकड़ना चाहते, वस्क को कभी नहीं पकड़ना चाहते, क्योंकि it will immediately insert its stinger inside your body and it will insert the poison at the same time. And last but not the least, the factor which is important for dominance on this planet is हेक्सापोड लोकोमोशन. सारे इंसेक्ट के केस में आपको मालूम है कि दे आर हैविंग थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स.
1: अब ये थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स रहने के कारण इसको लोकोमोशन में बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलता है। सारे छह लेग वन स्टेप में, जब एक स्टेप, जब एक स्टेप फॉर एग्जांपल वॉकिंग या रनिंग में जब एक कॉकरोच की बात करें तो क्या होता है, कोई तीन लेग मूव कर रहा होता है और बाकी तीन लेग, मतलब तीन पेयर है ना, तो तीन पेयर में से तीन लेग मूव कर रहा होता है और बाकी रेस्ट ऑफ द थ्री लेग्स दे आर बैलेंसिंग द बॉडी। एंड इट अल्टरनेटिवली जो पहले बैलेंस कर रहा था नेक्स्ट स्टेप में वो क्या करेंगे, लोकोमोशन में हेल्प करेंगे, बाकी बॉडी बैलेंस में काम हेल्प करेंगे। सो इस तरह से इसको बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी मिलता है और अल्टीमेटली इट हेल्प्स द इंसेक्ट इन डोमिनेटिंग द प्लैनेट। नेक्स्ट टॉपिक इज योर क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा आपको अप टू क्लासेस। सबसे पहले आपको आर्थ्रोपोडा का कैरेक्टरिस्टिक्स, जो छः सात कैरेक्टरिस्टिक्स हमने क्लास में आपको डिस्कस किए हैं, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आप बढ़िया से उसको गो थ्रू करेंगे। एंड देयर आफ्टर जो डिफरेंट क्लासेस हैं अंडर द फाइलम आर्थ्रोपोडा, फॉर एग्जांपल देयर आर हाउ मेनी क्लासेस अंडर द फाइलम आर्थ्रोपोडा, देयर आर सेवन क्लासेस राइट। ऑनिकोफोरा, क्रस्टेशिया, चिलोपोडा, डिप्लोपोडा, एराक्निडा, ट्राइलोबीटा एंड हेक्सापोडा। ये जो क्लासेस है और उस क्लासेस का जो जो प्रोमिनेंट योर कैरेक्टरिस्टिक्स है अलोंग विद द योर सम एग्जांपल्स यू मस्ट रिमेंबर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वाज योर स्ट्रक्चर ऑफ हेड, व्हिच आई इन योर प्रैक्टिकल क्लासेस, इन योर थियोरी क्लासेस आई हैव डिस्कस्ड इन ग्रेट डिटेल। सो टू रिकॉल दैट वन, to help you recalling that one, and I'll suggest you to draw the diagram first regarding to remember the different sclerites and sutures which are available on the facial portion of the insect head. ये मिड्डम में आपका क्वेश्चन भी था, आप लोगों ने उसको किए भी है, बट फिर से उसको प्रैक्टिस करना is very important. And then different orientation of insect head, and you know that there are three different orientations. One is pronathus, means the head and the appendages of the mouth parts are projected forward, usko bolte pronathus. Ye pronathus condition aapko milta hai beetles mein, that's why this pronathus condition also is known as beetle type, or it is also known as coleopteroid type, correct. Next jo orientation of insect head tha, that is known as hyponathus. Hyponathus condition mein kya hota hai ki the appendages of the mouth parts, they are projected vertically, means the angle which is created between the long axis of the insect body and the long axis of the appendages of the mouth parts, that is 90 degree, right. And the last but not, so yes, what I was forgetting was this hyponathus type, hypognathus bhi bol sakte ho, hyponathus bhi bol sakte ho, because G is silent here. Hyponathus type is found in case of your grasshoppers, cockroaches also, you can get this hyponathus type.

0: antenna towards tip. In case of blister beetle, we get this your clavate type antenna. Capitate mein kya hota hai? Capitate mein suddenly the terminal segment of the antenna is swelled. In butterflies, we get this type. In lamellate, it is described as plate-like. In scarabid beetle, means your dung beetles, we get this lamellate type. Aristate, you have dissected in your practical classes as well as in your practical examination. All of you have done well. It is found in housefly. So aristate matlab hai pouch-like. Stylet antenna you have got in your rubber fly. Then plumose and pylos, ye dono humne ek sath discussion kiye the ki plumose matlab hai feathery and it is found in male mosquito, right? Pylos matlab less hairy. Between the segments jo hota hai antenna ke jo different segments, between the segments only hairs will come out from that part. But in case of plumose, all over the, irrespective of the segment and the body of the segments, the hairs will be found. Geniculate I have already discussed. And flabellate means fan-like. And you get this type of antenna in case of your stylopids, right? So this was about structure and modification of insect antenna. So you have to remember the function of the antenna also. I hope that 4-5 functions you are remembering. I'm not discussing that one. And structure wise, you draw the diagram of geniculate, you practice the diagram of the geniculate antenna, and that can be the diagram of a generalized insect antenna, and you label the portions like your antennal sclerite, antennal suture, which is followed by your main part, the first part of the insect antenna, first segment, which is known as scape, and then pedicel followed by flagellum. May I ask you, and all of you who are listening to this audio may try to answer it, inside which portion of the insect antenna Johnston's organ is found? I'm giving you 5 seconds time. So that is, you're right, that it is pedicel inside which Johnston's organ is found. So this Johnston's organ is composed of several ganglia, right? In fact, thousands of ganglia maybe. And in mosquitoes, that organ helps the mosquito in hearing. However, in other insects, wo sunne ke liye alag se appendage hai, jisko bolte hai tympanum. So this was about your structure and modification of insect antenna. And then I'm seeing the syllabus of this course, different types of mouth parts of insects. If you remember the second practical class, you had dissected the mouth parts of cockroach or cockroach grasshoppers. Jo bhi insects chaba chaba ke khane wala hota hai, uska mouth parts ko bola jata hai biting and chewing type mouth parts. So this is the primitive mouth parts which the insects were having. And till now, there are several groups of insects which are were having this type of your mouth parts. So this is the basic type of mouth parts jo aapko jiska different appendages ko draw karke, diagram draw karke aapko yaad rakhna hoga, matlab practice karna hoga. For example, jo first appendage upper part of the mouth parts mein rehta hai, mouth ka rehta hai, that is known as labrum. It is just like our upper lip. Jaise hum log ke case mein upper lip hai, unke case mein, insect ke case mein bhi, chewing and biting type mouth parts mein upper lip ko bolte labrum, you know it. Or if you flip the labrum, then you get the labrum epipharynx. So insect mouth mein, insect ka mouth cavity mein koi organ of taste nahi rehta hai. Hum log ke case mein jaise mouth cavity ke andar tongue, T-O-N-G-U-E. So that acts as organ of taste. But in insect, that labrum epipharynx acts as organ of taste. Ab ye ho gaya labrum ka baat. Ab labrum ka aap chota sa diagram banayenge, uske paas mein uska structure likhenge, function likhenge. Function jab likhenge, to sabse important function hoga ki holding the food from the top. हम लोगों के लिप का जैसे फंक्शन है उसका लिप का भी, अपर लिप का भी वही फंक्शन है। इन एडिशन टू दैट जैसे हमारा लिप क्या करते हैं, हम लोगों का टीथ को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उनके केस में लैब्रम के ठीक नीचे दोनों तरफ मैंडिबल्स रहता है, उस मैंडिबल्स का बेस को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ये हो गया लैब्रम। देन यू कम टू मैंडिबल्स। मैंडिबल्स एज आई हैव सेड कि दोनों तरफ लैब्रम के ठीक नीचे मैंडिबल्स रहते हैं, और मैंडिबल्स आर द मेन, योर मेन और प्राइमरी जॉज यू कैन से। चिविंग एंड बाइटिंग टाइप माउथ पार्ट्स में मैंडिबल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज मैंडिबल्स में दो तरह का टीथ होते हैं। फ्यू टीथ दे आर एबल टू काट द फूड इंटू पीसेस विच आर अवेलेबल एट द डिजिटल एंड ऑफ द मैंडिबल्स, एंड सम टीथ आर अवेलेबल एट द बेस ऑफ द मैंडिबल्स विच आर नॉट वेरी शार्प, दे आर ब्लंट, और ये ब्लंट होने के कारण ही दे कैन मैस्टिकेट, वो क्रॉस कर सकते, मैस्टिकेट कर सकते, ग्राइंड कर सकते, सो दे आर नोन एज मोलर टीथ और ग्राइंडर टीथ। डायग्राम बनाओगे, फंक्शन लिखोगे। मैंडिबल्स के ठीक नीचे और आ जाओ दोनों तरफ, यूल गेट मैग्जिला। मैग्जिला को सेकेंडरी जॉ भी कहते हैं। मैग्जिला का डायग्राम को रिकॉल करो, आपका जो क्लास में जो आप ड्रॉ किए थे उसमें देखेंगे कि सबसे प्रॉक्सिमल पोर्शन में द पोर्शन इज नोन एज कार्डो विच इज अटैच्ड विद द क्रैनियम, एंड कार्डो इज फॉलोड बाय लॉन्ग पोर्शन विच इज नोन एज स्टाइप्स। स्टाइप्स का बेस से मैग्जिलरी पल्प निकलता है, एंटेना जैसे दिखता है, सेगमेंटेड। हाँ, स्टाइप्स का एकदम डिस्टल एंड पे चले जाओ, डिस्टल एंड पे जाने के बाद आपको दो दो लोब दिखता है, टू लोब्स यू फाइंड, वन इज इनर लोब, अनदर इज आउटर लोब। इनर लोब इज स्पाइनी और इट इज हेयरी, दैट लोब इज नोन एज लैसिनिया। आउटर लोब इज ब्लंट, इट इज नोन एज गैलिया। सो ये हो गया आपका मैक्सिला स्ट्रक्चरली। फंक्शनली क्या होगा, डेफिनेटली जब आप मैक्सिला पेयर्ड स्ट्रक्चर है तो पेयर्ड स्ट्रक्चर होने के कारण विद द हेल्प ऑफ लैसिनिया एंड गैलिया, मेनली लैसिनिया एंड द मैक्सिलरी पल्प, दे कैन ग्रिप द फूड, फूड को ग्रिप करके, एंड देयर आफ्टर इट ब्रिंग्स ऑल्सो टुगेदर, इट विल ब्रिंग द फूड इनसाइड द माउथ कैविटी। So gripping the food and bringing the food towards food inside the mouth cavity is the main function of this maxilla. In addition to that, because maxillary pulps are present, pulpi are present, and pulpi always are sensory, you know. So in sensing where exactly the food is there, it helps. It helps in detecting the presence of the food. And then at the center of the mouth cavity, like us. हम लोगों के जैसा, हम लोगों का सेंटर ऑफ द माउथ कैविटी में जैसे टंग है, TONGUE, इन केस ऑफ इंसेक्ट्स, इन केस ऑफ चिविंग एंड बाइटिंग टाइप माउथ पार्ट्स, दे ऑल्सो आर हैविंग ए टंग लाइक स्ट्रक्चर। बिकॉज इन योर क्लास आई हैव डिस्कस दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आवर टंग एंड इंसेक्ट्स हाइपोफेरिंक्स। सो हाइपोफेरिंक्स इज अ टंग लाइक स्ट्रक्चर, मस्क्यूलर स्ट्रक्चर। द ओनली फंक्शन in chewing and biting the mouth parts regarding your hypopharynx is secretion of saliva. So the salivary duct opens through hypopharynx. That is its function, main function. Ab last jo appendage aapka chewing and biting type mouth parts mein hota hai, that is your labium. Jaise hum logo ke case mein lower lip hai, इनके केस में लेबियम है। एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जरूर है, डायग्राम बनाएंगे तो क्लियर होगा। लेबियम का जो प्रॉक्सिमल मोस्ट पोर्शन है, दैट इज नोन एज सबमेंटम। लेबियम का बिल्कुल बीच में एक इलिप्टिकल और ओवल शेप्ड एक सेगमेंट है, दैट इज नोन एज मेंटम। और जो डिस्टल पोर्शन है, बाकी रेस्ट ऑफ द पोर्शन है, दैट इज नोन एज प्रीमेंटम। प्रीमेंटम का बिल्कुल एपेक्स में यानी कि डिस्टल एंड पे अगर आप जाएंगे, यू विल गेट टू पेयर ऑफ लोब्स, और ये टू पेयर ऑफ लोब्स में से जो इनर पेयर है, मतलब अंदर वाला जो पेयर है, दोज आर नोन एज ग्लॉसा। ग्लॉसा इज सिंगुलर, ग्लॉसी टुगेदर दे विल बी नोन एज ग्लॉसी। आउटर पेयर ऑफ लोब्स दे विल बी नोन एज, दे आर नोन एज पैराग्लॉसा। पैराग्लॉसी इज द प्लूरल। और अगर ग्लॉसा पैराग्लॉसा मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ ग्लॉसी एंड पैराग्लॉसी टुगेदर, दैट पोर्शन कैन बी लेवल्ड एज लिग्यूला। और ये जो प्रीमेंटम का जो अभी बात कर रहे हैं, प्रीमेंटम का बेस से आप देखे भी है कि वन पेयर ऑफ लेबियल पाल्पी आर प्रेजेंट। एंड एज आई हैव सेड कि कोई भी पाल्पी इंसेक्ट में प्रेजेंट हो तो उसका फंक्शन होगा सेंसरी। तो यहां पे लेबियल पाल्पी का फंक्शन किस तरह का सेंसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट एक सेंसरी फंक्शन है, दैट इज डिटेक्शन ऑफ स्वीटेबिलिटी ऑफ द फूड। फूड के पास तो पहुंच गए इंसेक्ट ना, लेकिन वो फूड कंज्यूम करने लायक है कि नहीं, ये डिसाइड करेंगे कौन, ये डिसाइड करेंगे लेबियल पल्पी। सो दैट इज वन फंक्शन। अनदर फंक्शन इज डेफिनेटली होल्डिंग द फ्रूट फ्रॉम द बॉटम, जैसे हम लोग केस में लोअर लिप नीचे से फूड को होल्ड करते हैं, अपर लिप ऊपर से फूड को होल्ड करते हैं। सिमिलरली लैब्रम मतलब इंसेक्ट के केस में अपर लिप ऊपर से फूड को होल्ड करते हैं, लेबियम इंसेक्ट के केस में लोअर लिप नीचे से फूड को होल्ड करते हैं। सो ये हो गया आपका प्रिमिटिव माउथ पर्स में से, जिसको बोलते हैं च्यूबिंग एंड बाइटिंग टाइप। अब डिफरेंट मॉडिफाइड माउथ पर्स भी हैं जो आपने क्लास में फॉलो किए हैं। मैंने एग्जांपल दिया था, मैंने आपको दिखाया भी था कि बटरफ्लाई के केस में। अब बटरफ्लाई को तो मैंडिबल्स का जरूरत नहीं है, बटरफ्लाई तो चबा चबा के नहीं खाएंगे, तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन, एक ग्रेट मॉडिफिकेशन होने का जरूरत है। तो वो मॉडिफिकेशन किस चीज का होगा, क्योंकि यू नो कि बटरफ्लाईज आर हैविंग ए कॉइल्ड लॉन्ग प्रोबोसिस। जब अनकॉइल करते तब लंबा दिखता है, कॉइल्ड रहता है तो स्प्रिंग लाइक रहता है। सो वेयर फ्रॉम दिस प्रोबोसिस इज अराइजिंग, व्हिच पार्ट ऑफ द प्रिमिटिव माउथ पार्ट्स हैज कन्वर्टेड इनटू प्रोबोसिस, दैट इज द गैलिया ऑफ मैक्सिली। दो जो मैक्सिली मतलब दो मैक्सिले का दो गैलिया होगा आउटर लोब, ये इलोंगेटेड हो जाएंगे एंड दे आर जिपर्ड टुगेदर टू फॉर्म दिस कॉइल्ड प्रोबोसिस व्हिच इज अनकॉइल्ड व्हेन द बटरफ्लाई इज इन एक्शन, मींस व्हेन इट इज टेकिंग द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर। एंड दिस मॉडिफाइड माउथ पर्स इज नोन एज साइफोनिंग टाइप माउथ पर्स। ऑलराइट, अनदर मॉडिफिकेशन हाउस फ्लाई में आते हैं। यू नो कि हाउस फ्लाई के केस में एक स्पॉन्जी स्ट्रक्चर रहता है, और वो स्पॉन्जी स्ट्रक्चर बाइलोब्ड होते हैं, मतलब दो लोब वाला स्पॉन्जी स्ट्रक्चर होगा, एंड दैट स्पॉन्जी स्ट्रक्चर इज नोन एज लैबेला। लैबेलम सिंगुलर, लैबेला प्लूरल। और वो लैबेला मतलब टिप ऑफ द प्रोबोसिस में माइन्यूट पोर्स रहेंगे, तभी तो वो स्पॉन्ज डेवलप करेंगे ना। वो माइन्यूट पोर्स को कहते हैं स्यूडो ट्रैकिया। सो यूजिंग दैट स्पॉन्जी स्ट्रक्चर कैपिलरी एक्शन के थ्रू द सेमी लिक्विड और सेमी सॉलिड फूड से वो लिक्विड को अपटेक कर लेते हैं। ये जो मॉडिफाइड माउथ पर्स है जो हाउस फ्लाई में पाया जाता है, इसको बोलते हैं स्पॉन्जिंग टाइप माउथ पर्स। इज दैट ऑल राइट? अपने डायग्राम बनाए थे, उस डायग्राम को फिर से प्रैक्टिस करेंगे और याद रखेंगे कि स्पॉन्जिंग टाइप माउथ पर्स कहां पे पाया जाता है, हाउस फ्लाई में। देन लेट्स कम टू अनदर इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन, पियर्सिंग एंड साकिंग टाइप माउथ पर्स। आप लोगों को पता है कि बग्स, कोई भी बग, वो भी तो चबा चबा के नहीं खाते, ना ही उसके पास कोई स्पॉन्जी स्ट्रक्चर है, ना ही उसके पास बटरफ्लाई जैसा कॉइल्ड प्रोबोसिस है। प्रोबोसिस जरूर है, बट यहाँ पे अलग तरह का, क्योंकि मान लीजिए कि कोई एक बाग प्लांट का टिश्यू के टिश्यू से वो सैप को सक करना चाहते हैं. सो इट हैज टू पियर्स द सरफेस ऑफ द प्लांट, चाहे लीफ हो या चाहे योर स्टेम हो. तो पियर्स करने के लिए उसको पियर्सिंग योर ऑर्गन चाहिए, अपेंडेज चाहिए. तो यहाँ पे ये जो बग्स होते हैं, वो बग्स में देयर विल बी फोर स्टाइलेट्स, चार स्टाइलेट होंगे, और ये चार स्टाइलेट पियर्स करने का भी क्षमता रखता है, साकिंग करने का भी क्षमता रखता है. इसलिए ये जो माउथपर्ट्स बग्स में पाया जाता है उसको बोलते हैं पियर्सिंग एंड साकिंग टाइप माउथपर्ट्स. तो ये चार स्टाइलेट का ऑरिजिन क्या है, ऑरिजिन मतलब कौन सा प्रिमिटिव अपेंडेज ये स्टाइलेट फॉर्म करेगा. आपको पता है कि मैंडिबल्स प्रिमिटिव में कितना रहता है, दो. प्रिमिटिव में मैक्सिला कितना रहता है, दो. अब यहां पे बाग में आके वो मैंडिबल मैंडिबल फॉर्म में आ रहा है कि स्टाइलेट फॉर्म में कन्वर्टेड हो जाता है. तो दो मैंडिबल दो स्टाइलेट फॉर्म करते हैं, दो मैक्सिला अनदर टू स्टाइलेट में कन्वर्ट होते हैं. सो हाउ मेनी स्टाइलेट्स यू हैव गॉट, टू मैंडिबुलर स्टाइलेट, मैक्सिलरी स्टाइलेट्स, दैट मींस यू हैव गॉट फोर स्टाइलेट्स. सो द बाग इज हैविंग फोर स्टाइलेट्स विद देम. अब ये स्टाइलेट के सहारे से वो पियर्स करेंगे और साक करेंगे. अब ये स्टाइलेट बहुत डेलिकेट भी होंगे ना, बहुत थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, बहुत डेलिकेट होंगे, और डेलिकेट होने के कारण इसका प्रोटेक्शन का भी जरूरत पड़ता है. मतलब व्हेन एट रेस्ट, व्हेन द बग इज नॉट फीडिंग, द स्टाइलेट्स रिक्वायर ए प्रोटेक्टिव कवर. हु विल गिव दिस स्टाइलेट्स ए प्रोटेक्टिव कवर? मॉडिफाइड लेबियम. लेबियम एक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है यहां पे, और उस ग्रुप के अंदर वो स्टाइलेट्स रेस्ट करते हैं व्हेन द बग इज नॉट फीडिंग. एंड दिस होल मॉडिफाइड माउथपर्स इज नोन एज पियर्सिंग एंड साकिंग टाइप माउथपर्स. अब यहां पे एक और चीज हमको बताना जरूरी है, क्योंकि मॉस्क्वीटो जो एक बाग नहीं है, जो एक डिप्टेरन इंसेक्ट है, हम लोगों का ब्लड सक करते हैं ना, उसके केस में भी ये पियर्सिंग एंड साकिंग टाइप माउथपर्स रहता है. हमने ये क्लास में बताया था. सो सारे बाग्स और डिप्टेरन में मॉस्क्वीटोस दे आर हैविंग पियर्सिंग एंड साकिंग टाइप माउथपर्स. थोड़ा सा अंतर बाघ के साथ मॉस्क्वीटो का है, वो किस तरह का है. बाघ में हाउ मेनी स्टाइलेट्स दे हैव, दे आर हैविंग फोर स्टाइलेट्स. बट इनके सब मॉस्क्वीटो, जो मॉस्क्वीटो हम लोगों को बाइट करते हैं, उस मॉस्क्वीटो में छह स्टाइलेट रहेगा. अब यहां पे मॉस्क्वीटो में आके क्या होता है कि उसमें भी एक स्टाइलेट रिलेटेड एक सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है. दैट मीन्स फीमेल्स, मॉस्क्वीटो का जो फीमेल्स होंगे दे आर हैविंग सिक्स स्टाइलेट्स, बट मेल्स दे आर हैविंग फोर स्टाइलेट्स, जस्ट लाइक बग्स. अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेल मॉस्क्वीटोज आपको बाइट नहीं करते. मतलब आपको बाइट करने वाला कोई भी मॉस्क्वीटो है तो वो फीमेल ही है, ओनली फीमेल. एंड दे हैव हाउ मेनी स्टाइलेट्स, दे हैव सिक्स स्टाइलेट. और ये छह स्टाइलेट आएगा कहां से? वो चार तो फिक्स है, दो मैंडिबुलर दो मैक्सिलरी. दो जो एक्स्ट्रा स्टाइलेट है वो कहां से आएंगे? वन विल बी फ्रॉम लैब्रम एपिफेरिंग्स. यहां पे लैब्रम एपिफेरिंग्स इलोंगेट होके एक स्टाइलेट फॉर्म करता है. अनदर इज योर हाइपोफेरिंजियल स्टाइलेट, मींस हाइपोफेरिंग्स यहां पे एक और स्टाइलेट फॉर्म करके फीमेल मॉस्किटो को छह स्टाइलेट प्रोवाइड करता है. समझ में आ गई? अब अनदर, there are several other modifications also, but इसमें से एक important modification आपको याद रखना चाहिए, that is your thrips का जो mouthparts है. thrips का mouthparts को बोलते हैं, modified mouthparts को बोलते हैं rasping and sucking. ये क्या करते हैं, इस mouthparts में there will be three stylets, right mandible will be absent. And if you go through the previous year's questions, I mean your 5-6 years, 10 years previous year's questions, then for several times the external examiner has asked ki in which insect asymmetrical mouthparts is found. The answer is thrips. In which insects only three stylets are found? The answer is again thrips. Which insect is having
1: माउथ कोन द आंसर इज अगेन थ्रिप्स. सो वो टाइनी एक इंसेक्ट थ्रिप्स, जिससे रिलेटेड ये बहुत सारे क्वेश्चंस बनता है. विच इंसेक्ट इज हैविंग रेस्पिंग एंड साकिंग टाइप माउथ पार्ट्स, द आंसर इज थ्रिप्स. सो आई होप दैट यू विल बी रिवाइजिंग थिंग्स केयरफुली. एंड द नेक्स्ट टॉपिक आई कवर्ड वॉज विंग वेनेशन modifications and wing coupling apparatus. Again, I'll be suggesting, please draw the diagram of generalized insect wing, label the different portions, different angles, different margins. आपको पता ही है कि humeral angle रहता है कहाँ पे रहता है. Anterior margin किसको कहते हैं? Anterior margin का एक और नाम है क्या है? Costal margin, apical margin, then anal margin, angles also, and thereafter you draw a typical insect wing having your longitudinal veins and cross veins, costa, subcosta, radius, media, cubitus, anal veins, and the cross veins like your humeral cross vein, radial cross vein, sectorial cross vein, radiomedial crossbane, M crossbane means medial crossbane, MCU, mediocubital crossbane. ये आप प्रैक्टिस करेंगे. और ये विंग वेनेशन कौन दिए थे, कौन साइंटिस्ट थे विंग वेनेशन ओपाइन किए थे? नेम इज कॉमस्टॉक एंड नीडहम. यू मस्ट रिमेंबर द नेम. एंड देन विंग कपलिंग मैकेनिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जुगेट विंग कपलिंग मैकेनिज्म, please recall my class, that class, two classes I took regarding your to explain this wing coupling mechanism. Jugit wing coupling mechanism, frenet wing coupling mechanism, jugo frenet wing coupling mechanism. Male frenet aur female frenet mein aap logo ko model ke sahare se bhi batane ki koshish kiye the, chart paper kaat ke male frenet aur female frenet mein antar kya hota hai. And then hamulet, very important. In honeybees you get, in wasps you get hamuli. Hamuli wo hook like structure hote jo hind wing ka costal margin mein rehta hai. Mota moti 20 hook like structure rehta hai jo fore wing ka anal margin ko pakad ke rakhta hai jab insect fly karte hai, usko bolte hai hamulet wing coupling mechanism. Another topic jo main aapko प्रैक्टिकल क्लास में बहुत बार आपको बताया, दैट इज योर मॉडिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट विंग. मॉडिफिकेशन मतलब यहाँ पे डिफरेंट इंसेक्ट में कितना अलग अलग टाइप ऑफ इंसेक्ट विंग होते हैं, हॉल्टेयर किस में होते हैं, स्यूडो हॉल्टेयर किस में होते हैं, एलाइट्रा किस में होता है, हेम एलाइट्रा, हेमिलिट्रा जिसको आप बोलते हैं ना, हेम एलिट्रा किस में होते हैं, फ्रिंज्ड विंग्स किस में होते हैं, आपका मेम्ब्रेनस विंग्स किस में होते हैं, ये 7 different types of insect wings. Please go through along with the examples. And then Dr. Rao probably had covered metamorphosis and diapause in insects, types of larvae and pupae. Types of larvae and pupae, this topic was there in your midterm examination. All of you have tried that one and you have done well. कितना अलग अलग टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस होते हैं, लार्वी का डिफरेंट टाइप्स, यू ऑलरेडी हैड रीड इट एंड आई हैव चेक्ड योर मिडटर्म एग्जाम मिडटर्म कॉपीज कि एपोडस लार्वा, पॉलीपोड लार्वा, ऑलिगोपोड लार्वा, फिर अगेन देयर आर क्लासिफिकेशंस, पीपल के केस में भी सेम, ऑप्टेक्ट एटसेट्रा. डॉक्टर आदर्स प्रोबेबली हैज कवर्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, द सिस्टम्स मीन्स सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, respiratory, nervous, reproductive system. So regarding your systems, I'll suggest you to again practice the diagram of circulatory, khas karke excretory, digestive system definitely, and different modifications ka jo examples hai wo aap जरूर पढ़ के जाएंगे. एंड देन
0: regarding insect ecology, environment and its components, effect of biotic factors and abiotic factors. So you know that insect ke upar sabse zyada agar impact hai, so there are two factors. One is biotic factors. Biotic means definitely organism ke through koi insect ka population mein, insect ka reproduction mein koi agar affect karenge to usko biotic factor bolenge. For example your enemies, natural enemies of insects, so that is a biotic factor. In abiotic factor, you know, rainfall, relative humidity, sunshine hours, temperature, these all are under your abiotic factors, right? Then categories of pests, you know, key pests, major pests, minor pests, sporadic pests, regular pests, occasional pests. So examples you have to remember. Then regarding systematics, taxonomy, Dr. Rao has covered this topic. So you know that the class Insecta is classified into two sub classes. One is Aterigota and other one is Terigota. Ab yahan pe tera means wing, A means absent. Aterigota means the insect orders, the classes, subclass of the insect, insecta, which is having the orders where no insect wings are present. Means primarily those orders will be wingless. Or under this Aterigota, how many orders you have gone through? Four. So all these four orders, they lack the wings, right? Primarily they are wingless. And in case of Terigota, means rest of the jo 25 insect orders hai, they are having wings. Means secondarily they may not have the insect wings, but primarily they have the wings. Aterigota or Terigota mein ye main difference hai ki kaun sa primarily wingless hai aur kaun sa winged hai aur otherwise secondarily wingless hai. Another difference is your metamorphosis ke regarding. In case of Aterigota, either the metamorphosis is completely absent or it is very slight. But in case of Terigota, metamorphosis is there. Means either they will be having three stages in their life, or otherwise they will be having four stages in their life. But in case of Aterigota, the metamorphosis is either completely absent or it is very slight. And then articulation of the mandible from point of view, say, we difference hai. In case of Aterigota orders, the head is monocondylic. That is, articulation is single. Mandible ka jo articulation hai, that is single articulation. But in case of Terigota ka jitna bhi 25 insect orders hai, usme it is dicondylic. Or bhi differences hai, but for the second semester, this is enough. So what are the different orders which come under this Aterigota? Thysanura, Columbula, Proteura, Diplura. So I'll suggest you not to go into detail of these classes, of these orders. I'm talking of this Aterigota orders. But you must remember the examples of those. So Aterigota mein there are four insect orders. Thysanura mein silverfish aata hai, Columbula mein springtail aata hai, Proteura mein protuberans aata hai, Diplura mein japygetes aate hai. Ye examples aapko yaad rakhna hoga. Regarding rest of the orders, means the subclass Terigota, again do division kiya gaya hai yahan par. Matlab 25 order aa raha hai na, 25 ko 16 aur 9 mein bata gaya hai. 16 होगा एक्सोटेरिगोटा, 9 होगा एंडोटेरिगोटा. अब ये दो जो डिविजन है, समटाइम्स योर एक्सटर्नल एग्जामिनर में आस्क यू कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द एक्सोटेरिकोट एंड एंडोटेरिकोट. सो द मेन डिफरेंस इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ विंग डेवलपमेंट. इफ द विंग डेवलपमेंट इज एक्सटर्नल मीन्स इट इज विजिबल दैट द विंग इज गेटिंग डेवलप्ड, देन द इंसेक्ट ऑर्डर्स विल बी अंडर एक्सोटेरिकोटा. दैट इज व्हाई द नेम एक्सोटेरिकोटा हैज बीन गिवन. And in the under the orders of Endoterygota, all are having your wing development, which takes place internally. Means within the case, the wing is getting developed, which cannot be visible from the outside. From metamorphosis point of view, very important difference is there between Exoterygota and Endoterygota. In Exoterygota, all will be having incomplete metamorphosis. Incomplete means, मैंने पहले भी बताया कि there will be three life stages. Egg, nymph, adult. There is no existence of pupal stage with them. Whereas, in case of endoterygota, that pupal stage is there. So, in endoterygota, there will be four life stages. Egg, अब यहाँ पे nymph ना बोल के हम लोग बोलेंगे larva, pupa, adult. How many stages? Egg, larva, pupa, adult, four stages. Therefore, you can write down that in exoterygota, pupal stage is absent. In case of endoterygota, pupal stage is present. Immature stages of exoterygota, either they will be called as your naid or nymph. एक्वेटिक स्टेज, एक्वेटिक कुछ ऑर्डर से जिसमें नेड बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल ड्रैगन फ्लाई का जो जो जो जो जो इमेच्योर स्टेज है उसको बोलते हैं नेड. हेमिप्टेरा मतलब बग्स का जो इमेच्योर स्टेज है उसको बोलते हैं निम्फ. बट लार्वा दैट टर्म इज यूज टू डिपिक्ट द इमेच्योर स्टेज ऑफ योर स्टेजेस ऑफ योर स्टेज ऑफ योर एंडोटेरिकोट ऑर्डर्स. तो एक्सोटेरिकोटा में कौन कौन सा इंसेक्ट ऑर्डर आता है? एफिमेरोप्टेरा ओडोनाटा, प्लेकोप्टेरा ग्लाइरोब्लैटोरिया, ऑर्थोप्टेरा फैजमिटा, डार्माप्टेरा इम्बाप्टेरा, डिक्टियोप्टेरा, आइसोप्टेरा, सोराप्टेरा, जोकोप्टेरा, मेलोफेगा, साइफानोप्टेरा, हेमिप्टेरा एंड थाइसोनोप्टेरा. सो सारे इंसेक्ट ऑर्डर्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है. सर ने भी आपको बताया होगा कि सारे इंसेक्ट ऑर्डर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं, बट सारे इंसेक्ट ऑर्डर्स का आपको एग्जाम्पल जरूर याद रखना है. फॉर एग्जाम्पल एफिमेरोप्टेरा एग्जाम्पल है मे फ्लाई, जो मे महीना में आपका जो प्रिंसिपल ऑफिस का अपोजिट में एक टावर है जिसमें बहुत हेलोजन लाइट लगा हुआ रहता है, उसमें थाउजेंड्स ऑफ मे फ्लाई जो व्हाइट कलर के होते हैं उसमें अट्रैक्ट होते हैं, आप लोगों ने देखे हो. ओडोनाटा यू नो, ड्रैगन फ्लाई, डैमसल फ्लाई, तो सारे ऑर्डर्स के एग्जाम्पल्स आपको याद रखना होगा, बट कुछ इंसेक्ट ऑर्डर का डिटेल में भी जाना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल जिसको हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट ऑर्डर्स, ओडोनाटा एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट ऑर्डर है. कैसे? क्योंकि सारे ओडोनेट्स, सारे ड्रैगन फ्लाइज, डैमसल फ्लाइज एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दे ऑल आर प्रेडेटर्स, दे फीड ऑन द अदर इंसेक्ट्स विच आर हार्मफुल, देयरफॉर इट इज एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट. सो यू मस्ट रिमेंबर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्डर ओडोनाटा विच यू ऑलरेडी नो. फॉर एग्जाम्पल यू नो कि ड्रैगन फ्लाइज एंड डैमसल फ्लाइज का विंग्स कैसा होता है, मेम्ब्रेनस विंग्स होता है. विंग्स में ओपेक स्पॉट को क्या बोलते हैं? टेरोस्टिग्मा. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स. बोथ द विंग्स आर मेम्ब्रेनस. किसमें होते? ड्रैगन फ्लाइज में होते. बास्केट लाइक लेग्स ड्रैगन फ्लाइज एंड डैमसल फ्लाइज में होते टू कैप्चर द प्रे. मैक्सिमम नंबर ऑफ ओमाटिडियम किसी का अगर कंपाउंडाइज में होंगे तो दैट इज योर ड्रैगन फ्लाइज. अब देखो ये कंपाउंडाइज ड्रैगन फ्लाइज का मैक्सिमम पोर्शन, मैक्सिमम एरिया ऑफ द हेड को कवर करता है. सो वो पीछे भी देख सकते हैं, साइड में भी देख सकते हैं, सामने भी देख सकते हैं. मोटा मोटी 360 डिग्री उसका विजन है. और भी बहुत सारे एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंट इंसेक्ट ऑर्डर्स है, मैं कुछ मेंशन करता हूँ. फॉर एग्जाम्पल ऑर्थोप्टेरा, देन योर डिक्टाप्टेरा जिसमें कॉकरोच एंड प्रिंग मैंटिस आते हैं, आइसोप्टेरा टर्माइट्स आते हैं, इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंट, वीट का पेस्ट होते हैं. देन हेमिप्टेरा डेफिनेटली बहुत सारे प्रेडेटरी बग्स भी होते हैं, बहुत सारे फाइटोफैगस हार्मफुल बग्स भी होते हैं. थाइसनोप्टेरा जिसके एग्जांपल थ्रिप्स होते हैं ना, वो भी एग्रीकल्चरली बहुत इंपॉर्टेंट हैं.